0: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
1: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों की तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
0: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही, पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
1: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
0: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई, जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
2: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे की परेशानी।
0: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी, इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा, मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
3: पश्चिम बंगाल में बांग्लादेशी घुसपैठिए सख्ते में हैं। वो किसी भी तरह बांग्लादेश भाग जाना चाहते हैं। शुभेंदु अधिकारी की बांग्लादेशी घुसपैठियों को जल्द से जल्द भाग जाने को वो लगातार कह रहे हैं। इसका असर ये है कि बांग्लादेश से लगती हुई सीमा पर बंगाल के अलग अलग जिलों से भागकर घुसपैठिए लगातार आ रहे हैं। घुसपैठियों में खौफ की वजह होल्डिंग सेंटर्स हैं।
4: जो भी अवैध तरीके से बंगाल में घुस आया है, जो फर्जी डॉक्यूमेंट लेकर यहां रह रहा है, वो 29 अप्रैल से पहले बंगाल और हिंदुस्तान छोड़ दे, वरना 4 मई के बाद हर घुसपैठियों को खदेड़ा जाएगा।
1: घुसपैठियों पर चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा उसे शुभेंदु अधिकारी ने करके दिखाया।
5: आमी शुभेंदु अधिकारी ईश्वर नामे शपथ करते जे।
1: शुभेंदु अधिकारी 9 मई को पश्चिम बंगाल में बीजेपी के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। मई का महीना अभी पूरा नहीं हुआ, शुभेंदु के कुर्सी संभालने के 20 दिन के भीतर ही पश्चिम बंगाल में घुसपैठिए बांग्लादेश जाने के लिए हाकिमपुर बॉर्डर की तरफ भाग रहे हैं।
6: दामाद है
1: किसी ने भी नहीं सोचा था कि इतनी जल्दी बांग्लादेश के घुसपैठियों का हौसला टूटेगा और वो शुभेंदु सरकार के डर से अपने देश भागने लगेंगे। शुभेंदु कहेंगे भागो घुसपैठियों, और बंगाल के अलग अलग इलाकों में छिपे घुसपैठिए अपने अपने घर से निकलकर भागने लगेंगे।
7: क्या वजह है कि आपको जाना पड़ रहा है? इधर बहुत झमेला चल रहा है, इसलिए चल जा रहे हैं।
8: झमेला चल रहा है मतलब कैसा?
7: कोई को रहने नहीं दे रहा है, हम लोग को काम धाम नहीं मिल रहा है, हम लोग चल जा रहे हैं।
8: आप रहने वाले कहाँ से हो?
7: हम लोग बंगाल का है।
8: बंगाल के? तो आप बांग्लादेश के, बांग्लादेश से आए थे या यही के हो वहाँ जा रहे?
7: नहीं, बांग्लादेश से आए थे।
8: कब आए थे?
7: हो गया 2-3 साल हो गया।
1: भारत के कोने कोने में बांग्लादेशी घुसपैठिए पहुँच चुके हैं। डिटेंशन के डर से बांग्लादेश लौटते ये लोग लंबे समय से पश्चिम बंगाल में बसे थे, जहाँ पर वो दुकानों और घरों में सहायक के तौर पर काम करते रहे। इनमें दक्षिण 24 परगना में पकड़ी गई ये बांग्लादेशी महिला भी शामिल है, जो 6 महीने पहले बांग्लादेश से बंगाल में आई, जहां पहले से इसका पति 5 साल से रह रहा था। तो बंगाल में 2-3 साल से रहने वाले बांग्लादेशी घुसपैठिए तोते की तरह बोल रहे हैं, मान रहे हैं कि शुभेंदु राज में रहना अब इनके लिए खतरे से खाली नहीं।
8: कैसे आए थे?
7: ओई, हम लोग को दूसरा आदमी लेके आया था।
8: लाके फिर क्या प्रोसेस था यहाँ लाने का?
7: यहाँ लाके उधर रख दिया है, तो बोलते हैं अब तुम अपना काम धाम करेगा।
8: आधार कार्ड, राशन कार्ड ये सब भी बनाया था?
7: नहीं,
8: कुछ भी। यहाँ कहाँ रहते थे बंगाल में?
7: यहाँ हम लोग हावड़ा जिला।
8: हावड़ा जिला जी। क्या काम करते थे?
7: हम बाइक मैकेनिक है।
1: हावड़ा से लेकर सियालदा रेलवे स्टेशन के बाहर अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की गई। बीजेपी की तरफ से दावा किया गया कि टीएमसी के राज में घुसपैठियों को अतिक्रमण करने की छूट मिली थी। इसके अलावा शुभेंदु सरकार में सख्ती बढ़ने से घुसपैठिए बॉर्डर की तरफ भागने लगे हैं।
9: बांग्लादेश से हमारे मैं आईडी कार्ड सभी आज एसम एखे मैंने बंधु बान्धवर मैंने मैं एक चाकर बंधु बान्धवर साथ পরে আমি চাকরি পাই নাই, এখন আমি দেশে ফিরতে চাই। আমার আইডি কার্ড আছে।
8: আইডি কার্ড মানে কি? আধার কার্ড?
9: আধার কার্ড, হ্যাঁ।
10: বললাম তো 8-7 বছর আগে এসেছিলাম।
8: হঠাৎ করে
10: এখনকার সরকার রাখছে না, তাই চলে যাচ্ছে হচ্ছে আমাদের।
8: আমার
10: কাগজ ছিল না, না আমরা নিজস্ব এসেছিলাম বর্ডার থেকে, ওই বেনাপোল।
3: बांग्लादेश से भारत में दशकों से घुसपैठ हो रही है, लेकिन ऐसा पहली बार है जब देश बांग्लादेशी घुसपैठियों की जुबानी ही सुन रहा है कि वो भारत में आए कैसे। लेकिन सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी ने ऐसा क्या किया जिसकी वजह से बंगाल भर से घुसपैठिए सीमा पर खुद ब खुद आ रही हैं।
0: बीजेपी का आरोप है कि ममता बनर्जी की सरकार में बांग्लादेशी घुसपैठियों को कहीं भी बसने की छूट मिली हुई थी। ममता सरकार में उन्हें अपना वोट बना लिया गया था, लेकिन शुभेंदु सरकार में एक भी घुसपैठिया सुरक्षित नहीं बचेगा।
8: ममता बनर्जी का सरकार वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए थे। आज ममता बनर्जी को भी मालूम था कि ये लोग घुसपैठी है, लेकिन उन लोग को आज राशन कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड, आधार कार्ड बनाकर आज हमारे राज्य का जो परिसेवा, जो साधारण लोगों का, जनता और सिटीजन को, नागरिक को मिलना था, वो आज वो घुसपैठियों को दिया गया।
0: पश्चिम बंगाल में घुसपैठियों में मची इस भगदड़ की सबसे बड़ी वजह होल्डिंग सेंटर का ऐलान है, जिन्हें शुभेंदु अधिकारी ने सीमावर्ती इलाकों में बनाया है। उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया का ये होल्डिंग सेंटर देखिए, जो ममता सरकार में एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, लेकिन अब यहाँ पर बंगाल से घुसपैठियों को पकड़ कर रखा जा रहा है।
6: इस वक्त हम लोग उत्तर 24 परगना के तेंतुलिया में हैं, जहाँ पर बांग्लादेशियों को रखा जा रहा है। ये देखिए, ये वो पोथेर साथी जो पश्चिम बंगाल सरकार, ममता सरकार की ओर से एक समय शुरू किया गया था रेस्टोरेंट कम होटल के तौर पर, ये भवन उसी भवन में इस वक्त यहाँ पर लगभग 250 के आसपास जो इल्लीगल बांग्लादेशी हैं, जो अवैध तरीके से भारत में आए थे, उनको यहाँ पर रखा गया है। हेल्थ ऑफिशियल्स की टीम मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखिए स्वास्थ्य विभाग की एक टीम को यहाँ पर रखा गया है, क्योंकि बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, औरतें भी हैं। पुलिस की भारी कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच यहाँ पर लोगों को रखा गया है, इनके खाने पीने का इंतजाम भी किया जा रहा है। और हकीमपुर जो बॉर्डर है, यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, वहां पर जब एकत्रित हो रहे हैं जो बांग्लादेश जाने के लिए जो बांग्लादेशी, उनको ही यहाँ बेसिकली लाया जा रहा है और यहाँ पर रखा जा रहा है।
11: यहाँ पर ऑन सिक्स और दोनों कैंप चरघट मिलन मंदिर स्कूल तिरान शिविर है ऑन 63 और दोनों तीसरा के तेपुल मिर्जापुर ग्राम पंचायत है मेदिया बस्तोहरा गर्ल्स स्कूल इनसाइड ये पोतरसाती है वहाँ पर 53 शिविर है वहाँ पर 52।
0: इस होल्डिंग सेंटर में रहने वाले 116 बांग्लादेशियों में महिला और बच्चे भी शामिल हैं, इसीलिए यहाँ पर स्वास्थ्य टीम के साथ पानी और पंखे का इंतजाम है। उत्तर 24 परगना की तरह मुर्शिदाबाद भी बांग्लादेश की सीमा से लगा हुआ इलाका है, जहां पर वर्षों से घुसपैठ होती आई। यहां पर इस इमारत की तीसरी मंजिल पर होल्डिंग सेंटर बनाया गया, जहां पर किसी को भी जाने की इजाजत नहीं। ममता सरकार में यहां पर शादी ब्याह होता था, लेकिन अब बंगाल में छिपे घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजने के लिए रखा जा रहा है।
12: ये जो थर्ड फ्लोर है, उस थर्ड फ्लोर में ही इस जो प्रॉपर्टी कोऑपरेटिव का प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी में ही इसका अनुष्ठान भी चलता है। शादी वगैरह कोई भी अनुष्ठान होता तो इस थर्ड फ्लोर को रेंट में देता था इस कोऑपरेटिव वाले। और अभी तो प्रशासन के रेंट में ही है, प्रशासन बीडीओ लोकल जो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर और लालगोला थाने का जो ओसी है, वही बातचीत करके टेम्पोररी वे में इस बिल्डिंग का थर्ड फ्लोर को सिलेक्ट किया हुआ है। और इस थर्ड फ्लोर में ही अभी जो मुर्शिदाबाद का पहला होल्डिंग सेंटर है, इसमें ही मुर्शिदाबाद का कहीं भी अगर बांग्लादेशी सस्पेक्टेड पकड़ा जाता है तो इस होल्डिंग सेंटर में ही आके रख रहा है।
13: फिलहाल इसको जहाँ पे लालगुला से लेके भानगुला सूती से लेके जो भी बड़ा लगा आदमी यहाँ पे बांग्लादेश का है, उसको यहाँ लेके जो सेंटर किया है इसमें रखा हुआ है। तो अगला जो सिस्टम है सरकार की तरफ से, उसको कैसे यहाँ से निकालना है, उसको ट्रांसफर करना है, रिपोर्ट करना है, इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है।
0: पश्चिम बंगाल में बने इन होल्डिंग सेंटर का ही खौफ है, जिसने घुसपैठियों को बांग्लादेश बॉर्डर की तरफ दौड़ लगाने के लिए मजबूर कर दिया। शुभेंदु सरकार पहले ही ऐलान कर चुकी है कि घुसपैठियों को अदालत के हवाले नहीं किया जाएगा और उन्हें सीधे बीएसएफ को सौंपकर बांग्लादेश भेजने की प्रक्रिया कराई जाएगी, ताकि वर्षों से भारतीय बनकर हिंदुस्तानियों के हकों पर कब्जा करके रहने वाले इन बांग्लादेशियों को वहीं भेजा जा सके जहां से ये आए हैं।
3: बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए गए निर्देशों का पालन कराने में पुलिस जुटी हुई है। संभल से लेकर काशी तक, मुजफ्फरनगर से लेकर लखनऊ तक फ्लैग मार्च पुलिस फोर्स कर रही है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज ना हो।
14: प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
0: यूपी पुलिस बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कराने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, प्रतिबंधित किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
15: ये सामने चेतगंज से आए हैं।
0: जमीन से लेकर आसमान तक यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए।
16: जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में पुलिस जुट गई ताकि माहौल बिगाड़ने की सोचने वालों का कोई मंसूबा ना कामयाब हो सके, खासकर कि बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले की बकरीद पर किसी तरह कोई नमाज या कुर्बानी को लेकर विवाद ना हो, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा हो। इसीलिए वाराणसी में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस का दल बल निकलता है, जिनमें स्थानीय पुलिस पीएसी के जवानों के साथ आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान होते हैं। ड्रोन से यहां पर निगरानी की जाती है।
17: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, इसी के अनुपालन में आज वाराणसी पुलिस सड़कों पर है और मिश्रित आबादी के इलाकों से होते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां से होकर गुजर रही है।
15: प्रॉपर डिसिप्लिन होके दो लाइनों में अच्छे से।
0: वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य बेनिया पार्क इलाके से कई थानों की फोर्स और आरआरएफ के जवान इकट्ठा होते हैं। शहर के बेनिया पार्क से होते हुए नई सड़क गोदुलिया मदनपुर और वापस गोदुलिया चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक यहां पर फ्लैग मार्च निकाला गया है।
18: सभी को बताया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसका कटान नहीं किया जाएगा और जो नमाज है वो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। जहां पे संख्या ज्यादा है नमाजियों की वहां पे दो शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए।
0: प्रदेश में आखिरी बार संभल में 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त बड़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में जब बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर रोक है, जब निर्देश है कि खुले में कुर्बानी किसी की नहीं दी जा सकती, तब उसका पालन भी हो, इसीलिए संभल में पुलिस सतर्क हो चुकी है।
19: जनपद संभल को 5 जोन 18 सेक्टर और लगभग 42 सब सेक्टर्स में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कोई भी ऐसी अफवाह ना उड़े, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो।
0: इसी तरह मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर भारी पुलिस फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हैं। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन होता है, ड्रोन होता है, सब तरफ से निगरानी की जा रही है।
20: जितने हमारे धर्मस्थल हैं इसकी चेकिंग की जाएगी और जितने लोग जिनका पूर्व प्रकाश आया है कि किसी भी तरह की हरकत में संलिप्त रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कर्तव्यबद्ध है।
0: लखनऊ में भी तैयारी पूरी कर ली गई, जहां राजा कंसा पासी के किले बनाम मकबरा की लड़ाई में कोई बकरीद पर हालात ना बिगाड़ सके, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई।
1: उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।
0: मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, गोवंश की कुर्बानी ना दी जाए।
21: सबसे यही अपील की है कि नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और कुर्बानी करते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए।
3: उत्तर प्रदेश में पुलिस अपराधियों पर गोली चलाती है, लेकिन अखिलेश यादव का आरोप यह है कि यूपी पुलिस की बंदूक तभी चलती है जब सामने पिछड़ा, दलित या फिर अल्पसंख्यक आरोपी हों। क्या ये आरोप सच्चे हैं? जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के राज में हर दिन 5 एनकाउंटर्स का आंकड़ा है और मुख्यमंत्री साफ कहते हैं कि माफिया हो या कानून को चुनौती देने वाला अपराधी, उसे मिट्टी में मिला दिया जाएगा।
2: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इंटाउन करवाती है।
4: किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे।
2: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है।
4: परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है, सूर्य अस्त के पहले वह वापस आ जाए, परिवार की चिंता होती है।
2: जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो ये है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर हो रहा है।
4: माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया।
0: उत्तर प्रदेश में क्या जाति देखकर एनकाउंटर होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में जानबूझकर जाति की सियासत लाई जा रही है? इन दो सवालों के बीच 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खड़ा है। जौनपुर की घटना के साथ इस खबर को समझिए, जहां पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव नाम के आरोपी का अंतिम संस्कार होता है। तभी रोते बिलखते परिजन पहुँचते हैं, आरोप ये लगा देते हैं कि यादव जाति होने की वजह से केवल आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है।
22: बिल्कुल यादव होने के लिए जातवाद हो रहा है, सीधा सी बात है, जातवाद हो रहा है, यादव होना गुनाह है, यादव होना इस सरकार में गुनाह है।
0: घटना इसी महीने की है, जब जौनपुर में आजाद बिंद नाम के दूल्हे को उसी की कार में गोली मार दी गई जब वो बारात लेकर जा रहा था। मौत के मामले में तीन लोग नामजद हुए, प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर। तीनों पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ। इसी मामले में जब पुलिस ने रवि यादव का एनकाउंटर किया तो परिवार से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख तक आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया।
2: कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है।
0: अखिलेश यादव जाति देख इनकाउंटर करने का आरोप पहली बार नहीं लगा रहे। इससे पहले अगस्त 2024 में जब सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट ज्वेलरी शॉप में होती है और लूट के बाद पुलिस अलग अलग जातियों के आरोपियों के बीच सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है, तब भी अखिलेश यादव ने जाति देख यूपी पुलिस की बंदूकों से गोली निकलने का आरोप लगाया। अब वही आरोप फिर से दोहराया है।
2: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इनकाउंट करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
0: उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकारी डेटा है, मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर किए गए। इसका सीधा सा मतलब है योगी राज में रोज 5 एनकाउंटर होना। लेकिन पुलिस की गोलियों से कहीं मारे जाने वाले, कहीं पैर पर गोली खाने वाले बदमाशों में जब विपक्ष जाति खोजता है तब मुख्यमंत्री से माफिया मुक्त प्रदेश की पहचान बताते हैं।
4: जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्ते बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
3: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
7: If you own a business like I do, even one missed call means money left on the table. I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at quo.com/tunein. That's quo.com/tunein.
9: हल्दी के प्रयोग से बृहस्पति कैसे होंगे मजबूत? हल्दी का प्रयोग करने से नजर दोष कैसे होगा दूर? हल्दी के प्रयोग से कैसे मिलेगी वाणी को शक्ति? क्या है हल्दी के चमत्कारी प्रयोग? जानिए मेरे साथ सिर्फ
23: Peace of mind? It starts with a click. Seatbelts aren't just smart. They're part of your fit check, whether it's a hoodie or a suit. That buckle completes the look. So when will it click? Seatbelts save lives, yours and everyone riding with you. United we go. One click, one choice, every ride. Click it or ticket. A message brought to you by the DC Highway Safety Office. Learn more at unitedwegodc.com.
5: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

देश भर में मनाई जा रही है बकरीद। बंगाल से महाराष्ट्र तक सुरक्षा सख्त। कोलकाता में नमाज स्थल बदला। नोएडा में धारा 163 लागू। कई शहरों में कड़ी निगरानी। कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा संकल्प रहा है यूसीसी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। और राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा, कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ने ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था दागी।

0: नमस्कार सुप्रभात, आप देख रहे हैं आज तक आपके साथ। मैं हूं आशुतोष मिश्रा। सुबह सवेरे के इस पहले बुलेटिन में आपका स्वागत है। शुरुआत करेंगे उस बड़ी खबर के साथ, खासकर पश्चिम एशिया की स्थिति जिसमें संकट जो है वो पूरी दुनिया को अपनी चपेट में ले चुका है। तो ताजा खबर यह है कि अमेरिका और ईरान के बीच तनाव एक बार फिर बढ़ता दिखाई दे रहा है। अमेरिकी सेना ने रात भर ईरान में कई सैन्य ठिकानों पर नए हमले किए हैं। अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक ये कार्रवाई स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिकी सेना और व्यापारिक जहाजों को खतरे से बचाने के लिए की गई है। अमेरिका का दावा है कि उसने कई ईरानी ड्रोन मार गिराए हैं जो समुद्री सुरक्षा के लिए खतरा बन रहे थे। इन हमलों के बीच युद्ध विराम और शांति वार्ता की कोशिशें जारी हैं, लेकिन हालात अब लगातार तनावपूर्ण बने हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरानी मीडिया की उस रिपोर्ट को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का संचालन ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। ट्रंप ने साफ कहा कि ये अहम समुद्री मार्ग अब खुला रहेगा। अमेरिका ने ईरान के कई सैन्य ठिकानों पर बमबारी की है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान के ड्रोन को मार गिराया गया है और इसके 48 घंटे पहले भी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ईरान की माइनिंग जो नेवल माइंस हैं उसे बिछाने जा रहे हैं। तो इस तनाव से जुड़ी लगातार खबरें हम आपको दिखाते रहेंगे। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का जो है ट्रिशा शर्मा केस की, जहां मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। कोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज करते हुए कहा कि मामले में गंभीर तथ्य और आरोपों को सही तरीके से नहीं परखा गया था। कोर्ट के अनुसार रिकॉर्ड पर मौजूद बयान गिरिबाला सिंह और उनके बेटे पर मृतिका को गर्भपात के लिए दबाव बनाने और प्रताड़ित करने के आरोप हैं। कोर्ट ने कहा कि प्रताड़ना और दबाव की बातें सामने आई हैं। हाईकोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि व्हाट्सएप चैट्स के आधार पर यह नहीं कहा जा सकता कि आरोप केवल समर्थ सिंह पर हैं। आपको बता दें कि अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद गिरिबाला सिंह की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि सीबीआई जो जांच कर रही है समर्थ उनके गिरफ्त में है और अब गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि उनको मिला अंतरिम प्रोटेक्शन फ्रॉम अरेस्ट वो अब रद्द हो चुका है। और हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान अदालत के सामने ये दलीलें दी गई कि ऐसे बहुत सारे सबूत हैं जिसके आधार पर पूछताछ जरूरी है। गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रही हैं, वो जांच को गुमराह कर रही हैं और अब हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए उन्हें मिली अंतरिम जमानत को रद्द कर दिया है, जिसके बाद अब यह माना जा रहा है कि कभी भी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी सीबीआई द्वारा की जा सकती है। चले रुक करते हैं अगली खबर का। आज बकरीद है। शुभेंदु सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा। कई चीजें यहां पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रही हैं, लेकिन इस बार काफी कुछ बदला दिखेगा।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही है, यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं, मैं सबको फोन को ईद मुबारक कहने जाऊंगी।
1: कोलकाता की वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी, इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
2: आपको जो रोजा अल्लाह ने कबूल
3: किया भैया, आया भैया,
2: आपको आशीर्वाद दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छे रहे,
3: भाई भाई
2: हिंदुस्तान अच्छे रहे, बंगाल अच्छे रहे, और जो बंगाल को
1: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों के तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
1: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया था। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही। पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
3: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
1: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
4: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे को परेशानी।
1: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेन गुप्ता, कोलकाता आज तक।
0: सिर्फ बंगाल ही नहीं, उधर बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के लिए निर्देशों का पालन कराने में पुलिस जुट गई है। संभल से काशी तक, मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक फ्लैग मार्च कर रही है और पुलिस फोर्स ये सुनिश्चित कर रही है कि कानून व्यवस्था बनी रहे।

0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज ना हो।
1: प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
0: यूपी पुलिस बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कराने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, प्रतिबंधित किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
2: ये सामने इसके चेतगन से आए हैं।
0: जमीन से लेकर आसमान तक यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए।
3: जो ये अफवाहबाज हैं, ये देश के हितैषी नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में पुलिस जुट गई ताकि माहौल बिगाड़ने की सोचने वालों का कोई मंसूबा ना कामयाब हो सके। खासकर कि बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले की बकरीद पर किसी तरह कोई नमाज या कुर्बानी को लेकर विवाद ना हो, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा हो। इसीलिए वाराणसी में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस का दल बल निकलता है, जिनमें स्थानीय पुलिस पीएसी के जवानों के साथ आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान होते हैं।
4: लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं, इसी के अनुपालन में आज वाराणसी पुलिस सड़कों पर है और मिश्रित आबादी के इलाकों से होते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां से होकर गुजर रही है।
5: प्रॉपर डिसिप्लिन होके दो लाइनों में अच्छे से।
0: वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य बेनिया पार्क इलाके से कई थानों की फोर्स और आरआरएफ के जवान इकट्ठा होते हैं। शहर के बेनिया पार्क से होते हुए नई सड़क गोदुलिया मदनपुर और वापस गोदुलिया चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया है।
6: सभी को बताया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसका कटान नहीं किया जाएगा और जो नमाज है वो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। जहां पे संख्या ज्यादा है नमाजियों की, वहां पे दो शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए।
0: प्रदेश में आखिरी बार संभल में 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त बड़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में जब बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर रोक है, जब निर्देश है कि खुले में कुर्बानी किसी की नहीं दी जा सकती, तब उसका पालन भी हो, इसीलिए संभल में पुलिस सतर्क हो चुकी है।
7: जनपद संभल को 5 जोन 18 सेक्टर और लगभग 42 सब सेक्टर्स में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कोई भी ऐसी अफवाह ना उड़े, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो।
0: इसी तरह मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर भारी पुलिस फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हैं। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन होता है, ड्रोन होता है, सब तरफ से निगरानी की जा रही है।
8: जितने हमारे धर्मस्थल हैं इसकी चेकिंग की जाएगी और जितने लोग जिनका पूर्व प्रकाश आया है कि किसी भी तरह की हरकत में संलिप्त रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कर्तव्यबद्ध है।
0: लखनऊ में भी तैयारी पूरी कर ली गई, जहां राजा कंसा पासी के किले बनाम मकबरा की लड़ाई में कोई बकरीद पर हालात ना बिगाड़ सके, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई।
9: उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते, बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।
0: मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, गोवंश की कुर्बानी ना दी जाए।
10: तब से यही अपील की है कि नमाज ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही अदा की जाए, सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी की जाए जिन पर कोई कानूनी बंदिश नहीं है और कुर्बानी करते वक्त भी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाए।
11: उत्तर प्रदेश में पुलिस, योगी सरकार, उनका यह दावा है कि पुलिस तो अपराधियों पर गोली चलाती है। अब अखिलेश यादव का यह आरोप है कि यूपी पुलिस की बंदूक गोली तब चलाती है जब सामने पिछड़ा होता है, दलित होता है या अल्पसंख्यक आरोपी होता है। क्या ये आरोप सच्चे हैं? मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 9 साल के राज में हर दिन 5 एनकाउंटर का आंकड़ा है, ये औपचारिक आंकड़ा है। मुख्यमंत्री कहते हैं कि माफिया हो या कानून को चुनौती देने वाला अपराधी, उसे मिट्टी में मिलाया जाएगा। लेकिन अखिलेश यादव इन्हीं दावों पर सवाल उठा रहे हैं।
12: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इंटाउन करवाती है।
1: किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे।
12: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक

0: मारना चाहती है।
1: परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है, सूर्य अस्त के पहले वह वापस आ जाए परिवार की चिंता होती है।
0: जिस एनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो ये है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी एनकाउंटर हो रहा।
2: माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया।
3: उत्तर प्रदेश में क्या जाति देखकर एनकाउंटर होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में जानबूझकर जाति की सियासत लाई जा रही है? इन दो सवालों के बीच 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खड़ा है। जौनपुर की घटना के साथ इस खबर को समझिए, जहां पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव नाम के आरोपी का अंतिम संस्कार होता है। तभी रोते बिलखते परिजन पहुंचते हैं, आरोप ये लगा देते हैं कि यादव जाति होने की वजह से केवल आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है।
4: बिल्कुल यादव होने के जातवाद हो रहा है, सीधा सी बात है,
5: बीजेपी वाले जातवाद कर रहे हैं,
4: जातवाद हो रहा है, यादव होना गुनाह है,
5: एनकाउंटर किया है,
4: यादव होना इस सरकार में गुनाह है।
3: घटना इसी महीने की है जब जौनपुर में आजाद बिंद नाम के दूल्हे को उसी की कार में गोली मार दी गई जब वो बारात लेकर जा रहा था। मौत के मामले में तीन लोग नामजद हुए, प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर। तीनों पर 1,00,000 का इनाम घोषित हुआ। इसी मामले में जब पुलिस ने रवि यादव का एनकाउंटर किया तो परिवार से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख तक आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया।
0: कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है।
3: अखिलेश यादव जाति देख इनकाउंटर करने का आरोप पहली बार नहीं लगा रहे। इससे पहले अगस्त 2024 में जब सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट ज्वेलरी शॉप में होती है और लूट के बाद पुलिस अलग अलग जातियों के आरोपियों के बीच सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है, तब भी अखिलेश यादव ने जाति देख यूपी पुलिस की बंदूकों से गोली निकलने का आरोप लगाया। अब वही आरोप फिर से दोहराया है।
0: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इनकाउंटर करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
3: उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकारी डेटा है, मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर किए गए। इसका सीधा सा मतलब है योगी राज में रोज 5 एनकाउंटर होना। लेकिन पुलिस की गोलियों से कहीं मारे जाने वाले, कहीं पैर पर गोली खाने वाले बदमाशों में जब विपक्ष जाति खोजता है तब मुख्यमंत्री से माफिया मुक्त प्रदेश की पहचान बताते हैं।
6: जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्थे बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
7: पश्चिम एशिया संकट के बाद पूरे देश भर में पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ी हैं। महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 52% तक उछाल देखा

रखा गया, जिसके बाद अब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस संभावित जमाखोरी पैनिक बाइंग यानी घबराहट में की जाने वाली ज्यादा खरीदारी की जांच के आदेश दे चुके हैं। मुख्यमंत्री ने जमाखोरों को चेतावनी भी दी, किसानों को भरोसा भी दिलाया कि डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

0: महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बिक्री में भारी उछाल देखा जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संभावित जमाखोरी और पैनिक बाइंग यानी घबराहट में की जाने वाली ज्यादा खरीदारी की जांच के आदेश दे चुके हैं।
1: असं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, जागतिक संकट आहे। जागतिक संकटामध्ये सप्लाय चेन्स डिस्टर्ब झाले असताना आणि जगामध्ये अनेक देशांनी पेट्रोल डिझेलची इमर्जन्सी घोषित केलेली आहे, काही ठिकाणी दोन दोन दिवस लॉकडाऊन आहे, अशाही परिस्थितीत आपल्या इथे पेट्रोल डिझेल आपण देण्याचा प्रयत्न करतो।
0: सीएम फडणवीस का ये आदेश तब आया जब महाराष्ट्र के आंकड़ों से पता चला कि पेट्रोल की बिक्री में 23% और डीजल की मांग में 52% का अप्रत्याशित उछाल आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जमाखोरों को चेतावनी दी और किसानों को भरोसा दिलाया कि डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
1: ती कमर्शियल कड़े वळवली जाते आहे का याची पडताळणी करणे गरजेचे आहे। त्या दृष्टीने आज आम्ही आदेश दिलेले आहेत, कारण आपण समजू शकता 52% वाढ आणि त्याची आपूर्ती आपण करतो याचा अर्थ कुठेतरी याच्यामध्ये कोणीतरी साठेबाजी करताय आणि म्हणून ती साठेबाजी थांबवण्याचा प्रयत्न आमचा चाललेला आहे।
0: वही विपक्ष महायुति सरकार पर हमलावर है, वो कह रहा है कि सरकार सिर्फ आसमान छूती महंगाई से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
2: आज इकोनॉमिक क्राइसिस, पेट्रोल डीजल का दिखाई है, आज उनका लड़ाई चल रहा है, इसलिए पेट्रोल डीजल पंप में नहीं मिल रहा है, वो निकल गई बात। डाइवर्जन टैक्टिक
3: दिल्ली में है।
2: अरे डाइवर्जन
3: टैक्टिक को लेकर
2: कोई नहीं, डाइवर्जन टैक्टिक्स है। आज महाराष्ट्र में ना पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है कि पूरी डाइवर्जन टैक्टिक्स है। महाराष्ट्र के हर ईमानदार आदमी ने इनको इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए, उनको फंसाया जा रहा है।
4: नीट वाले मामले पर
2: बिल्कुल, ये नीट का भी मामला फटफट डिसीजन ले। आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल महंगाई कितनी बड़ी आज। अब घर जाके पूछिए आपकी माँ से, भाभी से, बीवी से, कितनी महंगाई बढ़ी है एक महीने के अंदर, क्यों उस पर कोई सरकार में कोई नहीं बोल रहा है।
0: इसी तरह महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने भी बीजेपी सरकार पर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए बकरीद पर कुर्बानी के मुद्दे के सहारे ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया।
5: ये अभी डीजल नहीं है, पेट्रोल पंप पे लंबी कतार लगी है, पेट्रोल के और सारे पेट्रोल उत्पादन के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं, उसके साथ साथ देश की बेरोजगारी को लेकर तमाम किसानों की समस्या अभी अपने उरूज पे है, और ऐसे इसमें मूल मुद्दे जो है देश के उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये घिनौना पोलराइजेशन की काम और कोशिश कर रही है। झूठ बोलने की भी हद होती है, तो पेट्रोल पंप में जो लोग कतार लगा के खड़े, लंबी लाइन जो लगी है, ये क्या नाटक है? या लोग धूप में शोक से वहां धूप में जा रहे हैं, तो बताते समय जो एक व्यक्ति एक बहुत बड़े पद पे, उन्हें जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए, और वो जिम्मेदारी के साथ उनका ना तो बर्ताव है, ना करनी है, ना कथनी है, और ऐसे इसमें हम जो टिप्पणी करते हैं वस्तु धारातल की जो जानकारी उसको लेकर, तो उस पर इतना ऐतराज करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं।
0: अब सवाल है कि क्या वाकई जमाखोर आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, और क्या कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हुए घबराहट में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं, या फिर वाकई तेल का संकट है जिसे सरकार स्वीकारना नहीं चाहती।
6: ये तो साफ है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सिर्फ जनता की जेब पर ही भारी नहीं पड़ रहे, बल्कि इससे राज्य की राजनीति भी गर्मा रही है। जहां एक तरफ सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहां दूसरी तरफ विपक्ष इसे मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की चाल बता रहा है। अब ये देखना जरूरी है कि इस राजनीतिक खींचतान में कतार में खड़े उस जनता को कब राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।
7: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जारी, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का।

0: नजर दोष कैसे होगा दूर, हल्दी के प्रयोग से कैसे मिलेगी वाणी को शक्ति, क्या है हल्दी के चमत्कारी प्रयोग, जानिए मेरे साथ सिर्फ भाग्य चक्र में।
1: Summer's a gift. The gift of days that last a little longer. A brighter state of mind. So gift yourself a new Kia at the Kia Summer Sticker Sales Event. With specially tagged vehicles including the Sorento, Sportage, Carnival, as well as the Niro Hybrid. All backed by a 10-year, 100,000-mile limited powertrain warranty. So the gift of summer can keep on giving for summers to come. Kia. Movement that inspires. Call 800-334-KIA for details. Always drive safely. Event ends 6/1/26. See dealer for warranty details.
2: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: देश भर में मनाई जा रही है बकरीद। बंगाल से महाराष्ट्र तक सुरक्षा सख्त। कोलकाता में नमाज स्थल बदला। नोएडा में धारा 163 लागू। कई शहरों में कड़ी निगरानी। कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा संकल्प रहा है यूसीसी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। और राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा, कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ने ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था दागी। आज बकरीद है। शुभ हिंदू सरकार बनने के बाद बकरीद पर देश एक बदला पश्चिम बंगाल देखेगा, जिसमें कई चीजें पहली बार होंगी। बकरीद पर हर बार ममता बनर्जी अपने सबसे बड़े वोट बैंक को संबोधित करती आई हैं। तो साल 2011 से सत्ता में रहने तक वो लगातार कोलकाता के रेड रोड पर होने वाले बकरीद के कार्यक्रम में जाती रही हैं।
1: कोलकाता की वो रेड रोड जहां पर दावा है साल 1919 से ईद की नमाज होती आ रही। यहीं पर आकर हर साल ममता बनर्जी मुख्यमंत्री की हैसियत से ईद की बधाई सबको देती आई।
2: रेड रोड पे नमाज पढ़ते हैं। मैं सबको फोन को ईद मुबारक कहना चाहूंगी।
1: कोलकाता की

0: वो ऐतिहासिक रेड रोड जहां पर हर साल बकरीद पर इसी तरह सामूहिक नमाज होती थी। इसी रेड रोड पर खड़े होकर ममता बनर्जी ने चुनाव से पहले कहा था, जो बंगाल को छेड़ेगा वो जहन्नुम में जाएगा।
1: आपको अल्लाह ने कबूल
2: किया भैया,
1: आपको दे, आपको दुआ दे, आपका शुभकामना दे, आपका परिवार अच्छे रहे,
2: भाई भाई
1: हिंदुस्तान अच्छे रहे, बंगाल अच्छे रहे, और जो बंगाल को टारगेट करे वो जहन्नुम में जाए।
0: ममता बनर्जी को लगा कि मुस्लिम वोट बैंक के दम पर वो एक बार फिर बीजेपी को रोक लेंगी, लेकिन जनता ने उनके साथ खेला कर दिया, जिसने कोलकाता की रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज में बदलाव के बंगाल का रास्ता साफ कर दिया, जिसने रेड रोड से जुड़ा 107 साल पुराना इतिहास बदल दिया। शुभेंदु सरकार ने आते ही सड़क पर नमाज बंद करवाने के आदेश दिए, जिसके बाद मस्जिदों में नमाज होते हुए दशकों बाद देखा गया। अब 107 साल बाद कोलकाता की ऐतिहासिक रेड रोड ईद पर इसी तरह से खाली रहेगी। शुभेंदु सरकार ने साफ कर दिया है कि इस बार बकरीद पर रेड रोड की जगह कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ईद का कार्यक्रम हो सकता है।
3: पश्चिम बंगाल में नया सरकार आने के बाद ये फैसला लिया गया है कि इस बार ईद रेड रोड में मनाया नहीं जाएगा। यानी हर साल की तरह जिस तरीके से कोलकाता के रेड रोड पर हजारों के तादाद में मुसलमान धर्म के लोग पहुंचते थे अपने नमाज अदा करने के लिए, इस बार उन्हें उस रेड रोड पर नमाज पढ़ने की इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बदले में ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पूरी तरीके से तैयार होता हुआ नजर आ रहा है। यहाँ पर माइक्स को लाया गया है, यहाँ पर स्टेज बनाया जा रहा है और यहाँ हजारों के तादाद में जो मुसलमान धर्म के लोग हैं वो कल आप पहुंचेंगे और यहाँ सुबह नमाज अदा किया जाएगा।
0: कोलकाता की ये रेड रोड कोई आम सड़क नहीं, इसका अपना एक इतिहास है। दूसरे विश्व युद्ध में कोलकाता के बीचों बीच स्थित रेड रोड को हवाई पट्टी में बदल दिया गया। रॉयल एयरफोर्स के विमान यहां उतरे थे, लेकिन इसके बाद ये ईद की नमाज को लेकर खबरों में रही, पर इस बार इसके सुर्खियों में रहने की वजह ईद की नमाज पर लगने वाला पूर्ण विराम है।
3: इस समय हम मौजूद हैं कोलकाता के रेड रोड में और ये रेड रोड को वीआईपी कॉरिडोर के नाम पर भी जाना जाता है, क्योंकि ये काफी महत्वपूर्ण एक रास्ता है जो उत्तर कोलकाता और दक्षिण कोलकाता को जोड़ती है। लेकिन पिछले कई दशकों से ये महत्वपूर्ण रास्ता साल में दो बार नमाज के लिए बंद रहता था और दूसरे छोर पर पूजा कार्निवल के समय भी इस रास्ते को बंद रखा जाता था। लेकिन इस बार नया सरकार बनने के बाद सरकार की ओर से सीधे तौर पर एक फरमान जारी किया गया, जिसमें ये कहा गया कि रेड रोड को आगे से किसी भी सूरत पर बंद नहीं रखा जाएगा, बल्कि इस बार ईद के कार्यक्रम के लिए आधा किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड को चुना गया और उस ब्रिगेड परेड ग्राउंड में इस बार नमाज अदा किया जाएगा।
0: कलकत्ता उच्च न्यायालय की सुनवाई के दौरान सामने आए इतिहास के अनुसार साल 1919 में कोलकाता के शहीद मीनार मैदान में पानी भर जाने के कारण ईद की नमाज को वहां से हटाकर रेड रोड पर करा दिया गया था। तब से ही 100 साल से भी ज्यादा पुरानी एक पारंपरिक प्रथा बन गई, जो शुभेंदु सरकार आने के बाद बदल रही है।
4: रेड रोड में अगर नहीं दिया गया है तो ब्रिगेड में तो मिल गया है, ब्रिगेड तो उससे भी बड़ी जगह है, तो परेशानी की तो कोई बात नहीं है। चलिए ठीक है, अरे एक जगह को बदल दिया गया है, लेकिन जगह तो है, वो भी तो खुला जगह है, इसमें से कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, काहे को परेशानी।
0: तो इस बार बकरीद पर पश्चिम बंगाल में बदला बंगाल नजर आएगा। कोलकाता की रेड रोड पर ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक साधारण सफेद सूती साड़ी से सिर को ढके हुए नहीं दिखेंगी, नमाजियों को ईद की बधाई नहीं दे पाएंगी। लेकिन इस बार बकरीद पर देश एक बदला बंगाल देखने जा रहा है, जहां बकरीद पर 14 साल से छोटी उम्र के गौवंश की कुर्बानी नहीं हो पाएगी। इमाम को भी 3000 रुपए का भत्ता नहीं मिलेगा। मदरसों में वंदे मातरम की गूंज पहले ही सुनी जाने लगी है। शुभेंदु के बंगाल में अब सड़क पर नमाज करने पर सख्त पाबंदी है और बकरीद की 2 दिन की छुट्टी भी आधी कर दी गई है। तापस सेनगुप्ता, कोलकाता आज तक।
2: बकरीद से पहले उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिए निर्देशों का पालन कराने में जुटी है पुलिस। संभल से काशी तक, मुजफ्फरनगर से लखनऊ तक पुलिस फ्लैग मार्च कर रही है।
0: मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क पर नमाज ना हो।
5: प्यार से मानेंगे ठीक बात है, नहीं मानेंगे तो दूसरा तरीका अपनाएंगे।
0: यूपी पुलिस बकरीद से पहले मुख्यमंत्री के निर्देश का पालन कराने में जुट चुकी है। मुख्यमंत्री योगी ने दोहराया, प्रतिबंधित किसी भी पशु की कुर्बानी नहीं होनी चाहिए।
6: ये सामने केतगंज से आए हैं।
0: जमीन से लेकर आसमान तक यूपी पुलिस चप्पे चप्पे पर नजर रखने लगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि माहौल नहीं बिगड़ना चाहिए, अफवाह नहीं फैलनी चाहिए।
7: जो ये अफवाहबाज है, ये देश के तेजी नहीं है।
0: उत्तर प्रदेश में बकरीद से पहले ऐसा सुरक्षा घेरा बनाने में पुलिस जुट गई ताकि माहौल बिगाड़ने की सोचने वालों का कोई मंसूबा ना कामयाब हो सके। खासकर कि बंगाल चुनाव के बाद और यूपी चुनाव से पहले की बकरीद पर किसी तरह कोई नमाज या कुर्बानी को लेकर विवाद ना हो, जिससे कानून व्यवस्था को चुनौती पैदा हो। इसीलिए वाराणसी में फ्लैग मार्च करते हुए पुलिस का दल बल निकलता है, जिनमें स्थानीय पुलिस पीएसी के जवानों के साथ आरआरएफ यानी रैपिड रिस्पांस फोर्स के जवान होते हैं। ड्रोन से यहां पर निगरानी की जाती है।
8: सीएम योगी आदित्यनाथ ने बकरीद को लेकर कड़े दिशा निर्देश दिए हैं। इसी के अनुपालन में आज वाराणसी पुलिस सड़कों पर है और मिश्रित आबादी के इलाकों से होते हुए जो अति संवेदनशील क्षेत्र है वहां से होकर गुजर रही है।
9: प्रॉपर डिसिप्लिन होके दो लाइनों में अच्छे से।
0: वाराणसी में मुस्लिम बाहुल्य बेनिया पार्क इलाके से कई थानों की फोर्स और आरआरएफ के जवान इकट्ठा होते हैं। शहर के बेनिया पार्क से होते हुए नई सड़क गोदुलिया मदनपुर और वापस गोदुलिया चौराहे से होते हुए काशी विश्वनाथ मंदिर तक यहाँ पर फ्लैग मार्च निकाला गया है।
10: सभी को बताया गया है कि कोई भी प्रतिबंधित पशु जो है उसका कटान नहीं किया जाएगा और जो नमाज है वो सड़कों पे नहीं पढ़ी जाएगी। जहां पे संख्या ज्यादा है नमाजियों की, वहां पे 2 शिफ्टों में नमाज पढ़ाई जाए।
0: प्रदेश में आखिरी बार संभल में 2024 में जामा मस्जिद के सर्वे के वक्त बड़ी हिंसा हुई थी। ऐसे में जब बकरीद पर सड़क पर नमाज पढ़ने और प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी को लेकर रोक है, जब निर्देश है कि खुले में कुर्बानी किसी की नहीं दी जा सकती, तब उसका पालन भी हो, इसीलिए संभल में पुलिस सतर्क हो चुकी है।
11: जनपद संभल को 5 जोन 18 सेक्टर और लगभग 42 सब सेक्टर्स में जो है विभाजित किया गया है, जिसमें हमारे पुलिस के अधिकारियों की और मजिस्ट्रेट्स की ड्यूटियां लगाई गई हैं। कोई भी ऐसी अफवाह ना उड़े, कोई ऐसा कार्य ना हो जिससे जो है शांति व्यवस्था प्रभावित हो।
0: इसी तरह मेरठ जोन के एडीजी भानु भास्कर भारी पुलिस फोर्स के साथ मुजफ्फरनगर के अति संवेदनशील इलाकों में फ्लैग मार्च करते हैं। इस दौरान दंगा नियंत्रण वाहन होता है, ड्रोन होता है, सब तरफ से निगरानी की जा रही है।
12: जितने हमारे धर्मस्थल है इसकी चेकिंग की जाएगी और जितने लोग जिनका पूर्ण प्रकाश आया है कि किसी भी तरह की हरकत में संलिप्त रहे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। तो इस तरह से लगातार जो है प्रभावी कार्रवाई के लिए पूरी उत्तर प्रदेश पुलिस कर्तव्यबद्ध है।
0: लखनऊ में भी तैयारी पूरी कर ली गई, जहां राजा कंसा पासी के किले बनाम मकबरा की लड़ाई में कोई बकरीद पर हालात ना बिगाड़ सके, इसलिए सुरक्षा बढ़ा दी गई।
3: उस मस्जिद पर ताला डाला गया जिससे कि विवाद ना बढ़े। अब क्योंकि सुरक्षा दृष्टि से देखा जाए तो यह संवेदनशील इलाका है, बकरीद का मौका भी है, उसको लेकर योगी सरकार जो है वो लगातार पुलिस सुरक्षा बढ़ाने की बात कर रही है। तो उसके चलते, बकरीद के चलते और जो भी विवाद कल हुआ उसके बाद पीएसी और लखनऊ की पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है।
0: मुस्लिम धर्मगुरु भी लगातार अपील कर रहे हैं कि नमाज सड़क पर ना पढ़ी जाए, गोवंश की कुर्बानी ना दी जाए।
13: سب سے یہی اپیل کی ہے کہ نماز عیدگاہ اور مسجدوں کے اندر ہی ادا کی جائے، صرف انہی جانوروں کی قربانی کی جائے جن پر کوئی قانونی بندش نہیں ہے، اور قربانی کرتے وقت بھی صاف صفائی کا پورا خیال رکھا جائے۔
2: اتر پردیش میں انکاؤنٹر کو لے کر کے اکھلیش یادو نے ایک بار پھر سوال کھڑے کیے ہیں۔ پولیس کا کہنا ہے کہ وہ اپرادھیوں پر گولی چلاتی ہے۔ اکھلیش یادو کا آروپ ہے کہ یوپی پولیس کی بندوق تبھی چلتی ہے جب سامنے پچھڑا ہو، دلت ہو یا الپ سنکھیک آروپی ہو۔ کیا یہ آروپ سچے ہیں؟ مکھیمنتری یوگی آدتیہ ناتھ 9 سال کے راج میں ہر دن 5 انکاؤنٹر کا آنکڑا دکھائی دیتا ہے۔ مکھیمنتری کہتے ہیں کہ مافیا ہو یا قانون کو چنوتی دینے والا ہر اپرادھی مٹی میں ملایا جائے گا، لیکن اکھلیش یادو ان دعووں پر سوال کھڑے کر رہے ہیں۔
14: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इनकाउंट करवाती है।
15: किसी भी गुंडे को और किसी भी माफिया को उत्तर प्रदेश की धरती में पनपने नहीं देंगे।
14: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है।
15: परिवार की महिला बाजार गई है या कहीं किसी रोजी रोजगार के साथ जुड़ी है, सूर्य अस्त के पहले वह वापस आ जाए परिवार की चिंता होती है।
14: जिस इनकाउंटर के पीछे चले मर्जी, समझो वो है फर्जी। सच्चाई तो ये है कि मर्जी के हिसाब से फर्जी इनकाउंटर होगा।
15: माफिया मिट्टी में मिल गए, गुंडे प्लान कर गए, और जिसने जनता जनार्दन को आंख दिखाने का प्रयास किया गया वो अपने आप ही यमराज के घर भी सिधार गया।
0: उत्तर प्रदेश में क्या जाति देखकर एनकाउंटर होता है, या फिर उत्तर प्रदेश में अपराधियों के एनकाउंटर में जानबूझकर जाति की सियासत लाई जा रही है? इन दो सवालों के बीच 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश खड़ा है। जौनपुर की घटना के साथ इस खबर को समझिए, जहां पुलिस एनकाउंटर में मारे गए रवि यादव नाम के आरोपी का अंतिम संस्कार होता है। तभी रोते बिलखते परिजन पहुँचते हैं, आरोप ये लगा देते हैं कि यादव जाति होने की वजह से केवल आरोपी रवि यादव का एनकाउंटर हुआ है।
16: बिल्कुल यादव होने के लिए जातवाद हो रहा है, सीधा सी बात है, जातवाद हो रहा है, यादव होना गुनाह है, यादव होना इस सरकार में गुनाह है।
0: घटना इसी महीने की है जब जौनपुर में आजाद बिंद नाम के दूल्हे को उसी की कार में गोली मार दी गई जब वो बारात लेकर जा रहा था। मौत के मामले में 3 लोग नामजद हुए, प्रदीप बिंद, रवि यादव और भोले राजभर, तीनों पर 1 लाख का इनाम घोषित हुआ। इसी मामले में जब पुलिस ने रवि यादव का एनकाउंटर किया तो परिवार से लेकर समाजवादी पार्टी प्रमुख तक आरोप लगाते हैं कि जाति देखकर एनकाउंटर किया गया।
14: कल भी जो हमें आपको देखने को मिला, लगभग परिवार के लोग ये कहते हैं कि, और जो खबरें आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि फेक इनकाउंटर करने की साजिश सरकार लगातार करती रहती है।
0: अखिलेश यादव जाति देख इनकाउंटर करने का आरोप पहली बार नहीं लगा रहे। इससे पहले अगस्त 2024 में जब सुल्तानपुर में 1.5 करोड़ की लूट ज्वेलरी शॉप में होती है, और लूट के बाद पुलिस अलग अलग जातियों के आरोपियों के बीच सबसे पहले मंगेश यादव का एनकाउंटर करती है, तब भी अखिलेश यादव ने जाति देख यूपी पुलिस की बंदूकों से गोली निकलने का आरोप लगाया। अब वही आरोप फिर से दोहराया है।
14: उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार इनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराकर उसका हक मारना चाहती है। उत्तर प्रदेश में भाजपा सरकार जाति धर्म देखकर के इनकाउंट करवाती है, इससे प्रदेश का सामाजिक सौहार्द बिगड़ता है। फर्जी इनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान है। जो सरकार नाकाम हो जाती है वो फर्जी इनकाउंटर का रास्ता अपनाती है।
0: उत्तर प्रदेश में सरकारी आंकड़ा कहता है कि मार्च 2017 से जब से योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की कमान संभाली, यूपी में हर रोज 5 एनकाउंटर हो रहे हैं। सरकारी डेटा है, मार्च 2017 से अब तक 17,043 एनकाउंटर किए गए। इसका सीधा सा मतलब है योगी राज में रोज 5 एनकाउंटर होना। लेकिन पुलिस की गोलियों से कहीं मारे जाने वाले, कहीं पैर पर गोली खाने वाले बदमाशों में जब विपक्ष जाति खोजता है, तब मुख्यमंत्री से माफिया मुक्त प्रदेश की पहचान बताते हैं।
17: जब हम तनिक सी संकीर्णता में पड़ करके आत्मघाती कदम उठाते हैं, तो उससे माफिया और मच्छर के पनपने का खतरा भी बनता है, क्योंकि वे तो हमेशा इस बारे में इंतजार की प्रतीक्षा करते हैं। लोमड़ी की तरह वे हमेशा इस इंतजार में रहते हैं, कब उनको मौका मिले, कब वे लपके शिकार पर। उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है, उन लोमड़ियों को अवसर नहीं देना है जो लोग शोषण के कारण बने थे, माफिया के प्रश्रय का कारण बने थे, अराजकता के कारक बने थे, और उन लोगों को भी प्रश्रय नहीं पनपने देना है जो लोग उनके हत्ते बन करके आप सबको शिकार बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
2: पश्चिम एशिया संकट के चलते पूरे देश में तेल की कीमतें बढ़ी हुई हैं, लेकिन महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बिक्री में 52% तक उछाल देखा जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने संभावित जमाखोरी और पैनिक बाइंग का अर्थ है कि घबराहट में की जाने वाली ज्यादा खरीदारी, अब उसकी जांच के आदेश दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने जमाखोरों को चेतावनी दी है और किसानों को यह भरोसा दिलाया है कि डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।

0: महाराष्ट्र में पेट्रोल डीजल की बिक्री में भारी उछाल देखा जा रहा है, जिसके बाद मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस भी संभावित जमाखोरी और पैनिक बाइंग यानी घबराहट में की जाने वाली ज्यादा खरीदारी की जांच के आदेश दे चुके हैं।
1: असं आपल्याला सगळ्यांना माहिती आहे, जागतिक संकट आहे। जागतिक संकटामध्ये सप्लाय चेन्स डिस्टर्ब झाले असताना आणि जगामध्ये अनेक देशांनी पेट्रोल डिझेलची इमर्जन्सी घोषित केलेली आहे, काही ठिकाणी दोन दोन दिवस लॉकडाऊन आहे, अशाही परिस्थितीत आपल्या इथे पेट्रोल डिझेल आपण देण्याचा प्रयत्न करतो।
0: सीएम फडणवीस का ये आदेश तब आया जब महाराष्ट्र के आंकड़ों से पता चला कि पेट्रोल की बिक्री में 23% और डीजल की मांग में 52% का अप्रत्याशित उछाल आया है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने जमाखोरों को चेतावनी दी और किसानों को भरोसा दिलाया कि डीजल की आपूर्ति को प्राथमिकता दी जाएगी।
1: ती कमर्शियल कड़े वळवली जाते आहे का याची पडताळणी करणे गरजेचे आहे। त्या दृष्टीने आज आम्ही आदेश दिलेले आहेत, कारण आपण समजू शकता 52% वाढ आणि त्याची आपूर्ती आपण करतो याचा अर्थ कुठेतरी याच्यामध्ये कोणीतरी साठेबाजी करताय आणि म्हणून ती साठेबाजी थांबवण्याचा प्रयत्न आमचा चाललेला आहे।
0: वही विपक्ष महायुति सरकार पर हमलावर है। वो कह रहा है कि सरकार सिर्फ आसमान छूती महंगाई से जनता का ध्यान भटकाना चाहती है।
2: आज इकोनॉमिक क्राइसिस, पेट्रोल डीजल का दिखाई है। आज उनका लड़ाई चल रही है, इसलिए पेट्रोल डीजल पंप में नहीं मिल रहा है, वो निकल गई बात। डाइवर्जन टैक्टिक
3: दिल्ली में है।
2: अरे डाइवर्जन
3: टैक्टिक को लेकर
2: कोई नहीं, डाइवर्जन टैक्टिक्स है। आज महाराष्ट्र में ना पेट्रोल मिल रहा है ना डीजल मिल रहा है, किसान आत्महत्या कर रहे हैं। आप देख रहे हैं ना, आप ही के चैनल पे दिखाया जा रहा है कि पूरी डाइवर्जन टैक्टिक्स है। महाराष्ट्र के हर ईमानदार आदमी ने इनको इतनी बड़ी संख्या में वोट दिए, उनको फंसाया जा रहा है।
4: नीट वाले मामले पर
2: बिल्कुल, ये नीट का भी मामला फटाफट डिसीजन ले। आप देख रहे हैं पेट्रोल डीजल महंगाई कितनी बड़ी आज। अब घर जाके पूछिए आपकी माँ से, भाभी से, बीवी से, कितनी महंगाई बढ़ी है एक महीने के अंदर। क्यों उस पे कोई सरकार में कोई नहीं बोल रहा है।
0: इसी तरह महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सबकाल ने भी बीजेपी सरकार पर अपनी नाकामियों से ध्यान भटकाने के लिए बकरीद पर कुर्बानी के मुद्दे के सहारे ध्रुवीकरण की कोशिश का आरोप लगाया।
5: ये अभी डीजल नहीं है, पेट्रोल पंप पे लंबी कतार लगी है। पेट्रोल के और सारे पेट्रोल उत्पादन के जो दाम है वो बढ़े हुए हैं, उसके साथ साथ देश की बेरोजगारी को लेकर तमाम किसानों की समस्या अभी अपने उरूज पे है। और ऐसे इसमें मूल मुद्दे जो है देश के, उससे ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी ये घिनौना पोलराइजेशन की काम और कोशिश कर रही है। झूठ बोलने की भी हद होती है, तो पेट्रोल पंप में जो लोग कतार लगा के खड़े, लंबी लाइन जो लगी है, ये क्या नाटक है? या लोग धूप में शोक से वहां धूप में जा रहे हैं, तो बताते समय जो एक व्यक्ति एक बहुत बड़े पद पे, उन्हें जिम्मेदारी के साथ बोलना चाहिए। और वो जिम्मेदारी के साथ उनका ना तो बर्ताव है, ना करनी है, ना कथनी है। और ऐसे इसमें हम जो टिप्पणी करते हैं वस्तु धारातल की जो जानकारी उसको लेकर, तो उसपे इतना एतराज करने की उनको कोई आवश्यकता नहीं।
0: अब सवाल है कि क्या वाकई जमाखोर आपदा में अवसर तलाश रहे हैं, और क्या कुछ लोग भविष्य की चिंता करते हुए घबराहट में जरूरत से ज्यादा पेट्रोल डीजल खरीद कर स्टॉक कर रहे हैं, या फिर वाकई तेल का संकट है जिसे सरकार स्वीकारना नहीं चाहती।
6: ये तो साफ है कि पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम सिर्फ जनता की जेब पर ही भारी नहीं पड़ रहे, बल्कि इससे राज्य की राजनीति भी गर्मा रही है। जहां एक तरफ सरकार जमाखोरों पर कार्रवाई की बात कर रही है, तो वहां दूसरी तरफ विपक्ष इसे मूल मुद्दे से ध्यान भटकाने की चाल बता रहा है। अब ये देखना जरूरी है कि इस राजनीतिक खींचतान में कतार में खड़े उस जनता को कब राहत मिल पाती है। कैमरा पर्सन सचिन सावन के साथ मैं ऋतिक भालेकर, मुंबई आज तक।
7: वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, खबरें जा रही हैं, आप देखते रहिए आज तक।
8: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
9: Tune in how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry. TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
11: The music.
3: music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

देश भर में मनाई जा रही है बकरीद। बंगाल से महाराष्ट्र तक सुरक्षा सख्त। कोलकाता में नमाज स्थल बदला। नोएडा में धारा 163 लागू। कई शहरों में कड़ी निगरानी। कर्नाटक सीएम से आज इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। सूत्रों के मुताबिक राज्यपाल से मिलने का मांगा समय। डीके शिवकुमार संभाल सकते हैं राज्य की कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास। उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह बोले, बीजेपी की स्थापना के दिन से ही हमारा संकल्प रहा है यूसीसी। एसआईआर पर सुप्रीम कोर्ट का फाइनल फैसला। मतदाता सूची का पुनरीक्षण कराना चुनाव आयोग का अधिकार। प्रक्रिया में कोई खामी नहीं, बीजेपी बोली विपक्ष की संवैधानिक हार। और राहुल गांधी के आरोपों को सीबीएसई ने बताया तथ्यहीन और गुमराह करने वाला। कहा, कॉन्ट्रैक्ट प्रक्रिया का सख्ती से पालन। नेता विपक्ष ने ओएसएम सिस्टम चलाने वाली कंपनी को बताया था दागी।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आज हम आपको बताएंगे एक बड़ी साधारण सी वस्तु के बारे में जिसका नाम है हल्दी। ये हल्दी आपके जीवन में कैसे चमत्कार कर सकती है, आपके जीवन को कैसे बेहतर बना सकती है, आज इस विषय पर बात करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकलें कि आपको सफलता मिले, और आज का दिन कितना महत्वपूर्ण है, आज कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 मई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:56 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 8:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 बजे तक।

करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। देखिए आज हम बात कर रहे हैं हल्दी के बारे में। हल्दी का धार्मिक कार्यों में और हमारे जीवन में क्या महत्व है, पहले ये समझिए। देखिए हल्दी वैसे तो एक मसाला है, लेकिन वास्तव में हल्दी एक विशेष प्रकार की औषधि है जिसमें दैवीय गुण डिवाइन क्वालिटी पाई जाती है। हिंदू धर्म में हल्दी को शुभ और मंगल लाने वाला माना जाता है। हल्दी न केवल खाने के स्वाद को बढ़ाती है बल्कि जीवन में संपन्नता भी लाती है। मुख्य रूप से हल्दी विषरोधक होती है और जब आप जीवन में हल्दी का प्रयोग करते हैं तो ये नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करती है। हल्दी का प्रयोग इसीलिए हवन में और औषधियों में किया जाता है ताकि जो शरीर में मन में निगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक ऊर्जा है, वो आसानी से दूर हो सके। हल्दी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम बताएंगे कि अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है तो क्या करके घर से निकले कि सफलता मिले, और आज का दिन किस राशि के लिए शुभ होगा और किस राशि को आज सावधान रहना होगा। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ और मिथुन राशि का दैनिक राशिफल। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, धन की

अब करें भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा। तो सामान्य जीवन में हल्दी का महत्व आपने जान लिया, ज्योतिष में हल्दी का क्या महत्व है अब ये भी जानते हैं। देखिए हल्दी कई रंगों की होती है और इन्हीं रंगों के आधार पर इसका अलग अलग ग्रहों से संबंध होता है। हल्दी पीले, नारंगी और काले रंग की होती है। पीली हल्दी बृहस्पति से संबंध रखती है, नारंगी हल्दी मंगल से संबंध रखती है और काली हल्दी शनि से संबंध रखती है। ज्योतिष में बृहस्पति को मजबूत करने के लिए और बृहस्पति संबंधी समस्याओं के निवारण के लिए पीली हल्दी का प्रयोग किया जाता है। ज्यादातर ज्योतिष में और शुभ कार्यों में जिस हल्दी का प्रयोग करते हैं वो पीली हल्दी होती है और इसके प्रभाव से बृहस्पति अनुकूल होता है। हल्दी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन का शुभ समय क्या है, उसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। अब जान लेते हैं कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद। सिंह राशि, करियर में लाभ के योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी। वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो आप हमें मेल कर सकते हैं bhagyachakra@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आद्या त्रिपाठी ने हमें लिखा है और आद्या हमें मेल लिखती हैं गुड़गांव से। इनकी जन्म की तारीख है 9 अक्टूबर 1995। जन्म का समय रात में 11:12 और जन्म का स्थान है देवरिया, उत्तर प्रदेश। आद्या कह रही हैं कि मेरा विवाह कब तक होगा और मेरा वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। आद्या, आपकी कुंडली के हिसाब से आपकी शादी साल 2027 के सेकेंड हाफ में, जून से दिसंबर 2027 में होगी, लेकिन जब भी विवाह करिएगा कुंडली अच्छी तरह से मिला लीजिएगा क्योंकि आपके वैवाहिक जीवन में दिक्कत आने की संभावना बन रही है। सोच समझकर ठंडे दिमाग से विवाह करेंगी तो जीवन बेहतर होगा। एक मोती

सोमवार की रात को एक मोती धारण करें, सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें, आपको लाभ होगा। अब आपको बताते हैं कि हल्दी के चमत्कारी प्रयोग क्या हैं। अगर विवाह संबंधी कोई भी समस्या हो जीवन में, विवाह नहीं हो पा रहा हो या वैवाहिक जीवन में समस्या हो, तो रोज सवेरे जल में हल्दी मिला करके सूर्य भगवान को जल चढ़ाइए और प्रार्थना करिए, विवाह की समस्याएं दूर होंगी। अगर वाणी की शक्ति बढ़ानी है तो रोज सवेरे स्नान करने के बाद हल्दी का तिलक अपने माथे पर और अपने कंठ पर लगाइएगा। ऐसा करने से वाणी की शक्ति बढ़ेगी। अगर धन की बचत करनी है आपको, पैसे आपको बचाने हैं, तो धन रखने की जगह पर दो गांठें हल्दी की रखिए। पीले कपड़े में भी रख सकते हैं। इसको 6-6 महीने पर या 1 साल पर बदलते रहिएगा। अगर बृहस्पति से जीवन में कोई लाभ लेना है तो पीले धागे में हल्दी बांधकर अपने गले में धारण करें। नकारात्मक ऊर्जा है अगर आपके साथ, आप बार बार बीमार होते हैं, तंत्र मंत्र की शिकायत होती है आपको, तो नहाने के पहले शरीर पर जरा सी हल्दी लगाएं और उसके बाद स्नान करें, आपकी सारी नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाएगी। हल्दी पर हमारी चर्चा जारी रहेगी, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम में आगे हम बताएंगे आपके जन्म की तारीख के अनुसार आज का दिन कैसा जाने वाला है और आज के दिन की जिज्ञासा क्या है और उसका समाधान क्या है। अब जान लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक राशिफल।

पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, करियर में किसी तरह का रिस्क या जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नारंगी।

आर होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। अब ये जानते हैं कि अगर आप अपनी कुंडली के बृहस्पति को मजबूत करना चाहते हैं तो हल्दी का प्रयोग कैसे करेंगे। गांठ वाली एक पीली हल्दी ले लें, इसको पीले धागे में बांधकर अपने गले में या अपनी दाहिनी भुजा में, दाहिनी बाजू में धारण करें। बृहस्पतिवार को प्रातः स्नान करने के बाद इसको धारण करिएगा। ये पीले पुखराज की तरह काम करेगा, इसीलिए इससे बृहस्पति मजबूत होगा। आप अगर पीला पुखराज नहीं खरीद पा रहे हैं तो गांठ वाली पीली हल्दी धारण करिए, इसको 6-6 महीने पे बदलते रहिएगा और इसको बृहस्पतिवार की सुबह अगर आप धारण करें तो आपके लिए बेहतर होगा। अगर आपको बार बार नजर लग जाती है या आपके ऊपर नकारात्मक ऊर्जा का प्रयोग होता है, निगेटिव तंत्र मंत्र का प्रयोग होता है, उसका असर है, तो नजर दोष या नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए क्या करेंगे। नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने के लिए हल्दी का प्रयोग करना शुभ होता है, इसीलिए मांगलिक कार्यक्रम में विवाह के समय में लड़के और लड़की को हल्दी लगाई जाती है ताकि लंबे समय तक उनके ऊपर निगेटिव एनर्जी का असर ना हो। सामान्य स्थितियों में आप नजर दोष से बचना चाहते हैं या नकारात्मक ऊर्जा से बचना चाहते हैं तो नहाने के पहले हल्दी को घिस करके या शुद्ध हल्दी के पाउडर में जरा सा पानी डाल करके अपने पूरे शरीर पर लगाएं और इसके बाद आप स्नान करें। ऐसा करने से आपके तेज में वृद्धि होगी, नकारात्मक ऊर्जा से बचेंगे। हल्दी लगाकर जो कोई व्यक्ति स्नान करता है उस व्यक्ति का नजर दोष समाप्त होता है और उस व्यक्ति के ऊपर नकारात्मक ऊर्जा कभी भी असर नहीं डाल सकती। देखिए, हल्दी के बारे में एक महत्वपूर्ण बात और बता दूं कि हल्दी का तिलक लगाना, हल्दी को गले में धारण करना, ये सब तो लाभकारी होता ही है, लेकिन हल्दी को पीले धागे में गूंथ करके हल्दी की एक माला भी बनाई जाती है और हल्दी की माला से अगर आप बृहस्पति देव के मंत्र का जप करें या हल्दी की माला से अगर माता बगला मुखी के मंत्र का जप करें तो मंत्र ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और इन मंत्रों से लाभ की संभावना भी बनती है। हल्दी की माला गले में ना पहने, एक दाना हल्दी का गले में पहन सकते हैं, लेकिन बृहस्पति या माता बगला मुखी के मंत्र का जप करने के लिए हल्दी की माला का प्रयोग किया जा सकता है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज के दिन कौन सा काम करें कौन सा काम ना करें। अब जान लेते हैं मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल।
राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रिश्तों में सुधार होगा, करियर के मामले में कोई लापरवाही ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। वक्त हो गया है ऐसा क्यों का। ऐसा क्यों में हम आपके मन और जीवन से जुड़ी हुई तमाम जिज्ञासाओं का सरल समाधान करने का प्रयास करते हैं। लोगों का ऐसा मानना है कि पैरों के पंजों में और तलवे में हल्दी नहीं लगानी चाहिए, ऐसा क्यों? देखिए, हल्दी बृहस्पति ग्रह से संबंध रखती है और हल्दी बहुत पवित्र चीज मानी जाती है। बृहस्पति वाली चीजें वैसे भी बहुत पवित्र होती हैं, इसीलिए शरीर में पैरों में हल्दी लगा सकते हैं, लेकिन पैर के पंजों में और तलवे में हल्दी लगाने से बृहस्पति की स्थिति खराब होगी। इसीलिए पैर के पंजों में और तलवे में हल्दी नहीं लगाते, क्योंकि ऐसा करने से बृहस्पति अशुभ होगा और जीवन में समस्याएं बढ़ जाएंगी। वक्त हो गया है लकी नंबर के अनुसार आपका लक जानने का। नंबर 1 से लेके नंबर 9 तक के लोगों के लिए आज का दिन कैसा रहने वाला है, आइए जानते हैं। नंबर 1, रुके हुए काम पूरे होंगे। नंबर 2, धन लाभ के योग बन रहे हैं। नंबर 3, यात्रा के योग बन रहे हैं। नंबर 4, करियर में सफलता मिलेगी। नंबर 5, उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। नंबर 6, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नंबर 7, रिश्तों में समस्या हो सकती है। नंबर 8, चोट चपेट से बचाव करें। नंबर 9, धन लाभ के योग बन रहे हैं। अब वक्त हो गया है भाग्य पहर का, तो आइए जानते हैं कि आज भाग्य पहर का शुभ समय क्या है और इसमें कौन सा उपाय किया जाएगा। भाग्य पहर का शुभ समय है शाम को 6 बजे से 7:30 तक। इस समय में भगवान कृष्ण को पीले फूल अर्पित करिएगा। शिक्षा और प्रतियोगिता के मामले में आपको लाभ होगा।
वक्त हो गया है आपके सवाल का। अगर आप ज्योतिष के माध्यम से किसी समस्या का समाधान चाहते हैं तो अपने जन्म की तारीख, जन्म का समय, जन्म का स्थान और अपना प्रश्न लिखकर हमें मेल कर दें भाग्यचक्र@aajtak.com पर। अगला प्रश्न आलोक जी ने हमें लिखा है और आलोक जी हमें मेल लिखते हैं बेंगलोर से। इनकी जन्म की तारीख है 11 मार्च 1980, जन्म का समय शाम के 6:49, जन्म स्थान है वाराणसी। मेल लिखते हैं बेंगलोर से। आलोक जी कह रहे हैं कि मेरी नौकरी में बहुत दिक्कतें चली आ रही हैं और मैं नौकरी बदलना चाहता हूं, मेरी नौकरी कब तक बदल पाएगी? आलोक जी, आपकी कुंडली में नौकरी बदलने का समय चल रहा है 2026 के पहले। आपकी नौकरी और स्थान दोनों बदलेगा और ये बदलाव कुल मिला जुला कर आपके लिए बेहतर रहेगा। आने वाला समय करियर के लिहाज से अच्छा है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। रोज शाम को 108 बार शनिदेव का मंत्र पढ़ें, ओम शं शनैश्चराय नमः, रोज शाम को पढ़िए। और शनिवार की शाम को सप्ताह में एक दिन पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाइए, आपको लाभ होगा। अगर आज किसी महत्वपूर्ण काम से जाना है, कोई परीक्षा है, कोई मीटिंग है, तो क्या करके घर से निकले की सफलता मिले, आइए जानते हैं सक्सेस मंत्र में।

सफल होंगे। अगर आज कोई इंटरव्यू है, दो दाने चने की दाल खाकर घर से जाइएगा, सफलता मिलेगी। अगर आज कोई महत्वपूर्ण मीटिंग है तो भगवान को पीले फूल अर्पित करके जाइएगा, काम बन जाएगा। अगर डॉक्टर के पास या हॉस्पिटल जाना है चिकित्सा के लिए तो हल्दी का तिलक लगाकर जाइएगा, स्वस्थ होंगे। अगर आज वाहन भूमि भवन आभूषण कोई बड़ी खरीदारी करनी है तो पीला रुमाल साथ में रख के जाइएगा, लाभ होगा। अब वक्त हो गया है शुभ मंगल सावधान का, तो आइए जानते हैं कि आज का दिन किस राशि के लिए बहुत शुभ होगा और किस राशि को बहुत सावधान रहना होगा।

हुए काम पूरे होंगे। आज का दिन मंगलमय होगा धनु राशि के लिए। धन का लाभ होगा, करियर में सफलता मिलेगी। और आज सावधान रहना होगा मीन राशि को, बेवजह का तनाव हो सकता है, स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। अब जान लेते हैं कि आज का दिन इतना महत्वपूर्ण क्यों है और आज

समय अधिक मास चल रहा है तो इस समय कोई भी शुभ और मंगल कार्य ना करें। आज जल और पीले फल का दान करें, आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

देश भर में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन है। अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जुटे हजारों लोग, नमाज अदा कर मांगी अमन शांति की दुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद में भी बकरीद की रौनक, प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम किए गए हैं। अलग अलग शहरों में बकरीद के मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों की रौनक देखने को मिल रही है, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश, सड़क पर नमाज और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक लगी रहेगी। नोएडा में बकरीद और प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में आज से 30 मई तक धारा 163 लागू की गई है। बिना अनुमति जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सार्वजनिक नमाज पर रोक है। कोलकाता में पारंपरिक रूप से रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज को शिफ्ट करके ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया है। संभल में बकरीद को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए हैं। जिले को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया। आरआरएफ, पीएसी और पुलिस बल की तैनाती के साथ साथ ड्रोन, 250 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे से पूरे इलाके पर नजर रखी जा रही है। हापुड़ में भी ईद को लेकर के हाई अलर्ट पर है प्रशासन। डीएम और एसपी के नेतृत्व में शहर में पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया। मेरठ में भी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला। इस दौरान लोगों ने फूल वर्षा भी की। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया आज इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है।

सिद्धरमैया आज अपने मंत्रिमंडल के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग करेंगे। डीके शिवकुमार को भी न्योता भेजा गया है। सूत्रों के अनुसार कल हो सकती है विधायक दल की बैठक, शनिवार को हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास हो गया, उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने की सराहना की, बोले समान कानून लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। राहुल गांधी के आरोपों पर सीबीएसई ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सभी आरोप गलत हैं और भ्रामक हैं। अपनी सफाई में सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि पूरी टेंडर प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की गई थी। सीबीएसई की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी ने फिर सवाल उठाए, कहा इनकार करना कोई जवाब नहीं है, 18.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। शिक्षा मंत्री पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा, कहा शिक्षा मंत्री और सीबीएसई मेरे पूछे गए 4 आसान सवालों का जवाब नहीं दे रहे, बच्चे सच जानने के हकदार हैं। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इसे भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा बताया, बोले छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। इक्कीस जून को होने वाले नीट परीक्षा को लेकर के बैठक में शिक्षा मंत्री प्रधान ने तैयारियों की समीक्षा की, कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। नीट मामले में 2 आरोपियों को 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, दिल्ली कोर्ट ने 2 आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। सीबीएसई के 3 भाषा नियम के खिलाफ याचिका दाखिल की गई, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एनसीईआरटी से इस मामले में जवाब मांगा है। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार प्रधानमंत्री से मिलने पहुंचे विजय, पीएम को गुलदस्ता भेंट करते हुए तस्वीरें सामने आई। सूत्रों के मुताबिक खबर, विजय ने पीएम से उन मांगों पर बात की जो केंद्र सरकार के सामने तमिलनाडु सरकार की पेंडिंग है। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन, छापेमारी के दौरान बवाल हुआ, समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया। समर्थकों ने इस दौरान ईडी के गाड़ी पर पत्थर फेंके, बाल बाल बचे अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। हमले को लेकर ईडी ने एफआईआर दर्ज कराई है, पूर्व सीएम विजयन के घर रेड के वक्त उन पर अटैक हुआ था। एसएफआईओ ने पिछले साल अप्रैल में वीणा विजयन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, आरोप है कि कंपनी ने भुगतान लेकर कोई भी सेवा शुरू नहीं की। ईडी की कार्यवाही के बाद केरल की राजनीति में भी हलचल तेज है, विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए हमला भी बोला। विशा शर्मा मौत केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला आया है, सास गिरबाला सिंह को अग्रिम जमानत जो मिली थी उसे रद्द कर दिया गया है। पति आरोपी समर्थ को भी सीबीआई ने हिरासत में लिया है, 3 घंटे तक समर्थ के घर में पूछताछ हुई। समर्थ और गिरबाला के साथ सीबीआई ने सीन को रिक्रिएट किया। विशा मौत मामले में एसआईटी ने कोर्ट को बताया कि 12 से 20 मई तक की सीडीआर को सुरक्षित रखने के लिए टेलीकॉम कंपनियों को पत्र लिखा गया है। बिहार में कानून व्यवस्था के मसले पर पप्पू यादव का सरकार पर हमला, बोले सूबे में अब अपराध बढ़ा है। देहरादून में पार्किंग विवाद के चलते आपस में मारपीट करते दिखी महिलाएं, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। हैदराबाद में देवगिरी एक्सप्रेस में हवाला का पैसा मिला, 1,22,00,000 रुपए बरामद। इंदौर में पुलिस की कार्रवाई हुई, आईपीएल में सट्टेबाजी करने वाले 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। अहमदाबाद में एक डीएसपी पर आरोप लगा है जमीन विवाद में 5 राउंड की फायरिंग करने का। पुरुलिया के अस्पताल परिसर में बुलडोजर चलाया गया, कई अस्थायी दुकानों को ध्वस्त किया गया। लखनऊ में एक बड़ा हादसा हुआ है, दूसरी मंजिल से फेंका गया मलबे का बोरा, नीचे राहगीर के सर पर गिरा, उसकी मौके पर ही मौत हो गई। चूरू में बड़ी कार्रवाई हुई है, प्याज की बोरियों में छिपाकर ले जाया जा रहा था 2.5 करोड़ का डोडा पोस्त, जिसको पुलिस ने जब्त कर लिया है। वाशी में तेज हवा के साथ भारी बारिश हुई, कॉम्प्लेक्स का डेकोरेशन गिर गया, घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पटियाला में ब्लू ड्रम से युवती का शव बरामद हुआ, पुलिस अब जांच में जुटी है। सहारनपुर के फर्नीचर मार्केट में भीषण आग लग गई, 4 दुकानें जलकर खाक हो गई। लखनऊ में शादी के 6 महीने बाद महिला ने फांसी लगाई, मायके वालों ने लगाया दहेज प्रताड़ना का आरोप। झांसी के प्राचीन करौंदी माता मंदिर में चोरी हुई, सीसीटीवी कैमरे में कैद हुआ चोर।
अमरोहा में दर्दनाक हादसा हुआ, मंदिर में ट्रक घुस गया, रामायण पाठ कर रहे श्रद्धालुओं को रौंद दिया, 3 लोगों की मौत हुई। उत्तर 24 परगना के बैरकपुर में सनसनी, 10 दिन से डॉक्टर पति की लाश के साथ कमरे में रह रही थी पत्नी। सुल्तानपुर में डायल 112 टीम पर हमला हुआ, बीच बचाव करने गई पुलिस से धक्का मुक्की हुई। छत्तीसगढ़ के गौरेला में सराफा व्यापारी की गोली मारकर हत्या, बाजार में दहशत फैल गई। संभल में वाघ भारती तीर्थ की जमीन से 40 साल पुराना कब्जा हटाया गया, प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। राजकोट में पोते ने दादा की हत्या कर एक्सीडेंट की कहानी बनाई, पुलिस ने पोते को गिरफ्तार कर लिया। दुर्ग में खाना नहीं बनाने पर सगे बेटे ने दिव्यांग मां को डंडे से पीट पीट कर मार डाला, आरोपी बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। छत्तीसगढ़ के बलौदा बाजार में खेत की जमीन अचानक धंस गई, जिससे ग्रामीणों में दहशत फैल गई। झांसी में जयमाला के बाद बवाल हुआ, 5 लाख की डिमांड की गई, दूल्हे पक्ष पर मारपीट का आरोप है, दुल्हन ने शादी तोड़ी। भोपाल में आईपीएस अफसर की बेटी ने फांसी लगाई, घर में 11वीं की छात्रा का शव मिला, पुलिस जांच में जुटी है। बिहार के बेगूसराय में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ, परीक्षा देने जा रही मां और 6 महीने की बेटी की मौत हो गई। अकोला में छेड़छाड़ करने वाले युवक की महिला ने चप्पलों से पिटाई की, वीडियो वायरल। सूरत में पत्नी की हत्या कर फरार हुआ पति, दिल्ली से गिरफ्तार किया गया, सोशल मीडिया विवाद बना हत्या की वजह। हैदराबाद सनराइजर्स को हराकर क्वालिफायर 2 में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल के फाइनल में पहुंचने का मिला एक और मौका। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को दी करारी शिकस्त, 4 गेंद रहते 47 रन से मैच जीत लिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने 243 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया, जवाब में महज 196 रन पर हैदराबाद सनराइजर्स की टीम ढेर हो गई। मैच के हीरो रहे राजस्थान के रॉयल बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, 29 गेंदों में 97 रन की धमाकेदार पारी खेली, 5 चौके और 12 छक्के लगाए। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले के सामने हैदराबाद के गेंदबाजों ने सरेंडर कर दिया, 334.48 के तूफानी स्ट्राइक रेट से मैदान का हर कोना नापा। आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बन गए वैभव सूर्यवंशी, महज 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी अब सूर्यवंशी ने अपने नाम कर लिया है, अब तक 65 छक्के लगा चुके हैं, तोड़ा क्रिस गेल के 59 सिक्सर्स का रिकॉर्ड। एक ही सीजन में 3 बार एक पारी में 10 या ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन चुके हैं वैभव सूर्यवंशी, एलिमिनेटर में 12 छक्के लगाए थे। ऑरेंज कैप की रेस में भी वैभव सबसे आगे हैं, सीजन में अब तक 680 रन बना चुके हैं, इन 680 में से 610 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से हालांकि चूक गए वैभव, 29वीं गेंद पर 97 रन पर आउट हो गए, 2013 में 30 गेंदों में शतक लगाकर क्रिस गेल ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अब शुक्रवार को होगी आईपीएल फाइनल के लिए आखिरी जंग, न्यू चंडीगढ़ में गुजरात और राजस्थान के बीच क्वालिफायर 2 का मुकाबला होगा। वैभव की शानदार बल्लेबाजी को देखकर समस्तीपुर में जश्न का माहौल था, लोगों ने पटाखे फोड़े, खुशी मनाई। 2097 रनों की पारी के लिए शानदार केक काटा गया, फैंस का जोश भी हाई है। दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर भी वैभव के मुरीद हुए, वैभव की बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियों को भी सराहा। 7 समंदर 5 पहुंची वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता, WWE स्टार ड्रू मैकइंटायर ने वैभव के नाम की जर्सी पहनकर वर्कआउट वीडियो पोस्ट किया। बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कैंस में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेश रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के लिए मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। अक्षय कुमार की प्रेडेटर एलियन थ्रिलर फिल्म समूह में दिखेगा हॉलीवुड का जादू, प्रेडेटर फिल्म का हिस्सा रहे एलोक गिलिस डिजाइन कर रहे हैं एलियन क्रिएचर। कोलकाता में दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी की बायोपिक की शूटिंग शुरू हो गई, मैदान ईडन गार्डन पर कैमरा क्रू संग नजर आए सौरभ का किरदार निभा रहे राजकुमार राव। OTT के बाद बड़े पर्दे पर नजर आएगा कालीन भैया का साम्राज्य, 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी। फिल्म नागाबंधम में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार में रोल में नजर आएंगे ऋषभ सहानी, 3 जुलाई को फिल्म रिलीज होने वाली है।
ईरान और अमेरिका में जंग खत्म करने को लेकर प्रस्ताव तैयार हो चुका है। तेहरान मीडिया का दावा, एमओयू के ड्राफ्ट में हॉर्मुज के आसपास से सेना हटाने को ट्रंप तैयार है। ईरान में इंटरनेट बहाल होने के बाद लोगों में खुशी की लहर दिखी। सोशल मीडिया पर लोगों ने खुशी का इजहार किया। गाजा सिटी में इजरायली सेना की बड़ी कार्रवाई हुई। हमास के नए सैन्य कमांडर मोहम्मद ओदेह को ढेर किया। पत्नी और बेटे भी हमले में मारे गए। पूर्व प्रशांत महासागर में अमेरिकी सेना का बड़ा हमला हुआ है। कथित ड्रग्स नाव पर बमबारी में एक की मौत, दो लोगों को बचाया गया। रूस बेलारूस बॉर्डर पर ड्रेन इंटरसेप्ट टीमें तैनात करेगा नेटो। लताविया ये टीमें 10 किलोमीटर के दायरे में ही दुश्मन के ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। सिंगापुर के विदेश मंत्री ने प्योंगयांग में उत्तर कोरिया के विदेश मंत्री से मुलाकात की। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने पर चर्चा हुई। स्पेन के पीएम पेड्रो सांचेज ने वेटिकन सिटी में पोप से की मुलाकात। दोनों के बीच दुनिया में चल रहे जंग और प्रवासियों के मुद्दे पर बातचीत हुई। स्पेन की सत्तारूढ़ सोशलिस्ट पार्टी के मुख्यालय पर पुलिस की रेड हुई। वित्तीय गड़बड़ी और भ्रष्टाचार की जांच के सिलसिले में पुलिस की रेड हुई।

0: Hot Mics, now streaming on TuneIn, your go-to show for sports, politics, entertainment, tech, and pop culture. Hosted by me, Billy Bush. Get unfiltered takes, A-list guests, real talk, no fluff. Search Hot Mics or tell your device to play Hot Mics on TuneIn to start listening now.
1: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
3: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना. गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत. गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो.
4: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है. लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली.
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा.
6: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम, एक हिंट तो देते.
8: विक्रम!
7: हिंट.
9: बड़े आराम से.
10: और वही कहाँ गए थे घूमने?
11: जीके मैक्स.
12: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
11: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी.
13: जेके वॉल मैक्स
11: बेस्ट पेंट.
13: जेके मैक्स.
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स. जेके मैक्स पेंट्स. खुशियों के रंग.
14: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है.
15: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे.
16: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा दे.
17: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा.
18: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ.
19: बस दो हजार
20: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा.
21: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो.
22: Director, the taste of success.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
2: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
3: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
4: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
5: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
6: विक्रम, एक हिंट तो देते।
7: विक्रम!
6: हिंट।
8: बड़े आराम से।
9: और वही कहाँ गए थे घूमने?
10: जीके मैक्स।
11: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
10: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी
11: जेके वॉल मैक्स
10: बेस्ट पेंट
11: जेके मैक्स
10: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
12: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही है।

0: साल भर से राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष दिल्ली से बिहार तक और बंगाल से तमिलनाडु तक शोर मचाता रहा कि एफआईआर करके चुनाव आयोग देश के गरीब दलित पिछड़ों मुसलमानों के नाम काट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग को जो कानूनी हक मिला है वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 124 पन्नों के जजमेंट में जो फैसला सुनाया उसका लब्बो लुआब यही है कि एफआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। देश का वोटर कौन होगा ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। सबूत में मांगे जा रहे 11 दस्तावेज उचित हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खोना नहीं है और नाम कटने वालों की नागरिकता पर 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई शुरू होनी चाहिए। वैसे तो चुनाव आयोग के एफआईआर को विपक्षी दलों ने कांग्रेस के वोट चोरी वाले सियासी मुद्दे के साथ नत्थी कर दिया था। राजनीतिक दलों के साथ कई एनजीओ नेताओं संगठनों समेत 20 अर्जियां एफआईआर के खिलाफ डाली गई, लेकिन उन सभी अर्जियों में उठे सवालों पर कोर्ट का फैसला आया है। मसलन अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि आरपी एक्ट 1960 और संविधान की धारा 324 के तहत पूर्ण अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग वोटर तय कर सकता है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने की जगह एनआरसी तैयार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति ये भी थी कि एफआईआर के बहाने बड़े पैमाने पर चुनिंदा लोगों के नाम काटे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नाम काटने वालों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अर्जियों में आपत्ति थी कि गरीब दलित मुस्लिम प्रवासियों के नाम काटने का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि नाम कटने के 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता पर सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश के सभी राज्यों में एफआईआर कराने के लिए चुनाव आयोग को फ्री हैंड मिल चुका है। इसे लेकर बीजेपी जहां कांग्रेस पर भ्रम की राजनीति का आरोप लगाती है, तो याचिकाकर्ता इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट आवाजों की शिकायत ये है कि इस एफआईआर में जिस तरह देश के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं उसमें अब तक जिन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनमें 7.2 करोड़ नाम कट चुके हैं, जिनमें यूपी में 2.04 करोड़, बंगाल में 83.86 लाख, तमिलनाडु में 97.3 लाख, गुजरात में 73 लाख, बिहार में 47 लाख, मध्य प्रदेश में 42 लाख, राजस्थान में 41,80,000 और केरल में 24,08,000 नाम काटे जा चुके हैं। उनमें मृत, स्थानांतरित, फर्जी, संदिग्ध चारों तरह के मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाकर उस लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में बंगाल के 27 लाख वोटर्स के साथ जो हुआ उस सवाल का जवाब बाकी रह गया, क्योंकि बंगाल में करीब 27 लाख लोगों के नाम पर फैसला नहीं हो सका है कि वो भारत के वोटर है या नहीं। वोटर नहीं है तो नागरिक है या नहीं, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए कहने को 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन सुनवाई 27 लाख में 27,000 की नहीं हो सकी। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को रखना था लेकिन वो कहां बैठेंगे दफ्तर तक तय नहीं था। जिन वोटर्स के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया था उनके नए दस्तावेज को मंजूर करने की गाइडलाइन नहीं थी। ऊपर से आवेदन ऑनलाइन करना था जिसमें गरीब, मजदूर, अशिक्षित लोग उलझ गए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रोज रोज की सुनवाई वाली कोई परेशानी है तो हाई कोर्ट जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में सुनवाई में साफ हो चुका है कि वोट देना संवैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी विपक्षी दलों की ओर से एफआईआर को लेकर अब भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
1: कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं। आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
2: पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहें ईवीएम खराब है, उसके बाद कहें एफआईआर से वोट काटे जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, अब तो कोई ना कोई बहाना और ढूंढेंगे।
3: अब क्या ढूंढ सकते हैं
2: भाई, अब विरोधीन के ढूंढे के जमाना बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।

लखनऊ और संभल में फ्लैग मार्च, मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज में बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बीच राज्यपाल के मुंबई जाने से नया ट्विस्ट, सीएमओ सूत्रों का दावा, गवर्नर हाउस में इस्तीफा सौंप कर आएंगे सीएम, नहीं बदलेगा प्लान, डीके को मिल सकती है कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य, अमित शाह बोले बीजेपी की स्थापना के दिन से ही यूसीसी हमारा संकल्प। शांति प्रस्ताव के बीच ईरान के बंदर अब्बास में फिर से गिरी अमेरिका की मिसाइलें, होर्मुज में अमेरिकी टैंकर्स को ईरान ने बनाया निशाना, ट्रंप बोले तेहरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं। छियानवे रन वाली सूर्यवंशी की तूफानी पारी में बिखर गया हैदराबाद, 47 रनों से जीता राजस्थान, तोड़ दिया सिक्सर का रिकॉर्ड, अब क्वालिफाई टू में गुजरात से होगा मुकाबला।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
1: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज तक, मैं हूं आपके साथ पूजा पराशर। सुबह के 8 बजे और अब वक्त है खास बुलेटिन सुपर 8 का। इस बुलेटिन में तमाम अहम खबरें आपको बताएंगे और हर खबर पर अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। इस बुलेटिन में बात करेंगे सबसे पहले ईरान अमेरिका के ताजा हमलों के बाद दोबारा युद्ध की आशंका बढ़ गई है। साथ ही कर्नाटक की भी खबर होगी, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की खबर, जहां पर सिद्धरमैया आज इस्तीफा देने वाले हैं। आज बकरीद है और कहां कहां सुरक्षा अलर्ट है ये भी आपको बताएंगे। खबर ट्विशा केस की भी, सवाल ये कि क्या अब गिरफ्तार होंगे गिरिबाला। साथ ही खबर नीट पेपर लीक से जुड़ी, जहां पर दो और गिरफ्तारी हुई है। मौसम की बात भी होगी, बिहार में आंधी तूफान से कैसे मुसीबत बढ़ गई है ये भी आपको बताएंगे। साथ ही पहाड़ों पर सुलगते जंगल की तस्वीरें दिखाएंगे, तो बात आईपीएल की भी करेंगे, दिखाएंगे सूर्यवंशी का धमाका। सबसे पहले रुक करते हैं इस वक्त की एक बड़ी खबर का, जो कि अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव से जुड़ी है। एक बार फिर से दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए हैं। अमेरिका ने होर्मुज में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पूर्वी बंदर अब्बास में अमेरिका ने यह हमला किया। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया है कि ईरान ने अमेरिकी कमर्शियल वेसल्स पर 4 ड्रोन दागे, जिन्हें अमेरिकी मिलिट्री ने मार गिराया। ईरान के ड्रोन हमले को लेकर समाचार एजेंसी एक्सियोस ने खबर दी है कि ऐसे हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ गया है। इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के सख्त बयान ने हालात और गर्मा दिए हैं। ट्रंप ने ओमान पर ईरान का साथ देने को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
2: जारी बातचीत के बीच अमेरिकी सेना ने फिर से ईरान के सैन्य ठिकाने को टारगेट किया है। इस बार फिर अमेरिकी हमला होर्मुज में हुआ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान का सैन्य ठिकाना होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी सेना और कमर्शियल मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए खतरा था। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उन्हें मार गिराया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास के पूर्वी हिस्से में 3 धमाके हुए। इसके बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफी देर तक एक्टिवेट कर दिया। 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला बोला है। होर्मुज इलाके में हलचल तेज है। अभी एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा कि होर्मुज पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा।
3: They understand that they'll be fine. 25 मई
2: को भी अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस का हवाला देते हुए दक्षिण ईरान पर मिसाइल दागी थी। तब ईरान ने कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और आत्मरक्षा में जरा भी संकोच नहीं करेगा। फिर बढ़ती तनातनी के बीच तेल की कीमतों में आज फिर उछाल आया है। आज तक ब्यूरो।
1: एक और बड़ी खबर जो कि होर्मुज से आ रही है, जहां पर ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया। दरअसल ईरानी न्यूज एजेंसी तस्नीम के हवाले से खबर है कि अमेरिकी तेल टैंकर अपने रडार सिस्टम को स्विच ऑफ कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था। बताया जा रहा है कि IRGC ने तुरंत कार्रवाई की और वार्निंग के लिए एक वेसल और फायरिंग भी शुरू की और उसे लौटने पर मजबूर कर दिया गया। US तेल टैंकर को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया गया, IRGC के हवाले से खबर। रडार सिस्टम ऑफ कर आगे बढ़ रहा था ये टैंकर। एक और ये बड़ी खबर आपको होर्मुज से बता रहे हैं, जहां पर ईरान ने अमेरिकी तेल टैंकर को पिछले लौटने पर मजबूर कर दिया। तस्नीम के हवाले से ईरान न्यूज एजेंसी के हवाले से खबर है कि अमेरिकी तेल टैंकर अपने रडार सिस्टम को स्विच ऑफ कर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था और उसे पीछे लौटने पर मजबूर कर दिया गया। तो इसराइल गाजा संघर्ष के बीच एक और बार फिर से बड़ी सैन्य कार्रवाई सामने आई है। दरअसल इजरायली डिफेंस फोर्सेस IDF ने दावा किया है कि उसने उत्तरी गाजा पट्टी में हमास आतंकी संगठन के 2 प्रमुख आतंकियों को निशाना बनाकर हमला किया। IDF के आधिकारिक हैंडल से जानकारी दी गई है कि ये स्ट्राइक कुछ समय पहले की गई और इसमें हमास के अहम ठिकानों को टारगेट किया गया। हालांकि इस हमले में हुए नुकसान को लेकर जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। इसराइल का हमास पर एक बार फिर से हमला, हमास के 2 आतंकी इस बीच मारे भी गए हैं। कई ठिकानों पर हमला किया गया है, हमास के ठिकानों को निशाना बनाया गया और 2 आतंकी इस बीच मारे भी गए हैं। और अब अब सुपर एट में आज की दूसरी बड़ी खबर, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की अटकलों के बीच कांग्रेस में बैठकों का दौर जारी है। दरअसल आज कर्नाटक सीएम इस्तीफा दे सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय भी मांगा है, लेकिन ताजा खबर सामने आ रही है कि राज्यपाल थावरचंद गहलोत बेंगलुरु से मुंबई के लिए रवाना हो गए हैं। जानकारी के मुताबिक पारिवारिक वजहों से वो मुंबई गए। वहीं सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री कार्यालय से खबर यह है कि राज्यपाल की गैर मौजूदगी में भी सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे।

0: हमारे सहयोगी सगई राज सीधा सिद्धारमैया के घर के बाहर से हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनके पास आपको लिए चलते हैं। बताइएगा कि राज्यपाल निजी वजहों से मुंबई रवाना हो गए, ऐसे में आज सिद्धारमैया के इस्तीफे का क्या होगा?
1: देखिए, सूत्रों के अनुसार गवर्नर तवरचंद गहलोत कल रात 10:30 बजे उनके घर से निकल गए हैं। 11:30 बजे उनका फ्लाइट था मुंबई, मुंबई से इंदौर जा चुके हैं। उनका फैमिली इमरजेंसी है, इसी वजह से वो लोग रात 10:30 बजे निकल गए। अब इस गवर्नर ऑफिस के मुताबिक अभी तक उनका रिटर्न फ्लाइट अभी तक बुक नहीं हुआ है, मगर हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से बात किया था, उन लोगों ने कहा है कि वहाँ पे एक प्रोविजन है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर फिर भी गवर्नर सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं। और 3 बजे जो अपॉइंटमेंट है वो फिक्स्ड है, 3 बजे को चीफ मिनिस्टर सिद्धारमैया गवर्नर ऑफिस जाएंगे और वहां पे गवर्नर नहीं रहे तो उनके सेक्रेटरी के पास इस्तीफा देके आएंगे।
0: क्या ये बताइएगा कि क्या सिद्धारमैया ने गवर्नर से वक्त मांगा था इससे पहले, उनके जाने से पहले?
1: हाँ जी, चीफ मिनिस्टर सूत्रों के अनुसार उन्होंने 3 बजे आज वक्त मांगा था, अपॉइंटमेंट भी फिक्स हुआ था। दोपहर खाने के बाद जो अभी ब्रेकफास्ट मीटिंग चलेगा 9 बजे के बाद, वो खत्म होने के बाद एक छोटा मीटिंग था उनके कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ, और उसके बाद दोपहर खाने के बाद वो गवर्नर ऑफिस जाके इस्तीफा देने वाले थे। वो अपॉइंटमेंट भी शॉर्ट किया था और अपॉइंटमेंट भी उनको दिया गया था, मगर लास्ट मिनट पे कल रात जो फैमिली इमरजेंसी आ गया था, इसी वजह से राज्यपाल तवर गहलोत बेंगलोर से निकल गए थे। 10:30 बजे लोकभवन से निकले थे और 11:30 बजे मुंबई फ्लाइट लिया था और वहां से इंदौर के फ्लाइट लेकर इंदौर पहुंच गए हैं। अभी तक रिटर्न का फ्लाइट कंफर्म नहीं है, सो इसी वजह से सीएमओ को ऑफिस सूत्रों के अनुसार तकरीबन 3 बजे गवर्नर नहीं रहे तो भी गवर्नर के सेक्रेटरी के पास वो इस्तीफा दे सकते हैं।
0: सगईराज, अगर सेक्रेटरी को सिद्धारमैया इस्तीफा देंगे तो क्या इसमें कोई राजनीतिक पेच भी फंस रहा है, संवैधानिक पेज फंस रहा है?
1: नहीं, संविधान में एक प्रोविजन है सीएमओ के ऑफिस के अनुसार जहां पे वो सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं। सेक्रेटरी गवर्नर को कम्युनिकेट कर सकते हैं और गवर्नर शायद एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि जब भी कैबिनेट मिनिस्टर्स का इस्तीफा होता है, नहीं तो उनको हटा सकते हैं, फिर भी उस टाइम पे भी मिनिस्टर्स के बारे में ईमेल किया तो भी ठीक है, क्योंकि गवर्नर अक्नॉलेज करते हैं। ऐसे ही प्रोविजन जहां पे ये चीफ मिनिस्टर सेक्रेटरी को भी दे सकते हैं इस्तीफा, और सेक्रेटरी एक्सेप्ट करेंगे ना करेंगे एस्केलेट करेंगे वो पूरा लोकभवन के पास लोकभवन का प्रोविजन है, वो डिसाइड करेंगे। मगर ये भी प्रोविजन है कॉन्स्टिट्यूशन में जहां पे चीफ मिनिस्टर जब गवर्नर नहीं रहते हैं उनको सेक्रेटरी के लिए वो इस्तीफा दे सकते हैं।
0: ये बिल्कुल क्लियर है कि सिद्धारमैया आज इस्तीफा देने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। वही सूत्रों के मुताबिक आज सिद्धारमैया राज्यपाल से मिलने वाले थे और इस्तीफा देने वाले थे, उससे पहले ही कुछ देर बाद वो अपने कैबिनेट सहयोगियों के साथ ब्रेकफास्ट के दौरान मीटिंग भी करने वाले हैं। और इस बीच राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस अध्यक्ष से मुलाकात करेंगे। अब सबकी नजर आज होने वाली बैठकों पर टिकी हुई है, जब कर्नाटक की राजनीति में बड़ा फैसला सामने आ सकता है।
2: कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की अटकलों के बीच सियासी हलचल तेज हो गई है। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के इस्तीफे की चर्चाओं के बीच कांग्रेस में बैठकों और रणनीति का दौर जारी है। सूत्रों के मुताबिक सिद्धारमैया ने आज राज्यपाल से मुलाकात के लिए समय मांगा है। वहीं मुख्यमंत्री आज सुबह कैबिनेट सहयोगियों के साथ सीएम की ब्रेकफास्ट मीटिंग भी संभावित है। इसी के साथ डीके शिवकुमार के अगले सीएम बनने की चर्चा भी तेज हो गई है। नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाओं के बीच सिद्धारमैया ने फिलहाल चुप्पी साध रखी है। मीडिया के सवालों पर उन्होंने सिर्फ इतना कहा, मैं कल बोलूंगा। इसी बीच बेंगलुरु में कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया के समर्थकों ने मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन किया। पुलिस ने कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में ले लिया। वहीं कर्नाटक के घटनाक्रम के बीच राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल कांग्रेस अध्यक्ष से 10 राजाजी मार्ग पर मुलाकात करेंगे। उधर सिद्धारमैया खेमे के विधायक भी सक्रिय हो गए हैं। विधानसभा परिसर और मुख्यमंत्री आवास के बाहर समर्थकों की हलचल बढ़ गई है। अब सबकी नजर दिल्ली और बेंगलुरु दोनों जगह होने वाली बैठकों पर टिकी है, जो कर्नाटक की राजनीतिक दिशा तय कर सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, आज तक।
0: तो कर्नाटक की सियासत में नेतृत्व परिवर्तन की आहट के बीच अब सवाल ये उठ रहा है कि आखिर डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया को कैसे राजनीतिक तौर पर पीछे छोड़ दिया। सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का भरोसा अपने मजबूत विधायकों के समर्थन और जमीनी जनाधार पर था। उन्हें लगता था कि यही संख्या बल उन्हें किसी भी नेतृत्व चुनौती से बचा लेगा, लेकिन इस बीच डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने दिल्ली में कांग्रेस हाईकमान के साथ अपनी पकड़ लगातार मजबूत की और समीकरण बदलने शुरू कर दिए। 2023 में कांग्रेस की जीत के बाद कथित तौर पर एक अनौपचारिक रोटेशनल फॉर्मूले पर चर्चा हुई और इसे शिवकुमार खेमे ने बार बार उठाया। हालांकि सिद्धारमैया ने कभी सार्वजनिक रूप से इस तरह के किसी समझौते को स्वीकार नहीं किया और पूरे 5 साल मुख्यमंत्री बने रहने का दावा करते रहे। पार्टी के अंदरूनी सूत्रों का कहना है कि सिद्धारमैया अपने करीबी नेताओं की सलाह पर ज्यादा निर्भर रहे और जैसे जैसे नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं बढ़ी उन्होंने कोई ठोस रणनीति नहीं बनाई। दूसरी ओर डीके शिवकुमार लगातार दिल्ली में पार्टी नेतृत्व से संपर्क में रहे और अपनी स्थिति मजबूत करते रहे। माना जा रहा है कि सत्ता का यह संघर्ष अब बेंगलुरु से निकलकर सीधे दिल्ली के दरबार में निर्णायक मोड़ पर पहुंच गया है और आज सिद्धारमैया इस्तीफा सौंपने वाले हैं। तो वहीं अब देश भर में आज बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। दिल्ली और अन्य तमाम राज्यों में नमाज अदा की जा रही है। जयपुर, लखनऊ, कोयम्बटूर और साथ ही तमाम जगहों पर नमाज अदा की जा रही है। पटना में बीजेपी नेता शाहनवाज हुसैन ने नमाज पढ़ी थी। अलग अलग शहरों से आई तस्वीरें आप देखिए। बकरीद को लेकर कई राज्यों में सुरक्षा भी सख्त कर दी गई है। अलग अलग शहरों में नमाज पढ़ी गई है। संवेदनशील जगहों पर पुलिस फ्लैग मार्च भी कर रही है लगातार। तो आज बकरीद का मौका है, उसको लेकर देश भर में आज नमाज पढ़ी जा रही है। दिल्ली अन्य तमाम जो राज्य हैं वहां पर नमाज पढ़ी जा रही है, उसकी तस्वीरें आप देख रहे हैं। यूपी के कई जिलों में नमाज पढ़ी गई। खुले में कुर्बानी पर रोक लगाई गई है। प्रशासन अलर्ट पर है। जगह जगह पर पुलिस बल तैनात किए गए हैं। यूपी, बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली में सतर्कता बरती जा रही है।

0: तो चलिए अब आपको कुछ अलग अलग शहरों की तस्वीरें दिखाते हैं। कोलकाता, जयपुर, भोपाल, कोयम्बटूर, यहां पर नमाज पढ़ी गई है। देश भर में बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है, ऐसे में पुलिस प्रशासन भी अलर्ट मोड पर है। और ये अलग अलग जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह सवेरे नमाज पढ़ी गई है, बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है। कोलकाता, जयपुर, भोपाल और कोयम्बटूर से ये तस्वीरें सामने आई हैं। ऐसे में सख्ती बरती जा रही है और खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है। ये भोपाल की तस्वीरें आप देख रहे हैं। गाइडलाइंस का पूरा पालन किया जा रहा है। बंगाल से यूपी तक हर जगह पर आज बकरीद का त्योहार काफी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है और देश भर में बकरीद मनाई जा रही है। ये कोयम्बटूर की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सुबह ये सभी ने यहां पर नमाज पढ़ी, ये कोयम्बटूर की तस्वीरें हैं। सुरक्षा काफी ज्यादा बढ़ा दी गई है। देश भर में बकरीद मनाई जा रही है, कुर्बानी को लेकर सख्ती भी बढ़ती जा रही है। ये भोपाल और कोयम्बटूर की आप दो तस्वीरें देख रहे हैं। आज अलग अलग शहरों में नमाज पढ़ी जा रही है, ऐसे में सुरक्षा व्यवस्था भी कड़ी कर दी गई है और कई गाइडलाइंस भी इसको लेकर जारी की गई हैं, जिसका लोग पालन करते भी नजर आ रहे हैं। ये भोपाल और कोयम्बटूर की आप तस्वीरें देख रहे हैं। देश भर में बकरीद मनाई जा रही है, जगह जगह पर नमाज पढ़ी जा रही है, लेकिन खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई है, जिसका पालन भी कहीं ना कहीं किया जा रहा है। चलिए अब आपको दिखाते हैं यूपी के अलग अलग शहरों की सुरक्षा व्यवस्था। बकरीद पर सुरक्षा के भारी इंतजाम है, पुलिस प्रशासन लगातार फ्लैग मार्च कर रहा है ताकि कानून का पालन कराया जा सके। यूपी के अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। मेरठ, हापुड़, नोएडा, कानपुर, अयोध्या, जगह जगह पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है और सख्ती से पालन भी किया जा रहा है लोगों द्वारा। अलग अलग जगह की ये तस्वीरें आप यूपी की देख रहे हैं। मेरठ, हापुड़, नोएडा, कानपुर, अयोध्या, जहां पर फ्लैग मार्च किया जा रहा है, भारी तादाद में पुलिस बल तैनात की गई है, सुरक्षा व्यवस्था काफी कड़ी कर दी गई है। तो बकरीद के मौके पर बंगाल से यूपी, महाराष्ट्र तक सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में बकरीद की नमाज और कुर्बानी को लेकर प्रशासन ने सख्त गाइडलाइंस लागू कर दी हैं। दरअसल कई राज्यों में खुले में कुर्बानी और सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों पर कड़ी निगरानी रखी जा रही है। पश्चिम बंगाल में प्रशासन ने पशु वध से जुड़े नियमों के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं, जबकि कोलकाता और आसपास के इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। तमाम संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया, हालात पर नजर रखी जा रही है। अब खबर टिशा शर्मा केस की। इस पूरे मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए गिरिवाला सिंह को अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। दरअसल दूसरी ओर टिशा के पति समर्थ को अपनी कस्टडी में लेते हुए सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है। गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत टिशा केस से जुड़ी रद्द कर दी गई है। साथ ही हाईकोर्ट ने गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। समर्थ सिंह की बात की जाए तो समर्थ सिंह को अपनी कस्टडी में लेते हुए सीबीआई ने अब जांच तेज कर दी है। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को खारिज करते हुए गिरिवाला सिंह की अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है और सीबीआई की हिरासत में समर्थ सिंह है। ऐसे में तमाम सवाल जवाब उनसे किए जा रहे हैं। इससे पहले समर्थ सिंह के घर पर भी सीबीआई की टीम पहुंची, जहां पर पूरे सीन को रिक्रिएट किया गया।
1: सवालों की लंबी लिस्ट है जिनका जवाब तलाशने में सीबीआई की टीम जुट गई है। भोपाल में मौजूद सीबीआई अधिकारी लगातार दूसरे दिन कल समर्थ सिंह के घर पहुंचे। घर में एंट्री करते ही जांच टीम घर की छत पर उस जगह गई जहां ट्रिशा फंदे से लटकी मिली थी। अधिकारियों ने क्राइम सीन को बारीकी से देखा और जांचा। जानकारी के मुताबिक क्राइम सीन को रिक्रिएट भी किया। सीबीआई ने घर के आसपास भी पड़ताल की। घर के एंट्री गेट पर घेराबंदी कर खास उपकरण से मैपिंग भी की गई। उधर ट्रिशा की सास गिरिवाला सिंह को हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा, उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई। हाईकोर्ट ने निचली अदालत के आदेश को खारिज किया, कहा कि मामले में गंभीर तथ्य और आरोपों को सही तरीके से नहीं परखा गया। 27 मई को करीब 3 घंटे तक सुनवाई चली। गिरिवाला सिंह और समर्थ पर ट्रिशा को अबॉर्शन के लिए दबाव बनाने और प्रताड़ित करने के आरोप हैं। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: तो नीट पेपर लीक केस में सीबीआई एक्शन में है और सीबीआई ने महाराष्ट्र से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एक आरोपी बच्चों का डॉक्टर है, जिसकी गिरफ्तारी भी हो चुकी है।
1: नीट पेपर लीक केस के महाराष्ट्र चैप्टर में सीबीआई ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें लातूर के डॉक्टर मनोज शिरूरे और पुणे के कोचिंग लेक्चरर तेजस शाह शामिल हैं।
2: सीबीआई ने नीट पेपर लीक मामले में और दो आरोपियों को अरेस्ट किया है। आपको बता दें, इन दो आरोपियों में लातूर के एक डॉक्टर शामिल हैं और पुणे के एक कोचिंग इंस्टीट्यूट के लेक्चरर शामिल हैं। आपको बता दें कि मनोज शिरूरे, डॉक्टर मनोज शिरूरे, जो कि लातूर में बाल रोग विशेषज्ञ हैं, उनका अस्पताल है, वो लातूर जिले में महाराष्ट्र के प्रैक्टिस करते हैं, उन्हें अरेस्ट किया गया है। उनका रोल ये है कि जो रसायन केमिस्ट्री का जो पेपर लीक हुआ, केमिस्ट्री के जो सवाल लीक हुए जो नीट के पेपर में आने वाले थे, उन्होंने आरोपी प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी, जो कि एनटीए के लिए पेपर सेट कर रहे थे केमिस्ट्री का, उनसे साठगांठ कर केमिस्ट्री के जो सवाल थे वो लीक करवाए।
1: आरोपी के डॉक्टर शिरूरे ने प्रोफेसर पीवी कुलकर्णी के साथ मिलकर परीक्षा में पूछे जाने वाले केमिस्ट्री के सवालों को लीक कराने में मदद की और अपने अस्पताल में विशेष कोचिंग सेशन भी आयोजित किए। वहीं तेजस शाह पर आरोप है कि उसने फिजिक्स पेपर के सवाल हासिल करने में मनीषा हवलदार की मदद ली और इसके बदले पैसे भी दिए। दिल्ली की अदालत ने दोनों आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेज दिया है। इस केस में अब तक कुल 13 गिरफ्तारी हो चुकी है, जिनमें से 7 से अधिक आरोपी महाराष्ट्र से जुड़े हैं। इधर एनटीए 21 जून को होने वाली नीट पुनर्परीक्षा की तैयारियों में जुटी है, जबकि शिक्षा मंत्रालय ने सुरक्षा व्यवस्था को सर्वोच्च प्राथमिकता बताया है।
0: और चलिए अब खबर हीटवेव की। उत्तर भारत इस समय भीषण हीटवेव की चपेट में है। राजस्थान, यूपी, उनके तमाम ऐसे जिले हैं जहां पर कई भीषण गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। भीषण हीटवेव के चलते तापमान भी बढ़ गया है, 46 से 48 डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है। कहां पर कितना तापमान है वो आपको बता दें, राजस्थान में सबसे अधिक तापमान है श्रीगंगानगर में 48.2 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर सभी पर 45 के पार पारा पहुंच गया है। वहीं दिल्ली का हाल आपको बताएं, रिज, आयानगर, पालम, सफदरजंग का हाल आप देखिए, सभी पर 40 से पार पारा पहुंच गया है। रिज सबसे ज्यादा गर्म माना जा रहा है, जहां पर 45 डिग्री सेल्सियस तक पारा पहुंच गया है। गर्मी काफी बढ़ गई है। यूपी का बांदा सबसे ज्यादा गर्म इस वक्त माना जा रहा है, 47.4 डिग्री सेल्सियस। वहीं लखनऊ में 43 डिग्री सेल्सियस, भीषण गर्मी का सामना लोग कर रहे हैं और इससे जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित भी हो रहा है। दोपहर के समय सड़कों पर सन्नाटा पसरा हुआ है, लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में रहने को मजबूर कर दिया है। वहीं अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और डिहाइड्रेशन के मरीजों की संख्या भी अब लगातार बढ़ रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं जताई है। तो वहीं बिहार में तेज आंधी तूफान ने भारी तबाही मचाई है। पिछले 24 घंटों में अलग अलग जिलों में 5 लोगों की मौत हो गई है। मुजफ्फरपुर में 2 लोगों की जान गई, जबकि पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और मुंगेर में 1-1 व्यक्ति की मौत हो गई है। तेज हवाओं और खराब मौसम के चलते कई इलाकों में जनजीवन प्रभावित हुआ है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने घटना पर गहरी शोक संवेदना व्यक्त की है और मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई है। सरकार ने प्रभावित परिवारों को राहत देने का ऐलान किया, साथ ही मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि सभी मृतकों के आश्रितों को 4-4 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान तुरंत दिया जाए। बात कर लेते हैं अब आईपीएल की। आईपीएल 2026 के एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से मात दी है। युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाफ धमाकेदार प्रदर्शन करते हुए 29 गेंदों में 97 रनों की विस्फोटक पारी खेली, लेकिन सिर्फ 3 रन से इतिहास रचने से वो चूक गए। दरअसल सूर्यवंशी ने आईपीएल का सबसे तेज शतक बनाने के वो करीब थे, लेकिन वो चूक गए। आउट होने के बाद वो काफी निराश भी नजर आए। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके, 12 छक्कों की मदद से सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की जमकर धुनाई की। उन्होंने सिर्फ 16 गेंदों में अर्धशतक पूरा कर प्लेऑफ इतिहास में संयुक्त रूप से सबसे तेज 50 भी दर्ज किया और इस पारी के दौरान उन्होंने एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्कों का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है। 600 रन पूरे कर सबसे युवा खिलाड़ी बनने का कारनामा वैभव सूर्यवंशी ने कर दिखाया।

चलिए आगे बढ़ते हैं, वक्त हो गया है सुपर एट का। बीएचयू मेस में चिकन करी में मरी छिपकली मिलने के कारण हड़कंप मचा। छात्रों ने वार्डन का घेराव कर लापरवाही पर कड़ी कार्रवाई की मांग की। देहरादून में कैंप्टी वाटरफॉल पार्किंग विवाद में पुलिस ने संज्ञान लिया, दोनों पक्षों से पूछताछ की जा रही। संगरूर में 80 लोगों के बीमार होने पर फूड पॉइजनिंग का केस दर्ज, स्वास्थ्य विभाग ने जांच के आदेश दिए। हैदराबाद में 1 करोड़ 22 लाख रुपए हवाला कैश मामले में जांच तेज, ईडी और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई जारी।

0: यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
1: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
2: Every city has hidden stories. The building you pass every day. The park where history was made. The person no one remembers who changed everything. Audio brings those stories to life. And now we're on TuneIn. Explore 15 unique cities. Discover what you've been missing. Audio, now on TuneIn. Search Audio on TuneIn to start exploring.
3: Presented by Patanjali Gai Ka Ghee, lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa pyar.
4: In association with
5: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
6: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
7: देशभर में मनाया जा रहा है बकरीद. पीएम मोदी ने देशवासियों को दी बधाई. वाराणसी की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज पढ़ी. मुंबई की YMCA मैदान में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज अदा की. लोगों ने एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारक. अजमेर में ईद उल अजहा पर खुला ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह. बड़ी संख्या में लोगों ने की दुआएं. अजमेर में नमाज अदा की गई. लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी. संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच लोगों ने नमाज अदा की. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम. पटना में भी अदा की गई नमाज. मस्जिदों में पढ़ी गई नमाज. सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम किए गए. पटना में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ने ईदगाह में पढ़ी नमाज. लोगों ने बकरीद की बधाई दी. कोयम्बटूर में ईद की नमाज पढ़ी गई. लोगों का तांता लगा. अमन शांति और तरक्की की कामना की गई. देहरादून में नमाज अदा की गई. लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर दी बकरीद की बधाई. भोपाल में ईद उल अजहा की नमाज के लिए लगा लोगों का तांता. अमन शांति और तरक्की की कामना की गई. देशभर में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन. अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जुटे हजारों लोग. नमाज अदा कर मांगी अमन शांति की दुआ. दिल्ली की जामा मस्जिद में भी बकरीद की रौनक. प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम. अलग अलग शहरों में बकरीद के मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों की रौनक. सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम. उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश. सड़क पर नमाज और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक. नोएडा में बकरीद और प्रस्तावित कार्यक्रमों को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में आज से 30 मई तक धारा 163 लागू. बिना अनुमति जुलूस, धरना प्रदर्शन, सार्वजनिक नमाज पर रोक. कोलकाता में पारंपरिक रूप से रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज को शिफ्ट कर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया. संभल में बकरीद को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम किए गए. जिले को 5 जोन और 18 सेक्टर में बांटा गया. RRF, PAC और साथ ही पुलिस बल की तैनाती के साथ 7 ड्रोन और 250 से ज्यादा CCTV कैमरों से पूरे इलाके में रखी जा रही है निगरानी. हापुड़ में भी ईद को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस. DM और SP के नेतृत्व में शहर में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च निकाला गया. मेरठ में भी संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च. इस दौरान लोगों ने की पुष्प वर्षा. कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज इस्तीफा दे सकते हैं. राज्यपाल से मुलाकात के लिए मांगा समय. सिद्धारमैया आज अपने मंत्रिमंडल के साथ ब्रेकफास्ट भी करेंगे. साथ ही DK शिव कुमार को भी न्योता दिया गया. सूत्रों के अनुसार कल हो सकती है विधायक दल की बैठक. शनिवार को हो सकता है CM के नाम का ऐलान. असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास. उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य. अमित शाह ने असम विधानसभा में UCC विधेयक पारित होने की सराहना की. बोले समान कानून लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध. राहुल गांधी के आरोपों पर CBSE ने दी प्रतिक्रिया. सभी आरोप बताया गलत और भ्रामक. बोर्ड ने कहा कि पूरी टेंडर प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की गई. CBSE की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी ने फिर से उठाए सवाल. कहा इनकार करना कोई जवाब नहीं. 18.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में. शिक्षा मंत्री पर भी राहुल गांधी ने साधा निशाना. कहा शिक्षा मंत्री और CBSE मेरे पूछे गए 4 आसान सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे. बच्चे सच जानने के हकदार. राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में पीड़ित

से मुलाकात कर इसे भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा बताया। बोले छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों की समीक्षा की। कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। नीट मामले में दो आरोपियों को 10 जून तक न्यायिक हिरासत। दिल्ली कोर्ट ने दो आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। सीबीएसई के 3 भाषा नियम के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एनसीईआरटी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम से मिलने पहुंचे विजय। पीएम को गुलदस्ता भेंट कर तस्वीरें सामने आई। सूत्रों के हवाले से जो खबर सामने आ रही है, विजय ने पीएम से उन मांगों पर बात की जो कि केंद्र सरकार के सामने पेंडिंग है। केरल के पूर्व सीएम पिनराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन। छापेमारी के दौरान बवाल, समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। समर्थकों ने इस दौरान ईडी के गाड़ी पर भी फेंके पत्थर। बाल बाल बचे अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई। ईडी ने दर्ज कराई एफआईआर। पूर्व सीएम विजयन के घर रेड के वक्त हुआ था अटैक। एसएफ आयोग ने पिछले साल अप्रैल में वीना विजयन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी। आरोप है कि कंपनी ने भुगतान लेकर कोई भी सेवा शुरू नहीं की थी। ईडी की कार्रवाई के बाद केरल की राजनीति में भी हलचल तेज। विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताते हुए बोला हमला। ऋषभ शर्मा मौत केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सांसद गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया। ऋषभ के पति आरोपी समर्थ को सीबीआई ने लिया हिरासत में। 3 घंटे तक समर्थ के घर में पूछताछ। समर्थ और गिरिबाला के साथ साथ सीबीआई ने सीन को रिक्रिएट भी किया। ऋषभ मौत मामले पर एसआईटी ने कोर्ट को बताया 12 से 20 मई तक की सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को लिखा पत्र। बिहार में लॉ एंड ऑर्डर पर पप्पू यादव का सरकार पर हमला। बोले सूबे में बढ़ा अपराध। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सर्च ऑपरेशन छठे दिन भी जारी। सूत्रों के अनुसार इलाकों में लश्कर के 2 से 3 बड़े आतंकवादी छिपे हुए हैं। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कल इलाके का दौरा किया और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की। छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमर कॉलोनी गोलीकांड केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर की गई। बीते मंगलवार को एक स्कूली छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला। मणिपुर के एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार किया गया। दिल्ली में एक गोपनीय मीटिंग करने आया था उग्रवादी। हरदोई में गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर उपद्रव। पुलिस पर पथराव किया गया। पुलिसकर्मियों समेत कई लोग घायल। हरदोई बवाल में मामले में 2 लोग गिरफ्तार। 10 से अधिक लोग हिरासत में। गांव में भारी पुलिस बल तैनात। गाजियाबाद में महिलाओं समेत 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडे और लातघूस से चले। नागपुर रत्नागिरी महामार्ग पर एलपीजी गैस टैंकर पलटा, ड्राइवर की मौत। वाशिम में गर्दन तक डूबकर गंदे नाले को साफ करता व्यक्ति, वीडियो हुआ वायरल। पुणे में शराब के नशे में तेज रफ्तार कार पुल से जाकर गिरी। 19 साल के एक युवक पर मामला दर्ज।

सुबह सुबह साइकिलिस्टों पर कार सवार लुटेरों का हमला, मोबाइल लूट कर फरार। प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वालों पर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन, उधम सिंह नगर से चार गिरफ्तार। हैदराबाद सनराइजर्स को हराकर क्वालिफायर टू में पहुंची राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल के फाइनल में पहुंचने का मिला एक और मौका। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को दी करारी शिकस्त, चार गेंद रहते 47 रन से जीता मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने खड़ा किया 243 रनों का विशाल स्कोर, जवाब में महज 196 रनों पर ढेर हुई हैदराबाद। मैच के हीरो रहे राजस्थान के रॉयल बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, 29 गेंदों में खेली 97 रनों की धमाकेदार पारी, लगाए 5 चौके और 12 छक्के। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले के सामने हैदराबाद के गेंदबाजों का सरेंडर, 334.48 के तूफानी स्ट्राइक रेट से नापा मैदान का हर कोना, बनाए कई शानदार रिकॉर्ड। आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी, महज 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी सूर्यवंशी ने अपने नाम किया, अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, तोड़ा क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड। एक ही सीजन में 3 बार एक पारी में 10 या ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने वैभव, एलिमिनेटर में 12 छक्के लगाए। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे है वैभव सूर्यवंशी, इस सीजन में अब तक बना चुके हैं 680 रन, इन 680 में से 610 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए वैभव, 29वीं गेंद पर 97 रन पर हुए आउट, 213 में 30 गेंदों में शतक लगाकर क्रिस गेल ने बनाया था रिकॉर्ड। अब शुक्रवार को होगी आईपीएल फाइनल के लिए आखिरी जंग, न्यू चंडीगढ़ में ही होगा गुजरात और राजस्थान के बीच क्वालिफायर। वैभव की शानदार बल्लेबाजी को देखकर समस्तीपुर में जश्न का माहौल, लोगों ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशी। धुआंधार 97 रनों की पारी के लिए काटा गया शानदार केक, फैंस का जोश हाई। दुनिया के महान बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए वैभव के मुरीद, वैभव की बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियों को सराहा। सात समंदर पार पहुंची वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता, WWE स्टार ने वैभव के नाम की जर्सी पहनकर पोस्ट किया वर्कआउट वीडियो। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा जेवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने रचा इतिहास, फेंका 74.82 मीटर दूर भाला, तोड़ा अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार भारत का नाम किया रोशन, 2 बार पैरा ओलंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं सुमित, 7 बार ध्वस्त किया गया वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुमित अंतिल की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने बधाई दी, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा ऐतिहासिक प्रदर्शन। म्यूनिख में ISSF विश्व कप में ईशा सिंह ने भी शानदार विश्व रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 50 में से 43 अंक कर जीता गोल्ड। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की बेटी की इस उपलब्धि पर जताया गर्व, सोशल मीडिया पर लिखा भारत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भरा दिन। बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कान में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के लिए मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। अक्षय कुमार की प्रेडेटर एलियन थ्रिलर फिल्म सम्मुख में दिखेगा हॉलीवुड का जादू, प्रेडेटर फिल्म का हिस्सा रहे एलेक गिलिस डिजाइन कर रहे एलियन क्रिएचर। कोलकाता में दादा द सौरभ गांगुली स्टोरी बायोपिक की शूटिंग शुरू हुई, मैदान ईडन गार्डन पर कैमरा क्रू संग नजर आए सौरभ का किरदार निभा रहे राजकुमार राव। ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर नजर आएगा कालीन भैया साम्राज्य, 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी। फिल्म नागाबंधम में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार के डबल रोल में नजर आएंगे ऋषभ साहनी, 3 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज।

नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं भाग्य चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की। ये जानेंगे कि आज का दिन कैसा जाने की संभावना बनती है और आज के दिन को बेहतर बनाने के उपाय क्या हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 28 मई 2026, दिन बृहस्पतिवार, तिथि है अधिक ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि, प्रातः 7:56 तक। नक्षत्र है चित्रा नक्षत्र, प्रातः 8:08 तक। चंद्रमा तुला राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 1:30 से लगभग 3 तक। दक्षिण दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है।

करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। मेष राशि, करियर की समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, स्वास्थ्य अच्छा होता जाएगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, पारिवारिक समस्या हल होगी, स्वास्थ्य में सुधार होगा। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा गुलाबी। मिथुन राशि, धन की

पड़ाव करें। भगवान को अगर पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा हरा।

रखें, धन खर्च बढ़ा रहेगा, जल्दबाजी में निर्णय ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा सफेद।

योग हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, कोई शुभ सूचना मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं, वो शुभ रंग आज के लिए होगा लाल।

ध्यान बनाए रखें, भगवान को पीले फूल अर्पित कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा धानी।

रहे हैं, समस्याओं में सुधार होगा, रुके हुए काम पूरे होंगे। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा क्रीम। वृश्चिक राशि, चोट चपेट से बचाव करें, परिवार में अशांति से बचें, करियर में किसी तरह का रिस्क या जोखिम ना लें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं उस शुभ रंग आज के लिए होगा नारंग।

में सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, रुके हुए काम पूरे होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। मकर राशि, पारिवारिक समस्या हल होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं, करियर की स्थिति में सुधार होगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी, जिसका प्रयोग करके आप दिन को बेहतर बना सकते हैं। कुंभ राशि, रुका हुआ धन प्राप्त होगा, रिश्तों में सुधार होगा, करियर के मामले में कोई लापरवाही ना करें, खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा नीला। मीन राशि, व्यर्थ के विवाद हो सकते हैं, करियर में समस्या हो सकती है, वाहन सावधानी से चलाइए। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर केले का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग जिसका प्रयोग करके दिन को बेहतर बना सकते हैं वो शुभ रंग आज के लिए होगा पीला। तो भाग्य चक्र में आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
5: विक्रम!
4: हिंट
6: बड़े आराम से।
1: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
7: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
8: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
9: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रहे हैं।
10: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
11: देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है। टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं। चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा। असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया। इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया। 5 देशों के दौरे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने साझा की जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया। आज तक ब्यूरो

हिमाचल की पर्यटन नगरी मनाली भी इस वक्त भयंकर जाम से जूझ रही है। सुहाने मौसम और वादियों का आनंद लेने पहुंचे सैलानियों का सफर अब ट्रैफिक जाम की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। मनाली लेह मार्ग पर करीब 8 से 10 किलोमीटर लंबा जाम लग रहा है। वीकेंड मनाने लोग जाते हैं तो उनका पूरा वीकेंड ही बर्बाद हो जाता है। गाड़ियां तो बस जैसे सड़क पर रेंगती हुई नजर आई। यही हाल मनाली रोहतांग मार्ग का भी रहा, जहां पर्यटकों को घंटों जाम में फंसना पड़ा। हालात ऐसे रहे कि सामान्य तौर पर 4 घंटे में तय होने वाला सफर 8 से 10 घंटे में पूरा करना पड़ रहा है। ये रोहतांग पास और शिंकुला की ओर जाती हुई गाड़ियों की तस्वीरें हैं। यहाँ करीब 4000 वाहन एक साथ पहुंच गए, जिसकी वजह से भारी जाम लग गया। प्रशासन की ओर से रोहतांग पास के लिए केवल 1300 वाहनों को ही अनुमति दी गई थी। यहाँ बीते दिनों ताजा बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से लोगों ने रोहतांग का रुख करना शुरू कर दिया, लेकिन यहाँ आकर वो भारी जाम में फंस गए। मनाली रोहतांग मार्ग की ही एक और तस्वीर आपको दिखाते हैं। सड़क पर दूर दूर तक गाड़ियों की लाइनें नजर आ रही हैं। सारी गाड़ियां एक के पीछे एक करके फंस गई हैं। ट्रैफिक आगे बढ़ ही नहीं रहा। जैसे ही लोगों को बर्फबारी की खबर मिल रही है, वो तुरंत पहुंच जा रहे हैं और यहां आकर जाम में फंस जा रहे हैं। यही हाल मंडी का भी है। ये चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे की तस्वीरें हैं। ये जाम पंडो से थलोट तक दिन भर लग रहा है। कई जगहों पर वाहन घंटों तक रेंगते रहे, जिससे लोगों को खासी परेशानी हो रही है। मनाली से मनमिंदर अरोड़ा के साथ आज तक ब्यूरो।

की हाउसिंग सोसाइटी से बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बीच राज्यपाल के मुंबई जाने से नया ट्विस्ट, सीएमओ सूत्रों का दावा, गवर्नर हाउस में इस्तीफा सौंपकर आएंगे सीएम, नहीं बदलेगा प्लान, डीके को मिल सकती है कमान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, उत्तराखंड गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य, अमित शाह बोले बीजेपी की स्थापना के दिन से यूसीसी हमारा संकल्प। शांति प्रस्ताव के बीच ईरान के बंदर अब्बास में फिर गिरी अमेरिका की मिसाइलें, हॉर्मुज में अमेरिकी टैंकर्स को ईरान ने बनाया निशाना, ट्रंप बोले तेहरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं। सत्तानवे रन वाली सूर्यवंशी की तूफानी पारी में

0: गया है आपके फेवरेट मॉर्निंग प्राइम टाइम शो 9 बज गए का आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सुबह का सबसे पहला संपूर्ण न्यूज बुलेटिन लेकर एक बार फिर से हम हाजिर हैं खबरें रफ्तार से और विस्तार से। बिल्कुल सबसे पहले खबरों की झलकियों पर एक नजर। पेशा मॉक मिस्ट्री में अब क्या होगी सास गिरेबाला की गिरफ्तारी, अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद लड़की गिरफ्तारी की तलवार। कर्नाटक लिए चलेंगे जहां पर नेतृत्व परिवर्तन की खबरों के बीच बेंगलुरु में जबरदस्त सस्पेंस, पूरी डिटेल अब से कुछ देर बाद। बकरीद पर शहर शहर सुरक्षा सख्त, कहां क्या माहौल है इस पर होगी हमारी नजर। और ठीक आधे घंटे बाद यानी कि सुबह 9:30 100 शहर 100 खबर बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं उस खबर के साथ जिसकी चर्चा और जिससे जुड़ा विवाद पिछले कई दिनों से गर्म है। आज बकरीद का त्यौहार है, शहर शहर से तस्वीरें आ रही हैं। आप अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर नमाज की जो हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। जाहिर तौर पर त्यौहार आम तौर पर शांति सौहार्द और भाईचारे का प्रतीक होता है, लेकिन सड़कों पर नमाज और कुर्बानी को लेकर पिछले कुछ दिन से जिस तरह की बयानबाजी और विवाद हुआ उससे बकरीद के मौके पर अमन शांति को लेकर बड़ी आशंका पैदा हो गई है। शहर शहर से पुलिस फ्लैग मार्च की तस्वीरें आ रही हैं। कहीं कोई शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश ना करे इसे लेकर पुलिस आज अलर्ट मोड पर है। हम आपको सीधे अपने संवाददाताओं के पास भी लिए चलेंगे, लेकिन इस बीच ये 8 तस्वीरें नोएडा, दिल्ली, कानपुर, मेरठ, अयोध्या, प्रयागराज, मथुरा और हापुड़ की हैं जहां पर पुलिस ने बकरीद से पहले और आज के दिन भी सुबह फ्लैग मार्च किया है। समर्थ मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं सीधे लखनऊ से, कोलकाता से मेरे सहयोगी अनुपम मिश्र जुड़ गए हैं और दिल्ली से मेरे सहयोगी हिमांशु जुड़ गए हैं। सबसे पहले हिमांशु आपका रुख करते हुए दिल्ली में क्या तैयारियां हैं, यहां पर भी फ्लैग मार्च हुआ है?
1: देखिए चाहे जामा मस्जिद हो जहां पर इस वक्त मैं मौजूद हूं वहां की तस्वीरें आप देखिए, आरएएफ की आपकी वज्र वाहन आपको यहां पर बाहर नजर आएगा जामा मस्जिद के बाहर। इसके अलावा कोई भी ईदगाह हो कोई भी मस्जिद हो हर जगह पर हमने देखा कि इसी तरीके से पुलिस रैपिड एक्शन फोर्स के जवान पैरामिलिट्री फोर्स के जवान आपको लगातार गश्त करते हुए नजर आए। इसके पहले ये हुआ अमन कमेटी के साथ बैठक की गई, तमाम जो बातचीत है उनको किया गया कि किस तरीके से सुरक्षा में शांतिपूर्वक त्योहार को मनाया जाए उसको देखते हुए कई बैठकें हुई थी और जो तमाम जो कि कुर्बानी कैसे देनी है सड़क पर नहीं देनी क्योंकि लगातार विवाद चला रहा था तो उनको लेकर के बैठक हुई थी और उसके बाद उसका असर आज देखने को मिला। नेहा हम कई जगहों पर गए जहां पर बैरिकेड जो लगाए गए थे उसके अंदर बैठ करके शांतिपूर्वक नमाज पढ़ी गई। जामा मस्जिद के बाहर मौजूद है यहाँ पर भी पूरी बहुत भीड़ थी यहाँ पर सुबह, लेकिन बड़ी ही सलीके से लोग आते हैं नमाज पढ़ते हैं खुशियों के साथ त्योहार मनाते हैं और फिर उसके बाद यहाँ पर लोग चले जाते हैं। चूंकि मस्जिद वक्त अलग होता है तो सुबह 6 बजे का वक्त था जब जामा मस्जिद पर नमाज का था और यहाँ पर जो लोग जुटने शुरू हुए थे वो सुबह 5:30 बजे। इसी तरीके से जो पास की मस्जिद है वहां पर सुबह 8 बजे लोगों की भीड़ लगी थी, सुरक्षा पूरी थी लेकिन बेहद शांति के साथ जो पूरा त्योहार है वो यहाँ पर बीतते हुए नजर आया। लोग जो थे वो सुरक्षा कर्मियों के साथ पूरी तरीके से सहयोग करते हुए भी नजर आए। जी नेहा
0: समर्थ मेरे सहयोगी जुड़े हैं। समर्थ बकरीद से पहले योगी सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की थी, क्या उन गाइडलाइंस का पालन वहां हो रहा है?
2: नेहा बिल्कुल अभी तक फिलहाल यहाँ पालन होता दिख रहा है। हमारी मौजूदगी इस वक्त लखनऊ की टीले वाले मस्जिद के पास है। फिलहाल सिविल डिफेंस के जो लोग हैं उनको जिम्मेदारी ये दी गई है कि कोई भी सड़क पर नमाज ना करे नंबर एक, और किसी भी नए स्थान पर यानी कि प्रतिबंधित स्थान पर कुर्बानी ना दी जाए। तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे टीले वाली मस्जिद से, आप हमारे साथ चलें तो देखें नमाज का समय हो गया है और भारी संख्या में नमाजी जो है आपको यहाँ पर पहुंचते हुए टीले वाली मस्जिद पर नजर आएंगे। भारी संख्या में नमाजी जो है बकरीद की नमाज करने यहां पहुंच रहे हैं और चप्पे चप्पे पर आप देखें तो पुलिस के जवान यहां तैनात हैं, 1, 2, 3, 4 असंख्यों जवानों की तैनाती। तो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं वो लगातार यहां पर देखिए सीटियों का प्रयोग कर रहे हैं जिससे एक तरीके से लाइन से लोग यहां पर निकल कर जाएं। कि ये देखिए किस तरीके से लाइन से यहाँ से लोगों को निकाला जा रहा है, अंदर की तस्वीरें भी आपको हम दिखाते हैं यहाँ पर एक बार कि यहाँ पर पुलिस की तैनाती किस तरीके से की गई है। भारी संख्या में पीएसी हो, लखनऊ पुलिस हो, यूपी पुलिस के जवान भारी संख्या में यहाँ पर तैनात किए गए हैं। इनको इस तरीके के केन्स दिए गए हैं सिरों पर, इनके आपको जगह जगह पर हेलमेट दिखाई पड़ेंगे जिससे कि कोई अप्रिय घटना अगर होती है तो उसे समय से पहले रोका जा सके और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा अदायगी हो सके। यहाँ पर आपको मैं दिखाऊं तो फोर्सेस काफी तैनात की गई हैं। ये देख सकते हैं गर्मी का क्योंकि मौसम है, तो यहाँ पर पानी की व्यवस्था भी यहाँ पर प्रशासन के द्वारा की गई है। तो पुलिस की तैनाती और साथ में ये जो सिविल डिफेंस के जो लोग हैं इनको बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। जो सिविल डिफेंस की टीम आप देख रहे हैं यहाँ पर, इनकी जिम्मेदारी है कि सड़क पर नंबर एक कोई नमाज अदा नहीं करेगा, नंबर दो ये कि कोई भी जो है कुर्बानी नए स्थान पर नहीं होगी। आपको मैं मस्जिद के भीतर ले चलता हूँ, दिखाता हूँ कि अंडर सिक्योरिटी किस तरीके की यहाँ पर बनाई गई है। ये मस्जिद का वो स्थान है जहां पर स्कैनर्स जो हैं उन्हें लगाया गया है। ये देख सकते हैं, ये आपने यूजुअली मॉल्स में एयरपोर्ट्स में इस तरीके के स्कैनर्स देखे होंगे, वो स्कैनर्स जो हैं यहां पर लगाए गए हैं। यानी कि ये एक और द्वार है, यानी कि इस द्वार से जब कोई एंटर नमाज करने के लिए करेगा तो उसकी चेकिंग होगी। ये ऑटोमेटिक है, इनमें एंट्री जिसकी भी हो रही है वो ऑटोमेटिकली स्कैन हो रहे हैं। और यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो ये इस तरीके से लगातार जो भी यहाँ से निकल रहा है उसकी स्कैनिंग हो रही है। तो इस तरह की प्रक्रिया भी यहाँ पर है। महिला जो पुलिसकर्मी है उन्हें भी यहाँ भारी संख्या में कुल मिलाकर तैनात किया गया है, जिससे कि परिंदा भी यहाँ पर ना मार पाए। आपको तस्वीर हम वो दिखाएंगे जहाँ पर नमाजी भारी संख्या में एकत्रित हो चुके हैं लखनऊ में। तो यहाँ पर आप देखिए, ये तस्वीर जो है यहाँ पर आप देखें तो यहाँ भी स्कैन किए जा रहे हैं। जितने भी एंट्री पॉइंट्स हैं वहाँ से जो भी निकल रहा है उसकी स्कैनिंग हो रही है। स्कैनिंग के बाद जो है वो नमाजी बकरीद की नमाज अदा करने के लिए यहाँ अंदर दाखिल हो रहे हैं। आपको तस्वीर
0: नजर बनाए रखिए। इस बीच कोलकाता से मेरे सहयोगी अनुपम जुड़े हुए हैं। अनुपम, क्योंकि नमाज की जगह वहां पर बदल दी गई बीजेपी की सरकार आने के बाद, दो दिन की छुट्टी एक दिन कर दी गई, क्या रिएक्शन मिल रहा है या फिर शांतिपूर्वक तरीके से आज त्योहार मनाया जा रहा है?
3: जी देखिए, अभी तक बेहद शांतिपूर्ण तरीके से ही सब कुछ हो रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ जो आइकॉनिक ब्रिगेड परेड मैदान है कोलकाता का, यहाँ पर अभी अभी नमाज खत्म हो चुकी है जो बकरीद की नमाज होती है। और नमाज खत्म होने के बाद लोग अब धीरे धीरे वापस जाने के लिए निकल रहे हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे, देखिए काफी लोग हैं यहाँ पर, और ये नमाज इससे पहले तक रेड रोड में हुआ करती थी। हमारे साथ पूर्व मंत्री जावेद खान है। यहाँ पर जो शिफ्ट किया गया है उस पर क्या रिएक्शन है?
4: देखिए, क्या नाम है, सरकार की अगर पॉलिसी है रास्ता में नमाज नहीं पढ़ने देने का तो हम लोग एहतराम करते हैं। हम लोग आइन के ऊपर तो नहीं है, आइन को मान के चलना ही हमारा काम है। देश के नागरिक होने से हम लोग आइन को मान के चलना है। सरकार ने ऑल्टरनेटिव जगह दिया है, नमाज तो बंद नहीं किया। ऑल्टरनेटिव जगह जब दिया है तो हम लोग सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं, पुलिस का, पुलिस प्रशासन का शुक्रिया अदा करते हैं, आर्मी का, कि उन्होंने परमिशन देकर यहाँ पर एक अच्छा नमाज हुआ। और क्या नाम है, इसी तरह आज जिस तरह नमाज हुआ है तो इससे एक मैसेज जाता है कि आज क्या नाम है, आप आधा घंटा का नमाज के लिए कहीं भी जगह दीजिएगा, पढ़ लेगा, कोई जमीन उसका नहीं हो जाएगा, कोई दखल नहीं हम लोग कर लेंगे। हम लोग ये बताना चाहते हैं कि ईद और बकरीद जो है ये भाईचारगी की, ब्रदरहुड की ये फेस्टिवल है। इसमें सिर्फ मुसलमान नहीं बल्कि हर तबके के लोग, हम लोग एक साथ मिलकर ईद मनाते हैं।
3: छुट्टी भी एक दिन कर दी गई है, पहले दो दिन हुआ करती थी ईद की छुट्टी।
4: सरकार की पॉलिसी है, उसमें हमको क्या बोलना है। सरकार बोलेगी नहीं छुट्टी नहीं देंगे तब भी नमाज पढ़ेंगे हम। सरकार बोलेगी क्या नाम है आप नया कपड़ा मत पहने तब भी हम कपड़ा पहनेंगे। तो इसमें तो हम, सरकार की अपनी मर्जी है, सरकार अपने लोगों के ऊपर कर सकता है लेकिन पब्लिक के ऊपर तो ये नहीं बोल सकता ना कि क्या नाम है, दो दिन की छुट्टी तो दो दिन की छुट्टी हम क्या नाम है एक दिन कर देंगे।
0: आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया अलग अलग शहरों से बकरीद के दिन वहां पर प्रतिक्रिया दिखाने के लिए। बात आज के सबसे बड़े सियासी घटनाक्रम की, क्या आज सिद्धारमैया का कर्नाटक के सीएम पद से इस्तीफा देना तय हो गया है? कांग्रेस सूत्रों की माने तो आज ही सिद्धारमैया इस्तीफा सौंप देंगे। ऑफ द रिकॉर्ड कांग्रेस के नेता ये भी कह रहे हैं लेकिन आधिकारिक रूप से कोई कुछ नहीं बोल रहा है। सूत्रों के मुताबिक ताजा खबर यह है कि सिद्धारमैया आज राज्यपाल से मिलने का वक्त मांग चुके हैं लेकिन राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से कल देर शाम इंदौर रवाना हो गए। सूत्रों का कहना है कि राज्यपाल उपलब्ध रहे न रहे सिद्धारमैया का इस्तीफा तय।
5: कर्नाटक विधान सौदा यानी विधानसभा की इमारत से कल जब मुख्यमंत्री सिद्धारमैया निकले तो उनके साथ समर्थकों का विशाल हुजूम था। अनौपचारिक तौर पर यह बात साफ हो गई है कि सिद्धारमैया आज मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देंगे लेकिन औपचारिक रूप से अभी कोई इस बात को कहने को तैयार नहीं है।
6: PM going to resign tomorrow, sir?
7: No, that has been that is not known to us. That
6: is not. Few MLAs have been told to media that he is going to resign tomorrow, sir.
7: No, many might have told. There might be some special speculations, but nothing perfect unless it happens. Tomorrow is the day. What high command directions has been given, that will be implemented.
5: खबरों के मुताबिक 77 साल के सिद्धारमैया ने राज्यपाल थावरचंद गहलोत से आज मिलने का वक्त मांगा है। माना जा रहा है कि सुबह 11 बजे वो राज्यपाल से मिलकर अपना इस्तीफा सौंप सकते हैं। इससे पहले उन्होंने विधायकों को नाश्ते पर बुलाया है। नाश्ते पर डीके शिव कुमार को भी बुलाया गया, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि उनकी सिद्धारमैया के इस्तीफे के बाद वो मुख्यमंत्री पद पर जगह लेंगे। हालांकि सिद्धारमैया से कल जब उनके इस्तीफे पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आज वो इसके बारे में बात करेंगे। दरअसल 3 साल पहले जब कांग्रेस ने कर्नाटक का चुनाव जीता था तभी से मुख्यमंत्री की कुर्सी को लेकर सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार के बीच संघर्ष चल रहा था। ऐसा कहा जाता है कि सिद्धारमैया को फॉर्मूले पर सीएम की कुर्सी मिली कि वो 2.5 साल बाद शिवकुमार के लिए कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन सिद्धा अड़े रहे। आखिरकार मंगलवार को आलाकमान ने सिद्धारमैया और डीके को दिल्ली बुलाया। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी ने सिद्धा को सीधा फरमान सुनाया कि 2.5 साल वाला जो वादा किया है उसे निभाना पड़ेगा क्योंकि आप 6 महीने ज्यादा खींच चुके हैं। इसके बाद सिद्धा ने इस्तीफा देने पर हामी भर दी क्योंकि वो कई बार कह चुके थे कि राहुल गांधी अगर उन्हें कहेंगे तो वो इस्तीफा दे देंगे। दिलचस्प बात यह है कि औपचारिक रूप से अब तक नहीं बताया गया है कि सिद्धारमैया इस्तीफा देने वाले हैं, लेकिन कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक आरवी देशपांडे के मुताबिक सिद्धारमैया ने उनसे कहा है कि वो इस्तीफा देंगे। देशपांडे के मुताबिक सीएम आवास पर जब कुछ विधायकों ने सिद्धारमैया से इस्तीफा न देने का अनुरोध किया तो उन्होंने कहा कि वो पार्टी हाईकमान को वचन दे चुके हैं। इन घटनाक्रम के बीच बेंगलुरु में हलचल तेज है। सारी निगाहें सिद्धारमैया पर हैं कि वो कब इस्तीफा देते हैं। आज तक ब्यूरो।
0: तो आज राज्यपाल से मिलने का वक्त मांगा है। हालांकि राज्यपाल मुंबई गए हुए हैं, कल देर शाम वो रवाना हो गए थे। अभी बेंगलुरु में राज्यपाल थावरचंद गहलोत नहीं है। सगे राज मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। सगे, राज्यपाल के ना होने की सूरत में क्या फॉर्मेलिटी, क्या प्रोसीजर्स रहेंगे इस्तीफा सौंपने के?
8: देखिए, चीफ मिनिस्टर सूत्रों के अनुसार जो फिक्स टाइम पे उसी टाइम पे मुख्यमंत्री लोकभवन पहुंचेंगे और ये कह रहे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां पे चीफ मिनिस्टर गवर्नर सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं, मगर गवर्नर का प्रेरोगेटिव है कि वो एक्सेप्ट करेंगे या ना करेंगे, क्योंकि सेक्रेटरी गवर्नर को बताएंगे कि ऐसा चीफ मिनिस्टर ने इस्तीफा दिया है और गवर्नर का प्रेरोगेटिव, वो बोल सकते हैं कि आप कल ला सकते हो, नहीं तो वो एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मगर ये पूरा गवर्नर का प्रेरोगेटिव है कैसे वो रेजिग्नेशन लेंगे या नहींगे। मगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां पे चीफ मिनिस्टर गवर्नर के सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं।
0: और एक जो ब्रेकफास्ट मीटिंग का आयोजन किया गया है उसमें डीके शिवकुमार भी पहुंच रहे हैं, उसका क्या मकसद हो सकता है? क्योंकि अब नेक्स्ट सीएम वही है इसलिए उन्हें औपचारिक न्योता भेजा गया है, या फिर वजह कुछ और है?
8: नहीं, देखिए, जब भी ये हलचल शुरू हुआ था कर्नाटका में उस दिन से भी आज तक जब भी वो कैमरा के सामने आते हैं वो बोलते हैं सब कुछ ठीक है, उनके बीच में कुछ भी नहीं है, जो भी डिफरेंसेस है वो हाईकमांड के साथ है और हाईकमांड के साथ वो लोग बात करके वो जो भी समस्या है उसका परिहार ढूंढेंगे। अभी भी वही चल रहा है, कैमरा के सामने जो भी आप देख रहे हैं वो पूरा सब कुछ ठीक है, उनके बीच में कुछ भी नहीं है। आज भी वो ब्रेकफास्ट मीटिंग में पार्टिसिपेट करेंगे सिद्धारमैया के साथ और दूसरे कैबिनेट मिनिस्टर्स के साथ पूरा खुश रहेंगे। उसके बाद सूत्रों के अनुसार जब सिद्धारमैया लोकभवन जाएंगे उस टाइम पे भी डीके शिवकुमार उनके साथ देंगे और जब रेजिग्नेशन देंगे उनके साथ रहेंगे और उसके बाद जब बाहर आएंगे उनके साथ रहेंगे। यही है कर्नाटका पॉलिटिक्स का एक सुंदर दृश्य और यही शायद आज आपको देखने के लिए मिलेगा।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात उस खबर की जो पिछले 2 हफ्ते से चर्चा में है, भोपाल की त्रिशा शर्मा मौत मामले में मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। हाईकोर्ट ने त्रिशा के साथ गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया है। अब गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दूसरी ओर त्रिशा के पति समर्थ को अपनी कस्टडी में लेते हुए सीबीआई ने जांच तेज कर दी है।

0: पूर्व जज गिरिबाला सिंह को झटका। रात करीब 1 बजे आया फैसला, गिरिबाला की अग्रिम जमानत खारिज। गिरिबाला पर लटकी गिरफ्तारी की तलवार। त्रिशा मौत मिस्ट्री में आज की ये सबसे बड़ी खबर है। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने त्रिशा की सास पूर्व जज गिरिबाला सिंह को मिली अग्रिम जमानत खारिज कर दी। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि व्हाट्सएप चैट को देखते हुए ये नहीं कहा जा सकता कि आरोप सिर्फ समर्थ के खिलाफ हैं। हाईकोर्ट ने कहा कि ये स्वीकारा गया तथ्य है कि त्रिशा ने अपना गर्भपात कराया था। कोर्ट के मुताबिक बयानों से साफ हुआ है कि गिरिबाला सिंह और उनका बेटा समर्थ त्रिशा को परेशान कर रहे थे और उस पर गर्भपात कराने का दबाव भी बना रहे थे। हाईकोर्ट के मुताबिक सभी बयानों ने गिरिबाला और उसके बेटे समर्थ के खिलाफ स्पष्ट आरोप लगाए, लेकिन ट्रायल कोर्ट ने इन सभी तथ्यों पर विचार ही नहीं किया। गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद अब अटकलें तेज हैं कि क्या समर्थ की तरह गिरिबाला की भी गिरफ्तारी होगी। कल सीबीआई ने समर्थ की कस्टडी ले ली। एमपी पुलिस को 7 दिन के लिए समर्थ की कस्टडी मिली थी।
1: समर्थ सिंह को लेकर के सीबीआई रवाना हो रही है घर से। आप सामने तस्वीर में देखिए, समर्थ को सीबीआई की गाड़ी में बैठाया जा रहा है। आज से आधिकारिक रूप से सीबीआई ने कस्टडी ले ली है समर्थ की, और इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं सीबीआई अब समर्थ को अपने साथ लेकर के रवाना हो रही है। ये तस्वीरें हैं उस गाड़ी की जिसमें समर्थ है। ये देखिए आप, समर्थ को लेकर सीबीआई की टीम रवाना हो गई है यहाँ से, और ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि समर्थ को लेकर सीबीआई जो है अब यहाँ से रवाना हो रही है। आप तस्वीरों में देखिए, सामने समर्थ बैठा हुआ है, सीबीआई के अफसर यहाँ मौजूद है, और सीबीआई जो है अब समर्थ को लेकर रवाना हो गई है, क्योंकि कस्टडी सीबीआई को आज दोपहर को मिल गई थी समर्थ की। कटारा हिल्स पुलिस थाने की कस्टडी में अब तक समर्थ था, लेकिन अब सीबीआई ने जांच के दूसरे ही दिन समर्थ को कस्टडी में लिया है और समर्थ को लेकर के सीबीआई अब रवाना हो गई है।
0: त्रिशा मौत मिस्ट्री की जांच में सीबीआई लगातार एक्शन में है। कल हाईटेक मशीनों से सीबीआई ने गिरिबाला के घर की जांच की। फारोफोकस नाम की मशीन से घर की 3D मैपिंग की गई। इस हाई स्पीड 3D लेजर स्कैनर मशीन से घर और उसके आसपास का डिजिटल नक्शा तैयार किया गया। घर के अंदर और क्राइम सीन पर भी सीबीआई ने वारदात का रिक्रिएशन किया। सीबीआई के फोटोग्राफरों ने पूरे घर की फोटो और वीडियोग्राफी शुरू की। बताया जाता है कि समर्थ को लेकर सीबीआई उस सीढ़ी के पास भी गई जहां से उसने त्रिशा को नीचे उतारा था।
1: आप देख सकते हैं सीबीआई की टीम है जो साथ में इक्विपमेंट्स वगैरह लेकर के यहाँ पे आई हुई है, और यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे सीबीआई के जो अधिकारी जो तकरीबन 3 घंटे तक गिरिबाला सिंह और समर सिंह के घर पर रहे, वो अब यहाँ से रवाना हो रहे हैं।
0: 12 मई को भोपाल के इसी कटारा हिल्स के घर में मॉडल और एक्ट्रेस त्रिशा शर्मा का फंदे से लटका शव मिला था। ससुराल वाले इसे खुदकुशी बता रहे, जबकि मायके वाले दहेज हत्या का आरोप लगा रहे हैं। रविश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: रविश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रविश, क्योंकि अब गिरिबाला की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, कब तक गिरफ्तारी संभव है?
1: देखिए, ये तकनीकी रूप से सीबीआई फिलहाल इसका परीक्षण कर रही है, क्योंकि देखिए जमानत याचिका रद्द हो जाने के बाद साफ तौर पर जो पहला एक्शन होता है वो गिरफ्तारी का ही होता है, लेकिन क्योंकि एक रिटायर्ड जज है गिरिबाला सिंह, और वर्तमान में कंज्यूमर फोरम में भी वो रिटायर्ड जज के तौर पर बाकायदा काम कर रही हैं, तो सीबीआई इस तकनीकी पहलू का जरूर इस वक्त ध्यान रखे हुए है, और इसीलिए अभी तक भले ही गिरफ्तारी नहीं हुई। कुछ देर पहले गिरिबाला सिंह घर से बाहर निकली थी, उन्होंने जो स्ट्रीट डॉग से उन्हें खाना खिलाया था अपने घर के बाहर, लेकिन इस बीच में आपको बता दें कि अभी तक सीबीआई पहुंची नहीं है गिरिबाला सिंह के घर पर, लेकिन अग्रिम जमानत याचिका रद्द हो जाने के बाद तकनीकी रूप से सीबीआई के पास अब यह विकल्प है कि वो आरोपी को गिरफ्तार कर सके, क्योंकि गिरिबाला सिंह एक आरोपी है, सह आरोपी है इस मामले में, तो जाहिर सी बात है बेटा उनका सीबीआई की हिरासत में कल तक के लिए है ही। अब गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है, लेकिन उनके रिटायर्ड जज होने का और वर्तमान में कंज्यूमर फोरम के जज होने के चलते सीबीआई के सामने फिलहाल कुछ तकनीकी पक्ष है जिनको वो स्टडी कर रही है, और बताया जा रहा है कि उसके बाद सीबीआई किसी फैसले पे पहुंचेगी, लेकिन इतना जरूर तय है कि इस अग्रिम जमानत याचिका के रद्द होने के बाद गिरफ्तारी की तलवार गिरिबाला सिंह पर जरूर लटक रही है, क्योंकि हाईकोर्ट ने जमानत याचिका रद्द करते समय जो ऑब्जर्वेशन दिए हैं वो भी काफी सख्त है। उन्होंने साफ कर दिया है कि गिरिबाला सिंह और समर्थ सिंह त्रिशा को अबॉर्शन करने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे। तुषा के शरीर पर चोटों के जो निशान है उनका जवाब आरोपी पक्ष की तरफ से सही नहीं दिया गया और यहां तक कि ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े हुए हाईकोर्ट ने कहा कि जिस स्थितियों में जमानत दी गई है वो होना नहीं चाहिए था, क्योंकि कई सारी जो जांच की स्थिति है, जो सबूत पास में मौजूद है और जो आरोप लगातार लग रहे हैं उसे देखते हुए कम से कम ये जमानत नहीं मिलनी चाहिए थी, लेकिन इसके बावजूद भी ट्रायल कोर्ट से जमानत मिली है। तो कुल मिलाकर के हाईकोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि गिरिबाला सिंह और समर सिंह फिलहाल इस मामले में न केवल दोषी है बल्कि गंभीरता से जांच इस पूरे मामले की होनी चाहिए और इसीलिए अब सीबीआई बस इस तकनीकी पहलू पर स्टडी करने के बाद ही किसी फैसले पर पहुंचेगी और इतना जरूर तय है कि गिरफ्तारी गिरिबाला सिंह की इस तकनीकी पहलू।
2: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। बात बिहार की, जहां से बड़ी खबर आ रही है। पटना के उमानाथ घाट के पास गंगा नदी में पलटी नाव हादसे में दो लोगों की मौत हो गई है, पांच लोग लापता हुए हैं। हादसे के वक्त नाव पर करीब 12 से 13 लोग सवार थे। अधिकतर महिलाएं और बच्चे इसमें शामिल थे। हादसा उस वक्त हुआ जब सुबह सुबह कुछ खेतीहर परवल की सब्जी तोड़ने के लिए देंगी गांव में सवार होकर दियारा जा रहे थे। नदी में जाते ही नाव अनियंत्रित होकर पलट गई। नाव पलटते ही घाट से दूसरी नाव लेकर लोग राहत बचाव के लिए दौड़ पड़े। शशि भूषण मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। शशि, कितने लोगों के डूबने की खबर आ रही है?
3: देखिए, जो नाव हादसा हुआ है वो बाढ़, पटना का बाढ़ इलाका है, तो बाढ़ से समस्तीपुर के मोहद्दीनगर के लिए नाव चली थी और गंगा नदी में नाव पलट गई। बताया जा रहा है कि तकरीबन 14 लोग सवार थे इसमें, जिसमें 7 लोग सुरक्षित निकल आए। दो डेड बॉडी जो है वो गंगा नदी से निकाली है प्रशासन ने, स्थानीय लोगों ने, और 5 लोग अभी भी लापता बताए जा रहे हैं। जब तक ये खबर अपडेट हमारे पास आई थी 5 लोगों के लापता होने की सूचना है। तो कुल कह सकते हैं कि जो इलाके में एक तरह से पूरा गम का माहौल है, क्योंकि स्थानीय लोग ही थे और ये गंगा नदी पार करके समस्तीपुर के उस इलाके में जाते हैं और उमानाथ घाट है बाढ़ में वो गंगा नदी के अंदर, वहीं पर ये हादसा हुआ है। और प्रशासन हालांकि पहुंची हुई है वहां पे, पुलिस टीम पहुंची है, जो राहत बचाव है वो कार्य जारी है। फिलहाल दो डेड बॉडी निकाली गई है गंगा नदी से और 5 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। नेहा,
2: बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब बात करेंगे किस तरीके से ईरान और अमेरिका के बीच तनाव एक बार फिर से शुरू हो गया है। एक बार फिर दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमले किए। अमेरिका ने होर्मुज में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि पूर्वी बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमला किया है। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी कमर्शियल वेसल पर 4 ड्रोन दागे हैं, जिन्हें अमेरिकी मिलिट्री ने मार गिराया है। ईरान के ड्रोन हमले को लेकर समाचार एजेंसी एक्सियोस ने खबर दी। ऐसे हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ गया और इसी बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान ने हालात और गर्मा दिए। ट्रंप ने ओमान पर ईरान का साथ देने को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है।
0: जारी बातचीत के बीच अमेरिकी सेना ने फिर से ईरान के सैन्य ठिकाने को टारगेट किया है। इस बार फिर अमेरिकी हमला होर्मुज में हुआ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान का सैन्य ठिकाना होर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी सेना और कमर्शियल मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए खतरा था। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उन्हें मार गिराया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास के पूर्वी हिस्से में 3 धमाके हुए। इसके बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफी देर तक एक्टिवेट कर दिया। 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला बोला है। होर्मुज इलाके में हलचल तेज है। अभी एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा कि होर्मुज पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा।
4: Negotiation that we have, they would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: Mr. President, 25 मई को भी अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस का हवाला देते हुए दक्षिण ईरान पर मिसाइल दागी थी। तब ईरान ने कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और आत्मरक्षा में जरा भी संकोच नहीं करेगा। फिर बढ़ती तनातनी के बीच तेल की कीमतों में आज फिर उछाल आया है। आज तक ब्यूरो।
2: और आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा इस वक्त इसराइल में मौजूद है। इसराइल के हाइफा में युद्ध के दौरान जख्मी लोगों के इलाज के लिए बने अंडरग्राउंड अस्पताल से एक्सक्लूसिव उनकी ग्राउंड रिपोर्ट देखिए।
5: पिछले कुछ सालों में लगातार युद्ध जैसे हालात झेल रहे इसराइल ने इन लड़ाइयों से काफी कुछ सीखा और 2006 की लेबनान वॉर के बाद इस अंडरग्राउंड हॉस्पिटल को शुरू किया। ये दुनिया का पहला अंडरग्राउंड फोर्टिफाइड हॉस्पिटल है, यानी अगर जंग के हालात होते हैं तो इस हॉस्पिटल में अंडरग्राउंड 3 लेवल्स तक जितने भी मरीज हैं उनका इलाज किया जा सकता है। 2200 मरीजों को एक साथ इस हॉस्पिटल में ट्रीट किया जाता है। इसराइल के हाइफा में ये रामबम अस्पताल है, और इस अस्पताल की जिस पार्किंग में मैं चल रही हूं उसे महज 8 घंटों के अंदर एक फुल फ्लेज्ड हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया जाता है, जहां पर न सिर्फ इस अस्पताल के बल्कि हाइफा और इसराइल के आसपास के जितने भी अस्पताल हैं उन सबको शिफ्ट किया जा सकता है। हाल की लड़ाई में 40 दिन तक जो वॉर हुआ ईरान इसराइल और अमेरिका के बीच, उसमें इसराइल के 144 अलग अलग सोल्जर्स जो घायल हुए उन्हें यहां पर लाया गया, और इस वक्त भी 13 सोल्जर्स का इलाज यहां पर चल रहा है। तो आईडीएफ के जो सोल्जर्स हैं उनका यहां पर इलाज चल रहा है, और उसके अलावा इस 40 दिन की लड़ाई के अंदर 10,000 लोगों को जो इस लड़ाई में अलग अलग जगह पर मिसाइल अटैक्स हुए, ड्रोन अटैक्स हुए, उनमें इंजर हुए, उन सबको भी यहां पर लाया गया। और इतना ही नहीं, ये दुनिया का पहला इस तरह का फोर्टिफाइड अंडरग्राउंड अस्पताल है, और अब अलग अलग कॉन्फ्लिक्ट जोन से कई देशों के डॉक्टर्स, कई देशों के अस्पताल यहां पर देखने और सीखने आ रहे हैं कि भविष्य की लड़ाइयों में किस तरह से न सिर्फ अपने लड़ाकों का बल्कि आम नागरिकों का इलाज सुरक्षित परिस्थितियों में किया जा सकता है। कैमरा पर्सन सचिन चंडोक के साथ शिवानी शर्मा, हाइफा, रामबन, आज तक।

बकरीद को लेकर यूपी से बंगाल महाराष्ट्र तक अलर्ट। कोलकाता में नमाज की जगह बदली गई, लखनऊ और संभल में फ्लैग मार्च। मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज में बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बीच राज्यपाल ने इंदौर जाने से नया ट्विस्ट। सीएमओ सूत्रों का दावा, गवर्नर हाउस में इस्तीफा सौंप कर आएंगे सीएम, नहीं बदलेगा प्लान। डीके को मिल सकती है कमान। शिक्षा मामले में रद्द हुई गिरिबाला की अग्रिम जमानत। हाईकोर्ट माना जांच में सहयोग नहीं कर रही है। सीबीआई बोली प्रताड़ना और चोट के निशान की जांच होगी। शांति प्रस्ताव के बीच ईरान के बंदर अब्बास में फिर गिरी अमेरिका की मिसाइल। हॉर्मुज में अमेरिकी टैंकर्स को ईरान ने बनाया निशाना। ट्रंप बोले तेहरान के प्रस्ताव से संतुष्ट नहीं। सत्तानवे रन वाली सूर्यवंशी की तूफानी पारी में बिखर गया हैदराबाद। 47 रन से जीता राजस्थान, तोड़ दिया सिक्सर का रिकॉर्ड। अब क्वालिफायर टू में गुजरात से होगा मुकाबला।

कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया आज इस्तीफा दे सकते हैं। राज्यपाल से मुलाकात के लिए मांगा है समय। ब्रेकफास्ट मीट के बाद सिद्धारमैया के इस्तीफा देने की चर्चा, लेकिन राज्यपाल बेंगलुरु में मौजूद नहीं है। सूत्रों के मुताबिक कल हो सकती है विधायक दल की बैठक, शनिवार को हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने की सराहना की, बोले समान कानून लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। राहुल गांधी के आरोपों पर सीबीएसई ने दी प्रतिक्रिया, सभी आरोप को बताया गलत और भ्रामक। बोर्ड ने कहा कि पूरी टेंडर प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। सीबीएसई की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, कहा इनकार करना कोई जवाब नहीं, 18.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। शिक्षा मंत्री पर राहुल गांधी ने साधा निशाना, कहा शिक्षा मंत्री और सीबीएसई मेरे पूछे 4 आसान सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रहे हैं, बच्चे सच जाने के हकदार हैं। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इसे भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा बताया, बोले छात्रों का भविष्य प्रभावित। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों की समीक्षा की। नीट परीक्षा मामले में 2 आरोपियों को 10 जून तक न्यायिक हिरासत, दिल्ली कोर्ट ने 2 आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा। सीबीएसई के 3 भाषा नियम के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एनसीईआरटी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम से मिलने पहुंचे विजय, पीएम को गुलदस्ता भेंट करते हुए आई तस्वीरें। सूत्रों के हवाले से खबर, विजय ने पीएम से उन मांगों पर बात की जो केंद्र सरकार के सामने पेंडिंग है। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन, छापेमारी के दौरान बवाल, समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। समर्थकों के दौरान ईडी की गाड़ी पर फेंके पत्थर, बाल बाल बचे अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। ईडी ने दर्ज कराई एफआईआर, पूर्व सीएम विजयन के घर रेड के वक्त हुआ था अटैक। एसएफआईओ ने पिछले साल अप्रैल में वीणा विजयन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, आरोप है कि कंपनी ने भुगतान लेकर कोई भी सेवा शुरू नहीं की थी। ईडी की कार्रवाई के बाद केरल की राजनीति में हलचल तेज, विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताया। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सर्च ऑपरेशन छठे दिन जारी, सूत्रों के मुताबिक इलाके में लश्कर के 2 से 3 बड़े आतंकवादी छिपे हुए हैं।

छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया गया। अमर कॉलोनी गोलीकांड मामले की जांच दिल्ली पुलिस के सुपुर्द। अब क्राइम ब्रांच को केस ट्रांसफर। बीते मंगलवार को एक स्कूली छात्रा की गोली मारकर हत्या का यह मामला है। मणिपुर के एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली में गोपनीय मीटिंग करने आया था ये उग्रवादी। बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को सौंपी 142.79 एकड़ जमीन। शुभेंदु अधिकारी ने दी जानकारी। सीमा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम। बंगाल के 9 जिलों में बीएसएफ को दी गई जमीन। 600 किलोमीटर सीमा अब भी बिना फेंसिंग के। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर। कोर कमेटी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कंसा पासी किले में पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू महासभा पहुंची हाईकोर्ट। हिंदू महासभा का कहना है कि श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है।

पेशा शर्मा मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सास गिरबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। त्रिशा के पति आरोपी समर्थ को सीबीआई ने लिया हिरासत में, 3 घंटे समर्थ के घर में पूछताछ। समर्थ और गिरिबाला के साथ सीबीआई ने किया सीन रिक्रिएट। पेशा मौत मामले में एसआईटी ने कोर्ट को बताया 12 से 20 मई तक सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को लिखा है पत्र। देश भर में मनाया जा रहा बकरीद का त्यौहार, पीएम मोदी ने दी देशवासियों को बधाई, वाराणसी की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोग ईद उल अजहा की नमाज पढ़ रहे हैं। मुंबई की वाराणसी मैदान में लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की, लोगों ने एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। अजमेर में ईद उल अजहा पर खुला ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, बड़ी संख्या में लोगों ने की दुआएं। अजमेर में ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई, सुरक्षा व्यवस्था के तगड़े इंतजाम। पटना में ईद उल अजहा पर लोगों ने मस्जिदों में पढ़ी नमाज, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कड़े इंतजाम। पटना में बीजेपी नेता शहनवाज हुसैन ईदगाह में पढ़ी नमाज, बकरीद की दी बधाई। कोयम्बटूर में ईद उल अजहा की नमाज के लोगों का तांता, अमन शांति और तरक्की की कामना। देहरादून में ईद की नमाज अदा की गई, लोगों ने एक दूसरे को गले लगाकर बकरीद की बधाई दी। भोपाल में ईद की नमाज के लिए लगा लोगों का तांता, अमन शांति और तरक्की की कामना। देशभर में बकरीद को लेकर हाई अलर्ट पर प्रशासन, अजमेर शरीफ दरगाह में चादर चढ़ाने के लिए जुटे हजारों लोग, नमाज अदा कर मांगी गई अमन शांति की दुआ। दिल्ली की जामा मस्जिद में बकरीद की रौनक, प्रशासन द्वारा सुरक्षा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए कड़े इंतजाम। अलग अलग शहरों में बकरीद के मौके पर ईदगाहों और मस्जिदों में नमाजियों की रौनक, सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। उत्तर प्रदेश में बकरीद को लेकर प्रशासन का सख्त आदेश, सड़क पर नमाज और प्रतिबंधित पशुओं की कुर्बानी पर रोक। नोएडा में बकरीद और प्रस्तावित कार्यक्रम को देखते हुए गौतम बुद्ध नगर में 30 मई तक धारा 163 लागू, बिना अनुमति जुलूस प्रदर्शन सार्वजनिक नमाज पर रोक। कोलकाता में पारंपरिक रूप से रेड रोड पर होने वाली ईद की नमाज को शिफ्ट कर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित किया गया। संभल में बकरी को लेकर सुरक्षा के अभूतपूर्व इंतजाम, 5 जोन में 18 सेक्टर में बांटा गया है। आरआरएफ, पीएसी और पुलिस बल की तैनाती के साथ ड्रोन और 250 ज्यादा सीसीटीवी कैमरों से पूरे इलाके पर नजर। हापुड़ में ईद को लेकर अलर्ट मोड पर पुलिस, डीएम और एसपी के नेतृत्व में शहर में भारी पुलिस बल के साथ फ्लैग मार्च। मेरठ में संवेदनशील इलाकों में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, इस दौरान लोगों ने की पुष्प वर्षा। लखनऊ में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला, जेई से मारपीट। मेरठ में पिता पर दूसरी पत्नी के साथ मिलकर नाबालिग बेटी की हत्या करने का आरोप, आरोपी पिता और सौतेली मां हिरासत में। पटना में गंगा नदी में पलटी नाव, 3 लोगों की मौत, 7 लापता। हरदोई में गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर उपद्रव, पुलिस पर पथराव, पुलिसकर्मियों समेत कई घायल। हरदोई बवाल मामले में 2 गिरफ्तार, 10 से अधिक लोग हिरासत में, गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। गाजियाबाद में महिलाओं समेत 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे और लात घूंसे चले। नागपुर रत्नागिरी महामार्ग पर एलपीजी गैस टैंकर पलटा, ड्राइवर की मौत। वाशिम में गर्दन तक डूबकर गंदे नाले को साफ करता व्यक्ति, वीडियो वायरल। पुणे में शराब के नशे में तेज रफ्तार कार पुल से गिरी, 19 साल के युवक पर मामला दर्ज। भिलाई में कार शोरूम के जीएम को भेजे अश्लील मैसेज और छेड़छाड़ से परेशान महिला साफ, पुलिस के सामने जड़े थप्पड़। बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक और बाइक और ई रिक्शा को मारी टक्कर, 6 की मौत, कई घायल। संगरूर में सुबह साइकिलिस्ट पर कार सवार लुटेरों का हमला, मोबाइल लूटकर फरार। लोबन देकर धर्मांतरण कराने वालों पर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन, उधम सिंह नगर से 4 गिरफ्तार। हैदराबाद सनराइजर्स को हराकर क्वालिफायर 2 में पहुंची राजस्थान रॉयल्स। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को दी करारी शिकस्त, 4 गेंद रहते 47 रन से जीता मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने खड़ा किया 243 रन का विशाल स्कोर, जवाब में 196 रन पर ढेर हुई हैदराबाद सनराइजर्स। मैच के हीरो ने राजस्थान के रॉयल बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, 29 गेंद पर 97 रन की पारी खेली। सूर्यवंशी के बल्ले के सामने हैदराबाद की गेंदबाजों का सरेंडर, 334.48 के तूफानी स्ट्राइक रेट से नापा मैदान का हर कोना। आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे अधिक
और तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी में 16 गेंद में जड़ा अर्धशतक। आईपीएल के सीजन सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी सूर्यवंशी ने अपने नाम किया। 65 छक्के लगाए हैं, तोड़ा क्रिस गेल का 59 छक्कों का रिकॉर्ड। एक ही सीजन में तीन बार एक पारी में 10 या फिर ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बन गए हैं वैभव। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं वैभव। इस सीजन में अब तक बना चुके हैं 680 रन, इनमें से 610 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए वैभव, 29वीं गेंद पर 97 रन पर आउट हो गए। कल होगी आईपीएल फाइनल के लिए आखिरी जंग, न्यू चंडीगढ़ में होगा गुजरात और राजस्थान के बीच क्वालिफायर 2। वैभव की शानदार बल्लेबाजी को देखकर समस्तीपुर में जश्न का माहौल, लोगों ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशी। धुआंधार 97 रन की पारी के लिए काटा गया शानदार केक, फैंस का जोश हाई। दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए वैभव के मुरीद, वैभव की बल्लेबाजी की तकनीक की बारीकियों को सराहा। इस साल समंदर पार पहुंची वैभव, सूर्यवंशी की लोकप्रियता, WWE स्टार ड्रू मैकइंटायर ने वैभव के नाम की जर्सी पहनकर पोस्ट किया वर्कआउट वीडियो। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतल ने रचा इतिहास, 74.82 मीटर दूर फेंका भाला, तोड़ा अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार भारत का नाम किया रोशन, 2 बार पैरालंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं सुमित, 7 बार ध्वस्त किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुमित अंतल की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी बधाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा ऐतिहासिक प्रदर्शन। म्यूनिक में ISSF विश्व कप में ईशा सिंह ने भी शानदार विश्व रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की बेटी की इस उपलब्धि पर जताया गर्व, सोशल मीडिया पर लिखा भारत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भरा दिन है। बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कान में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरिया फिल्म फेस्टिवल में इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के लिए मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। अक्षय कुमार की प्रेडेटर एलियन थ्रिलर फिल्म सबक में दिखेगा हॉलीवुड का जादू, प्रेडेटर फिल्म का हिस्सा रहे एलेक गिलिस, डिजाइन कर रहे एलियन क्रीचर। कोलकाता में दादा द सौरव गांगुली स्टोरी बायोपिक की शूटिंग शुरू, मैदान ईडन गार्डन पर कैमरा क्रू संग नजर आए सौरव का किरदार निभा रहे हैं राजकुमार राव। ओटीटी के बाद बड़े पर्दे पर नजर आएगा कालीन भैया साम्राज्य, 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी। फिल्म नागाबंधा में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार के डबल रोल में नजर आएंगे ऋषभ साहनी।

इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान अमेरिका के बीच एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है। अमेरिकी हमले के बाद ईरान ने पलटवार किया है। मिडल ईस्ट के अमेरिकी बेसिस पर मिसाइल अटैक किया गया है। कुवैत ने अमेरिका बेसिस को निशाना बनाया है। हमले के बाद कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया है। आरजीसी ने बयान जारी कर कहा है कि उसने बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास एक ईरानी सैन्य ठिकाने पर अमेरिकी हमले का जवाब कुवैत में एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला करके दिया है। आरजीसी ने यह भी कहा कि यह जवाबी कार्रवाई गंभीर चेतावनी है ताकि दुश्मन को पता चल सके कि आक्रामकता को अनदेखा नहीं किया जाएगा और अगर यह दोहराई जाती है तो हमारी प्रतिक्रिया भी निर्णायक होगी। और इस बीच ईरान के पलटवार से पहले अमेरिका ने होर्मुज़ में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। पूर्वी बंदर अब्बास में अमेरिका ने हमला किया है। वहीं अमेरिकी अधिकारी ने दावा किया कि ईरान ने अमेरिकी कमर्शियल वेसल पर 4 ड्रोन दागे जिसमें अमेरिकी मिलिट्री ने मार गिराया है। ईरान के ड्रोन हमले को लेकर समाचार एजेंसी एक्सियोस ने खबर दी है। ऐसे हमलों के बाद पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ गया। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान ने हालात को गर्मा दिया है। ट्रंप ने ओमान पर ईरान का साथ देने को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। और अब बात गर्मी की। पहाड़ों में बढ़ती गर्मी के बीच उत्तराखंड और हिमाचल के कई जिलों में जंगलों की आग लगातार विकराल रूप ले रही है। विकासनगर के त्यूणी देवघार रेंज में भीषण आग से जंगल और सेब के बाग जलकर राख हो गए। चमोली के नारायण बगड़ क्षेत्र में संदिग्ध कारणों से जंगल में आग भड़क गई। चमोली के आदि बद्री में जंगल की आग की चपेट में आकर एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। टिहरी गढ़वाल में नई टिहरी और आसपास के जंगलों में आग लगातार फैल रही है। हिमाचल के सोलन कसौली क्षेत्र में आग बुझाने के लिए दमकल और हेलीकॉप्टर की मदद ली जा रही है। तेज गर्मी और सूखे मौसम के चलते वनाग्नि पर काबू पाना एक चुनौती है और ग्रामीण इलाकों में दहशत का माहौल है। फिलहाल रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए। टिकते रहिए आज तक।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं, क्योंकि ये भाई साहब सब पचा देते।
3: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से खा।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
7: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
11: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: पैसा बाजार सीपीएल में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
14: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो, जीतो।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
2: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील टीएमटी से बना।
3: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: इन एसोसिएशन विद
7: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
6: हिंट, बड़े आराम से
8: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
9: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
10: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
11: विमल, बोलो जुबा केसरी।
12: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
13: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस्ट पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस्ट पेपर से हूबहू मिलते हैं।
14: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
12: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
15: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
13: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
12: जहां खबर वहां खबरदार।
11: इन एसोसिएशन विद
16: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
17: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
18: CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized and the Prime Minister of India has nothing to say. Good morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. COEMT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana. Once in the board exam in Telangana in 2019 and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: गोल्डी छोले मसाले जहाँ जाए रिश्ते बनाए।
5: गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश।
6: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
7: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
8: 15 दिन पहले से पूरे देश में बंट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
6: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
9: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
7: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
6: जहां खबर वहां खबरदार।
10: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: साल भर से राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष दिल्ली से बिहार तक और बंगाल से तमिलनाडु तक शोर मचाता रहा कि SIR करके चुनाव आयोग देश के गरीब दलित पिछड़ों मुसलमानों के नाम काट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग को जो कानूनी हक मिला है वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 124 पन्नों के जजमेंट में जो फैसला सुनाया उसका लब्बो लुआब यही है कि SIR कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। देश का वोटर कौन होगा ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। सबूत में मांगे जा रहे 11 दस्तावेज उचित हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खोना नहीं है और नाम कटने वालों की नागरिकता पर 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई शुरू होनी चाहिए। वैसे तो चुनाव आयोग के SIR को विपक्षी दलों ने कांग्रेस के वोट चोरी वाले सियासी मुद्दे के साथ नत्थी कर दिया था। राजनीतिक दलों के साथ कई NGO नेताओं संगठनों समेत 20 अर्जियां SIR के खिलाफ डाली गई, लेकिन उन सभी अर्जियों में उठे सवालों पर कोर्ट का फैसला आया है। मसलन अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि RPA एक्ट 1960 और संविधान की धारा 324 के तहत पूर्ण अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग वोटर तय कर सकता है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने की जगह NRC तैयार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि SIR करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति ये भी थी कि SIR के बहाने बड़े पैमाने पर चुनिंदा लोगों के नाम काटे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नाम काटने वालों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अर्जियों में आपत्ति थी कि गरीब दलित मुस्लिम प्रवासियों के नाम काटने का खतरा है। कोर्ट ने कहा कि नाम कटने के 4 सप्ताह के भीतर नागरिकता पर सुनवाई जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही देश के सभी राज्यों में SIR कराने के लिए चुनाव आयोग को फ्री हैंड मिल चुका है। इसे लेकर BJP जहां कांग्रेस पर भ्रम की राजनीति का आरोप लगाती है तो याचिकाकर्ता इमरजेंसी की याद दिला रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट आवाजों की शिकायत ये है कि इस SIR में जिस तरह देश के वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं उसमें अब तक जिन राज्यों में प्रक्रिया पूरी हो चुकी है उनमें 7.2 करोड़ नाम कट चुके हैं, जिनमें UP में 2.04 करोड़, बंगाल में 83.86 लाख, तमिलनाडु में 97.3 लाख, गुजरात में 73 लाख, बिहार में 47 लाख, मध्य प्रदेश में 42 लाख, राजस्थान में 41,80,000 और केरल में 24,08,000 नाम काटे जा चुके हैं। उनमें मृत, स्थानांतरित, फर्जी, संदिग्ध चारों तरह के मतदाता हैं जिनके नाम वोटर लिस्ट से हटाकर उस लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है। लेकिन इस चक्कर में बंगाल के 27 लाख वोटर्स के साथ जो हुआ उस सवाल का जवाब बाकी रह गया, क्योंकि बंगाल में करीब 27 लाख लोगों के नाम पर फैसला नहीं हो सका है कि वो भारत के वोटर है या नहीं। वोटर नहीं है तो नागरिक है या नहीं, क्योंकि उनकी सुनवाई के लिए कहने को 19 ट्रिब्यूनल बनाए गए, लेकिन सुनवाई 27 लाख में 27,000 की नहीं हो सकी। ट्रिब्यूनल में रिटायर्ड जजेस को रखना था लेकिन वो कहां बैठेंगे दफ्तर तक तय नहीं था। जिन वोटर्स के नाम लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी में डाला गया था उनके नए दस्तावेज को मंजूर करने की गाइडलाइन नहीं थी। ऊपर से आवेदन ऑनलाइन करना था जिसमें गरीब, मजदूर, अशिक्षित लोग उलझ गए। ऊपर से सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया रोज रोज की सुनवाई वाली कोई परेशानी है तो हाईकोर्ट जा सकते हैं। हालांकि इस मामले में सुनवाई में साफ हो चुका है कि वोट देना संवैधानिक अधिकार नहीं है, फिर भी विपक्षी दलों की ओर से SIR को लेकर अब भी तमाम सवाल खड़े किए जा रहे हैं। संजय शर्मा, दिल्ली आज तक।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव TV को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

लेकर उत्तर प्रदेश से बंगाल महाराष्ट्र तक अलर्ट। कोलकाता में नमाज की जगह बदली गई। लखनऊ और संभल में फ्लैग मार्च। मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज में बढ़ाई गई सुरक्षा। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन के बीच राज्यपाल के इंदौर जाने से नया ट्विस्ट। मुख्यमंत्री दफ्तर के सूत्रों का दावा, गवर्नर हाउस में इस्तीफा सौंप कर आएंगे सीएम, नहीं बदलेगा प्लान, डीके को मिल सकती है कमान। त्रिशा केस में रद्द हुई गिरिबाला की अग्रिम जमानत। हाईकोर्ट ने माना जांच में सहयोग नहीं कर रही। सीबीआई बोला प्रताड़ना और चोट के निशानों की जांच। शांति प्रस्ताव के बीच ईरान के बंदर अब्बास में फिर गिरी अमेरिका की मिसाइलें। हॉर्मुज में अमेरिकी टैंकर्स को ईरान ने बनाया निशाना। कुवैत में अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें। 97 रन वाली सूर्यवंशी की तूफानी पारी में बिखर गया हैदराबाद। 47 रनों से जीता राजस्थान, तोड़ दिया सिक्सर का रिकॉर्ड। अब क्वालिफायर 2 में गुजरात से होगा मुकाबला।

नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। मॉर्निंग प्राइम टाइम आज सुबह में आपके साथ एक बार फिर से हाजिर है। इस खास पेशकश में आगे बढ़ने से पहले बता दें कि आपके लिए क्या क्या खास है। आगे बात होगी कर्नाटक की, जहां बदलाव को लेकर फुल एक्शन है। सिद्धरमैया काल खत्म हो गया है और आज वो कुर्सी छोड़ने वाले हैं, लेकिन राज्यपाल बेंगलुरु में है ही नहीं, मुंबई रवाना हुए और वहां से इंदौर जा पहुंचे हैं। साथ ही बताएंगे कि बंगाल में शुभेंदु राज में कैसे पढ़ी जा रही है बकरीद की नमाज, क्यों रेड रोड पर पसरा है सन्नाटा, क्यों ब्रिगेड परेड मैदान गुलजार है, और बताएंगे कि ट्विशा मौत मिस्ट्री की जांच कहां तक पहुंची है, क्यों घेरे में आ गए हैं पति समर्थ और सास गिरीबाला। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं कर्नाटक की।

0: तो आज सुबह में आइए सबसे पहले चलते हैं बेंगलुरु, जहां सिद्धरमैया के घर पर फेयरवेल ब्रेकफास्ट यानी कि नाश्ते की तैयारी है और इसके लिए सारे मंत्री जो हैं वो जुटने भी लगे हैं। डीके शिवकुमार जो कि उप मुख्यमंत्री हैं वो भी इस स्पेशल नाश्ते में पहुंचे हैं। उनके लिए यहाँ पर जो परोसा जा रहा है केसरी भात, उसका जायका कुछ खास ही रहेगा। वो सिद्धरमैया की जगह कर्नाटक के मुख्यमंत्री बनने वाले हैं ऐसा सूत्र बता रहे हैं, लेकिन मामले में ट्विस्ट राज्यपाल ने दे दिया है क्योंकि सिद्धरमैया दोपहर 3 बजे राज्यपाल थावरचंद गहलोत से मुलाकात करने वाले थे, लेकिन वो मुंबई के लिए रवाना हो गए, यानी कि गवर्नर साहब मुंबई चले गए जहां से वो अब इंदौर पहुंच गए हैं। तो सवाल ये है कि क्या आज सिद्धरमैया का इस्तीफा होगा? जो सूत्र है वो यही बता रहे हैं कि होगा, और क्या डीके शिवकुमार की ताजपोशी का रास्ता साफ हो जाएगा या नहीं, इस पर रहेगी हमारी नजर। तो चलिए आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि वहां क्या चल रहा है। सबसे पहले सिद्धरमैया जब ब्रेकफास्ट मीटिंग के लिए पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें जो हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं, मुलाकात लगातार अपने मंत्रियों से वो करते आए हैं खाने पे, नाश्ते पे, और ये पहली ब्रेकफास्ट मीटिंग नहीं है जब से ये पूरा मुद्दा उछला है। लगातार कई बार ऐसी मीटिंग्स हुई हैं, पर इस सब के बीच में ट्विस्ट तब आया जब राज्यपाल, कहा जा रहा है कि कुछ अपने फैमिली मैटर्स यानी कि पारिवारिक वजहों से चले गए हैं इंदौर। तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की घड़ी आ गई है, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया का दौर अब खत्म होने जा रहा है, डीके शिवकुमार सत्ता की कमान संभालने की तैयारी में है। ये सब 2.5 साल वाले फॉर्मूले के तहत हुआ है, लेकिन इसे लागू करवाना आसान नहीं रहा।
1: नाश्ते का जायका सिद्धारमैया के लिए भले ही अच्छा न हो, लेकिन डीके जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इस फेयरवेल ब्रेकफास्ट मीटिंग के साथ सिद्धारमैया काल खत्म हो रहा है, तो डीके राज का आगाज होने जा रहा है। मंत्रियों के साथ फेयरवेल मीटिंग के बाद सिद्धारमैया को सीधे राजभवन जाना था। दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात तय थी। माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन ठीक इसी वक्त कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत अचानक इंदौर रवाना हो गए। राजभवन की तरफ से कहा गया कि फैमिली इमरजेंसी है। 3 बजे मुलाकात तय, राज्यपाल इंदौर रवाना, फैमिली इमरजेंसी का हवाला। अब सवाल उठा, क्या इस्तीफा टल गया? क्या सियासी समीकरण फिर बदल रहे हैं? असल में संवैधानिक प्रक्रिया कुछ और कहती है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा सिर्फ आमने सामने मुलाकात से ही मान्य हो ऐसा जरूरी नहीं। सीएम अपना इस्तीफा राजभवन सचिवालय को लिखित रूप में सौंप सकते हैं। ईमेल या आधिकारिक पत्र के जरिए भी इस्तीफा वैध माना जाता है।
2: गवर्नर थावरचंद गहलोत कल रात 10:30 बजे उनके घर से निकल गए हैं। 11:30 बजे उनका फ्लाइट था मुंबई, मुंबई से इंदौर जा चुके हैं। उनका फैमिली इमरजेंसी है, इसी वजह से वो लोग इमरजेंसी के वजह से वो लोग रात 10:30 बजे निकल गए। अब इस गवर्नर ऑफिस के मुताबिक अभी तक उनका रिटर्न फ्लाइट अभी तक बुक नहीं हुआ है, मगर हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से बात किया था। उन लोगों ने कहा है कि वहाँ पे एक प्रोविजन है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर फिर भी गवर्नर सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं।
1: यानी तकनीकी तौर पर रास्ता साफ है, अगर कांग्रेस हाईकमान ने फैसला कर लिया है तो सत्ता परिवर्तन रुकने वाला नहीं। दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2023 विधानसभा चुनाव के बाद। कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली, लेकिन जीत के तुरंत बाद शुरू हो गई मुख्यमंत्री की लड़ाई। कई दिनों तक दिल्ली में बैठकों का दौर चला, आखिरकार हाईकमान ने एक समझौता कराया। फॉर्मूला बना कि पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर 2.5 साल डीके शिवकुमार को मौका मिलेगा। कांग्रेस ने कभी आधिकारिक तौर पर इस फॉर्मूले को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन पार्टी के अंदर ये व्यवस्था सबको पता थी। समस्या तब शुरू हुई जब 2.5 साल पूरे होने लगे, डीके खेमे ने सत्ता हस्तांतरण का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन सिद्धारमैया आसानी से कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं थे। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थक डील की याद दिलाते रहे। आखिरकार मामला सीधे गांधी परिवार तक पहुंचा। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से वन टू वन बातचीत की, बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को किए गए वादे अमल करने को कहा, उन्हें इस्तीफे के लिए मनाया, उन्हें दिल्ली आने का ऑफर दिया। इसके बाद माहौल बदलने लगा, दिल्ली से संकेत मिलने लगे कि अब डीके शिवकुमार की ताजपोशी तय है और आज की हलचल उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है। सिद्धारमैया जनाधार वाले नेता हैं, जबकि डीके शिवकुमार संगठन और संसाधनों के मास्टर माने जाते हैं। अगर सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण रहा तो कांग्रेस दक्षिण भारत में मजबूत संदेश देगी, लेकिन अगर खींचतान बढ़ी तो बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल सकता है। सगई राज के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक।
0: तो आज एक बेहद अहम दिन है अगर आप कर्नाटक के नजरिए से देखें, क्योंकि बेंगलुरु में जो गहमा गहमी चल रही है वो सब आखिरकार एक तरीके से चरम है, जो बहुत दिन से घटनाक्रम होता आ रहा था उसका। तो आइए आपको दिखा देते हैं एक बार कि दरअसल क्या चल रहा है वहां पर। आज 3 बजे की एक मुलाकात तय है, जिसमें आज इन राज्यपाल से मुलाकात होनी थी और मुख्यमंत्री को जाना था मिलने के लिए, और ऐसा क्या हुआ कि मुख्यमंत्री जब जाने वाले थे और ये सब तय था, लेकिन इसके बावजूद फैमिली इमरजेंसी हुई ये कहा जा रहा है, उसकी वजह से जो राज्यपाल हैं वो चले गए, वो अभी इंदौर पहुंच चुके हैं। तो 3 बजे की मुलाकात का क्या होगा, कहा यह जा रहा है कि जो इस्तीफा देने का काम है वो जरूर किया जाएगा, और ये मुख्यमंत्री के दफ्तर से सूत्र हमें बता रहे हैं। तो इस वक्त सिद्धारमैया काल खत्म होने के कगार पर है और डीके शिवकुमार का वक्त शुरू होने की बात कही जा रही है, लेकिन क्या ये आज हो पाएगा, रास्ता साफ हो पाएगा या नहीं, ये इस पर हमारी लगातार चर्चा रहेगी। अब चलिए सीधा रुख करते हैं बेंगलुरु का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी सगय राज, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वहां क्या हो रहा है। सगय, नाश्ते की तैयारी है और मेन्यू लीक हो चुका है, हमें पता है इडली डोसे और केसरी भात भी सर्व होने वाला है, लेकिन क्या आज होगा अंदर इस मीटिंग में, ये भी लीक हुआ है आपके सोर्सेस के थ्रू?
2: देखिए, जो भी मीटिंग आज होगा वो पूरा यूनाइटेड फ्रंट मीटिंग होगा, जहाँ पे वो लोग सब लोग दिखाना चाहते हैं कि हम पूरा यूनाइटेड है, हमारा पास कुछ भी अभी इंडिफरेंसेस नहीं है, क्योंकि जो भी बातचीत करना था चीफ मिनिस्टर के साथ, उनके लॉयलिस्ट हो, उनका मिनिस्टर्स हो, MLAs हो, कल ही बातचीत कर चुके हैं, जहाँ पे बहुत ज़्यादा MLAs और मिनिस्टर भी ये भी सजेशन दिया है कि मुख्यमंत्री को कि आप इस्तीफा नहीं देना चाहिए और हाईकमांड को बताना चाहिए और उनके विरुद्ध जाना चाहिए करके उन लोगों ने बताया। और थोड़े लोग भी ये भी कहा है कि हम सिग्नेचर कैंपेन भी शुरू करेंगे, जहां पे हम पूरे जो भी सिद्धारमैया का सपोर्ट का MLAs है, मिनिस्टर से उनका सिग्नेचर लेंगे और हाईकमांड को देंगे। मगर सिद्धारमैया उनकी बात नहीं सुनी, उन्होंने कुछ भी रिप्लाई नहीं किया, उनके जो भी सजेशन किया उसको एक्सेप्ट भी नहीं किया, और उन्होंने कहा जो भी आप कह रहे हैं मैं सुन रहा हूं, मगर कल आपके साथ बात करूंगा। अभी जो भी मीटिंग है, जो खाली ग्रीट करने का मीटिंग है, एक तुझे से सब लोगों को मिलकर ग्रीट करेंगे, क्योंकि पूरे कैबिनेट मिनिस्टर्स है, ये लोग भी जानते हैं कि इफ डीके शिवकुमार चीफ मिनिस्टर बन गए तो उनके साथ ही काम करना पड़ेगा। सो शायद यहाँ पे अभी बहुत से ज़्यादा पॉलिटिक्स बात नहीं होगा, एक लोग ग्रीट करेंगे, बोलेंगे अभी क्या हुआ है हाईकमांड, उसके हिसाब से हाईकमांड जो कहा है उसके हिसाब से जाएंगे, मगर पॉलिटिक्स अंदर ही अंदर शुरू होगा। तकरीबन 3 बजे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लोकभवन जाएंगे और वहां पे इस्तीफा देंगे। सूत्रों के अनुसार गवर्नर तवरचंद गहलोत कल रात 10:30 बजे बेंगलुरु से निकल गए थे, 11:30 बजे फ्लाइट था उनको मुंबई के लिए और मुंबई से इंदौर पहुंच गए थे। उनका फैमिली मेंबर बीमार पड़े हैं, इसी वजह से उन लोगों को इमरजेंसी के वजह से वो उनको इंदौर जाना पड़ा। और कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन भी है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर गवर्नर सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं। अभी क्या कर सकते हैं गवर्नर ऑफिस को भी प्रेरोगेटिव है एक्सेप्ट करना क्या नहीं, उनके प्रेरोगेटिव है, एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, मना भी कर सकते हैं, नहीं तो बोलेंगे गवर्नर के पास आप दे सकते हैं। अभी कुछ इंस्ट्रक्शंस नहीं आया है, जो अपॉइंटमेंट लिया है वो ऐसा ही है, कैंसिल नहीं हुआ है। 3 बजे मुख्यमंत्री सिद्धारमैया लोकभवन जाएंगे और इस्तीफा देंगे।
0: जी सगय, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए, और इस पर रहेगी हमारी नजर। लेकिन अब रुक करते हैं दूसरी बड़ी खबर का। आज बकरीद है, शहर शहर से स्पेशल नमाज की तस्वीरें भी आ रही हैं। आपको आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हम नमाज की तस्वीरें दिखाएंगे। त्यौहार आमतौर पर शांति, सौहार्द और भाईचारे का मौका होता है, लेकिन सड़कों पर नमाज और कुर्बानी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी और विवाद हुआ है, उसके बाद कई जगह तनाव भी है और पुलिस को बंदोबस्त भी करने पड़ रहे हैं। एक तरफ जहां बकरीद पर स्पेशल नमाज की तस्वीरें आ रही हैं, दूसरी तरफ पुलिस फ्लैग मार्च की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। कहीं कोई शरारती तत्व माहौल बिगाड़ने की कोशिश न करे, इसे लेकर पुलिस आज मुस्तैद है। तो आइए सीधा रुख करते हैं लखनऊ का, जहां से जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव। समर्थ, लखनऊ से कल ही हम एक विवाद की बात कर रहे थे जिसकी वजह से तनाव था, आज वहां स्थिति कैसी है? क्या सुबह की नमाज शांतिपूर्ण तरीके से हुई और आगे की नमाजों के लिए क्या तैयारी है?
3: देखिए, हमने आपको टीले वाली मस्जिद की तस्वीरें दिखाई जहां शांतिपूर्ण तरीके से नमाज हुई। आपको हम अब लेकर आ रहे हैं ऐशबाग का ईदगाह, जहां पर भारी पुलिस बल की तैनाती है। आपको पहले तस्वीरें दिखा देते हैं। यहां पर जो नमाजी हैं वो शांतिपूर्ण तरीके से यहां नमाज अदा कर रहे हैं, और जो उच्च अधिकारी पुलिस के हैं वो यहां पहुंचे हुए हैं, साथ में सिविल डिफेंस की टीमें हैं। पूरे एरिया को बैरिकेड किया गया है। हमारे साथ ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार जी इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरीके से आप लोगों ने अरेंजमेंट्स यहां पर किए हैं, क्या कुछ तैयारी है?
4: देखिए, आज ईद बकरीद की नमाज थी और हम लोगों ने अपनी तैयारियां जो है वो काफ़ी दिनों से करी थी। सभी थाने के स्तर पे, चौकियों के स्तर पे लोगों के साथ बातचीत, डायलॉग जो है वो हमारी प्रमुख जो है पार्ट था स्ट्रेटजी का। लोगों से बातचीत हुई, अपील हुई और लोगों को बताया भी गया था। आज जो है पूरी बंदोबस्त हम लोगों ने व्यापक तौर पे यहाँ किया हुआ था। यहाँ आप देखेंगे कि पुलिस भी है, पीएसी भी है, आरएएफ भी है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं और जो हमारे अन्य जो डिपार्टमेंट हैं, नगर निगम के भी लोग हैं, ताकि सारी व्यवस्थाएँ जो है बहुत अच्छे ढंग से हो।
3: सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री का आदेश हुआ था, आप लोगों ने कैसे डायलॉग इस्टेब्लिश किया है?
4: देखिए, नमाज या कोई भी धार्मिक चीज़ें इस प्रकार से ना हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को असुविधा हो, और ये चीज़ हमारी मीटिंग्स में, हमारी जो पीस कमेटी की बैठक में है, हमारे धर्म गुरुओं के साथ बैठकों में इन बात को रखी गई और लोगों ने, आप देख रहे हैं कि ये पूरा एरिया जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। हमारे ऑलमोस्ट अभी तक 95% जगहों पर हमारे नमाज संपन्न हो गए हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सामने।
3: कुर्बानी भी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में होंगी जैसा कि सीएम की तरफ से आदेश दिया?
4: देखिए, इस नमाज के बाद कुर्बानी होगी और कुर्बानी जो परंपरागत स्थानों पे होती रही है वहाँ होती रहेंगी। उसको हम लोगों ने मैन भी कर लिया, हमारी फोर्स डिप्लॉयड है, नगर निगम के लोग डिप्लॉयड हैं, ताकि किसी तरह की कोई अन्य दिक्कतें जो है लोगों को ना हो।
3: बात करने के लिए आप सुनो, जॉइंट सीपी को यहाँ पर डीसीपी आपको दिखाई पड़ेंगे, तमाम उच्च अधिकारी और भी मौजूद है।
0: जी समर्थ, शुक्रिया आपका। तो जाहिर तौर पर जैसा कि हमने देखा, लखनऊ में मामला शांत रहा है, लेकिन अब रुक करते हैं बंगाल का, जहाँ बंगाल में सरकार बदली तो नमाज की जगह भी बदल गई। ममता राज में कोलकाता के रेड रोड पर नमाजी जुटते थे, इस बार वहां सन्नाटा है। नमाज के लिए वहां से 1.5 किलोमीटर दूर ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज की इजाजत दी गई है, और वहां पर स्थिति कैसी रही ये जानने के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी अनुपम मिश्र का, जो कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड पे ही सुबह से मौजूद रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे अनुपम, पूर्वी भारत में सबसे बड़ी ईद की नमाज जो होती है उनमें से एक ये रेड रोड की नमाज रही है, अब उसको जब ट्रांसफर किया गया, शिफ्ट किया गया, तो उसके बाद इस बार क्या यह नमाज अच्छे तरीके से और पीसफुल तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हुई?
5: जी देखिए, कोलकाता में रेड रोड पर जो नमाज होती थी सुबह 8 से 9 के बीच हो जाती थी, आज भी जो नमाज हुई, जो शिफ्ट किया गया ब्रिगेड परेड ग्राउंड में, वो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ। नमाज हो चुकी है काफी देर पहले, अब लोग चले भी गए हैं, लेकिन जो इंतजाम किए गए थे, जो दरी चादर बिछाई गई थी, वो अभी उठाने का काम चल रहा है। तो यहां पर जो नमाज हुई है, नमाज के बाद हमने नमाजियों से बात भी की, मिक्स्ड रिएक्शन मिले, काफी लोग खुश दिखे, कहा कि अच्छे से हो गई, सड़क भी, यातायात भी नहीं रुका। कुछ लोगों ने कहा कि जो जमीन थी वो प्लेन नहीं की गई थी, जमीन अगर प्लेन होती तो अच्छा होता, लेकिन मुझे लगता है कि इस बार बहुत जल्दबाजी में ये हुआ है, समय कम मिला है, इस वजह से हो सकता है कि इंतजाम में थोड़ी कमी हो सकती है, लेकिन अगले साल से अगर पहले से इंतजाम किए जाए तो यहां पर ये जो ब्रिगेड परेड ग्राउंड है इतना बड़ा मैदान है कि लाखों लोग भी अगर आए तो कोई दिक्कत नहीं होगी और सड़कें खुली रहेंगी, क्योंकि कोलकाता की रेड रोड पर जो नमाज होती थी वो उसमें भी काफी बहुत बड़ी संख्या में लोग आते थे, हजारों की संख्या में लोग शामिल होते थे। इस बार भी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हजारों की संख्या में लोग
0: बिल्कुल
5: शामिल,
0: चलो लेकिन सड़क... अच्छी बात ये रही अनुपम कि सब कुछ शांतिपूर्ण तरीके से निपट गया। एक और खबर आपके लिए लेकर आ रहे हैं पश्चिम बंगाल से ही, राजनीति से जुड़ी हुई बड़ी खबर। टीएमसी सांसद काकुली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को पत्र लिखकर टीएमसी के चीफ व्हिप कल्याण बैनर्जी की शिकायत की है। काकुली घोष ने कल्याण बैनर्जी पर लोकसभा के भीतर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया है। शिकायत पत्र 28 मई 2026 तारीख का लिखा हुआ है। महिला सांसदों के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार का आरोप काकुली घोष ने लगाया है। काकुली घोष ने लोकसभा स्पीकर से औपचारिक शिकायत दर्ज कराने की अनुमति मांगी है। काकुली घोष ने पत्र में लिखा है कि कल्याण बैनर्जी ने कई महिला सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार किया है और करते रहे हैं। टीएमसी सांसद काकुली घोष मामले में कार्रवाई और सजा की भी मांग कर रही है। विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद ममता बैनर्जी ने काकुली घोष को टीएमसी के चीफ व्हिप से हटाकर कल्याण बैनर्जी को यह ओहदा दे दिया था। उसके बाद पार्टी के संसदीय दल में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है और फूट पड़ती हुई नजर आ रही है, जिसका सबसे बड़ा प्रमाण यही है कि काकुली घोष ने एक ऐसा पत्र लिख डाला है अपने ही पार्टी के सीनियर लीडर सीनियर नेता सहयोगी के खिलाफ, जिसमें वो चाहती हैं कि कार्रवाई की जाए और जो आरोप लगे हैं वो बेहद चिंताजनक है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी हिमांशु मिश्रा का। हिमांशु, काकोली नाराज हैं ये तो सबको मालूम था, लेकिन इतना बड़ा आरोप लगाना कि महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार, और वो भी एक फॉर्मल चिट्ठी लिखकर, अब चाहती हैं कि शिकायत दर्ज हो।
6: देखिए बिल्कुल, लोकसभा स्पीकर को काकुली घोष ने जो है चिट्ठी लिखी, उन्होंने कहा कि उनके साथ ही नहीं बल्कि अन्य लोकसभा की जो सांसद महिला सांसद है उनके साथ भी जो है कल्याण बैनर्जी जो है वो दुर्व्यवहार करते हैं, अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। कल उन्होंने लोकसभा स्पीकर को ये पत्र लिखा था, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। इससे पहले भी एक बार व्हाट्सएप चैट जो है वो बाहर आया था, जब टीएमसी के महिला सांसद और कल्याण बैनर्जी और अन्य लोगों के साथ जो उनके व्हाट्सएप चैट है उसमें जिस तरीके के भाषा का प्रयोग हुआ था, तो कहीं ना कहीं ये मानकर चला जा सकता है कि कल्याण बैनर्जी के खिलाफ अब जो काकुली घोष ने एक तरीके से मुहिम चलाई है और अब स्पीकर को चिट्ठी लिखना, ये साफ दर्शाता है कि टीएमसी के संसदीय दल के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, और इसका कहीं ना कहीं फायदा जो है वो सरकार को भी मिलेगा अगर टीएमसी बटी नजर आएगी। और काकुली घोष ने कल ही अपने पार्टी के सभी जो संगठन के पद है उनसे इस्तीफा दिया और कल फिर चिट्ठी लिखना, ये बताता है कि काकुली घोष जो है पार्टी आलाकमान से कितनी नाराज है। और कल्याण बैनर्जी को लेकर ये पहली बार ऐसा मामला सामने नहीं आया, मैंने पहले भी बताया कि व्हाट्सएप चैट जो पार्टी के सांसदों का एक व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें भी इस तरीके की भाषा का प्रयोग जो है वो हुआ था, तब कल्याण बैनर्जी के ऊपर एक महिला सांसद जो टीएमसी की है उन्होंने भी ये आरोप लगाया था। तो एक तरीके से कहीं ना कहीं कल्याण बैनर्जी जो है इस मामले पर अब भूते नजर आ रहे हैं। अब देखना यह है कि लोकसभा स्पीकर इस पूरे मामले पर क्या कार्रवाई करते हैं, क्या कल्याण बैनर्जी के खिलाफ कोई जो है वो कार्रवाई की जाएगी या उनको नोटिस भेजा जाएगा कि आप पार्टी की महिला सांसदों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार कर रहे हैं और ये मामला एथिक्स कमेटी को भेजा जा सकता है या प्रिविलेज।
0: शुक्रिया हिमांशु इस पूरी जानकारी के लिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है, आप देखते रहिए आज तक।
7: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
8: TuneIn has the music.
9: Take a vacation with poolside hits on TuneIn.
10: TuneIn Poolside has the music I love.
9: Vibe out in your poolside cabana with hits from iconic artists like Calvin Harris, Avicii.
11: Let's go. Yeah, you live this world. Bloom, and more. Listen to the best blend of house, techno, trance, and more from the hottest DJs. And get your pool party started. Just search Poolside or ask your device to play Poolside on TuneIn. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
14: सोच बदलो और बैंक भी.
15: और वही कहाँ गए थे घूमने?
16: जीके मैक्स.
17: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
16: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
18: जेके वॉल मैक्स
19: बेस्ट पेंट,
20: जेके मैक्स.
21: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ
22: JK Max Paints. खुशियों के रंग.
23: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था.
24: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था.
25: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते. म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ.
26: म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए. अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
27: नहीं,
26: और म्यूचुअल फंड से
27: सही.
28: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है. योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें.
29: बस 2000
30: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा.
31: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: एक तस्वीर सामने आई है जिसका सियासी मतलब काफी बड़ा है। चलिए आपको दिखाते हैं वो तस्वीर। इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज, इस तस्वीर को हम दिखा रहे हैं। ये तो गले मिलने की तस्वीर है जिसमें डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया गले मिल रहे हैं, तो सौहार्द है। लेकिन ये तस्वीर देखिए, डीके शिवकुमार सिद्धरमैया के पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए दिख रहे हैं। ये तस्वीर इस बात की भी तस्दीक कर रही है कि सिद्धा काल खत्म हो गया है। डीके कर्नाटक के बॉस बनने जा रहे हैं और उनका आशीर्वाद चाहते हैं। जो मुख्यमंत्री रहे हैं, कद्दावर नेता हैं, उनका साथ रहे, आशीर्वाद रहे, यही उनकी इच्छा रहेगी। और ये तस्वीर अहम हो जाती है इस वक्त जब माना यह जा रहा है कि सिद्धरमैया बहुत खुश नहीं है इस फरमान से जो कि उनको हाई कमान की तरफ से दिया गया है कि आप अब इस गद्दी को, इस कुर्सी को डीके शिवकुमार को दीजिए और केंद्र की राजनीति माफ कीजिएगा, उसमें सहयोग दीजिए। सिद्धरमैया की ये तस्वीर गले मिलते हुए डीके शिवकुमार के साथ, दोनों के बीच जद्दोजहद लंबी रही है। बहुत दिनों से, बिहार के चुनाव होने से पहले से इस पर कयास लगाए जा रहे थे कि शायद सिद्धरमैया अब अपनी कुर्सी छोड़ देंगे, लेकिन लगातार ऐसा हुआ नहीं। अब शायद वो दिन आ गया है। इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रही हैं अपूर्वा। अपूर्वा, ये जानना चाहेंगे, ये जो तस्वीर खास तौर पे आज हम देख रहे हैं वो ब्रेकफास्ट मीटिंग यानी सुबह का जो नाश्ता था, जो बैठक थी, उसके दौरान हुई है। दोनों नेताओं के बीच किस तरह के रिश्ते ये दर्शाती है और आज जो मीटिंग है, जो ब्रेकफास्ट है, वो क्यों अहम है दोनों के रिश्तों के लिए?
1: ये बहुत ही इम्पोर्टेंट मीटिंग होगा क्योंकि आज जब ये दो बॉडी लैंग्वेज व्यवहार है, आप देख सकते हैं जैसे
0: जी अपूर्वा, आप, हम आपसे संपर्क करने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको ये बता दें कि ये मीटिंग बहुत ज्यादा अहम इसलिए है क्योंकि एक तरीके से आज माना जा रहा है कि आज सिद्धरमैया जब अपना इस्तीफा दे देंगे, जो कि 3 बजे का वक्त तय था, उसके बाद शायद डीके शिवकुमार ही हैं जो अगले मुख्यमंत्री बनेंगे। तो चलिए तस्वीरें जो इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं उनको थोड़ा सा डिकोड कर देते हैं आपके लिए। एक तरफ डीके शिवकुमार झुककर, पैर छूकर आशीर्वाद लेते हुए मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के, आज तक के शायद वो मुख्यमंत्री रहेंगे, और दूसरी तरफ आप उनको देख रहे हैं जो मीटिंग की तस्वीरें आ रही है उसकी। तो चलिए उस बड़ी खबर पर रहेगी हमारी नजर, लेकिन अब रुक करते हैं ट्विशा मौत मिस्ट्री का, जिसे लेकर सीबीआई जांच तेज हो गई है। ट्विशा के ससुराल वालों पर शिकंजा कसता जा रहा है। पुलिस समर्थ को कस्टडी में लेकर सवालों की बौछार कर रही है। सीबीआई ने कोर्ट में कहा था कि ट्विशा के शव पर चोट को लेकर समर्थ गोलमोल जवाब दे रहा है, तो सास गिरिबाला पर गिरफ्तारी की तलवार अब लटक रही है। गिरिबाला की अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई है। सीबीआई सूत्रों का दावा है कि गिरिबाला ने सबूतों के साथ छेड़छाड़ की है।

0: कई सवाल उठ रहे हैं इस मामले में, समर्थ पर सवाल उठ रहे हैं जो कि पति है, और ये पूछा जा रहा है कि क्यों समर्थ ने आखिर मोमेंट्स थे जो थे टुषा के, उस वक्त क्यों वो चला गया, भाग गया। और दूसरी तरफ जो सास है गिरिबाला, उसकी अग्रिम जमानत जो थी उसे रद्द कर दिया गया सीबीआई के कहने पर। तो आइए, किस तरह का माहौल रहा गिरिबाला के घर पर जब ये बेल जो उन्हें दी गई थी, जमानत दी गई थी, उसके बाद, उसके रद्द होने के बाद क्या हुआ वहां पर, जानने के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी रवीश की इस रिपोर्ट का।
1: तुषा मौत मामले में एक बड़ा अपडेट सामने आया है। बुधवार तुषा की मौत मामले में बुधवार देर रात

0: को जबलपुर हाई कोर्ट ने त्विशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल हाई कोर्ट में मध्य प्रदेश सरकार ने बुधवार सुबह कई तर्क दिए थे कि क्यों गिरिबाला सिंह की जो ये अग्रिम जमानत है उसे खारिज किया जाए, जिसके बाद बुधवार देर रात को ये आदेश आया जिसमें गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई है। हम इस वक्त गिरिबाला सिंह के घर पर मौजूद है, वही घर जहां पर बुधवार को तकरीबन 3 घंटे तक सीबीआई ने रिक्रिएशन करके ये जानने की कोशिश की कि 12 मई की रात को आखिर हुआ क्या था और किन परिस्थितियों में त्विशा की मौत हुई थी। और यहां से समर्थ को लेकर सीबीआई अपने साथ रवाना हो गई थी। फिलहाल समर्थ सीबीआई की कस्टडी में है और अब जब हाईकोर्ट ने भी याचिका अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया है जो कि भोपाल कोर्ट से मिली हुई थी, तो उसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या अब सीबीआई गिरिबाला सिंह को भी गिरफ्तार कर सकती है। लेकिन इन सबके बीच में ये जानना जरूरी है कि सीबीआई और एसआई मध्य प्रदेश सरकार ने जो तथ्य सामने रखे थे उसके बाद जबलपुर हाईकोर्ट ने क्या कुछ कहा है। जबलपुर हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि लोअर कोर्ट ने जब जमानत दी थी तो मामले की गंभीरता को ठीक से देखा नहीं गया, ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और सबूतों को भी ठीक से देखा नहीं, उन पर विचार नहीं किया। दूसरी तरफ आरोपी पक्ष भी त्विशा के शरीर पर जो चोटों के निशान है उसका जवाब नहीं दे रहा है। कोर्ट ने यह भी कहा कि आरोपी जो है वो जांच में पूरा सहयोग नहीं कर रहे। आरोपी मतलब यहाँ पे गिरिबाला सिंह से है। इसके साथ ही गिरिबाला सिंह पे टिप्पणी करते हुए कोर्ट ने यह भी बताया कि मीडिया में बयान देकर त्विशा आयन की जो बहू है उनकी छवि खराब करने की कोशिश हुई।
1: और अब खबर हीट वेव की। उत्तर भारत इस समय भीषण हीट वेव की चपेट में है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में भीषण हीट वेव के चलते तापमान कल 48 डिग्री के पास चला गया था। वहां अधिकतम तापमान 48.2 डिग्री दर्ज किया गया।

तो जैसा कि हमने आपको बताया, राजस्थान में श्रीगंगानगर बेहद गर्म रहा। 48 डिग्री का तापमान, सोचिए क्या कहर बरपा रहा होगा आसमान से। इसके अलावा दूसरे इलाकों की भी बात करें तो कोई स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, जीना मुहाल हुआ है सबका। अगर बात करें पिलानी की, तो पिलानी में भी तापमान 47 डिग्री तक पहुंच गया था, श्रीगंगानगर से ज्यादा कम नहीं है। बीकानेर का इलाका भी 46 के पार, फलोदी देखिए और जैसलमेर में 45 डिग्री का तापमान, ये सब रिकॉर्ड तोड़ तापमान सामने आ रहे हैं। दोपहर के समय सड़कें सुनसान हो गई हैं, कहीं कूलर एसी और जो भी इस्तेमाल किया जाए वो बेअसर होता हुआ नजर आ रहा है। और दिन में ही नहीं बल्कि रात में भी राहत लोगों को नहीं मिल रही है, लगातार गर्मी बढ़ती जा रही है और लोग बेहाल नजर आ रहे हैं। नाउ राजस्थान की बात करें तो उसके आगे बढ़ते हुए अगर हम बात उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र और दिल्ली की करते हैं, तो ऐसे कई राज्य हैं जो तप रहे हैं। आपको दिखाते हैं अलग अलग शहरों के तापमान, तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस वक्त जो तापमान अलग अलग शहरों में अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहे हैं। हर जगह सूरज तप रहा है, धरती तप रही है और लोग जल रहे हैं। तो कल राजस्थान के श्रीगंगानगर में तापमान 48 डिग्री के पार चला गया है। ऐसा हाल राजस्थान और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों का है जहां भीषण गर्मी पड़ रही है। आपको दिखाते हैं देश के अहम शहरों की तस्वीरें और साथ में आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कुछ राज्यों में तापमान बढ़ता ही जा रहा है। अगर आप महाराष्ट्र को देखें तो ब्रह्मपुरी में 46.6 का तापमान दर्ज किया गया, वहीं चंद्रपुर जिसके बारे में लगातार हम आपको खबरें दिखाते आए हैं, वहां पर भी पारा 46.4 पर रहा। बेहद गर्म इलाके हैं। उत्तर प्रदेश का रुख करते हैं, बांदा लगातार हीट वेव में और तापमान में रिकॉर्ड बना रहा है। इसके अलावा प्रयागराज भी बेहद गर्म रहा है, झांसी भी तप रहा है और कानपुर में भी हालत खराब है, 45 के पार तापमान है। ऐसा नहीं है कि दिल्ली में कोई राहत है, दिल्ली में रिज का इलाका जो कि एक तरीके से फॉरेस्ट का इलाका है, वहां पे आप देख सकते हैं 45 के पार तापमान। आयनगर में आप देख सकते हैं 45 के पार, पालम में भी तापमान 44 के पार, लोधी रोड और सफदरजंग दोनों जगहों तापमान 44 के पार जा चुका है। तो पूरा उत्तर भारत जो है वो इस वक्त भीषण गर्मी और लू से झुलस रहा है। मॉनसून लेट हो रहा है, पहले उम्मीद थी कि केरल में मॉनसून 26 मई तक आ जाएगा, लेकिन अब मौसम विभाग कह रहा है कि 2 जून के बाद ही केरल के तट पर मॉनसून टकराएगा। कुछ इलाकों में प्री मॉनसून बारिश हो रही है, लेकिन उत्तर भारत में दूर दूर तक ऐसी कोई संभावना नजर नहीं आ रही है। तो सवाल ये है कि कब तक ये गर्मी यूं ही झुलसाएगी या आगे कोई राहत नजर आएगी भी नहीं। पूरी रिपोर्ट देखिए।

0: कब मिलेगी इस भीषण गर्मी से राहत, कब होगी प्री मानसून की बारिश, कब तक उत्तर भारत के शहरों में पारा 45 के पार रहेगा, कुछ राहत मिलेगी। हर किसी का यही सवाल है कि अब बस बहुत हो गया है। गर्मी में तो लोग झुलस गए हैं, बुरी तरह तड़प रहे हैं। भीषण गर्मी में शहरों की बत्ती गुल है, कई जगहों पर घंटों की बिजली कटौती हो रही है। कई शहरों में भीषण पानी का संकट है, पानी आ ही नहीं रहा, इसीलिए पूछा जा रहा है कि इस भीषण लू और गर्मी से राहत कब मिलेगी। क्योंकि अभी भी दुनिया के 100 सबसे गर्म शहरों की लिस्ट में 98 हिंदुस्तान के हैं। AQI.in के अनुसार सबसे गर्म शहर राजस्थान का श्री गंगानगर है। 100 में से सिर्फ 2 शहर ईरान के हैं, बाकी भारत के 98 शहरों में तापमान 44 डिग्री से 49 डिग्री तक बना हुआ है। यूपी का बांदा भी दुनिया के सबसे गर्म स्थानों में लगातार बना हुआ है। यहां तो रात का तापमान भी नीचे नहीं आ रहा। रिक्शा चलाने वालों ने भी गर्म हवाओं से बचने के लिए हेलमेट पहन लिया है।
1: भारत देश में हमारा सबसे बांदा गर्म है, जिला बांदा में इतनी तक कड़ाके की गर्मी पड़ रही है, जहां 48-49 डिग्री तापमान पहुंच रहा है। हम गरीबों को छल छुपाने के लिए तो कोई चीज बची नहीं है, और घर में भी रहेंगे तो कुछ खा ना पाएंगे, बच्चे परिवार ना पाल पाएंगे, और इसलिए रिक्शा चलाना मेरे लिए अनिवार्य है। मैं एक पैर से दिव्यांग भी हूँ, इसलिए ना तो 1000 पेंशन हो तो अपना पेट भर नहीं सकता, और कड़ाके की धूप में जब मैं निकलता हूँ तो मेरे मुंह में एकदम लाल चपेटे जैसे पड़ रहे, मुंह एकदम गर्म हो जाता है, जैसे उल्टियाँ कई बार हो चुकी है, मुझे बीमार भी हो चुका, फिर भी मुझे रिक्शा चलाने की मजबूरी है। इसलिए मैं आज हेलमेट लगा के निकला हूँ, इसलिए ये धूप जो भी लगती है, हवाएं चलती है, इससे बचाव हो सके।
0: लखनऊ में तो शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर प्रशासन की तरफ से ऐसा ग्रीन शेड बना दिया गया है, हरा कपड़ा लगा है ताकि रेड लाइट में खड़े लोग गर्मी में झुलसने से बच जाए। इस पर बकायदा पानी का छिड़काव भी हो रहा है,
2: क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं? आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है, ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है। तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा, और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इस पर स्प्रिंकल करेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है। अब आपको मैं दिखाऊं, यहां पर इस चीज को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है। इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन व्हाइट पाइप्स के जरिए, जो सफेद पाइप बने हुए हैं, इनके जरिए ऊपर जाएगा। और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं, एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा।
0: इस भीषण गर्मी में लोग कब तक झुलसते रहेंगे, कब उन्हें राहत मिलेगी, हर किसी का यही सवाल है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से एक खुशखबरी आई है, और खबर यह है कि आज से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो हिमालयी राज्यों को हिट करेगा और उससे बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर होने वाली इस बारिश से तापमान में 8 से 10 डिग्री की कमी आएगी। इसके साथ ही इन पहाड़ी राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।
3: जहाँ तक गर्मी की बात है तो उत्तर पश्चिम भारत में जो गर्मी की स्थिति लगातार चल रही थी, इसमें हम देखेंगे कि जो हीटवेव कंडीशंस हैं वो हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, विदर्भा, तेलंगाना, तटीय आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, इन सभी क्षेत्रों में देखी जा रही थी। अभी हमारा अनुमान ये है कि एक पश्चिम विक्षोभ यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है वो 28 तारीख को जो है उत्तर पश्चिम भारत प्रभावित करेगा, जिसको देखते हुए 28।
4: और रुक करें इस वक्त आ रही बड़ी खबर का, कर्नाटक में मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने अपनी मीटिंग के दौरान अपने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। बड़ी खबर इस वक्त कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई, सिद्धरमैया जो इस वक्त अपने साथी मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग कर रहे हैं, उसमें उन्होंने अपने इस्तीफे के बाद कही है, ऐलान कर दिया है और ये खबर अब आ रही है। ऐसे में ये बात तो तय हो गई है कि अब वो मुख्यमंत्री पद छोड़ रहे हैं। उन्होंने वक्त भी मांगा हुआ है गवर्नर ऑफिस से और 3 बजे का उनका वक्त भी तय था। हालांकि अभी गवर्नर मौजूद नहीं है राज्य में, लेकिन उन्होंने अब मुहर लगा दी है, क्योंकि अगर उन्होंने ऐलान कर दिया है अपने इस्तीफे का तो अब यह तय है कि डीके शिवकुमार के लिए रास्ता कुछ साफ हो गया। हालांकि डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, इस बात को लेकर चुप्पी लगातार साधी हुई है सभी ने। हमारे सहयोगी नागार्जुन इस वक्त जुड़ गए फोन लाइन पर। नागार्जुन, बड़ा ऐलान?
5: जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री ने अभी इस वक्त कैबिनेट कोलिग्स को ऑफिशियली बताया है कि उन्होंने डेसिग्नेशन डालने वाले और भेजने वाले गवर्नर और लोक भवन को। दोपहर को 3 बजे की टाइम है जो सिद्धरामैया घर से निकल के राजभवन पहुंच के ऑफिशियली इस्तीफा देने वाले, और जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अभी इसी वक्त कैबिनेट कोलिग को मिला है। सिद्धरामैया बताया है कि जो खड़गे और राहुल गांधी के इंस्ट्रक्शन जो थे वो फॉलो करने वाले है। 2 दिन पहले उनका मीटिंग में यही बताया गया को सिद्धरामैया कि आप स्टेप डाउन कीजिए, उसी तौर पे आज इस्तीफा देने वाले हैं।
4: जी बिल्कुल, और उनका ये बता देना अपने साथियों को बहुत बड़ी बात है, लेकिन अभी भी जो असमंजस की स्थिति है वो इसको लेकर है कि डीके शिवकुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे या नहीं, क्योंकि इस पर कांग्रेस ने चुप्पी साधी हुई है नागार्जुन।
5: जी बिल्कुल, बट डीके शिवकुमार फ्रंट रनर है इसके नेक्स्ट सक्सेसर होने के लिए। सिद्धरामैया को भी पता है कि डीके शिवकुमार ही बनेगा। सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है कि सिद्धरामैया अगला मुख्यमंत्री बनने वाला है, बट ऑफिशियल जो होगा वो सीएलपी मीटिंग में इनको चूज करेंगे और एक लाइन रेजोल्यूशन भी पास करेंगे, और एक जो 40 विधायक दल के जो सिग्नेचर्स होंगे वो राजभवन पहुंचेंगे, उसके बाद फिर डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री बनेंगे। बट एज फार एज सोर्स बेस्ड इन्फॉर्मेशन है, जो फ्रंट रनर वो डीके शिवकुमार है।
4: जी बिल्कुल, और जिस तरह की तस्वीरें भी आज आई गर्मजोशी से गले मिलते हुए, उसके बाद डीके शिवकुमार पैर छूते हुए सिद्धरामैया के, कहीं ना कहीं उनकी विरासत को आगे ले जाने का एक संकेत भी इसे माना जा सकता है, और उनसे आशीर्वाद लेते हुए भी इसको संकेत भी माना जा सकता है।
5: जी बिल्कुल, बिकॉज सिद्धरामैया इज अ फादर फिगर इन कर्नाटका, इधर जो वो ट्रांजिशन का एक इमेज यही है, जो आशीर्वाद लेने का फोटो है ये दिखाता है हमें कि पावर ट्रांजिशन स्मूथ होगा। डीके शिवकुमार दिखाना भी चाहते हैं कि हमें आपकी मदद चाहिए, सिद्धरामैया का मदद चाहिए, गाइडेंस चाहिए। जो बाकी दो साल है गवर्नेंस के लिए सिद्धरामैया का सजेशन जो एडवाइस वो महत्वपूर्ण होगा, इसलिए ये जो हग है। और डीके शिवकुमार रो पड़े जब हग किए, जब गले लगाए सिद्धरामैया तो रो पड़े, यही सुनना सोर्स बेस इन्फॉर्मेशन है।
4: जी, और जितनी लंबी और बड़ी जद्दोजहद इस कुर्सी के बदलने में लगी है, उससे भी ज्यादा लंबी और भारी जद्दोजहद शायद समर्थकों को भी बिठाने में और उनके बीच में मंत्री पदों को भी तय करने में भी लगेगी। अब शायद नागार्जुन आगे का रास्ता आसान नहीं रहेगा,
5: शायद नहीं हो सकता है अंजलि, शायद जो प्री डिसाइड सब कुछ है, सीएलपी शायद कल या परसों बुला सकते हैं, उसके बाद वीकेंड पे एक स्वेरिंग इन भी हो सकता है। पहला चैलेंज है डीके शिवकुमार का, एक ओथ टेकिंग है जो खुद लेना चाहते हैं, उसके बाद कैबिनेट का है वो हो जाएगा। पहला चैलेंज जो है डीके शिवकुमार का पदाग्रहण, उस होने के बाद में सब कुछ जो पीसेस जो पजल के बाकी पजल में जो पीसेस है वो फॉल इन कर जाएंगे। एक जो बड़ा चैलेंज है जो सीएलपी बैठक जो बुलाना है या आज या कल बुला सकते हैं।
4: जी बहुत बड़ी बात है कि ऐलान कर दिया गया है सिद्धरामैया की तरफ से, और ये ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। नागार्जुन, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि डीके शिवकुमार का ये इंतजार कितना लंबा रहा है, कब से एक प्रेशर बनता रहा, दबाव बनता रहा उनकी तरफ से, उनके समर्थकों की तरफ से, और किस तरीके से आखिर में हाई कमान, जिसकी बात लगातार होती रही थी कि उन्हीं की बात को माना जाएगा, वो किस तरीके से आखिरकार सिद्धरामैया को तैयार कर पाई? तो नागार्जुन से इस वक्त हमारा संपर्क टूट गया, लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही कि ऐलान खुद डीके माफ कीजिएगा सिद्धरामैया की तरफ से कर दिया गया है कि वो इस्तीफा देने जा रहे हैं। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
9: Gone! Home run!
8: NHL. College basketball.
10: He shoots it immediately.
11: He makes it in!
8: Tennis. Golf.
9: and even top motorsports like NASCAR.
10: One lap to go.
9: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
12: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने.
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ.
15: सोच बदलो और बैंक भी.
16: बस दो हजार.
17: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा.
18: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो.
19: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश.
20: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है. 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं.
21: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं.
19: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर.
22: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ.
20: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ. हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा.
19: जहां खबर वहां खबरदार.
23: इन एसोसिएशन विद E3 HDMR ये रिश्ता लंबा चलेगा.

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions. Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
2: बस दो हजार
3: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा.
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो.
5: देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है. टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं. भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं. इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है. मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है. कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे. कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है. उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं. देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं. चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा. असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया. इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है. साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकात.
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट.
6: साइबर सिक्योरिटी जॉब्स आर एक्सप्लोडिंग एंड अ डिग्री फ्रॉम WGU हेल्प्स यू लीड द चार्ज.
7: It's helping my career because my boss is leaning on me for designing the security space.
6: Learn more at wgu.edu.
8: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, Steely Dan, Loggins and Messina, and much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

0: सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ। सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफे का किया ऐलान। करीब 3 बजे सौंपेंगे इस्तीफा। डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के छुए पैर।
1: विशा केस में रद्द हुई गिरिबाला की अग्रिम जमानत। हाईकोर्ट ने माना जांच में सहयोग नहीं कर रही। सीबीआई बोली प्रताड़ना और चोट के निशानों की जांच।
0: बकरीद को लेकर यूपी से बंगाल, महाराष्ट्र तक अलर्ट। कोलकाता में नमाज की जगह बदली गई। लखनऊ और संभल में फ्लैग मार्च। मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज में बढ़ाई गई सुरक्षा।
1: शांति प्रस्ताव के बीच ईरान के बंदर अब्बास में फिर गिरी अमेरिका की मिसाइलें। हॉर्मुज में अमेरिकी टैंकर्स को ईरान ने बनाया निशाना। कुवैत के अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें।
0: 97 रन वाली सूर्यवंशी की तूफानी पारी में बिखर गया हैदराबाद। 47 रन से जीता राजस्थान। तोड़ दिया सिक्सर का रिकॉर्ड। अब क्वालिफायर 2 में गुजरात से होगा मुकाबला।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन।
1: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबरों का डबल डोज एक और 11। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम।
2: नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल और इस वक्त आ रही बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई है। इस वक्त जो खबर है उसके मुताबिक सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। उन्होंने अपने मंत्री साथियों को ये बात आज ब्रेकफास्ट मीटिंग में कही है और करीब 3 बजे ये माना जा रहा है कि वो अपना इस्तीफा गवर्नर हाउस जाके सौंप सकते हैं। और डीके शिव कुमार ने ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं उसके मुताबिक सिद्धरमैया के पैर छुए और आशीर्वाद लिया।
1: 3 बजे लोकभवन जाकर इस्तीफा सौंपेंगे सिद्धरमैया ने इसका ऐलान ब्रेकफास्ट मीट में किया। राज्यपाल के सचिव को इस्तीफा सौंपेंगे क्योंकि राज्यपाल खुद इंदौर में मौजूद हैं। कल देर शाम वो रवाना हो गए थे और उसके बाद अब ये बड़ी खबर सिद्धरमैया के इस्तीफे की।

0: और अब रुक करेंगे शतक आज तक का।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन
2: ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धरमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। ब्रेकफास्ट मीटिंग में सिद्धरमैया ने कहा इस्तीफा देने जा रहा हूं, पैर छूते दिखे शिव कुमार, तस्वीरें सामने आई। सूत्रों के अनुसार कल हो सकती है विधायक दल की बैठक, शनिवार को हो सकता है सीएम के नाम का ऐलान। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पास, उत्तराखंड और गुजरात के बाद बना तीसरा राज्य। अमित शाह ने असम विधानसभा में यूसीसी विधेयक पारित होने की सराहना की, बोले समान कानून लागू करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। तृणमूल कांग्रेस सांसद काकोली घोष ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को लिखा पत्र, टीएमसी के चीफ व्हिप कल्याण बैनर्जी की शिकायत की। काकुली घोष ने कल्याण बैनर्जी पर लोकसभा में महिला सांसदों के खिलाफ अपमानजनक व्यवहार का आरोप लगाया। बशीरहाट में बड़ा भ्रष्टाचार मामला, बदुरिया नगर पालिका चेयरमैन टीएमसी नेता दिबांकर भट्टाचार्य गिरफ्तार। पूछताछ के बाद खुलासा, घर और जूट मिल के पास से करीब 2 करोड़ से ऊपर कैश और सोना बरामद। नादिया के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचेंगे शुभेंदु अधिकारी, गौशाला से शुरू होगा दौरा, सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
0: बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को सौंपी 142.79 एकड़ जमीन, शुभेंदु अधिकारी ने दी जानकारी। सीमा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम, बंगाल के 9 जिलों में बीएसएफ को दी गई जमीन, 600 किलोमीटर सीमा अब बिना फेंसिंग के। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जितिन नवीन आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर, कोर कमेटी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कंसापासी किले में पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू महासभा पहुंचा हाईकोर्ट, प्रशासनिक प्रतिबंधों को दी चुनौती। हिंदू महासभा का कहना है श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। राहुल गांधी के आरोपों पर सीबीएसई ने दी प्रतिक्रिया, सभी आरोपों को बताया गलत और भ्रामक। बोर्ड ने कहा कि पूरी टेंडर प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। सीबीएसई की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, कहा इनकार करना कोई जवाब नहीं, 18.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। शिक्षा मंत्री पर भी राहुल गांधी ने निशाना साधा, शिक्षा मंत्री और सीबीएसई मेरे पूछे गए 4 आसान सवालों का जवाब क्यों नहीं दे रही है। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले में पीड़ित परिवार से मुलाकात कर इसे भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा बताया, बोले छात्रों का भविष्य प्रभावित हो रहा है।
2: 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों की समीक्षा की, कमेटी के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। नीट मामले में 2 आरोपियों को 10 जून तक न्यायिक हिरासत, दिल्ली कोर्ट ने 2 आरोपियों को 5 दिनों की सीबीआई हिरासत में भेजा। सीबीएसई के 3 भाषा नियम के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र एनसीईआरटी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम से मिलने पहुंचे विजय, पीएम को गुलदस्ता भेंट करते हुए नजर आए। सूत्रों से खबर, विजय ने पीएम से उन मांगों पर बात की जो केंद्र सरकार के सामने है पेंडिंग। केरल के पूर्व मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के खिलाफ ईडी का एक्शन, छापेमारी के दौरान बवाल, समर्थकों ने जमकर मचाया उत्पात। समर्थकों ने इस दौरान ईडी के गाड़ी पर भी फेंके पत्थर, बाल बाल बचे अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। ईडी ने दर्ज कराई एफआईआर, पूर्व मुख्यमंत्री विजयन के घर रेड के वक्त हुआ था ये अटैक। एसएफआईओ ने पिछले साल अप्रैल में वीणा विजयन के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल की थी, आरोप है कि कंपनी के भुगतान को लेकर कोई भी सेवा शुरू नहीं की गई थी। ईडी की कार्रवाई के बाद केरल की राजनीति में भी हलचल तेज है, विपक्षी दलों ने इसे भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताते हुए बोला हमला। बकरीद के मौके पर कल्याण के ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले पर भारी पुलिस तैनाती। शिवसेना के ठाकरे और शिंदे गुटों सहित बीजेपी का घंटानाद आंदोलन, माहौल तनावपूर्ण। दुर्गा माता मंदिर बंद किए जाने पर शिवसेना बीजेपी का विरोध प्रदर्शन तेज, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया, 400 से अधिक जवानों की तैनाती। भोपाल में हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद खुले में शव की सिलाई का मामला सामने आया, मानवता पर उठे सवाल।
0: देश भर में मनाया जा रहा है बकरीद का त्यौहार। प्रधानमंत्री ने दी देशवासियों को बधाई। वाराणसी की जामा मस्जिद में बड़ी संख्या में लोगों ने ईद अल अजहा की नमाज अदा की। मुंबई के वाराणसी मैदान में लोगों ने बकरीद की नमाज अदा की। लोगों ने एक दूसरे को दी बकरीद की मुबारकबाद। अजमेर में बकरीद पर खुला ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, बड़ी संख्या में लोग जुटे। अजमेर में बकरीद की नमाज अदा की गई। लोगों ने एक दूसरे को बकरीद की बधाई दी। संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच बकरीद की नमाज अदा की गई। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़े इंतजाम। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सर्च ऑपरेशन छठे दिन जारी। सूत्रों के अनुसार इलाके में लश्कर के 2 से 3 बड़े आतंकवादी छिपे हुए हैं। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कल इलाके का दौरा किया और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियानों की समीक्षा की। छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमर कॉलोनी गोलीकांड केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर। बीते मंगलवार को एक स्कूली छात्रा को गोली मारकर हत्या का मामला। मणिपुर के एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार। दिल्ली में गोपनीय मीटिंग करके आया था ये उग्रवादी।
2: ऋषि शर्मा मौत केस में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। सास गिरिवाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को रद्द कर दिया गया। ऋषा के पति आरोपी समर्थ को सीबीआई ने लिया हिरासत में। 3 घंटे तक समर्थ के घर में पूछताछ। समर्थ और गिरिवाला के साथ सीबीआई ने किया सीन रिक्रिएट। ऋषा मौत मामले में एसआईटी ने कोर्ट को बताया 12 से 20 मई तक की सीडीआर सुरक्षित रखने के लिए कंपनियों को लिखा गया है पत्र। कोटा मेडिकल कॉलेज में नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सप्लाई का मामला। दवा फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज। लखनऊ में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला। जेई से की गई मारपीट। मेरठ में पिता पर दूसरी पत्नी के साथ मिलकर नाबालिग बेटी की हत्या करने का आरोप। आरोपी पिता और सौतेली मां हिरासत में। पटना में गंगा नदी में पलटी नाव। 3 लोगों की मौत और 7 लापता। कटिहार में तेंदुए के आतंक से परेशान ग्रामीण पीट पीट कर की तेंदुए की हत्या। औरैया में पुलिस वाहन को टक्कर, ट्रक ने मारी टक्कर। एसआई की मौत, 2 सिपाही गंभीर घायल।
0: हरदोई में गौतम बुद्ध की प्रतिमा स्थापना को लेकर उपद्रव। पुलिस पर पथराव, पुलिसकर्मियों समेत कई घायल। हरदोई बवाल मामले में 2 गिरफ्तार, 10 से अधिक लोग हिरासत में। गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। गाजियाबाद में महिलाओं समेत 2 पक्षों में जमकर मारपीट। लाठी डंडे और लात घूंसे चले। नागपुर रत्नागिरी महामार्ग पर एलपीजी गैस टैंक में पलटा, ड्राइवर की मौत। वाशिम में गर्दन तक डूबकर गंदे नाले को साफ करता व्यक्ति, वीडियो हुआ वायरल। पुणे में शराब के नशे में तेज रफ्तार कार पुल से गिरी, 19 साल के युवक पर मामला दर्ज। भिलाई में कार शोरूम में जीएम के भेजे अश्लील मैसेज और छेड़छाड़ से परेशान महिला स्टाफ, पुलिस ने सांपने जड़े थप्पड़। बांदा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक से बाइक और ई रिक्शा को टक्कर, 6 की मौत, कई घायल। संगरूर में सुबह सुबह साइकिलिस्ट पर कार सवार लुटेरों का हमला, मोबाइल लूटकर फरार। प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वालों पर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन। उधम सिंह नगर से 4 गिरफ्तार।
2: हैदराबाद सनराइजर्स को हराकर क्वालिफायर 2 में पहुंची राजस्थान रॉयल्स। आईपीएल के फाइनल में पहुंचने का मिला एक और मौका। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को दी करारी शिकस्त। 4 गेंद रहते 47 रन से जीता मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने खड़ा किया 243 रनों का विशाल स्कोर। जवाब में महज 196 रन पर ढेर हुई हैदराबाद सनराइजर्स। मैच के हीरो रहे राजस्थान के रॉयल बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। 29 गेंदों में खेली 97 रन की धमाकेदार पारी, लगाए 5 चौके और 12 छक्के। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले के सामने हैदराबाद के गेंदबाजों का सरेंडर। 334 के पार के तूफानी स्ट्राइक रेट ने नापा मैदान का हर कोना बनाए कई शानदार रिकॉर्ड। आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी। में 16 गेंदों में जड़ा अर्धशतक। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का रिकॉर्ड भी सूर्यवंशी ने किया अपने नाम। अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, तोड़ा क्रिस गेल के 59 छक्कों का रिकॉर्ड। एक ही सीजन में 3 बार एक पारी को 10 या ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी भी बने वैभव सूर्यवंशी। एलिमिनेटर में 12 छक्के लगाए। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं वैभव सूर्यवंशी। इस सीजन में अब तक बना चुके हैं 680 रन। इन 680 में से 610 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए। आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए वैभव। 29वीं गेंद पर 97 रन पर हुए आउट। 2013 में 30 गेंदों में शतक लगाकर क्रिस गेल ने बनाया था रिकॉर्ड।
0: इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा जैवलिन थ्रोअर सुमित अंतिल ने रचा इतिहास। पेकास 74.82 मीटर दूर भाला तोड़ा अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार

अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार भारत का नाम किया है रोशन। दो बार पैरालंपिक में गोल्ड जीत चुके हैं सुमित। 7 बार ध्वस्त किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुमित अंतर की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी बधाई। सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा ऐतिहासिक प्रदर्शन। म्यूनिख में ISSF विश्व कप में ईशा सिंह ने शानदार विश्व रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास। महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 50 में से 43 अंक जीता गोल्ड। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की बेटी की इस उपलब्धि पर जताया गर्व। सोशल मीडिया पर लिखा भारत के लिए वर्ल्ड रिकॉर्ड से भरा दिन।

कल होगी आईपीएल फाइनल के लिए आखिरी जंग, न्यू चंडीगढ़ में ही होगा गुजरात और राजस्थान के बीच क्वालिफायर टू। वैभव की शानदार बल्लेबाजी को देखकर समस्तीपुर में जश्न का माहौल, लोगों ने पटाखे फोड़कर मनाई खुशी। धुआंधार 97 रनों की पारी के लिए काटा गया शानदार केक, फैंस का जोश हाई। दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए वैभव के मुरीद, वैभव की बल्लेबाजी की तकनीकी बारीकियों का सराहा। 7 समंदर 5 पहुंची वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता, WWE स्टार ड्रू मैकइंटायर ने वैभव के नाम की जर्सी पहनकर पोस्ट किया वर्कआउट वीडियो। बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कान में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवियरा फिल्म फेस्टिवल में इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोस ऑफ अस के लिए मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। अक्षय कुमार की प्रेडिटर एलियन थ्रिलर फिल्म समुख में दिखेगा हॉलीवुड का जादू, प्रेडिटर फिल्म का हिस्सा रहे एलेक गिल्स डिजाइन कर रहे हैं एलियन क्रिएचर। कोलकाता में दादा द सौरव गांगुली स्टोरी बायोपिक की शूटिंग शुरू, मैदान ईडन गार्डन पर कैमरा क्रूज के साथ नजर आए सौरव का किरदार निभा रहे राजकुमार राव। OTT के बाद अब बड़े पर्दे पर नजर आएगा कालीन भैया का साम्राज्य, 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी। फिल्म नागाबंधम में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार के डबल रोल में नजर आएंगे ऋषभ साहनी, 3 जुलाई को फिल्म होगी रिलीज।

0: और इस बीच बड़ी खबर कर्नाटक से, जहां पर सत्ता परिवर्तन का वक्त आ गया है। सीएम सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब तकरीबन दोपहर 3 बजे वो लोकभवन जाकर अपना इस्तीफा सौंप देंगे। राज्यपाल के कर्नाटक में ना होने के चलते राज्यपाल के सचिव को वो अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं। इससे पहले सिद्धारमैया ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की और इस दौरान डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया, साथ ही सिद्धारमैया को गले लगाया।
1: तो इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं हमारे सहयोगी नागार्जुन द्वारकानाथ, जो कि इस वक्त मुख्यमंत्री के आवास पर ही मौजूद है, जहां सुबह से ब्रेकफास्ट मीटिंग चल रही है। नागार्जुन, ये तो साफ हो गया है कि अब वो अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन आगे का रास्ता कितना आसान या कितना मुश्किल हो सकता है? हालांकि डीके शिवकुमार आशीर्वाद जरूर मांग रहे हैं। तो सगे इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए, रुख सीधा उन्हीं का करते हैं। सगे, ये बताइए आगे की राह कितनी आसान रहेगी या मुश्किल रहेगी डीके शिवकुमार के लिए?
2: देखिए, जो भी पिक्चर्स अभी आया है ये साफ साफ बता रहा है कि अभी सियासत, कर्नाटक की सियासत में कुछ हलचल ज्यादा नहीं होगा। जो भी रोड है डीके शिवकुमार को अभी क्लियर है, क्योंकि इन्होंने जब सुबह आए थे ब्रेकफास्ट मीटिंग के, तुरंत आते ही उनके पांव पकड़ के आशीर्वाद लिया था। बाद में जो भी ब्रेकफास्ट मीटिंग था उसमें चीफ मिनिस्टर खुल के बात किया था कि क्या बातचीत हुई थी दिल्ली में, क्या मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी उनको बताया था, और उसके बाद उन्होंने कहा है कि तकरीबन तीन बजे आज राज्य लोकभवन जाएंगे और वहां पे गवर्नर को इस्तीफा देंगे। उसके अलावा इन्होंने कैबिनेट मिनिस्टर्स को फिनेंस के बारे में भी ब्रीफ किया था, जहां पे उन्होंने कहा कितना पैसे है, क्या क्या गारंटी प्रोग्राम हम लोगों ने किया है, और उनको शुक्रिया अदा भी दिया था, जहां पे मिनिस्टर्स इनके साथ इतना साल काम किए हैं। और 3 बजे गवर्नर तवरचंद गहलोत शायद नहीं रहेंगे लोकभवन में, मगर वो उनका अपॉइंटमेंट फिक्स है, गवर्नर के सेक्रेटरी के साथ मिलेंगे, उनके हाथ में इस्तीफा देंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है जहां सीएम गवर्नर के सेक्रेटरी के हाथ में भी रेजिग्नेशन दे सकते हैं, और गवर्नर ऑफिस का प्रेरोगेटिव भी है कि वो मानेंगे, नहीं तो इस्तीफा को रिजेक्ट भी कर सकते, नहीं तो एस्केलेट भी कर सकते। फिलहाल सूत्रों के अनुसार हमको पता चल रहा है कि इस्तीफा सेक्रेटरी को देंगे और शायद गवर्नर ऑफिस उसको एक्सेप्ट भी करेंगे।
0: ठीक है सगे, आप नजर बनाए रखिए, कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की घड़ी नजदीक आ गई है, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का दौर खत्म होने जा रहा है।
1: डीके शिवकुमार सत्ता की कमान संभालने की तैयारी में है, ये सब 2.5 साल वाले फॉर्मूले के तहत हुआ है, लेकिन इसे लागू करवाना आसान नहीं रहा।
3: नाश्ते का जायका सिद्धारमैया के लिए भले ही अच्छा न हो, लेकिन डीके जमकर इसका लुत्फ उठा रहे हैं। इस फेयरवेल ब्रेकफास्ट मीटिंग के साथ सिद्धारमैया काल खत्म हो रहा है, तो डीके राज का आगाज होने जा रहा है। मंत्रियों के साथ फेयरवेल मीटिंग के बाद सिद्धारमैया को सीधे राजभवन जाना था। दोपहर 3 बजे राज्यपाल से मुलाकात तय थी। माना जा रहा था कि मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन ठीक इसी वक्त कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आ गया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत अचानक इंदौर रवाना हो गए। राजभवन की तरफ से कहा गया कि फैमिली इमरजेंसी है। 3 बजे मुलाकात तय, राज्यपाल इंदौर रवाना, फैमिली इमरजेंसी का हवाला। अब सवाल उठा, क्या इस्तीफा टल गया? क्या सियासी समीकरण फिर बदल रहे हैं? असल में संवैधानिक प्रक्रिया कुछ और कहती है। मुख्यमंत्री का इस्तीफा सिर्फ आमने सामने मुलाकात से ही मान्य हो ऐसा जरूरी नहीं। सीएम अपना इस्तीफा राजभवन सचिवालय को लिखित रूप में सौंप सकते हैं। ईमेल या आधिकारिक पत्र के जरिए भी इस्तीफा वैध माना जाता है।
2: गवर्नर तवरचंद गहलोत कल रात 10:30 बजे उनके घर से निकल गए हैं। 11:30 बजे उनका फ्लाइट था मुंबई, मुंबई से इंदौर जा चुके हैं। उनका फैमिली इमरजेंसी है, इसी वजह से वो लोग इमरजेंसी के वजह से वो लोग रात 10:30 बजे निकल गए। अब इस गवर्नर ऑफिस के मुताबिक अभी तक उनका रिटर्न फ्लाइट अभी तक बुक नहीं हुआ है, मगर हम लोगों ने चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस से बात किया था, उन लोगों ने कहा है कि वहाँ पे एक प्रोविजन है जहाँ पे चीफ मिनिस्टर फिर भी गवर्नर सेक्रेटरी को इस्तीफा दे सकते हैं।
3: यानी तकनीकी तौर पर रास्ता साफ है, अगर कांग्रेस हाईकमान ने फैसला कर लिया है तो सत्ता परिवर्तन रुकने वाला नहीं, दरअसल इस कहानी की शुरुआत हुई थी 2023 विधानसभा चुनाव के बाद। कांग्रेस को प्रचंड जीत मिली, लेकिन जीत के तुरंत बाद शुरू हो गई मुख्यमंत्री की लड़ाई। कई दिनों तक दिल्ली में बैठकों का दौर चला, आखिरकार हाईकमान ने एक समझौता कराया। फॉर्मूला बना कि पहले 2.5 साल सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे, फिर 2.5 साल डीके शिवकुमार को मौका मिलेगा। कांग्रेस ने कभी आधिकारिक तौर पर इस फॉर्मूले को सार्वजनिक नहीं किया, लेकिन पार्टी के अंदर ये व्यवस्था सबको पता थी। समस्या तब शुरू हुई जब 2.5 साल पूरे होने लगे। डीके खेमे ने सत्ता हस्तांतरण का दबाव बढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन सिद्धारमैया आसानी से कुर्सी छोड़ने के मूड में नहीं थे। दूसरी तरफ डीके शिवकुमार के समर्थक डील की याद दिलाते रहे। आखिरकार मामला सीधे गांधी परिवार तक पहुंचा। माना जा रहा है कि राहुल गांधी ने सिद्धारमैया से 1-on-1 बातचीत की, बंद कमरे में लंबी चर्चा हुई। राहुल गांधी ने सिद्धारमैया को किए गए वादे अमल करने को कहा, उन्हें इस्तीफे के लिए मनाया, उन्हें दिल्ली आने का ऑफर दिया। इसके बाद माहौल बदलने लगा, दिल्ली से संकेत मिलने लगे कि अब डीके शिवकुमार की ताजपोशी तय है, और आज की हलचल उसी प्रक्रिया का हिस्सा मानी जा रही है। सिद्धारमैया जनाधार वाले नेता हैं, जबकि डीके शिवकुमार संगठन और संसाधनों के मास्टर माने जाते हैं। अगर सत्ता हस्तांतरण शांतिपूर्ण रहा तो कांग्रेस दक्षिण भारत में मजबूत संदेश देगी, लेकिन अगर खींचतान बढ़ी तो बीजेपी को बड़ा राजनीतिक मुद्दा मिल सकता है। सगई राज के साथ नागार्जुन, बेंगलुरु आज तक।
1: वक्त एक छोटे से ब्रेक का, आप देखते रहिए आज तक।
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा प्यार से पर इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
8: Jack, you're killing me.
7: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free. So cool.
9: Honey, is ghar mein kuch hai jo tootta nahi?
10: Ye pillar kabhi nahi tootega. Rungta Steel TMT se bana.
11: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं,
12: रुंगटा स्टील
11: TMT बार एकदम सॉलिड।
12: बस 2-2 हजार
13: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
14: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
3: AU सोच बदलो और बैंक भी।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ JK Max Paints, खुशियों के रंग।
8: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
9: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
8: आप कैसे कर लेते हो?
10: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
9: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो, और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
11: नहीं,
9: और म्यूचुअल फंड्स है
11: सही।
12: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
13: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
14: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
15: In association with
16: Samakul Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakul Cooler, life बनाए wonderful।
15: Hint, बड़े आराम से।
16: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
15: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans। Sharda University, the world comes together at Sharda University, where are you?
17: विमल बोलो जुबा केसरी।
18: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
19: ये माना जा रहा है कि यह होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोथ के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक हाकिमपुर।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
3: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
5: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. TuneIn has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
6: EU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम।
7: EU
8: सोच बदलो और बैंक भी।
9: उत्तर भारत से दक्षिण भारत तक इन दिनों भीषण गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही है। उत्तर प्रदेश का बांदा जिला देश में सबसे गर्म स्थान है, जहां तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, तो वहीं राजस्थान के श्रीगंगानगर में भी पारा 47 डिग्री तक पहुंच गया, जबकि बीकानेर, फलोदी और जैसलमेर समेत कई शहर 45 डिग्री के पार रहे। महाराष्ट्र के विदर्भ इलाके में भी गर्मी का कहर जारी है। ब्रह्मपुरी में तापमान 46.6 डिग्री और चंद्रपुर में 46.4 डिग्री दर्ज किया गया। वहीं हरियाणा, पंजाब और दिल्ली भी लू की चपेट में है। देश की राजधानी दिल्ली में भी गर्मी कम नहीं है। दिल्ली के सफदरजंग में अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तेलंगाना में भी मौसम ने लू का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले दो दिन तक उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में हीट वेव का असर बना रहेगा। हालांकि 29 मई के बाद पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से राजस्थान, दिल्ली और आसपास के इलाकों में आंधी और हल्की बारिश की संभावना है, लेकिन अभी के लिए सावधानी ही इस प्रचंड गर्मी से बचाव है।

ये इसराइल के बेट शेमेश का इलाका है। चारों ओर विध्वंस के निशान नजर आ रहे हैं। कभी बुलंद रही इमारत के मलबों के बीच में बुझ चुकी जिंदगी के निशान झांक जाते हैं। ये मलबे ईरान के उस हमले की कहानी कह रहे हैं जिसमें एक रिहायशी इलाके के बीच में बने उपासना स्थल यानी यहूदी सिनेगॉग पर मिसाइल अटैक में 9 लोगों की जान चली गई थी। इन मलबों के बीच घूमते हुए कभी बच्चों के फुटबॉल पर नजर जाती है तो कभी दीवारों पर टंगी उन बच्चों की तस्वीरों पर। ईरान की ओर से हुए इन हमलों की कहानी इजरायली पुलिस के अंतर्राष्ट्रीय प्रवक्ता डीन एल्स्टून ने भी हमें बताई। ईरान के साथ 39 दिन की जंग में आसमान में फूटते पटाखों और ईरानी जमीन पर बरसते बारूद की तस्वीरें दुनिया ने देखी, लेकिन इजरायल की धरती ने भी कम जख्म नहीं झेले हैं। इजरायल में आज दुश्मन के हमलों की दहशत ऐसी है

0: पंचायत बोली प्रताड़ना और चोट के निशान की जांच होगी।
1: बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश से बंगाल महाराष्ट्र तक अलर्ट। कोलकाता में नमाज की जगह बदली गई। लखनऊ और संभल में फ्लैग मार्च। मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज में बढ़ाई गई सुरक्षा।
0: के बीच ईरान के बंदर अब्बास में फिर गिरी अमेरिका की मिसाइल। होर्मुज़ में अमेरिकी टैंकर्स को ईरान ने बनाया निशाना। कुवैत के अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइलें।

0: मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया, जिसके चलते शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों आज सड़क पर उतरे और आंदोलन किया।
1: पहली बार बीजेपी भी आंदोलन में हुई है शामिल। बड़ी खबर इस वक्त आ रही है कि 40 साल बाद बाला साहेब ठाकरे ने घंटानाद आंदोलन की परंपरा शुरू कराई थी और आज इस किले पर पुलिस की भारी मौजूदगी थी। शहर में कई बैरिकेड्स लगाए गए थे, करीब 400 पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई थी। आंदोलनकारी और पुलिस बल के बीच झड़पों की भी खबरें आ रही हैं।
0: तस्वीरें आपको दिखा दें, बेहद संवेदनशील ये मामला हो गया कि कल्याण में भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है, कार्यकर्ताओं के साथ उनकी झड़प भी हुई है, उनको आगे जाने से रोका गया है, बैरिकेडिंग आप देख सकते हैं, लेकिन यहां पर झंडों और बैनर्स के साथ ये बड़ी संख्या में उद्धव और शिंदे गुट के कार्यकर्ता मौजूद है। विद्या मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मंदिर बंद होने को लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है, विद्या कैसे समझाना मुमकिन हो पाएगा इन कार्यकर्ताओं को, क्योंकि बड़ी संख्या में ये लोग अभी भी आमादा हैं इस तरह से घंटानाद करने के लिए।
2: जी देखिए, अब तो दरअसल माहौल थोड़ा सा ठीक हो गया है वहाँ पे, क्योंकि दरअसल और ये पहली बार नहीं है, हर बार, क्योंकि वहाँ उस दुर्गाड़ी किले के ऊपर मज़ार भी है और मंदिर भी है, दोनों ही होने की वजह से। और आप देखिए, अगर इसकी हिस्ट्री अगर देखिए तो कभी इस ये मुस्लिम रूलर्स के पास था, फिर उसके बाद मराठा रूलर्स ने इस पर इस किले पर कब्जा किया था। तो तमाम जो आप सेंचुरी से हमने यही देखा है कि वहाँ पे दोनों रिलीजियस फेस्टिवल्स मनाए जाते थे, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर का जो सिचुएशन है कहीं ख़राब ना हो जाए, इसकी वजह से कई सारे जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यही लगता है उनको कि पहले नमाज, क्योंकि आज बकरीद है तो नमाज अदा किया जाना चाहिए, इसकी वजह से वो लोग कोशिश यही करते हैं कि कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसलिए जो मंदिर है उसको बंद करने के आदेश दे देते हैं। तो लेकिन इसके खुलवाने के लिए पिछले कई दिनों से जद्दोजहद चल रही थी। विजय सालवी जो वहाँ पर जो एक नेता हैं UBT के, वो लेटर्स दे के पुलिस कमिश्नर से मिलने की कोशिश पूरा कर रहे थे कि वहाँ समझाया जाए कि देखिए आप खोल दीजिए और दोनों नमाज भी पढ़ा जाएगा और मंदिर में भी लोग पूजा अर्चना करेंगे, लेकिन ये माना नहीं गया और इसकी वजह से जो क्राउड है, जो हिंदू क्राउड है, उसको रोक दिया गया था मंदिर बंद करके। तो इसी के विरोध में इस तरह से शंखानाद, और आप देख लीजिए एकनाथ शिंदे का जो शिवसेना है वो गुट भी वहां था, UBT के जो नेता हैं वो भी थे, तो कह लीजिए एक जट पूरी शिवसेना एक साथ दिखी इस मौके पर और इन्होंने साथ ही शंखानाद और जो घंटानाद है वो पूरा किया और अपना प्रोटेस्ट वहां पे जाहिर किया और उसके बाद अल्टीमेटली लॉ एंड ऑर्डर फिलहाल ठीक हो गया है वहां पे, यही बताया जा रहा है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया विद्या तमाम जानकारी के लिए आपका। और अब आप दिखाते हैं बकरीद पर यूपी से बंगाल तक सुरक्षा सख्त।

0: तो त्यौहार पर आमतौर पर शांति, सौहार्द और भाईचारे का मौका देखा जाता है, लेकिन सड़कों पर नमाज और कुर्बानी को लेकर पिछले कुछ दिन से जिस तरह से बयानबाजी और सियासत जारी है, उससे बकरीद के मौके पर अमन शांति को लेकर बड़ी आशंका पैदा हो गई है।
1: बकरीद के जश्न के रंग में भंग न पड़े, इसलिए तमाम राज्यों में सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए। शहरों में पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है, खासकर यूपी में पुलिस बेहद मुस्तैद है।
0: और इस बार बकरीद को लेकर कई राज्यों में सख्त पाबंदियां हैं। बकरीद से पहले बयानबाजी भी तेज है। सवालों और विवादों के साए में हो रही बकरीद को लेकर तमाम आशंकाएं थी।
1: तो अब हम आपको देश भर के बकरीद के जश्न का हाल दिखाते हैं और बताते हैं कि आखिरकार पाबंदियों के बीच जमीन पर क्या हाल रहा।
2: दिल्ली, भोपाल, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पटना, कोलकाता, ये बकरीद थोड़ी हटकर थी। बकरीद से पहले राज्यों से सख्तियों और पाबंदियों की खबर आ रही थी। नमाज और कुर्बानी को लेकर नियम कायदे बताए जा रहे थे, लेकिन जब अलग अलग शहरों से बकरीद की तस्वीरें आई तो तमाम शंकाएं खत्म होती चली गई। इन दो तस्वीरों को देखिए। इस बार की बकरीद अभूतपूर्व सुरक्षा के साए में मनाई गई। अलग अलग शहरों की सुरक्षा व्यवस्था देखकर आप समझ जाएंगे कि पुलिस प्रशासन की कितनी मुस्तैदी थी। दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर मथुर वर्मा सुबह से मोर्चे पर तैनात, खुद सड़क पर उतरकर इंतजामों को देख रहे थे। दिल्ली की दो बड़ी जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद में नमाजियों की ठसाठस भीड़ थी। सुबह से लोगों का तांता था, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए ये मौका किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं थी।
3: इस वक्त सुबह के वक्त आप देखेंगे तो पहुंचे हुए हैं लोग, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और सुबह की नमाज इस वक्त हो रही है। हम मौजूद हैं आईटीओ के पास मस्जिद पर, जहां पर जब लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई तो आप देखिए अंदर जब लोग पूरी तरीके से भर गए तो बाहर जो बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस के द्वारा, सड़क के किनारे जो हिस्सा है जहां बैरिकेडिंग की गई थी, तो वहां लोग यहां पर बैठे और देखिए अभी भी यहां पर लोगों का आना जारी है और पुलिस सभी को बैरिकेड के अंदर कर रही है। हैवी डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है। और इसके अलावा पुलिस की सिक्योरिटी सिर्फ यही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट इसी तरीके से है।
2: वैसे सबकी नजर यूपी पर टिकी थी, जहां पुलिस बीते कुछ दिनों से पूरी मोर्चाबंदी में लगी थी। सड़कों पर लगातार फ्लैग मार्च हो रहा था, गश्त हो रही थी। मुजफ्फरनगर, संभल, मेरठ, हापुड़, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, यूपी में बकरीद को लेकर जबरदस्त सख्ती थी। योगी सरकार ने दो टूक कह दिया था कि सड़कों पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, गोवंश की कुर्बानी नहीं होगी। योगी के आदेश को पूरा करने में यूपी पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा।
4: जिन स्थानों पर पहले से कुर्बानी होती आई थी वहां होगी, नंबर दो नमाज सड़कों पर नहीं होगी। इसकी व्यवस्था डीएम जो है उन्होंने सिविल डिफेंस की टीम को दी है और वो इसकी देखरेख कर रही है। इस बीच में बकरीद की नमाज है, मकबरा शाह पीर मोहम्मद, टोम्ब ऑफ शाह पीर मोहम्मद है और इस बीच में यहां पर भारी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं। अगर आप राजधानी लखनऊ की बात करें तो दो सबसे प्रमुख स्थान इनके लिए हैं, एक ईदगाह ऐशबाग और दूसरी टीले वाली मस्जिद, जहां भारी संख्या में जो नमाजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं और भारी पुलिस सिक्योरिटी बल यहां पर तैनात किया गया, जैसे चीजें शांतिपूर्ण तरीके से।
2: तो देश के शहरों में जश्न के साथ बकरीद मनाई जा रही थी, सुरक्षा का भी सवाल लगातार बना हुआ था। दिल्ली से हिमांशु मिश्रा के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: और सबकी नजर यूपी पर है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुली सड़क पर नमाज ना करने को लेकर सख्त हिदायत दे चुके हैं।
5: लोग मुझसे पूछते हैं साहब आपके यहाँ यूपी में क्या सड़कों पे सचमुच नमाज नहीं होती? मैं कहता हूँ कतई नहीं होती है, आप जाके देख लो। अरे सड़कें चलने के लिए है या कोई भी व्यक्ति आकर के चौराहे पे आके तमाशा बना देगा? क्या अधिकार है उसको सड़क रोकने का? आवागमन बाधित करने का कौन सा अधिकार है? जहां उसका स्थल होगा वहां जाके करें।
1: और सरकार के आदेश को सिविल डिफेंस सिस्टम वाले कैसे पूरा करने में लगे हैं, इस पर लखनऊ से देखिए एक रिपोर्ट।
4: बात चाहे टीले वाली मस्जिद की हो या फिर लखनऊ के ऐशबाग ईदगाह की, फिलहाल लखनऊ समेत यूपी के तमाम जिलों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज अदा की गई है। अभी अभी ईदगाह में नमाज पूर्ण हुई है और आपको हम तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से भारी संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने के बाद अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर निकल रहे हैं। ये ईदगाह है जहां अभी अभी नमाज अदा की गई है। बकरीद का त्यौहार है, बकरीद का मौका है, जिसके तहत यहां भारी संख्या में, सैकड़ों की हजारों की संख्या में जो नमाजी हैं वो नमाज अदा करने पहुंचे हैं। पुलिस सिक्योरिटी की अगर बात करें तो लगातार पुलिस सिक्योरिटी यहाँ पर तैनात है। सिविल डिफेंस की जो टीमें हैं उनकी भी तैनाती यहाँ पर की गई है। इसके अलावा अलग अलग जो कमांडोज हैं वो भी आपको यहाँ दिखाई तैनात पड़ेंगे। जो सुरक्षा नागरिक कोर है उनकी तरफ से कुछ कैंप्स भी लगाए गए हैं जहाँ पानी, बिस्किट वगैरह आदि गर्मी में बांटा जा रहा है। तो सामने आपको अलग अलग तरह की फोर्सेस जो हैं वो भी यहाँ पर नज़र आएंगी, जो ये इंश्योर कर रहे हैं कि चीज़ें जो हैं, जो हालात हैं वो सही बने रहें और कहीं भी किसी प्रकार की असुविधा किसी को ना हो और शांतिपूर्ण तरीके से नमाज के बाद जो नमाजी हैं वो अपने अपने गंतव्य स्थानों की ओर लौटें। तो भारी पुलिस सिक्योरिटी के बीच में ईदगाह लखनऊ में भी नमाज पूर्ण की गई है। कैमरामैन गौरव के साथ समर्थ श्रीवास्तव, लखनऊ आज तक।
0: लखनऊ में सुरक्षा के क्या इंतजाम है, इस पर डीएम विशाख जी ने आज तक से खास बातचीत की है।
6: आज अभी हम लोग अभी ऐशबाग ईदगाह के सामने मौजूद है और अब इस समय तक 981 जगह नमाज संपन्न हो चुके हैं। हर जगह पुलिस प्रशासन के और प्रशासनिक अधिकारियों के टीम्स मौजूद हैं। नगर निगम की टीम भी पूरी तरफ से मौजूद है जो सफाई व्यवस्था, जलापूर्ति वगैरह सुनिश्चित करने के लिए। विभिन्न थाने स्तर से लेकर के एसीपी स्तर और विभिन्न स्तरों पर त्यौहार से पहले ही समयबद्ध रूप में पीस कमेटी मीटिंग्स आयोजित करते हुए आयोजन के संबंध में समस्त तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई हैं और अभी वर्तमान में ऐशबाग ईदगाह में भी जो नमाज है वो संपन्न हो रही है।
7: सड़क पर नमाज का एक ऑर्डर मुख्यमंत्री की तरफ से हुआ है, उसका कैसे आप लोग पालन कराने की नहीं होने दिया जाए?
6: देखिए, अभी यहाँ पर भी पहले ही जो जैसे मैंने कहा है कि विभिन्न आयोजकों से भी, धर्मगुरुओं से भी बातचीत करते हुए इसके संबंध में तैयारियां सुनिश्चित कर ली गई थी और सुबह से ही अभी तक, जैसे अभी 10 बजे तक 981 जगह पे अभी तक नमाज संपन्न हो चुके हैं और कहीं पर भी किसी भी प्रकार की समस्या नहीं और शांतिपूर्ण ढंग से जो जो पूरे त्यौहार है उसके जो आयोजन है उसको संपन्न किया।
1: और हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव ने बात की लखनऊ के ज्वाइंट सीपी बबलू कुमार से, सुनिए।
8: बकरीद की नमाज थी और हम लोगों ने अपनी तैयारियां जो है वो काफ़ी दिनों से करी थी। सभी थाने के स्तर पे, चौकियों के स्तर पे लोगों के साथ बातचीत, डायलॉग जो है वो हमारी प्रमुख जो है पार्ट था स्ट्रेटजी का। लोगों से बातचीत हुई, अपील हुई और लोगों को बताया भी गया था। आज जो है पूरी बंदोबस्त हम लोगों ने व्यापक तौर पे यहाँ किया हुआ था। यहाँ आप देखेंगे कि पुलिस भी है, पीएसी भी है, आरएएफ भी है, सिविल डिफेंस के लोग हैं, प्रशासन के लोग हैं और जो हमारे अन्य जो डिपार्टमेंट हैं, नगर निगम के भी लोग हैं, ताकि सारी व्यवस्थाएँ जो है बहुत अच्छे ढंग से हो।
7: सड़क पर नमाज को लेकर मुख्यमंत्री का आदेश हुआ था, आप लोगों ने कैसे डायलॉग इस्टेब्लिश किया है?
8: देखिए, नमाज या कोई भी धार्मिक चीज़ें इस प्रकार से न हो कि किसी दूसरे व्यक्ति को असुविधा हो, और ये चीज़ हमारी मीटिंग्स में, हमारी जो पीस कमेटी की बैठक में है, हमारे धर्म गुरुओं के साथ बैठकों में इन बात को रखी गई और लोगों ने, आप देख रहे हैं कि ये पूरा एरिया जो है पूरा खाली पड़ा हुआ है। हमारे ऑलमोस्ट अभी तक 95% जगहों पर हमारे नमाज संपन्न हो गए हैं और कहीं भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं सामने।
7: पानी भी रेस्ट्रिक्टेड एरियाज में होंगी जैसा कि सीएम की तरफ से आदेश दिया?
8: देखिए, इस नमाज के बाद कुर्बानी होगी और कुर्बानी जो परंपरागत स्थानों पे होती रही हैं वहाँ होती रहेंगी। उसको हम लोगों ने मैन भी कर लिया, हमारी फोर्स डिप्लॉयड है, नगर निगम के लोग डिप्लॉयड हैं, ताकि किसी तरह की कोई अन्य दिक्कतें जो है लोगों को न हो।
0: वहीं बंगाल में सरकार बदली तो नमाज की जगह भी बदल दी गई। इस बार कोलकाता में बकरीद की नमाज परेड ग्राउंड में ही हो रही है। तापस की एक रिपोर्ट देखिए।
9: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है। और ये शुभेंदु सरकार के आने के बाद ये फैसला लिया गया कि नमाज जो है वो सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। ऐसे में बातचीत शुरू हुई। खिलाफत कमेटी जो इस नमाज को ऑर्गेनाइज करती है उसने पहले एनओसी ली आर्मी से, इसके बाद कोलकाता पुलिस से और इसके बाद यहां पर आयोजन किया गया। दरी और चादर बिछाई गई, चूंकि बरसात हो सकती थी, ऐसे में नए कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो पूरे इंतजाम किए गए, दरी चादर बिछा कर यहां पर इंतजाम किए गए और अब ये नमाज अदा की गई और इससे पहले तक ये नमाज कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड में होती आई थी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कोलकाता का रेड रोड मेरे पीछे है, ये कोलकाता का रेड रोड है जहां अभी भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि यहां पर कोई नमाज अदा न की जाए, सड़क खुली रहे। तो ये अभी जो रेड रोड आप देख रहे हैं, इससे पहले तक यहां पर नमाज अदा होती थी इससे पहले के सालों में, और ये रास्ता पूरी तरह से बंद होता था, लेकिन ये सालों बाद पहला मौका है जब रेड रोड खुला हुआ है यातायात के लिए और जो नमाज है वो अता हो रही है कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में।
1: बकरीद पर संभल में क्या हाल रहा, आइए आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट।
10: बकरीद को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच संभल जिले के अलग अलग इलाकों में बकरीद की नमाज अदा की जा रही है। और आप यहां जो देख सकते हैं, देखिए जो पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर आपको जो दिखाई देगी, और यहां आप जो देखेंगे तो देखिए लाइन से आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको जो तैनात नजर आएंगे। फिलहाल आपको यहाँ जो ईदगाह स्थल की वो तस्वीरें हैं जहाँ पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात है। इसी के साथ देखिए डीएम और एसपी की जो मौजूदगी है वो खुद इस पूरे इलाके में जो बनी हुई है, जबकि बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यहाँ पर ईद की नमाज जो संपन्न कराई जा रही है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी इस पूरे इलाके में तैनात हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए सामने की तरफ आपको वो ईदगाह स्थल है जहाँ पर ईद की नमाज चल रही है, और ठीक उसके बाहर यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम।
0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा को नियुक्त कर दिया गया है। ये बड़ी खबर बीजेपी के खेमे से, दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा नए अध्यक्ष बनेंगे। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, पहले से ही प्रत्याशित था ये नाम?
11: देखिए ऐसा नहीं था, लेकिन चूंकि हर्ष मल्होत्रा जो है वो केंद्र सरकार में राज्य मंत्री हैं और उनको अब जो है दिल्ली बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, क्योंकि हरियाणा के जो दिल्ली के जो संगठन के चुनाव है वो बहुत पहले हो गए थे, लेकिन इस चीज की आशंका जरूर थी कि जल्द से जल्द जो है दिल्ली बीजेपी को नया अध्यक्ष मिलेगा। उसके साथ साथ ना सिर्फ दिल्ली में बल्कि हरियाणा बीजेपी में भी अर्चना गुप्ता को जो है वो बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया है, केवल सिंह ढुल्लो को पंजाब का अध्यक्ष बनाया गया है, त्रिपुरा के अंदर जो है अभिषेक देवरॉय को जो है वो वहां का अध्यक्ष बनाया गया है। ये चार राज्य हैं जहां पे बहुत लंबे समय से संगठन के चुनाव हो चुके थे लेकिन अध्यक्ष की घोषणा नहीं हो पाई थी। आज एक साथ चार राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा कर दी गई है, जिसमें अगर देखा जाए तो पंजाब सबसे महत्वपूर्ण इसलिए भी है क्योंकि पंजाब के अंदर 2027 के शुरुआत में जब पांच राज्यों के विधानसभा चुनाव होने हैं उसी में चुनाव पंजाब के हैं, तो पंजाब को जो है अब फुल फ्लेजी अध्यक्ष मिल गया है। इससे पहले कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर जो है अश्विनी शर्मा काम कर रहे थे और अध्यक्ष के तौर पर जो है वो काम कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं बड़ा एक लंबे समय से ये था कि पंजाब को नया अध्यक्ष मिलना चाहिए। और उनके साथ साथ जो है जिन राज्यों में अभी अध्यक्षों की घोषणा नहीं हुई है उनके अध्यक्षों के नाम की घोषणा कर दी गई है। अब कर्नाटक एक ऐसा प्रदेश है जहां पर अभी भी अध्यक्ष को लेकर पार्टी जो है सोच विचार कर रही है, गहन चिंतन कर रही है कि किसको अध्यक्ष बनाया जाए, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो वहां पर जो राघवेंद्र है उनके नाम को लेकर भी है कि जो वर्तमान में प्रदेश अध्यक्ष है उनको बनाया जाए या नए किसी को जिम्मेदारी दी जाए, लेकिन चार राज्यों के अध्यक्षों की घोषणा करके पार्टी ने एक तरीके से संगठनात्मक बड़ा फैसला लिया है जिसमें पंजाब सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि 2027 के फरवरी में पंजाब में विधानसभा चुनाव भी है।
1: बिल्कुल, बड़े फेरबदल की खबर इस वक्त आ रही है। प्रदेश अध्यक्ष चार राज्यों के अब नियुक्त कर दिए गए हैं, जिसमें से दिल्ली के, जैसे कि आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, हर्ष मल्होत्रा को अब दिल्ली बीजेपी का नया अध्यक्ष बनाया गया है।
0: अभिषेक देवरॉय त्रिपुरा के बीजेपी के नए अध्यक्ष होंगे, वहीं अर्चना गुप्ता हरियाणा की बीजेपी की नए अध्यक्ष होंगी। ये चार नामों का ऐलान कर दिया गया है।
1: तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
13: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
14: Tune in's how to. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
15: Looking for your favorite local radio stations? Look no further. Tune in has got you covered. Not only can you stream all the best music, news, sports from all around the world, but you can also listen to all your local radio stations. Just head to the radio page on TuneIn to listen, and you can explore our interactive map to find all the local stations you know and love. Are you ready to dive in? Start listening today.
16: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
17: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

तो आज बकरीद है, शहर शहर से बकरीद के जश्न की तस्वीरें सामने आ रही है। मस्जिदों में सुबह सुबह नमाज पढ़ी गई, नमाजियों की भारी भीड़ दिखी। दिल्ली हो तो या पटना हो और वहां दक्षिण भारत के कई शहरों की बात करें तो बकरीद पर जश्न में कहीं कोई कमी नहीं दिख रही। और ये तस्वीरें हम अलग अलग शहरों की इस वक्त आपको दिखा रहे हैं।

0: कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं। आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद सौ लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
1: पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहें ईवीएम खराब है, उसके बाद कहें एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मुहर लगा दी, अब तो कोई ना कोई बहाना और ढूंढेंगे।
2: अब क्या हो सकते हैं
1: भाई, अब विरोधी के ढूंढे के जमाना, बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
3: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: और इस वक्त आ रही एक बड़ी खबर, सीबीएसई विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई के बड़े अधिकारियों के साथ एक बैठक की है। सीबीएसई के दफ्तर पहुंचकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने उनसे मुलाकात की। बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 17 लाख छात्रों ने परीक्षा में हिस्सा लिया, वो हमने 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित भी रखा है।
5: विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इसे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है। लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार सीबीएसई ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, ओएसएम उसको कहा। ओएसएम एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस ओएसएम की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है। बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनके हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज़्यादा मिला है, वह कुछ छूट गया है, इस सारा विषय की जानकारी देने का ये ओएसएम की व्यवस्था है। पहली बार देश में सीबीएसई ने इसको प्रयोग किया।
6: एक और 11 में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच,
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: सुबह की चाय से लेकर रात के डिनर तक हमारी जिंदगी के हर हिस्से पर महंगाई का दबाव बढ़ता चला जा रहा है। लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर महंगाई का एक ऐसा चौतरफा हमला हुआ है जिसने हर घर के बजट को बिगाड़ कर रख दिया है। दरअसल थोक महंगाई दर के 8% के पार पहुंचने से हर सामान की कीमतें आसमान छूने लगी हैं। वहीं जिस तरह से रुपए के 100 के पार जाने से रोकने के लिए रिजर्व बैंक ने 5 अरब डॉलर का दाव लगाया है, उस डॉलर स्वैप नीलामी से बाजार में नकदी बढ़ने और महंगाई भड़कने का खतरा है। आने वाले दिनों में ये बोझ हमारी जेब पर ज्यादा भारी पड़ने जा रहा है। वहीं अगले महीने से मारुति सुजुकी अपनी गाड़ियों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ाएगी। गाड़ी के बाद सबसे बड़ा झटका हमारी सेहत और दवाओं के मोर्चे पर लगने वाला है। इंटरनेशनल लेवल पर चल रहा तनाव सीधा हमारी रसोई और मेडिकल स्टोर तक पहुंच गया है। इसकी वजह होर्मुज, जल डमरू मध्य और खाड़ी क्षेत्र में जहाजों के रास्ते बंद होने से दवाओं का कच्चा माल यानी API का भारत नहीं पहुंच पाना है। इस सप्लाई चेन में आई रुकावट की वजह से आने वाले दिनों में हर घर की जरूरी दवाएं बेहद महंगी होने की कगार पर खड़ी हुई है। दवाओं का कच्चा माल समय पर ना मिलने से पैरासिटामोल की कीमतों में भारी उछाल आ सकता है। बीमारियों से लड़ने वाली जरूरी एंटीबायोटिक्स दवाएं भी बहुत ज्यादा महंगी हो सकती है। वहीं कच्चे तेल के ऊंचे दाम ने FMCG कंपनियों की लॉजिस्टिक्स और पैकेजिंग का खर्च बढ़ा दिया है, जिससे रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले साबुन, तेल और राशन के पैकेट महंगे होने की आशंका फिर से बढ़ गई है। रसोई और सेहत के संकट के पीछे एक बड़ी वजह इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल के दामों में लगी आग भी है। भारत इस समय अपनी जरूरत का तेल ऊंची कीमतों पर खरीदने को मजबूर है। ऐसे में अप्रैल में भारत में क्रूड इंपोर्ट 4.3% घटने के बावजूद इसका बिल 50% तक बढ़ गया। हालांकि LNG का इंपोर्ट 30% घटने से इसके बिल में 1/4 की कमी आई है। तेल की इन बढ़ती कीमतों का असर ट्रांसपोर्टेशन पर भी देखने लगा है। ट्रांसपोर्टर्स ने माल भाड़े में 4% बढ़ोतरी का ऐलान कर दिया है। डीजल की कीमतों को एडजस्ट करने के लिए फ्यूल एडजस्टमेंट फैक्टर का जरिया निकाला गया है, जो सीधे आपकी हर जरूरत को महंगा कर देगा। साफ है कि आने वाले दिनों में महंगाई से राहत मिलना बेहद मुश्किल है, यानी जब तक तनाव खत्म नहीं होगा महंगाई का प्रहार लगातार तेज होता चला जाएगा। आज तक ब्यूरो।
1: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

बीजेपी संगठन में फेरबदल का आरंभ, चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी, पंजाब हरियाणा और त्रिपुरा में भी नए प्रदेश अध्यक्ष। कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन का रास्ता साफ, सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफे का किया ऐलान, दोपहर लगभग 3 बजे सौंपेंगे इस्तीफा, डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के छुए पैर।

FIFA DK Shiv Kumar Nisidhar Megat Shweper. टीएमसी सांसद काकोली घोष ने कल्याण बैनर्जी की शिकायत की, लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, सदन के भीतर महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। ट्विशा केस में रद्द हुई गिरिबाला की अग्रिम जमानत, हाईकोर्ट ने माना जांच में सहयोग नहीं कर रही, सीबीआई बोली प्रताड़ना और चोट के निशानों की जांच। बकरीद को लेकर यूपी से बंगाल, महाराष्ट्र, कलर कोलकाता में नमाज की जगह बदली गई, लखनऊ और संभल में फ्लैग मार्च, मुंबई की हाउसिंग सोसाइटीज में बढ़ाई गई सुरक्षा।

0: तो परिवर्तन का सस्पेंस खत्म हो गया। सीएम सिद्धारमैया ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे का ऐलान कर दिया है। अब वो दोपहर लगभग 3 बजे लोकभवन में जाकर अपना इस्तीफा भी सौंप देंगे। राज्यपाल के कर्नाटक में ना होने के चलते राज्यपाल के सचिव को ही अपना त्याग पत्र वो सौंप सकते हैं। इससे पहले सिद्धारमैया ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इस दौरान डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया, साथ ही सिद्धारमैया को गले भी लगाए। हमारे संवाददाता अपूर्वा जयचंद्रन इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए, जो कि डीके शिव कुमार के घर के बाहर इस समय मौजूद हैं। क्या कुछ हलचल है, कब कितने बजे जो है इस्तीफा दिया जाएगा और शपथ ग्रहण अब कब हो सकता है डीके शिव कुमार का?
1: देखिए, अभी जो फर्स्ट सीक्वेंस होगा ये होगा कि जब सिद्धारमैया यानी कि मुख्यमंत्री कर्नाटका के वो जाके गवर्नर को उनके राजीनामा लेटर देंगे और जब कब गवर्नर ये राजीनामा लेटर को एक्सेप्ट करेंगे उसके बाद ही हम ये प्लान कर सकते हैं जैसे डीके शिवकुमार आगे जाके कैसे होगा, क्योंकि अब जब एक बार गवर्नर ने रेजिग्नेशन लेटर एक्सेप्ट कर दिया उसके बाद एक सीएलपी मीटिंग बुलाया जाएगा और इस सीएलपी मीटिंग में सारे के सारे एमएलए और कांग्रेस लीडर्स जो भी है इन दोनों के तरफ से यानी कि कैंप सिद्धारमैया और कैंप डीके के तरफ से भी ये आके एक वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में डीके शिवकुमार को जब वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में डीके शिवकुमार के लिए बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा उसके बाद आगे जाके यू नो डीके शिवकुमार गवर्नमेंट फॉर्म करने के लिए गवर्नर से जाके वो लेटर भी दे सकते हैं। इसके बीच में हमें ये बता जा रहा है कि सिद्धारमैया शायद आज या कल सुबह दिल्ली जाएंगे, दिल्ली जाके राहुल गांधी से भी उनकी मुलाकात होगी, क्योंकि कुछ ही घंटों पहले दोनों डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया दिल्ली में थे और ये हाईकमांड यानी कि मल्लिकार्जुन खड़गे
0: अभी तक हुआ नहीं था, यही सबसे बड़ा सवाल सिद्धारमैया माने कैसे, लेकिन अब सिद्धारमैया मान चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, बात अब पश्चिम बंगाल की करते हैं। पश्चिम बंगाल की सत्ता से बेदखल होने के बाद से तृणमूल कांग्रेस में अब घमासान दिख रहा है। टीएमसी कांग्रेस की सांसद जय काकोली घोष ने, तृणमूल कांग्रेस की सांसद हैं काकोली घोष, उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को एक पत्र लिखा है और टीएमसी के चीफ व्हिप कल्याण बैनर्जी की शिकायत की है। काकोली उन पर दुर्व्यवहार का आरोप लगा रहे हैं। काकोली घोष ने पत्र में यह भी लिखा है कि कल्याण बैनर्जी ने कई महिला सांसदों के साथ दुर्व्यवहार किया, ऐसा ही व्यवहार करते हैं वो। टीएमसी सांसद काकोली घोष मामले में कार्रवाई और सजा की मांग उन्होंने की है। विधानसभा चुनावों के नतीजों के बाद ममता बैनर्जी ने काकोली घोष को टीएमसी के चीफ व्हिप से हटाकर कल्याण बैनर्जी को चीफ व्हिप बनाया है। उसके बाद से पार्टी के संसदीय दल में आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है।
2: कल टीएमसी सांसद काकोली घोष ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और कल ही उन्होंने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बैनर्जी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। उन्होंने कहा कि कल्याण बैनर्जी उनके साथ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं और इस तरीके से उनके साथ व्यवहार करते हैं जो शोभनीय नहीं है। उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई जो है वो होनी चाहिए। और काकोली घोष ने यह भी कहा कि ना सिर्फ वो उनके साथ बल्कि अन्य महिला टीएमसी के जो सांसद हैं उनके साथ भी उनका व्यवहार जो है वो ठीक नहीं रहता है, वो अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं कल्याण बैनर्जी पार्टी के महिला सांसदों के खिलाफ, इसलिए उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और वो इसकी शिकायत जो है वो पुलिस में भी करना चाहती हैं। और ये ऐसा पहला मामला नहीं है जब कल्याण बैनर्जी ने महिला सांसदों के खिलाफ इस तरीके का व्यवहार किया हो। इससे पहले भी पार्टी की जो संसदीय दल का व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें कल्याण बैनर्जी ने पार्टी की महिला सांसदों के बारे में जो है अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, जिसको लेकर पार्टी के अंदर ही जो है चर्चा भी हुई थी और कल्याण बैनर्जी को यह हिदायत दी गई थी कि वो इस तरीके से पार्टी के महिला सांसदों के खिलाफ जो है अभद्र भाषा का प्रयोग ना करें।
0: हम रुक करते हैं कोलकाता का, जहां पर मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी पूजा करने के लिए मायापुर के इस्कॉन मंदिर में पहुंचे हैं। यूं तो आज देश भर में बकरीद का पर्व मनाया जा रहा है, लेकिन इस बीच में एक ये तस्वीर इस्कॉन से सामने है जहां पर उन्होंने गौ पूजा की है, उनको माला पहनाई है। इस्कॉन में विधिवत पूजा अर्चना करते हुए नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी दिखाई दिए।
3: विष्णु पत्नी
0: दिलचस्प तस्वीर पश्चिम बंगाल की है। मुख्यमंत्री बनने के बाद यूं तो पहले ही एक्शन में दिखाए थे अब, लेकिन इस बीच में इस्कॉन मंदिर पहुंचे। बकरीद के दिन इस्कॉन मंदिर में उन्होंने पहुंचकर पूजा अर्चना की है और विधिवत पूजा अर्चना की है। उन्होंने गौ सेवा की है, गौ माता की उन्होंने पूजा की है। ये वो तस्वीरें हैं। तापस सेन गुप्ता हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। तापस, क्या ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था या अचानक ये कार्यक्रम तय हुआ?
3: जी देखिए, ये पूर्व निर्धारित कार्यक्रम था जहां शुभेंदु अधिकारी को इस्कॉन की तरफ से एक न्योता दिया गया था और उन्होंने आज का ही दिन चुना है। और जिस दिन बकरीद के अवसर पर नमाज को अदा किया गया था, खिलाफत कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री को इनवाइट किया गया था, लेकिन वो अपने प्री स्केड्यूल प्रोग्राम यानी मायापुर जाने का प्लान था, इसलिए वो वहां नहीं गए थे। लेकिन आज के दिन ही वो इस्कॉन पहुंचे हैं, वहां गौशाला का दौरा किए, उसके बाद वहां पर वो इस समय पूजा देते हुए नजर आ रहे हैं और आज काफी समय तक वो मायापुर के इस्कॉन मंदिर में रहेंगे, वो पूजा अर्चना करेंगे और उसके बाद वो फिर वापस कोलकाता आएंगे। और ये एक कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री बनने के बाद उनकी एक इच्छा थी कि वो मायापुर के मंदिर जाए, लेकिन समय की वजह से वो नहीं जा पा रहे थे और आज आखिरकार उन्होंने तय किया था कि आज वो मंदिर जाएंगे और वहां काफी समय वो बिताने की बात है और उसके बाद वो कोलकाता लौटेंगे।
0: बहुत शुक्रिया तापस आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब बंगाल से अगली खबर है। कोलकाता में इस बार जो है बकरीद का त्योहार मनाया जा रहा है और नमाज की जगह भी बदली गई थी। नमाज की जगह अब आपको बता दें कि रेड रोड से बदलकर ब्रिगेड परेड ग्राउंड कर दी गई है। आपको अनुपम मिश्रा हमारे संवाददाता की रिपोर्ट दिखाते हैं।
4: सालों बाद यह पहला मौका है जब कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड मैदान में ईद की नमाज अदा की गई है। इससे पहले तक कोलकाता के रेड रोड में ये ईद की नमाज हुआ करती थी, लेकिन शुभेंदु सरकार के आते ही सड़कों पर नमाज पढ़ने पर पाबंदी लगाने के बाद इस बार कोलकाता के आइकॉनिक ब्रिगेड परेड मैदान में ईद की नमाज अदा की गई। हमने जब नमाजियों से बात की तो उसमें से बहुत सारे लोग खुश भी दिखे, कुछ सारे लोग नाराज भी दिखे बंदोबस्त की वजह से, लेकिन सबका एक कहना है कि अगर शांतिपूर्वक अच्छे से ये नमाज हो जाए तो इससे बेहतर कुछ नहीं है। और आने वाले दिनों में जो महसूस हो रहा है कि कोलकाता के इसी ब्रिगेड परेड ग्राउंड में जब नमाज अदा होगी तो बहुत सारे लोग अगर शामिल भी होंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि ये मैदान बहुत बड़ा है, लाखों की क्षमता इसमें आ सकती है। ऐसे में इस बार तो लगभग 10-12 हजार थे, लेकिन आने वाले दिनों में अगर लाख लोग भी आते हैं तब भी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी।
0: 12 बजे 12 रिपोर्टर में अब अगली खबर। महाराष्ट्र के कल्याण से कल्याण के दुर्गाड़ी किले पर अब सियासत गर्मा गई और बकरीद पर दुर्गाड़ी किले में से दुर्गा माता मंदिर को अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है, जिसके चलते शिवसेना के उद्धव गुट और शिंदे गुट दोनों ही आज सड़क पर उतरे। उन्होंने घंटा नाद आंदोलन किया है। पहली बार बीजेपी भी आंदोलन में शामिल हुई 40 साल पहले। बाला साहब ठाकरे ने इस घंटा नाद आंदोलन की परंपरा शुरू कराई थी, लेकिन आज इस किले पर पुलिस की भारी मौजूदगी, शहर के कई बैरिकेड्स शहर भर में लगाए गए, लगभग 400 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था। आंदोलनकारी और पुलिस बल के बीच में झड़प भी हुई है।

0: ठाणे के कल्याण इलाके का दुर्गाडी किला काफी समय से विवादों में रहा है। बरसों से इसके ऊपर कभी मुस्लिम समुदाय का राज था, तो उसके बाद मराठा किंगडम ने भी इस पर कब्जा किया था। और इसी की वजह से, क्योंकि वहां पहाड़ पर एक तरफ जहां मंदिर भी है तो वहीं वहां पे मजार भी है, और इसकी वजह से दोनों समुदाय के जो लोग हैं वहां पर आना जाना और वहां पे अपना पूजा अर्चना करते रहते हैं। और लेकिन हमेशा से यही हुआ है कि हर साल देखने को मिलता है कि जब बकरीद का समय आता है तब वहां पर, क्योंकि ज्यादा तादाद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो उसी समय कई सारे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी जाना चाहते हैं उस समय अपनी पूजा अर्चना करने के लिए। तो ताकि कोई किसी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, कोई सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाए, तो पुलिस कई बार जो मंदिर है उसकी तरफ जाने के लिए लोगों को नहीं देती और नमाज लोगों को अदा करने के लिए दिया जाता है। इस दौरान पे क्योंकि थोड़ी देर के लिए जो मंदिर का जो एक्सेस है वो रोका जाता है, तो उस पर कई सारे लोगों ने ऑब्जेक्शन हमेशा से लिया है। और इस बार भी हमने देखा एकनाथ शिंदे की जो शिवसेना है और उद्धव बाला साहब ठाकरे की जो शिवसेना है, दोनों के जो पक्ष के जो लोग हैं वो एक साथ आए और उन्होंने वहां पे शंखनाद घंटानाद किया और काफी जोरदार प्रदर्शन हमने देखा था। कुछ समय पहले भी यूबीटी जो के जो विजय सालवी है वहां के जो नेता हैं वो गए थे पुलिस कमिश्नर मिलने के लिए कि उन मंदिर को ना बंद किया जाए और वहां पर उन्हें एक्सेस दिया जाए। लेकिन इन सब चीजों के बीच में यही हुआ कि यहाँ पर प्रोटेस्ट बहुत ज्यादा था और इसी की वजह से एक हेवी डिप्लॉयमेंट पुलिस को करनी पड़ी।
1: 12:12 रिपोर्टर में आप कर्नाटक से ब्रेकिंग न्यूज आपको देते हैं। डीके शिव कुमार अगले मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन सबसे दिलचस्प किसने नाम प्रस्तावित किया डीके शिव कुमार का? सिद्धारमैया ने, जो कि मुख्यमंत्री है। ढाई साल का फॉर्मूला, लेकिन उस फॉर्मूले को पहले ना मानने के भी जो है उन पर आरोप थे। एक नाराजगी की खबरें आती थी, तलखी की खबरें थी, लेकिन इस बीच में वही सिद्धारमैया, ढाई साल तो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन अब उन्होंने नाम खुद प्रस्तावित किया है डीके शिव कुमार का। अब लखनऊ के मलिहाबाद से खबर, जहां पर कसमंडी किले में पूजा का विवाद अब कोर्ट जाकर पहुंचा है। अखिल भारत हिंदू महासभा नाम के संगठन ने पूजा के अधिकार को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की है। इस याचिका में विवादित स्थल पर पूजा पाठ और धार्मिक अनुष्ठान की अनुमति देने की मांग की गई। हिंदू महासभा का कहना है कि श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। अखिल भारत हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी ने यह पिटीशन दाखिल की है।
2: यूपी की राजधानी लखनऊ के मलिहाबाद क्षेत्र में कसमंडी किले का विवाद अब हाईकोर्ट पहुंच चुका है। अखिल भारत हिंदू महासभा ने हाईकोर्ट में एक याचिका दाखिल कर दी है इस पूरे विवाद को लेकर, और वहां पर उस विवादित स्थल पर धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ की अनुमति हाईकोर्ट से मांगी है। इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से नमाज और हनुमान चालीसा को लेकर विवाद चल रहा था, अब ये पूरा मामला हाईकोर्ट की तरफ रुख कर गया है, जिसमें अब हिंदू पक्ष वहां पर पूजा करना चाहता है और इसके लिए याचिका दाखिल कर दी है। कोर्ट में पहुंचने के बाद इस मामले पर हिंदू पक्ष ये मान रहा है कि ये उसका शिव मंदिर किला है जहां पर नमाज की जाती रही है।
1: और अब वो खबर जो पिछले दो हफ्तों से सुर्खियों में है, भोपाल की ट्विशा शर्मा मौत मिस्ट्री केस में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में बड़ा वाजिब फैसला आया है। हाई कोर्ट ने ट्विशा के साथ गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को अब रद्द कर दिया है। अब गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार भी लटक रही है। दूसरी ओर ट्विशा के पति समर्थ को अपनी कस्टडी में लेते हुए सीबीआई ने जांच तेज कर दी है।
3: त्रिशा की मौत मामले में सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बुधवार देर रात जबलपुर हाई कोर्ट ने त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और इसके साथ ही अब गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले में साफ तौर पर कहा कि मामले की गंभीरता और जो सबूत उपलब्ध है उसे देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और मौजूद साक्ष्यों पर गंभीरता से विचार नहीं किया। हाईकोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि व्हाट्सएप चैट के आधार पर यह साफ दिख रहा है कि कहीं ना कहीं बहु यानी त्विशा को प्रताड़ित किया जा रहा था, बावजूद इसके त्विशा की सास गिरिबाला सिंह को जमानत दे दी गई। इस बीच आपको बता दें कि सीबीआई की कस्टडी में समर सिंह पहुंच चुका है, उससे पूछताछ जारी है, लेकिन अब हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद गिरफ्तारी की तलवार गिरिबाला सिंह के ऊपर भी लटक रही है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: 12 बजे 12 रिपोर्टर में खबरों का सिलसिला जारी और अब अगली खबर उत्तर प्रदेश के बिजनौर से। उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले में एक पुलिसकर्मी के द्वारा भीड़ की ओर रिवॉल्वर तानने का एक वीडियो वायरल हुआ है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर इस वीडियो को देखिए। एक पुलिसकर्मी लोगों की भीड़ है और अपनी सरकारी रिवॉल्वर ताने हुए उस भीड़ की ओर दिखाई दे रहा है। वीडियो वायरल होने के बाद पूरे मामले को लेकर तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं। आखिर पूरा मामला क्या है, आज तक संवाददाता कुमार अभिषेक बता रहे हैं।
2: भीड़ के सामने एक पुलिस वाले का पिस्टल तानना इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। ये मामला बिजनौर का है। बिजनौर में जैसे ही पुलिस वाले ने भीड़ के सामने पिस्टल ताना, भीड़ तितर बितर होने लगी, इधर उधर भागने लगी, लोग गिरने लगे और घायल भी हुए। लेकिन ये मामला चोरी से संबंधित है और कहा जा रहा है कि जंदरपुर इलाका जो कि कोतवाली का है बिजनौर का, वहां पर ट्रांसफार्मर की जो तांबे की चोरी होती है उससे संबंधित किसी चोर और उससे जुड़े लोगों से पूछताछ करने पुलिस पहुंची थी। लेकिन अचानक लोगों की भीड़ ने पुलिस वालों को घेर लिया और उसके बाद पुलिस वालों ने और एक पुलिस वाले ने अपना पिस्टल उनके ऊपर तान दिया, जिसके बाद से ही भीड़ जो है वो तितर बितर हो गई। हालांकि भीड़ पर पिस्टल तानने को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं, लेकिन इस एक दृश्य से वहां का हंगामा जरूर टल गया है। कुमार अभिषेक, बिजनौर आज तक।
1: तो जम्मू के राजौरी में आतंकवादियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन का छठा दिन है और गंभीर मुगल इलाके में ये छिपे हुए आतंकी हैं, उनकी तलाश जारी है। खबर यह है कि यहां 2 से 3 लश्कर के आतंकी छिपे हुए और गंभीर का पूरा इलाका है, यहां पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है।
4: जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले में लगातार आज छठे दिन भी आतंकवाद विरोधक अभियान चल रहा है। सुरक्षा बल कंधे से कंधे मिलाकर कार्य कर रहे हैं और प्राथमिकता यही है कि जो जंगल के इलाके में छिपे हुए आतंकवादी हैं उनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि 2 से 3 लश्कर के खूंखार आतंकवादी जंगल के इलाके में छिपे हुए हैं। शनिवार को ये मुठभेड़ शुरू हुई थी, सुबह 11:30 बजे के आसपास वहां पर सुरक्षा बलों को एक सफलता मिली थी कि उन्होंने आतंकवादियों के साथ संपर्क स्थापित किया था, वहां पर भीषण मुठभेड़ हुई। लेकिन अभी भी उस इलाके को खंगाला जा रहा है क्योंकि जिस स्थान पर यह मुठभेड़ हुई उस स्थान से आतंकवादी कहीं दूसरे स्थान की तरफ चले गए, लेकिन पूरे जंगल के इलाके को खंगाला जा रहा है। प्राथमिकता यही है कि जो ये खूंखार आतंकवादी हैं इनको जल्द से जल्द ढेर कर दिया जाए। सुनील भट्ट, जम्मू आज तक।
1: अब बात उस खबर की जो आपकी रसोई और आपके खाने से जुड़ी हुई है। जी हां, बात प्याज की। मानस के पुणे और नासिक के प्याज उत्पादक किसान परेशान है। किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार की निर्यात नीति और बाजार प्रबंधन की विफलता की वजह से उन्हें लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है। प्याज उत्पादकों ने राहत के लिए महाराष्ट्र सरकार से मदद मांगी है।
5: अब किसान तो डिमांड कर रहे हैं कि प्याज को इसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन अहम बात यह है कि अभी मार्केट में 2 और 4 रुपए से किसानों को पैसे मिल रहे हैं, वहीं जब ग्राहक प्याज खरीदने जाते हैं तो उन्हें 30 रुपए किलो से लेना पड़ता है। इसी के कारण ना ही किसान खुश है ना ही ग्राहक संतुष्ट है। और अभी विपक्ष का भी यही कहना है, जहां रोहित पवार हो या फिर विजय वरेट्टीवार हो या फिर अन्य कांग्रेसी दल, वो सभी यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनमें बदलाव जरूरी है। जब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं होता तब तक वो किसानों के साथ रहेंगे और महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन कायम रहेंगे। कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक पुणे।
1: अब खबर केदारनाथ धाम के, जहां पर भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। 35 दिनों में यहां पर 9 लाख से ज्यादा श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। आज भी केदारनाथ के दर्शनों के लिए सुबह से बड़ी संख्या में लोग अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं।
6: चारधाम यात्रा में हर दिन एक नया रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है और ये रिकॉर्ड तोड़ भीड़ लगातार चारों धामों में पहुंच रही है। श्रद्धालुओं का अभूतपूर्व जन सैलाब देखा जा सकता है। सबसे ज्यादा केदारनाथ में पिछले 35 दिनों में 9 लाख से ज्यादा यात्री अब तक बाबा केदार के दर्शन कर चुके हैं। वहीं बद्रीनाथ की अगर हम बात करें तो 6 लाख से ज्यादा यात्री बाबा बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। अब तक कुल संख्या यात्रियों की 23 लाख के आसपास पहुंच चुकी है और रजिस्ट्रेशन की अगर हम बात करें तो 42 लाख लोग अभी तक चारधाम यात्रा के लिए रजिस्टर कर चुके हैं। आस्था के साथ साथ अर्थव्यवस्था को भी इसमें सहारा है, लेकिन जो ये जन सैलाब लगातार पहुंच रहा है वहीं ये अवसर के साथ साथ प्रशासन के लिए एक चुनौती भी बन रहा है। अर्थव्यवस्था को लेकर यात्री जो है अपनी समस्या साझा कर रहे हैं। वहीं प्रशासन का कहना है कि यात्रियों को दर्शन कराना और सुविधा देना प्रशासन इसके लिए प्रतिबद्ध है। प्रशासन जो है लगातार दावा कर रहा है कि सारी जो तैयारियां हैं, जो सारे व्यवस्था है वो चाक चौबंद है। फोर्स को भी बढ़ाया जा सकता है, लेकिन फिलहाल लगातार हर दिन ये यात्रा का सैलाब और लोगों की संख्या बढ़ती जा रही है। देहरादून से अंकित शर्मा, आज तक।
1: अब गर्मी से परेशान दिल्ली के लोगों के लिए एक राहत भरी खबर है। दिल्ली में आज से अगले चार दिनों तक बारिश का अनुमान जताया गया है। मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ की वजह से दिल्ली में मौसम में बदलाव हो रहा है। आज सुबह भी दिल्ली के कुछ इलाकों में हल्की बूंदाबांदी हुई थी। IMD के मुताबिक आज दिल्ली में न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जबकि अधिकतम तापमान 43 डिग्री रहने के आसार हैं।
7: बीते एक हफ्ते से दिल्ली NCR में मौसम के हालात कुछ ऐसे थे कि कोई अगर सड़क पर बर्फ का टुकड़ा रख दे तो कुछ सेकंड के अंदर ही बर्फ पानी में तब्दील हो जाए। नौतपा यानी कि हीट वेव का असर दिल्ली और NCR में जबरदस्त था। अधिकतम तापमान 44 से 46 डिग्री तक जा रहा था, तो तेज गर्म हवाएं चल रही थी। लेकिन मौसम विभाग के हिसाब से आज गुरुवार से दिल्ली में राहत के पल शुरू हो रहे हैं। अधिकतम तापमान में गिरावट हो रही है, देर शाम रात में बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। इसके साथ साथ मौसम विभाग का कहना है कि कल जब तेज हवाएं चलेंगी, बारिश की संभावनाएं प्रबल होंगी, तो अधिकतम तापमान दिल्ली में 35 से 37 डिग्री तक रहने की संभावनाएं हैं और आने वाले 2-3 दिनों में भी राहत दिल्ली में बरकरार रहेगी। अहम बात यह है कि जून में पहले 3 दिनों में तापमान में गिरावट दिख रहा है और आसमान में बादल छाए रहेंगे, यानी कि नौतपा के बाद दिल्ली में और NCR में अब राहत के थोड़े दिन जरूर आ रहे हैं। वीडियो सहयोगी रोहित मिश्रा के साथ मोहम्मद भारद्वाज, दिल्ली आज तक।
1: और अब बात करते हैं IPL के। वैभव सूर्यवंशी के तूफान में सनराइजर्स हैदराबाद के अरमानों की चीथड़े उड़ गए। वैभव की 29 गेंदों पर 97 रनों की पारी से एलिमिनेटर मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 47 रनों से हरा दिया। फाइनल में जगह पक्की करने के लिए अब दूसरे क्वालिफायर में राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला गुजरात टाइटन्स से होगा। वैभव के शानदार प्रदर्शन पर बिहार के समस्तीपुर में उनके घर पर जबरदस्त जश्न मनाया गया, आतिशबाजी की गई और केक काटा गया।

0: आईपीएल 2026 में बिहार के लाल वैभव सूर्यवंशी का जलवा बरकरार है। एलिमिनेटर मुकाबले में वैभव सूर्यवंशी ने बुधवार को जो पारी खेली उसने तमाम क्रिकेट प्रशंसकों को फैन बना दिया। वैभव सूर्यवंशी लगातार हर मुकाबले में तमाम विरोधी टीम के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बुधवार को हुए मुकाबले में उन्होंने 29 गेंदों में 97 रन की शानदार पारी खेली। वैभव सूर्यवंशी समस्तीपुर के रहने वाले हैं और पटना में आकर उन्होंने क्रिकेट की कोचिंग की। वैभव के इस प्रदर्शन से लगातार हर तरफ उनका नाम लिया जा रहा है और अब उन्होंने क्रिस गेल के पुराने रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया है।
1: अब रुक रहे हैं छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन होंगे हाजिर, आप देखते रहिए आज तक।
2: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोस, इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो। चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
1: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
2: सोच बदलो और बैंक भी।
3: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
4: दुनिया की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग IPL, दुनिया के सबसे बड़े स्पोर्ट्स न्यूज प्लेटफॉर्म, 100 करोड़ से भी ज्यादा व्यूज के साथ फैंस ने जताया भरोसा। मैच एनालिसिस, मस्ती मजाक और बैंटर मेरे साथ सिर्फ स्पोर्ट्स तक। कोई नहीं है दूर दूर तक, मैदान में सिर्फ स्पोर्ट्स तक।
5: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार की तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
6: आज माननीय सुप्रीम कोर्ट का SIR के ऊपर फैसला आ गया है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि SIR की पूरी प्रक्रिया सही है, SIR कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और SIR जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है, वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। एक भी अगर कोई विदेशी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में है तो वो पूरी तरीके से हमारे इलेक्शन लॉज के खिलाफ है, फ्री एंड फेयर इलेक्शन के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है। आज माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो हमारी दलील थी, जो चुनाव आयोग की दलील थी, वो सभी दलीलों को स्वीकार कर लिया है।
7: बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है, तो लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी वो तो चैलेंज नहीं हुआ था बिहार का मैटर में। लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी ओनली बंगाल में किया है, इसलिए बंगाल का केस कंप्लीटली डिफरेंट है, कंप्लीटली डिफरेंट है। तो बंगाल का केस जब हियरिंग होगा तब मालूम होगा।
8: SIR को लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया, इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं बीजेपी के नेता

0: लोकभवन जाने का उनका कार्यक्रम बताया जा रहा है, जहां पर राज्यपाल चूंकि कर्नाटक में नहीं है तो ऐसे में राज्यपाल के सचिव को बताया जा रहा है कि वो अपना त्यागपत्र सौंप सकते हैं। इस्तीफा जब देंगे तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती है। सिद्धारमैया प्रेस कॉन्फ्रेंस में जानकारियां दे सकते हैं। इससे पहले सिद्धारमैया ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। इस दौरान डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया का पैर छुआ, आशीर्वाद दिया, ये वो तस्वीर भी है, साथ ही सिद्धारमैया को गले भी लगाया, जिसके बाद से सिद्धारमैया ने डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव रखा। तो कर्नाटक की राजनीति से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है, बहुत बड़ी हलचल है। कर्नाटक में मुख्यमंत्री का चेहरा अब बदल रहा है, डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री अब बनेंगे बहुत जल्द। अनघा हमारे साथ, हमारे संवाददाता जुड़ गए। अनघा, दोपहर 2:30 बजे का समय दिया जा रहा है, तो सिलसिलेवार बताएं कि क्या क्या कार्यक्रम रहने वाला है, कब तक राज्यपाल आ जाएंगे, शपथ ग्रहण कब तक होगा, फिर इनसाइड स्टोरी भी आपसे समझेंगे कि सिद्धारमैया माने कैसे।
1: यदि राज्यपाल अभी इंदौर में है, कोई फैमिली इमरजेंसी है, तो इसीलिए मुख्यमंत्री सिद्धारमैया उनका प्राइवेट सेक्रेटरी को रेसिग्नेशन हैंड ओवर कर देंगे, और उसके बाद 3 बजे एक प्रेस मीट है जहां मीडिया पर्सन को ऑफिशियली कहा जाएगा कि मुख्यमंत्री सिद्धारमैया रेसिग्नेशन कर रहे हैं। फिर अगला मुख्यमंत्री बनेगा डीके शिवकुमार, ये उनका लॉन्ग स्टैंडिंग ड्रीम है, सपना है कि उनको मुख्यमंत्री बनना है, और वो दिन ऑलमोस्ट आ चुका है। और कुछ ही देर में सिद्धारमैया लोकभवन आके उनका रेसिग्नेशन कर देंगे, और फिर ये ऑफिशियल हो जाएगा कि डीके शिवकुमार अगला मुख्यमंत्री है।
0: लेकिन अनघा, जो पहले ना थी वो हाँ में तब्दील कैसे हुई?
1: अभी जो दिल्ली में डिस्कशन हुआ है राहुल गांधी के साथ, वहाँ राहुल गांधी ने बोला है सिद्धारमैया को रिजाइन करने के लिए। उन्होंने ये कन्वे किया है कि वो एक वेरी सीनियर और टॉल ओबीसी लीडर है, सिद्धारमैया के लिए बहुत रिस्पेक्ट है कांग्रेस में, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन को वैल्यू किया गया है, और राज्यसभा रोल भी ऑफर किया गया है। तो इसीलिए सिद्धारमैया शाम को प्राइवेट
0: लेकिन मान गए हैं। और बहुत शुक्रिया अनघा आपका इस तमाम जानकारी के लिए। अब आगे बढ़ते हैं, बात करेंगे ईरान अमेरिका के बीच में एक बार फिर से तनाव बढ़ गया है अमेरिकी हमले के बाद। ईरान ने भी पलटवार किया है, मिडिल ईस्ट के अमेरिकी बेसिस पर यह मिसाइल अटैक किया गया है। कुवैत के अमेरिकी बेसिस को एक बार फिर से टारगेट किया गया, और हमले के बाद से कुवैत में एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव हो गया। IRGC ने बयान जारी करके कहा है कि उसने बंदर अब्बास हवाई अड्डे के पास एक ईरानी सैन्य ठिकाने पर अमेरिकी हमले का जवाब अब कुवैत में ही एक अमेरिकी हवाई अड्डे पर हमला करके दिया। IRGC ने कहा कि यह जवाबी कार्रवाई एक गंभीर चेतावनी है, ताकि दुश्मन को पता चले कि आक्रामकता को अनदेखा नहीं किया जाएगा, और अगर यह दोहराई जाती है तो हमारी प्रतिक्रिया और भी निर्णायक होगी। ईरान के पलटवार से पहले अमेरिका ने होर्मुज में ईरान के सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया है। पूर्वी बंदर अब्बास में अमेरिका ने यह हमला किया है, वह अमेरिकी अधिकारियों ने दावा किया है। ईरान ने अमेरिकी कमर्शियल वेलेस पर 4 ड्रोन दागे हैं, अमेरिकी मिलिट्री ने इन मार गिरा है। ईरान के ड्रोन हमले को लेकर जो न्यूज एजेंसी है एक्सियोस, उसने ये खबर दी है। ऐसे हमलों के बाद से पश्चिमी एशिया में तनाव और ज्यादा बढ़ गया है। इसी बीच में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के सख्त बयान ने हालात को गर्मा दिया है। ट्रंप ने ओमान पर ईरान का साथ देने को लेकर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दे दी है। ये डोनाल्ड ट्रंप का पोस्ट भी हम आपको दिखा रहे हैं। ईरान नेवी स्ट्रांग, मतलब हवाले से वो लिख रहे हैं, लेकिन साथ साथ में वो जो तबाही मचा रहे हैं उसका भी दावा कर रहे हैं। इस बीच में टकराव लगातार दोनों ही देशों में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान के बीच में डील दुनिया के लिए सिरदर्द बन गए हैं। एक दिन डील पर बात होती है और उसी रात हमला हो जाता है। बकरीद से पहले फिर ईरान और अमेरिका के बीच में वार पलटवार की खबर है। मामला होर्मुज का ही है, जहां पर जहाजों की आवाजाही को लेकर दोनों ही ओर से तनातनी बनी हुई है।
2: ईरान की जंग में मिसाइलों की लॉन्चिंग का सिलसिला कुछ इसी तरह जारी है, जिस ईरान की फौज को ट्रंप हारी हुई तबाह सेना करार देते हैं, उसी ईरान सेना ने अब अमेरिकी एयरबेस पर हमले का दावा किया। नई झड़प ईरान के बंदर अब्बास में ईरानी ठिकानों पर हुए अमेरिकी हमले के बाद शुरू हुई। एक दिन पहले अमेरिका ने बंदर अब्बास में हमले किए थे।

0: उसके बाद से ईरान ने अमेरिकी बेस पर हमलों की बौछार की। हालांकि अमेरिका की ओर से ऐसे किसी ईरानी हमले की पुष्टि नहीं की गई है, लेकिन विदेशी न्यूज एजेंसी ने अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से दावा किया कि अमेरिकी सेना ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए और 5वें ड्रोन की उड़ान से पहले ही ईरानी बेस को तबाह कर दिया है। वार पलटवार के दावों के बीच कुवैत ने भी दावा किया है कि उसके ऊपर मिसाइल और ड्रोन से हमले किए गए हैं। हालांकि इन हमलों की जिम्मेदारी किसी ने नहीं ली है। अमेरिका और ईरान के बीच कल रात हुई झड़प के बारे में आधिकारिक पुष्टि किसी सेना ने नहीं की है, लेकिन ईरानी सेना के सूत्रों के हवाले से तस्नीम न्यूज एजेंसी ने कहा है कि अमेरिका एक तेल टैंकर बिना ईरानी सेना को इजाजत के हॉर्मुज पार करने की कोशिश कर रहा था। पकड़े जाने के डर से अमेरिकी टैंकर अपना रडार बंद करके गुजर रहा था। ईरानी सेना ने अमेरिकी टैंकर पर चेतावनी शॉट्स दागे तो अमेरिका ने बंदर अब्बास में हमला किया। हालांकि अमेरिकी हमले में ईरान में क्या नुकसान हुआ ये पता नहीं, लेकिन हॉर्मुज को लेकर चल रही तनातनी एक बार फिर सामने आई और ट्रंप ने दो टूक कह दिया कि हॉर्मुज कभी किसी की शर्त पर नहीं बंद होगा।
1: Would you accept a short-term deal that allows Iran and Oman to control the strait, and would they have to open it immediately, or would you be open to that happening over a period of time?
2: No, the strait's going to be open to everybody. It's
1: and who would control
2: it? It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it.
0: ट्रंप नाराज हैं कि जिस तरह हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से लेवी वसूली की कोशिश ईरान ने शुरू की है और उसमें हिस्सेदारी लेने का लालच देकर ओमान को भी अपने साथ मिलाने की कोशिश कर रहा है, उसे लेकर ट्रंप ने ओमान को भी नेस्तनाबूद करने की खतरनाक धमकी दी।
2: ओमान will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: हॉर्मुज पर कंट्रोल की जद्दोजहद ऐसी चल रही है कि एक तरफ अमेरिकी सेना ओमान की खाड़ी के बाहर ब्लॉकेट करके बैठी हुई है, दूसरी ओर ईरान हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों की निगरानी कर रहा है। अमेरिकी सेंटकॉम ने कहा है कि ब्लॉकेट शुरू होने के बाद से अब तक 85 जहाजों को अमेरिका ने रोका है, 26 कमर्शियल जहाजों को गुजरने की इजाजत दी है और 57 से अधिक कमर्शियल जहाजों को रूट बदलने को मजबूर किया है। उधर ईरान का कहना है कि उसने 24 घंटे के अंदर हॉर्मुज से 26 जहाजों और टैंकरों को हॉर्मुज से गुजरने की मंजूरी दी है और ऐलान किया है कि अब रोज अधिकतम 15 जहाज ही हॉर्मुज से गुजरेंगे। इस सूरत में जाहिर है कि ईरान और अमेरिका के बीच न्यूक्लियर डील पर शुरू हुई बात अब हॉर्मुज से लेकर अब्राहम अकॉर्ड तक की शर्तों में उलझ गई है, जिसका सुलझना आसान नहीं दिख रहा। आज तक ब्यूरो।
3: ईरान और अमेरिका में झड़के तब हो रहे हैं जब उनके बीच में सीज फायर कायम है, लेकिन इस सीज फायर से थोड़ी दूर इजराइल लेबनान के बीच में भी एक सीज फायर हुआ था। उस सीज फायर की ऐसी धज्जियां उड़ी हैं कि अब इजराइल लेबनान की जमीन पर कहर बरपा रहा है। पहले जमीनी अभियान शुरू करने का दावा करने वाले इजराइल ने अब दक्षिणी लेबनान के टाश सिटी पर जबरदस्त हमला किया है।

0: लेबनान की जमीन पर इसराइल के बारूद कुछ ऐसे फट रहे हैं कि धमाकों से पूरी धरती दहल जा रही है। लेबनान की टायर सिटी में इसराइली हमले ने हिजबुल्ला के ठिकानों को गर्द में मिला दिया। दक्षिण लेबनान के टायर सिटी और उसके पास के अल अताहर इलाके में जब इजरायली सेना ने बॉम्बिंग शुरू की तो धमाके ही धमाके सुनाई पड़े। दक्षिणी लेबनान से पूर्वी बेका घाटी तक इसराइल ने हिजबुल्ला के 100 से अधिक ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इसराइल का दावा है कि उसने ये हमले हिजबुल्ला के ड्रोन ठिकानों, हथियार भंडारों और आतंकियों के ठिकानों पर किए हैं, जबकि लेबनान का कहना है कि इन इसराइली हमलों में लेबनान में 56 से अधिक लोगों की मौत हुई और 103 जख्मी हुए। हालांकि इन हमलों से पहले इसराइल ने इस पूरे इलाके को खाली करने की सूचना दे दी थी और आम लोगों को दक्षिणी शहरों को छोड़कर आगे जाने को कह दिया था।
1: लेबनान के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्ला द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनान के सभी निवासियों से हिजबुल्ला के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्ला लेबनान में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनान के निवासियों को ज़हरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
0: अब तक दक्षिणी लेबनान के लितानी नदी तक सैन्य कार्रवाई कर रही इजरायली सेना की जमीनी फौज अब और आगे बढ़कर ज़हरानी नदी तक की हाथ को कार्रवाई की जद में ले चुकी है। ये पूरा इलाका इजरायल की मौजूदा सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर तक है, जहां अब इजरायली सेना हिजबुल्ला के ठिकानों पर कहर बरपा रही है। खासकर टायर सिटी और उसके आसपास जिस तरह इजरायल की सेना ने बमबारी की, उससे शहर में चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। दरअसल इसराइल के इतने भीषण हमलों के बावजूद हिजबुल्ला हार मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो हिजबुल्ला की ओर से जारी प्रोपेगेंडा वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्ला के आतंकवादी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना के बेहद करीब मौजूद होने का दावा कर रहे हैं। इससे पहले हिजबुल्ला ने इजरायली सेना और उसके सैन्य ढांचों पर ड्रोन से हमले का वीडियो जारी किया था। इन हमलों के बाद से इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ऊपर भीषण हमले शुरू किए। आज तक ब्यूरो।
2: तो ईरान और लेबनान में जंग के दो मोर्चों पर क्या हो रहा है, ये दुनिया देखकर परेशान है और अमेरिकी भी परेशान है। इस जंग के दौर में अमेरिका के राष्ट्रपति झूठ बोल रहे हैं या फिर अमेरिकी मीडिया अमेरिका के खिलाफ दुष्प्रचार फैला रहे हैं, क्योंकि जब होर्मुज में ईरानी सेना अमेरिकी टैंकर पर हमला का दावा कर रही है तो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप ऐसे दावे कर रहे हैं कि अमेरिकी हमले में ईरान की जो पूरी नेवी है समंदर के गर्त में समा चुकी है। AI से बने वीडियो के जरिए ट्रंप बार बार अपने उसी दावे को दोहराते नजर आते हैं कि अमेरिका ने ईरानी नेवी को खत्म कर दिया है। दरअसल ट्रंप के इस दावे को अमेरिकी मीडिया लगातार खारिज कर रहा है। ट्रंप ने CNN के दावे के खिलाफ पोस्ट इसलिए किया था क्योंकि अमेरिकी मीडिया CNN के ओवल ऑफिस में ट्रंप के बयानों का फैक्ट चेक कर रही थी। US इंटेलिजेंस के आकलन का हवाला देते हुए CNN ने दावा किया था कि ईरान के पास अभी भी मिसाइल लॉन्चर्स, ड्रोन्स और एयर डिफेंस क्षमताएं मौजूद हैं। अखबार ने ट्रंप के उस दावे को भी झूठा बताया था कि अमेरिका में तेल की कीमतें गिरकर 1.9 डॉलर प्रति गैलन हो गई है। अखबार दावा कर रहा था कि सरकारी पर्ची पर मिलने वाली दवाइयों के 400 से 600% सस्ती होने का बयान भी गलत था और दावा भी गलत था कि अमेरिका में 18 लाख करोड़ डॉलर का निवेश आ रहा है। दरअसल ईरान के झंझट में उलट चुके डोनाल्ड ट्रंप के सामने अमेरिका के लोगों को यह बताना मुश्किल हो रहा है कि इतना भारी भरकम खर्च वाली ये जंग में अमेरिका ने अपने पांव डाले ही क्यों थे, क्योंकि अमेरिकी रिसर्च एजेंसियां लगातार बता रही हैं कि इस जंग में अमेरिका की जंगी हैसियत भी तेजी से घटी है। अब सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज यानी कि CSIS के विश्लेषण में चेतावनी दी गई कि ईरान से जंग में अमेरिका के टॉमहॉक, पेट्रियट और थार मिसाइलों के भंडार में तेजी से कमी आई। इसमें 1000 ज्यादा टॉमहॉक मिसाइलों की कमी पूरी करने के लिए 4 साल यानी कि 2030 तक का समय लग सकता है। इस तरह 290 थार इंटरसेप्टर मिसाइलों की किल्लत दूर करने के लिए उनको 2029 तक का समय लग सकता है और 1000 से ज्यादा पेट्रियट मिसाइलों के भंडार को वापस भरने में आधा 2029 इसमें खत्म हो सकता है। अब इस बीच में चिंता जाहिर की जा रही है कि अगर चीन ताइवान में कुछ हालात बिगड़े तो फिर अमेरिका इस हालात में नहीं है कि वो जंग के मैदान में टिक पाएगा, क्योंकि अमेरिकी थिंक टैंक बताते हैं कि चीन ने ताइवान को ताकत के बूते कब्जे में करने के लिए 2027 का टारगेट सेट किया हुआ है। ईरान और होर्मुज में रोज रोज झड़पों से पूरी दुनिया में आगे फिक्र है कि आखिर डील क्या हो रही है, क्या हो रहा है। ईरान और अमेरिका में जो बातचीत चल रही है क्या वो किसी अंजाम पर पहुंचेगी भी या फिर नहीं। ट्रंप के पल पल बदलने वाले बयान और रुख को देखकर भी अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है कि क्या डील होगी, क्योंकि अब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि डील की जरूरत अमेरिका को नहीं ईरान को है और इसीलिए किसी भी शर्त पर अमेरिका तो पीछे हटेगा नहीं।
3: How would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on?
4: Well, I think we're doing very well. They are starting to give us the things that they have to give us. And if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
3: Is there a time frame in your mind?
4: What?
3: Is there a time frame in your mind for...
4: I mean, it happens quickly. The problem is every time I mention a time frame, for instance, I see... You know, we've been doing this for a few months. Vietnam lasted 19 years. Korea lasted 8 years. Afghanistan lasted many years. They were all many, many years, and we're into it for a few months, and...
5: Considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
4: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that...
5: Easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
4: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that... They claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
6: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
4: no,
6: that?
4: No, I wouldn't be comfortable.
7: Mr. President,
4: that would not make me comfortable.
2: अब एक ब्रेकिंग न्यूज इस समय आपको देते हैं। नीट पेपर लीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। इस समय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर एक नीट मामले को लेकर एक इंपॉर्टेंट बैठक चल रही है। नीट पेपर लीक मामले पर सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बैठक में है, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में बताए जा रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया भी बताया जा रहा है कि राजनाथ सिंह के आवास पर पहुंचे हुए एनडीए के चीफ भी हैं। ये बड़ी खबर इस समय आपको बता दें। एनडीए डीजी भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में मौजूद है। नीट पेपर लीक का मामला लगातार बना हुआ है, ऑपोजिशन भी लगातार प्रेशर लगातार बना रहा है और बैठक में पीएमओ के भी बड़े अधिकारी शामिल हैं। ये बड़ी खबर इस समय आपको बड़ी खबर इस समय आपको बता दें। एनटीए डीजी भी बताया जा रहा है कि इस बैठक में मौजूद है। नीट पेपर लीक का मामला लगातार बना हुआ है, ऑपोजिशन भी लगातार प्रेशर लगातार बना रहा है और बैठक में पीएमओ के भी बड़े अधिकारी शामिल है। ये बड़ी खबर इस समय आपको। राहुल गांधी तो हर दूसरे दिन जो है इस मामले में हमलावर हैं सरकार पर, वो धर्मेंद्र प्रधान का लगातार इस्तीफा मांग रहे हैं, लेकिन इस बीच में अब पीएमओ के कई अधिकारी भी इस बैठक में। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, क्या हो रहा है इस बैठक में?
8: देखिए आगे किस तरीके से जो है वो रहेगा और भविष्य में नीट का जो एग्जाम हो उसको लेकर किस तरीके के एहतियात बरते जाए, और साथ ही साथ राजनाथ सिंह क्योंकि रक्षा मंत्री भी हैं और वरिष्ठ मंत्री हैं इस सरकार के, वहां पर धर्मेंद्र प्रधान जो शिक्षा मंत्री हैं उनके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया जो दूर संचार मंत्री है वो है एनटीए के डीजी अभिषेक सिंह वहां पर मौजूद है, उनके साथ साथ जो है पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की लगातार नजर इस पूरे मामले पर बनी हुई है कि अब आगे इस तरीके की कोई गलती ना हो और उसके लिए जो भी कड़े कदम उठाए जाने चाहिए वो उठाए जाए, टेक्नोलॉजी का जिस तरीके से इस्तेमाल किया जाए वो किया जाना चाहिए। तो इसीलिए ये बैठक बुलाई है, राजनाथ सिंह के घर पर पूरी बैठक चल रही है। अब देखना यह है कि इस बैठक में क्या बड़े फैसले जो है वो लिए जाएंगे।
2: उसी सिस्टम को दुरुस्त करने पर पेपर लीक ना हो इस पर चिंतन मंथन, या दूसरे विकल्प यानी कि किसी का इस्तीफा, किसी को हटाया जाना या एनटीए को ही भंग कर देना, इस पर भी चिंतन मंथन होगा?
8: देखिए, एनटीए को भंग करने का अभी कोई मामला जो है वो सामने नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि ये भी कहा जा रहा है कि सबसे बड़ी बात जो है वो इसलिए है कि जो एनटीए का ये मानना है कि पेपर लीक जो है वो प्रिंटिंग से लेकर सेंटर तक के बीच में नहीं हुआ। ये पेपर लीक जो हुआ है वो बेसिकली जो है जिन एक्सपर्ट्स ने इस पेपर को तैयार किया वहां से हुआ है। तो ये मामला पेपर लीक का नहीं है, ये बल्कि जो है एक तरीके से देखें तो एक गलती है, उसको किस तरीके से ठीक आगे भविष्य में किया जा सकता है, किस तरीके की एहतियात जो है वो बरती जा सकती है, क्या कंप्यूटर बेस्ड जो है वो इसमें एग्जाम हो, इन सब चीजों को लेकर जो है वो बातचीत है, गहन चिंतन सरकार की तरफ से किया जा रहा है कि भविष्य में इस तरीके का कोई भी मामला पेपर लीक जो है वो ना हो, इस पर किस तरीके से सरकार को जो कदम उठाने हैं उसको लेकर ये बैठक है। और क्योंकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया एनटीए के डीजी और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद है, तो ये मानकर चला जा सकता है कि सरकार इस पूरे मामले को कितनी गंभीरता से लिया है।
2: बिल्कुल, सरकार गंभीरता से इस मामले को लेते हुए दिख रहे, बैठक तो हो रही, लेकिन सवाल एक ये भी है, हिमांशु ऑपोजिशन भी लगातार सवाल उठा रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई इस्तीफा दे दीजिए, क्या इस पर चिंतन मंथन होगा इधर?
8: देखिए, क्योंकि अगर इस्तीफा होना होता या कोई इस तरीके की चीज हुई होती तो जब ये पूरा मामला आया तभी हो गया होता, क्योंकि इसमें सरकार की तरफ से ये भी माना जा रहा है कि ये पेपर लीक का मामला नहीं है, ये बेसिकली एक ऐसी गलती है जो एक पर्टिकुलर व्यक्ति जिनको ये जिम्मेदारी थी कि वो पेपर को बनाए, क्वेश्चन पेपर सेट करे, उनके एंड से जो है ये लीकिंग लीक हुआ है, तो वो कहीं ना कहीं एक गलती है। पेपर लीक जो है वो प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सेंटर तक नहीं हुआ, इस बात को जो है एनटीए के डीजी, इन्होंने जो एजुकेशन की संसदीय कमेटी है उसके अंदर भी
2: वो खामी भी ना हो, इसको दुरुस्त करने के लिए चिंतन मंथन चल रहा है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए, और अब रुकने छोटे से ब्रेक के लिए, आप देखते रहिए आज।
7: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
9: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
11: Thank God I get to wake
10: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
12: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
13: Sokudo.
14: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
15: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
16: सोच बदलो और बैंक भी।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएमओ के अधिकारी और एनटीए चीफ मीटिंग में मौजूद, फूल प्रूफ सिस्टम पर चर्चा। डीके शिव कुमारी होंगे कर्नाटक के अगले सीएम, सिद्धारमैया के नाम ने नाम का रखा प्रस्ताव, 2:30 बजे इस्तीफा देने जाएंगे लोकभवन, नाश्ते पर दोनों नेताओं का हुआ भावुक मिलन। बीजेपी संगठन में फेरबदल का आरंभ, 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी, पंजाब हरियाणा और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्ष। टीएमसी सांसद काकुली घोष ने कल्याण बैनर्जी की शिकायत की, लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, सदन के अंदर महिलाओं से दुर्व्यवहार का लगाया आरोप। विशा केस में सास गिरिबाला से सीबीआई की लंबी पूछताछ, अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद लड़की गिरफ्तारी की तलवार, त्विशा को प्रताड़ित करने के आरोप की भी जांच।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। दिख रहे हैं लंच ब्रेक, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। शुरुआत कर रहे हैं नॉन स्टॉप 100 के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
0: टीएमसी में कलह बढ़ी, काकुली घोष लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र, अपनी पार्टी के नेता कल्याण बैनर्जी की शिकायत की। काकुली घोष ने कल्याण बैनर्जी पर लोकसभा के भीतर दुर्व्यवहार का आरोप लगाया, लिखा कि कल्याण बैनर्जी ने कई महिला सांसदों के साथ ऐसा व्यवहार किया। काकुली घोष ने अपने पत्र में लोकसभा स्पीकर से मामले में हस्तक्षेप करने की अपील के साथ मामले में कार्रवाई और सजा की मांग की। मामले में काकुली घोष के बेटे ने भी प्रतिक्रिया देते हुए कल्याण बैनर्जी को कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी। अभिषेक बैनर्जी ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्र और बीजेपी पर साधा निशाना, कहा भारत के युवाओं को अनिश्चितता और धोखे के दुष्चक्र में धकेला जा रहा है। दुर्गापुर कोर्ट परिसर में राजनीतिक तनाव, टीएमसी ब्लॉक अध्यक्ष राजीव घोष की पेशी के दौरान बीजेपी ने लगाए चोर चोर के नारे और जूते दिखाकर विरोध प्रदर्शन किया। मामला बढ़ता देख स्थिति को नियंत्रित करने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती करनी पड़ी। बशीरहाट में बड़ा भ्रष्टाचार का मामला, बदुरिया नगर पालिका चेयरमैन टीएमसी नेता दीपांकर भट्टाचार्य गिरफ्तार। पूछताछ के बाद खुलासा, घर और जूट मिल के पास 2.25 करोड़ कैश और सोना बरामद। नादिया के मायापुर स्थित इस्कॉन मंदिर पहुंचे शुभेंदु अधिकारी की खास पूजा अर्चना, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। कर्नाटक में बड़ा सियासी बदलाव, सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा देने का किया ऐलान। इस्तीफे के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं सिद्धारमैया, इससे पहले सिद्धारमैया ने कैबिनेट मंत्रियों के साथ ब्रेकफास्ट मीटिंग की। सिद्धारमैया का इस्तीफा पत्र राज्यपाल के निजी सचिव पंकज कुमार मेहता को सौंपा गया। सिद्धारमैया के पैर छूते दिखे शिव कुमार। डीके शिव कुमार को लेकर तेज हुई अटकलें, कांग्रेस नेतृत्व जल्द सौंप सकता है राज्य की कमान। डीके शिव कुमार के समर्थक उनकी संभावित ताजपोशी की तैयारी। दिल्ली संगठन में बड़ा बदलाव, बीजेपी को मिल गया नया प्रदेश अध्यक्ष, हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई कमान। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी की अध्यक्ष बनी, केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी आलाकमान ने संगठनात्मक फेरबदल करते हुए विधायक अभिषेक देवरॉय को त्रिपुरा प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की घोषणा। हीटवेव के संबंध में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, लू से बचाव के लिए जनता से सतर्क रहने की सीएम की अपील। डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग, राहत एजेंसी को अलर्ट मोड पर रहने का आदेश। हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम के ऑर्डर। बकरीद के मौके पर कल्याण के ऐतिहासिक दुर्गाड़ी किले पर भारी पुलिस बल की तैनाती। शिवसेना के ठाकरे और शिंदे गुट सहित बीजेपी का घंटानाद आंदोलन, माहौल तनावपूर्ण। दुर्गा माता मंदिर बंद किए जाने पर शिवसेना बीजेपी का विरोध प्रदर्शन तेज, पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया, 400 से अधिक जवानों की तैनाती। पहली बार घंटानाद आंदोलन में बीजेपी हुई शामिल, 40 साल पहले बालासाहेब ठाकरे ने घंटानाद आंदोलन की परंपरा शुरू की थी। भोपाल के हमीदिया अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद खुले में शव की सिलाई का मामला, मानवता पर उठे सवाल। कृषा शर्मा मौत मामले मध्यप्रदेश हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, सासगीर बाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत रद्द। कृषा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की बड़ी कार्रवाई, गिरिबाला सिंह के भोपाल स्थित घर पर 2 घंटे से जांच जारी, डिजिटल नक्शा तैयार कर पूछताछ। हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज के बाद गिरफ्तारी की तैयारी तेज, सीबीआई ने भोपाल में कैंप ऑफिस के लिए पुलिस कमिश्नर को लिखा पत्र। सबूत सुरक्षित रखने के लिए विशेष दफ्तर की मांग, वकील इनोश जॉर्ज कार्लो पर भी मौके पर पहुंचे। कोटा मेडिकल कॉलेज में नकली ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन सप्लाई का मामला, दवा फर्म के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बंगाल सरकार ने भारत बांग्लादेश सीमा पर फेंसिंग के लिए बीएसएफ को सौंपी 142.79 एकड़ जमीन। सीमा सुरक्षा मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम, बंगाल के 9 जिलों में बीएसएफ को दी गई जमीन, 600 किलोमीटर सीमा अब भी बिना फेंसिंग के। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 3 दिवसीय उत्तराखंड दौरे पर, कोर कमेटी और कैबिनेट मंत्रियों के साथ करेंगे बैठक। कंसा पासी किला की पूजा के अधिकार को लेकर हिंदू महासभा पहुंची हाईकोर्ट, प्रशासनिक प्रतिबंधों को दी गई चुनौती। हिंदू महासभा का कहना है कि श्रद्धालुओं को पूजा करने से रोकना उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है। राहुल गांधी के आरोपों पर सीबीएसई ने दी प्रतिक्रिया, सभी आरोपों को बताया गलत और भ्रामक। बोर्ड ने कहा कि पूरी टेंडर प्रक्रिया सामान्य वित्तीय नियम के तहत पारदर्शी तरीके से पूरी की गई। सीबीएसई की प्रतिक्रिया पर राहुल गांधी ने फिर उठाए सवाल, कहा इनकार करना कोई जवाब नहीं, 18.5 लाख स्टूडेंट्स का भविष्य खतरे में है। शिक्षा मंत्री पर राहुल गांधी का निशाना, कहा शिक्षा मंत्री और सीबीएसई मेरे पूछे गए 4 आसान सवालों का जवाब क्यों नहीं दे पा रही। राहुल गांधी ने नीट पेपर लीक मामले पीड़ित परिवार से मुलाकात करते भ्रष्ट सिस्टम का नतीजा बताया। 21 जून को होने वाली नीट परीक्षा को लेकर बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने तैयारियों की समीक्षा की, कमेटी के अध्यक्ष रहे मौजूद। नीट मामले में दो आरोपियों को 10 जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया, दो आरोपियों को 5 दिन की सीबीआई हिरासत में भेजा गया है। सीबीएसई के 3 भाषा नियम के खिलाफ याचिका, सुप्रीम कोर्ट ने गेंद, एनसीईआरटी से मांगा जवाब। मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम से मिलने पहुंचे विजय, पीएम को गुलदस्ता भेंट करते हुए आई तस्वीरें। विजय ने पीएम से उन मांगों पर बात की जो केंद्र सरकार के सामने पेंडिंग है। जम्मू कश्मीर के रजौरी में सर्च ऑपरेशन 6 दिन जारी, सूत्रों के अनुसार इलाकों में लश्कर के 2 से 3 बड़े आतंकवादी छिपे हुए हैं। उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल प्रतीक शर्मा ने कल इलाके का दौरा किया और चल रहे आतंकवाद विरोधी अभियान की समीक्षा की। छिपे हुए आतंकवादियों का पता लगाने के लिए ड्रोन और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। अमर कॉलोनी गोलीकांड केस की जांच दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर, बीते मंगलवार को एक स्कूली छात्रा की गोली मारकर हत्या का मामला। मणिपुर के एक प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन का मास्टरमाइंड दिल्ली से गिरफ्तार, दिल्ली में गोपनीय मीटिंग करके आया था ये उग्रवादी। केरल के पूर्व सीएम पिनाराई विजयन के समर्थकों ने ईडी के एक्शन के खिलाफ बवाल किया, समर्थकों ने जमकर उत्पात मचाया।

समर्थकों ने इस दौरान ईडी की गाड़ी पर फेंके पत्थर, बाल बाल बचे अधिकारी, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। ईडी ने दर्ज कराई एफआईआर, पूर्व सीएम विजयन के घर रेड के वक्त हुआ था अटैक। एसएफआईआर ने पिछले साल अप्रैल में वीणा विजयन के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी। आरोपी की कंपनी ने भुगतान लेकर कोई भी सेवा शुरू नहीं की थी। ईडी की कार्रवाई के बाद केरल की राजनीति में हलचल तेज, विपक्षी दलों ने इस भ्रष्टाचार का बड़ा मामला बताते हुए बोला हमला। लखनऊ में बिजली चोरी पकड़ने गई टीम पर हमला, जेई से मारपीट। मेरठ पिता पर दूसरी पत्नी के साथ मिलकर नाबालिग बेटी की हत्या करने का आरोप, आरोपी पिता और सौतेली मां हिरासत में। पटना में गंगा नदी में पलटी नाव, तीन लोगों की मौत और सात लापता। कटिहार में तेंदुए के आतंक से परेशान ग्रामीण, पीट पीट कर दी की तेंदुए की हत्या। औरैया में पुलिस वाहन से वाहन को ट्रक ने मारी टक्कर, एसआई की मौत, दो सिपाही गंभीर रूप से घायल। बिहार के सहरसा के सदर अस्पताल में पोस्टमार्टम हाउस में कुत्तों के नोचे, मानव अंगों के नमूने, स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल। हरदोई प्रतिमा बवाल मामले में दो गिरफ्तार, 10 से अधिक लोग हिरासत में, गांव में भारी पुलिस बल की तैनाती। गाजियाबाद में महिलाओं समेत दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे और लात घूंस से चले। नागपुर अपना वीडियो वायरल। पुणे में शराब, गाजियाबाद में महिलाओं समेत दो पक्षों में जमकर मारपीट, लाठी डंडे और लात घूंस से चले। नागपुर रत्नागिरी महामार्ग पर एलपीजी गैस टैंकर पलटा, ड्राइवर की मौत। वाशी में गर्दन तक डूबकर गंदे नाले को साफ करता व्यक्ति, वीडियो वायरल। पुणे में शराब के नशे में तेज रफ्तार कार पुल से गिरी, 19 साल के युवक पर मामला दर्ज। भिलाई में कार शोरूम के जीएम के भेजे अश्लील मैसेज और छेड़छाड़ से परेशान महिला स्टाफ, पुलिस के सामने जड़े थप्पड़। आंधा में भीषण सड़क हादसा, ट्रक ने बाइक और ई रिक्शा को मारी टक्कर, 6 की मौत, कई घायल। संगरूर में सुबह सुबह साइकिलिस्ट पर कार सवार लुटेरों का हमला, मोबाइल लूटकर फरार। प्रलोभन देकर धर्मांतरण कराने वालों पर उत्तराखंड पुलिस का एक्शन, उधम सिंह नगर से 4 गिरफ्तार। हैदराबाद सनराइजर्स को हराकर क्वालिफायर टू में पहुंचे राजस्थान रॉयल्स, आईपीएल के फाइनल में पहुंचने का मिला एक और मौका। न्यू चंडीगढ़ में खेले गए एलिमिनेटर मैच में हैदराबाद को दी गई करारी शिकस्त, 4 गेंद रहते 47 रन से जीता मैच। पहले बल्लेबाजी करते हुए राजस्थान ने खड़ा किया 243 रन का विशाल स्कोर, जवाब 196 रन पर सिमट गई हैदराबाद सनराइजर्स। मैच के हीरो रहे राजस्थान रॉयल्स बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी, 38 गेंद पर खेली 97 रन की धमाकेदार पारी। वैभव सूर्यवंशी के बल्ले के सामने हैदराबाद के गेंदबाजों का सरेंडर, 334.48 के तूफानी स्ट्राइक रेट से नापा मैदान का हर कोना। आईपीएल प्लेऑफ इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक जमाने वाले बल्लेबाज बने वैभव सूर्यवंशी, वह 16 गेंद में जड़ा अर्धशतक। आईपीएल के एक सीजन में सबसे ज्यादा छक्के लगाने वाले बने सूर्यवंशी, अब तक लगा चुके हैं 65 छक्के, तोड़ा क्रिस गेल का रिकॉर्ड। एक ही सीजन में 3 बार एक पारी में 10 से ज्यादा छक्के लगाने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बन गए हैं वैभव। ऑरेंज कैप की रेस में सबसे आगे हैं वैभव सूर्यवंशी, अब तक सीजन में कुल बना चुके हैं 680 रन, इनमें से 610 रन सिर्फ बाउंड्री से बनाए हैं। आईपीएल इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए वैभव, 29वीं गेंद पर 97 रन पर हुए आउट। इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पैरा जावलिन थ्रोअर सुमित अंतल ने रचा इतिहास, फेंका 74.82 मीटर दूर भाला, तोड़ा अपना ही वर्ल्ड रिकॉर्ड। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर कई बार भारत का नाम किया है रोशन, 2 बार पैरालंपिक्स में गोल्ड जीत चुके हैं सुमित, 7 बार ध्वस्त किया है वर्ल्ड रिकॉर्ड। सुमित अंतल की शानदार उपलब्धि पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने दी बधाई, सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए कहा ऐतिहासिक प्रदर्शन। म्यूनिक में आईएसएसएफ विश्व कप में ईशा सिंह ने शानदार विश्व रिकॉर्ड बनाकर रचा इतिहास, 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में 50 में से 43 अंक हासिल कर जीता गोल्ड। खेल मंत्री मनसुख मंडाविया ने भारत की बेटी की इस उपलब्धि पर जताया गर्व, सोशल मीडिया पर लिखा भारत के वर्ल्ड रिकॉर्ड से भरा दिन। कल होगी आईपीएल फाइनल के लिए आखिरी जंग, न्यू चंडीगढ़ में होगा गुजरात और राजस्थान के बीच क्वालिफायर टूर। वैभव की शानदार बल्लेबाजी को देखकर समस्तीपुर में जश्न का माहौल, लोगों ने पटाखे फोड़कर मनाया जश्न। धुआंधार 97 रन की पारी के लिए काटा गया शानदार केक, फैंस का जोश हाय। दुनिया के महानतम बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर हुए वैभव के मुरीद, बल्लेबाजी की तकनीक की बारीकियों को सोशल मीडिया पर सराहा। 7 समंदर पार पहुंची वैभव सूर्यवंशी की लोकप्रियता, डब्ल्यूई स्टार ड्रू मैकइंटायर ने वैभव के नाम की जर्सी पहनकर पोस्ट किया वर्कआउट वीडियो। बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कान में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के लिए मिला बेस्ट एक्टर अवार्ड। अक्षय कुमार की प्रेडेटर एलियन थ्रिलर फिल्म समुख में दिखेगा
हॉलीवुड का जादू। प्रेडेटर फिल्म का हिस्सा रहे एलेक गिलिस डिजाइन करें एलियन क्रिएचर। कोलकाता में दादा सौरव गांगुली स्टोरी बायोपिक की शूटिंग शुरू। मैदान ईडन गार्डन पर कैमरा को संग नजर आए सौरव का किरदार निभा रहे राजकुमार राव। ओटीटी के बाद अब बड़े पर्दे पर नजर आएगा कालीन भैया का साम्राज्य। 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी। फिल्म नागाबंधम में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार के डबल रोल में नजर आएंगे ऋषभ साहनी।

0: नीर पेपर लीक मामले में इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर नीर मामले में बड़ी बैठक हो रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, एनटीडीजी अभिषेक सिंह और पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी इस बैठक में मौजूद हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के आवास पर यह बड़ी बैठक चल रही है। हिमांशु मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, आगामी 21 जून को जो दोबारा परीक्षा होनी है उसको लेकर ये चर्चा हो रही है।
1: देखिए बिल्कुल, 21 जून को जो दोबारा नीट के एग्जाम होने हैं उसको लेकर चर्चा हो रही है और आगे भविष्य में कोई इस तरीके की घटना ना हो, कोई ऐसा पेपर लीक ना हो जो पहले हुआ है, और इसको लेकर आगे क्या एहतियात बरती जा सकती है, क्या कड़े कदम उठाए जाए जिससे पेपर लीक जैसे मामले भविष्य में कभी ना हो। और इसीलिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर ये बैठक है जिसमें धर्मेंद्र प्रधान शिक्षा मंत्री हैं, उनके साथ साथ सूचना जो मंत्री हैं टेलीकॉम के ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनके साथ साथ एनटीए चीफ और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारी वहां मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री खुद इस पूरे मामले के ऊपर नजर बनाए हुए हैं कि भविष्य में इस तरीके का कोई भी पेपर लीक ना हो, और इसको लेकर यह बैठक जिससे ये कोशिश की जाए कि पेपर लीक जैसा मामला आगे ना आए, क्योंकि पेपर लीक एक ऐसा मामला है जिसको लेकर कहीं ना कहीं छात्रों में एक रोष है, और इस रोष को दूर करने के लिए सरकार की तरफ से जो भी कोशिशें हैं, जो भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होना है वो तमाम चीजों का इस्तेमाल करके पेपर लीक को भविष्य में ना होने के लिए सरकार कड़े कदम क्या उठाएगी, किस तरीके से किस टेक्नोलॉजी का यूज किया जाएगा, इन सब को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पे ये चर्चा जो है वो चल रही है।
0: चार सवाल राहुल गांधी ने किए थे, उनका आरोप है कि ना तो एनटीए के डीजी इस पर जवाब दे रहे हैं, ना शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान दे रहे हैं। तो जवाब खैर दूसरी बात है, लेकिन इसके अलावा क्या किसी तरह की सफाई प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए अब दी जाएगी या फिर ये बताया जाएगा किस तरह की तैयारी है अगले एग्जाम के लिए?
1: देखिए, क्योंकि संसदीय मामलों की जो शिक्षा समिति है उसके अंदर एनटीए के चीफ जब गए थे अभिषेक सिंह, तो उन्होंने कहा था ये मामला पेपर लीक का नहीं है, ये एक तरीके से देखा जाए तो एक चूक हुई है, जिन एक्सपर्ट्स का पैनल बनाया गया था पेपर्स को सेट करने के लिए उनके द्वारा ये जो है मामला जो है बना है जिसमें पेपर लीक की घटना हुई है, तो इसको पूरे सिस्टम के अंदर नहीं हो सकता, ये एक्सपर्ट्स के द्वारा किया गया है, ये प्रिंटिंग प्रेस से लेकर सेंटर के बीच में नहीं हुआ है, तो इन सब चीजों के लिए आगे भविष्य में क्या रणनीति रहेगी ये चीजें हैं। और सीफा अगर मुझे लगता है नया होना होता तो अब तक हो गया होता, क्योंकि जितना बड़ा ये मामला है उसको लेकर सरकार चिंतित है, लेकिन आगे भविष्य में ना हो इसको लेकर फैसले, अगर कोई किसी पे कार्रवाई होनी होती तो अभी तक हुई होती, लेकिन मुझे लगता है 21 जून के बाद जब ये पूरा नीट का एग्जाम दोबारा होगा तो सरकार ने जो कुछ इस पे सोचा होगा वो जरूर होगा, अगर किसी का इस्तीफा होना होगा नहीं होना होगा ये सरकार का फैसला है, का फैसला अभी तक इस पर नहीं हुआ है।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। और इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सीबीएसई ऑन स्क्रीन मार्किंग विवाद में राहुल गांधी के हमलों पर तीखा पलटवार किया। प्रधान ने कहा कि लगातार चुनाव हारने से वो कुंठित हो चुके हैं, वो अलग मानसिकता में पहुंच गए। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी की वैज्ञानिक प्रगति के साथ ही खेल राजनीति का समय नहीं है।

0: राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं, निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं। उन्होंने SIR को विरोध किया है, उन्होंने EVM को विरोध करते थे, उन्होंने डिजिटल इंडिया को विरोध किया। भारत की वैज्ञानिक प्रगति के साथ तो नहीं है। मैं जब खुद इस विसंगति का, इस अव्यवस्था का सरकार की ओर से दायित्व लेता हूं और उनको अनुरोध करता हूं, उनकी कोई भी बयान इस समय में, मैं पहले भी कभी कहा था कि ये राजनीति की समय नहीं है, राजनीति कर सकते हम लोग अभी। इन बच्चों को, जो परीक्षार्थी बच्चों को, उनकी कोई मेंटल स्ट्रेस ना बढ़े, इससे बड़ी हुई है ना बढ़े। हम किसी की व्यवहार से, किसी के शब्दों में ये हम सबको अपील करते हैं।
1: वहीं CBSE विवाद के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE अधिकारियों के साथ बैठक की। CBSE के दफ्तर पहुंचकर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मुलाकात की। बैठक के बाद धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि 17 लाख छात्रों ने परीक्षा में भाग लिया, हमने 98 लाख उत्तर पुस्तिकाओं को सुरक्षित रखा है, हर एक प्रति में 40 पेज है, कुल मिलाकर 40 करोड़ कॉपियां स्कैन की गई हैं, जिनके लिए CBSE ने पहली बार OSM ऑन स्क्रीन मार्किंग नामक मूल्यांकन प्रक्रिया का संचालन किया है। OSM एक प्रगतिशील उपकरण है, विश्वभर के विभिन्न विश्वविद्यालय संगठन और संस्थान इसे अपना रहे हैं। ये छात्र केंद्रित है और छात्रों के लिए बनाया गया है, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि उन्हें अपने अंकों के बारे में पारदर्शी जानकारी मिल सके।
0: 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा दिए थे, उनमें से हर एक की जो कॉपी उन्होंने आंसर किया है, इसे 98 लाख कॉपी पे उनकी उत्तर सुरक्षित है। 98 लाख कॉपी यानी एक एक कॉपी में 40 पेजेस है, लगभग 40 करोड़ स्कैन कॉपी, जिसके ऊपर पहली बार CBSE ने एक इवैल्यूएशन प्रोसेस किया, OSM उसको कहा। OSM एक प्रोग्रेसिव इंस्ट्रूमेंट है। भारत में अनेक यूनिवर्सिटी, अनेक इंस्टीट्यूशन और दुनिया की अनेक इंस्टीट्यूशंस OSM की ओर बढ़ रहे हैं। धीरे धीरे ये स्टूडेंट सेंट्रिक है, फॉर स्टूडेंट है, बच्चों को ट्रांसपेरेंटली अपने मार्क के बारे में जानकारी मिले, उनको ट्रांसपेरेंटली स्कैन कॉपी के माध्यम से उनकी आंसर शीट उनकी हाथ में आए, उनकी जिज्ञासा, उनके मन में जो प्रश्न है और उसमें कम मिला है या ज्यादा मिला है, वो कुछ छूट गया है, ये सारा विषय की जानकारी देने का ये OSM की व्यवस्था है। पहली बार देश में CBSE ने इसको प्रयोग किया।
1: धर्मेंद्र प्रधान ने CBSE के अधिकारियों के साथ बैठक की है। विवाद को लेकर उन्होंने कहा है कि पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया गया है, ताकि स्टूडेंट्स अपनी प्रतियों और अपने अंकों को ठीक तरीके से जान सके। इस बीच बड़ी खबर आपको बता रहे, राहुल गांधी ने CBSE के रिजल्ट और इस पर चल रहे विवाद को लेकर तीखा हमला सरकार पर किया है। एक बार फिर से राहुल गांधी इस मामले पर मुखर हुए हैं। उन्होंने कहा है कि CBSE को और पारदर्शिता लानी चाहिए, इसके परिणाम में भयंकर हेरफेर की गई है। देश के लाखों बच्चे, उनके माता पिता सदमे में हैं। क्या कुछ कहा है राहुल गांधी ने, सुनिए।
2: CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized, and the Prime Minister of India has nothing to say. Good morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. COEMPT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana, once in the board exam in Telangana in 2019, and after that again in Telangana in 2023. The same OSM based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet, for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister.
1: वक्त एक ब्रेक का उछला है, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद भारत।
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: Whatever you're in the mood for, TuneIn has the music to match. From today's hits to timeless favorites and new discoveries. It's all streaming in one place. Discover stations that fit your vibe and keep the music going all day long. Just search music or ask your device to play your favorite music station on TuneIn.
3: अपनी इलेक्ट्रिक सवार।
1: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
6: पर मार्केट की समझ ना बाउंसर जा रही है।
1: आप कैसे कर लेते हो?
7: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
6: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
7: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
8: नहीं।
6: और म्यूचुअल फंड्स है
8: सही।
9: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स। खुशियों के रंग।
7: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं भाई साहब, सब पचा देते।
8: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
9: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
10: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
11: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
12: सोच बदलो और बैंक भी।
13: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
16: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
17: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
18: Character, the taste of success.
19: In association with
20: Samakul Cooler, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। Samakul Cooler, life बनाए wonderful।
19: Hint, बड़े आराम से।
21: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
20: Cool stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
19: Vimal, bolo zuban kesri.
20: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee, lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
19: In association with
21: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
20: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
22: At Byers Volkswagen, shop online, customize your deal, and finalize everything from home.
23: Drive home a new 2026 Volkswagen Tiguan S for $212 for 24 months with $49.99 due at signing.
22: Byers Auto, driving the next generation of buyers.
23: See dealer for details. Offer ends 6/30/26.
24: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
20: Presented by Patanjali Gaay Ka Ghee. Lagaye swad aur sehat ka tadka, har maa ka bharosa, pyar se parosa.
19: In association with
21: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
20: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

मामले में राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, ज्योतिरादित्य सिंधिया, पीएमओ के अधिकारी और एनटीए चीफ मीटिंग में मौजूद, फूल प्रूफ सिस्टम पर चर्चा। डीके शिव कुमार योगी कर्नाटक के अगले सीएम, सिद्धारमैया के नाम ने नाम का रखा प्रस्ताव, 2:30 बजे इस्तीफा देने जाएंगे लोकभवन, नाश्ते पर दोनों नेताओं का हुआ भावुक मिलन। फेरबदल का आरंभ, 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी, पंजाब हरियाणा और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्ष। टीएमसी सांसद काकुली घोष ने कल्याण बैनर्जी की शिकायत की, लोकसभा स्पीकर को लिखी चिट्ठी, सदन के अंदर महिलाओं से दुर्व्यवहार का आरोप लगाया। में साज गिरीवाला से सीबीआई की लंबी पूछताछ, अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद लटकी गिरफ्तारी की तलवार, ट्विशा को प्रताड़ित करने के आरोपों की जांच।

की मां गिरबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। केस की जांच में जुटी सीबीआई कभी भी गिरबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है। बीती रात हाईकोर्ट में उनकी अग्रिम जमानत रद्द कर दी गई थी। अब सीबीआई की कोशिश है कि तमाम अनसुलझे सवालों पर गिरबाला का बयान लिया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।

0: तो क्या गिरफ्तार होंगे गिरिबाला सिंह? अग्रिम जमानत रद्द, अब बड़ी मुश्किल। रुशा की सास से सीबीआई करेगी सवाल जवाब। 12 मई की रात क्या हुआ बताएंगी पूर्व जज। रुशा की मौत के मामले में जिन सवालों को अब तक जवाब नहीं मिला, उन सवालों की लिस्ट के साथ सीबीआई ने कदम बढ़ा दिए। जांच एजेंसी के सामने इस मामले में दो किरदार हैं। एक है त्रिशा का पति समर्थ सिंह जो गिरफ्तार है, दूसरी है त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह। गिरिबाला को भोपाल की निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिली हुई थी, लेकिन अब वो अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है, या यूं कहें कि गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया। माना जा रहा है कि सीबीआई अब कभी भी गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है।
1: कोर्ट के जजमेंट के बाद सीबीआई की टीम है जो गिरिबाला सिंह के घर इस वक्त पहुंची है। हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये सीबीआई की टीम है जो एक दिन पहले भी यहां पहुंची थी। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो दो सीबीआई के अधिकारी आपको यहां दिख जाएंगे जो अंदर जा रहे हैं। इनमें एक महिला अफसर भी आपको सीबीआई की दिख जाएंगी जो अंदर जा रही हैं, और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके बाद सीबीआई जो है त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को पहले नोटिस देने आई है। सीबीआई पहले नोटिस देगी गिरिबाला सिंह को, और माना जा रहा है कि उसके बाद गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली हुई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है।
0: 12 मई को त्रिशा ने सुसाइड किया था, गिरिबाला की बहू की मौत हुई थी, तो बेटा समर्थ सिंह फरार हो गया। 10 दिनों तक वो लुका छुपी खेलता रहा और अपने बेटे की गिरफ्तारी से पहले गिरिबाला समर्थ की ढाल बनकर डटी रही। वो अपने बयान देती रही, बेटे का बचाव करती रही। एक अहम बात यह भी है कि 12 मई की रात जिस वक्त त्रिशा फंदे पर लटकी मिली, उस वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे, उनमें गिरिबाला सिंह, समर्थ और नौकर भी घर में था। ऐसे में सीबीआई की तफ्तीश के केंद्र में अब गिरिबाला सिंह है, क्योंकि पूर्व जज ने अपने बचाव में दलील देते हुए त्रिशा पर कई गंभीर सवाल उठाए।
1: त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने त्रिशा पर ही कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। गिरिबाला सिंह ने कहा था कि त्रिशा एक ड्रग एडिक्ट थी और ड्रग्स ना लेने पर उसका व्यवहार बदल जाता था, उसके हाथ कांपने लग जाते थे। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के समय ये तमाम दलीलें किसी काम नहीं आई और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया।
0: त्रिशा की मौत के तीसरे दिन जब उसकी लाश अस्पताल के मोर्चरी में रखी थी, तभी भोपाल की एक निचली अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि तब मामले की जांच में जुटी भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए 3-3 नोटिस भेजे थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह को पहला नोटिस 20 मई को भेजा था, दूसरा नोटिस 21 मई को भेजा और तीसरा नोटिस 23 मई को। लेकिन गिरिबाला ने पुलिस के नोटिस को तवज्जो ही नहीं दी, वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। आखिरकार भोपाल पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी। उसी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कड़ा रुख अपनाया और अग्रिम जमानत रद्द कर दी।
1: त्रिशा की मौत मामले में सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बुधवार देर रात जबलपुर हाईकोर्ट ने त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और इसके साथ ही अब गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल हाईकोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले में साफ तौर पर कहा कि मामले की गंभीरता और जो सबूत उपलब्ध है उसे देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और मौजूद साक्ष्यों पर गंभीरता से विचार नहीं किया।
0: लेकिन अब बचना मुश्किल है, क्योंकि जांच सीबीआई के हाथ में है और शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीबीआई चाहेगी कि गिरिबाला का बयान जल्द से जल्द दर्ज किया जाए, उसके लिए कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी कब तक, सूत्र क्या बता रहे हैं आपके?

0: देखिए, किसी भी समय गिरीवाला की गिरफ्तारी हो सकती है, क्योंकि जो सीबीआई की टीम है जो लगातार पिछले 2.5 घंटे से पूछताछ कर रही है गिरीवाला सिंह से, और अंदर जो क्राइम सीन है उसको एक बार फिर से यहां देख रही है, 3D मैपिंग कर रही है। लेकिन इन सब के बीच में हम आपको बता दें कि पुलिस की तैनाती जो है वो बढ़ती जा रही है तुषार के ससुराल के बाहर, और इसलिए ये माना जा रहा है कि हो सकता है 2.5 घंटे की पूछताछ अब हो चुकी है और हाईकोर्ट से भी अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो चुकी है, तो संभव है कि गिरीवाला सिंह की जमानत जो है वो किसी भी समय यहाँ पे जब रद्द हो ही चुकी है तो गिरफ्तारी भी अब यहाँ पे हो जाए। हालांकि जो अंदर अधिकारी गए हैं उनमें एक महिला अफसर है जो बयान ले रही है, जो पूछताछ कर रही है, लेकिन जल्दी जो हमें जानकारी मिल रही है कि सीबीआई की एक और टीम जो है ज्यादा मैन पावर के साथ वो सीबीआई दफ्तर जो है भोपाल में है वहां से निकल चुकी है और किसी भी समय गिरीवाला सिंह के घर पहुंच सकती है। और अभी तकरीबन 1:30 बज रहे हैं, तो आप मान के चलिए कि अगले 1 घंटे में तस्वीर और हद तक साफ हो जाएगी और गिरीवाला सिंह की गिरफ्तारी जो है वो अगले 1.5 से 2 घंटे में संभव है कि हो जाए सीबीआई की तरफ से।
1: और सीबीआई की जांच लगातार चल रही है। 3 दिन में सीबीआई ने क्राइम सीन पर जांच की, गिरीवाला से पहले ही दिन पूछताछ कर चुकी है, लेकिन अब तक सवालों की गुत्थी सुलझती नहीं दिख रही है। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी त्विशा के पति समर सिंह को अपनी कस्टडी में ले चुकी है।
2: भोपाला के कटारा हिल्स इलाके में स्थित ये मकान तब सुर्खियों में आया जब पूर्व मॉडल और अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने वाली त्विशा ने अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस मौत के 2 आरोपी हैं, समर्थ सिंह और उनकी मां गिरीवाला सिंह। 22 मई को समर्थ 10 दिन फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन पूर्व जज गिरीवाला सिंह बची रहती हैं। त्विशा का परिवार आरोप लगाता है कि वो इस मामले को दबाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही है। पीड़ित परिवार गिरीवाला के फोन कॉल्स का हवाला देता है जो उन्होंने त्विशा की मौत के बाद किए थे, लेकिन जिम्मेदारी मिलते ही सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला और 25 मई को जांच अधिकारी भोपाल पहुंच गए। तब तक मामले की जांच कर रही भोपाल पुलिस की एसआईटी से केस को हैंडओवर लिया और फिर अगली ही सुबह यानी 26 मई को सीबीआई टीम गिरीवाला सिंह के घर पहुंच गई। छब्बीस मई को सीबीआई जांच का पहला दिन था, तब तक गिरीवाला सिंह निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत के सुरक्षा घेरे में थी। सीबीआई की टीम ने पहले दिन गिरीवाला से सवाल जवाब तो किए, लेकिन आधे घंटे में ही टीम वहां से निकल गई और फिर त्विशा के परिजनों से भी मिली। दूसरे दिन यानी 27 मई को भी समर्थ के घर पर सीबीआई की पड़ताल चली, साथ ही कल तक भोपाल पुलिस की कस्टडी में रहे समर्थ को भी सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया। अब समर्थ और गिरीवाला से सवाल जवाब का इंतजार है। माना जा रहा है कि सीबीआई गिरीवाला और समर्थ से कई सवालों के जवाब मांगेगी। जांच एजेंसी जानना चाहेगी कि 12 मई शाम को क्या हुआ था, क्या त्विशा से किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, त्विशा को चोट कैसे आई थी, क्या त्विशा का मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया जैसा कि त्विशा ने अपने व्हाट्सएप चैट में बताया था, त्विशा के चरित्र पर सवाल क्यों उठाए गए, उसे अबॉर्शन के लिए क्यों मजबूर किया गया। गिरीवाला सिंह से जांच एजेंसी ये भी जानना चाहेगी कि उन्होंने 12 और 13 मई को किस किस को कॉल किया था और क्यों। इन्हीं सवालों के साथ सीबीआई ने कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने बताया कि गिरीवाला सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है।
0: की मौत मामले में सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है और सीबीआई गिरीवाला सिंह से उस घर में पूछताछ कर रही है जहां 12 मई को त्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। सीबीआई के पास समर्थ और गिरीवाला सिंह से पूछे जाने वाले सवालों की एक लंबी सूची तैयार है, जिसमें सबसे सवाल है कि 12 मई को क्या त्विशा और समर्थ के बीच कोई अनबन हुई थी या नहीं।
2: बुधवार की शाम सीबीआई ने समर्थ सिंह को भी कस्टडी में ले लिया, वो 2 दिनों की हिरासत में है। अब समर्थ और गिरीवाला की पूछताछ हुई तो कई बातें और साफ होंगी, कई सवालों के जवाब मिलेंगे। सीबीआई दोनों के डिजिटल सुरागों और संदिग्ध फोन कॉल्स की जांच पर भी गहन पूछताछ की तैयारी में है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
1: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। रवीश, कुछ और अफसर पहुंचे हैं पूछताछ के लिए, तो क्या जांच का दायरा अब बढ़ाया जा रहा है या फिर गिरफ्तारी की तैयारी हो रही है?
0: हाँ, अरे देखिए, आपको नेहा बड़ी खबर बता देते हैं, बड़ी खबर बता देते हैं। सीबीआई की एक टीम जो है वो गाड़ी के साथ अंदर जा चुकी है, घर के अंदर गिरिबाला सिंह के, और माना जा रहा है कि किसी भी क्षण अब जो है गिरफ्तारी हो सकती है। पुलिस यहाँ पे जो है जिस तरीके से तैनात, और ये गाड़ी सीबीआई अंदर लेके जा चुकी है यहाँ से, और इसी गाड़ी में बताया जा रहा है कि सीबीआई गिरिबाला को अपने साथ लेकर के यहाँ से जा सकती है। कुछ अफसर यहाँ पे आए हैं गिरिबाला सिंह से बात करने के लिए, सीबीआई के और भी अफसर यहाँ पहुंचे। सुबह 3 अफसर पहुंचे थे जिनमें एक महिला अफसर थी, लेकिन अभी भी कुछ महिला अधिकारी और सीबीआई के कुछ और अफसर यहाँ पहुंचे हैं, और गाड़ी अब ये घर के अंदर जा चुकी है। और माना जा रहा है कि सीबीआई जो है नहीं चाहती कि गिरिबाला पैदल चल के जब गाड़ी तक आई तो उस दौरान उनसे कोई सवाल मीडिया पूछ सके, इसीलिए ये गाड़ी अंदर ले जाई गई है घर के। और अब वहां पे सीबीआई जो है गिरिबाला सिंह को उस गाड़ी में बैठा के घर के अंदर से ही अपने साथ यहां से रवाना हो जाएगी, ऐसी जानकारी मिल रही है। और यही वजह है कि फिलहाल ये गाड़ी लेकर के सीबीआई घर के अंदर जा चुकी है। 2.5 घंटे का समय पूरा हो चुका है पूछताछ है, और सीबीआई अपने साथ कुछ बक्से भी यहां लेकर के आई है जिसमें कुछ सामान है, शायद प्रिंटर जैसा कोई सामान था जो सीबीआई लेकर अंदर गई है। अब देखते हैं उसका क्या उपयोग होगा, लेकिन इतना तय है कि जो गाड़ी अंदर गई है सीबीआई, हो सकता है कि जो अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है यहाँ पे गिरिबाला सिंह की हाईकोर्ट से, तो उसके बाद सीबीआई के पास जो विकल्प खुला हुआ था गिरफ्तारी का, अब सीबीआई यहाँ पे गिरफ्तारी करती हुई साफ तौर पे देखी जा पाएगी। लेकिन इन सबके बीच में मीडिया को दूर किया जा रहा है गेट से, जहाँ पर गिरिबाला सिंह का घर है, और अब एक मानव श्रृंखला बना करके फिलहाल कोशिश की जा रही है कि जब गाड़ी यहां से निकले तो आसानी से उसे एक्सेस मिल जाए बाहर निकलने के लिए, और गिरिबाला सिंह को इसी गाड़ी में शायद बैठा करके सीबीआई यहां से रवाना हो जाए। ये लगभग तस्वीर साफ हो, और ये एकदम लेटेस्ट अपडेट है, लाइव तस्वीरें हैं जो आज तक पे हम आपको दिखा रहे हैं।
1: 3 घंटे रवीश, क्या जो सवाल है वो पूरे हो चुके हैं इसलिए सुबह के बाद अब दोपहर के वक्त गिरफ्तारी हो रही है, या फिर ये पूछताछ अब कस्टडी में ही जारी रहने वाली
0: है? देखिए, ये मान के चला जा रहा है कि सीबीआई अभी यहां से गिरिबाला सिंह को लेकर के पहले कोर्ट जाएगी, कोर्ट जाकर के गिरिबाला सिंह की आधिकारिक रूप से सीबीआई जो है वो कस्टडी मांगेगी और फिर उन्हें अपने साथ लेकर के जाएगी। देखना यह है कि समर्थ को जहां रखा है सीबीआई ने, क्या गिरिबाला सिंह को भी वहीं रखती है नहीं, क्योंकि कोर्ट के लिए सीबीआई के लिए ये ज्यादा जरूरी है कि दोनों के अलग अलग बयान तो ले ही जा चुके हैं, समर्थ के बयान लगातार हो रहे हैं बीते 2 दिनों से। दूसरी तरफ अगर हम कल समर्थ को इस कस्टडी में लिया, आज उसका पूरा दिन कस्टडी में जा रहा है, गिरिबाला सिंह से पूछताछ हो रही है, तो अलग अलग बयान तो हो गए। अब दोनों को सामने सामने बैठा करके भी पूछताछ की जाएगी, और ये देखने की कोशिश की जाएगी कि जो दो बयान लिए गए हैं अलग अलग, क्या वो आपस में मेल खाते हैं या नहीं, और ये प्रोटोकॉल का हिस्सा होता है। लेकिन इन सब के बीच में कई बड़ी बातें हैं जो निकल के सामने आ रही है, क्योंकि सीबीआई अब तक ये समझ नहीं पाई है कि आखिरकार तुषा, जो कि एक ग्लैमर वर्ल्ड से जुड़ी हुई लड़की थी, महत्वाकांक्षी लड़की थी, पढ़े लिखे घर से आती थी और मॉडल रह चुकी है, बिस पुणे रह चुकी है, आखिर कितना आहत हो जाएगी एक ऐसी लड़की जो आत्महत्या जैसा कदम उठा लेगी, क्योंकि उसके सामने दूसरे भी विकल्प खुले हैं, लेकिन इसके बावजूद जो है उसने आत्महत्या को ही क्यों चुना, ये एक बड़ा सवाल है सीबीआई के सामने अब, जिसको जल्द से जल्द सुलझाना जरूरी है सीबीआई के सामने। और इसके अलावा कई ऐसे दूसरे सवाल कि इतने देर से पुलिस को सूचना क्यों दी गई, परिवार को देर से क्यों बताया गया, शरीर पर अगर निशान थे तुषा के तो वो कैसे बने, क्या गर्भपात उसने करवाया अपनी मर्जी से या आपके दबाव में करवाया, ऐसे कई सारे सवालों की फेहरिस्त है फिलहाल सीबीआई के पास, जो लगातार पूछताछ हो रही है गिरिबाला सिंह से और समर सिंह से। लेकिन इन सबके बीच में हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं, क्या तस्वीरें हैं अभी आप देखिए, इस तरीके से एक ह्यूमन चेन बना दी गई है पुलिस की, और कोशिश ये हो रही है कि किसी भी कीमत पर मीडिया जो है वो गिरिबाला सिंह से सवाल ना पूछ पाए, मुंह पे माइक ना लगा पाए, और इसीलिए सीबीआई के अफसरों की एक गाड़ी बाहर है और दूसरी गाड़ी यहाँ पे फिलहाल अंदर पहुंचा दी गई है, और माना जा रहा है कि इसी गाड़ी में बैठा के अंदर से ही गिरिबाला को यहाँ से सीबीआई अपने साथ लेके जा सकती है। तो एक बड़ी खबर है, हाईकोर्ट से देर रात जमानत जब्त होने के बाद अगले 24 घंटे के भीतर सीबीआई फिलहाल यहाँ पे गिरिबाला सिंह को अरेस्ट करने के लिए पहुंच गई है।
1: गिरिबाला अंदर ही है तो फिर विलंब क्यों हो रहा है, क्योंकि अफसर तो काफी देर पहले दाखिल हो चुके थे रवीश?
0: बिल्कुल देखिए, जो अफसर पहले दाखिल हुए थे, मैं आपको बताऊं, उनमें तीन अफसर थे, उनमें से दो अफसर ऐसे थे नेहा जो कि 3D मैपिंग कर रहे थे घर के अंदर। हमने तस्वीरों में भी देखा था, जो 3D मशीन का लेकर के वो यहाँ पहुंचे थे, उसी 3D मशीन से वो अंदर की मैपिंग कर रहे थे। और एक महिला अफसर जो है वो गिरीबाला सिंह के बयान दर्ज कर रही थी, जो जानकारी हमें मिली है। लेकिन वो एक रिटायर्ड जज है, गिरफ्तारी के लिए ये तीन लोग काफी नहीं होंगे। स्वाभाविक सी बात है, बड़ा बल लगेगा, इसीलिए बड़ी संख्या में स्थानीय पुलिस को भी यहाँ तैनात किया गया है और CBI के दूसरे अन्य अफसर भी यहाँ पहुंचे हैं, वरिष्ठ अफसर हैं, और उनकी मौजूदगी में ही बताया जा रहा है कि CBI अब गिरीबाला को हिरासत में लेगी। क्योंकि सुबह जब CBI के तीन अफसर पहुंचे थे तो उनका काम था कि पहले आधिकारिक रूप से एक नोटिस दिया जाए और इस नोटिस मिलने के बाद ही उनसे पूछताछ शुरू की जाए, क्योंकि आधिकारिक रूप से फिर वो कस्टडी में आने की बात होती है। तो जब पूछताछ शुरू हुई तो उसके बाद अब जब तकरीबन 2.5 से 3 घंटे का समय बीत गया है तो वरिष्ठ अफसरों को सूचना दी गई है, पुलिस को बुलाया गया है ताकि कोई स्थिति यहाँ विवाद की ना बने, और उनकी मौजूदगी में अब यहाँ से गिरीबाला सिंह को लेकर के रवाना किया जाएगा। तो ये तय है कि आज की ही तारीख में CBI गिरीबाला सिंह को अपनी गिरफ्त में लेने वाली है। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद पूछताछ का चरण लगभग पूरा हो गया है, कुछ इक्विपमेंट्स लेकर के CBI के अफसर अभी अंदर गए हैं, उनका भी अभी उपयोग किया जाएगा। क्या उपयोग होगा, खैर वो बाद में बात सामने आ ही जाएगी, लेकिन अभी इतना तय है कि इस पूछताछ के साथ ही अगले कुछ घंटों में या फिर 1 से 1.5 घंटे के भीतर तस्वीर साफ हो जाएगी गिरीबाला सिंह की गिरफ्तारी पर।
1: कोर्ट से कितने दिन की रिमांड मांग सकती है CBI गिरीबाला सिंह के लिए?
0: देखिए अभी तो अगर हम बात करें तो इन्वेस्टिगेशन लंबी चलेगी। CBI की कोशिश होगी कि कम से कम 7 दिनों की रिमांड तो मांगी जाए, क्योंकि इससे पहले भोपाल पुलिस की SIT ने भी 7 दिनों की रिमांड समर्थ की मांगी थी और 7 दिनों की रिमांड SIT को मिल भी गई थी। हालांकि SIT की गिरफ्त में समर्थ 5 दिन ही रहा, 6ठे और 7वें दिन वो CBI की कस्टडी में, और कल उसकी कस्टडी खत्म हो रही है। तो जाहिर सी बात है CBI कल समर्थ को भी कोर्ट में पेश करेगी, और माना जा रहा है कि आज गिरीबाला सिंह को लेकर के कोर्ट में जब पेश किया जाएगा तो 7 दिनों की रिमांड CBI गिरीबाला सिंह की भी मांगेगी। देखना यह है कि विशेष न्यायालय जो CBI का है वो कितने दिनों की रिमांड CBI को सौंपता है, क्योंकि पुलिस के बाद अब CBI जो है नए सिरे से इस पूरे मामले की जांच कर रही है, तो CBI को शुरू से मामले को तफ्तीश में लाना भी है, और इसलिए अगर 2 या 3 दिन की रिमांड होगी तो वो बहुत कम समय होगा। CBI चाहती है कि जितना ज्यादा समय मिल जाए रिमांड का, पूछताछ का, उतने जल्दी CBI ज्यादा से ज्यादा सबूतों को आपस में जोड़ के, कड़ियों को आपस में जोड़ के इस पूरे मामले का, इस पूरे घटनाक्रम का जो सच है वो सामने ला सके।
1: और इस बीच नजर समर सिंह पर भी बनी हुई है, किस तरीके से अब पूछताछ की दिशा बदल जाएगी गिरीबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद, या फिर वही जांच की दिशा रहने वाली?
0: देखिए जांच की दिशा एक साथ होने वाली है, क्योंकि अभी तक समर्थ जो बयान दे रहा था कमोबेश वैसे ही बयान गिरीबाला सिंह ने भी दिए थे, लेकिन कोर्ट ने कल जब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई है तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं नेहा, और इसमें से सबसे अहम खुलासा जो आज तक कर रहा है, आज तक के पास वो दस्तावेज मौजूद है जो कोर्ट में कल जब सुनवाई चल रही थी और हाईकोर्ट की तरफ से जब जजमेंट आया तो उसमें से एक कागज जिसे शायद किसी ने ना पढ़ा हो, आज तक के हाथ जब वो कागज लगा है तो उसमें बड़ी चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं। हम आज तक पे दर्शकों को बताते हैं कि त्विशा के परिवार के वकीलों ने दावा किया है कि गिरीबाला सिंह, उनकी जमानत याचिका क्यों रद्द की जाए, उनकी जमानत याचिका इसलिए रद्द की जाए क्योंकि त्विशा के परिवार के वकीलों ने यह दावा किया है कोर्ट के सामने कि गिरीबाला सिंह, उनको क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग मिल चुकी है। क्राइम सीन मैनेजमेंट यानी जिस जगह पे क्राइम हुआ हो, अपराध हुआ हो, वहां पे अपराध को छुपाया भी जा सकता है, उसे किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, उसमें गिरीबाला सिंह को ट्रेनिंग मिली हुई है। जो वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्विशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गिरीबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है, और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है, इसीलिए उनकी जमानत याचिका रद्द होनी चाहिए। तो ये एक ऐसी बड़ी खबर है जो अब तक किसी ने नहीं बताई, आज तक सबसे पहले बता रहा है कि क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ली थी गिरिबाला सिंह ने। ये त्विशा के परिवार ने दावा किया है कोर्ट में और इसी के आधार पर उन्होंने कहा है कि क्राइम सीन के साथ छेड़छाड़ हो सकती है, अपनी ट्रेनिंग का इस्तेमाल गिरिबाला सिंह ने किया है और इसीलिए उनकी जमानत याचिका रद्द की जाए। इसे कोर्ट ने मानते हुए कल जमानत याचिका रद्द की और आज सीबीआई पहुंच गई। तो माना जा रहा है कि सीबीआई भी इस जो आरोप लगे हैं गिरिबाला सिंह के ऊपर, क्राइम सीन मैनेजमेंट को फॉरेंसिक टेक्नोलॉजी और फॉरेंसिक एविडेंस के साथ क्या कुछ किया जा सकता है, वो तमाम बातें सीबीआई की अपनी जांच।
1: बड़ी खबर ये कि हाईकोर्ट में त्विशा के परिजनों ने जानकारी दी है कि क्राइम सीन मैनेजमेंट पर गिरिबाला सिंह ने एक स्पेशल ट्रेनिंग हासिल कर रखी है, यानी कि किस तरीके से अगर कहीं क्राइम होता है तो वहां पर कैसे चीजों को मैनेज किया जाए, किस दिशा में जांच को मोड़ दिया जाए, उसके लिए क्या क्या सावधानियां, क्या क्या बारीकियां बरतनी चाहिए, ये तमाम चीजों की ट्रेनिंग गिरिबाला सिंह हासिल कर चुकी है। ये जानकारी त्विशा के परिवार वालों परिजनों ने दी है। ट्रेनिंग की बदौलत क्राइम सीन से छेड़छाड़ की गई है और इससे ही जांच की दिशा अपने पक्ष में करने की कोशिश की गई। वक्त एक ब्रेक का उछला, देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Hot Mics now streaming on TuneIn, your go-to show for explosive sports showdowns, bare-knuckle politics, raw Hollywood gossip, tech power plays, and pop culture chaos. Hosted by yours truly, Billy Bush. Want to catch the latest episodes on your connected device? It's easy. One, set a reminder with your smart speaker by saying, "Remind me to listen to Hot Mics Monday through Thursday at 12 p.m. Eastern, 9 a.m. Pacific." Two, when it's time, just say, "Play Hot Mics on TuneIn." And you're in for unfiltered takes, A-list guests, and the stories everyone else is too scared to touch.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
9: Jack FM is now streaming commercial free on TuneIn Premium.
10: Jack, you're killing me.
9: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial free.
7: The biggest classic rock hits do just that. They hit hard. And on TuneIn's classic rock hits, you'll find only the best in high-octane awesomeness. We're talking rock gods like Led Zeppelin, Kiss, AC/DC, Lynyrd Skynyrd, and so many more. So for those of you about to rock, search Classic Rock Hits or ask your smart device to play Classic Rock Hits on TuneIn.

0: साल भर से राहुल गांधी समेत पूरा विपक्ष दिल्ली से बिहार तक और बंगाल से तमिलनाडु तक शोर मचाता रहा कि एफआईआर करके चुनाव आयोग देश के गरीब दलित पिछड़ों मुसलमानों के नाम काट रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि चुनाव आयोग को जो कानूनी हक मिला है वही हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस की बेंच ने 124 पन्नों के जजमेंट में जो फैसला सुनाया उसका लब्बो लुआब यही है कि एफआईआर कराना चुनाव आयोग का संवैधानिक और कानूनी अधिकार है। देश का वोटर कौन होगा ये चुनाव आयोग ही तय करेगा। सबूत में मांगे जा रहे 11 दस्तावेज उचित हैं। वोटर लिस्ट से नाम कटने का मतलब नागरिकता खोना नहीं है और नाम कटने वालों की नागरिकता पर 4 हफ्ते के अंदर सुनवाई शुरू होनी चाहिए। वैसे तो चुनाव आयोग के एफआईआर को विपक्षी दलों ने कांग्रेस के वोट चोरी वाले सियासी मुद्दे के साथ नत्थी कर दिया था। राजनीतिक दलों के साथ कई एनजीओ नेताओं संगठनों समेत 20 अर्जियां एफआईआर के खिलाफ डाली गई, लेकिन उन सभी अर्जियों में उठे सवालों पर कोर्ट का फैसला आया है। मसलन अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग को इतने बड़े पैमाने पर पुनरीक्षण का अधिकार नहीं। कोर्ट ने कहा कि आरपी एक्ट 1960 और संविधान की धारा 324 के तहत पूर्ण अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग नागरिकता तय कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि आयोग वोटर तय कर सकता है। अर्जियों में आपत्ति थी कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट बनाने की जगह एनआरसी तैयार कर रहा है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर करना आयोग का संवैधानिक अधिकार है। अर्जियों में आपत्ति ये भी थी कि एफआईआर के बहाने बड़े पैमाने पर चुनिंदा लोगों के नाम काटे जाएंगे। कोर्ट ने कहा कि नाम काटने वालों को सुनवाई का मौका मिलना चाहिए। अर्जियों में आपत्ति थी कि गरीब दलित मुस्लिम प्रवासियों के नाम काटने का खतरा।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का
2: कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं। आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद 100 लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने ये कहा है तो डिटेल देखते हैं।
3: पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहें ईवीएम खराब है, उसके बाद कहें एफआईआर से वोट काटे जा रहे हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, अब तो कोई ना कोई बहाना और ढूंढेंगे।
4: अब क्या हो सकते हैं
3: भाई, अब विरोधीन के ढूंढे के जमाना, बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

रखकर डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव। 2:30 बजे जाएंगे लोक भवन, नाश्ते पर दोनों नेताओं का हुआ भावुक मिलन। नीट मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर हुई बड़ी बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सिंधिया और पीएमओ के अधिकारी और एनटीए चीफ रहे मौजूद। फुल प्रूफ सिस्टम पर हुई चर्चा। बीजेपी संगठन में फेरबदल का आरंभ, 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में भी नए प्रदेश अध्यक्ष। शुभेंदु राज में बदला पश्चिम बंगाल का रिवाज, बकरीद पर सीएम ने की गाय की पूजा, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में हुए नमाज। बकरीद को लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र

0: जिन तमाम बड़ी खबरों पर हमारी नजर रहेगी सबसे पहले आपको बताते हैं। दरअसल सबसे पहले बात करेंगे कि कैसे लगातार पश्चिम बंगाल में नया रिवाज आ गया, यानी शुभेंदु सरकार में नई चीजें आ रही हैं। बकरीद पर उन्होंने गाय पूजा की है। इससे पहले ममता बनर्जी बकरीद की नमाज अदा करने के लिए खुद जाती थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी सीधे इस्कॉन टेम्पल पहुंचे जहां पर उन्होंने पूजा अर्चना की। इसके बाद दूसरी बड़ी खबर दिखाएंगे कि आखिरकार देश भर में कैसे बकरीद के मौके पर किस तरीके से उत्साह है, किस तरीके से बवाल है। तमाम देश भर की खबरों के साथ साथ उनकी तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। इसके बाद तीसरी बड़ी खबर होगी कि कर्नाटक में नए चेहरे को, सीएम के नए चेहरे को लेकर किस तरीके से एक्शन जारी है, क्या कुछ सुबह से हुआ और क्या कुछ होने वाला है, ये भी आपको बताएंगे। फिर 2:30 बजे आपको बताएंगे कि सूर्यवंशी की तबाही या फिर उसको लेकर मचे बवाल या फिर उनकी पारी को लेकर तमाम बड़ी खबरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले शुरुआत करते हैं सबसे बड़ी खबर की, यानी 2 बजे की सबसे पहली बड़ी खबर आ रही है। लगातार आपको बता दें कि भोपाल में हुई त्रिशा केस को लेकर एक नया अपडेट मिल रहा है। त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को लेकर सीबीआई ने 3 घंटे से ज्यादा की पूछताछ की है। उसके बाद कहा जा रहा है कि उनके घर पर फोर्स को बुला लिया गया है। सीबीआई की टीम ने 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ की है। ये आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं जब गिरिबाला सिंह से पूछताछ की गई। पूर्व जज के घर के कैंपस पर सीबीआई की गाड़ियां आनी शुरू हो गई, फोर्सेस की मौजूद भी वहां पर है। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह हमारे साथ सीधे उनके घर से जुड़े हैं। रवीश, क्या इस समय माहौल है और कहा जा रहा है कि उनकी गिरफ्तारी कभी भी की जा सकती है?
1: किसी भी समय सुमित गिरफ्तारी हो सकती है गिरिबाला सिंह की, और माहौल जो है घर के बाहर वो इतना ज्यादा इस वक्त संवेदनशील हो गया है जितना इतने बीते दिनों में नहीं दिखा था। पहली बार पुलिस ने यहाँ बकायदा बैरिकेड लगा दिया। मैं चाहूंगा मेरे कैमरा पर्सन से कि वो आपको दिखाएं तस्वीरें कि कैसे यहाँ पे पुलिस ने बैरिकेड लगा करके अब इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ करवा दिया है। पत्रकारों से कहा गया है कि वो दूर हो जाए। और ये बैरिकेड क्यों लगाए गए हैं, इसके पीछे वजह बताते हैं। ये बैरिकेड इसलिए लगाए गए हैं क्योंकि त्रिशा की जो सास है गिरिबाला सिंह, उन्हें जिस गाड़ी में बैठा के सीबीआई अपने साथ यहां से ले जाएगी, उस गाड़ी को अंदर ले जाया गया है और गाड़ी में एक ही बार में यहां से इजी एक्सेस मिल जाए सीबीआई की टीम को। पत्रकार गाड़ी के ऊपर ना चढ़े, कोशिश ना करें उन तस्वीरों को लेने की, इसलिए ये बैरिकेड लगाए गए हैं। गाड़ी यहां से बाहर निकलेगी, जो आप ये हिस्सा देख रहे हैं ये परिवार के, ये वो गेट है जहां से गाड़ी बाहर निकलेगी और उसके बाद यहीं से गाड़ी को सीधे जो है इस रास्ते से, या आप अंदर देख सकते हैं वो गाड़ी मौजूद है, और यहीं से जो सीबीआई है वो अपने साथ लेकर के रवाना हो जाएगी। सीधे माना जा रहा है कि शायद कोर्ट में ले जाया जाए, या फिर हो सकता है सीबीआई अगर कोर्ट में नहीं ले जाएगी तो सीबीआई अपने कैंप में ले जाए जहां पे उनसे और आगे की पूछताछ हो सकता है समद के साथ बैठा के पूछताछ की जाए। लेकिन बड़ी खबर यही है कि अभी सीबीआई ने, पुलिस ने यहां पे बैरिकेटिंग कर दी है पूरी तरीके से और इंतजार बस अब हो रहा है कि यहां से गिरिबाला सिंह को लेकर सीबीआई अपनी गाड़ियों से रवाना हो जाए। और ये मान के चलिए कि अगले 1 से 1.5 घंटे में तस्वीर काफी हद तक साफ हो जाएगी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी को लेकर। लेकिन उससे पहले हलचल तेज हो गई है, पुलिस ने बैरिकेड लगा करके पत्रकारों को घर से दूर करना शुरू कर दिया है क्योंकि मामला एक रिटायर्ड जज की।
0: बिल्कुल रवीश, देखिए लगातार आप हमारे साथ बने रहिए, इस बड़ी खबर पर हमारी नजर बनी रहेगी। लेकिन इसके बीच लगातार कई बड़े अपडेट भी इस केस को लेकर मिल रहे हैं। खासतौर पर जो त्रिशा की मदर है, उनके जो परिवार है, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि देखिए जो गिरिबाला सिंह है उन्होंने उनको लगातार क्राइम सीन मैनेज करने की उन्होंने ट्रेनिंग ली गई है। यानी आप मानिए कि क्राइम सीन पर जब भी कोई वारदात होती है, कोई घटना होती है, तब वहां को उसको कैसे मैनेज किया जाता है, उस पर क्या क्या प्राथमिकताओं से काम किया जाना चाहिए, इसको लेकर उनको अच्छी खासी ट्रेनिंग दी गई है जिसके बारे में उनको जानकारी थी। और ये परिवार की तरफ से एक बार फिर से गिरिबाला सिंह के ऊपर आरोप लगाए गए हैं। रवीश, हमारे सहयोगी रवीश पाल सिंह हमारे साथ जुड़े हैं। रवीश, देखिए लगातार 3 घंटे की पूछताछ सीबीआई ने की है, निश्चित तौर पर कई बहुत चीजें उनसे पूछी भी गई होंगी, उनकी प्रोफेशनल ट्रेनिंग को लेकर कई और चीजों को। लेकिन परिवार जो है त्रिशा का, वो लगातार आरोप लगाया कि उन्होंने ना सिर्फ चीजों को मैनेज किया इस पूरे घटनाक्रम के बाद, बल्कि जो क्राइम सीन था उसको भी मैनेज किया।
1: देखिए गिरिबाला सिंह पे शुरू से आरोप क्या लग रहे हैं, गिरिबाला सिंह पे शुरू से आरोप लग रहे हैं कि वो इन्फ्लुएंशियल हैं, वो जांच को प्रभावित कर सकती हैं, वो जिस ओहदे पर थीं और उनका जो रुतबा है वो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले की जांच को प्रभावित कर सकता है, ये बात कही गई थी उनके परिवार की तरफ से। लेकिन हाईकोर्ट में कल जब उनकी अग्रिम जमानत याचिका को रद्द करने पर सुनवाई हो रही थी तो त्रिशा के परिवार के जो वकील है उन्होंने एक नया खुलासा किया। उन्होंने हाईकोर्ट में बाकायदा ये आधिकारिक रूप से कहा कि त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ली है, यानी अपराध जहां पे हुआ है उसे मैनेज करने का अनुभव है गिरीबाला सिंह को, और यही तो उन पे आरोप लग रहे हैं कि देर से सूचना दी गई, क्या सीसीटीवी के साथ कोई टेम्परिंग हुई है, ये तमाम बातें सीबीआई ने भी कोर्ट में कही है। तो इसका मतलब त्रिशा के परिवार के जो वकील दावा कर रहे हैं कोर्ट में लिखित में ये बता रहे हैं, तो क्या इसमें वाकई ये माना जाए कि इस पूरे मामले में जो क्राइम सीन है उसके साथ छेड़छाड़ हुई है, क्या उसे मैनेज करने की कोशिश हुई है? कम से कम इस नए खुलासे के बाद ये सवाल उठना शुरू हो गया है।
0: बिल्कुल, और रविश खास तौर पे देखिए, एक तो ये होता है कि कोई इन्फ्लुएंशियल पर्सन है, लगातार कोर्ट उसको भी बहुत कायदे से देखता है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि उनके साक्ष्य जो मिले थे, उनके फोन नंबर्स की डिटेल जो आ रही थी सामने लगातार, फिर उनको कहा गया कि उनको उन्होंने इस मामले में उसको उन्होंने ट्रेनिंग ली हुई है, तो ये सारे साक्ष्य जो है वो इसी तरफ इशारा करते हैं कि देखिए कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने पूरे क्राइम सीन को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज किया गया। हालांकि देखिए आप वहां की तस्वीरें भी दिखाइए, और ये भी हम जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आखिरकार सीबीआई की टीम के कितने अधिकारी इस समय उनके घर पर मौजूद हैं, गिरीबाला के घर पर, और इस समय क्या कुछ वहां पे चल रहा है।
1: देखिए फिलहाल तो आपको बताएं कि एक दर्जन से ज्यादा सीबीआई के अफसर जो है वो मौजूद हैं, 2 से 3 महिला अधिकारी भी इसमें बैठ अंदर मौजूद हैं जो पूछताछ हो रही है। अभी आप तस्वीर देखिए, जो ताजा तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जो ये देखना ज्यादा जरूरी है क्योंकि ये तस्वीर इतने दिनों से लगातार हम जो रिपोर्टिंग यहां से कर रहे हैं उसके बीच में ये पहली बार ऐसी तस्वीर सामने आई है जब पुलिस ने इतने सख्त तरीके से बैरिकेडिंग करके पत्रकारों को दूर करना शुरू कर दिया है। वाजिब सी बात है क्योंकि आज डेवलपमेंट भी बड़ा है। अभी तक जो डेवलपमेंट था वो इस मामले में जो मुख्य आरोपी है समर सिंह को लेकर के था, लेकिन आज जिनकी गिरफ्तारी की बात हो रही है वो एक रिटायर्ड जज है, कंज्यूमर फोरम में वर्तमान में फिलहाल वो अपनी सेवाएं दे रही हैं, और लंबा चौड़ा अनुभव जिनका है, जिनका रुतबा बहुत ज्यादा है।
0: होता बिल्कुल रविश, आप लगातार इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़े रहिए, आपका दोबारा से रुख करेंगे, लेकिन अब अगली खबर का रुख करते हैं जो पश्चिम बंगाल से। दरअसल पश्चिम बंगाल में पिछले कई सालों से जो नजारे देखने को मिलते थे बकरीद के मौके पर, वो अब इस बार बिल्कुल अलग है। शुभेंदु सरकार ने कुछ ऐसे बदलाव किए, या फिर आप कह सकते हैं कि शुभेंदु अधिकारी खुद इस बार बकरी ईद पर नमाज अदा करने की जगह है, वो इस्कॉन टेम्पल पहुंचे जहां पर उन्हें पूजा अर्चना की। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, 2 तस्वीरें। एक वो दौर था जब ममता बनर्जी खुद नमाज अदा करने के लिए बकरीद के मौके पर वहां खुद वहां पर पहुंचती थी, लेकिन इस बार शुभेंदु अधिकारी का दौर है तो वहां पर नजारे और तस्वीरें बिल्कुल अलग देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में नई सरकार आते ही नजारे बदल गए हैं। आज बकरीद पर शुभेंदु अधिकारी इस्कॉन टेम्पल पहुंचे, मंदिर में पूजा अर्चना की। शुभेंदु अधिकारी जब से बंगाल के सीएम बने हैं खुद हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय के तौर पर अपने आप को प्रेजेंट भी कर रहे हैं। और देखिए नई सरकार आई, नए नजारे, खासतौर पर नए रिजिम के साथ क्या क्या बड़े बदलाव किए गए, इसको लेकर हमारे सहयोगी ने एक रिपोर्ट भेजी। अनुपम मिश्रा की एक रिपोर्ट दिखाते हैं जो उन्होंने परेड ग्राउंड से भेजी है।
2: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए, और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है। और ये शुभेंदु सरकार के आने के बाद ये फैसला लिया गया कि नमाज जो है वो सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। ऐसे में बातचीत शुरू हुई, खिलाफत कमेटी जो इस नमाज को ऑर्गेनाइज करती है उसने पहले एनओसी ली आर्मी से, इसके बाद कोलकाता पुलिस से, और इसके बाद यहां पर आयोजन किया गया। दरी और चादर बिछाई गई, चूंकि बरसात हो सकती थी ऐसे में नए कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो पूरे इंतजाम किए गए, दरी चादर कर यहां पर इंतजाम किए गए और अब ये नमाज अदा की गई। और इससे पहले तक ये नमाज कोलकाता के ऐतिहासिक रेड रोड में होती आई थी। मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा, कोलकाता का रेड रोड मेरे पीछे है, ये कोलकाता का रेड रोड है जहां अभी भारी संख्या में पुलिसकर्मी भी तैनात किए गए हैं ताकि यहां पर कोई नमाज अदा न की जाए, सड़क खुली रहे। तो ये अभी जो रेड रोड आप देख रहे हैं इससे पहले तक यहां पर नमाज अदा होती थी इससे पहले के सालों में, और ये रास्ता पूरी तरह से बंद होता था, लेकिन ये सालों बाद पहला मौका है जब रेड रोड खुला हुआ है यातायात के लिए और जो नमाज है वो अता हो रही है कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड मैदान में।
0: और देखिए वैसे तो शुभेंदु अधिकारी कभी भी अपने हिंदुत्व वाले चेहरे को या एजेंडे को कभी छुपाते नहीं है, इससे पहले भी कई बार वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि देखिए उन्हें जिताने में उन्हें वोट देने वाले हिंदुत्व है ना कि मुसलमान।
3: पिछले बार मैं 1956 वोट में जीता था, इस बार करीब करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता, और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
0: और हमारे साथ हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी जुड़ गए। अनुपम, देखिए आप तो लगातार ममता बनर्जी की सरकार को भी बड़ी क्लोजली फॉलो करते हैं, अब शुभेंदु अधिकारी की सरकार है और इस बार बकरीद पर हम जो नजारे देख रहे हैं वो शुभेंदु अधिकारी का आप कह सकते हैं कि उनका एक खुले तौर पर एक उनकी आइडेंटिटी रही है, तो ऐसे में क्या कुछ नए बदलाव आप देख रहे हैं बकरीद के मौके पर?
2: देखिए, इससे पहले तक जो हमने देखा पिछले 15 सालों में बकरीद खास तौर पर कोलकाता में जो आइकॉनिक रेड रोड है उस पर नमाज अदा की जाती थी और ममता बनर्जी भी कई बार उसमें शामिल हुई हैं इसके पहले के कार्यक्रमों में, लेकिन इस बार प्रशासन ने साफ तौर पर कह दिया था कि सड़क पर नमाज नहीं अदा की जाएगी। और इसके साथ साथ बहुत सारे एक्ट भी लागू किए गए, जैसे पुराना काउ स्लॉटर का एक्ट है उसको लागू किया गया कि 14 वर्ष से नीचे की गाय को की कुर्बानी नहीं हो सकती है। तो ऐसे में इस बार जो ईद हुई कोलकाता के रेड रोड में न होकर आइकॉनिक ब्रिगेड परेड मैदान में हुई, सालों बाद यहां पर नमाज अदा की गई, बहुत सारे लोग शामिल भी होने आए। कई लोगों से हमने बात की, नमाजियों से बात की, तो कुछ मिक्स्ड रिएक्शन रहे। कुछ का कहना था कि अच्छा हुआ है, बढ़िया है, ये मैदान बहुत बड़ा है, इसमें काफी लोग समा सकते हैं। कुछ का कहना था कि ग्राउंड लेवल नहीं किया गया था ठीक तरीके से, तो हो सकता है कि इस बार समय कम मिला हो, अगले बार से अगर और अच्छे से इंतजाम हो तो बहुत सारे लोग यहां पर शामिल हो सकते हैं। तो ये सब बदलाव
0: बिल्कुल अनुभव देखिए, लगातार बात यही है कि देखिए शुभेंदु अधिकारी के आते ही पश्चिम बंगाल में कुछ अलग तस्वीरें देखने को मिल रही है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट हमने आप तक दिखाई, उनके वो बता रहे थे कि क्या कुछ बदलाव इस बार किए गए। अब अगली खबर का रुख करते हैं। दरअसल बकरीद के मौके पर शहर के अलग अलग हिस्सों से तस्वीरें आ रही हैं, इस बार लगातार खास इंतजाम भी किए जा रहे हैं। अलग अलग तस्वीर हम आपको दिल्ली से, भोपाल से, बिहार से अलग अलग तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, अलग अलग शहरों की हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर दिल्ली से है, उसके बाद कोलकाता, भोपाल, जयपुर, कोयम्बटूर और देहरादून, पटना, मुंबई और अजमेर और रामबन की तस्वीरें अब अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। अलग अलग शहरों से किस तरीके से लोग नमाज अदा करते हुए नजर आ रहे हैं और खासतौर पर उसके बाद अगर आप देखें तो भारी संख्या में लोग किस तरीके से वहां पर मौजूद हैं वो भी। और देखिए अब आपको सीधे उत्तर प्रदेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में किस तरीके से इस बकरीद के मौके पर सुरक्षा व्यवस्था की गई है। अलग अलग तस्वीरें इस समय उत्तर प्रदेश की है, देखिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों की तस्वीर है, लखनऊ, नोएडा, कानपुर, संभल, सहारनपुर, इसके अलावा हापुड़, अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी और मुजफ्फरपुर की ये तस्वीरें हैं। देखिए तमाम सुरक्षा व्यवस्थाओं के बीच लगातार बवाल होने की भी आशंका थी, लेकिन बकरीद के मौके पर बड़े आराम से आप कह सकते हैं सुरक्षा व्यवस्था की गई थी और अच्छे से बकरीद का मौका त्योहार आराम से निकल गया। इसको लेकर आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
4: दिल्ली, भोपाल, कोयम्बटूर, बेंगलुरु, पटना, कोलकाता, ये बकरीद थोड़ी हटकर थी। बकरीद से पहले राज्यों से सख्तियों और पाबंदियों की खबर आ रही थी, नमाज और कुर्बानी को लेकर नियम कायदे बताए जा रहे थे, लेकिन जब अलग अलग शहरों से बकरीद की तस्वीरें आई तो तमाम शंकाएं खत्म होती चली गई। इन दो तस्वीरों को देखिए, इस बार की बकरीद अभूतपूर्व सुरक्षा के साए में मनाई गई। अलग अलग शहरों की सुरक्षा व्यवस्था देखकर आप समझ जाएंगे कि पुलिस प्रशासन की कितनी मुस्तैदी थी। दिल्ली में ज्वाइंट कमिश्नर मथुर वर्मा सुबह से मोर्चे पर तैनात, खुद सड़क पर उतरकर इंतजामों को देख रहे थे। दिल्ली की दो बड़ी जामा मस्जिद और फतेहपुर मस्जिद में नमाजियों की ठसाठस भीड़ थी, सुबह से लोगों का तांता था, लेकिन दिल्ली पुलिस के लिए ये मौका किसी बड़ी परीक्षा से कम नहीं थी।
5: इस वक्त सुबह के वक्त आप देखेंगे तो पहुंचे हुए हैं लोग, बड़ी संख्या में पहुंचे हुए हैं और सुबह की नमाज इस वक्त हो रही है। हम मौजूद हैं आईटीओ के पास मस्जिद पर, जहां पर जब लोगों की संख्या काफी ज्यादा हो गई तो आप देखिए अंदर जब लोग पूरी तरीके से भर गए तो बाहर जो बैरिकेडिंग की गई थी पुलिस के द्वारा, सड़क के किनारे जो हिस्सा है जहां बैरिकेडिंग की गई थी, तो वहां लोग यहां पर बैठे और देखिए अभी भी यहां पर लोगों का आना जारी है और पुलिस सभी को बैरिकेड के अंदर कर रही है। हैवी डिप्लॉयमेंट अगर आप देखेंगे तो इस पूरे इलाके को बैरिकेड किया गया है और इसके अलावा पुलिस की सिक्योरिटी सिर्फ यही नहीं बल्कि आसपास के तमाम इलाकों में पुलिस का डिप्लॉयमेंट इसी तरीके से है।
4: वैसे सबकी नजर यूपी पर टिकी थी जहां पुलिस बीते कुछ दिनों से पूरी मोर्चाबंदी में लगी थी। सड़कों पर लगातार फ्लैग मार्च हो रहा था, गश्त हो रही थी। मुजफ्फरनगर, संभल, मेरठ, हापुड़, नोएडा, कानपुर, लखनऊ, अयोध्या, यूपी में बकरीद को लेकर जबरदस्त सख्ती थी। योगी सरकार ने दो टूक कह दिया था कि सड़कों पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, गोवंश की कुर्बानी नहीं होगी। योगी के आदेश को पूरा करने में यूपी पुलिस को एड़ी चोटी का जोर लगाना पड़ा।
6: जिन स्थानों पर पहले से कुर्बानी होती आई थी वहां होगी, नंबर दो नमाज सड़कों पर नहीं होगी। इसकी व्यवस्था डीएम जो है उन्होंने सिविल डिफेंस की टीम को दी है और वो इसकी देखरेख कर रही है। इस बीच में बकरीद की नमाज है, मकबरा शाह पीर मोहम्मद, टोम्ब ऑफ शाह पीर मोहम्मद है और इस बीच में यहाँ पर भारी संख्या में नमाजी पहुंच रहे हैं। अगर आप राजधानी लखनऊ की बात करें तो दो सबसे प्रमुख स्थान इनके लिए हैं, एक ईदगाह ऐशबाग और दूसरी टीले वाली मस्जिद, जहां भारी संख्या में जो नमाजी हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, वो सभी नमाज अदा करने के लिए पहुंच रहे हैं।
7: और चलिए लखनऊ के बाद अब आपको संभल की तस्वीरें भी दिखाते हैं। हमारे सहयोगी अभिनव माथुर की अकाउंट रिपोर्ट संभल से दिखाते हैं।
8: बकरीद को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच संभल जिले के अलग अलग इलाकों में बकरीद की नमाज़ अदा की जा रही है। और आप यहां जो देख सकते हैं, देखिए जो पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर आपको जो दिखाई देगी और यहां आप जो देखेंगे तो देखिए लाइन से आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको जो तैनात नज़र आएंगे। फिलहाल आपको यहाँ जो ईदगाह स्थल की वो तस्वीरें हैं जहाँ पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात है। इसी के साथ देखिए डीएम और एसपी की जो मौजूदगी है वो खुद इस पूरे इलाके में जो बनी हुई है, जबकि बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यहाँ पर ईद की नमाज जो संपन्न कराई जा रही है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी इस पूरे इलाके में तैनात हैं। और आप यहाँ देखेंगे तो देखिए सामने की तरफ आपको वो ईदगाह स्थल है जहाँ पर ईद की नमाज चल रही है और ठीक उसके बाहर यहाँ पर सुरक्षा के बेहद कड़े इंतजाम इस वक्त यहाँ जो रखे गए हैं, जबकि यहाँ पर डीएम अंकित खंडेलवाल और एसपी कृष्ण कुमार बिश्नोई खुद यहाँ पर मौजूद हैं। सर किस तरीके के सुरक्षा इंतजाम सर आज पूरे जनपद में रखे गए हैं बकरीद के?
9: जनपद संभल में 838 जगहों पर जो है वो नमाज पढ़ी जा रही है। सभी जगहों पर मजिस्ट्रेट पुलिस की ड्यूटी है और प्रॉपर तरीके से कैमरों की निगरानी में और पीटीजेड कैमरे और 112 के कैमरों की निगरानी में अच्छे से नमाज पढ़ी जा रही है शांतिपूर्वक तरीके से। 6 बजे से 10 बजे के बीच में जो निर्धारित कुर्बानी के स्थल है उन्हीं स्थलों पे कुर्बानी दी जाएगी और पुलिस है उसको प्रॉपर चप्पे चप्पे पे सेक्टर वाइज और जोन वाइज टाइम के हिसाब से डिप्लॉय कर दिया गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि किसी भी जगह पे किसी प्रकार का कोई इशू नहीं आएगा और जो व्यक्ति कानून व्यवस्था को अपने हाथ में लेने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के अंजाम भी किए गए हैं।
7: और चलिए अब अगली खबर है कर्नाटक के सियासी गलियारों से, जहां पर सिद्धरमैया युग का अंत हो रहा है। 2.5 साल के बाद मुख्यमंत्री का चेहरा बदला जा रहा है। खुद सिद्धरमैया ने इसको लेकर ऐलान भी कर दिया है और कहा गया है कि लोक भवन जाकर वो 2:30 बजे अपना इस्तीफा देने के बाद वहां स्पीकर से मुलाकात करेंगे, गवर्नर से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कहा जा रहा है कि 3 बजे वो एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं और 5 बजे वो दिल्ली भी आ सकते हैं। इन तमाम खबरों के बीच में किस तरीके से कहा जा रहा है कि देखिए 2:30 बजे लोक भवन जाकर वो अपना इस्तीफा देंगे। हमारे साथ हमारी सहयोगी मौसमी सिंह इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ गई हैं। मौसमी देखिए ये तो तय है, उन्होंने खुद ही कह दिया कि वो इस्तीफा देने वाले हैं, लोक भवन वो जाएंगे, उसके बाद वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और डीके शिव कुमार के हाथ में अब नई सत्ता की चाबी आने वाली है। लेकिन क्या कुछ फर्क होगा सिद्धरमैया वर्सेस डीके शिव कुमार, खासतौर पर अगर आप कर्नाटक के पर्सपेक्टिव से देखें तो?
10: जी बिल्कुल, देखिए ये जाहिर तौर पे ये जो सफर होगा ये सिद्धरमैया अकेले नहीं तय कर रहे हैं, ये सफर इस सफर में डीके शिव कुमार भी उनके साथ होंगे और ये उनका बतौर मुख्यमंत्री इस कार्यकाल का आखिरी सफर होगा, क्योंकि गवर्नर ऑफिस में वो सेक्रेटरी को, गवर्नर साहब तो है नहीं पर सेक्रेटरी को वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। लेकिन दोनों के हाव भाव, वर्किंग स्टाइल में बहुत अंतर है। सिद्धरमैया 78 के हैं, डीके शिव कुमार जो है एक फायर ब्रांड नेता है जो एनएसयूआई से लेके पार्टी के संगठन में जुड़े रहे हैं। बहुत ही उनका अंदाज जो है डीके शिव कुमार का ब्लंट अंदाज है, बोल्ड अंदाज है और काफी इन योर फेस रहता है, मतलब लड़ाकू नेता के तौर पर, कांग्रेस के नेता के तौर पर उनको माना जाता है कि कोई भी परिस्थिति में डीके शिवकुमार ही चीफ ट्रबल शूटर होते हैं। तो देखना होगा कि क्या वो हाव भाव भी बतौर मुख्यमंत्री हमें देखने को मिलता है। लेकिन शायद ही आज का टेक अवे ये है,
7: बिल्कुल अगर मौसमी आप बने रहिए इस बड़ी खबर के साथ, लेकिन कुछ तस्वीरें भी लगातार हम कर्नाटक से अपने दर्शकों को दिखाते हैं, क्योंकि देखिए सिद्धरमैया के बाद उनके जो समर्थक है वो बहुत ज्यादा परेशान है, फिर कह सकते हैं गुस्से में। और इसी बीच कुछ तस्वीरें आ रही है जहां पर रायचूर में कहा जा रहा है कि सिद्धरमैया की तस्वीरें जलाई गई है, और माफ कीजिएगा राहुल गांधी की तस्वीरें जलाई गई है, और इसी बीच उनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। देखिए राहुल गांधी की फोटो जलाकर सिद्धरमैया के जो समर्थक है वो प्रदर्शन कर रहे हैं, और इसके साथ आप देखें कि सिद्धरमैया के हटने के बाद ये लगातार उनके समर्थकों में भारी नाराजगी है। देखिए इस बड़ी खबर पर हमारे साथ मौसमी सिंह जुड़ी हुई है। मौसमी, देखिए यही सबसे बड़ा आस्पेक्ट था, यही सबसे बड़ा चैलेंज था कि कांग्रेस पार्टी आखिरकार चेहरा तो बदल देगी लेकिन उसको मैनेज कैसे करेगी। देखिए सिद्धरमैया का आपने खुद बताया कि पार्टी में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी के लिए काम करते आए हैं, अब डीके शिवकुमार का एंट्री होगी, लेकिन मैनेजमेंट कैसे होगा इस क्राइसिस मैनेजमेंट का, क्योंकि देखिए विरोध प्रदर्शन अब राहुल गांधी के खिलाफ शुरू हो गए।
10: देखिए ये तो होना ही था, कितनी एक्सटेंड तक होना था और क्या वाकई में जो ये ट्रांजिशन ऑफ पावर है ये स्मूथ होता, या इसमें अटकलें लगाई जा रही थी कि कई हफ्ते लग सकते हैं और रस्साकशी चलेगी, उस तरीके का उग्र या तीव्र विरोध प्रदर्शन देखने को उतना नहीं मिला जितना कांग्रेस भी सोच रही थी कि शायद विरोध झेलना पड़ेगा। और उसकी वजह यह है कि सिद्धरमैया को बहुत ज्यादा मानते हैं राहुल गांधी, जिस तरीके से उनको मनाने का काम किया है, जिस तरीके से ऑप्टिक्स के साथ साथ एक रणनीतिक तौर पे स्ट्रैटेजिक तौर पर उनको इंदिरा भवन में उनसे 50 मिनट मुलाकात की है, उसके बाद सिद्धरमैया शायद खुद भी इस बात को लेकर तैयार हो गए थे और यहाँ पे कोई बैकफोर्थ नहीं हुआ कि मैं रिजाइन नहीं करूंगा, और ऐसे में उन्होंने दो टूक कह दिया कि गवर्नर नहीं भी होंगे तो भी अपना इस्तीफा पहुंचाऊंगा।
7: बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया, बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत शुक्रिया मौसमी, वक्त की कमी है माफ कीजिएगा, लेकिन मौसमी सिंह हमारी सहयोगी देखिए बता रही थी कि कांग्रेस पहले से तैयार थी और क्राइसिस मैनेजमेंट को लेकर पहले से कई तैयारियां की गई थी। अब बीजेपी की बात करते हैं, बीजेपी में भी कई बड़े बदलाव किए गए, खासतौर पर 4 प्रदेशों के अध्यक्षों के चेहरे बदल दिए गए हैं, इसमें दिल्ली हरियाणा त्रिपुरा और आप कह सकते हैं कि चारों पंजाब का नाम शामिल है। सबसे पहले अगर बात करें तो दिल्ली में हर्ष मल्होत्रा को ये जिम्मेदारी दी गई है कि वो दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष के तौर पर काम करेंगे। इसके बाद अगर बात करें केवल सिंह ढिल्लों को पंजाब की जिम्मेदारी दी गई है, हरियाणा की जिम्मेदारी अर्चना गुप्ता को दी गई है, और त्रिपुरा में भी बड़े बदलाव किए गए जहां पर अभिषेक देव रॉय को यह जिम्मेदारी दी गई है। और चलिए न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, लेकिन ब्रेक के बाद भी आपको बताएंगे सूर्यवंशी की सुनामी के बारे में बड़ी कवरेज।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी।
13: There's just something about classic soul music that gets you moving, and TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics, or just set the right tone with smooth soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
14: Jack FM is now streaming commercial-free on TuneIn Premium.
15: Jack, come home. It's supper time.
14: Upgrade to TuneIn Premium and get Jack FM commercial-free.
16: Could you play that one song with the words?
14: Jack FM, playing what we want.
17: Sokudo.
18: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: सर म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
3: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
4: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। तो अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से
5: सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: और वही कहाँ गए थे घूमने?
8: जीके मैक्स।
9: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
8: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
10: जेके वॉल मैक्स
8: बेस्ट पेंट,
9: जेके मैक्स।
8: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
11: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते, भाई साहब सब पचा देते।
12: पर दिक्कत तो होने आती है जो टेबल के नीचे से।
13: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
14: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: Director, the taste of success.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
4: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

भोपाल में कभी भी हो सकती है पूर्व जज गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी। सीबीआई की 3 घंटे से ज्यादा की पूछताछ के बाद घर पर बुलाई गई फोर्स। त्रिशा की मौत के केस में रद्द हो चुकी है अग्रिम जमानत।

के लिए डी के शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव। 2:30 बजे जाएंगे लोक भवन। नाश्ते की टेबल पर दोनों नेताओं हुए भावुक। नीट मामले में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर पर बड़ी बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सिंधिया और पीएमओ के अधिकारी और एनटीए चीफ भी रहे मौजूद। फुल प्रूफ सिस्टम बनाने पर हुई चर्चा। बीजेपी संगठन में फेरबदल का आरंभ। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी, पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में भी नए प्रदेश अध्यक्ष का चुनाव।

0: से बहुत बहुत स्वागत है, मैं हूं आपके साथ सुमित चौधरी और इस बुलेटिन में बात करेंगे सूर्यवंशी सुनामी को लेकर। दरअसल 15 साल के इस खिलाड़ी ने पूरी दुनिया में धूम मचा दी। अपने खेलने के तरीके को लेकर या फिर आप कह सकते हैं अपने टैलेंट को लेकर इसकी चर्चा पूरी दुनिया में की जा रही। सूर्यवंशी सुनामी अगर आप बात करें तो 15 साल का एक खिलाड़ी ने 29 गेंदों के अंदर 97 रन बनाकर बड़ा कीर्तिमान रच दिया है। आपको बताएंगे कि आखिरकार कैसे ये खिलाड़ी अब आईपीएल का वो चमकता सितारा ध्रुव तारा हो गया जिसके सामने बड़े बड़े खिलाड़ी फीके पड़ते जा रहे हैं। आपको तमाम बड़ी खबरें बताएंगे और आपको ये भी बताएंगे कि आखिरकार इस 15 साल के खिलाड़ी की शुरुआत कैसे हुई, कैसे लगातार एक साल में इसने ऐसे कीर्तिमान हासिल किए जो बड़े बड़े खिलाड़ी हासिल नहीं कर पाए। इसको लेकर एक रिपोर्ट आपको सबसे पहले दिखाते हैं।
1: He has been on fire once again. Another thing as well, one thing scoring runs when there's no expectation, but as this season's continued, there is pressure. He is a fundamental part of this team.
2: दीदार कीजिए क्रिकेट के आसमान के इस नए ध्रुव तारे की चमक का, करतल ध्वनि के साथ इस्तकबाल कीजिए भविष्य के सितारे की धमक का।
1: सूर्यवंशी 15-16 deliveries, and he's with 8 sixes so far. He's only one boundary, but 8 sixes, and he's been proving.
2: पल्ले की नई बादशाहत का, इतिहास के पन्नों को मिटाकर लिखी जा रही अविश्वसनीय इबारत का,
1: It's not just about line hitting,
2: और 140 करोड़ भारतीयों के दिल से निकल रही चाहत का, जिसमें अघोषित दुआओं का असंख्य इंद्रधनुष है। ईश्वरीय प्रतिभा और मेहनत की भट्टी में तपकर निखरा ऐसा बल्लेबाज जिसके नाम पर कीर्तिमानों का एवरेस्ट है, जो दिग्गजों की फेहरिस्त में द बेस्ट है। उम्र सिर्फ 15 साल 2 महीने, लेकिन बाजुओं में ऐसा जोर कि पूरा हिंदुस्तान तालियों के शोर में सराबोर है।
3: Straight back down the ground again. He's putting on a show, this young man, Vaibhav Suryavanshi.
2: बीती रात न्यू चंडीगढ़ में मानो सुनामी आई। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की सुनामी, इस लड़के के बल्ले से छक्कों की ऐसी सुनामी कि हैदराबाद के बड़े बड़े धुरंधर तिनके की मानिंद उड़ गए। हैदराबाद के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को वैभव सूर्यवंशी ने अकेले ही मिट्टी में मिला दिया। एक ऐसी तूफानी पारी खेली जिसे हैदराबाद की टीम जल्द से जल्द भुला देना चाहेगी।
4: जीते तो अच्छा पॉजिटिव इंटेंट लेके नेक्स्ट मैच पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट मैच को सेम जीत कर निकलेंगे फाइनल। थोड़ा बहुत सोचता हूँ, ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बस ट्राई करता हूँ जो गेम है वही खेलूँ, ज्यादा सोचू ना। बट कहीं पे अगर मुझे लगता है मुझे काम करना है तो वो देखता हूँ मैं। सर बस यही सोचता हूँ कि सामने वाली टीम के बॉलर्स कौन है, मैं इस विकेट पे किस तरीके से उनको फेस कर सकता हूँ, बाउंड्रीज कितनी भरी है, यही सब बस। सर मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब मैं जब भी अच्छे इंटेंट में रहता हूँ तो बॉलर प्रेशर में रहते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको कंटिन्यू करूँ और डोमिनेट करके खेलूँ।
1: He has been on fire once again. Another thing as well. One thing scoring runs.
2: वैभव सूर्यवंशी का बल्ला ऐसा गर्जा कि हर गेंदबाज, चाहे ऑस्ट्रेलिया के बेस्ट बॉलर कमिंस हो या बिहार के उभरते साकिब हुसैन, सब के सब पानी मांगते दिखे। वैभव ने 29 गेंदों में ऐसी पारी खेली जिसे बरसों तक याद रखा जाएगा।
5: Best thing about Vaibhav, which I notice, is he doesn't plan anything because he practices a lot and he always back himself. That's what he does every time when he go out and play. So the best thing about himself is like he backs himself and he doesn't have that shadow of doubt that I'm not able to do it.
6: And from us up here in the commentary box, handling it beautifully.
2: वैभव की इस पारी के मुरीद क्रिकेट के भगवान कहे जाने वाले सचिन तेंदुलकर भी हो गए और तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पाए। सोशल मीडिया पोस्ट में क्रिकेट के भगवान ने लिखा, वैभव सूर्यवंशी का बैट स्विंग जबरदस्त है, इससे भी ज्यादा कमाल की बात यह है कि वो कितनी खूबसूरती से अपना अगला पैर हटाकर आने वाली गेंदों के लिए जगह बनाते हैं। इसी आजादी की वजह से वो उस तरह से खेल पाते हैं जैसा वो खेल रहे हैं। ये पारी किसी शानदार करिश्मे से कम नहीं। अपने 57 रनों की पारी के लिए वैभव ने सिर्फ 29 गेंदे खेली, ये 29 बॉल पर बैटिंग नहीं एक बवंडर जैसी पारी थी। 97 रनों में 12 छक्के मारे

0: और एक सीजन में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। सूर्यवंशी ने दिग्गज क्रिस गेल के रिकॉर्ड को ध्वस्त कर दिया। गेल ने 2012 के सीजन में 59 छक्कों के साथ ये कीर्तिमान अपने नाम किया था। अब ये रिकॉर्ड वैभव सूर्यवंशी के नाम है। सूर्यवंशी ने इस सीजन में अब तक 65 छक्के जड़ दिए हैं। आज तक ब्यूरो।
1: कहते हैं देखन में छोटन लगे लेकिन घाव करे गंभीर। 15 साल का ये खिलाड़ी कुछ ऐसा ही है जिसने बड़े बड़े खिलाड़ियों को, बड़े बड़े गेंदबाजों को बड़े घाव दे दिया। अपने छक्कों की बदौलत इसने ऐसा कीर्तिमान हासिल किया जो बड़े बड़े खिलाड़ियों के लिए एक तस्दीक बन गया। कैसे एक छोटे से गांव से, एक छोटे से शहर से निकला ये खिलाड़ी अब दुनिया भर में नए कीर्तिमान हासिल कर रहा है, इसको लेकर एक और आपको रिपोर्ट दिखाते हैं।

0: क्या पापा पढ़ना, रूम पे जाके पढ़ते।
1: बिहार की गलियों से निकला ये लड़का आज क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका है। नाम वैभव सूर्यवंशी, उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन खेल दिग्गजों जैसा। जब बाकी बच्चे स्कूल और मोबाइल गेम्स में व्यस्त थे, तब वैभव घंटों नेट्स में पसीना बहाते थे। बैट उनके लिए खिलौना नहीं, जुनून रहा। परिवार ने संघर्ष किया, कोच ने हुनर पहचाना और वैभव ने हर मौके को रन में बदल दिया। लोकल टूर्नामेंट से लेकर जूनियर क्रिकेट तक हर जगह सिर्फ एक चर्चा होने लगी, ये लड़का अलग है।
2: बहुत खुशी, बहुत खुश है पूरा परिवार, पूरा हमरा क्षेत्र इलाका के सब, देखिए सब खुश है। और बच्चा अच्छा खेला है, सारे बच्चे अच्छे खेले हैं पूरे टूर्नामेंट में, खेल करके कप, विश्व कप जीते हैं, तो बहुत खुश हैं हम लोग, गर्व महसूस करते हैं। बस इसी तरह खेले, अच्छा खेले, देश के काम आए बस।
3: काफी आतिशबाजी हो रही है।
2: हाँ, बहुत एकदम बहुत बहुत बहुत बहुत।
3: आपने काफी मेहनत भी किया,
2: तो आपसे छिपा हुआ है क्या
3: जी?
2: आप थे ना, गवाह है ना। हाँ, बहुत बचपन से ही मेहनत किए।
3: आपको लगा कि हाँ ये खेल सकता है?
2: एकदम,
3: हम लोग एक साथ थे तो उस समय आपने पढ़ा।
2: हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम लगा, मेहनत किए, बच्चा भी बहुत मेहनत किया, उसी का परिणाम है कि आज
3: सफल हो गए।
2: एकदम एकदम आगे और जो सफलता का डगर जो है अभी बहुत लंबा है, बहुत दूर तक जाना है उसको।
1: फिर आया अंडर 19 क्रिकेट और यहाँ वैभव ने पहली बार देश भर का ध्यान खींचा। तेज रन, लंबे छक्के और बिल्कुल बेखौफ बल्लेबाजी। क्रिकेट एक्सपर्ट्स को हैरानी सिर्फ उनके शॉट से नहीं, हैरानी इस बात की थी कि इतनी कम उम्र में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है।

0: इसके बाद आईपीएल स्काउट्स की नजर पड़ी और फिर वो हुआ जिसका सपना हर युवा क्रिकेटर देखता है। वैभव को मिला आईपीएल का मंच, भारतीय क्रिकेट के बॉल राहुल द्रविड़ का साथ मिला। राहुल ने इस प्रतिभा को ऐसा निखारा कि वो न सिर्फ मजबूत हुए बल्कि और खतरनाक हो गए। बड़े बड़े गेंदबाजों की गेंदों को बेखौफ बाउंड्री के पार भेजने लगे। हर मैच नया तूफान, नया बवंडर।
1: सबसे ज्यादा खुशी इस बात का है कि राहुल सर के अंडर ट्रेनिंग का मौका, उनके अंडर खेलने का मौका मिलेगा, इसका ज्यादा मुझे खुशी है क्योंकि काफी बड़े एक्सपीरियंस है उनके अंदर, काफी पुराने क्रिकेटर रह चुके, इंडिया के कोच है, तो इस चीज का मुझे ज्यादा खुशी है कि राहुल सर के अंडर मुझे खेलने का मौका मिलेगा।
2: अंडर 19 एशिया कप भी आप खेल करके आए हैं और आपकी जितनी भी पारियां रही हैं आप काफी तेज तरार खेलते हैं, मतलब वनडे में आप T20 स्टाइल में खेलते हैं। आपका दो पारियों को मैंने देखा था जिसमें आपने एक 70-75 रन की पारी खेली थी और एक 67 रनों की पारी खेली थी। तो आप ओपनिंग करते हैं, आपका अप्रोच क्या होता है जब आप बल्लेबाजी करने जाते हैं, भूल जाते हैं कि वनडे क्रिकेट खेल रहे हैं या T20 क्रिकेट?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, अप्रोच कुछ नहीं रहता, अकॉर्डिंग टू बॉल खेलने का ट्राई रहता है बस। अगर बॉल मारने का है तो मारता हूं, नहीं तो मतलब बॉल के हिसाब से ही खेलने का ट्राई करते हैं बस। ऐसा कुछ नहीं है कि तेज या स्लो, अगर बॉल आ रहा है मारने का तो
3: ठीक है। पापा पढ़ना रूम पे जाके पढ़ते।
0: आज वैभव सिर्फ एक खिलाड़ी नहीं, वो उम्मीद है, उस भारत की उम्मीद जहां छोटे शहरों के बच्चे अब बड़े सपने देखते हैं। वैभव सूर्यवंशी वो नाम जो इंटरनेशनल क्रिकेट में एंट्री से पहले दुनिया में छा गए। लोग इस 15 साल के दिग्गज के दीवाने, जो न सिर्फ पिच पर धमाल करता है बल्कि हर दिग्गज गेंदबाजों के दिलो दिमाग में खौफ भर देता है। आज तक ब्यूरो।
4: क्रिकेट के मैदान में रिकॉर्ड बनाना बेहद मुश्किल होता है, लेकिन वैभव ने हर मैदान में, हर खेल में एक नया कीर्तिमान हासिल किया। सबसे कम उम्र के खिलाड़ी, सबसे ज्यादा तेज गेंदों पर या फिर तेजी के साथ शतक बनाने की ये आदत, ये सभी बातें उनको रिकॉर्ड मशीन के तौर पर कहे जाने का एक खिताब भी देती हैं। आइए आपको उनको ले, उनके रिकॉर्ड्स को लेकर एक रिपोर्ट दिखाते हैं।
5: क्रिकेट इतिहास में बहुत कम ऐसे खिलाड़ी आए हैं जिन्होंने इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा धमाका किया। वैभव सूर्यवंशी अब रिकॉर्ड बुक्स का नया नाम बन चुके हैं। सबसे पहले आईपीएल इतिहास के सबसे युवा खिलाड़ी, इतनी कम उम्र में डेब्यू कि दुनिया हैरान रह गई। वैभव ने अपना पहला आईपीएल मैच 19 अप्रैल 2025 को राजस्थान रॉयल्स की ओर से लखनऊ सुपर जॉयंट्स के खिलाफ खेला। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल और 23 दिन थी। इस मैच का आगाज भी दमदार रहा। वैभव ने अपने डेब्यू वाले मैच के पहली ही गेंद पर छक्का जड़ा। फिर आया वो मैच जिसने वैभव को सुपरस्टार बना दिया, 35 गेंदों में शतक और इसके साथ आईपीएल इतिहास के सबसे युवा सेंचुरियन। वैभव ने आईपीएल में अपनी पहली सेंचुरी 28 अप्रैल 2025 को लगाई थी। उन्होंने ये शतक गुजरात जॉइंट्स के खिलाफ खेलते हुए बनाया। वैभव ने सिर्फ 35 गेंदों में शतक ठोक दिया। उस पारी में उन्होंने 38 गेंदों पर 101 रन बनाए थे। उस वक्त उनकी उम्र सिर्फ 14 साल 32 दिन थी। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकी। सबसे तेज 1000 T20 रन, सबसे तेज 50 छक्के, एक सीजन में सबसे ज्यादा स्ट्राइक रेट, हर मैच के बाद एक नया रिकॉर्ड, जो रिकॉर्ड बड़े बड़े दिग्गजों ने सालों में बनाए उन्हें वैभव महीनों में तोड़ रहे हैं। ये सिर्फ टैलेंट नहीं है, ये मानसिकता है। वैभव डर कर नहीं खेलते, वो मैच पर कब्जा करने उतरते हैं और शायद यही वजह है कि अब उनकी तुलना सिर्फ युवा खिलाड़ियों से नहीं बल्कि क्रिकेट के सबसे बड़े नामों से होने लगी है। उम्र छोटी है लेकिन रिकॉर्ड इतने बड़े कि क्रिकेट दुनिया अब उन्हें फेनोमेनन कह रही है। एक दौर में सचिन थे, फिर विराट आए और अब नई पीढ़ी की नजरें वैभव सूर्यवंशी पर टिकी है। क्रिकेट एक्सपर्ट्स कहते हैं कि उनमें युवराज जैसी टाइमिंग दिखती है, गेल जैसी ताकत दिखती है और एबी जैसी रेंज।
6: बहुत अच्छा परफॉर्म किया, बहुत बड़ी बात है 14 साल में आईपीएल खेलना, खेलना एक चीज़, उसके ऊपर से उसका जो आत्मविश्वास है और इतने बड़े बॉलर्स को छक्के मारना, छक्के छुड़ाना बहुत बड़ी बात है और हमारे देश के लिए बहुत गर्व की बात है, क्योंकि इससे कई और जो यंग युवाएं हैं उनको हौसला मिलता है। और अब देखिए तो बार इतना सेट हो गया कि 14 साल का बच्चा आईपीएल खेल रहा है, अभी 17 साल का भी है, बहुत खुशी हो रही है कि इतने साल के इतने यंग एज में लड़के सक्सेस पे आ रहे हैं, तो बहुत खुशी।
5: सबसे खास बात यह है कि वैभव किसी की कॉपी नहीं लगते, अपनी लकीर खींचते हैं, अपने अंदाज में खेलते हैं, सामने कोई भी हो परवाह नहीं।
7: वैभव की कमाल की बैट स्पीड है,
8: कहां से बैट आता है और
7: उसकी बैट स्पीड बहुत तेज है, इतनी तेज बैट स्पीड तो मेरी भी नहीं थी और बहुत कम लोग ही देखी है मैंने बहुत। और उसकी अच्छी बात यह है कि उस बैट स्पीड में कि एक ही तरफ बैट नहीं चलता, लाइक तो फर्स्ट मैच वो खेला उसके कैच छूटा, अच्छे प्लेयर का कैच छोड़ोगे तो यू विल सफर,
8: अगली बॉल भी मार दी।
7: हाँ बट वो भी यंग है, ही इज लर्निंग, ही इज जो उसने सीखा है वो कर रहा है। बट उसके बाद जो उसने ऑफ साइड पे छक्के मारे अच्छी बॉलों को, दैट वॉज क्वालिटी, कि एक तरफ डायमेंशन नहीं है। आई फील लॉट ऑफ प्लेयर्स हैव एक तरफ का डायमेंशन मारने में, पावर हिटिंग, उसकी पावर हिटिंग हर जगह है। सो आई फील एट यंग एज में उसके पास स्किल बहुत ज्यादा है, एंड ऑब्वियसली द मोर मैचेस ही विल प्ले द यू नो विद फेलियर्स एंड सक्सेस ही विल बिकम बेटर।
5: कम उम्र में स्टारडम, सोशल मीडिया, करोड़ों की उम्मीदें, ये सब संभालना आसान नहीं होता। क्रिकेट इतिहास गवाह है, कई युवा खिलाड़ी जल्दी चमके लेकिन दबाव में खो गए, इसलिए वैभव के लिए सबसे जरूरी होगा फोकस और संतुलन। अगर फिटनेस सही रही, अगर भूख बरकरार रही, तो भारत को सिर्फ बल्लेबाज नहीं एक नया युग मिल सकता है, और शायद आने वाले सालों में क्रिकेट की दुनिया कहे वो सिर्फ अगला विराट नहीं था, वो पहला वैभव था। आज तक देरो
4: वैभव सूर्यवंशी ने जब अपना आईपीएल में डेब्यू किया था तब किसी को अंदाजा नहीं रहा होगा कि ये खिलाड़ी इतनी जल्दी इतनी ज्यादा शिखर पर पहुंच सकता है, लेकिन कुछ ही समय के अंदर उसने अपना वैभव ऐसा दिखाया कि पूरी दुनिया उसके जलवों को, उसके खिलाड़ उसके खेल को मानने लग गई। लेकिन जब आईपीएल में डेब्यू किया था तब उस समय वैभव को अपने हौसला था कि वो जरूर कुछ करके मानेगा। उसी समय का आपको एक उनका इंटरव्यू सुनाते हैं।
2: इस वक्त हमारे साथ बिहार के वैभव सूर्यवंशी मौजूद हैं, साथ ही साथ बीसीए के अध्यक्ष राकेश तिवारी जी भी मौजूद हैं। सबसे पहले तो वैभव आपको बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन, आपने बहुत कम समय में बहुत ऊंचा मुकाम हासिल किया है।
1: थैंक यू सो मच।
2: कैसा लग रहा है इतने सारे रिकॉर्ड्स आपने इतने ही कम उम्र में बना दिए हैं?
1: जी काफ़ी अच्छा लग रहा है, इतना सारा रिकॉर्ड मैंने बनाया और इतना बड़ा रिकॉर्ड बनाने के पीछे काफ़ी ज़्यादा हेल्प है बीसीए का, राकेश सर का, सबने काफ़ी बैक किया मेरे जर्नी में, सबका काफ़ी बड़ा योगदान है, तो सबको थैंक यू मेरे तरफ।
2: पिछले साल रणजी मुकाबले में आप काफ़ी चर्चा में आए थे जब आपने रणजी में डेब्यू किया था, उसके एक साल बाद ही आपका सिलेक्शन आईपीएल में हो गया है और आईपीएल में सिलेक्शन भी काफ़ी शानदार तरीके से हुई है। बोली लगी आपके पीछे दिल्ली डेयरडेविल्स, राजस्थान रॉयल्स के लिए 1,10,00,000 में आप बिके हैं, कैसा फील हो रहा है?
1: काफ़ी अच्छा फील हो रहा है, पहला तो आईपीएल खेलने का मौका मिलेगा और सबसे ज़्यादा खुशी इस बात का है कि राहुल सर के अंडर ट्रेनिंग का मौका, उनके अंडर खेलने का मौका मिलेगा।
2: क्या कहेंगे बिहार का नया सिक्सर किंग युवराज सिंह, ईशान किशन, कौन मतलब किसके कदम पे चल रहे हैं आप बिहार से?
1: ऐसा कुछ नहीं है किसी एक कदम पे, बस अपना मेहनत कर रहे हैं, अब आगे देखना है कि सीनियर इंडिया किस तरीके से खेले, उसी तरीके से मेहनत करना है।
2: अरे एक रिकॉर्ड है सचिन तेंदुलकर के नाम, काफी कम उम्र में 14 साल की क्रिकेट उम्र में इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने का, क्या वो रिकॉर्ड तोड़ने की इच्छा है कि जल्द से जल्द, अभी आपकी उम्र 13 साल है, जल्द से जल्द आईपीएल खेल करके और इंडिया टीम में शामिल हो, रिकॉर्ड बनाए, ऐसी कोई इच्छा है आपकी?
1: ऐसा कुछ रिकॉर्ड बनाने का माइंड में तो नहीं है, बस अपना काम है कि मेहनत करते रहना, बाकी रिजल्ट खुद पे खुद आएगा, तो उसी तरीके से अब मेहनत करना है, बाकी जब जो मिलना होगा तब मिलेगा।
2: आईपीएल को लेकर के कितना एक्साइटमेंट है इस बार, काफी बड़े बड़े प्लेयर होंगे आपके सामने, बुमराह जैसे गेंदबाज भी आपको गेंदबाजी कर सकते हैं, क्या तैयारी उसको लेकर?
1: जी उस तरीके का तैयारी चल रहा है, अब आईपीएल जब होगा तब उस तरीके पे उस मैच में देखा जाएगा कब क्या कैसे होगा, अभी तो अभी जिस टाइम पे जो चीज है उस पे ज्यादा फोकस, अभी बीसीसीआई का डोमेस्टिक मैचेस भी चल रहा है तो उस पे थोड़ा ज्यादा फोकस है।
2: रणजी ट्रॉफी को लेकर?
1: हाँ जी।
2: चलिए, कौन सा ऐसा गेंदबाज है जिसको खेलने में आपको लगेगा कि ये सबसे टफ हो सकता है मेरे लिए?
1: टफ कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, टफ कोई किसी के लिए नहीं है। अगर आप उस तरीके का तैयारी करके जा रहे हैं तो टफ क्यों रहेगा, बस अच्छा से अच्छा लेवल का तैयारी करके जाना है ताकि वहाँ कुछ प्रॉब्लम ना हो, अच्छा अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देना, यही सोच कर।
2: राष्ट्रीय स्तर पे कोई ऐसा बॉलर जिसको आप खेलना पसंद करते हो कि इस बार आईपीएल में खेलने को मौका मिलेगा?
1: नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सबको खेलना पसंद है।
2: वैभव का फेवरेट क्रिकेटर कौन है मौजूदा में?
1: अभी तो ब्रायन लारा है मेरे।
2: ब्रायन लारा है
1: जी।
2: अच्छा, मौजूदा ऐसे कोई क्रिकेटर जो खेल रहे हो उसमें फेवरेट क्रिकेटर?
1: नहीं, उसमें ऐसा कोई फेवरेट नहीं है क्योंकि मैं अभी तो खेल ही रहा हूँ अभी, तो ऐसा कुछ नहीं है अभी।
4: चलिए, न्यूज रूम लाइव में वक्त एक छोटे से ब्रेक का, देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: Looking for an app to hear all of your favorite music, news, sports, and more? We've got all of your audio all in one place, right here on TuneIn. Play your favorite stations like K Buena, ESPN Radio.
12: How they looked after game one.
13: I mean, they were frustrated.
11: The Daily.
14: I'm Sabrina Tavernisi, and this is The Daily from inside the Democratic National Convention Hall.
11: And so much more. Whatever you love listening to, you can hear it all on TuneIn.
15: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. This guitar about as hard as a cane. To top 40 hits you just can't get enough of. Thank God I get to. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: बस दो दो हजार
1: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा
2: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा।
3: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
1: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
2: One second, you're enjoying your first day off in forever. Then, mid-lunch, your phone buzzes. A window's been broken at home, and you're miles away. In one second, everything can change. That's why ADT offers security systems with 24/7 monitoring, with tech that helps first responders prioritize your emergency. And with the ADT Plus app, you can stay informed and in control of your home from virtually wherever you are. When every second counts, count on ADT. Visit ADT.com to learn more.
0: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach.
3: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
5: बस दो हजार
6: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा
7: और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1 लाख तक जीतेगा
8: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर क्रेडिट स्कोर देखो और 1 लाख तक जीतो
9: देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपये तक बढ़ जाएंगे कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं देश भर की सब्जी मंडियां फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया 5 देशों के दौरे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने साझा की जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया आज तक ब्यूरो
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो

काल में कभी भी हो सकती है पूर्व जज गिरिबाला की गिरफ्तारी। सीबीआई की 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद घर पर बुलाई गई फर्स्ट विशा की मौत के मामले में रद्द हो चुकी है अग्रिम जमानत। बैठक में सिद्धारमैया ने रखा अगले सीएम के लिए डीके शिव कुमार के नाम का प्रस्ताव। थोड़ी देर में इस्तीफा दे सकते हैं सिद्धारमैया। नाश्ते पर दोनों नेताओं का हुआ भावुक मिलन। नीट मामले में राजनाथ सिंह के घर हुई बड़ी बैठक। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सिंधिया, पीएमओ के अधिकारी और एनटीए चीफ रहे मीटिंग में मौजूद। फूल प्रूफ सिस्टम पर चर्चा। बीजेपी संगठन में फेरबदल का आरंभ। 4 राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए। हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी। पंजाब, हरियाणा और त्रिपुरा में नए प्रदेश अध्यक्ष। त्रिवेंदुराज में बदला बंगाल का रिवाज। बकरीद के सीएम ने की गाय की पूजा। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज। बकरीद को लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हाई अलर्ट।

0: नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। सबसे पहले बात करेंगे बुलेटिन में कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन की। जी हां, कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया लोक भवन पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद अपना इस्तीफा वो सौंप सकते हैं। राज्यपाल के ना होने के चलते उनके सचिव को वो अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं और इसके बाद तकरीबन 3 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। शाम 5 बजे वो दिल्ली लौट रहे हैं और लगभग 7 बजे उनकी पार्टी आलाकमान से मुलाकात का वक्त बताया जा रहा है। सिद्धारमैया की पारी खत्म होने को लेकर अब कोई सस्पेंस नहीं रह गया। उन्होंने खुद ये कह दिया है कि वो इस्तीफा दे रहे हैं। लोक भवन पहुंच गए हैं सीएम सिद्धारमैया, वहां पर राज्यपाल के सचिव को अपना इस्तीफा सौंपेंगे। कल ही उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई थी, उसके बाद तमाम कयास लगाए जा रहे थे और आज ब्रेकफास्ट मीटिंग पर ही ये साफ हो गया था कि सिद्धारमैया आज ही अपना इस्तीफा राज्यपाल को सुपुर्द कर सकते हैं। तो लोक भवन में उनकी जाने की तस्वीरें आप देख रहे हैं। सीएम सिद्धारमैया, जिन्होंने लगभग 3 साल तक सीएम के पद पर शासन किया, हालांकि ढाई ढाई साल का फॉर्मूला तय किया गया था डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया के बीच, लेकिन तकरीबन 6 महीने का एक्सटेंशन मान लीजिए, उसके बाद अब उन्होंने अपना इस्तीफा सौंपा है। अगले सीएम अब डीके शिवकुमार होंगे। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गई है तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, इस्तीफे की औपचारिकताएं पूरी कर ली गई हैं?
1: जी बिल्कुल, देखिए आप जिस तरीके से ये पूरा जो शेड्यूल है उसके मुताबिक 2:30 बजे लगभग उनको जाना था, तो वहां जाके गवर्नर्स हाउस में वो अपना इस्तीफा देंगे और उनके साथ जिस तरीके से डीके शिवकुमार भी हैं, तो इस्तीफा देंगे। उसके बाद गवर्नर को मंजूरी देनी है और एक तरीके से केयर टेकर सीएम के तौर पर वो कार्यभार संभालते रहेंगे जब तक कि नया सीएम शपथ नहीं लेता। और यहाँ पे बड़ा दिलचस्प है क्योंकि जो तस्वीरें आप देखिए, जिस तरीके से एक तरीके से कोशिश की गई है कि पूरी कांग्रेस की जो कैबिनेट है वो एक साथ नजर आए, पूरी डीके शिवकुमार पैर छूते हैं, आशीर्वाद एक तरीके से सिद्धारमैया तस्वीरों में देते हुए दिखते हैं, तो कांग्रेस पूरी तरीके से मैसेजिंग पर काम कर रही है कि एक संदेश दिया जाए कि यहाँ पे कोई पावर टसल नहीं है और एक तरीके से स्मूथ हैंडओवर ये होने वाला है।
0: और स्मूथ हैंडओवर के लिए शाम 7 बजे जब वो पहुंचेंगे दिल्ली, तो किस किस से मुलाकात होगी पार्टी आलाकमान के अलावा?
1: जी बिल्कुल, देखिए अब ये बड़ी खबर ये आ रही है कि लगभग 4:30 बजे जब वो रवाना होंगे, 7 बजे यहाँ पहुंचेंगे, तो एक बार फिर से वो मीटिंगों का दौर चलेगा। जो प्रपोजल राहुल गांधी ने सिद्धारमैया के सामने रखा था, बताया जा रहा है कि राहुल गांधी से सिद्धारमैया की 1-on-1 मुलाकात होगी और एक तरीके से जाहिर तौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे से भी सिद्धारमैया मिलेंगे, क्योंकि पार्टी की तरफ से ये मैसेज देने की कोशिश है कि हमारे बहुत ही सम्मानित और बहुत बड़े चेहरे हैं सिद्धारमैया, उनको उनकी पीठ थपथपा के राहुल गांधी ने उनको एक नया रोल अदा करने के लिए प्रपोजल रखा है, ऑफर रखा है, और ये कोई उनको इसलिए नहीं हटाया गया है कि पार्टी नाराज है या उनका काम अच्छा नहीं है। तो ये एक बड़ा संदेश पूरी मैसेजिंग में देते हुए राहुल गांधी से सिद्धारमैया जब मिलेंगे तो ये भी कहा जा रहा है कि राज्यसभा
0: की इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, आज शाम बेंगलुरु वापस लौट सकते हैं कर्नाटक के गवर्नर, जो इस वक्त वहां पर मौजूद नहीं है। कल देर शाम वो बेंगलुरु से रवाना हो गए थे, लेकिन आज शाम उनके लौटने की खबर आ रही है। आज शाम लगभग 7 से 8 बजे के बीच वो वापस लौट सकते हैं, ये खबर है। बेंगलुरु पहुंच सकते हैं गवर्नर। मौसमी, क्या गवर्नर जो कल शाम गए थे, क्या वाकई उनका जाना इतना जरूरी था? पहले इस्तीफा ले लेते सिद्धारमैया से, उसके बाद उस जगह पर पहुंचते जहां पर वो अभी हैं मौजूद?
1: देखिए नेहा, बताया जा रहा है जो गवर्नर हाउस से खबर आई थी कि कोई पर्सनल इमरजेंसी थी और ये हो सकता है कि पर्सनल इमरजेंसी के कारण गवर्नर साहब को जाना पड़ा था, लेकिन ऐसे में गवर्नर का ऑफिस काम करना बंद नहीं करता है। अगर ऐसी कोई सिचुएशन होती है जिस तरह अभी आप देख रही हैं कि गवर्नर ऑफिस में मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा दे सकते हैं और गवर्नर को गवर्नर हाउस में प्रेजेंट होने की जरूरत नहीं है, हो सकता है कि वो पहले ही उनके इस्तीफे को मंजूरी दे दे। ऐसी जरूरत नहीं है कि वो गवर्नर हाउस पहुंचेंगे तभी मंजूरी देंगे। तो एक तरीके से अगर गवर्नर जो है बतौर गवर्नर हाउस में मौजूद नहीं है, कहीं ट्रैवल भी कर रहे हैं या कहीं पे भी हो, तो वो अपना कामकाज उनका और उनका ऑफिस जो है वो लगातार चलता रहता है। और यही वजह है कि हो सकता है कि इस्तीफा मंजूरी की खबर उससे पहले ही आ जाए जब गवर्नर जो है बेंगलुरु पहुंचे।
0: शाम 7 बजे वो पहुंचने वाले हैं, लेकिन मौसमी बड़ा सवाल ये है कि अब सिद्धारमैया की जिम्मेदारी क्या होगी, क्योंकि राज्यसभा तो जाने से उन्होंने इनकार कर दिया है। संगठनात्मक तौर पर वो ज्यादा सक्रिय हो जाएंगे, संगठन को मजबूत करेंगे, क्या रोल रहने वाला है उनका?
1: जी नेहा देखिए, सबसे
0: एक बार आपको रोकेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस सबसे कुछ ही देर बाद शुरू होने वाली है। डीके शिव कुमार को आप देख सकते हैं, अभी सिद्धारमैया वहां पर मौजूद नहीं है, उनकी कुर्सी फिलहाल खाली दिखाई दे रही है, लेकिन अब से कुछ ही देर बाद सिद्धारमैया भी यहां पर प्रेजेंट रहने वाले हैं, क्योंकि वहां पर सत्ता राज बदलने वाला है, कमान सौंपी जाने वाली है डीके शिव कुमार को, क्योंकि ये अब पूरी तरह से साफ हो चुका है। जिस तरीके से सुबह तस्वीरें आई थी कि ब्रेकफास्ट मीटिंग में डीके शिव कुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, आशीर्वाद लिया, यानी कि जो 50-50 का फॉर्मूला तय हुआ था ढाई ढाई साल का, उस पर अब अमल करने की तैयारी पूर्ण हो चुकी है। यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बाकायदा औपचारिक तौर पर अब इस बात का ऐलान कर दिया जाएगा। तो कर्नाटक में सत्ता परिवर्तन, जिसमें कांग्रेस ये नहीं चाहती कि कोई भी संशय की स्थिति दिखाई दे या फिर देर की जाए, क्योंकि कल पार्टी आलाकमान की तरफ से पूर्ण तरीके से दिशा निर्देश आ गए थे कि अब सिद्धारमैया को इस्तीफा देना ही होगा। और अब से कुछ ही देर पहले की हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जब सिद्धारमैया राज्यपाल के आवास पर पहुंचे थे, वहां पर उनके सचिव को उन्होंने इस्तीफा सौंप दिया है। मौसमी मेरी सहयोगी जुड़ी हुई है, मौसमी जवाब आपका।
1: जी बिल्कुल, देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इसमें बहुत सारी चीजें जो रीड बिटवीन द लाइंस है वो किया जाएगा, और किस तरह से इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में सिद्धारमैया क्या कहते हैं ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पहली बार होगा जब सिद्धारमैया पिछले 2-3 दिन जिस तरह से गतिविधियां चली हैं उसके बाद अपनी बात को स्पष्ट करेंगे। जब वो पहुंचे थे बेंगलुरु तो उन्होंने 1-2 दिन का वक्त कहा था मैं जल्द साफ करूंगा कि मैं आगे क्या करना चाह रहा हूं, और अपने
0: ठीक है रोकेंगे आपको। सिद्धारमैया पहुंच गए, देखिए तस्वीरें आने लगी हैं इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और इसमें रीड बिटवीन द लाइन जैसे कि मौसमी बता रही हैं किया जाएगा कि आखिरकार सिद्धारमैया चाहते क्या हैं, क्योंकि ये सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सिद्धारमैया ने कहा है कि इस पद से इस्तीफा देने के एवज में कैबिनेट में उनके जो लॉयलिस्ट हैं उनको जगह दी जाए, जिसमें उनका बेटा भी शामिल हो सकता है, लेकिन अभी पूर्णतः ये तस्वीर साफ नहीं हुई है। अभी तो फिलहाल आज हैंडओवर की तैयारी है, औपचारिक तौर पर आज सिद्धारमैया इस बात का ऐलान करने वाले हैं कि वो सीएम के पद से हट चुके हैं, इस्तीफा दे चुके हैं, अब राज्यपाल की मंजूरी का इंतजार है। शाम 7:30 बजे राज्यपाल वापस लौटेंगे और ये तमाम औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएंगी। दो बड़े चेहरे कर्नाटक के अभी फिलहाल सीएम सिद्धारमैया हैं, हालांकि वो इस्तीफा सौंप चुके हैं राज्यपाल के सचिव को, कुछ देर पहले राजभवन पहुंचे थे। शाम तक ही बताया जा रहा है 7:30 बजे राज्यपाल वापस कर्नाटक लौटेंगे, लेकिन ये कंबाइंड प्रेस कॉन्फ्रेंस सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार की, दोनों एक ही साथ एक ही मंच पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आज सुबह की भी उनकी तस्वीरें सामने आई थी, जिसमें सिद्धारमैया ने ब्रेकफास्ट मीटिंग की थी और डीके शिव कुमार ने उनके पैर छूकर आशीर्वाद दिया था।
2: स्ने जोर मई किलो
3: अभी रुको भाई, वेलकम कर रहा है बस।
2: खेल है माध्यम स्नेहितर ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ.
3: ಡಿಯರ್ ಮೀಡಿಯಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಯು ಆಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೆಸ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್.
2: ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ರಾಜ್ಯಪಾಲರ ಭವನದಲ್ಲಿ
3: अभी मैं राज्यपाल लोकभवन गया था, मैंने मेरा इस्तीफा दे दिया हूं.
2: राज्यपाल जो ऊर्न लीला
3: गवर्नर अभी सिटी में नहीं है, उनके ऑफिस में हमको बताया गया कि वो आज बैंगलोर में नहीं है, इसलिए मेरा इस्तीफा खत को
2: और कचेरी और कार्यदर्शी
3: और मेरा इस्तीफा लेटर को उनके सेक्रेटरी को हैंडओवर कर दिया है.
2: ನಾನು ಮೊದಲಿಂದಲೂ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೆ, ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮಾಧ್ಯಮದವರು,
3: ಮೈ ಪೆಹಲೇ ಸೇ ಭಿ ಬೋಲ್ ರಹಾ ಹೂನ್ ಔರ್ ಬಹುತ್ ಜ್ಯಾದಾ ಬಹುತ್ ಬಾರ್ ಬೋಲ್ ಚುಕಾ ಹೂನ್.
2: ಹೈಕಮಾಂಡ್ನವರು ಯಾವಾಗ ಸೂಚಿಸ್ತಾರೆ,
3: जब भी हाई कमांड मुझे इंस्ट्रक्ट करेंगे
2: ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅದರ ಪ್ರಕಾರ
3: ತಬ್ ಮೈ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೂಂಗಾ ಕರ್ಕೆ ಕಹಾ ಹೂನ್ ಉಸ್ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ
2: ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಅವರು
3: ಕಲ್ ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ನೇ
2: ರಾಜೀನಾಮೆ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನು ನಾಳಿದ್ದು
3: ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನೇ ಕಲ್ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೇನೆಕೋ ಮುಜೆ ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಕಿಯೆ ಥೆ, ಮೈ ಉನ್ಕೋ ಬೋಲಾ ಥಾ ಪರ್ಸೋ ಮೈ ಇಸ್ತೀಫಾ ದೂಂಗಾ ಕರ್ಕೆ ವಾದಾ ಕಿಯಾ ಥಾ.
2: ರಾಜೀನಾಮೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ,
3: ಇಸ್ಲಿಯೇ ಮೈನೆ ಆಜ್ ಇಸ್ತೀಫಾ ದಿಯಾ ಹೂನ್.
2: ರಾಜ್ಯಪಾಲರು ನನ್ನ ರಾಜೀನಾಮೆ ಪತ್ರವನ್ನು ಅವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ
3: ಗವರ್ನರ್ ಜಬ್ ವಾಪಸ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಆಯೆಂಗೆ ತಬ್ ಮೇರೆ ಇಸ್ತೀಫಾ ಖತ್ ಕೋ
2: ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಇದೆ
3: ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರೆಗೆ ಕರ್ಕೆ
2: ಸಂವಿಧಾನದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಲೇ
3: ಮುಜೆ ಉಮೀದ್ ಹೈ ಕ್ಯೂಂಕಿ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಗವರ್ನರ್ ಮೇರೆ ಇಸ್ತೀಫಾ ಕೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರ್ನಾ ಹೀ ಪಡೆಗಾ.
2: ಅವರು ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅದು ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ಒಂದ್ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜ್ಯ
3: ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಗವರ್ನರ್ ಕರೆಂಗೆ ವೋ ಉನ್ಕಾ ಆಫೀಸ್ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಹೋಗಾ, ಮಗರ್ ಮೈ ಮೇರಾ ಇಸ್ತೀಫಾ ಲೆಟರ್
2: ಮುಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡ್ಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು.
3: ಮೇರಾ ಇಸ್ತೀಫಾ ಕೋ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕರ್ಕೆ ಜೋ ಅಗಲಾ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೈ ಉನ್ಕೋ ಏಕ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ದೇನಾ ಚಾಹಿಯೆ ಔರ್ ವೋ ಉನ್ಕಾ ಡ್ಯೂಟಿ ಹೈ.
2: ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷ ನೂರ ಮೂವತ್ತೈದು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು
3: ಹಮಾರಾ ಪಾರ್ಟಿ 135 ಪ್ಲಸ್ ಏಕ್ ಎಂಎಲ್ಎ ಕೋ ಎಂಎಲ್ಎ ಕೆ ಸಾಥ್ ಜೀತೆ ಹುವೆ ಹೈ
2: ಇಬ್ರು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
3: ಉಸ್ಕೆ ಸಾಥ್ ದೋ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಎಂಎಲ್ಎಸ್ ಬಿ ಹಮಾರಾ ಸರ್ಕಾರ ಕೋ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಹೈ.
2: ನಾವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬಹುಮತದಲ್ಲಿದ್ದೇವೆ.
3: ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮಾರಾ ಸರ್ಕಾರ ಪೂರೆ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಸಾಥ್ ಯಹಾಂ ಪೆ
2: ಪವರ್ ಮೇ ಹೈ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿದೆ.
3: ಇಸ್ಲಿಯೇ ಹಮಾರಾ ಅಗಲಾ ನಯಾ ಸಿಎಂ ಕೋ ಗವರ್ನರ್ ಕೋ ಫೆಸಿಲಿಟೇಟ್ ಕರ್ನಾ ಪಡೆಗಾ ಆರ್ ವೋ ಸಬ್ ಕುಚ್ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೆ ಹಿಸಾಬ್ ಸೆ ಹೈ.
2: ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೇರು ನಟ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದರು.
3: ಕರ್ನಾಟಕ ಆಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್ ಜಿ
2: ನಾನು ರಾಜಕಾರಣಿ
3: ಕಹ ರೇತೆ ಕಿ ಉನ್ಕಾ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಉನ್ಕಾ ಭಗವಾನ್ ಹೈ. ಮೈ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ ಹೂ
2: ನಾನು ಸಂವಿಧಾನನೇ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥವ್ರು.
3: ಮೈ ರಾಜಕಾರಣಿ ಹೂ ಔರ್ ಮುಜೆ ಹಮಾರಾ ಸಂವಿಧಾನ ಹಮಾರಾ ಧರ್ಮ ಹೈ.
2: ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು
3: ವೋಟರ್ಸ್ ಹಿ ಹಮಾರಾ
2: ಗಾಡ್ ನಾಡಿನ
3: ಮೈಕಲ್ ಹೇಳ್
2: ಕರ್ನಾಟಕದ 7 ಕೋಟಿ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ಸೇವೆ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಅವಕಾಶ ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು. 2 ಬಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂತ
3: ಮುಜೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ 7 ಕರೋಡ್ ಲೋಗೋಂ ಕೋ ಕಾಮ್ ಕರ್ನೆ ಕಾ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಲಾ ಹೈ ಔರ್ ದೋ ಬಾರ್ ಮಿಲಾ ಹೈ. ಔರ್ ದೋ ಬಾರ್
2: ಅವಕಾಶವನ್ನು ಒದಗಿಸಿ
3: ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷ ಕ ಲೀಡರ್ ಬನ್ನೆ ಕಾ ಭಿ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮಿಲಾ ಥಾ.
2: ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ
3: ಅವರಿಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಮುಜೆ ದಿಯಾ ಗಯಾ ಥಾ.
2: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರಿಗೆ
3: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಿ ಸೋನಿಯಾ ಗಾಂಧಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ
2: ನಮ್ಮ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದಂಥ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಅವರಿಗೆ
3: ಹಮಾರ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ
2: ಅಪಾರವಾದಂತಹ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅವರಿಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇನೆ.
3: ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೌಕೆ ಪೇ ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾಟಕ
2: 2006
3: ಮೇ ಜಬ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಜಾಯಿನ್ ಹುವಾ ಥಾ ವೋ 2006
2: ಜಾಯಿನ್ ಕಿಯಾ ಥಾ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಎಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಮುಖಂಡರುಗಳು ಶಾಸಕರು ಲೋಕಸಭಾ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರು ನನಗೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
3: 2006 ಜೋ ಬಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಹೇ ಎಂಎಲ್ಎಸ್ ಹೇ ಲೋಕಸಭಾ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಹೇ ಔರ್ ಸಪೋರ್ಟರ್ಸ್ ಹೇ ಸಬ್
2: ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ
3: ಮುಜೆ ಬಹಳ ಜ್ಯಾದಾ ಪ್ಯಾರ್ ಔರ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಕಿಯಾ ಗಯಾ ಹೈ.
2: ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ
3: ಇದ್ದೇನೆ. ಮೈ ಆಜ್ ಧನ್ಯವಾದ ಕರ್ನಾ ಚಾತಾ ಹೂ.
2: ನಾನು 2 ಸಾರಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಿರುವಾಗ 2023
3: ದೋ ಬಾರ್ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುವಾ ಥಾ.
2: ಮೊದಲನೇ ಸಾರಿ 2013
3: 2008-2013
2: ಆಮೇಲೆ 23 ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ
3: 2013-2018 और 2023 से आज तक
2: ನನ್ನ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತ ನನ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು
3: ಜೋ ಮೇರೆ ಸಾಥ್ ಮೇರೆ
2: ಎಲ್ಲ ರೀತಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಂಬಲವನ್ನ ಸಹಕಾರವನ್ನ
3: ವೋ ಪೂರೆ ಮೇರಾ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಮುಜೆ ಪೂರಾ ಸಪೋರ್ಟ್
2: ವ್ಯಕ್ತ ಮಾಡಿ ಆರ್
3: ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಆರ್ ಪ್ಯಾರ್
2: ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ
3: ಕೇಳುತ್ತೇನೆ
2: ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ
0: तो सीएम सिद्धारमैया ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है. औपचारिक घोषणा प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा यहां पर वो कर रहे थे और सभी का धन्यवाद दे रहे थे. उन्होंने कहा कि आलाकमान ने जो कहा मैंने वो किया है, उसका पूर्ण तरीके से पालन किया. अब मैं इस्तीफा सौंप चुका हूं, राज्यपाल आके आगे की संवैधानिक कार्रवाई को पूरा करेंगे. डीके शिवकुमार अगले कर्नाटक के सीएम होंगे. संविधान के हिसाब से नई सरकार का गठन किया जाएगा. ये तमाम अहम और महत्वपूर्ण बातें यहां पर सिद्धारमैया बताते हैं. ये राजभवन के इस्तीफा सौंपने के बाद की तस्वीरें आप देख रहे हैं. सिद्धारमैया आपसे कुछ देर पहले वहां पर थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से ठीक पहले वो राजभवन पहुंचे थे. वहां पर अपना इस्तीफा राज्यपाल के सचिव को सौंपा था क्योंकि राज्यपाल इस वक्त मध्यप्रदेश में है. शाम को वो वापसी करेंगे बेंगलुरु. अपने कार्यकाल के बारे में भी यहां पर सिद्धारमैया जानकारी देते हुए उन्होंने कहा कि इससे पहले भी उन्हें पूरा समर्थन प्राप्त हुआ है और एक बार फिर से जो आलाकमान ने कहा है उसी फैसले का पालन वो करने जा रहे हैं. और संविधान के मुताबिक नई सरकार का गठन होगा. अब राज्यपाल आगे की जो प्रोसीजर फॉर्मेलिटीज हैं वो करेंगे संविधान के हिसाब से. अब डीके शिवकुमार अगले सीएम होंगे क्योंकि ये ढाई ढाई साल का फॉर्मूला तय किया गया था जब कर्नाटक में बहुमत से कांग्रेस आई थी. उस समय की तस्वीरें जब लोक भवन में इस्तीफा देते वक्त सिद्धारमैया वहां पर मौजूद थे. ये सचिव के साथ उनकी तस्वीरें. वक्त एक ब्रेक का उछला, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक.
4: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद
5: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो.
6: लेट्स गो टू गेट द राइट कार यू गॉट टू ड्राइव राइकर्ट.
7: Choose from thousands of vehicles: Ford, Chevy, Buick, GMC, Kia, Hyundai, Nissan, Mitsubishi, Genesis, and Central Ohio's largest selection of certified pre-owned. Plus, only Ryker gives you our 72-hour exchange policy and the original $1,000 best value guarantee.
6: Drive Ryker, drive. We're dealing.
8: Visit Ryker.com for complete details on exchange and price guarantee.
9: Turn it up with today's hits on TuneIn. We're bringing you the songs everyone's talking about, all in one place. Hear the biggest tracks right now from today's top artists. Day or night, today's hits keeps the energy going. Start listening now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
10: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं.
12: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा. रुंगटा स्टील टीएमटी से बना.
13: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं. रुंगटा स्टील टीएमटी बार एकदम सॉलिड.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: बस दो हजार
3: इधर स्कोर करेगा तो इतना इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो एक लाख तक जीतेगा।
4: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियम, क्रेडिट स्कोर देखो और एक लाख तक जीतो।
5: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
6: जीके मैक्स।
7: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
6: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
8: जेके वॉल मैक्स।
9: बेस्ट पेंट
10: जेके मैक्स।
11: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
12: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: In association with
2: Samakul Cooler, hawa aisi chode, puri family ko thandak se jode. Samakul Cooler, life banaye wonderful.
1: Hint, bade aaram se.
3: Punjab National Bank, bharose ka prateek.
2: Cool, stylish fans, enhance home decor with beautiful fans. Sharda University, the world comes together at Sharda University. Where are you?
1: Vimal, bolo zuba kesri.
4: हम सिखाएंगे आपको मास कम्युनिकेशन के एक्सपर्ट बनने का हुनर. ज्वाइन कीजिए इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट.
5: रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560006546 पर कॉल करें.

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
4: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. Country roads.
5: Thank God I get to wake
4: and everything else. Hear it all here, commercial free on TuneIn.
0: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
3: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.

में सीएम पद से दिया इस्तीफा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले आलाकमान के आदेश का किया पालन, डीके शिव कुमार होंगे अगले मुख्यमंत्री। नीट मामले में राजनाथ सिंह के घर हुई बड़ी बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान सिंधिया, पीएमओ के अधिकारी और एनटीए चीफ रहे मीटिंग में मौजूद, फूल प्रूफ सिस्टम पर चर्चा। बीजेपी संगठन में फेरबदल का आरंभ, चार राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष बदले गए, हर्ष मल्होत्रा को दिल्ली की जिम्मेदारी, पंजाब हरियाणा और त्रिपुरा में भी नए प्रदेश अध्यक्ष। शुभेंदु राज बदला बंगाल का रिवाज, बकरीद के सीएम ने की गाय की पूजा, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज, बकरीद को लेकर यूपी से लेकर महाराष्ट्र तक हाई अलर्ट। भोपाल में कभी भी हो सकती है पूर्व जज गिरीबाला की गिरफ्तारी, सीबीआई की 3 घंटे से ज्यादा पूछताछ के बाद घर पर बुलाई गई फौज, पेशा की मौत के मामले में रद्द हो चुकी है अग्रिम जमानत।

नमस्कार, हमारी इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। त्रिशा की मौत के 16 दिन, सीबीआई की जांच के 3 दिन और अब कसता शिकंजा। इस मामले में केंद्रीय जांच एजेंसियों का 3 दिन से लगातार पड़ताल जारी है। गिरिबाला और समर्थ से क्राइम सीन पर पूछताछ भी की गई है। हाईटेक उपकरणों

क्राइम सीन पर पूछताछ भी की गई है। हाईटेक उपकरणों से जांच जारी है और अब कभी भी गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी हो सकती है। तो आज तीसरा दिन है जब गिरिबाला से सीबीआई की टीम पूछताछ कर रही है। सुबह 10:30 बजे से भोपाल के कटारा हिल्स में सीबीआई अधिकारी गिरिबाला के घर पर मौजूद हैं। वहीं पर यह पूछताछ हो रही है। अब तक गिरिबाला की गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन कई एडिशनल सीबीआई के अफसर वहां पर पहुंचे और माना जा रहा है किसी भी वक्त ये गिरफ्तारी हो सकती है हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत रद्द होने के बाद। सूत्र के हवाले से खबर है कि घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करने के साथ गिरिबाला सिंह से कई सवाल पूछे गए। तीन अधिकारी तकरीबन 10:30 बजे सुबह पहुंचे थे, तब से ही सवाल जवाब हो रहे हैं। गिरिबाला सिंह के वकील इनोस्ट जॉर्ज कार्लो भी मौके पर मौजूद हैं।

0: वहीं त्रिशा की मौत मामले में समर्थ की मां गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार है। केस की जांच में जुटी सीबीआई कभी भी गिरिबाला की गिरफ्तारी कर सकती है। बीती रात से हाईकोर्ट ने उनकी जमानत रद्द कर दी थी। अब सीबीआई की कोशिश है कि तमाम अनसुलझे सवाल पर गिरिबाला का बयान लिया जाए ताकि सच्चाई सामने आ सके।
1: तो क्या गिरफ्तार होंगे गिरिबाला सिंह? अग्रिम जमानत रद्द, अब बड़ी मुश्किल। त्रिशा की सास से सीबीआई करेगी सवाल जवाब। 12 मई की रात क्या हुआ बताएंगी पूर्व जज। त्रिशा की मौत के मामले में जिन सवालों को अब तक जवाब नहीं मिला उन सवालों की लिस्ट के साथ सीबीआई ने कदम बढ़ा दिए। जांच एजेंसी के सामने इस मामले में दो किरदार हैं। एक है त्रिशा का पति समर्थ सिंह जो गिरफ्तार है, दूसरी है त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह। गिरिबाला को भोपाल की निचली अदालत से अग्रिम जमानत मिली हुई थी लेकिन अब वो अग्रिम जमानत खारिज हो चुकी है, या यूं कहें कि गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया। माना जा रहा है कि सीबीआई अब कभी भी गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार कर सकती है।
2: कोर्ट के जजमेंट के बाद सीबीआई की टीम है जो गिरिबाला सिंह के घर इस वक्त पहुंची है। हम आपको तस्वीर दिखा देते हैं। ये सीबीआई की टीम है जो एक दिन पहले भी यहां पहुंची थी। हालांकि इसमें अगर आप देखें तो दो सीबीआई के अधिकारी आपको यहां दिख जाएंगे जो अंदर जा रहे हैं। इनमें एक महिला अफसर भी आपको सीबीआई की दिख जाएंगी जो अंदर जा रही हैं, और इससे आपको अंदाजा लग जाएगा कि बताया जा रहा है कि हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया है उसके बाद सीबीआई जो है त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह को पहले नोटिस देने आई है। सीबीआई पहले नोटिस देगी गिरिबाला सिंह को और माना जा रहा है कि उसके बाद गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी भी हो सकती है। जिस तरीके से हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से मिली हुई अग्रिम जमानत याचिका को खारिज किया है।
1: 12 मई को त्रिशा ने सुसाइड किया था, गिरिबाला की बहू की मौत हुई थी तो बेटा समर्थ सिंह फरार हो गया। 10 दिनों तक वो लुका छुपी खेलता रहा और अपने बेटे की गिरफ्तारी से पहले गिरिबाला समर्थ की ढाल बनकर डटी रही। वो अपने बयान देती रही, बेटे का बचाव करती रही। एक अहम बात यह भी है कि 12 मई की रात जिस वक्त त्रिशा फंदे पर लटकी मिली उस वक्त घर में 3 लोग मौजूद थे, उनमें गिरिबाला सिंह, समर्थ और नौकर भी घर में था। ऐसे में सीबीआई की तफ्तीश के केंद्र में अब गिरिबाला सिंह है क्योंकि पूर्व जज ने अपने बचाव में दलील देते हुए त्रिशा पर कई गंभीर सवाल उठाए।
2: त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह ने त्रिशा पर ही कई गंभीर सवाल खड़े किए थे। गिरिबाला सिंह ने कहा था कि त्रिशा एक ड्रग एडिक्ट थी और ड्रग्स ना लेने पर उसका व्यवहार बदल जाता था, उसके हाथ कांपने लग जाते थे। लेकिन हाईकोर्ट में सुनवाई के समय ये तमाम दलीलें किसी काम नहीं आई और हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की तरफ से दी गई अग्रिम जमानत याचिका को रद्द कर दिया।
1: त्रिशा की मौत के तीसरे दिन जब उसकी लाश अस्पताल के मोर्चरी में रखी थी तभी भोपाल की एक निचली अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी, उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। हालांकि तब मामले की जांच में जुटी भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए 3-3 नोटिस भेजे थे। हाईकोर्ट में सुनवाई के दौरान ये बात सामने आई कि भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह को पहला नोटिस 20 मई को भेजा था, दूसरा नोटिस 21 मई को भेजा और तीसरा नोटिस 23 मई को। लेकिन गिरिबाला ने पुलिस के नोटिस को तवज्जो ही नहीं दी, वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। आखिरकार भोपाल पुलिस ने उनकी अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी। उसी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद कड़ा रुख अपनाया और अग्रिम

0: अग्रिम जमानत रद्द कर दी।
1: त्रिशा की मौत मामले में सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है। इस बीच बड़ी खबर यह है कि बुधवार देर रात जबलपुर हाईकोर्ट ने त्रिशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया और इसके साथ ही अब गिरिबाला सिंह पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। दरअसल हाईकोर्ट ने कल फैसला सुनाते हुए इस पूरे मामले में साफ तौर पर कहा कि मामले की गंभीरता और जो सबूत उपलब्ध है उसे देखते हुए फिलहाल जमानत नहीं दी जा सकती। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल खड़े किए और कहा कि ट्रायल कोर्ट ने केस डायरी और मौजूद साक्ष्यों पर गंभीरता से विचार नहीं किया।
0: लेकिन अब बचना मुश्किल है क्योंकि जांच सीबीआई के हाथ में है और शिकंजा कसना शुरू हो गया है। सीबीआई चाहेगी कि गिरिबाला का बयान जल्द से जल्द दर्ज किया जाए, उसके लिए कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: रवीश पाल सिंह मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ सीधे भोपाल से। रवीश, लगभग दो घंटे पहले आपकी और मेरी बातचीत हो रही थी, तब सीबीआई की टीम गिरफ्तारी के लिए पहुंची थी, अब तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, क्या वजह है इस विलंब की?
1: देखिए विलंब नहीं, अभी गिरिबाला सिंह से पूछताछ चल रही है अंदर दरअसल, और उसके बाद ही इनको यहां से गिरफ्तार करके ले जाया जाएगा। सीबीआई के जो अफसर आए हैं, वरिष्ठ अफसर आए हैं, वो भी अंदर पूछताछ कर रहे हैं। अंदर नौकर जो मौजूद हैं और वो लोग जिन्होंने त्रिशा को यहां से ले जाते हुए देखा था, गिरिबाला सिंह और समर सिंह को, उनको भी अंदर बुलाया गया है। पुलिस दरअसल सिर्फ गिरिबाला सिंह से पूछताछ नहीं कर रही है, पुलिस उन तमाम लोगों से पूछताछ कर रही है जो उस रात को यहां मौजूद थे या जिन्होंने यहां से गिरिबाला सिंह को जाते हुए देखा था जब वो एम्स की तरफ त्रिशा को लेकर के जा रहे थे। तो सबसे पूछताछ हो रही है। जो पड़ोसी हैं, रिश्तेदार हैं गिरिबाला सिंह के, जो उस दिन यहाँ पे मौजूद थे समर सिंह के साथ जब त्रिशा को नीचे उतारा जा रहा था सीढ़ियों से, उनसे पूछताछ हुई है। जो घरेलू नौकर अंदर मौजूद है उससे पूछताछ हुई है, ड्राइवर जो है उनसे पूछताछ हुई है, गिरिबाला सिंह से पूछताछ लगातार जारी है, कई सारे सवाल उनसे पूछे जा रहे हैं और इसीलिए इसमें थोड़ा समय लग रहा है क्योंकि अकेले गिरिबाला सिंह से नहीं, अलग अलग किरदारों से पूछताछ हो रही है। और आप यकीन मानिए कि अभी एक घंटा और कम से कम इसमें लग जाएगा, उसके बाद ही सीबीआई गिरिबाला सिंह को यहां से लेकर के रवाना होगी। लेकिन इतना तय है कि आज की तारीख में सीबीआई अपने साथ गिरिबाला सिंह को लेकर के इस घर से चली जाएगी क्योंकि जो तैयारियां हैं वो इसी ओर इशारा कर रही है। सामने जो दरवाजा है, गाड़ी अंदर जा चुकी है जैसे कि हमने आपको पहले भी अभी दो घंटे पहले बताया था, और अब अगर देखा जाए तो पांच घंटे हो चुके हैं गिरिबाला सिंह और उन तमाम किरदारों से पूछताछ के, जब यहां पे 12 मई को जो लोग मौजूद थे या जिन्होंने यहां से गिरिबाला सिंह को, समर सिंह को, त्रिशा को ले जाते हुए देखा था, इसलिए ये पूछताछ थोड़ी लंबी चल रही है और अगले एक और घंटे तक ये पूछताछ जारी रहने की संभावना सीबीआई की जो
2: उन्होंने जताई है। सीबीआई की जांच लगातार चल रही है और तीन दिन में सीबीआई ने क्राइम सीन पर जांच की है। गिरिबाला से पहले ही दिन पूछताछ हुई थी लेकिन अब तक सवालों की गुत्थी सुलझी नहीं है। वहीं दूसरी ओर जांच एजेंसी त्रिशा के पति समर सिंह को अपनी कस्टडी में ले चुकी है।
3: भोपाला के कटारा हिल्स इलाके में स्थित ये मकान तब सुर्खियों में आया जब पूर्व मॉडल और अपने सपनों की ऊंची उड़ान भरने वाली त्रिशा ने अपनी जिंदगी को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दिया। इस मौत के दो आरोपी हैं, समर्थ सिंह और उनकी मां गिरिबाला सिंह। 22 मई को समर्थ 10 दिन फरार रहने के बाद गिरफ्तार किया जाता है लेकिन पूर्व जज गिरिबाला सिंह बची रहती हैं। त्रिशा का परिवार आरोप लगाता है कि वो इस मामले को दबाने के लिए अपने रसूख का इस्तेमाल कर रही है। पीड़ित परिवार गिरिबाला के फोन कॉल्स का हवाला देता है जो उन्होंने त्रिशा की मौत के बाद किए थे, लेकिन जिम्मेदारी मिलते ही सीबीआई ने जांच का जिम्मा संभाला और 25 मई को जांच अधिकारी भोपाल पहुंच गए। तब तक मामले की जांच कर रही भोपाल पुलिस की एसआईटी से केस को हैंडओवर लिया और फिर अगली ही सुबह यानी 26 मई को सीबीआई टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंच गई। छब्बीस मई को सीबीआई जांच का पहला दिन था, तब तक गिरिबाला सिंह निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत के सुरक्षा घेरे में थी। सीबीआई की टीम ने पहले दिन गिरिबाला से सवाल जवाब तो किए लेकिन आधे घंटे में ही टीम वहां से निकल गई और फिर त्रिशा के परिजनों से भी मिली। दूसरे दिन यानी 27 मई को भी समर्थ के घर पर सीबीआई की पड़ताल चली, साथ ही कल तक भोपाल पुलिस की कस्टडी में रहे समर्थ को भी सीबीआई ने अपनी हिरासत में ले लिया। अब समर्थ और गिरीबाला से सवाल जवाब का इंतजार है। माना जा रहा है कि सीबीआई गिरीबाला और समर्थ से कई सवालों के जवाब मांगेगी। जांच एजेंसी जानना चाहेगी कि 12 मई शाम को क्या हुआ था, क्या द्विशा से किसी बात को लेकर अनबन हुई थी, द्विशा को चोट कैसे आई थी, क्या द्विशा का मानसिक रूप से टॉर्चर किया गया जैसा कि द्विशा ने अपने व्हाट्सएप चैट में बताया था, द्विशा के चरित्र पर सवाल क्यों उठाए गए, उसे अबॉर्शन के लिए क्यों मजबूर किया गया। गिरीबाला सिंह से जांच एजेंसी ये भी जानना चाहेगी कि उन्होंने 12 और 13 मई को किस किस को कॉल किया था और क्यों। इन्हीं सवालों के साथ सीबीआई ने कल मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के सामने बताया कि गिरीबाला सिंह को हिरासत में लेकर पूछताछ की जरूरत है।
1: की मौत मामले में सीबीआई जांच का आज तीसरा दिन है और सीबीआई गिरीबाला सिंह से उस घर में पूछताछ कर रही है जहां 12 मई को त्विशा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हुई थी। सीबीआई के पास समर्थ और गिरीबाला सिंह से पूछे जाने वाले सवालों की एक लंबी सूची तैयार है, जिसमें सबसे अहम सवाल है कि 12 मई को क्या त्विशा और समर्थ के बीच कोई अनबन हुई थी या नहीं।
3: बुधवार की शाम सीबीआई ने समर्थ सिंह को भी कस्टडी में ले लिया, वो दो दिनों की हिरासत में है। अब समर्थ और गिरीबाला की पूछताछ हुई तो कई बातें और साफ होंगी, कई सवालों के जवाब मिलेंगे। सीबीआई दोनों के डिजिटल सुरागों और संदिग्ध फोन कॉल्स की जांच पर भी गहन पूछताछ की तैयारी में है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: गिरीबाला सिंह और समर्थ की पूछताछ अहम है, साथ ही बेहद जरूरी है क्राइम सीन को रिक्रिएट करना, जिम्मेदारियों को संभाल रही सीबीआई ने बीते दो दिन से लगातार क्राइम सीन की पड़ताल की और 12 मई के हालात को समझने की कोशिश की है।
4: तारीख 27 मई, कटारा हिल्स भोपाल। आज तक के कैमरे में कैद इन तस्वीरों को देख लीजिए, ये ठीक वही जगह है जहां 12 मई की रात त्विशा का शव मिला। सवालों की गुत्थी सुलझाने के लिए सीबीआई के तेज तर्रार अधिकारी ठीक उस जगह पहुंचे जहां अहम सुराग मिल सकते हैं। त्विशा केस की जल्द से जल्द जांच शुरू करने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बगैर समय गवाए क्राइम सीन की पड़ताल होती है। सीबीआई की टीम पहले दो दिनों में त्विशा के ससुराल के दो चक्कर काट चुकी है। ये तस्वीरें 27 मई की हैं, जब सीबीआई की टीम ने क्राइम सीन पर पहुंचकर वारदात को रिक्रिएट किया। इस छत और यहां रखे सामान को देखकर साफ पता चलता है कि इस जगह को एक जिम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तस्वीर में आपको जमीन पर त्विशा की चप्पल भी पड़ी दिखाई देगी, लेकिन इस तस्वीर की सबसे खास बात यह कि इसमें वो फंदा भी नजर आ रहा है, जिसके बारे में कहा जा रहा है कि इसी फंदे से त्विशा ने खुदकुशी की थी। छत के नीचे रबर के दो टायर आपको लटके हुए नजर आएंगे, इन दोनों ही टायर के साथ दो रस्सियां भी लटकी हुई हैं।
1: हम आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाएंगे आज तक पर उस जगह की जहां पर त्विशा ने फांसी लगाई थी, जहां पर सीबीआई की टीम, आप देखिए सामने सीबीआई की टीम रिक्रिएशन कर रही है, और सामने अगर आप देखें तो सीबीआई के अधिकारी हैं जो लगातार इस जगह को रिक्रिएट कर रहे हैं, सीन रिक्रिएट कर रहे हैं। और ये जो दो अधिकारी आपको दिख रहे हैं, यही वो जगह है, ठीक है इसी जगह पे वो जिमनास्ट का बेल्ट था टंगा हुआ, जहां पर बताया जा रहा है कि त्विशा ने फांसी लगाई थी। और आप देखिए वो लगातार उस जगह की फोटो उतार रहे हैं, मैपिंग हो रही है और हर एक उपलब्ध जो सबूत है उसकी जाँच यहाँ पर सीबीआई की टीम कर रही है।
4: कटारा हिल्स में समर्थ के घर के बाहर भी जांच अधिकारियों ने मोर्चा संभाला है। सीबीआई के अफसरों ने खास फोटोग्राफी कराई, सीबीआई के फोटोग्राफर ने पूरे घर की तस्वीरें ली और वीडियोग्राफी की, घर के अंदर से बाहर तक की फोटोग्राफी की गई। सीबीआई ने समर्थ को साथ लेकर क्राइम सीन का दौरा भी किया, घर पर स्पॉट वेरिफिकेशन करवाया, उसके साथ हाईटेक मशीनों से जांच की। जांच अधिकारियों ने गिरीबाला के घर की 3D मैपिंग की। इस हाई स्पीड 3D लेजर स्कैनर मशीन से घर और उसके आसपास का डिजिटल नक्शा भी तैयार कराया जा रहा है।
1: नई तकनीक के जरिए सीबीआई समर्थ के घर पर जांच कर रही है और एक मशीन लेकर के सीबीआई पहुंची है। ये आप देखिए, ये एक 3D डिवाइस है जिसको लेकर के पहुंची है सीबीआई, और 360 डिग्री व्यू जो है वो इसके जरिए समर्थ के घर का तैयार किया जा रहा है। यानी एक तरीके से 3D नक्शा जो 360 डिग्री एंगल से बना हो इस मशीन के जरिए यहां पे तैयार किया जा रहा है, जो सीबीआई ने यहां लाकर के गेट के ठीक सामने रखी है फिलहाल। और उसे एक तरीके से जो पूरा 3D नक्शा है समर्थ के घर का बाहर से और अंदर हर तरफ से देखा जा रहा है। ये एक तरीके से जो मशीन आप देख रहे हैं ये एक हाई स्पीड अल्ट्रा पोर्टेबल टेरिस्ट्रियल 3D लेजर स्कैनर है, जिसके जरिए जो सीबीआई है वो एक सर्वे कर रही है और डिजिटल एक नक्शा तैयार किया जा रहा है समर्थ के घर का, जहां पर 12 मई की रात जो त्विशा है उसने कथित रूप से फांसी लगाई थी।
4: सीबीआई की टीम ने समर्थ और गिरिवाला की मौजूदगी में 27 मई को करीब 3 घंटे तक क्राइम सीन और घर की पड़ताल की। वहीं सीएफएसएल की टीम ने मौके से फॉरेंसिक सबूत इकट्ठा किए हैं, उन सुरागों की जांच में अहम जानकारी हासिल हो सकती है। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, गृहमंत्री अमित शाह अहमदाबाद से बंगाल में घुसपैठियों के लिए ममता बनर्जी को जिम्मेदार बता चुके हैं। अमित शाह ने कहा है कि ममता राज में हर रोज घुसपैठ होती थी, लेकिन अब घुसपैठ करने वाले वापस जाने के लिए तैयार हैं। शाह ने यह भी कहा कि अगर घुसपैठी अपने आप चले जाते हैं तो सरकार उन पर कोई केस नहीं करेगी, साथ ही जाने में उनकी सहायता भी करेगी।
5: पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे।
2: वक्त एक ब्रेक का हौसला, बने रही हमारे साथ, टिके रही एक्शन।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
7: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
8: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
9: TuneIn's How To. A brief look at all the special functions and things you might not know we have.
10: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
11: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.

0: कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद सौ लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है तो डिटेल देखते हैं।
1: पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहें ईवीएम खराब है, उसके बाद कहें एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, अब तो कोई ना कोई बहाना और ढूंढेंगे।
2: अब क्या ढूंढ सकते हैं
1: भाई, अब विरोधीन के ढूंढे के जमाना, बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।

या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

अब होंगे कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री। नीट मामले में राजनाथ सिंह के घर हुई बड़ी बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, सिंधिया पीएमओ के अधिकारी और एनटीए चीफ मीटिंग में मौजूद, फूल प्रूफ सिस्टम पर चर्चा।

बंगाल का रिवाज, बकरीद के दिन सीएम ने की गाय की पूजा, ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज, बकरीद को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर महाराष्ट्र तक हाई अलर्ट।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सो
2: ईरान ने लिया अमेरिकी हमले का बदला, कुवैत के अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइल, अमेरिकी तेल टैंकरों पर ईरान की गोलीबारी, हमला करने आ रहे ईरानी ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया, हॉर्मुज पर कब्जे के ईरान ओमान के प्लान पर भड़के ट्रंप, ट्रंप की धमकी सुधर जाए ओमान वरना उड़ा देंगे, कैबिनेट की मीटिंग में अरब देशों को भी ट्रंप का अल्टीमेटम, अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल नहीं हुए तो बुरा होगा अंजाम, बुरे फंसे ट्रंप, आक्रामक हुआ ईरान।
3: नमस्कार, मैं हूं गौरव सावंत, आप देख रहे हैं रणभूमि। बारूद की ढेर पर इस समय मध्य पूर्व खड़ा है और एक समय ऐसा लग रहा है जैसे एक बार वो फिर बड़े तरीके से धधक उठेगा। बीती रात जब वॉशिंगटन डीसी में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अपनी कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हो गया है जो रुक रुक कर फिर शुरू हो जाता है। अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकानों पर पलटवार से दिया। 3 जोरदार धमाकों से दक्षिणी ईरान के बंदर अब्बास न केवल बंदरगाह बल्कि बंदरगाह के आसपास के इलाकों को हिलाकर रख दिया है। इसी हमले के कुछ घंटों बाद जैसे ही सूरज निकला तो ईरान के खुजेस्तान से मिसाइलें दागी गई। ईरान की मिसाइलों के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। आप ये सोचिए कि ईरान सीधे तौर पर अमेरिका के एयरबेस को एक बार फिर टारगेट कर रहा है और कुवैत में। ईरान की मिसाइलों को अमेरिका की जो पेट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसने रोक तो लिया, लेकिन ईरान ने एक बार फिर आगाह कर दिया है न केवल अमेरिका को बल्कि पूरे मध्य पूर्व में जितने अमेरिका के बेसिस है कि अगर अमेरिका ने फिर ईरान पर हमला किया तो इसका जवाब ईरान की तरफ से भी निर्णायक होगा, सांकेतिक नहीं होगा। दूसरी तरफ अब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बौखला गए हैं। उन्होंने ईरान के बाद ओमान को भी उड़ा देने की धमकी दी है कि अगर ओमान और ईरान मिलकर हॉर्मुज पर अपने नियंत्रण का दावा ठोकते हैं तो फिर दोनों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सबसे बड़ी खबर इस समय अमेरिका और ईरान के बीच जो नई झड़प है उसको लेकर आ रही है। इस झड़प से अमेरिका और ईरान के बीच जो सीज फायर है उसके पूरी तरह से नष्ट हो जाएगा, टूट जाने का खतरा बढ़ गया है। अमेरिका ने 3 दिनों में दूसरी बार ईरान पर सैन्य हमला किया है। सबसे पहले अमेरिका ने ईरान के 4 ड्रोन मार गिराए जिन्हें ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट की तरफ फायर किया था। अमेरिकी सेना के मुताबिक इस खतरे से निपटने के लिए उसे ईरान पर पलटवार करना पड़ा। ईरान 5वां ड्रोन फायर करने ही वाला था कि अमेरिका ने बंदर अब्बास के उस सैन्य ठिकाने पर हमला किया जहां ईरान ग्राउंड कंट्रोल ड्रोन को कर रहा था और उस ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमले किए। अमेरिकी हमले के बाद बंदर अब्बास में 3 बड़े धमाके सुनाई दिए गए। इससे पहले सोमवार को भी अमेरिका ने ईरान की मिसाइल लॉन्च साइट को और हॉर्मुज में माइंस बिछाने, समुद्री बारूदी सुरंग बिछाने जा रही ईरान की IRGC की छोटी नौकाओं पर हमला किया था। हम आपको बता दें कि बंदर अब्बास फारस की खाड़ी में ईरान का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा बंदरगाह है।
4: जारी बातचीत के बीच अमेरिकी सेना ने फिर से ईरान के सैन्य ठिकाने को टारगेट किया है। इस बार फिर अमेरिकी हमला हॉर्मुज में हुआ है। अमेरिका का दावा है कि ईरान का सैन्य ठिकाना हॉर्मुज जलडमरू मध्य में अमेरिकी सेना और कमर्शियल मैरीटाइम ट्रैफिक के लिए खतरा था। अधिकारियों से मिली जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने ईरान के कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया और उन्हें मार गिराया। ईरान की फार्स न्यूज एजेंसी के मुताबिक बंदर अब्बास के पूर्वी हिस्से में 3 धमाके हुए। इसके बाद ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को काफी देर तक एक्टिवेट कर दिया। तीन दिनों में ये दूसरी बार है जब अमेरिकी सेना ने ईरान पर हमला बोला है। हॉर्मुज इलाके में हलचल तेज है। अभी एक दिन पहले ही ट्रंप ने कहा कि हॉर्मुज पर किसी का नियंत्रण नहीं होगा।
5: Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
4: Mr. President, 25 मई को भी अमेरिका ने सेल्फ डिफेंस का हवाला देते हुए दक्षिण ईरान पर मिसाइल दागी थी। तब ईरान ने कहा था कि वो जवाबी कार्रवाई करेगा और आत्मरक्षा में जरा भी संकोच नहीं करेगा। फिर बढ़ती तनातनी के बीच तेल की कीमतों में आज फिर उछाल आया है। आज तक ब्यूरो।
3: और इस बीच एक बड़ी खबर इस समय ईरान की से आ रही है। ईरान की मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। उनका कहना है कि पहली गोलीबारी और गोलाबारी जो हुई वो ईरान की तरफ से हुई है। ईरान की न्यूज एजेंसी तस्नीम मीडिया ने, और जिसे एक बहुत ही भरोसेमंद सैन्य सूत्र माना भी जाता है क्योंकि वो IRGC के कंट्रोल में माना जाता है, तो इस न्यूज एजेंसी ने सैन्य सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि ईरान का जो रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर की नेवी है, उसकी जो नौसेना है, उसने एक अमेरिकी टैंकर पर गोलीबारी की है जिससे अपना रेडार सिस्टम बंद करके हॉर्मुज से गुजरने की उसने कोशिश की थी। तस्नीम ने यह भी बताया कि उसके जवाब में ही अमेरिका ने बंदर अब्बास के आसपास और एक और इलाके में पलटवार किया। तस्नीम ने टेलीग्राम मैसेजिंग प्लेटफॉर्म पर आगे कहा कि धमाकों की आवाज इसी घटना से जुड़ी थी और इससे ईरान में जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन एक ये बड़ा दावा है कि पहले गोलीबारी ईरान की तरफ से हुई। यही है वो ईरान की छोटी नौकाएं जो एक बहुत बड़ा खतरा अमेरिका के जंगी जहाजों के लिए है, और ऐसी ही एक नौका से जबरदस्त फायरिंग ईरान अमेरिका के एक टैंकर पर हुई, जो टैंकर अपना रेडार सिस्टम बंद करके, जो उसमें सिस्टम लगा होता है जिससे पहचान की जा सकती है किस देश का है, कहां से आ रहा है, कहां जा रहा है, वो रेडार सिस्टम बंद करके जब वो जहाज जाने की कोशिश कर रहा था तो इस नौका से उस पर फायरिंग कर दी गई। और ये दिखाता है कि ईरान पहली बात ना डरा है, ना झुका है, और ना ही उसकी तरफ से आक्रामक कार्रवाई बंद हुई है या कम हुई है। तो इस समय अगर जमीनी स्थिति को देखा जाए तो मध्य पूर्व एक बार फिर एक नए महायुद्ध की कगार पर आकर खड़ा हो गया है। बड़ी खबर इस समय कुवैत से आ रही है। कुवैत की सेना का दावा है कि हवाई सुरक्षा प्रणाली जो मिसाइल और ड्रोन हमलों का लगातार मुकाबला कर रही है। कुवैत की राष्ट्रीय समाचार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पूरे देश में अब चेतावनी के सायरन यानी एयर अटैक सायरन सुनाई दे रहे हैं, और कुवैत की सेना ने दावा किया है कि ये जो हवाई सुरक्षा प्रणाली है ये दुश्मनों की जो मिसाइलें और ड्रोन के हमलों का की बौछार एक बार शुरू हुई तो उसका मुकाबला कर रही है। कुवैत की सेना के जनरल स्टाफ का कहना है कि धमाकों की जो आवाजें इस समय सुनाई दे रही हैं, वो जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो ईरान की तरफ से फायर की जाने वाली मिसाइलों के हमले को रोकने से जुड़ी धमाकों की आवाज है। ये इनकमिंग मिसाइल यानी जो मिसाइल कुवैत की ओर दागी गई हैं, उनको ध्वस्त करने की कोशिश कर रहा है, और ये दिखाता है कि मध्य पूर्व एक बार फिर हमलों की आवाज और इन धमाकों की आवाज से दहल रहा है। इन हमलों के पीछे सीधे तौर पर ईरान है। ईरान की इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने कहा है कि उसने बंदरबस एयरपोर्ट पर हुए हमले का जवाब देने के लिए अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस के बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन लॉन्च साइट्स पर हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजेस्तान के आसमान में भी सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी गई और कहा यह जा रहा है कि इसी मिसाइल को एयरबेस पर तैनात एक पेट्रियट बैटरी ने ध्वस्त कर दिया। IRGC ने अब धमकी दी है कि अगर ईरान पर फिर हमला हुआ तो जो ईरान का पलटवार होगा वो और जबरदस्त और निर्णायक होगा। तो IRGC ने कुवैत पर हुए जवाबी हमले की जिम्मेदारी ले ली है, लेकिन उसने कुवैत का नाम खुलकर नहीं लिया। उसने कहा कि आधी रात के बाद अमेरिकी हमले का जो उसने जवाब दिया है, अमेरिकी हमले का जवाब उसने आज सवेरे 4:50 पर दिया। और अब हम आपको दिखाते हैं कि आखिर ये पूरा क्षेत्र फैला किस तरफ है। ये अब आप इस पूरे ये फारस की खाड़ी है जिसको आप भलीभांति समझ चुके हैं, फारस की खाड़ी, ओमान की खाड़ी, और ये अरब सागर का इलाका आ जाता है। और इसी पर बंदर अब्बास पोर्ट एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है, और एक बहुत महत्वपूर्ण बंदरगाह होने के साथ साथ ये एक पोर्ट भी है, एयरपोर्ट भी है, और यहां पर इसी आइलैंड पर मिसाइल लॉन्च साइट्स भी है, अंडरग्राउंड मिसाइल लॉन्च साइट। तो अमेरिका ने यहां पर एक ड्रोन लॉन्च साइट को और मिसाइल लॉन्च साइट को निशाना बनाया। उसके जवाब में अब अगर आप फारस की खाड़ी के दूसरे छोर पर पहुंचे तो फारस की खाड़ी के दूसरे छोर पर ये छोटा सा देश कुवैत है, और कुवैत के अल सलेम एयरबेस पर ईरान ने पलटवार किया, मिसाइलें दागी, लेकिन मिसाइलों को हवा में ही पेट्रियट सिस्टम ने ध्वस्त कर दिया। लेकिन अब आप सोचिए कि फारस की खाड़ी के दोनों ओर एक अटैक हुआ है, और दूसरा जो पलटवार अमेरिका जो कहा जा रहा है हुआ, यहां ये जो खुजस्तान का इलाका है यहां से ईरान ने मिसाइल दागी तो उसको पेट्रियट सिस्टम ने हवा में ही ध्वस्त कर दिया। तो बंदर अब्बास में पहले जो अमेरिका का टैंकर उस क्षेत्र से गुजर रहा था उस पर एक नौका ने फायरिंग की, और उसी के बाद एक बार फिर ये पूरा तनाव शुरू हो गया। अब सबसे बड़ा प्रश्न यहां पर यह आता है कि आखिर युद्ध विराम क्या समाप्त हो चुका है? क्या यह लड़ाई अभी और आगे बढ़ेगी? अमेरिका और ईरान के बीच ये जो गोलीबारी है ये तब हुई जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में अपनी कैबिनेट के साथ एक बेहद महत्वपूर्ण बैठक कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये डोनाल्ड ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग है, और इस मीटिंग में डोनाल्ड ट्रंप ने दो बड़े बयान दिए हैं। पहला ये उन्होंने साफ किया कि ईरान के साथ एक बड़ी डील वो करना तो चाहेंगे, और अगर ये बड़ी डील नहीं हुई तो फिर कोई डील नहीं होगी, इसे नहीं कर पाएंगे कोई और। ये पहला बयान है उनका। दूसरा बयान ओमान को लेकर उन्होंने दिया। राष्ट्रपति ट्रंप ने ओमान पर ईरान का साथ देने का आरोप लगाया और ओमान को कड़ी चेतावनी दे दी। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ओमान अब बाज आए और दूसरे खाड़ी के देशों के जैसा व्यवहार ना करे, अगर ऐसा हुआ तो उसे उड़ा दिया जाएगा। ओमान न केवल ईरान के बल्कि अमेरिका के भी बेहद करीब है, इसके बावजूद ट्रंप ने अब ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है, जबकि यह अलग बात है कि पहले ओमान बहुत महत्वपूर्ण मध्यस्थता करने का प्रयास भी कर रहा था।
5: No, the strait's going to be open to everybody. It's
6: and who will control
5: it's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
3: और ओमान को धमकी देने के साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने खाड़ी के देशों को भी दो टूक चेतावनी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अरब देश अब्राहम अकॉर्ड, अब्राहम समझौते में शामिल हो जाएं, वरना डील रद्द कर दी जाएगी। डोनाल्ड ट्रंप ने साफ शब्दों में कहा कि अगर ये देश इस समझौते पर हस्ताक्षर नहीं करते तो अमेरिका उनके साथ होने वाली एक बड़ी डील को रद्द कर सकता है। डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी अरब, कतर और अन्य खाड़ी देशों का जिक्र करते हुए कहा कि वैसे तो वो हमारे कर्जदार हैं और उन्हें इस समझौते का हिस्सा बनना ही होगा। डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा अगर वो अब्राहम समझौते में शामिल होने के लिए हस्ताक्षर नहीं करते तो मुझे नहीं लगता कि हमें उनके साथ कोई भी डील करनी चाहिए। अब जो विशेषज्ञ हैं, एनालिस्ट हैं, उनके मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप का ये जो आक्रामक रुख है ये मुख्य तौर पर दो देशों के लिए है, एक सऊदी अरब और दूसरा कतर। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं क्योंकि ये बड़े और महत्वपूर्ण ताकतवर इस्लामी देश हैं और खासतौर पर सऊदी अरब, अगर ये इसराइल के साथ संबंध को सामान्य कर देंगे तो बाकी देशों को मजबूरी ऐसा करना ही होगा, और इसीलिए इनको मजबूर करने की एक बड़ी कूटनीतिक रणनीति का हिस्सा उनका यह बयान माना जा रहा है।
5: I would like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth. If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries. And
6: ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत बड़ा और बेहद चौंका देने वाला बयान है. अपने दूसरे टर्म में डोनाल्ड ट्रंप ने धमकी देते हुए, मतलब अब वो धमकी ऐसे देते हैं कि वो ये ना देखते हैं कौन उनका दोस्त है कौन उनका दुश्मन है. उनकी जो ताजा धमकी है, सबसे पहले वो ओमान को दे रहे हैं. ओमान अमेरिका का मित्र तो है, ईरान का भी मित्र है, और बाकायदा उसे एक न्यूट्रल देश माना जाता है. आपको अब हम ये दिखाने का कोशिश का प्रयास करते हैं कि 200 दिनों में 200 में से 15 देशों को धमकी दे चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप अब तक. ये सोचिए कि 200 देशों में से 15 देशों को वो सीधी धमकी दे चुके हैं. ट्रंप की निशाने पर है वो देश जो एक समय अमेरिका के बेहद करीबी समझे जाते थे. वैश्विक मंच पर अमेरिका की जो दादागिरी है, ये उसका सबसे आक्रामक दौर है. किस किस को डरा रहे? दुनिया की 11% आबादी पर धमकी का असर वो डालने का प्रयास कर रहे हैं. आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि दुनिया का हर 13वां देश अब डोनाल्ड ट्रंप के सीधे खतरे का सामना कर रहा है. और इसका सीधा मतलब यह है कि दुनिया का हर 11वां व्यक्ति, यानी विश्व की 11% आबादी, इस अमेरिकी तनाव को जीने में, उसके साए में जीने को मजबूर है. और खासतौर पर अगर मध्य पूर्व की बात करें तो मध्य पूर्व के 20 में से 5 देशों को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से सीधे सैन्य कार्रवाई. आप यह सोचिए, मध्य पूर्व के 20 में से 5 देशों को धमकी दी है. क्या धमकी दी है? या तो पाबंदियां लगाई जाएंगी या फिर सैन्य कार्रवाई की जाएगी. इसमें देखिए ईरान, इराक, यमन और ओमान जैसे देश शामिल हैं ही. इसके अलावा अमेरिका का जो आक्रामक रुख है, सीधे तौर पर उसका ये सामना कर रहे हैं. ईरान पर बमबारी कर चुके हैं, यमन पर बमबारी कर चुके हैं, ओमान को धमका चुके हैं. ट्रंप की इस धमकी का जो दायरा है, ये किसी एक क्षेत्र तक सीमित नहीं है. ऐसा नहीं है केवल मध्य पूर्व में धमका रहे हैं. एशिया से लेकर अफ्रीका तक, उत्तरी अमेरिका से लेकर दक्षिणी अमेरिका तक, मतलब आप सोचिए कनाडा कितना करीब दोस्त है. कनाडा को बोल रहे मेरा 51वां राज्य बन जाओ, ऐसे धमका रहे हैं. दुनिया के 4 बड़े महाद्वीप इस समय डोनाल्ड ट्रंप के रेडार पर है. किसी को यह नहीं मालूम कब किस पर बरस पड़ेंगे. कभी बोलते हैं मैं ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लूंगा, कभी मडुरो को रात के अंधेरे में जाके उठा लेते हैं वेनेजुएला से. यही नहीं, कम से कम 5 ऐसे हिस्से हैं जहां डोनाल्ड ट्रंप का ये जो विस्तारवादी इरादा है, ये साफ तौर पर दिखाई दे रहा है. अपने ही पड़ोसियों को नहीं छोड़ रहे हैं, कनाडा उत्तर में तो क्यूबा दक्षिण में, एक तरफ ग्रीनलैंड तो दूसरी तरफ पनामा और वेनेजुएला. हर मुल्क पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं, या तो उनके खिलाफ आर्थिक तौर पर रणनीति बना रहे हैं या सामरिक रणनीति बनाने की जिम्मेदारी की तैयारी कर रहे हैं. इस पूरी रणनीति का सबसे खतरनाक पहलू यह है कि अमेरिका इस समय 7 देशों पर पहले ही सैन्य कार्रवाई कर चुका है. 7 अन्य देशों को डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ताजा और सीधी धमकी दी जा चुकी है. ये वो अमेरिका है जो अपने आप को प्रजातंत्र का सबसे मजबूत स्तंभ बताता है, अपने आप को दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी बताता है, और वो ऐसे खुलेआम दादागिरी, गुंडागिरी और धमकी दे रहा है दुनिया के अलग अलग देशों को. कनाडा को बोलता है हम तुम्हारा, तुमको अपना 51वां देश राज्य बना देंगे. ग्रीनलैंड को बोलता है हम तुमको जबरदस्ती हथिया लेंगे. इस तरह की धमकी प्रजातंत्र में दी जानी चाहिए? यह एक बड़ा प्रश्न है. डोनाल्ड ट्रंप दावा कर रहे हैं कि उन्होंने ईरान की नौसेना को रसातल में पहुंचा दिया है. फिर उन्होंने अपने सोशल मीडिया पोस्ट पर अमेरिकी मीडिया और खासतौर पर CNN जैसे चैनलों का मखौल उड़ाया, मजाक उड़ाया. डोनाल्ड ट्रंप ने लिखा है कि CNN ईरान की नेवी को शक्तिशाली बताता है. सच्चाई यह है कि आज ईरान की नौसेना समंदर की गर्त में पहुंच गई है. अमेरिका के राष्ट्रपति के मुताबिक अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है. डोनाल्ड ट्रंप की जो तस्वीर है, वो उन्होंने, डोनाल्ड ट्रंप ने एक तस्वीर भी पोस्ट की है लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरान के मीडिया की रिपोर्ट ने न केवल खारिज कर दिया है बल्कि उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे चार जहाजों को आईआरजीसी की नौसेना ने गोलियां चलाकर वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और दुनिया की सबसे ताकतवर नौसेना अमेरिका कुछ नहीं कर पाया। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक चार जहाजों का नौसेना बलों से आमना सामना हुआ। ईरान की नौसेना से आईआरजीसी नेवी ये जहाज ईरानी अधिकारियों से तालमेल बिठाए बिना हॉर्मुज पार करके फारस की खाड़ी में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे लेकिन जहाजों को ईरानी नौसैनिक बलों ने पहले मौखिक चेतावनी दी और जब उनकी चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चला दी गई। मजबूरन चारों जहाजों को लौटना पड़ा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए ईरान को समझौते के लिए झुकाना अब लगभग नामुमकिन सा लग रहा है। अब ईरान ने किसी भी डील पर पहले अपनी जब्त की गई संपत्ति को छोड़ने की शर्त रख दी है। ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के डेप्यूटी सेक्रेटरी अली बागेरी कानी ने कहा है कि तेहरान यूएस से ईरान की सभी फ्रीज की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग कर रहा है और इसे ईरान के लोगों का कानूनी अधिकार बताया है। उन्होंने कहा कि ईरान की जितनी भी संपत्ति है, जितने भी पैसे अलग अलग बैंकों में जब्त किए गए हैं, बिना शर्त पहले वापस किए जाने चाहिए। यह टिप्पणी तब की गई जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि यूएस युद्ध खत्म करने के लिए ईरान के साथ बातचीत में किसी भी तरह की पाबंदियों में ढील देने पर विचार नहीं कर रहा है। कैबिनेट की बैठक के दौरान राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि ईरान पर ढंग से अगर ईरान पेश आएगा तभी उसकी जब्त की गई संपत्ति को छोड़ने के बारे में विचार किया जा सकता है। स्वदेश लौटते एक बहुत बड़ी खबर इस समय आ रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बंगाल में बॉर्डर सुरक्षा को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि बंगाल की सीमा पर फेंसिंग का काम तेजी से हो रहा है। 7 दिन में 600 हेक्टेयर जमीन बीएसएफ को सौंप दी गई है। अमित शाह ने बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी को तेजी से काम करने के लिए बधाई भी दी है। ये मामला एक बहुत लंबे समय से अटका हुआ था। ममता बनर्जी से बार बार बात हो रही थी लेकिन वो नहीं मान रही थी। अब शुभेंदु अधिकारी के मुख्यमंत्री बनते ही ये जमीन सौंप दी गई। सुनिए अमित शाह को।
7: हमने चुनाव में कहा था आप हमें शासन की धुरा दे दीजिए, हम बांग्लादेश सीमा पर सीमा की बाड़ बनाने का काम, फेंसिंग का काम कुछ ही दिनों में शुरू करेंगे। और मैं बंगाल के मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी को बधाई देना चाहता हूं कि 7 ही दिन में उन्होंने 600 हेक्टेयर भूमि बीएसएफ के हाथ में सौंपने का काम कर दिया। चिकन नेक की भी 121 हेक्टेयर भूमि भारत सरकार को दे दी।
6: एक बहुत बड़ा कदम है राष्ट्रीय सुरक्षा की दृष्टि से। बरसों से यह काम अटका हुआ था लेकिन अब जाकर इस पर तेजी से काम हो रहा है। इस बड़ी खबर पर रहेगी नजर। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का। देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी। लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से। इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी
9: इलेक्ट्रिक। इफ यू ओन अ बिजनेस लाइक आई डू, इवन वन मिस्ड कॉल मींस मनी लेफ्ट ऑन द टेबल। I couldn't keep up with calls and texts, and I was losing potential customers until I switched to Quo. Quo is the number one business phone system that streamlines communications so you can scale your business. I can send an automated text response I created anytime someone calls, leaves a voicemail, or texts me. Plans start at just $15 a month. No brainer. Money is on the line. Always say hello with Quo. Try Quo for free at Quo.com/tune in. That's Quo.com/tune in.
10: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning one heavy metal tea at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
8: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit disclosures for fees and details.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn. Jam out to your favorite songs with today's hits. TuneIn has got you covered with the top songs of today, from pop songs to EDM bangers. The hits are on. And hip-hop beats.
12: I'm in the game, I should join with this G23.
11: Today's hits will keep the party going 24/7. Listen now. Just search today's hits or ask your device to play today's hits on TuneIn.
13: Sawari, Sokudo.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल बोलो जुबान केसरी।
1: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट,
6: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
7: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: बस 2000
1: इधर स्कोर करेगा तो इतना सा इनाम जीतेगा, और पैसा बाजार पर क्रेडिट स्कोर देखेगा तो 1,00,000 तक जीतेगा।
10: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर, क्रेडिट स्कोर देखो और 1,00,000 तक जीतो।
11: इन एसोसिएशन विद समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर लाइफ बनाए वंडरफुल। हिंट, बड़े आराम से पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक। कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस। शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू?
12: विमल बोलो जुबां केसरी।
13: 20 साल से इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट देश को दे रहा है बेहतरीन पत्रकार। अगर आपका लक्ष्य भी है पत्रकारिता तो फिर सोचना क्या। रजिस्टर करने के लिए विजिट करें www.indiatodaymediainstitute.in या 9560065465 पर कॉल करें।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोस। इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।
14: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
11: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा। इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिवकुमार के सिर सजेगा ताज।

मिशन बॉर्डर पर निकले गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठिए को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में अब जुटी बीएसएफ। नीट री एग्जाम क्लीन तरीके से कराने में जुटी सरकार, राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान और सिंधिया रहे मौजूद, एनटीए चीफ और पीएमओ के अधिकारी भी इस बैठक में शामिल।

जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी लगभग तय। भोपाल में उनके घर पर मौजूद है सीबीआई की टीम। नहीं रहे जीवन की सच्चाई को शब्दों में पिरोकर दिल तक उतरने वाले शायर बशीर बद्र, लंबी बीमारी के बाद भोपाल में हुआ निधन। साहित्य जगत में शोक की लहर।

0: लेबनान पर इसराइल का अब तक का सबसे भीषण हमला। जहरानी नदी तक बढ़ा इजरायली सेना का दायरा। टायर और नबातिये शहर बने इसराइल का मुख्य निशाना। महज एक घंटे में इसराइल ने किए ताबड़तोड़ 7 हवाई हमले। टायर शहर से 2,00,000 से ज्यादा आबादी का पलायन। जहरानी नदी के दक्षिण का पूरा इलाका कॉम्बैट जोन घोषित। रेड क्रॉस की चेतावनी, लेबनान में गहराया मानवीय संकट। 24 घंटे में 30 से ज्यादा मौतें, मलबे में जिंदगी की तलाश। सीज फायर पूरी तरह धुआं, हिजबुल्लाह का पलटवार जारी।
1: आप देख रहे हैं रणभूमि, आपके साथ मैं हूं गौरव सावंत। अब हम आपको लेबनान की खबर बता रहे हैं जहां इसराइल ने भीषण हमला किया।

लाखों लोग लेबनान में अपने घर से पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। इसराइल और हिजबुल्ला के बीच जो जंग छिड़ी है वो इस समय ऐसा लग रहा है अब तक के सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गई है। IDF यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने दक्षिणी लेबनान के प्रमुख शहर और बेहद घनी बसी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया है। अब तक का सबसे बड़ा सबसे विनाशकारी सैन्य अभियान इसराइल ने शुरू कर दिया है हिजबुल्ला के खिलाफ। इस ताजा सैन्य कार्रवाई का केंद्र लेबनान का बेहद ऐतिहासिक और तीसरा सबसे बड़ा शहर टायर है और टायर से बिल्कुल लगा नबातीय शहर है। जो नबातीय शहर है, अगर इन शहरों की बात की जाए तो 2 लाख से ज्यादा आबादी अब पलायन करने को मजबूर हो गई है। इसराइल की सेना ने चौंका देने वाले कदम उठाए हैं और इसराइल लेबनान सीमा से अब करीब 40 किलोमीटर उत्तर में बहने वाली जो जहरानी नदी है उसके दक्षिण के पूरे इलाके को आधिकारिक तौर पर कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया है। IDF के प्रवक्ता ने अरबी भाषा में सख्त चेतावनी देते हुए कहा है कि इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले जो सैकड़ों गांव हैं, कस्बे हैं, शहर है, निवासियों को अपना घर तुरंत छोड़ के जहरानी नदी के उत्तर में चले जाना चाहिए। ये उनकी विनती नहीं है, ये गुजारिश नहीं है, ये आदेश दे दिया है इसराइल ने एक अलग देश में। इससे पहले इसराइली कार्रवाई केवल लिटानी नदी तक ही सीमित मानी जा रही थी। ये कहा जा रहा था कि लिटानी नदी जो है उसको सीमा बना दिया जाएगा और ये मैं आपको विस्तार से मानचित्र पर दिखाऊंगा। अब युद्ध का दायरा बहुत ज्यादा बढ़ा दिया है इसराइल ने।

0: लेबनान की जमीन पर इजराइल के बारूद कुछ ऐसे फट रहे हैं कि धमाकों से पूरी धरती दहल जा रही है। लेबनान की टायर सिटी में इजरायली हमले ने हिजबुल्लाह के ठिकानों को गर्द में मिला दिया। दक्षिण लेबनान के टायर सिटी और उसके पास के अल अतहर इलाके में जब इजरायली सेना ने बॉम्बिंग शुरू की तो धमाके ही धमाके सुनाई पड़े। दक्षिणी लेबनान से पूर्वी बेका घाटी तक इजराइल ने हिजबुल्लाह के 100 से अधिक ठिकानों पर जबरदस्त हमले किए। इजराइल का दावा है कि उसने ये हमले हिजबुल्लाह के ड्रोन ठिकानों, हथियार भंडारों और आतंकियों के ठिकानों पर किए हैं, जबकि लेबनान का कहना है कि इन इजरायली हमलों में लेबनान में 56 से अधिक लोगों की मौत हुई और 103 जख्मी हुए। हालांकि इन हमलों से पहले इसराइल ने इस पूरे इलाके को खाली करने की सूचना दे दी थी और आम लोगों को दक्षिणी शहरों को छोड़कर आगे जाने को कह दिया था।
1: लेबनान के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्लाह द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनान के सभी निवासियों से हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनान के निवासियों को जहरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
0: अब तक दक्षिणी लेबनान के लितानी नदी तक सैन्य कार्रवाई कर रही इजरायली सेना की जमीनी फौज अब और आगे बढ़कर जहरानी नदी तक की हाथ को कार्रवाई की जद में ले चुकी है। ये पूरा इलाका इजरायल की मौजूदा सीमा से करीब 40 किलोमीटर दूर तक है, जहां अब इजरायली सेना हिजबुल्लाह के ठिकानों पर कहर बरपा रही है। खासकर टायर सिटी और उसके आसपास जिस तरह इजरायल की सेना ने बमबारी की, उससे शहर में चारों ओर तबाही का मंजर दिखाई दे रहा है। दरअसल इसराइल के इतने भीषण हमलों के बावजूद हिजबुल्लाह हार मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो हिजबुल्लाह की ओर से जारी प्रोपेगेंडा वीडियो बताया जा रहा है, जिसमें हिजबुल्लाह के आतंकवादी दक्षिणी लेबनान में इजरायली सेना की बेहद करीब मौजूद होने का दावा कर रहे हैं।

0: इससे पहले हिजबुल्ला ने इजरायली सेना और उसके सैन्य ढांचों पर ड्रोन से हमले का वीडियो जारी किया था। इन हमलों के बाद से इसराइल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ऊपर भीषण हमले शुरू किए। आज तक ब्यूरो।
1: दावे दोनों तरफ से किए जा रहे हैं। दावा यह किया जा रहा है कि इसराइल अब दक्षिणी लेबनान के दो प्रमुख शहर, एक टायर और दूसरा नबातिये, दोनों पर जमीनी कब्जे की तैयारी कर रहा है। इसराइल की सेना नबातिये से महज 5 किलोमीटर दूर इस समय है और एक बड़े ऑपरेशन की तैयारी कर रही है, जबकि टायर के निवासियों को पहले ही शहर खाली करने के आदेश दे दिए गए हैं। लेबनान की जो सरकार है वो इसराइल का सामना करने से, सैन्य सामना करने से इस समय कतरा रही है। कल से इसराइल और लेबनान के बीच बातचीत, कल उसकी बातचीत का अगला दौर है। उससे पहले इसराइल ने दक्षिणी लेबनान में विध्वंसक हमले तेज कर दिए हैं। जवाबी हमले के तौर पर हिजबुल्ला के FPV ड्रोन अब पलटवार कर रहे हैं, इसराइल की सेना को नुकसान पहुंचा रहे हैं, लेकिन वो आक्रमण को रोक नहीं पा रहे हैं। ईरान की इस शर्त का भी अब कोई असर नहीं हो रहा है कि इसराइल बेरूत और दक्षिणी उपनगरों पर हमला करने से परहेज करे, वरना बातचीत आगे नहीं बढ़ेगी। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू साफ तौर पर जमीनी हकीकत बदलने की एक नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये साफ तौर पर दिखाती हैं कि किस तरह से इसराइल की बख्तरबंद गाड़ियां, इसराइल के टैंक, इसराइल के बुलडोजर अब, और उनके पास बख्तरबंद बुलडोजर है जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और नई रणनीति पर काम कर रहे हैं। जैसे जैसे लेबनान की ओर जमीन पर कब्जा बढ़ता जा रहा है इसराइल का, वैसे वैसे अब धमकी हिजबुल्ला की तरफ से दी जा रही है कि इसराइल के सैनिकों पर पलटवार होगा। पिछले कुछ महीनों में हिजबुल्ला के मुताबिक उनके गांवों को सुनियोजित तरीके से तबाह किया जा रहा है, अब शहर भी निशाने पर आ रहे हैं, अब हिजबुल्ला पलटवार की धमकी दे रहा है। तो लेबनान में इसराइल की सेना यानी IDF, इसराइल डिफेंस फोर्सेस का जो एक्शन है उसका दायरा अब बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। हिजबुल्ला के सीज फायर उल्लंघन और रॉकेट हमलों के जवाब में इसराइल ने दक्षिणी लेबनान का अब तक का सबसे बड़ा और कड़ा इवैक्यूएशन ऑर्डर यानी इलाका खाली करके जाओ आदेश जारी कर दिया है। और अब मैं आपको ये दिखाता हूं, मानचित्र पर यह दिखाने का प्रयास करता हूं कि यह पूरा इलाका बढ़ा कैसे है। देखिए ये लेबनान में इसराइल का जो सैनिक कार्रवाई का दायरा है, अगर आप इसको देखें तो ये इसराइल है। इसराइल की सेना उत्तरी इसराइल से दक्षिणी लेबनान में घुसी और अब आगे बढ़ रही है। तो ये लिटानी नदी है और ये जहरानी नदी है। अगर आप इसको मानचित्र को देखें कि जब पहले इसराइल ने नॉर्थ में ऑपरेशन शुरू किया था तो ये कहा था कि केवल ये इलाका वो सुरक्षित करना चाहते हैं ताकि यहां से उन पर अटैक्स न हो। लेकिन अब आप इसको समझिए, जब यह इलाका इसराइल ने अब यहां पर अपनी सुरक्षा का घेरा बढ़ा दिया है तो अब इस पूरे इलाके को धीरे धीरे वो खाली करा रहे हैं। ये लिटानी नदी पहले हम आपको बताया करते थे, अब लिटानी नदी से जहरानी नदी तक ये पूरा इलाका वो खाली करा देना चाहते हैं। लिटानी नदी तक सुरक्षित जोन उन्होंने बना दिया, काफी हद तक बना दिया है। अब यहां से कोई उत्तरी इसराइल पर हमला नहीं कर सकता, लेकिन उत्तरी इसराइल पर फिर हमले हो रहे थे तो अब उन्होंने इस नदी से इस नदी के इलाके को भी अब खाली करने का आदेश दे दिया है। और एक एक बड़े शहर, जहरानी नदी ये दरअसल इसराइल और लेबनान का जो बॉर्डर है, ये जो पहले 10 किलोमीटर का इलाका था, फिर ये थोड़ा और आगे बढ़ के यहां 18 से 20 किलोमीटर का हुआ, लेकिन ये जो इलाका है ये लगभग 40 किलोमीटर अंदर है। तो 40 किलोमीटर तक के पूरे इलाके को इसराइल खाली करा देना चाहता है। गौरतलब बात यहां बहुत महत्वपूर्ण है कि लिटानी नदी तक जो चर्चा पहले हो रही थी, अब इसराइल का दायरा जहरानी नदी तक खिंच गया है। जहरानी नदी से दक्षिण का पूरा इलाका, इसमें लेबनान का करीब 15-20% ये लेबनान का हिस्सा है जिसे इसराइल अब कॉम्बैट जोन यानी युद्ध क्षेत्र घोषित कर चुका है। ये दक्षिणी लेबनान का वो महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसमें टायर जैसे विशाल शहर है, नबातिये जैसे दर्जनों शहर, गांव, कस्बे, 2 लाख की आबादी। और आप सोचिए किसी भी देश का अगर 10-15% इलाका और 2 लाख की जनसंख्या अगर रेफ्यूजी बन जाए और रेफ्यूजी कैंपों में चले जाए तो टायर शहर उसके आसपास के इलाकों में रहने वाले लोग इन सब से अब कह दिया गया है, आदेश दे दिया गया है कि वहां खाली कर दें, क्योंकि अब इस पूरे इलाके में यानी पहले लिटानी नदी तक भीषण बमबारी हो रही थी, अब जहरानी नदी तक भीषण बमबारी होगी, इस तरह का आदेश अब इसराइल की तरफ से दे दिया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, इसराइल ने लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सिडोन पर भी बड़ा एयर स्ट्राइक किया है। यह तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस हमले से पूरा इलाका दहल उठा। इजरायली वायुसेना, इजरायली एयरफोर्स ने दक्षिणी लेबनान के सीमाई इलाकों को छोड़ अब लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर और मुख्य शहर सिडोन को भी निशाना बना दिया है। इस भीषण हमले में बहुत जबरदस्त नुकसान भी हुआ। और इस समय मेरी सहयोगी आज तक संवाददाता शिवानी शर्मा इसराइल में मौजूद है। इसराइल के हाइफा में वो युद्ध के दौरान, ये उत्तरी इसराइल का इलाका है, दक्षिणी लेबनान से जिस इलाके में आप आते हैं वहां पर वो इस समय है। जमीनी स्थिति क्या है, देखिए ये रिपोर्ट।
2: उत्तरी इसराइल में मैं इस वक्त लेबनान के बॉर्डर के नजदीक खड़ी हुई हूं, जहां पिछले कुछ घंटों से एक सक्रिय ऑपरेशन आईडीएफ चला रहा है। 24 घंटों के दौरान 150 अलग अलग स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसमें अब तक इस पूरे ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा हिजबुल्ला ऑपरेटिव्स को न्यूट्रलाइज करने के दावे किए जा रहे हैं। इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा संवेदनशील इलाका है जहां पर सक्रिय ऑपरेशन लगातार जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यहां पर हिजबुल्ला के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये जो रिज आपको दिखाई रहे हैं ये वो इलाका है जहां से लेबनान की बाउंड्री शुरू होती है, उसके इस तरफ लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस तैनात हैं और दूसरी तरफ भी इनके ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशंस हो जहां पर दावे किए जा रहे हैं कि टनल्स के अंदर हथियारों के जखीरे बरामद हो रहे हैं, एयर ऑपरेशंस जहां पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं वो इसराइल की तरफ से किए जा रहे हैं। और इसराइल का ये कहना है कि हिजबुल्ला की तरफ से एक प्लान के तहत इसराइल के अंदर घुसने, इसराइली ज्यूज को मारने, उनको खत्म करने की एक प्लानिंग की जा रही थी, लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए, अपने बचाव में आईडीएफ इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए है। और ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशंस के बारे में इसराइल का ये भी कहना है कि भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही हो, वो जो बड़ी एक लड़ाई शुरू हुई थी फरवरी में उसको लेकर, लेकिन इस इलाके में अगर हिजबुल्ला के ठिकाने इस तरह से बने रहे जहां पर हथियार रहे तो फिर इसराइल स्वतंत्र है हिजबुल्ला के खिलाफ एक्शन के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि ये इस बॉर्डर के इलाके में एक बंकर बनाया गया है। ये बंकर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां पर लगातार मिसाइल्स आते हैं, यूएवीज और अब एफपीवी ड्रोन्स, जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हैं, जो बेहद छोटे हैं, जिन्हें आयरन डोम पकड़ नहीं पाता, और अब एक और ऑप्टिकल फाइबर के साथ इन्हें जोड़कर हिजबुल्ला यहां पर उन ड्रोन्स को भेज रहा है। पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स इस इलाके में मारे जा चुके हैं। ये आप बंकर देखिए, ये बंकर इस लिहाज से बनाया गया है कि अगर बॉर्डर के इलाके में या जो कम्युनिटी यहां पर रहती है वो एक्सपोज होती है और मिसाइल्स आती हैं, जिस तरह से रॉकेट्स आते हैं हिजबुल्ला की तरफ से, तो अपने आप को इसमें सुरक्षित रखा जा सके। इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनन में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं। ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती है, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है। सीज फायर के नाम के नीचे सीज फायर वायलेशंस की भी बात इसराइल लगातार कह रहा है। तो अगर हम वेस्ट एशिया वॉर की बात करें, इस पूरी लड़ाई में एक पार्शियल सीज फायर है और ये जो फ्रंट है नॉर्दर्न इसराइल में, जहां वेस्ट गैलिली में मैं इस वक्त खड़ी हुई हूं टेफोन इलाके में, वहां पर किसी भी तरह का सीज फायर फिलहाल नहीं दिख रहा है। वायलेशंस हर दिन हो रहे हैं और इसराइल डिफेंस फोर्सेस ने भी लेबनन के भीतर हिजबुल्ला के खिलाफ अपने हमलों को तेज कर दिया है। कैमरा पर्सन सचिन चंडोक के साथ शिवानी शर्मा, नॉर्दर्न इसराइल आज तक।
1: बेहद जोखिम भरा इलाका है जहां से मेरी सहयोगी शिवानी शर्मा इस समय रिपोर्टिंग कर रही हैं। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे हम यहां, देश और दुनिया की ताजा खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
7: All sports, all the time, right here on TuneIn. Catch live sports talk, expert analysis, and nonstop discussion from your favorite stations, like ESPN Radio.
8: Not missed out on one player that the Yankees wanted.
7: Big 12 Radio.
9: Today is Big 12 Insiders game day. We're breaking
7: and
9: down.
7: Talk sports.
10: I just can't see a turnaround in the way that we're going to perform and result.
7: And much more. Get your head in the game and never miss a minute of the action. Just search sports or ask your device to play your favorite sports talk station on TuneIn.
11: देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है। टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं। चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा। असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया। इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया। 5 देशों के दौरे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने साझा की जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया। आज तक ब्यूरो।
12: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
13: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
14: इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
16: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.
17: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
18: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
19: TuneIn has got all your favorite audio in one spot, so you can enjoy listening to anything, anywhere, from breaking news.
20: You know, the breaking news is this started long before he even announced for president. It was
19: to live sports action.
21: To the near side corner, to wrap around, he scores!
19: And your favorite music. TuneIn has got it all. Discover new stations in the app or ask your device to play TuneIn.
13: Presented by
22: पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
14: इन एसोसिएशन विद
15: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: रामैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिवकुमार के सिर तजेगा ताज। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। नीट री एग्जाम क्लीन तरीके से कराने में जुटी सरकार, राजनाथ के घर बड़ी बैठक, धर्मेंद्र प्रधान और सिंधिया रहे मौजूद, एनटीए चीफ और पीएमओ के अधिकारी भी मीटिंग में शामिल। विशा केस में सास गिरिबाला की बड़ी मुसीबत, हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत खारिज होने के बाद गिरफ्तारी लगभग तय, भोपाल में उनके घर पर मौजूद है सीबीआई की टीम। नहीं रहे जीवन की सच्चाई को शब्दों में पिरोकर दिल तक उतारने वाले शायर बशीर बद्र, लंबी बीमारी के बाद भोपाल में हुआ निधन, साहित्य जगत में शोक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: नमस्कार, मैं हूं साहिल जोशी, दंगल में आपका स्वागत। आज का दंगल चुनावी नतीजों के बाद बंगाल में बदलते माहौल को लेकर, और ये माहौल ऐसा बदला है कि घर से मंदिर तक और मैदान से पार्टी दफ्तरों तक हलचल मची हुई है। शुभेंदु राज में बंगाल में पुलिस से लेकर हुकूमत तक और नेता से लेकर सियासत तक सभी लोग एक्शन में हैं, और इससे टीएमसी की टेंशन बढ़ती नजर आ रही है। कारण यह है कि एक तरफ तो सूबे भर में टीएमसी नेताओं के खिलाफ कानून का डंडा चलना शुरू हो चुका है, दूसरा टीएमसी के नेता पार्टी छोड़कर भाग रहे हैं, और जो अब तक नहीं भागे हैं उनमें अंदरूनी घमासान भी शुरू हो गया है। टीएमसी की सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने यूं तो पहले ही पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन उन्हें सीआईएसएफ की वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिल गई, और अब काकोली ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर मांग की है कि टीएमसी के ही लोकसभा में चीफ व्हिप कल्याण बैनर्जी के खिलाफ मुकदमा चलाया जाए। काकोली का आरोप है कि कल्याण बैनर्जी ने कई बार संसद में उनके साथ में दुर्व्यवहार किया हुआ है। कल्याण बैनर्जी पर ऐसे दुर्व्यवहार के आरोप पहले भी टीएमसी की सांसद बहुआ मोहित्रा लगा चुकी है, लेकिन कल्याण बैनर्जी का कहना है कि अगर काकोली घोष को शिकायत ही करनी थी तो 3 महीने पहले जब संसद चल रही थी तब क्यों नहीं बताया। कल्याण बैनर्जी कहते हैं कि दरअसल नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में काकोली के खिलाफ जो सीबीआई की तलवार लटक रही है, इसलिए दूसरी मंशा से वो ऐसे आरोप लगा रही है, यानी कहीं ना कहीं उनकी अपनी राजनीति है। लेकिन मामला सिर्फ काकोली घोष का नहीं, थोड़ी देर पहले टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने भी अपने पदों से इस्तीफा दे दिया। उनका यह कहना है कि टीएमसी में भ्रष्टाचार होता है। टीएमसी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद सौमित्र खान कहते हैं कि दिल्ली से इजाजत मिले तो टीएमसी के 20 सांसद बीजेपी में तुरंत शामिल हो जाएंगे, पार्टी ही खत्म हो जाएगी। उधर 15 नगर पालिकाओं और नगर निगमों में भी और ग्राम पंचायतों में भी 127 टीएमसी नेताओं और पार्षदों ने इस्तीफा दे दिया। टीएमसी के नेताओं पर 181 से अधिक मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, दर्जनों गिरफ्तारियां हो चुकी है। तो सवाल यह है कि क्या बंगाल में अब टीएमसी अपने वजूद के लिए लड़ रही है? जिस तरह टीएमसी के विधायक सीएम शुभेंदु से लेकर मंत्री निशीत की बैठकों में पहुंच रहे हैं, ये बंगाल में टीएमसी के भविष्य पर कैसा संकेत देते हैं? तमाम और भी सवाल है जिस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले बंगाल में जो हो रहा है उसको लेकर यह रिपोर्ट देखते हैं।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के 2 सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोच है उनका कुछ मंशा है, स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे, बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया। वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
3: दरअसल नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ बिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह सुजीत शाह के घर करेंसी, राइफल, गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 TMC पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया, मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार जैसे जिलों में प्रधानों, पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ी जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
5: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এরপরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
3: বিজেপি কে রহি হ্যাঁ দিল্লি সে হরি ঝন্ডি মিল যায় তো টিএমসি কা নাম ও নিশান মিট যায়।
6: 20 জন সাংসদ, কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু এবং শ্রমিকদের যদি দরজা খুলে দেয়, 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত।
3: इससे 50 नाराज विधायकों समेत मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण बंगाल के 18 से अधिक टीएमसी नेताओं और सांसदों को बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से 150 से अधिक विधायकों, सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले भी 2024 के चुनाव में बीजेपी के 28% उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37 नेता कांग्रेस से बीजेपी में आकर उम्मीदवार बने। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे बीजेपी के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है जो पिछले महीने ही बीजेपी में आए हैं।
0: कहा जाता है कि राजनीति में जीत के कई दावेदार होते हैं, लेकिन हार का कोई माई बाप नहीं होता। लेकिन बंगाल में तो माई बाप पार्टी को छोड़ने के लिए भी लोग तैयार होते नजर आ रहे हैं। ऐसा क्या हो गया? क्या चुनावी हार के बाद तृणमूल कांग्रेस का कुनबा इसी तरीके से फूट जाएगा, इस पर चर्चा होना जरूरी है हमारे साथ में। और ये संकट सिर्फ तृणमूल कांग्रेस का नहीं, सारी रीजनल पार्टीज पर क्या यही संकट मंडरा रहा है, चर्चा करेंगे। हमारे साथ प्रदीप भंडारी जुड़ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। क्योंकि अगर टीएमसी टूटती है बाहर निकलते हैं लोग, तो उस पर सबसे पहली दावेदारी तो भारतीय जनता पार्टी की होगी। प्रदीप भंडारी खुश भी नजर आ रहे हैं क्योंकि पार्टी धीरे धीरे एक एक करके इस्तीफे भी सामने आ रहे हैं। स्वयं प्रकाश पुरोहित भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 11 साल पहले सत्ता पर आई थी, 15 साल पहले सत्ता पर पार्टी आई थी, 1998 में तृणमूल कांग्रेस बनी थी। उसके बाद आज तृणमूल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आज की स्थिति में। प्रसून आचार्य वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, रिजू दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। एक वक्त था 4 मई के पहले तक रिजू दत्ता तृणमूल कांग्रेस का जी जान से समर्थन किया करते थे, और वही रिजू दत्ता सबसे पहले सोशल मीडिया पर आए और उन्होंने कहा कि बंगाल के भीतर एक सांस ली है अब लोगों ने, कहीं ना कहीं अब भयमुक्त सांस एक तरीके से ली है, यह भी रिजू दत्ता ने कहा था। उनसे भी पूछेंगे कि अब तृणमूल कांग्रेस में क्या बुरा उनको नजर आ रहा है। और आशुतोष हमारे पॉलिटिकल एनालिस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि एक लंबी चर्चा और बड़ी चर्चा करना भी जरूरी है इस पर आशुतोष जी, क्योंकि रीजनल पार्टीज के सामने क्या ये एक सबसे बड़ी चुनौती हार की खड़ी होगी। 3 सवाल मैं हमारे पैनल के सामने रखूंगा। सबसे पहला सवाल, क्योंकि आज काकोली घोष दस्तीदार जो तृणमूल कांग्रेस की सांसद है, उन्होंने गंभीर आरोप कल्याण बैनर्जी पर लगाए हुए, तो उनके जो आरोप है वो सिर्फ सियासत से प्रेरित है क्या? क्योंकि कल्याण बैनर्जी कह रहे हैं कि ये सियासत से प्रेरित आरोप है। उनका कहना है कि सीबीआई की जांच की तलवार उन पर लटक रही है, इसीलिए आरोप किए जा रहे हैं। दूसरा सवाल, क्या जांच और कानूनी कार्रवाई के डर से टीएमसी में नेताओं के इस्तीफे हो रहे हैं? लंबी फहरिस्त है कि कहीं पुलिस, कहीं ईडी, कहीं सीबीआई लगातार टीएमसी के नेताओं पर कार्रवाई कर रही है, तो क्या ये एक डर है? सबसे पहले ये डर हमने पहले भी कई बार देखा हुआ है। तीसरा सवाल, क्या 20 टीएमसी सांसदों के बीजेपी के संपर्क में होने के दावे के बाद बंगाल में टीएमसी टूटने के कगार पर है? क्या उसका खतरा बढ़ता नजर आ रहा है? शुरुआत स्वयं प्रकाश जी आप ही से करेंगे, ऐसा क्या हो गया? इतनी तगड़ी पार्टी, दीदी के इतने जबरदस्त समर्थक, और एक के बाद एक रोज हम खबरें सुन रहे हैं कि आज कोई नाराज, कल कोई दूसरा नाराज, इतने लोगों ने इस्तीफा दिया। काकोली घोष दस्तीदार 1984 से ममता बनर्जी के साथ काम करती हुई नजर आई थी, उनके साथ में साये की तरह उनके साथ में नजर आई थी, कांग्रेस के भीतर भी, तृणमूल कांग्रेस के भीतर भी। आज पहला वार अगर किसी ने किया है तो उन्होंने किया हुआ है।
7: नहीं, देखिए पहला वार नहीं, बहुत लोग हैं जिन्होंने ऐसे वार की है। जब क्या होता है ना, जब बहुत लोग होते हैं जिन्हें संघर्ष पसंद नहीं होता है। 84 के समय जो ममता बनर्जी थी, तब केंद्र के अंदर में कांग्रेस की सरकार थी, उस समय थी साथ के अंदर में। जब तृणमूल कांग्रेस का गठन हुआ, तब ममता बनर्जी का एक छवि, जो छवि थी, एक लड़ाकू नेतृत्व की छवि थी पूरे देश के अंदर में, और उन्होंने उनका जीवन संघर्ष के साथ गुजरा है। काकोली घोष दोस्तीदार ने जो काम किया है वो गद्दारी का काम है, ये कोई अच्छा काम नहीं। अगर आपको इतनी शिकायतें थी तो आप 4 तारीख के पहले बोलती, चुनाव के पहले बोलती। आपका तो एंट्री दीदी के किचन तक था, उसके बाद आपको आपके बारे में, काकोली दी के बारे में क्या क्या चार्जशीट हुई है, क्या क्या इनके ऊपर आरोप लगे हैं, इनके बच्चे जो इनके डॉक्टर हैं उनकी डिग्रियों के ऊपर भी आक्षेप लगे हैं, ये सब बात मैं अभी नहीं करना चाहता हूं। मगर जो ऐसे लोग हैं, जो सुविधावादी लोग हैं, जो मौका परस्त राजनीति में एक वर्ड है अपॉर्चुनिस्ट, ये अपॉर्चुनिस्ट वर्ड जो है ऐसे लोगों पर फिट होता है जिनको अपनी धन संपदा बचानी है। जो इतने सालों में उन्होंने धन कमाया है, उस धन को बचाने के लिए कहीं ना कहीं तो जाना पड़ेगा, नहीं तो जेल की हवा खानी पड़ेगी। ऐसे बहुत लोग हैं, लाइन लगी हुई है।
0: धन कैसे कमाया पार्टी का क्या काम? प्रकाश जी आप बोल रहे हैं कि इतने सालों में धन कैसे कमाया? कहां से आया था?
7: 5 लाख रुपए लेते हुए नारदा सारदा कांड के अंदर में टीवी चैनल में दिखाया था, भारतीय जनता पार्टी वालों ने दिखाया था। तो उस समय में इनको लगा था कि ये सही है, अभी उनको लग रहा है कि डर लग रहा है जेल में जाने का, हमारी सर्दी चली जाएगी।
0: अगर वो गलत था तो पहले ही निकाल देते उनको।
7: अरे भाई हम सुनिए ना मेरी बात, निकालने की बात हम तो नहीं कर रहे, हम क्यों करेंगे, निकालने की बात है। अगर पार्टी के ऊपर में रह करके, पार्टी के संघ में रह करके कोई भी व्यक्ति काम करता है, मगर जिस तरह से एक तानाशाही सरकार काम करती है, आपने सही कहा कि क्षेत्रीय पार्टी कांग्रेस पार्टी, आज भारतीय जनता पार्टी का कुनबा जो बड़ा है उनके विचारधारा से नहीं बड़ा है। ये जो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, कल तक गांधी को मानने वाले गोडसे को मानेंगे, ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है।
0: काकोली दस्तीदार के ऊपर आप कह रहे हैं कि भाई वो डर के मारे जा रही है, वो तो ममता बनर्जी के साथ में 1984 से है उनके साथ में, जब सीपीएम की सरकार थी, लेफ्ट पार्टीज की सरकार थी, ममता बनर्जी लेफ्ट पार्टीज की सरकार पर जब आरोप लगाती थी, कंधे से कंधा मिलाकर उनके साथ में खड़ी होती थी। आज ऐसा क्या हो गया है कि वो कह रही है कि भाई तृणमूल कांग्रेस के भीतर जो चल रहा है वो ठीक नहीं चल रहा है, आईपैक चला रही है तृणमूल कांग्रेस,
8: क्या चल रहा है?
0: पार्टी का नेतृत्व नहीं चला रहा है,
8: आईपैक को तो
0: यही आरोप लगाकर तो वो निकलने की कोशिश कर रही है ना।
7: सुनिए ना, क्या है यह हताशा है उनकी? आईपैक ने 2024 में उनको सांसद बना के भेजा है, भूल रही है वो, इस्तीफा देने बोली है उनको, आईपैक पे इल्जाम लगा लिया, पहले उनको बोली आईपैक तुरंत इस्तीफा देगी। 2024 का जो संसद का चुनाव हुआ था 29 जो हमारे उस समय भी आईपैक था, 2021 में भी आईपैक था, मगर आईपैक पे इल्जाम लगा देना और करप्शन की बात करना, दुर्नीति की बात करना, ये सब हताशा है। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी के ऊपर में जनता का विश्वास है, 41% वोट जो मिला है पश्चिम बंगाल की जनता ने दिया है। मगर देखिए, मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूँ, पर ये तृणमूल कांग्रेस है, हमारे नेत्री ने एक दो लाइन कही है इसके लिए, जो क्रिकेट लोग है ना इनके लिए दो लाइन कही है कि तृणमूल कांग्रेस के जो लोग है, मारवे जो तो काटवे जो तो मारवे जो तो बाढ़वे तो फूल रोक तो दिए लिखे जाबो आमरा तृणमूल। जितना तृणमूल कांग्रेस को आप काटेंगे ना उतना बढ़ेगा। ये ईडी सीबीआई के डर के बारे जो लोग भाग रहे हैं ना, सबको नोटिसेस देके जो लोग भाग रहे हैं डर के मारे, वैसे लोगों को आप पॉलिटिकल एनालिस्ट बोल के अपने डिबेट में भी बुला
0: लीजिए दत्ता जी,
7: वैसे कुछ लोगों को
0: देखिए। यही बात होती है स्वयं प्रकाश जी, अभी हम बात कर रहे हैं और इसी बीच में खबर आ रही है कि तृणमूल कांग्रेस के एक और एक नेता ने इस्तीफा दे दिया है, अभी अभी खबर आ रही है, जरा खबर दिखा दीजिएगा, एक बड़ी खबर इस वक्त, टीएमसी के एक और नेता का इस्तीफा हो चुका है। टीएमसी के प्रवक्ता अरूप चक्रवर्ती ने पार्टी के पदों से अपना इस्तीफा दे दिया है। ऋजू दत्ता जी, आप जरा समझा दीजिए मुझे, क्योंकि कोलकाता नगर निगम के पार्षद भी है वो, और कोलकाता नगर निगम में दोबारा चुनाव हो ये मांग भारतीय जनता पार्टी लगातार उठा रही है। देखिए, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस से इस्तीफा उन्होंने देखा है, सोशल मीडिया पर आजकल इस्तीफा डाला जाता है और ये सोशल मीडिया के से हमें नहीं, ये बाकायदा ईमेल भेजा गया है और ईमेल के जरिए मीडिया सेल इंचार्ज को भी उन्होंने ये इस्तीफा मार्क किया हुआ है, रेजिग्नेशन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ टीएमसी। वहां पर ये शांतनु सेन ने इससे पहले इस्तीफा दिया था, उसके बाद ये दूसरा इस्तीफा यहां पर दिखाई दे रहा है। उनका ये कहना है कि सिंसियरली ट्राई टू अपहोल्ड द आइडियोलॉजी वैल्यूज एंड विजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन व्हाइल रिप्रेजेंटिंग द पार्टी बिफोर पब्लिक एंड मीडिया। मैंने आइडियोलॉजी को रिप्रेजेंट करने की कोशिश की थी, लेकिन पर्सनल रीजन अब उनको नजर आ रहे हैं 4 तारीख के बाद, और वो ये कह रहे हैं कि वो अपने पदों से इस्तीफा देना चाहते हैं। कारण तो थोड़ी दिन के बाद पता चल ही जाएंगे। ऋजु दत्ता जी, अभी आपने सुना स्वयं प्रकाश पुरोहित क्या कह रहे हैं, 4 मई के बाद कई लोगों को जो तृणमूल कांग्रेस का समर्थन करते थे टेलीविजन डिबेट्स में आकर सामने बात करते थे, ऐसा क्या हो गया अचानक कि आपने कहा कि एक राहत की सांस पश्चिम बंगाल के भीतर ली है? ये राहत की सांस 4 मई के पहले आपको नजर नहीं आती थी?
9: साहिल जी थोड़ा वक्त दीजिएगा, एक एक करके बताता हूं। 2 मई रिजल्ट आने से पहले ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने मेरे अरे ये ऐसे ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है साहिल जी?
0: स्वयं प्रकाश जी सुन लीजिए ना,
9: ये
0: आपके पुराने कलीग है, जरा सुन तो लीजिए।
9: जाहिल लोग को लाते हैं
0: पूरा देश, नहीं नहीं ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, प्लीज प्लीज प्लीज प्लीज। देखिए देखिए, जो भी आपका व्यक्तिगत मामला है वो यहाँ पर मत निकालिएगा, एक दूसरे को इस तरीके से संभावित मत करिएगा। पॉलिटिकल डिबेट हम कर रहे हैं, पॉलिटिकल बात कर रहे हैं। स्वयं प्रकाश जी सुन लीजिए, चलिए वो बोलते रहेंगे, ऋजु दत्ता जी आप बोलिए, चलिए।
9: धन्यवाद। बात यह है ना कि अभी जो लोग काकोली घोष दोस्तीदार के ऊपर उंगली उठा रहे हैं, उनका पार्टी में जन्म 5 साल पहले हुआ है, जो अभी प्रवक्ता बन के बैठे हैं, क्योंकि असली प्रवक्ता तो सब निकल गया पार्टी से, अभी बी टीम भी नहीं, सी टीम भी नहीं, डी टीम भी नहीं, ई टीम खेल रही है। रहा बात प्रदीप, यहां पर है बीजेपी के प्रवक्ता, प्रदीप के साथ तो मेरा 2 मई 3 मई को भी झगड़ा हुआ तृणमूल की तरफ से, पर जब 4 मई को बंगाल में परिवर्तन हुआ, उसके बाद जब जो तत्काल बीजेपी के गुंडे हैं, मतलब जो लेफ्ट के गुंडे थे जो 2011 में तृणमूल के गुंडे बने, उसके बाद 4 मई शाम को 4 बजे के बाद तृणमूल बीजेपी के तत्काल बीजेपी खुद बीजेपी बन के गुंडे बने, जब वो हम सबके घर पे, सब बीजेपी के तृणमूल के कार्यकर्ताओं के घर पे आक्रमण चला रहा था, उस टाइम किसी ने, तृणमूल के किसी नेता ने नहीं, ना ममता बनर्जी ने, ना अभिषेक बनर्जी ने किसी कार्यकर्ता का फोन उठाया। उस टाइम मैं आज चैनल पे बोल रहा हूं, ये बीजेपी के नेता हैं जिन लोगों ने प्रोटेक्शन दिया है टीएमसी के कार्यकर्ता को, उनकी जानमाल की रक्षा की है, और यही बात मैंने कहा था, इसलिए पार्टी ने मेरे को सस्पेंड किया, उसके लिए तो बहुत बहुत धन्यवाद पार्टी को। और अभी अभी अच्छा साहिल जी कैसे बात करें, फेटर डाउन कीजिए ना, खत्म कर लो मैं।
8: बोलिए ना,
9: आज जो टीएमसी के,
8: ये मुझे बड़ा दिलचस्प लग रहा है जो आप बता रहे हैं कि जो लोग गुंडे गुंडे ही होते हैं, सिर्फ सत्ता के साथ साथ पार्टी बदल देते हैं, ये भी आप कहने की कोशिश कर रहे हैं ना, सही है ना?
9: सही बात है, हाँ एकदम बिल्कुल। और आज जो टीएमसी के प्रवक्ता यहाँ पर बैठ के काकुली घोष दोस्तीदार के बारे में बात कर रहे हैं और नारदा का स्कैम के बारे में बात कर रहे हैं, वो भूल गए नारदा टेप में आज की डेट में जो तृणमूल कांग्रेस के चीफ व्हिप है फिराद हकीम का भी वीडियो है, आज के डेट में जो तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत राय है उनका भी वीडियो है, तो काकुली घोष दोस्तीदार क्यों खराब है? देखिए मसला ये है, आज क्यों आपका डिबेट करते करते 24 घंटे में चार प्रवक्ताओं ने इस्तीफा दिया, क्यों 130 के करीब पार्षदों ने इस्तीफा दिया, ये आपको समझना पड़ेगा। क्योंकि तृणमूल कांग्रेस जब क्षमता में थी तब या तो आपको तृणमूल कांग्रेस की बातें करनी पड़ेगी, अगर आप तृणमूल कांग्रेस की बातें नहीं करेंगे तो आपको आपके पोस्ट से काटा जाएगा, और अगर आप आपके व्यक्तिगत तौर पर पार्टी छोड़ना चाहेंगे तो आपके ऊपर पुलिस केस लगाया जाएगा। तो ये जो थ्रेट कल्चर था उसमें कोई कुछ बोल नहीं पाया। आज जब पहली बार रिजू दत्ता ने मेरे ऊपर अपनी आवाज बुलंद की तब मेरे को सब लोग मेरे ऊपर चढ़ गए, अंजना जी ने एक स्पेशल शो कर दिया मेरे ऊपर। पर आज उस दिन 10 तारीख को 10 मई को रिजू दत्ता ने जो बातें कही थी, आज तृणमूल के सांसद, तृणमूल के विधायक, तृणमूल के पार्षद, तृणमूल के
8: प्रवक्ता, परिवर्तन की बात की, जो आपका मन परिवर्तन हो रहा है उसमें सत्ता परिवर्तन की वजह से भी तो मन परिवर्तन हो सकता है ना, ये तो मन परिवर्तन
9: नहीं, नहीं, नहीं,
8: सालों से देख रहे हैं, आशुतोष भी यहाँ बैठे हुए हैं, सालों से हम देख रहे हैं, सत्ता बदल जाती है मन का परिवर्तन भी हो जाता है।
9: देखिए पहले
8: ऐसे वेदर फॉक्स तो हर जगह दिखाई देते हैं,
9: मैं
8: ये बात तो नहीं है,
9: मैं साहिल जी आपसे एक बात सीधी तरह बता रहा हूं, बीजेपी को 208 सीटें मिले हैं विधानसभा में, बीजेपी को ना रिजू दत्ता की जरूरत है ना काकुली घोष दोस्तीदार की जरूरत है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आज तक जैसे प्लेटफॉर्म में कह रहा हूं कि मेरे बहुत जान पहचान है दिल्ली या बंगाल के बीजेपी नेताओं के साथ, मैंने किसी को नहीं बोला कि मुझे ज्वाइन करना है, ना उन्होंने बोला है कि तुमको ज्वाइन करवाएंगे। तो ये जो तृणमूल के लोग जो थ्रेट कल्चर से बाहर आने के बाद, परिवर्तन के बाद, वो सांसद हो, विधायक हो, प्रवक्ता हो, जो अपना मुंह खोल रहे हैं, उनको ये स्टैंप लगाया जा रहा है कि ये लोग बीजेपी है, नहीं, किसी को ना बीजेपी लेने की बात की है ना किसी ने बीजेपी में एप्लीकेशन दिया है। पर मजे की बात यह है,
8: स्वयं प्रभा जी आप इसका जवाब दीजिएगा,
9: पर मैं खत्म कर लूं, पर
8: लेकिन रिजू जी मुझे एक बात नहीं समझ में आ रही है, अगर तृणमूल कांग्रेस दोबारा 200 सीट लेकर जीत जाती पश्चिम बंगाल के भीतर तब तो ये आवाजें नहीं निकलती, ये बात का भी ख्याल कहीं ना कहीं रखना होगा। स्वयं प्रभा जी जल्दी से जवाब दीजिए, उसके बाद प्रदीप भंडारी को मुझे पूछना है कि ऐसा बीजेपी में क्या चुंबक है कि चुनाव में जीतने के बाद अचानक लोग उनके तरफ खींचे चले आते हैं, यह भी जरा मुझे उनसे पूछना, लेकिन स्वयं प्रकाश जी जल्दी से आप पहले जवाब दे दीजिएगा।
7: छोटा सा एक जवाब है, रिजू दत्ता से खाली पूछूंगा, बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं, इनसे पूछिए जिनको मानते हैं, जिन इष्ट को देवता को मानते हैं, उनकी कसम खा के बोले कि मैं भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाऊंगा आजीवन। ये सिर्फ एक छोटी सी बात बोल रहे आपके चैनल के सामने, मुझे
9: मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित जो अभी तृणमूल का मतलब ममता बनर्जी से भी ज्यादा बड़ा तृणमूल,
7: मेरी बात का जवाब दो ना,
9: मैं उनको याद दिला देता हूँ कि शुभेंदु अधिकारी बंगाल के मुख्यमंत्री किस पार्टी में थे, उसको उनको अभिषेक बनर्जी क्यों निकाला पार्टी से, दीक्षित प्रवाल किस पार्टी में थे उनको अभिषेक बनर्जी ने क्यों निकाला, तापस राय किस पार्टी में थे उनको अभिषेक बनर्जी ने क्यों निकाला, अरे चोरी के मामले में है,
8: चोरी के मामले, इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल मत करिए, राजनीति में रिश्ते अगर दुखर भी हो जाते हैं तभी एक एक एक आपको डिसेंसी की लेवल रखनी होगी। स्वयं प्रकाश जी प्लीज, आज वो आपके खिलाफ है इसका मतलब ये नहीं, ये भाषा का इस्तेमाल है, लेकिन जो मुझे समझ में आ रहा है, जो हार का ठिकरा है ना, रिजू दत्ता जी एक मिनट जरा उनको उनकी बात खत्म हो जाने दीजिए, उसके बाद में दोबारा आपके पास आऊंगा। स्वयं प्रकाश जी आपकी बात खत्म,
9: आज तक बुलाते हैं आप लोग
7: मेरे, अरे चुप रहा छोटा, तुम्हारा तुम्हारे नीचे टैग
8: है, स्वयं प्रकाश जी आपकी बात खत्म करें, रिजू जी प्लीज आप भी इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जरा उनको शांत करिए, रिजू जी को बोलिए,
7: सुनिए केस है चीटिंग का इनके ऊपर,
9: रास्ते में
7: थाने में चीटिंग का केस है, 25 लाख रुपए का, सुनो ना, 25 लाख रुपए का एक ज्वेलर से ज्वेलरी लेके आया, उसको अभी तक केस नहीं दिया, ये चीटिंग केस
8: आया हुआ उनको समर्थन कर रहे थी, तो पहले आपको भी क्यों नहीं नजर आई, ये भी तो सवाल पूछा जा सकता है, चलिए एक मिनट जरा दोनों को शांत
7: कीजिए,
8: रिजू दत्ता जी को जरा शांत करिए प्लीज, जरा फेडर प्लीज डाउन करिए प्लीज। स्वयं प्रकाश जी सवाल यहां पर जो मुझे समझ में आ रहा है वो ये समझ में आ रहा है, चलिए एक मिनट, लेकिन इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है दिशा मामले में, क्योंकि उनकी सास गिरिबाला को गिरफ्तार कर लिया गया है। गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक ही रही थी, उनका जो बेल एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट कर दिया गया था और उसके बाद सीबीआई की टीम उसके घर में पहले से ही बैठी हुई थी। सीबीआई ने पूछताछ के बाद भोपाल में विशा की सास गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है। इससे पहले ही सीबीआई की टीम उनके घर पर पहुंची थी और भोपाल में तुरंत उनकी गिरफ्तारी हुई। इससे पहले इस मामले में उनके पति की भी गिरफ्तारी हो चुकी है, उनसे पूछताछ हो चुकी है। समर्थ के आरोपी जो समर्थ है, उनके पति है ट्विशा की, उनकी उनकी मां गिरिवाला सिंह, जिन्होंने इससे पहले मीडिया में कुछ बयान दिए थे ट्विशा के खिलाफ, तो सीबीआई उनके घर में पूछताछ करने के लिए पहुंची और उसके बाद उनकी गिरफ्तारी इस मामले में हो चुकी है। दरअसल इससे पहले उनका जो एंटीसिपेटरी बेल है वो रिजेक्ट हुआ था, उसके बाद गिरिवाला सिंह को जो राहत नहीं मिली उससे पहले ही सीबीआई की टीम उनके घर पहुंची थी और पूछताछ के बाद उनकी। अरविंद ओझा इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ रहे हैं। सीबीआई ने ये गिरफ्तारी की है, अटकलें लगाई जा रही थी, साफ ही नजर आ रहा था कि शायद उनकी सास की गिरफ्तारी हो जाएगी। अब मामला कैसे आगे बढ़ेगा इन्वेस्टिगेशन में अरविंद?
10: अभी की जो सबसे बड़ी खबर जो डेवलप आया है वो ये है कि जो गिरिवाला है उनको सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। तकरीबन 6 घंटे से ज्यादा वक्त तक ये लंबी पूछताछ हुई और पूछताछ के बाद कुछ एविडेंस मिले हैं जिसके बाद सीबीआई ने इनको गिरफ्तार किया है। बहुत मुमकिन है कि अब इनको कोर्ट में पेश किया जाएगा। और सुबह की अगर बात करें, जो सुबह बड़ा डेवलपमेंट आया था साहिल, जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उसने जो एंटी सिक्योरिटी बिल थी वो रिजेक्ट कर दी थी, जिसके बाद से ही माना जा रहा था कि गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। और जिस तरह से परिवार ने आरोप लगाए थे और जो FIR भी एक्सेस किया था सीबीआई का आज तक ने, उसमें भी जो लोकल पुलिस में जो FIR थी उसी को सीबीआई ने भी रजिस्टर किया था, जिसमें आरोप लगाए गए थे न सिर्फ समर्थ पर बल्कि जो सास थी गिरिवाला उस पर टॉर्चर करने का, साथ ही साथ 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा जो दहेज है वो मांगने का। तो लगातार ये कटघरे में थी, पहले समर्थ रेच हुआ था और उसके बाद फिर सीबीआई ने इनको गिरफ्तार कर लिया है और कुछ देर बाद इनको अदालत में पेश किया जाएगा साहिल।
8: इससे पहले समर्थ सिंह की गिरफ्तारी हो चुकी है, हालांकि उन्होंने अपने आप को खुद ही अदालत के सामने पेश किया था और उनके बाद उसकी समर्थ सिंह की भी पूछताछ हो चुकी है और उसके बाद गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी। गिरिवाला सिंह पर क्या, किस तरीके से सीबीआई इस पूरे मामले को देख रही है? क्योंकि इससे पहले गिरिवाला सिंह की तरफ से जो बयान दिए गए थे ट्विशा के खिलाफ उनके उनके बारे में, उसका भी उसको भी काफी क्रिटिसाइज किया गया था। समर्थ से पूछताछ के बाद गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी हो रही है। अरविंद
10: की बात करें, जैसा साहिल आपने बताया कि समर्थ कोर्ट में सरेंडर करने के लिए गया था, लेकिन उसके पहले ही वहां पुलिस पहुंची, जो SIT की टीम थी उसको गिरफ्तार किया गया। उसके बाद चूंकि मध्य प्रदेश सरकार ने सीबीआई के लिए जो केंद्र सरकार उसको और जो सीबीआई उसको गुजारिश की थी, उसके बाद सीबीआई ने इस मामले में जो लोकल पुलिस ने केस रजिस्टर्ड किया था उसको रीरजिस्टर्ड किया। उसके बाद फिर समर्थ से लंबी पूछताछ हुई और उसके बाद चूंकि जो गिरिवाला है उनकी बात करें तो उन्हें राहत थी मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से, लेकिन मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जो एंटी सिटपरी बिल था वो रिजेक्ट कर दिया। उसके बाद ही ये माना जा रहा था कि किसी भी वक्त इनकी गिरफ्तारी हो सकती है और गिरफ्तारी हुई। चूंकि जैसा आपने कहा कि जब लगातार ये बयान भी दे रहे
8: हैं, गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी के पहले जो बेल एप्लीकेशन कोर्ट में किया गया था सीबीआई ने उसका पुरजोर विरोध किया और 4 चीजें सीबीआई ने अदालत के सामने रखी। उसमें उनका कहना था कि डाउरी हैरेसमेंट का मामला उस पे था और उसके लिए उसको हैरेस किया जा रहा था ट्विशा को, उसके साथ साथ प्रेगनेंसी का फोर्सफुली टर्मिनेशन किया गया और उसके साथ साथ गुस्से में जिस तरीके से वो बात की, और उसके साथ साथ ये भी सीबीआई का ये कह रहा था कि जब पूछताछ हुई थी गिरिवाला सिंह से, उस पूछताछ के बीच में वो एक्सप्लेन नहीं कर पाई कि ट्विशा के शरीर पर जो इंजुरीज थी, जख्म के निशान थे, वो कैसे आए, वो भी नहीं बता पाए थे। उसके बाद अदालत ने उस बेल एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया था और अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है। तो मामला आगे बढ़ाएंगे, हमारे ओरिजिनल डिबेट की तरफ हम चलते हैं, लेकिन ये बहुत बड़ी खबर भोपाल से, क्योंकि कई दिनों से पूरे देश भर में ट्विशा की मौत का मामला चर्चा में है। प्रदीप भंडारी, वही सवाल आपसे कि आप में सत्ता का ऐसा क्या ग्लू है, क्या चुंबक है कि देखिए प्रवक्ता भी आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं और नेता भी आपके तरफ खींचे चले आ रहे हैं, काकोली दस्तीदार जैसे ही स्टेटमेंट करती है उनको तुरंत सेंट्रल एजेंसी का प्रोटेक्शन भी वहां पर मिल जाता है, तो बीजेपी का क्या प्लान है? अभी 208 से पेट नहीं भरे और भी चाहिए लोग आपको?
11: देखिए साहिल भाई, आज तृणमूल कांग्रेस के स्वयं प्रकाश पुरोहित और टीएमसी और कई लोग जो है ईद बना रहे हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों लोग जो है तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं। जरा ये वीडियो देखिए, 2025 में रेड रोड कलकत्ता के अंदर सड़क पर नमाज चल रही थी, आज 2026 के अंदर कोई सड़क पर नमाज नहीं चल रही। ये फोटो देखिए, बंगाल के मुख्यमंत्री इस्कॉन के अंदर पूजा कर रहे हैं और ये ममता बनर्जी जो है वो सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक पॉलिटिक्स कर रही है। परिवर्तन देखिए, जो कल तक महादेव का अपमान कर रहे थे, आज वो उनको चुनाव के बाद याद आया है कि वो हिंदू है। याद करिए, जो पश्चिम बंगाल के अंदर जमीन नहीं दे रहे थे, आज कूचबिहार से लेकर हर जिले के अंदर, भले कूचबिहार में 22 एकड़ हो, भले वो दक्षिण दिनाजपुर के अंदर 20 एकड़ हो, हर जिले के अंदर जो लैंड है घुसबैठियों को रोकने के लिए वो पश्चिम बंगाल के अंदर बीएसएफ को दे दिया है। याद करिए, वो विजुअल जो आज तक ने चलाए थे जिसके अंदर घुसबैठी अपने आप डर डर के बांग्लादेश की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें पश्चिम बंगाल के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आ गई है। तो जब पश्चिम बंगाल से डर हार चुका
8: है, सवाल मेरा इस बात पर है कि तृणमूल कांग्रेस से डर डर कर जो नेता बाहर निकल रहे हैं उनके बारे में सवाल है।
11: आ रहा हूं
8: प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी
11: सुनिए तो सही।
8: जैसे घुसपैठी आप कह रहे हैं ना कि वो सीमा पर मालदा मुर्शिदाबाद उन इलाकों में हम देख रहे हैं कि बंगाल की सीमा क्रॉस करके वहां जा रहे हैं, उसी तरीके से राजनीतिक सीमा भी क्रॉस हो रही है, उसका जरा जवाब दीजिए।
11: साहिल जी अभी कोई सुनिए तो सही, आ रहा हूं, मुझे भूमिका बनाने के बाद पॉइंट पाने दीजिए। तो जब ये डर डर के जब घुसपैठिए जा रहे, तो पूरे पश्चिम बंगाल से भय का वातावरण हटा है। तो जब ये भय का वातावरण हटा है तो तृणमूल कांग्रेस के खुद के नेताओं के अंदर जो भय था ममता और बाइपो का, वो भी हटा है। तो भले वो काकुली दस्तार हो जो लेटर लिख के बता रही है कि आरजी का रेप और मर्डर के अंदर ममता बनर्जी ने किस तरीके से पूरे के पूरे इन्वेस्टिगेशन को प्रभावित किया, या वो रिजु दत्ता जैसे पॉलिटिकल एनालिस्ट हो गए जो पिछली बार अभिषेक बनर्जी और ममता बनर्जी के डर के कारण जो है इस तरीके की गालियां बकते थे, इस तरीके की गंदी बातें करते थे, उनकी खुद की इच्छा नहीं थी। जब जनता जागी तो ये लोग भी जागे, और अभी तो शुरुआत है कहते हो साहिल भाई, आगे आगे देखिए।
8: आपको कैसे मालूम उनकी इच्छा नहीं थी?
11: हमारी बात है ही नहीं
8: प्रदीप भंडारी,
11: पश्चिम बंगाल की जनता
8: आपको
11: की
8: कैसे मालूम उनकी इच्छा नहीं थी? आपको कैसे मालूम उनकी इच्छा नहीं थी?
11: क्योंकि जब मैं जवाब देता हूं, मैं क्योंकि ये तो स्वाभाविक है कि पश्चिम बंगाल के अंदर तृणमूल कांग्रेस मतलब बाइको और ममता बनर्जी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ये तो सभी जानते हैं। इसीलिए जाके देखिए, स्वयं प्रकाश पुरोहित ने आपके शो में बोलना शुरू किया, एक रेजिग्नेशन हो गया, अब स्वयं प्रकाश पुरोहित और बोलेंगे दूसरा रेजिग्नेशन हो जाएगा। जितना ज्यादा तृणमूल कांग्रेस के लोग ममता बनर्जी और बाइको के कहने पर बोलेंगे, उतने ज्यादा लोग तृणमूल कांग्रेस छोड़ के जाएंगे, क्योंकि आज सब जान चुके हैं कि जो तृणमूल कांग्रेस का झंडा लेके पश्चिम बंगाल की सड़क पर घूमता है, या तो उसको जनता अंडे मारती है, या उसको फ्लाइट के अंदर चोर चोर कहती है, या कहते हैं कि भ्रष्टीकरण तुष्टीकरण करने वाले हैं। तो आज जनता इनके खिलाफ है और कोई इस तरीके का अपमान नहीं झेलना चाहता है। भारतीय जनता पार्टी की बात नहीं, पश्चिम बंगाल की जनता तृणमूल कांग्रेस का जो आतंक था, जो तृणमूल कांग्रेस के तुष्टीकरण था, उससे उसको आजादी मिली है। 1947 के अंदर देश आजाद पॉलिटिकली हुआ था, 2014 के अंदर सिविलाइजेशनली देश को रेनेसेंस मिली थी, पश्चिम बंगाल को 2026 मिली है। और इसका सवाल का जवाब आपको बताऊं, अगर ये मेलोडी खाएंगे ना ये स्वयं प्रकाश पुरोहित, तो क्या पता उनका भी जो जीवन है उनका भी दिमाग ठीक हो जाए, और आज तृणमूल कांग्रेस में, क्या पता कल ये तृणमूल कांग्रेस में ना रहे। ये तो सब ऐसी तरीके से बोल रहे हैं विकेने के लिए,
8: सत्ता की मेलोडी ऐसी होती है
11: कि व्हाट्सएप के अंदर अभिषेक बनर्जी और
8: प्रदीप भंडारी जी
11: ने इनको धमका दिया।
8: प्रदीप भंडारी जी, प्रदीप भंडारी,
11: सत्ता नहीं,
8: प्रदीप भंडारी, मैंने जिस दिन से पत्रकारिता देखी है मैंने इतना देखा है कि सत्ता की मेलोडी ऐसी होती है ना कि हर किसी को मन करता है कि उसको चख के देखना चाहिए। वो मेलोडी बंद हो जाती है तो अपने आप जो दूसरे लोग है ना वो भी मेलोडी मांगने आ जाते हैं। रिजु दत्ता जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं जल्दी से आप बोल दीजिएगा।
11: जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी घुसपैठियों ने 10 सेकंड दीजिए, जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी घुसपैठियों के खिलाफ की बात करते थे, 1996 भोपाल सेशन, जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी आर्टिकल 370 हटाने की बात करते, जब हम सत्ता में नहीं थे तब भी राम मंदिर बनने की बात करते थे। भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से
8: ये फर्क है, बीजेपी सत्ता में नहीं होती है तब भी उनके नेता छोड़कर इस तरीके से कूदना शुरू नहीं करते हैं। ऐसा क्या है कि तृणमूल कांग्रेस का ताना बाना एक चुनाव में हार के बाद अचानक कहीं ना कहीं फैलना शुरू हो गया है? ऐसा क्या हो गया?
12: मैं बताता हूं,
8: हमको तो लगता था कि भाई तृणमूल कांग्रेस संघर्ष से आई हुई पार्टी है, लेफ्ट के खिलाफ तो एकदम मजबूत होगा ताना बाना।
12: देखिए,
11: अरे क्या संघर्ष, कम्युनिस्टों के गुंडों को तृणमूल कांग्रेस में करके अपनी पार्टी रखा, कांग्रेस को तोड़कर ममता बनर्जी ने अपने पार्टी बनाई, क्या संघर्ष है भैया? प्राइवेट
8: ऐसा मत करिए, अभी भी उनकी पार्टी है, उनको बोलने का मौका तो मिलना चाहिए ना।
11: प्लीज, अरे आज ये बोल रहे हैं, एक हफ्ते बाद नहीं बोल पाएंगे, देखो आप नोट करो।
7: सुनो ना, मेलो नहीं खाओ,
11: अरे हम मेलो नहीं खाएंगे, हटाएंगे भी पीटेंगे,
7: खाओगे और जूते पॉलिश करो ट्रंप के,
8: ठीक है,
7: उसके जूते पॉलिश करो, जूते पॉलिश करो ट्रंप, डोनाल्ड ट्रंप चाचा चाचा ट्रंप के बारे में थोड़ा सोचो,
11: अरे तुम जाओ चाचा बोलेंगे तो बैठ के चुप जाओ, और बाइक को निकलने
8: भटकाइए मत प्लीज, प्रदीप प्रदीप प्लीज प्रदीप प्लीज, उनको अरे उनको सवाल पूछा जवाब तो दे दो प्लीज प्रदीप प्लीज,
7: ट्विटर हैंडल को बंद करवा दिया, जैन जी जब रस्ते पे उतरेगी प्रदीप भंडारी और रिजू जत्ता जैसे लोग फिर इधर उधर भागेंगे, देखिए देश पे बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, इनको पता नहीं है, अरे चुप रहो ना, अरे चुप रहो ना, अरे नाम
8: प्रदीप भंडारी, प्रदीप भंडारी प्लीज, दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिए,
7: सुन लो,
8: दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिए,
7: देश के अंदर
8: स्वयं प्रकाश जी जल्दी से जवाब फिर प्रश्न आचार्य जी,
7: ये ऐसे ही करेंगे, ये हिंदू मुसलमान से इन्होंने
8: प्रदीप भंडारी,
7: इन्होंने हिंदू मुसलमान से शुरू किया, मगर देश की असली जो
8: स्वयं प्रकाश जी
7: उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं है, विपक्षी पार्टियों को तोड़ना है, शरद पवार की पार्टी को तोड़ा महाराष्ट्र के अंदर में, तोड़ा ना इन्होंने बंगाल के अंदर में, देखिए प्रलोभन दे करके, और सत्ता सुनिए, 3 महीने के लिए ईडी सीबीआई दे दीजिए हमको, तुम्हारे जितने नेता है सबको डाल देंगे जेल में या भाग जाएंगे देश छोड़ के, 3 महीने के लिए दीजिए ईडी सीबीआई, इंस्टीट्यूशन लेकर खेल रहे हो, इंस्टीट्यूशन को लेकर खेल रहे हो,
8: क्या
7: इंस्टीट्यूशन को इंस्टीट्यूशन के बिना तुम्हारा इंस्टीट्यूशन, अरे
8: दोनों को शांत करिएगा, दोनों को शांत करिए, दोनों को शांत करिए प्लीज, प्रसून आचार्य, जैसे हमने बंगाल के चुनावी रक्त चरित्र पर चर्चा की थी, क्या उसी तरीके से बंगाल का राजनीतिक चरित्र भी इस तरीके से है कि सत्ता बदलती है तो अपने आप लोगों का जाना भी शुरू हो जाता है,
12: असल में
8: माहौल अचानक खत्म हो जाता है, लेफ्ट के लोग टीएमसी में, टीएमसी के लोग बीजेपी में,
12: एक चीज बताया काकुली को दोस्तीदार का, कल्याण बनर्जी जो बोला है नारदा स्टिंग ऑपरेशन का जो चार्जशीट का बारे में बताया, वो बात थोड़ा सही है, लेकिन वो नारदा केस में तो शुभेंदु अधिकारी का भी नाम है, सौगत और राय का भी नाम है जो अभी एमपी है, लेकिन मामला दूसरा है, मामला है कलकत्ता का एसएसकेएम हॉस्पिटल जो है सरकारी पी पोस्ट ग्रेजुएट हॉस्पिटल है, वहां एक आईवीएफ एक पीपीपी पार्टनरशिप में चलता है जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक, वो घोष दोस्तीदार का साथ गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का एक पीपीपी मॉडल है, अभी सरकार बदल गया, जब ममता बनर्जी उसको उद्घाटन किया था और घोष दोस्तीदार जो इनफर्टिलिटी क्लिनिक और सरकारी हॉस्पिटल का जो पीपीपी मॉडल है वो तो अभी चलने वाला है,
8: इंडिविजुअल केसेस छोड़ दीजिए ना प्रसून आचार्य जी, इंडिविजुअल केसेस छोड़ दीजिए ना, हर किसी का अपना कारण होता है, मैं ये देख रहा हूं पार्टी के भीतर कि बंगाल के भीतर जब कांग्रेस सत्ता में थी उसके बाद लेफ्ट सत्ते में आई

0: टीएमसी में गया था, लेकिन इस बार ऐसा है कई करीबन 10-12 एमपी जो है बीजेपी के साथ संपर्क में है, ये बात सही है, और राज्यसभा का भी 2-3 आदमी बीजेपी के संपर्क में है, क्योंकि ये लोग कोई पॉलिटिकल और इडियोलॉजिकल था नहीं, ये लोग को ममता बनर्जी लेके आया, एमपी बनाया, और इसके बाद अभी जो सिचुएशन जो है ममता बनर्जी का पार्टी का करप्शन सामने आया और कई सारे लोगों के ऊपर केस बनने जा रहा है, अभी जो शांतनु
1: ठीक
0: सेन
1: है
0: के बता रहा है उसका
1: आशुतोष,
0: खिलाफ भी कई
1: क्या क्या
0: केस है।
1: चुनावी हार के बाद रीजनल पार्टियों का पॉलिटिकल भविष्य खतरे में पड़ जाता है? और ये हमने कई बार देखा है कि या तो राज्य में सत्ता चाहिए या तो केंद्र में सत्ता चाहिए, उसी के तर्ज पर रीजनल पार्टी चल सकती है। क्या टीएमसी भी इसी तरीके से खत्म हो जाएगी? अभी हम देख रहे थे कि बीजेपी के एमपी बोलना शुरू कर चुके हैं कि बस ऊपर से आदेश दीजिएगा, खत्म हो जाएगी टीएमसी।
0: साहिल, आपने एक चीज बहुत अच्छी अच्छी बताई, आपने कहा कि पहले लेफ्ट था, लेफ्ट के बाद वो कांग्रेस हो गया, कांग्रेस के बाद ममता बनर्जी और अब बीजेपी, यानी जो जो काडर है वो पहले लेफ्ट से कांग्रेस की ममता ममता के साथ अब बीजेपी की तरफ मूव करता हुआ दिखाई पड़ रहा है, यानी इसका मतलब ये कि एक खास तबका है जो दरअसल सत्ता के साथ चलता है, जैसे ही वो पार्टी हारती है और लोगों को लगता है कि अब इस पार्टी के लिए दिक्कत पैदा हो गई तो वो बड़े आराम से वहां से निकल के दूसरी पार्टी की तरफ चला जाता है और कुछ समय तक इंडिपेंडेंट बना रहता है। देखिए इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है, जैसे अगर आप काकोली दस्तेदार का एग्जाम्पल लीजिए, 2014 का जो नारदा स्टिंग ऑपरेशन था उसमें तो फंसी थी, 5 लाख रुपए उन्होंने लिए थे, उन्होंने कबूला था। 2016 में यह मामला पब्लिक में हुआ था, लेकिन 2017 में सीबीआई ने उनको उनको उनकी उनकी गवाही ली थी और उन्होंने एडमिट किया था कि उन्होंने पैसे एक्सेप्ट किए, कि फिर उन्होंने यह भी कहा कि जिन्होंने हमें पैसे दिए थे हमने उसको पैसे वापस कर दिए। 2019 में उनका वॉयस टेस्ट भी हुआ था। अब दिक्कत क्या है कि अगर मान लीजिए सीबीआई इस पूरे मामले में आगे की कार्रवाई इसलिए नहीं कर पाए, चाहे वो शुभेंदु अधिकारी हो या मुकुल रॉय हो, क्योंकि उनको स्पीकर की परमिशन नहीं मिली, और एमपी के खिलाफ कार्रवाई करने के पहले आपके स्पीकर की परमिशन चाहिए होती, अभी तक शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ वो परमिशन नहीं मिली है, जबकि 6 अप्रैल 2019 को स्पीकर से शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ परमिशन मांगी गई थी। अगर अब अगर काकुली दस्तदार को ये लगता है कि अगर टीएमसी में बनी रही और अगर स्पीकर की परमिशन मिल गई तो वो भी उसी तरीके से गिरफ्तार हो सकती है जैसे कि सुल्तान अहमद
1: नहीं,
0: गिरफ्तार
1: क्या
0: हुए
1: ये
0: या
1: इतना
0: फिर फरीद।
1: सिंपलिसिटी से इस्तेमाल कर सकते हैं? मैं इस बात से इनकार नहीं कर रहा हूं कि कई बार अलग अलग एजेंसियों का दबाव भी होता है। मैंने महाराष्ट्र में भी उस बात को देखा हुआ है, देश भर में अलग अलग एजेंसी को देखा, और आज से नहीं पहले से देखा हुआ है। लेकिन क्या इसका इतना सिंप्लीफिकेशन रहेगा क्या? क्योंकि देखिए ये भी है, देखिए हम आंकड़ा चला रहे हैं, 36 दलों की रीजनल फोर्सेस की जो आय है वो 1,134 करोड़ रुपए से कम हुई है, यानी करीब करीब 52% उनको मिलने वाला चंदा घट चुका है जैसे ही वो सत्ता से हट जाते हैं। ये भी तो कहीं ना कहीं एक कारण होता है ना, सत्ता
0: नहीं,
1: से
0: बिल्कुल
1: हटना,
0: देखिए
1: रीजनल उसके बाद रीजनल पार्टी को अपना फोर्स बनाए रखना मुश्किल हो जाता है।
0: देखिए साहिल, असली बात क्या होती है, और असली बात यह है, दरअसल ये सब चीजें जो मैं कह रहा हूं वो तो है, असली बात क्या है कि क्षेत्रीय पार्टियों में अगर एक दो पार्टी को छोड़ दे, किसी के पास अपनी कोई विचारधारा नहीं है। आप डीएमके के बारे में कह सकते हो उसकी अपनी विचारधारा, ममता बनर्जी की कौन सी विचारधारा है, लालू प्रसाद यादव की कौन सी विचारधारा है, या फिर आपकी तृणमूल का या आपकी समाजवादी पार्टी कौन सी विचारधारा है, एनसीपी की कौन सी विचारधारा है, उद्धव ठाकरे कौन सी विचारधारा है, इन सब पार्टियों के पास उस तरीके से विचारधारा का गोंद नहीं है जिसकी वजह से वो एक दूसरे से चिपके रहते। भारतीय जनता पार्टी के एक मामले में मैं तारीफ करूंगा, वो पार्टी सत्ता में रहे ना रहे उसके विधायक उसकी पार्टी नहीं टूटती, क्यों नहीं टूटती, क्योंकि उसके साथ विचारधारा का गोंद लगा हुआ है। लेकिन बाकी पार्टियों के साथ दिक्कत क्या है कि उनका वो कमिटमेंट पार्टी के प्रति या पार्टी के आइडियोलॉजी के प्रति नहीं होती, इसलिए और
1: स्वयं
0: खासतौर
1: प्रकाश
0: पर
1: जी,
0: क्षेत्रीय पार्टियां,
1: देखिए कैसी
0: उनकी
1: पार्टी आपने
0: दौड़
1: बनाई है,
0: सिर्फ और सिर्फ
1: क्या
0: सत्ता और कुर्सी
1: विचारधारा
0: तक
1: आशुतोष
0: होती
1: भी
0: है।
1: पूछ रहे हैं।
2: नहीं, देखिए आशुतोष पूछ रहे हैं, सही है, इनकी बात से मैं असहमत पूरी तरह नहीं हूं, मगर देखिए पश्चिम बंगाल में वामपंथी शासन को ममता बनर्जी ने उखाड़ कर फेंका था। लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, जितने अटल बिहारी वाजपेयी, ये सारे नेता ममता बनर्जी के घर पे गए, मगर जिस तरह से शीशा लेदर करने की कोशिश की गई छोटे छोटे नेताओं द्वारा ममता बनर्जी के बारे में, आज तक एक भी ऐसा कोई केस ममता बनर्जी के खिलाफ ही नहीं ला पाए। हाँ, हम ये बोलते हैं हमारे कुछ नेता जिन्होंने गड़बड़ियां की उनके खिलाफ कार्रवाई होती गई और उनके खिलाफ आगे भी होगी, जो गलत करे उसे जेल में डालो ना, भाजपा में क्यों लेते हो। रिजु जत्ता अगर चीटिंग केस खाया हुआ है तो इसको आप भारतीय जनता पार्टी या
1: प्रदीप
2: पॉलिटिकल
1: भंडारी,
2: एनालिस्ट मत बनाइए,
1: ठीक है
2: इसको
1: प्रदीप
2: डालिए
1: भंडारी,
2: जेल के अंदर में, आप भाजपा में मत लीजिए, वासिक मसीन में
1: ये
2: मत लीजिए,
1: इनकमिंग जारी
2: हम
1: रहेगा
2: देश की
1: क्या?
2: जनता।
1: रिजु दत्ता जल्दी से
2: हाँ
1: 20 सेकंड आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं तो उसके बाद प्रदीप भंडारी।
3: मैं सिर्फ इतना ऐड करना चाहता हूँ आपके

0: दर्शकों को याद दिला दूं कि ममता बनर्जी जी खुद अटल बिहारी जी के सरकार के मंत्री रहे हैं, और ममता बनर्जी जी खुद पहले कह चुके हैं बीजेपी इज आवर नेचुरल एलाई। तो इतनी बड़ी बड़ी बातें ये ई ग्रेड प्रवक्ता ना करें। और मुझे
1: ठीक है,
0: व्यक्तिगत
1: प्रदीप
0: तौर पर
1: भंडारी,
0: प्रदीप के लिए
1: आखिर
0: बहुत
1: में
0: खराब लगता है, मेरे को
1: कितने
0: व्यक्तिगत
1: साल
0: तौर पर
1: चाहिए
0: प्रदीप के
1: आपको?
0: लिए खराब
1: अरे हो
0: लगता
1: गया हो
0: है,
1: गया हो गया हो गया हो
0: क्योंकि
1: गया, बस बस बस बस,
0: क्योंकि
1: इतना ही
0: इतने
1: टाइम
0: दिन
1: दीजिएगा
0: मेरा
1: प्रदीप
0: प्रदीप
1: भंडारी,
0: लगा ही होता
1: प्रदीप
0: है,
1: भंडारी
0: अभी
1: इतना ही
0: कुछ
1: मिलेगा
0: महीने
1: आपको,
0: उनको
1: लोगों
0: ऐसे लोगों को झेलना पड़ेगा,
1: इतना ही मिलेगा,
0: झेलना
1: झेलना
0: पड़ेगा।
1: पड़ेगा, क्या
0: प्रदीप
1: हो रहा है
0: भंडारी चलिए
1: ऐसे।
0: जल्दी से,
1: मैं कहता
0: आखिरी
1: हूं,
0: 20 सेकंड।
1: मैं स्वयं प्रकाश पुरोहित की एडवाइस को मानता हूं कि जो भ्रष्ट है उसको जाना चाहिए, और बिल्कुल अभिषेक बैनर्जी के खिलाफ कार्रवाई होगी, टेंशन मत लो। तुम्हारे जो दिल की अंदर की इच्छा है स्वयं प्रकाश पुरोहित, उसको कानूनी रूप से पूरा किया जाएगा, टेंशन मत
0: अरे
1: लो। तो
0: दिल
1: आज
0: दिल
1: मैं स्वागत करता हूं कि
0: चौधरी
1: टीएमसी का
0: साहब,
1: प्रवक्ता
0: प्रदीप
1: खुद
0: भंडारी
1: चाहता
0: ठीक है
1: है कि
0: चलिए,
1: अभिषेक बैनर्जी के
0: टीएमसी
1: खिलाफ
0: के प्रवक्ता
1: कार्रवाई हो। इस सब
0: अभी तो
1: सर,
0: शुरुआत है, अभी तो शुरुआत है, 1 महीना भी नहीं हुआ है बंगाल के भीतर चुनाव खत्म होने का, और आमतौर पर जिसका जिक्र आशुतोष भी यहाँ पर कर रहे थे कि रीजनल पार्टियों को अपने कुनबे को बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, इसीलिए टीएमसी पर नजर रखना जरूरी होगा कि आगे चलकर क्या वो अपनी पार्टी को साथ में रख पाती है या नहीं। फिलहाल लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद खबरें जारी रहेंगी, आप देखते रहिए।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
10: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
11: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
12: धनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
13: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
14: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

0: इन एसोसिएशन विद
1: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े, समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
0: हिंट, बड़े आराम से
2: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
3: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
4: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
0: विमल, बोलो जुबा केसरी।
5: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।

0: ईरान से जंग में ट्रंप ने अब तक होर्मुज की शर्त रखी थी, यूरेनियम की शर्त रखी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की शर्त रखी थी, बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म करने की शर्त रखी थी। लेकिन अब ईरान को तबाही से रोकने के लिए ट्रंप ने अरब मुल्कों के सामने एक नई पेशकश रख दी है और कहा है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड पर मुस्लिम मुल्क दस्तखत नहीं करते हैं तो ईरान से डील भी फंस सकती है।
1: If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great, great countries, bold countries. And it's turned out to be so good, so effective. And so we're, you know, requesting strongly that they join. It'll be great. It'd be great for Saudi Arabia. It'd be great.
0: ट्रंप ने 23 मई को भी अरब मुल्कों के साथ हुई उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान सऊदी, कतर, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों को कहा था कि वो इसराइल को मान्यता देने वाले अब्राहम अकॉर्ड को मंजूर करें। सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं कि जब ट्रंप ने ऐसी पेशकश रखी थी तो फोन लाइन पर सन्नाटा छा गया। तब मजाक में ट्रंप ने पूछा कि आप लोग लाइन पर हैं भी या नहीं। दरअसल ट्रंप के इस ऐलान से पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एक देश को तौर पर मान्यता नहीं दी है। हालांकि इससे पहले 1979 में मिस्र, 1994 में जॉर्डन और 2020 में बहरीन और यूएई ने इसराइल को मान्यता देते हुए अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया है। अब अमेरिका की कोशिश है कि बाकी के अरब मुल्क और पाकिस्तान भी इसराइल के सहअस्तित्व को मान्यता दें, वरना इसराइल पर मुस्लिम मुल्कों की ओर से हमले का खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।
2: CBSE students right now and their parents are anxious, they've been traumatized, and the Prime Minister of India has nothing to say. Good morning to all CBSE students and their parents. Unbelievable details are emerging about the exam you just took. COEMT, the company that did the OSM for your exam, was actually called Globarina. Globarina has carried out this scam twice before in Telangana, once in the board exam in Telangana in 2019, and after that again in Telangana in 2023. The same OSM-based errors were responsible for the death by suicide of 23 young Indians in Telangana. This was all public information. It was known to everybody. And yet, for some hidden reason, the CBSE chose the same company again. It took us 30 seconds to figure out that this company was earlier called something else. I'm absolutely certain that the people in CBSE and the government of India were aware of this company's background. Now I want every single CBSE student and their parents to share this video and ask the following questions to the government and the Prime Minister.
3: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
3: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर ड्यूरेबल पाइप्स फिटिंग्स एंड टैंक्स अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस
5: You use AI every day, but what if you built what it runs on? At WGU, you'll earn your software engineering degree online, on your schedule, and packed with certifications from AWS, CompTIA, and more. With training in Java or C#, hands-on experience, and a focus on AI-powered systems, you won't just learn to code, you'll learn to build what's next. Learn more at wgu.edu.
6: Hop on board and settle in for an easygoing cruise with sailing on TuneIn. Let the breeze roll in and the rhythm carry you along. Enjoy yacht rock classics from artists like Hall & Oates, oh, yeah, you make my dreams come. Steely Dan, back, Loggins and Messina, even though we ain't got money. And much more. Only smooth sailing ahead with songs that help you get away. Just search Sailing. Tell your device to play Sailing on TuneIn.
7: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
8: पैसा बाजार सीपीएल में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1 लाख तक जीत सकते हैं।
9: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो, जीतो।
10: लखनऊ में तो शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर प्रशासन की तरफ से ऐसा ग्रीन शेड बना दिया गया है, हरा कपड़ा लगा है ताकि रेड लाइट में खड़े लोग गर्मी में झुलसने से बच जाएं। इस पर बाकायदा पानी का छिड़काव भी हो रहा है,
11: क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं। ये ग्रीन शेड्स क्या हैं? आप पहले देखें क्या हैं। ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है, यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा, पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है, यानी कि रेड लाइट होती है। तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट 2 मिनट की अगर है तो 2 मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है, ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है। तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो। तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा, और इतना ही नहीं, इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इसमें स्प्रिंकल करेगा। नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है। अब आपको मैं दिखाऊं, यहां पर इस चीज को देखें, एक वाटर टैंकर लगा गया है। इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है, पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन व्हाइट पाइप्स के जरिए, जो सफेद पाइप बने हुए हैं इनके जरिए ऊपर जाएगा, और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको व्हाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं, एक नल रूपी स्वरूप छोटे से, उनसे पानी की बौछार, यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा।
10: इस भीषण गर्मी में लोग कब तक झुलसते रहेंगे, कब उन्हें राहत मिलेगी, हर किसी का यही सवाल है। ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से एक खुशखबरी आई है, और खबर यह है कि आज से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है, क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो हिमालयी राज्यों को हिट करेगा और उससे बारिश होगी। मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर होने वाली इस बारिश से तापमान में 8 से 10 डिग्री की कमी आएगी। इसके साथ ही इन पहाड़ी राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है।
12: How would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on?
1: Well, I think we're doing very well. I think they're starting to give us the things that they have to give us. And if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
12: Is there a time frame in your mind?
1: What?
12: Is there a time frame in your mind for...
1: I mean, it happens quickly. The problem is every time I mention a time frame, for instance, I see... You know, we've been doing this for a few months. Vietnam lasted 19 years. Korea lasted 8 years. Afghanistan lasted many years. They were all many, many years, and we're into it for a few months, and...
13: Considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
13: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
1: no,
13: that?
1: No, I wouldn't be comfortable.
14: Mr. President?
1: That would not make me comfortable.
15: कोर्ट से हमें उम्मीद थी, हमारी चिंता किस बात की थी, और आप लोग भी वाकिफ हैं, आज भी लाखों लोग बंगाल में बाहर हैं, महज चंद सौ लोगों के हक में उनका इंक्लूजन हुआ। हमारी इंक्लूजन के बदले एक्सक्लूजन को लेकर के हमारा केंद्रीय सवाल था। हमने इलेक्शन कमीशन के अधिकार को चुनौती नहीं दी थी। खैर, अब माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह कहा है तो डिटेल देखते हैं।
14: पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहें ईवीएम खराब है, उसके बाद कहें एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं, अब सुप्रीम कोर्ट ने भी मोहर लगा दी, अब तो कोई ना कोई बहाना और ढूंढेंगे।
16: अब क्या ढूंढ सकते हैं
14: भाई, अब विरोधीन के ढूंढे के जमाना, बहुत कुछ ढूंढ सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं।

मिडिल क्लास की पूरी दुनिया एक ही गणित के इर्द गिर्द घूमती है और वो है घर का बजट। कभी महंगाई की मार इस बजट को बिगाड़ देती है तो कभी बैंक की किश्तों का बोझ। पिछले कुछ समय से भले ही ब्याज दरें थमी हुई थी लेकिन अब बाजार की अंदरूनी हलचल चिंता का माहौल पैदा करने लगी है। पश्चिम एशिया में चल रहे तनाव ने दुनिया को एक ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से बैंक की किश्तें सस्ती होने की जगह महंगी होने का डर सताने लगा है। बाजार के ताजा हालात इशारा कर रहे हैं कि खाड़ी देशों के संकट की वजह से बढ़ती महंगाई आरबीआई की नींद उड़ा सकती है। अंदेशा है कि रिजर्व बैंक इस साल के आखिर तक ब्याज दरें बढ़ाने का फैसला ले सकता है। जिस तरह से मार्च के बाद अप्रैल में भी महंगाई दर में इजाफा हुआ है वो नीति निर्माताओं के लिए चिंता की बड़ी वजह है। अप्रैल में रिटेल महंगाई दर बढ़कर 3.48% पर पहुंच गई जो पिछले एक साल में सबसे ज्यादा है। यानी जो लोग उम्मीद लगाए बैठे थे कि घर या गाड़ी का लोन जल्द सस्ता होगा उनके लिए फिलहाल अच्छी खबर नहीं है। हालांकि अगले महीने होने वाली मॉनेटरी पॉलिसी बैठक में तो उम्मीद है कि ब्याज दरों को स्थिर रखा जाएगा। आरबीआई ने पिछले साल फरवरी से दिसंबर तक ब्याज दरों में 0.25% की कटौती की थी जिससे रेट घटकर 0.25% पर आ गए थे। लेकिन इस साल की दोनों बैठकों में रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया गया है। लेकिन अब हवा बदल रही है। बाजार की गहराई में झांके तो पता चलता है कि आप जेब पर पड़ने वाला बोझ सरकारी अनुमान से कहीं ज्यादा होने वाला है। दरअसल अल नीनो की वजह से खेती और खाने पीने के सामान की सप्लाई बिगड़ने का जोखिम है। रुपये की गिरती कीमत और महंगा कच्चा तेल आग में घी का काम कर रहे हैं। ऐसे में आशंका है कि आने वाले वक्त में रेपो रेट में इजाफा हो सकता है। बाजार का एक बड़ा हिस्सा मान रहा है कि 2026 की दूसरी छमाही के दौरान दो बार ब्याज दरें बढ़ाई जा सकती हैं। इसका सीधा मतलब है कि आपकी ईएमआई का बोझ कम होने की जगह और ज्यादा बढ़ने वाला है। हालांकि एक राहत की बात ये भी है कि आरबीआई तब तक कड़े कदम नहीं उठाएगा जब तक महंगाई 6% की लक्ष्मण रेखा को पार नहीं कर जाती। 5 जून को होने वाली अगली मीटिंग में शायद दरों में कोई बदलाव नहीं होगा लेकिन आने वाले समय के लिए खतरे की घंटी बज चुकी है। वजह साफ है, जब तक ग्लोबल हालात नहीं सुधरते तब तक आम आदमी की महंगी किश्तों और बढ़ती कीमतों से राहत मिलना मुश्किल है। आज तक ब्यूरो।

0: तो दंगल में मेरे साथ बस इतना ही, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे हल्ला बोल के साथ। आप देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान। मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा। कहा आला कमान की इच्छा का सम्मान। डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा। कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ। फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। नीट री एग्जाम क्लीन तरीके से कराने में जुटी सरकार। राजनाथ सिंह के घर बड़ी बैठक। धर्मेंद्र प्रधान और ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद। एनटीए चीफ और पीएमओ के अधिकारी भी मीटिंग में शामिल। शिक्षा केस में सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार। 6 घंटे पूछताछ के बाद सीबीआई ने किया अरेस्ट। जांच में सामने आए हैं गंभीर आरोप। नहीं रहे जीवन की सच्चाई को शब्दों में पिरोकर दिल तक उतरने वाले शायर बशीर बद्र। लंबी बीमारी के बाद भोपाल में हुआ निधन। साहित्य जगत में शोक।
1: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना, ये हमारी सरकार का संकल्प है।
1: इस रूप से अगर ऐसी कुछ गतिविधियां होती है वो गलत है। इन सब का जिम्मेवार तो वही उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग ये बात कह रहे हैं।
2: देखिए, ये वो लोग हैं जो अनारकी लोग हैं, ये देश में पूरे अनारकी फैलाना चाहते हैं। बांग्लादेश के नाम पर ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं।
0: अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापिस जाने लगे हैं।

0: नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। भारतीय जनता पार्टी ने प्रचंड बहुमत के साथ पश्चिम बंगाल और असम का विधानसभा चुनाव तो जीत लिया, लेकिन जिस एक मुद्दे का शोर आज भी सियासी गलियारों में गूंज रहा है वो है घुसपैठ और घुसपैठियों को भगाने का बीजेपी का वादा। ताजा मामला है गुजरात का, जहां गृहमंत्री अमित शाह ने अपने दौरे में फिर से दोहराया कि देश से हरेक घुसपैठियों को बाहर निकालना मोदी सरकार का संकल्प है। हल्ला बोल में आज हम आपको इस मुद्दे से जुड़े अमित शाह के वो तमाम बयान सुनाएंगे जिस पर सियासी प्रतिकार भी है। साथ ही हम आपको बंगाल की बदली हुई एक तस्वीर भी दिखाएंगे, जिससे कोलकाता में बकरीद के दौरान नमाज की सालों बाद एक अलग ही बदला हुआ नजारा सामने आया है। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं घुसपैठ की, जिसका जिक्र गृहमंत्री अमित शाह ने गुजरात दौरे पर किया। अमित शाह ने बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की नई सरकार का जिक्र भी किया और कहा कि पहले ममता सरकार में हर रोज घुसपैठ होती थी, लेकिन अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापस जाने लगे हैं। सुनिए गृहमंत्री अमित शाह के इस बयान।
1: पहले ममता के शासन में हर रोज घुसपैठ होती थी, अब घुसपैठ करने वाले अपने आप वापस जाने लगे हैं, अपने आप जाने लगे। शुभेंदु जी ने, भाजपा बंगाल सरकार ने डिटेंशन सेंटर बनाए हैं, मगर हम सब लोग चाहते हैं कि जो घुसपैठ कर अवैध तरीके से आए हैं वो अपने आप जहां से आए हैं वहां वापिस चले जाए। अगर वो अपने आप चले जाते हैं तो बंगाल सरकार भी उन पर कोई केस नहीं करेगी, जाने के लिए उनकी सहायता भी करेगी। और मैं आशा रखता हूं कि जब अभियान चले पहचान का, उसके पहले ही ढेर सारे लोग अपने आप चले जाएंगे।
0: तो इसे चेतावनी भी आप समझ सकते हैं, क्योंकि गृहमंत्री अमित शाह ने साफ कहा है कि पहचान करने की शुरुआत तो होगी, लेकिन उस पहचान की शुरुआत करने के पहले ही जो लोग भारत के नागरिक नहीं हैं वो चल जाएं तो उनको सहायता भी दी जाएगी। गृहमंत्री अमित शाह ने घुसपैठ का जिक्र किया और साथ ही कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की घोषणा के हिसाब से सरकार ने डेमोग्राफिक चेंज यानी जनसांख्यिकी बदलाव पर हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। ये समिति देश भर में जो जनसंख्या में हो रहे कृत्रिम बदलाव है, जिसमें आप देखते हैं कि कई जगहों पर भाई अचानक मुस्लिम आबादी यहां पर बढ़ गई, तो इसके पीछे की वजह क्या है? तो जनसंख्या में हो रहे जो कृत्रिम बदलाव है उनकी वजहों, उन्हें रोकने के उपायों पर शोध करेगी और एक साल में अपनी रिपोर्ट भी देगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि अगर जरूरत कानून बनाने की पड़ी तो उसकी भी सिफारिश होगी।
1: हमारी सरकार का संकल्प है देश भर से एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर देश के बाहर निकालना। नरेंद्र मोदी जी ने एक डेमोग्राफी चेंज कमिटी बनाने का निर्णय किया है। कोई कानून बनाने की जरूरत है तो इसकी भी चिंता करेगी। ये डेमोग्राफी चेंज कमीशन एक साल में अपनी रिपोर्ट दे देगी और कृत्रिम डेमोग्राफी चेंज जो है उसको रोकने का हम काम करेंगे।
0: तो केंद्र सरकार की तरफ से आपने देखा एक मुद्दा बन रहा है, ये मुद्दा लगातार कई चुनाव में भी आपने देखा, घुसपैठ डेमोग्राफिक बदलाव को मुद्दा बना रही है सरकार, लेकिन विपक्ष एक सुर में इसका विरोध कर रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने घुसपैठ को रोकने का टीकरा मोदी सरकार पर फोड़ा, तो कांग्रेस का आरोप है कि इसके नाम पर सरकार सिर्फ हिंदू मुसलमान का खेल कर रही है। सुनिए।
2: निश्चित रूप से अगर ऐसी कुछ गतिविधियां होती है वो गलत है। इन सब का जिम्मेवार तो वही उन्हीं लोगों के हाथ में है जो लोग ये बात कह रहे हैं। ये सारा चीजों को ठीक करना, उस पर नजर रखना केंद्र सरकार की जिम्मेवारी है, राज्य सरकार की जिम्मेवारी है।
3: देखिए, ये वो लोग हैं जो अनार्की लोग हैं, ये देश में पूरे अनार्की फैलाना चाहते हैं। बांग्लादेश के नाम पर ये हिंदू मुसलमान करना चाहते हैं, तो ये तो स्पष्ट है कि उनका प्रयास होगा कि पश्चिम बंगाल के अंदर जितना टेंशन पैदा किया जाए, जितना पोलराइजेशन हो, जितना धार्मिक उन्माद हो, ये सब चलेगा।
0: कैसे विपक्ष सरकार के खिलाफ लामबंद है ये आपने देख लिया, लेकिन इसी बीच गुजरात में गृहमंत्री अमित शाह ने मोदी के विकास मॉडल का जिक्र किया और कहा कि ये जो राज्यों में आपने विपक्ष को देखा ना, वो ये कह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम की वजह से बीजेपी जीती है, लेकिन गृहमंत्री अमित शाह इसको अलग तरीके से कह रहे हैं। उनका कहना है कि विकास की जो यात्रा गुजरात से शुरू हुई थी, वही गुजरात मॉडल नरेंद्र मोदी का आज उनको तमाम 3 लोकसभा चुनाव में और फिर राज्यों में जीत दिला रहा है। शाह ने कहा कि गंगोत्री से गंगा सागर तक संपूर्ण गंगा पथ पर भगवा लहरा रहा है। सुनिए,
1: 12 साल में गुजरात के विकास के मॉडल को श्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर से कन्याकुमारी और गंगा सागर से सोमनाथ तक फैलाने का काम किया है। आज देश के 80% भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी का शासन है। अब उत्तराखंड के गंगा सागर से लेकर गंगा सागर तक समग्र मां गंगा के पथ पर आज भारतीय जनता पार्टी का भगवा लहराने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने किया।
0: इससे पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, एक दिलचस्प तस्वीर आज मैं आपको पश्चिम बंगाल की दिखाना चाहती हूं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में आपने देखा होगा सबसे बड़ा मुद्दा घुसपैठियों का बन रहा है। ब्रिगेड परेड ग्राउंड में नमाज पढ़ी गई, बकरीद की नमाज, लेकिन ये एक परेड ग्राउंड में। इससे पहले आपने देखा होगा कि रेड रोड जो है इस पर नमाज पढ़ी जाती थी, लेकिन इस बार कहीं भी रोड पर, सड़क पर नमाज नहीं पढ़ी गई है। और इसकी इजाजत आपको बता दें कि अरब के देशों में भी नहीं है कि कोई सड़क पर नमाज पढ़े और ट्रैफिक को बाधित करे। पहले लेकिन ऐसा होता था ममता सरकार में, अब बीजेपी की सरकार में जो कोलकाता की बकरीद है वो परेड ग्राउंड में, यानी जहां पर ग्राउंड है इसका अलग से, वहां पर इजाजत लेकर और नमाज अता की गई है। ऐसा ही आपको उत्तर प्रदेश के भी कई शहरों में दिखेगा जहां पर नमाज इसी तरह से ग्राउंड में अता की गई है, रोड पर नहीं। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी राष्ट्र प्रवक्ता और सांसद बीजेपी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमीक जमई समाजवादी पार्टी के राष्ट्र प्रवक्ता जुड़ गए। संजय सरकार हमारे साथ, लीडर टीएमसी के। विनय कुमार सिंह हमारे साथ, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन के जुड़ गए। सबसे पहला सवाल सुधांशु त्रिवेदी जी आप ही के पास आ रहे हैं। अब विपक्ष तो ये कह रहा है, देखिए 9 जून को ही प्रधानमंत्री ने 2024 में शपथ ली थी, यानी अगर हम मिला लें तो पूरे 12 साल उनके 12 दिन बाद पूरे हो जाएंगे। ऐसे में गृहमंत्री कह रहे हैं कि ये गुजरात मॉडल है जिसकी जीत हो रही है। विपक्ष कह रहा है कि आप घुसपैठियों के नाम पर भी हिंदू मुसलमान कर रहे हैं।
4: देखिए अंजना जी, दोनों बातों का जवाब देता हूं। गृहमंत्री जी ने बहुत अच्छी बात कही और बहुत गंभीर बात कही है। आज कांग्रेस है, अरे भाई आप सिर्फ विपक्ष में नहीं है, आप सत्ता पक्ष में भी है, और 3 राज्यों में आपकी अपने दम पे सरकार है, हिमाचल, तेलंगाना और कर्नाटक, और कर्नाटक और तेलंगाना समृद्ध राज्य हैं। आपको कोई मॉडल देना चाहिए। जैसे जब हम लोग गुजरात में थे तो मोदी जी ने 160,000 वाटर बॉडीज बनाई थी, क्योंकि वहां पे पानी की कमी रहती है। आपको याद करिए सरदार सरोवर डैम के प्रोजेक्ट के लिए उन्होंने क्या प्रयास किया था। आप याद करिए भारत का एकमात्र राज्य था गुजरात जहां भूजल का स्तर बढ़ा था, बाकी जगह नीचे हुआ था। 20 सूत्रीय क्रियान्वयन समिति में लगातार सरकार उनको अच्छी रैंकिंग देती थी। आप याद करिए अंजना जी, इंडिया टुडे ने लगातार 7 साल जो अपनी पर्सनल मतलब न्यूट्रल रैंकिंग करती थी उसमें लगातार 7 साल गुजरात को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का दर्जा दिया था। 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2013 का कोई भी जाके इंडिया टुडे के वो देख ले, आप ही के नेटवर्क के ऊपर बैठे हुए हैं। फिर आप याद करिए कि जिस समय 2001 के भूकंप के बाद रिकंस्ट्रक्शन कैसे हो सकता है, भुज के भूकंप के बाद वो करके दिखाया था। तो आप एक और याद करिए, वाइब्रेंट गुजरात होता था। उससे पहले कभी ऐसा होता था कि विदेश से कंपनियां आए किसी एक राज्य में इन्वेस्टमेंट करने के लिए। याद करिए सिंगूर नंदी ग्राम से जब टाटा यहां से हटे थे तो कहां गए थे, गुजरात गए थे। यानी मोदी जी ने एक मॉडल दिया कि जनता के विकास का, जनता के लिए कार्य करने का मॉडल क्या होता है। मैं यह भी याद दिलाना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में थे उस समय शिवराज जी ने लाडली लक्ष्मी योजना शुरू की थी, मामू नाम तभी पड़ा था जब कल्याण सिंह जी सीएम थे, राजनाथ जी सीएम थे, यूपी में लॉ एंड ऑर्डर अलग होता था। कर्नाटक में येदियुरप्पा जी के समय पे अगर आपको ध्यान हो, सबसे पहले फर्स्ट एक साल तक 0% इंटरेस्ट पर किसानों को देने की शुरुआत तब हुई थी। अरे भाई आप गवर्नेंस में है, मॉडल दिखाइए। मगर कांग्रेस का मॉडल क्या है कर्नाटक में? धुन धुन धड़म धड़ैया रे, सबसे बड़े लड़ैया रे, लड़ते रहो आपस में, हर राज्य में दो धड़े हो जाएंगे। कि जब छत्तीसगढ़ में थे तो भूपेश बघेल और के एस सिंह देव, और जब राजस्थान में थे तो अशोक गहलोत और पायलट साहब, तो हिमाचल में भी लड़ाई है सब जगह। और इनका मॉडल क्या है, तेलंगाना का मॉडल है कांग्रेस मतलब मुसलमान, मुसलमान मतलब कांग्रेस, आपका चीफ मिनिस्टर यह बोलता है। अब दूसरे विषय पे आता हूं, हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं। यहां पे मैं एक बात कहना चाहूंगा बड़ी जिम्मेदारी से कि भाई मुस्लिम समाज के साथ आप इतनी नाइंसाफी और उसको इतनी बदनामी क्यों देने पे तुले रहते हैं? कोई गलत चीज होगी उसको पूरे मुस्लिम समाज पे ले आएंगे। अब बताइए अगर मुख्तार अंसारी, अतीक अहमद अपराधी हैं और अपराधियों पे, माफियाओं पे यूपी में कार्रवाई होगी, अरे ये मुसलमानों के खिलाफ हो रहा है, मतलब अपराधी को उन्होंने उससे जोड़ दिया। अब आइए साहब, जो कहता मैं कागज नहीं दिखाऊंगा एनआरसी में, अरे मुसलमानों के खिलाफ कार्रवाई हो रही है, अरे भाई दुकान में हर व्यक्ति को रजिस्ट्रेशन लगाना चाहिए, कहता मैं रजिस्ट्रेशन नहीं दिखाऊंगा, ये सिंपल सी बात है, ये सरासर गैर कानूनी काम, नहीं नहीं तो मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। अगर कोई सोशल मीडिया पे अपना नकली नाम रख के लड़कियों को फंसा रहा है उस पर कार्रवाई हो रही, अरे रे ये मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। अब बुरहान वानी से लेके और जाकिर नायक पे कार्रवाई हो, अफजल गुरु से लेके इशरत जहां पे कार्रवाई हो, ये मुसलमानों के खिलाफ हो रही है। अब ये समझ में नहीं आता, घुसपैठियों पे कार्रवाई हो तो मुसलमानों के खिलाफ। तो मैं पूछना चाहता हूं भाई साहब, अपराधी हो, बहरूपिया हो, अपना नकाब चेहरे पे लगाए हुए हो, आतंकवादी हो, घुसपैठिया हो, ये सारी चीजों को आप मुसलमानों से क्यों जोड़ना चाहते हैं? और इससे बड़ा नुकसान मुसलमानों का नहीं हो सकता जो इन सो कॉल्ड सेकुलर दलों ने करके दिखाया है। इसलिए मैं कहना चाहूंगा बहुत ध्यान रखना चाहिए मुसलमान लोगों को कि उनको उतना नुकसान इनके अनुसार जो तथा कथित रूप से कहते हैं भाजपा आरएसएस एंटी मुस्लिम है उसने नहीं किया है जितना कि इन लोगों ने किया है। इसीलिए मैं एक लाइन में कहूंगा जो मैं पहले कई बार पार्लियामेंट में बोल चुका हूं, इन लोगों ने जो ये नफरत फैलाई है कि साहब बीजेपी को तुमसे अदावत है और हमें तुमसे मोहब्बत है, और मोहब्बत के चक्कर में हर बदगुमानी इन्होंने उनके ऊपर लाके छाप दी है,
5: ठीक।
4: तो मैं कहना चाहूंगा किसी को किसी की मोहब्बत ने मारा, किसी को किसी की अदावत ने मारा, और इस शराफत अली को सेकुलर सियासत ने मारा।
5: ठीक है अमित जमाई जी, जहां पर उन्होंने छोर छोड़ा है वहीं से आप शुरुआत कीजिए। तस्वीरें हम आपको अलग अलग जगहों की दिखाते हैं, बड़े शांति से अच्छे से नमाज हुई है। और जो ये बहुत ज्यादा प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है कि पब्लिक प्लेसेस पर नहीं, भाई ये सारे परेड ग्राउंड्स हैं, अलग अलग जगहों पर ऐसी जगह है जहां पर इजाजत मिली और सभी ने नमाज पढ़ी। हाँ भाई सड़क पे नहीं मिली है, क्योंकि इस देश का लॉ ऑफ द लैंड कहता है कि आप सड़क पे नमाज नहीं अदा कर सकते। इसमें क्या गलत है अगर आज शांतिपूर्ण तरीके से ये हुआ है, ये एंटी मुस्लिम कैसे है आप समझाइए। दूसरा सवाल मेरा यही है कि आज भी अगर आप जाइए तो 24 परगना के आसपास ये पूरे इलाके हैं जहां पर अनेकों ऐसे अनडॉक्यूमेंटेड जो बांग्लादेशी नेशनल्स आए हुए हैं वो बिल्कुल बॉर्डर के पास है, उनको सबको अब वहां से जाना है न्यू टाउन। मैं खुद गई थी रिपोर्टिंग के लिए कोलकाता में, न्यू टाउन जैसे इलाके जहां भारी तादाद में वो बसे हुए थे वो घोस्ट टाउन्स बन गए हैं, वहां से भाग गए। अगर घुसपैठी ऐसे हट रहे हैं, भाग रहे हैं, जा रहे हैं, इसमें कैसे ये एंटी एंटी हिंदू मुस्लिम कैसे है ये?
6: अंजना जी, जिन लोगों को भारत में ईद उल अजहा की मुबारकबाद लेना देना पसंद है, भारत के उन सभी देशवासियों को ईद उल अजहा की मुबारकबाद।
5: आपको भी।
6: मैं ये पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए कि ईद बकरीद का मुद्दा नहीं होता तो आज पूरे देश की जनता जो गैस से, पेट्रोल से, डीजल से परेशान है, वो सुधांशु जी का क्या हाल कर रही होती, उनकी पार्टी का क्या हाल कर रही होती? अगर इस अर्थव्यवस्था जो पूरी टूट रही है, जो उसकी पूरी कमर टूट रही है, महंगाई, गरीबी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम, नीट का एग्जाम, जितने भी एग्जाम्स अंजना जी आप तो देख रही हैं, सारे एग्जाम्स फेल हो रहे हैं, सीबीआई जांच, एसटीएफ जांच, रिजल्ट 0/0। तो सुधांशु जी सीजन स्पोक पर्सन है, लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि देखिए ये मुसलमान का ये जो गेम करते हैं ना आप, ये कुर्बानी कोई पहले दिन तो है नहीं। कल महाराष्ट्र में श्री अबू आसिम आजमी जी ने, उनके विधानसभा के अंदर कल रात में कहा गया कि पूरे इलाके में हो ही नहीं सकती कुर्बानी, और कहा गया कि जितने भी हिंदू हैं उनसे आपको एनओसी लेनी पड़ेगी, तभी आप कुर्बानी कर सकते हैं। भाई जो प्रतिबंधित जानवर हैं, मौलाना अरशद मंदी से लेकर सभी लोगों ने, आसिम आजमी साहब ने भी, कि पूरे देश में सरकार भले ही गौ का, गाय के गोश्त का एक्सपोर्ट करती हो, लेकिन मुसलमानों की तरफ से कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए, क्योंकि मुसलमान हिंदू भाइयों का सम्मान करता है, इज्जत करता है। लेकिन आपने ईद नहीं मनाने दी। आपने पश्चिम बंगाल में आदरणीय गृहमंत्री जी बोल रहे थे कि पूरे देश में भगवा लहरा रहा है। पहले तो कहूंगा सम्मान के साथ कि गृहमंत्री जी अपनी भाषा ठीक कर लीजिए, भगवा नहीं लहरा रहा है, तिरंगा लहरा रहा है। जो सरकारें बनी है ना, वो तिरंगा, उसको उसका तिरंगा को भुलवाइए मत पूरे देशवासियों को। तो हमारा ये कहना है कि देखिए, मुसलमान कहीं जाने वाले नहीं, मुसलमान इसी देश में रहेंगे। आरएसएस बीजेपी बेशक उनको दोयम दर्जे का नागरिक बनाना चाहती है, आप दलितों को शिक्षा से, नौकरी से बेदखल करना चाहते हैं, पिछड़ों को आप जो है आरक्षण से बेदखल करना चाहते हैं, लेकिन मेरे नेता माननीय अखिलेश यादव जी ने, हम सब ने ये प्रण लिया है कि हिंदुओं में जो 80% कमजोर, शोषित, वंचित जो आबादी है, उसके हक अधिकार को, पीडीएफ अधिकार को सुधांशु जी के हलक से निकालकर, भाजपा के हलक से निकालकर हम उन गरीब लोगों की लड़ाई लड़ेंगे।
5: ठीक है,
6: और मुसलमानों को परेशान करके आपको क्या मजा मिल रहा है?
5: क्या परेशान, एक सेकंड सुनिए नामिक जी, इसमें क्या परेशानी है? वही मेरा सवाल था, एक बार फिर से दिखा दीजिए। सबने बड़े अच्छे से नमाज अदा की है, क्या परेशानी है बताइए?
6: मैं आप
5: सऊदी अरब में, मैं आप फैक्ट्स पे बात करते हैं।
6: अंजना जी,
5: अमित जी,
6: अंजना जी,
5: मुझे कोई वास्ता नहीं है ना आपके पॉलिटिकल रेटरिक से, ना उनके पॉलिटिकल रेटरिक से। मैं तो बस देख रही हूँ बड़े अच्छे से नमाज हुई है। दूसरा सुनिए तो, अरे गुरु सुनिए तो, सऊदी अरब, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, यूएई, कहां पर है भाई? कहां पर कोई सड़क पर कोई भी पब्लिक प्लेस में कुर्बानी नहीं दे सकता, इट्स इलीगल सर।
6: एक अच्छा ब्राह्मण कैसे बनना है? भाजपा से संपर्क करो। अरे एक अच्छा मुसलमान कैसे बनना है?
5: पूछ रही हूँ,
6: भाजपा से संपर्क करो। आप 20 सेकंड, आप 20 सेकंड
5: मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना। कहां पर लीगल है? अरे गुरु कहां पर लीगल है?
6: आप मुझे 20 सेकंड दीजिए। मेरे उत्तर प्रदेश में बड़ा मंगल होता है। आप जानती हैं बड़ा मंगल की शुरुआत कहां से हुई है, उसका कॉन्सेप्ट क्या है? कौन सा उत्तर प्रदेश का संगठन है जिसने उत्तर प्रदेश की सरकार से परमिशन ली होगी? हम सब ऐसे मुस्लिम माहौल में पले बढ़े, ऐसे हिंदू मुस्लिम मिक्स माहौल में पैदा हुए हैं कि हमें तो बड़े मंगल से नफरत नहीं है, हमें तो दशहरा से नफरत नहीं है, हमें तो नवरात्र से नफरत नहीं है। परवरिश गलत है, भाजपा के लोगों की परवरिश गलत है, नफरत के माहौल में पैदा हुए हैं। मुसलमान इन्हें लगता है कि ये पाकिस्तान अकबर कश्मीर चले जाएंगे, भारत के नागरिक है। अगर आपको ये लगता है कि आप उनको दोयम दर्जे का नागरिक भारत के अंदर बनाएंगे, सुधांशु जी गलत फहमी दूर कर लीजिए आप अपनी, और गृहमंत्री जी से भी कह दीजिए कि 2014 से लेकर 26 तक गृह मंत्रालय आपके अंदर में था, बीएसएफ आपके अंदर में था, सीआरपीएफ आपके अंदर में था। अगर बांग्लादेश से घुसपैठ हुआ, अमित शाह जी इस्तीफा दे, रिस्पॉन्सिबल
5: जवाब दीजिए इसका। सुधांशु जी जवाब दीजिए। हालांकि आपने आपने आपने आज मतलब साइड वाले रास्ते से आप निकल गए अमित जी, आपने मेरे सवाल का जवाब ही नहीं दिया, आप इसको रेटरिक की तरफ ले गए। मैं फैक्ट्स पर ला रही थी, क्योंकि इलीगल है अगर सड़क पर पब्लिक प्लेसेस में कुर्बानी, तो इलीगल है। ऐसा नहीं है कि आपको अरे इलीगल कुछ करने दिया जाए तो वो
6: फैक्ट मुसलमानों के लिए है।
5: ठीक है, इसका जवाब मैं उनसे लूंगी,
6: फसाद करवाइए,
5: इसका मैं जवाब उनसे ले लूंगी। लेकिन किसी को भी अगर, एक सेकंड आवाज नीचे कीजिए, एक सेकंड अगर किसी को भी ऐसा लगता है कि वो लॉ ऑफ द लैंड को डिफाई करे वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए और जो गैर कानूनी है उसको अपना हक मान ले, तो ये तो गलत है। आप गलत चीज को सपोर्ट कर रहे हैं मिस्टर जमई, और मुझे पता है आप इसको कभी नहीं स्वीकारेंगे टीवी पर, क्योंकि फिर आपकी पूरी वोट बैंक की पॉलिटिक्स झा हो जाएगी, गिर जाएगी।
6: अंजना जी,
5: जो
6: अंजना जी,
5: इलीगल है वो इलीगल है साहब,
6: मुसलमान अनटचेबल है,
5: फिर शुरू हो गए
6: मुसलमान के लिए है,
5: फिर रेटरिक में शुरू हो गए आप।
6: अरे
5: मैं आपसे क्या पूछ रही हूँ, मैं आपसे क्या पूछ रही
6: हूँ, कानून सिर्फ मुसलमान के लिए है,
5: पब्लिक प्लेसेस में
6: जितने भी त्योहार हमारे देश में होते हैं। अंजना जी, आप मुझे बताइए कौन सा परमिशन होता है, हमको बताइए कौन सा परमिशन होता है?
5: अरे बिना परमिशन के कोई नहीं कर सकता, क्या बात कर रहे हैं? अरे दुर्गा पूजा का पंडाल लगाने के लिए परमिशन लेना पड़ता है, कहाँ जी रहे हैं आप गुरु?
7: अरे सर, दुर्गा पूजा का पंडाल परमिशन से होता है,
6: कौन सा परमिशन है?
5: हर जगह
7: दुर्गा पूजा के पंडाल परमिशन,
5: कोई प्रोसेशन पंडाल सबके लिए परमिशन लगता है
6: मुसलमानों के खिलाफ।
5: अच्छा लेट हिम रिस्पॉन्ड, एक बार आप बोल दीजिए,
6: खुशी का माहौल बना रहा है।
5: बस
4: अब मैं जवाब देना चाहता हूं। देखिए, पहली बात तो मैं कहना चाहूंगा, अमित जमाई ने जो कहा, हिंदू मुसलमान से अलग हटकर आज बकरीद का पर्व है, और इस दिन मुस्लिम हजरत इब्राहिम की इबादत में जो उन्होंने अपने बेटे की कुर्बानी दी थी और उसके लिए बकरों की कुर्बानी देते हैं और जो उनकी धार्मिक परंपरा है हलाल के अनुसार। मगर मैं अंजना जी ये याद दिलाना चाहता हूं इस देश को कि इस देश में एक बहुत बड़ा तबका जो एनिमल लवर है, जो कहता जली कट्टू में केवल अगर दौड़ना पड़ गया गाय को तो वो उसके प्रति बहुत बड़ी प्रताड़ना हो गई, इसलिए जली कट्टू तमिलनाडु में रुकवा देना चाहिए। त्रिपुरा में मां त्रिपुर सुंदरी के मंदिर में यदि साल में एक दो बार बलि होती थी, ओफो, धार्मिक आधार के ऊपर बकरों को काटने की परमिशन नहीं देनी चाहिए। मगर आज जिस दिन करोड़ों बकरे धार्मिक आधार पर काटे जा रहे हैं, ऐसा नहीं कि केवल कोई खाने के लिए काटे जा रहे हैं, कोई भी मुसलमान खाने के लिए नहीं काटता है, पहले उसको लाता है, रखता है और उस चीज को याद करता है जो हजरत इब्राहिम ने कुर्बानी दी थी, धार्मिक आधार पे उनको हलाल करता है। मगर अंजना जी कहीं किसी एनिमल लवर की लवरई मुझे दिखाई नहीं पड़ती है, ऐसा लगता वो स्ट्रेट ऑफ हरमूज में तेल लेने के लिए चली जाती है, ऑयल लेने के लिए चली जाती है। अब मैं आता हूं जो इन्होंने हिंदू मुसलमान की बात कही उसके ऊपर, यही समस्या अमित भाई, आप लोग ये मुसलमानों को ये दिमाग में गलत बात धरते हैं कि मैं कानून नहीं मानूंगा, आज से नहीं 60 साल से मेरा कानून अलग होगा, पर्सनल लॉ, उसमें पर्सनल लॉ में भी कितना पर्सनल वो भी मैं ही तय करूंगा, यानी मैं ब्याज भी लूंगा मगर 4 शादियां कर लिए मुझे पर्सनल लॉ चाहिए, क्रिमिनल में तो मैं मानूंगा ही नहीं, चलो कोई बात नहीं, फिर मेरा एजुकेशन सिस्टम अलग होगा, मदरसा बोर्ड अलग होगा, फिर मैं जिस जमीन पे कह दूंगा वक्फ बोर्ड वो मेरी है, कागज नहीं दिखाऊंगा, जिस धर्म स्थल पे मैं कह दूंगा ये मेरा है, सबूत नहीं आने दूंगा, जांच नहीं आने दूंगा, यदि किसी से पूछ लिया जाएगा कि भाई नागरिकता दिखा दो, नहीं नहीं कागज नहीं दिखाऊंगा, दुकान को दिखा दो, कागज नहीं दिखाऊंगा, ये कानून से जो ऊपर है। और उसके बाद याद करिए जहांगीर खान क्या फालतू में बोलते थे कि सर काट देंगे, वो गला काट देंगे वगैरह वगैरह, और क्या हुआ 3% वोट मिला है टीएमसी को, जहां 2024 में 89% वोट मिला था। अब ये जो अपने को कानून से ऊपर समझने की हैसियत है, मैं जहां चाहूंगा जमीन पर बैठ जाऊंगा, रेलवे स्टेशन पे, प्लेटफॉर्म पे, रोड पे, एयरपोर्ट पे, बस अड्डे पे, और जब बैठ जाऊंगा तो सारा ट्रैफिक रुक जाएगा। ये जो कानून से ऊपर समझने की बात थी उस कारण से वह समस्या होने की बात आती। और अब ओबीसी और पिछड़े आरक्षण की भी बात बताता हूं भाई साहब, 77 जातियों को बंगाल में ओबीसी में शामिल किया और ओबीसी कमीशन ने सवाल किया, 77 में 74 मुसलमान, और ओबीसी कमीशन को चूंकि प्रधानमंत्री मोदी जी ने संवैधानिक दर्जा दे रखा, उसने पूछा 74 कैसे हो गए, तो जानते क्या जवाब दिया, ये कन्वर्ट होने से पहले मुस्लिम थे, हिंदू में ओबीसी थे इसलिए ओबीसी है। तब फिर सवाल पूछा गया कन्वर्ट कैसे हो गए, मैं पूछना चाहता हूं मीक जमाई साहब, वो कन्वर्ट होने के बाद भी ओबीसी रहे, ये तो बड़ा समानता का धर्म है ना। मैं चैलेंज करके पूछता हूं, एक गद्दी घोसी अंसारी बहना हलालखोर कसाई को शेख सैयद बनाया हो तो चैलेंज करके पूछता हूं, किसी हिंदू शेड्यूल कास्ट को कन्वर्ट करके शेख सैयद बनाया तो बताइए, उल्टा मजमूमे किताबे इस्लामिया जो कि देवबंद में लिखा हुआ है मुस्लिम मैरिज कैसे होगी, उसमें अरबी और अजमी लिखा है, जो अरबी जातियां हैं वो अजमी यानी जो मूल हिंदुस्तान के मुसलमान हैं उनको नहीं मानते अपने बराबर, उनकी उनसे शादी नहीं हो सकती, यह मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की देवबंद की किताब मजमूमे किताबे इस्लामिया में, कानून इस्लामिया में लिखा हुआ है, इसलिए आपको वो बात कहने से थोड़ा बचना चाहिए। और लास्ट में मैं कहना चाहता हूं अंजना जी, ये कहते हैं मुसलमान दोयम दर्जे का नागरिक, अरे भाई साहब यह मुस्लिम राष्ट्र था आंशिक रूप से, क्योंकि इसमें सिर्फ मुस्लिमों को वो अधिकार था कि शरिया संविधान से ऊपर था, ट्रिपल तलाक मुस्लिमों के पास था, तलाक ए बिद्दत मुस्लिमों के पास था, हिंदुओं के लिए मेला टैक्स था, मुसलमानों के लिए हज सब्सिडी थी, और मेहरम से लेके वो सारे के सारे हलाला तक की व्यवस्थाएं कानूनी मान्यता प्राप्त थी। और मैं विनम्रता से एक और बात कहूंगा अंजना जी, मीडिया के लिए भी भारत के इंस्टीट्यूशन में भी भारत एक आंशिक मुस्लिम राष्ट्र है आज भी, इसीलिए जब मीडिया दिखाता है चुनाव आते हैं जातिगत समीकरण तो क्या दिखाता है, मुस्लिम और फिर हिंदुओं की जातियां दिखाता है, इसलिए सेकुलर जितना भी पार्टियां हैं और सेकुलर मीडिया सेकुलर इंटेलेक्चुअल उसके लिए मुस्लिम एंड कास्ट बस दो चीजें, हिंदू नाम की तो कोई चिड़िया ही नहीं है,
5: ठीक है, मैं लौटूंगी इस पर,
4: जब वो दिखाता है तो एक तरफ
5: विषय से भटक जाएंगे, लेकिन 10 सेकंड का जवाब ठीक है पॉइंट नोटेड
8: अंजना जी,
5: अमित जी छोटा जवाब, अंजना जी मुझे संजय सरकार के पास जाना है,
8: अंजना जी 10 सेकंड,
5: हमारे सवाल से बार बार भाग रहे हैं अमित जी, मैं बार बार कह रही हूँ,
8: मैं आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि सुधांशु जी हमारे
6: सूडो नेशनलिस्ट। 33,000 करोड़ का मीट का एक्सपोर्ट नरेंद्र मोदी जी अमित शाह जी के राज में चल रहा है। तो दानशु जी, किस दिन बंद करवाओगे? सबसे पहले समाजवादी पार्टी आपके साथ खड़ी होगी। नंबर वन, आपका फर्जी पार्टी भारतीय जनता पार्टी अल्लाना स्लॉटर हाउस से चंदा लेते हो, स्लॉटर हाउस से भाजपा वालों, शर्म करो, अपना चेहरा आईने में देखो। स्लॉटर हाउस से पैसा लेते हो, चंदा लेते हो, कहीं से भी चंदा लो।
5: ठीक है, हो गया, संजय सरकार को दिखाई, जल्दी जल्दी आपका बता, सेकंड बहुत लंबा खींच रहा है,
6: नंबर टू
5: लंबा खींच रहा है, एक सेकंड। नहीं, अमित जमई जी, अमित जमई जी, अमित जमई जी, आप साल में कभी भी हो, साल में कभी भी हो,
6: अच्छा सुन तो लीजिए,
5: नहीं नहीं, अब आप चिल्ला रहे हैं, अब आप चिल्ला रहे हैं, अब आप चिल्ला रहे हैं, आवाज नीचे कीजिए, अब आप चिल्ला रहे हैं। संजय जी बोलिए, संजय जी बोलिए, संजय जी उसका जवाब वो नहीं देंगे, मुझे पता है उनकी पॉलिटिकल मजबूरियां हैं, वरना पढ़े लिखे और ठीक ठाक इंसान है अमित जमई, उनको भी नहीं, आवाज नीचे कीजिए उनकी। संजय सरकार, लॉ ऑफ द लैंड चलेगा ना, हम दिखा रहे परेड ग्राउंड की तस्वीर, सड़क पर करना नमाज क्यों, इसकी इजाजत कहीं नहीं है। और जब आप परेड ग्राउंड में देख रहे हैं, बड़ी अच्छी नमाज हुई है, क्या प्रॉब्लम है उसमें? ऐसे ही अगर आप देखिए, कोई हो, मतलब जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वहां पर भी पब्लिक प्लेसेस में अलाउड नहीं है, जवाब दीजिए। और आपका काउंटर पॉइंट हो अगर घुसपैठ पे, क्योंकि हाँ घुसपैठ पे मेरा स्पेसिफिक सवाल है, क्योंकि आप टीएमसी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कि घुसपैठ देश की समस्या है या आपकी नजर में सिर्फ बीजेपी का एजेंडा है?
8: देखिए सबसे बड़ी बात क्या, देखिए 1947 से लेके जो रेड रोड के ऊपर नमाज चलते थे, 1947 से पहले से भी होता था, जब आजादी हुआ तो आजाद भारत हिंदुस्तान के लिए 1947 से पहले से ही वहां पर रेड रोड के ऊपर होते थे। ये बात आप बोलेंगे सरकार क्यों प्रबंध नहीं लगाया, या आप बोल सकते हैं, भाजपा भी बोल सकते हैं, कोई भी बोल सकता है, जमुई साहब भी बोल सकता है, कोई भी बोल सकता, मेरा कोई आपत्ति नहीं है इसमें, ठीक है ना। हाँ ये कोई मैदान में होने से अच्छा होता है, रास्ता में होना ठीक नहीं है, रास्ता रुके तो दुर्गा पूजा भी रास्ता के ऊपर में ही पेंडल होता है। अब मेरे यहाँ शिवरात्रि भी होता है, वो भी रास्ता के ऊपर में ही होता है, सरस्वती पूजा हर एक हाथ दो दूर होता है वो रास्ते के ऊपर में ही होता है, काली पूजा एक हाथ दो दूर रास्ते के ऊपर में ही होता है। सब सवाल मेरे ऊपर आप डाल देंगे, लेकिन मैं पहले तो गुजरात में जाएंगे सुधांशु जी को इलाका में बताए। अच्छा सुधांशु जी, गुजरात में फिलहाल लोन कितना, बोले आप बोल देश का मॉडल मेडल बहुत कुछ, देश का सब कुछ है, देश का ये है 4.5 लाख करोड़, कहां से आपको इंडस्ट्रियल स्टेट चालू होता है, मतलब दानू खत्म होता है, उमरगांव स्टार्ट होता है जहां रामायण का शूटिंग होता है। अच्छा वहां से लेकर जामनगर तक का डिस्टेंस कितना, मतलब 850 किलोमीटर डिस्टेंस है, 850 किलोमीटर डिस्टेंस में 11,500 व्यक्ति लास्ट दो साल में बंद होगी। आपको गुजरात इतना मतलब जो विकास क्या विकसित विकास भारत मतलब मॉडल है हिंदुस्तान के, जब डोनाल्ड ट्रंप जी जब हिंदुस्तान में आया था और झोपड़पट्टी झुकाने के लिए क्यों पर्दा डाले गए थे मेरे पास, आप में गुजरात के बारे में आप बताए, गुजरात में 2.7% नौजवान आज बेकार है वहां पर, इतना मतलब ये होने का नौ मतलब अनएम्प्लॉय है। मेरा खत्म नहीं हुआ, खत्म नहीं हुआ, बोलने दीजिए प्लीज। आप लोग सुधांशु जी को 12 मिनट एकदम भाषण देने के लिए बोल दिया, 1,000 का अगर भर्ती, नहीं 1,000 का भर्ती अगर वहां पर गवर्नमेंट अप्लाई करते हैं तो 20 लाख आदमी उसमें अप्लाई करता है, ये आप मतलब आप इंटरव्यू देने के लिए सोचिए कहाँ है गुजरात मॉडल, आप गुजरात में रह गया, आप बोल रहे हैं, आप बोलने चाहते हैं बंगाल लोगों से। हाँ घुसपैठी देश के एक बहुत बड़ा समस्या है, एनसीआईबी नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो ये अमित शाह जी को दफ्तर के अंदर में पड़ता है, बोल दो पूरा देश में 5 करोड़ घुसपैठी है, सिर्फ मुसलमान घुसपैठी नहीं है, यहाँ पर नेपाली भी है, दार्जिलिंग से लेकर सिक्किम तक आसाम तक घुस गया, फिर म्यांमार से मतलब जो हिंदी भाषा भाषी बोलते हैं, हिंदी भाषा भाषी जो बोलते हैं वो लोग भी इंडिया में आकर रह रहे हैं बिना बिना पेपर में बिना ये आकर, भूटान से बॉर्डर से लेके आलीपुर से बांध आपको आलीपुर बारोबिसा से लेके आसाम तक भूटानी लोग घूम के काम करते हैं यहाँ पर, क्यों उसको अवध मतलब जाने आने के लिए कोई परमिशन नहीं लगता, इसके लिए आता है 20 किलो।
5: संजय जी मेरे सवाल का भी तो जवाब दीजिए, मेरे सवाल सुने कि नहीं सुना दादा?
8: बोलिए घुसपैठी में, बोलिए
5: फिर से बोलूं सर, इतना में तो टीवी का पूरा टाइम ही निकल जाएगा। घुसपैठ देश की समस्या है या बीजेपी का एजेंडा है? सिंपल क्वेश्चन है मेरा,
8: घुसपैठ घुसपैठ डायरेक्ट देश के समस्या है, मेरे रोटी खाएंगे, मेरे चावल खाएंगे, आज भी जिसको डिपोर्ट करने के लिए वहां पर गया है शुभेंदु अधिकारी, उसको मटन खिला रहा है, चिकन खिला रहा है, एसी रूम में रख रहा है, उसको बाद में डिपोर्ट,
5: विनय कुमार
8: खाना नहीं खिलानी चाहिए, खत्म नहीं बोलना। अच्छा,
5: जब बोलिए ना दादा जल्दी खत्म कीजिए ना,
8: जल्दी लेकिन आज के लेकिन आज के तारीख में भारतीय जनता पार्टी हर कुछ के लिए मुद्दा बना रहे हैं, बेकार बेकार का मतलब महंगाई के लिए नहीं बोलेंगे, पेपर लीक के लिए नहीं बोलेंगे, मतलब चारों तरफ साथ जिस तरफ से देश के जनता तरस रहे हैं, किस तरह से चल रहे हैं, खाने का दो बक्कर कलाहांडी उड़ीसा का जगह है वहां पर दो बक्कर दूर के बाद एक बक्कर रोटी नहीं मिलता है, कोई आदमी मरता है तो साइकिल में 10 किलोमीटर दूर में लेके जाते हैं उसको, मतलब धान करने के लिए लेके जाने पड़ता है। ये विकसित भारत साइनिंग इंडिया
5: बोल रहे हैं, ये जो गुजरात मॉडल का बखान बीजेपी कर रही है वो गुजरात मॉडल ध्वस्त कर रहे हैं वो, इस पर आपका जवाब। और जो बड़ी समस्या घुसपैठ की है उसको लेकर
9: मीना जी, घुसपैठ कितनी बड़ी समस्या है मैं कुछ आंकड़े बताता हूं आपको। 450 एकड़ के आसपास, मतलब किलोमीटर के आसपास जमीन थी जो ममता बनर्जी सरकार और उसकी पहले की भी सरकारों ने ट्रांसफर नहीं किया था, जिसके कारण फेंसिंग नहीं हुई। तो जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो पहला ऑर्डर यही हुआ कि उस फेंसिंग की जमीन को ट्रांसफर किया गया और काम को कंप्लीट किया जाएगा। ये तो हुई भारतीय जनता पार्टी की प्रतिबद्धता को लेकर के कि बॉर्डर फेंसिंग कितना जरूरी है। दूसरी बात आप समझिए कि बंगाल में घुसपैठ हुआ और घुसपैठ एक लेवल के बाद सैचुरेट हो गया, सैचुरेट हुआ तो बगल के राज्यों में उसका असर पड़ा। अभी झारखंड के कुछ नेताओं को मैं देख रहा था, वहां के मुख्यमंत्री भी उस बारे में बात कर रहे हैं। अब वहां का एक आंकड़ा हम मैं बताता हूं कि हम लोगों ने फाउंडेशन में इस बात को रिसर्च किया है, 2019 और 2024 के जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसके बीच में जो पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है झारखंड के सारी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में और खासतौर पर ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में, उकड़ा केवल दो विधानसभाओं का मैं आपको उदाहरण बताता हूं। एक सिमडेगा में खूंटी विधानसभा है, उसमें ओवरऑल जो वोटर इंक्रीमेंट है 2019 से 24 के बीच में वो है 10% और नॉन मुस्लिम वोटर इंक्रीमेंट है 7.2%। और अंजना जी आपको ताज्जुब होगा मुस्लिम वोटर परसेंटेज कितना है जानती हैं आप? 72% का इंक्रीज है, 72% का मुस्लिम वोटर इंक्रीज है। उसी तरीके से आप देखेंगे 50%, 60%, 70%, 80% तक मुस्लिम वोटर इंक्रीज है 2019 से 24 के बीच में। दूसरा एक डेटा मैं आपको बताता हूं कि जब 1941 का सेंसस हुआ था तो 41 और 51 के बीच में एक घटना
5: मैं समझ गई। सुनिए ना विनय जी, विनय जी जब आपको आराम से कहीं पॉडकास्ट करने का मौका मिले तो ये सब समझाइएगा, आपका पॉइंट क्या है, पॉइंट क्या है आपका?
9: नहीं पॉइंट
5: सिमडेगा में आपका क्या पॉइंट है?
9: पॉइंट यही है जो संजय सरकार और अमई जमई बोल रहे हैं वो गलत है।
5: लेकिन ये मुद्दा बीजेपी ने बड़े जोर शोर से उठाया वहां पर, है ना? तो ऐसे में तो जो वहां पर आदिवासी पॉपुलेशन है, जो हर चार में से एक वोटर आदिवासी है वहां पर, वो इनकी तरफ होना चाहिए था कि भाई हमारे यहां तो बांग्लादेशी आ रहे हैं, पर ऐसा हुआ नहीं, है ना?
9: अंजना जी चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए मुझे नहीं लगता कि ये जो विषय है इन्फिल्ट्रेशन का वो राजनीतिक मुद्दा है, वोट मिले नहीं मिले राष्ट्रीय सुरक्षा बनी रहनी चाहिए।

0: जबकि मुस्लिम इंप्लाइज जो हैं राज्य सरकार में वो 1.8% है, और जहां अभी तक भाजपा कभी शासन नहीं था, गुजरात में सबसे लंबे समय भाजपा शासन है, मुसलमानों की आबादी 8% है और जो कर्मचारी हैं वो 7.% है। मुसलमानों में सबसे ज्यादा जकात अगर आता है तो वो गुजरात से आता है। तो हमने हर ढंग से एक मॉडल दिया, अगर हर गांव में सबसे पहले बिजली पहुंची थी तो वो गुजरात में पहुंची थी। और लास्ट में एक और बात कह दूं, देखिए भाई साहब आप समझदार व्यक्ति हैं, आप कहते हैं ट्रंप आए तो पर्दा क्यों लगाया गया। अरे भाई साहब पर्दा उसके लिए नहीं लगाया जाता है, जब G20 की समिट हुई तो यहां भी ग्रीन पर्दा लगाया गया था। कारण क्या था, जब ऐसे संवेदनशील सिक्योरिटी वाले लोग जाते हैं तो हर घर की हर खिड़की के ऊपर स्नाइपर नहीं तैयार किया जा सकता है, तैनात नहीं किया जा सकता है, तो क्या किया जाता है, एक पर्दा डाल दिया जाता है ताकि दूर से कोई स्नाइपर अगर कोई टेलीस्कोपिक गन से करना चाहे तो उसे मूवमेंट गाड़ी का दिख ही ना रहा हो, उस सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को ये करने लगते हैं। यही नासमझी के कारण विपक्ष की यह स्थिति निरंतर होती चली जा रही है।
1: ठीक है संजय, छोटा सा इस पे जवाब, क्योंकि आपने ही पर्दा वाला सवाल पूछा था, उस पर छोटा रिबाटल, फिर मुझे अमित जमई के पास जाना है।
2: नहीं, पहले तो मैं कोटी लोकसभा के अंदर में सिमडेगा विधानसभा पड़ता है विनय जी, इसको हम थोड़ा रेक्टिफाइड कर दिया आपको। रह गया पर्दा, पर्दा तो ये तो हर जगह दिखाते रहते हैं, पर्दा दिखाते पाते हैं। देश के आज सबसे ज्यादा नौजवान अगर रस्ता में है, कुछ काम नहीं है, कुछ धंधा नहीं है, जिसमें व्यापार नहीं है, कुछ नहीं है, तो इसका कारण ही है। बंगाल में आते आते चारों तरफ से जिस तरह से हंगामा मचा दिया, जो आदमी 2 रुपया रोजगार करके खाते थे उसको दुकान तोड़ दे गया, अगर 50,000 आदमी को नौकरी दे नहीं पाए, लेकिन 20,000 आदमी को
1: अच्छा शासन दे ही रहे थे तो फिर जनता ने क्यों हटा दिया जल्दी से अमित जमई जी। अरे अभी तो आपकी सरकार वहां गई है, अगर आप लोग इतना अच्छा काम कर रहे थे तो उसके लिए भी आप इन्हीं को जिम्मेदार ठहराएंगे। अमित जमई चले गए,
2: हम तो लोकतंत्र उपाय में नहीं हारे हैं, हम तो लूट तंत्र उपाय में हारे हैं। अगर बोलिए अगर फलता वाला इलेक्शन 3 बजे तक अगर पूरा क्लियर हो जाता है और चार में एक दिन में रात 12 बजे तक काउंटिंग, सुबह 8 से 12 बजे तक काउंटिंग चालू रहता है और 1 बजे के बाद में TMC को एजेंट लोग मार मार के पीट पीट के निकाल देते हैं। एक बूथ का नमूना हम आपको देखा, अगर फलता में हम हारे हैं 1565 वोट पोस्टल बैलेट में मेरे को मिला, 245 वोट बीजेपी को मिला, लिख कर रख दीजिए, मैं आपको डाटा दे देता हूँ, मेरे पास पूरा बूथ वाइज सब कुछ है, कहाँ कैसे धांधली हुआ है। लोकतंत्र के उपाय में नहीं हाया हमने, लूट तंत्र के उपाय में आया, लेकिन इसको भी मतलब जी हिस्ट्री ऑलवेज न्यूटन के थर्ड लॉज क्या है,
1: अरे लेकिन ये है ना, पिछली बार भी आप लोग धांधली रो रहे थे, फिर जब जीत गई ममता बनर्जी तो सब चुप हो गए, तब रिजल्ट सही हो गया संजय जी, है कि नहीं?
2: 1 बजे के बाद में मार के निकल दिया है एजेंट लोग को, चाहिए अच्छा आप इतना पत्रकार है ना, आप बोले ना 1 बजे
1: सर हमसे बढ़ के कुछ नहीं होगा, आपस में लड़िए, अपनी पार्टी को संभालिए, भागम भाग लगा हुआ है आपकी पार्टी में, सब आपस में ही टकरा रहे हैं।
2: नहीं नहीं वो तो जाने दीजिए, जिसको जाना है जा सकते हैं, फिर सुधार जाएंगे पार्टी, फिर हम खड़ा हो जाएंगे, जिसको जाना है अभी से जा सकते हैं, अभी चला जाए, हम तो बोले जाइए जाओ,
1: ठीक है सुधांशु जाओ। ऐसे तो ममता दी भी नहीं बोल रही जैसे आप बोल रहे हैं।
0: एक्चुअली में क्या था, लूट तंत्र नहीं हो पाया क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्सेस थे, हर पोलिंग बूथ के ऊपर CCTV लाइव चल रहा था जिसकी लाइव फीडिंग जा रही थी, चुनावी हत्याएं नहीं हो पाई और लूट हत्या नहीं हो पाई, इस कारण से हुआ। और जहां तक हमारे राइस की बात है संजय जी, 2011 में हमें 3% वोट मिला, हम अप्रासंगिक पार्टी थे, 2016 में हमें 10% वोट मिला, हमें 3 सीटें मिली, 2021 में 77 सीटें मिली, 38% वोट था और 2021 में 46%, ये एक नेचुरल ग्रोथ थी। आपके रणनीतिकार 2021 में कहते थे कि आपकी गिनती 30% से शुरू होती है, वो तो सुविधा की राजनीति थी, 30% तो मुफ्त का मिल गया है, पहले तो धरी लो, उसके ऊपर 10-12% चाहिए था। हमने -30 से शुरू किया मोदी जी के नेतृत्व में और तिनका तिनका तिनका तिनका जोड़ते जोड़ते जोड़ते जोड़ते 46 तक पहुंचे हैं। उतनी मेहनत ही किसी ने नहीं की, सब लोग बैठ के ऊपर से हलवा खाना चाहते थे, चंद कट्टरपंथियों को थोक विक्रेता मान लो और 30-35% वोट ले लो, फिर हिंदुओं में थोड़ा बहुत डिविजन करके 10-12% वोट ले लो, बस हो गई सरकार। आपने मेहनत नहीं की, आपने उन तत्वों का साथ लिया जो कानून को तोड़ना चाहते थे, हमने उन सब का साथ दिया जो कानून के साथ रहना चाहते थे, इसलिए परिवर्तन आया, स्वीकार करिए इसको ईमानदारी से। ममता जी भी ऐसे ही जीती थी,
1: ठीक है सरकार जी को बोलने दी,
0: 2011 में आप लोग कहते थे, अब वही आप।
2: जय गणेश बाबा बोलिए, जय गणेश बाबा एक बार बोल दीजिए ना सुधांशु जी, जय गणेश बाबा की जय एक बार बोल दीजिए ना, क्या है उसमें दिक्कत, गणेश बाबा का मेहनत से आप इतना दूर तक पहुंचे ना, गणेश बाबा आपके लिए कितना काम कर रहे हैं,
1: ज्ञानेश कुमार को कह रहे वो, अच्छा मुझे भी समझ नहीं,
2: गणेश बाबा की जय,
1: अच्छा आप जैसे बोल रहे तो गणेश बाबा सुनाई दिया सबको,
0: अच्छा अच्छा
1: ज्ञानेश कुमार,
0: मैं गणेश बाबा सुनिए, आप संजय जी आप चलिए।

0: संजय जी, अब मैं आपको पूरा बताता हूं हम कितना काम कर रहे हो कैसे। अब बहुत अच्छे ढंग से कान खोल के सुनिए, यहां विनय जी भी बैठे हैं, पूरे भारत। हम जब से पैदा हुए हैं 1951 से, 50 का दशक जनसंघ अप्रासंगिक दल, 60 का दशक जनसंघ महत्वपूर्ण दल, 67 में हमारे 35 लोकसभा जीत के आए और यूपी की विधानसभा में 96, संयुक्त विधायक दल की सरकारें 69 में, 70 का दशक हम केंद्र में पहली बार भागीदार, अनेक राज्यों में मुख्यमंत्री, उत्तर भारत में सब जगह हम सत्ता में भागीदार, 80 के दशक के शुरू में झटका और 90 के दशक के शुरू में मुख्य विपक्षी दल, 90 के दशक के अंत में केंद्र में सत्ताधारी गठबंधन का नेतृत्व और 2010 के दशक में अपने दम पे सत्ता। भाई साहब 70 साल की मेहनत है, ऐसा नहीं है कि आप करें ज्ञानेश बाबा पैदा भी नहीं हुए थे तब तक जब उस जमाने से हम बढ़ते चले आ रहे हैं। भाई साहब गौर से देखिए, नजरें चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नहीं है चेहरा पुराना।
1: अमित जी भाई बीच में आपका करेक्शन कट गया था, जो हमने शो का नाम दिया घुसपैठियों भारत छोड़ो, सही है कि नहीं है? आपसे भी वही सवाल है कि भारत की समस्या है या नहीं है?
2: मैं आपको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं अंजना जी कि आप 12 साल के बाद आज तक जगा घुसपैठियों भारत छोड़ो। मैं सुधांशु जी के साथ और आप
1: जागे
2: साथ,
1: आप हैं, हम लोग तो जगे ही हुए थे। आप आज जागे हैं।
2: अंजना जी भाव विभोर हो जाती हैं आप। 20 सेकंड दे दीजिए मुझे, आप 20 सेकंड दे दीजिए। आपके साथ सुधांशु जी के साथ मैंने इस पे कम से कम 5 शो किए हैं।
1: एग्जैक्टली
2: क्या बात है कि जब से अमित शाह जी आए हैं 14 से 26 के इस दौर में, घुसपैठी जितने भी थे उसे पहले UPA 1 UPA 2 में आपके पास 72,000 का आंकड़ा था। अमित शाह जी के गृह मंत्रालय के दौर में टोटल 3500 का आंकड़ा है। क्यों है? आप सुधांशु जी आगे बढ़िए, हम आपके साथ इस विषय पे भारत की संसद में अगर आपको बात करनी होगी तो माननीय अखिलेश यादव जी आपसे बात करेंगे, लेकिन ये बताओ जरूर किस दिन एक्सपोर्ट करो उनको डिपोर्ट करोगे, किस दिन जहाज पे बिठाओगे? हम चलेंगे आपके साथ।
1: सुधांशु जी जल्दी से जवाब दीजिए, पहले हजार हजार यूपीए में जाते थे, अब हम 100, 500, 600, 800 आप भेज रहे हैं।
0: बता रहा हूं एक्चुअली में क्या हुआ, एनआरसी तो इन्होंने होने नहीं दी तो पहचान नहीं हो पाई, और जब भाजपा की सरकार आती है तो जानते क्या होता है अंजना जी, इसको कोई शब्दशा ना ले, बिलवा में घुस जाएला सब सांप बिच्छू गोजर, चलेला जब चाप के बाबा का बुलडोजर, आज जब चलना शुरू होता है सब इधर उधर अपने बिल में घुस जाते हैं जाके।
1: आज जो कुछ ये दिखाई पड़ रहा, समय इतने आई है। आप सभी का धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। आज रात 9 बजे जरूर रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि ब्लैक एंड व्हाइट में आपको बताएंगे कैसे इस बार बकरीद पर कानून की कुर्बानी नहीं दी गई। इसके अलावा आपको CBSE में ऑनलाइन मार्किंग सिस्टम में हुई गड़बड़ी का पूरा जो ABCD है कि CBSE में आखिर ये गड़बड़ी कैसे हुई है वो पूरा समझाएंगे, और आखिर में IPL में इतिहास रचने वाले वैभव सूर्यवंशी नाम के नए तूफान के बारे में बताएंगे। देखते रहिए आज तक।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. Thank God I get to wait. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
2: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
3: ए प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
4: विक्रम, एक हिंट तो देते।
5: हिंट बड़े आराम से।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुमा केसरी।
2: और वही कहाँ गए थे घूमने?
3: जीके मैक्स।
4: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
3: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
5: जेके वॉल मैक्स
3: बेस्ट पेंट।
5: जेके मैक्स।
3: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट। जेके मैक्स पेंट खुशियों के रंग।
6: टेबल के ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं ये भाई साहब, सब पचा देते।
7: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
8: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
9: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है।
10: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
9: आप कैसे कर लेते हो?
11: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
12: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो, तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
13: नहीं
12: और म्यूचुअल फंड्स है
13: सही।
14: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
15: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
16: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
17: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में
18: जान। AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
19: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
20: सोच बदलो और बैंक भी।

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। गैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
2: इन एसोसिएशन विद
3: समकूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समकूल कूलर, लाइफ बनाए वंडरफुल।
2: हिंट, बड़े आराम से
4: पंजाब नेशनल बैंक, भरोसे का प्रतीक।
5: कूल स्टाइलिश फैंस, एनहांस होम डेकोर विद ब्यूटीफुल फैंस।
6: शारदा यूनिवर्सिटी, द वर्ल्ड कम्स टुगेदर एट शारदा यूनिवर्सिटी, वेयर आर यू।
2: विमल, बोलो जुबां केसरी।
7: 25 सालों से जहां टिकी है देश की नजर, मेरे साथ फिर से शुरू हो रहा है वही सफर। ये है खबरें साथ तक, देखते रहिए आज तक।
8: तक डिजिटल फर्स्ट चैनल्स, 11 बिलियन व्यूज, 85 मिलियन यूनिक व्यूअर्स, वन स्टॉप

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com

0: दिल्ली में पानी का संकट तो है ही, कई कॉलोनियों में पानी ही नहीं आ रहा। इस भीषण गर्मी में बड़ा जल संकट पैदा हो गया है, लेकिन दिल्ली के गुलमोहर पार्क में नाले जैसे पानी की सप्लाई हो रही है, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीमार भी हो गए। दिल्ली का गुलमोहर पार्क सबसे ज्यादा पॉश इलाकों की लिस्ट में आता है। यहाँ बड़े और अमीर लोग रहते हैं और उन्हें भी पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। पानी से सीवर की बदबू आ रही है।
1: देश की राजधानी दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही है, लेकिन सामान्य इलाकों को छोड़िए, वो इलाके जहां लखपति करोड़पति रहते हैं, सबसे महंगे इलाकों में से एक गुलमोहर पार्क में पानी गंदा आ रहा है। अब हम जिन इलाकों में आए हैं, बंगलों में, आप सोचिए कि ये जो पानी है, ये पीने के पानी का टैंक है, लेकिन ये पानी पूरा काला है। काली पानी की सप्लाई इसमें बदबू है, जिसके चलते बहुत लोगों को यहाँ बीमारियां हुई हैं, रैशेस हुई हैं और पेट से जुड़ी, लिवर से जुड़ी दूसरी बीमारियां। तो अब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, टैंक में पानी भर गया है, इसको खाली करवा के अब इसके बाहर निकलवा रहे हैं, ताकि जब जल बोर्ड की साफ पानी आएगी, सप्लाई आएगी, तब इन टैंक को भरा जाएगा। अब आप सोचिए कि गर्मी बढ़ी, पानी की किल्लत शुरू हुई, दूसरे इलाकों में बिजली की किल्लत है, दिल्ली में पानी की कमी है, और जहां पानी आ रहा है वो भी ऐसे इलाकों में, सोचिए कि इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, महंगा इलाका है, इस पानी में बदबू है। और ये पिछले 5-6 दिनों से गुलमोहर पार्क जैसे प्रतिष्ठित इलाकों में, उन इलाकों में जहां संपन्न लोग रहते हैं, धनाढ्य तबका रहता है, वहां भी इस तरह का गंदा पानी आ रहा है। लिटरली लुक द बैड स्मेल,
2: जो है अब जो है 3-4 दिन से तो बहुत ज्यादा खराब हालत है।
1: तो स्मेल रैशेस,
2: स्मेल रैशेस तो नहीं, यूज ही नहीं कर रहा, यूज करना बंद कर दिया ये पानी हमने,
1: इसकी वजह से तबीयत वगैरह भी बिगड़ी लोग।
2: हाँ, मेरे को डायरिया खुद हुआ है, तो 3 दिन से तो मैं भी बीमार बैठा हूँ।
1: आप लोग कम क्लीनिंग कर रहे हैं?
3: हाँ जी, जीडी वाटर कंसल्ट से हूँ मैं।
1: अच्छा,
3: और ये पंचशील, गुलमोहर पार्क और डिफेंस कॉलोनी जैसे पॉश इलाकों में पानी की यही दिक्कत आ रही है।
1: आपको रोज कितने टैंक क्लीन करने जाना पड़ रहा है?
3: हमारी कम से कम 20 टीमें हैं, और हमारा डेली का कम से कम 40 से 45 कॉल हो रही है, 40 से 45 घरों में जा रहे हैं, वहाँ पे ज्यादातर यही दिक्कत आ रही है।
0: बाहर हमें दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी भी मिले, जो इस गंदे पानी की लाइन को ठीक कर रहे थे। जल बोर्ड इस गंदे पानी का ठीकरा कॉलोनी में निर्माण और पीडब्ल्यूडी पर फोड़ रहा है।
4: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पूरी प्रचंड गर्मी इस समय है, पारा 45 डिग्री के पार है, और सुखना लेक पर आप देखिए कि जो पानी का स्तर भी था वो भी अपने लेवल से 5 से 6 फीट कम नजर आपको आएगा। और ये जो मिट्टी के निशान पत्थरों पर हैं, तो ये पहले यहाँ पर पानी था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 15 से 20 दिनों में पूरा 45 डिग्री के पार तापमान रहा है और पूरा हीट वेव रही है उत्तर भारत में, खासकर पंजाब हरियाणा में, तो उसका असर आप देखिए कि हर चीज पर है, लोगों का व्यवसाय हो, लोगों का कामकार हो, और प्राकृतिक तौर पर भी आप देखिए कि जो जल स्रोत हैं या जिस तरीके से हीट वेव है, उसका असर पूरे तरीके से है। इस समय पंजाब के बठिंडा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है, 45 डिग्री, और हरियाणा का सिरसा ऐसा शहर है जो 46 डिग्री पारे के साथ सबसे हीटेड शहर है। और आप देखिए कि ये सुखना लेक पर जो चहल पहल होती थी, हरा भरा रहता था और आवाजाही रहती थी, लोग यहाँ पर आते थे, तो वो भी अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस समय धूप में सुबह के वक्त भी निकलना पसंद नहीं कर रहे। अगर
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट, तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: घुसपैठियों भारत छोड़ो, इसी पर आप देख रहे थे हल्ला बोल में बहस। हम ब्रेक नहीं ले रहे हैं, अब देखिए शंखनाद नेहा के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।

0: नमस्कार, मैं हूं नेहा पाठक। शाम के 7 बजने वाले हैं आज तक के इस खास शो में। अगले आधे घंटे में दिन भर की सभी बड़ी खबरें शामिल होंगी, लेकिन खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर हेडलाइंस। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से शिक्षा मंत्री की एक्सक्लूसिव बातचीत। आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं दूर होंगी। मिशन बॉर्डर पर निकले गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा। कहा है कि घुसपैठियों को निकालने के बाहर, बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा। कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। पेशा केस में सालगिरह बाला सिंह गिरफ्तार, 6 घंटे पूछताछ के बाद सीबीआई ने किया अरेस्ट, जांच में सामने आए गंभीर आरोप। नहीं रहे जीवन की सच्चाई को शब्दों में पिरोकर दिल तक उतरने वाले शायर बशीर बद्र, लंबी बीमारी के बाद भोपाल में हुआ निधन, साहित्य जगत में शोक। त्रिशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था, त्रिशा की मौत के ठीक 18 दिन बाद आखिरकार त्रिशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
1: तमाम रस्साकसी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद त्रिशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
2: जो एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की एफआईआर यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
1: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी हैं।
2: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्रिशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
1: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी, जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से त्रिशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि त्रिशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: तो क्या नीट की परीक्षा की जिम्मेदारी अब सेना को सौंपी जाएगी? नीट और सीबीएसई को लेकर जारी घमासान के बीच मेरे सहयोगी श्वेता सिंह ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से एक्सक्लूसिव बातचीत की।
3: नीट जो री एग्जाम होना है उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह के आप लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो पिछले महीने हुआ वो दोबारा ना हो?
4: पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। तब भी मैंने कहा था पिछले बार जब मैंने आप लोगों को मिला था और कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं परीक्षा को निर्भुल करने के लिए। 21 जून को री नीट की तिथि तय हुई है। पिछले दिनों में भी नीट की एक प्रोटोकॉल है कैसे ये परीक्षा होगी, इसमें इस बार और मजबूती और स्पष्टता और सुरक्षा की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। इस सारे प्रबंधन के बाद इस बार जो घटना हुई या आगे कैसे ना हो उसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। हम पूरा सरकार की सभी घटक मिलकर होल ऑफ द गवर्नमेंट के एक अप्रोच से ये शुरू से नई अप्रोच कैसे प्रश्न पत्र तैयारी करने से लेके परीक्षा होने तक और परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित केंद्र में लौट के आए, इस सारे की एक फुल प्रूफ व्यवस्था किया जा रहा है, राज्य सरकारों की मदद लिया जा रहा है, इसकी कोऑर्डिनेशन जिला स्तर तक होगी, स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जामिनेशन हो, इसलिए हमने दायित्व लिया था कि बच्चों को थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए हमने पिछले बार की जो फीस था, जो परीक्षा कैंसिल हुई उसकी फीस हम लौटाएंगे, जो अभी की परीक्षा होगा उसको फीस माफ करेंगे, फीस नहीं लेंगे, और बच्चों को हमने अवसर दिया था अगर वो अपना चॉइस बदलना चाहते हैं सेंटर, वो भी हमने बच्चों को दिया, लगभग अच्छे खासा 2.5-3 लाख बच्चे अपना सेंटर को भी बदले हैं, उसको भी हमने अकोमोडेट किया। एक राज्य सरकारों का मदद लेके जो 5,400 केंद्र होगा, ये कैसे सुरक्षित हो, सरकारी संस्थानों में हो, उसकी प्रोटोकॉल पूरा हो, उसकी SOP पूरा हो, उसकी सारे जिम्मेवारी, उसकी हम लोग एक पूरे अमूल चूल उसकी फिर नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं।
3: सर, पर संभव कैसे होगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसमें तो जो घर के भीतर के लोग हैं वो इसमें लिप्त पाए गए, जो पेपर सेट कर रहे थे वो इसमें इन्वॉल्व रहे।
4: देखिए, ये दुर्भाग्यजनक घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारी कभी ये पिछले 24 की जो अनुभव आई, जिसके उपरांत राधाकृष्ण कमेटी बनी, राधाकृष्ण कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया, इसको हमने पूरा एंड टू एंड पालन करने का जो शॉर्ट टर्म था उसको लगभग पूरा हमने पालन भी किया।
3: सर, विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि आपने नहीं पालन किया।
4: तो सारे स्पष्ट है ना, राधाकृष्ण जी खुद एक लंबे इंटरव्यू में खुद कहा है कि लगभग जो शॉर्ट टर्म, उन्होंने तीन प्रकार की रिकमेंडेशन किया था, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लगभग शॉर्ट टर्म की 70 से ज्यादा रिकमेंडेशन हमने पूरा पालन किया, इसलिए
3: 70 से ज्यादा,
4: इसलिए उनका 102 रिकमेंडेशन था। जो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन था सारे उसको पालन किया गया, उसके बावजूद भी चूक हुई, उसकी इसके लिए हमारी मन में दुख है, खेद है, और हम बच्चों के प्रति दायित्व बांधने बच्चों को बताते हम उत्तरदायी भी है, हम हमारे पास उसके लिए क्षमा याचना के अलावा कोई शब्द विकल्प भी नहीं है।
3: जिस पैमाने पर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि PMO की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारी नजर रहेगी इस पर, मतलब देश के आपके बाकी जो कैबिनेट के सहयोगी हैं वो सब राजनाथ जी के साथ बैठकें हो रही हैं, तो यानी कि पूरा तंत्र इस समय लग गया है कि देश का भविष्य।
4: हमने कहा ना कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट में, आपको सरकार की कोई विभाग का दायित्व हो सकता है लेकिन दायित्व तो सभी के ऊपर है, इसलिए सरकार की पूरा नेतृत्व स्वयं हमारे प्रधानमंत्री, हमारे नेता है, उनकी निश्चित जानकारी में सभी चीज को किया जा रहा है, वो उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं, लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार की सारे घटक, केवल राज्य केंद्र सरकार नहीं, राज्य सरकार को, क्योंकि आखिर एक केंद्र तो 5,400 केंद्र होगा, 1 लाख क्लासरूम्स में परीक्षा होगी, 22 लाख विद्यार्थी परीक्षा देंगे, ये सारे की एक कलेक्टिव अप्रोच से, सामूहिक उत्तरदायित्व से पूरा काम किया जाएगा।
3: NTA की ये भूमिका क्या चिंता का विषय बन रही है, इतनी सारी परीक्षाएं, मतलब उनकी जिम्मेदारियों का विस्तार हो रहा है, लेकिन नीट एक के बाद एक दूसरी बार, लाखों छात्रों का भविष्य।
4: देखिए, NTA को एक बैकग्राउंड से बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे NTA बनी थी, NTA विकसित हो ही रहा है, उसमें और भी काम बाकी है, अभी के जो NTA के नेतृत्व है, मेरे भरोसा है वो लोग उसको बना पाएंगे। NTA एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, NTA को हमने स्वतंत्रता दिया है अपने बिल्डअप करने के लिए, और मेरा पूरा भरोसा है जो अनुभव इन दिनों में हुई है, NTA भारत में एक टेक्नोलॉजी सा भी संस्था बनेगी। अभी भी NTA लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों का सालाना परीक्षा करती है। नीट हमारी एक चुनौती, इसलिए हमने इस बार शुरू से कहा था नीट को हम आने वाले सालों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे, ये पेन एंड पेपर ही एक नई चुनौती बन जाता है। इसके अलावा और भी एक मत चल रहा है कि भाई नीट को विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, कि वो भी एक सोच समाज में है, देखते आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, लेकिन NTA केवल नीट नहीं, अनेकों परीक्षा करती है, CUET करती है, JEE करती है, अनेक एग्जामिनेशन, GRF का, UGC नेट का परीक्षा करती है, ये सारे परीक्षा निर्भुल भी कर रहा है, इसको आने वाले दिनों में और मजबूती करने का आवश्यकता है।
0: और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, CM पद से इस्तीफा देने के बाद सिद्धारमैया कुछ देर में दिल्ली पहुंचने वाले हैं, जहां वो राहुल गांधी से मुलाकात करेंगे। सिद्धारमैया के भविष्य की रणनीति पर चर्चा की जाएगी और पार्टी नेतृत्व ये तय करेगा कि उन्होंने उनके लिए क्या भूमिका तय की है। वहीं DK शिवकुमार जो दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं, कल सिद्धारमैया राज्यपाल से मुलाकात कर इस्तीफा सौंपेंगे, और आज राज्यपाल बेंगलुरु में नहीं थे, ऐसे में सिद्धारमैया ने उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा। इस बीच सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।

0: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की ये तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धारमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
1: Whatever sir, this leader party takes a decision, Congress leader party takes a decision, and I command takes a decision, he will be the chief minister of this state.
0: दिल्ली में आला कमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धारमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धारमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
1: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತವನು ಮತದಾರರೇ ನಮ್ಮ अभिमानी देवरू।
0: इससे पहले आज सुबह सिद्धारमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धारमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।

और इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, एक्सक्लूसिव बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का कहना है कि 21 जून की परीक्षा को लेकर पुख्ता तैयारी है। हम जिम्मेदारी लेते हैं कि पहले जो गलतियां हुई हैं वो दोबारा ना दोहराई जाएं। नीट पेपर लीक का मामला बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। शिक्षा मंत्री का साफ तौर पर कहना है जो इंटरनल लोग इन्वॉल्व थे उन पर कार्रवाई की जा रही है और ऐसा दोबारा अब नहीं होगा। तो आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एनटीए बना था। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, कुछ ही देर में सिद्धारमैया दिल्ली पहुंचेंगे। लगभग 7 बजे उन्हें पहुंचना था, दिल्ली आलाकमान में उनकी मीटिंग है। राहुल गांधी से सबसे पहले सिद्धारमैया मुलाकात करेंगे। सिद्धारमैया अपना इस्तीफा पहले ही सौंप चुके हैं। सियासी भविष्य उनका क्या होगा इसको लेकर चर्चा होगी, क्योंकि कहा जा रहा है कि राज्यसभा वो नहीं जाना चाहते हैं, यानी कि संगठन को और मजबूत करने में उनकी अहम भूमिका हो सकती है। डीके शिवकुमार भी आज ही रात दिल्ली पहुंचेंगे, यानी कि दोनों बड़े और अहम नेता कांग्रेस के आज दिल्ली में ही मौजूद रहेंगे। ये बेहद महत्वपूर्ण घटनाक्रम, क्योंकि सुबह सवेरे सिद्धारमैया ने अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उसके बाद ब्रेकफास्ट मीटिंग में ये भी साफ हो गया था कि अगले सीएम डीके शिवकुमार होने वाले हैं, और वो भी आज रात दिल्ली पहुंच रहे हैं। वहीं सिद्धारमैया भी अब से कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचने वाले हैं। रवानगी उनकी हो चुकी है बेंगलुरु से। अब रविवार को हो सकती है नए सीएम की शपथ, यानी कि कर्नाटक का नया सीएम रविवार को मिलेगा। सिद्धारमैया दिल्ली अब से कुछ ही देर बाद पहुंचेंगे, लेकिन उनका राजनीतिक भविष्य क्या रहने वाला है इसको लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। हालांकि कैबिनेट में उन्होंने अपने कई लॉयलिस्ट को जगह देने की मांग रखी है, ऐसा सूत्रों के हवाले से खबर है, जिसमें उनके पुत्र भी शामिल हैं। रविवार को नए सीएम की शपथ। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जून के पहले हफ्ते में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, ये बड़ी खबर इस वक्त की आ रही है। बीजेपी के संगठन में बदलाव की खबरें लगातार आ रही हैं, और बड़ी खबर यह है कि जल्द ही नितिन नवीन की टीम का विस्तार हो सकता है।

0: साथ वो भी दिल्ली पहुंचने वाले हैं। तो कर्नाटक में भविष्य के सीएम वही बनने वाले हैं। मौसमी सिंह मेरी सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। मौसमी, अब हलचल और केंद्र में ही सारा मामला अब तय होगा, यानी कि सेंटर ऑफ फोकस अब दिल्ली बन गया है, जहां पर सिद्धारमैया और कुछ देर बाद डीके शिवकुमार की मौजूदगी होने वाली है।
1: जी बिल्कुल, देखिए हम लोग कर्नाटक भवन में खड़े हैं नेहा, और ये पिछले 3 दिन में दूसरी बार होगा जब डीके शिवकुमार और सिद्धारमैया जो है मतलब ये
2: जो है मतलब ये 3 दिन के भीतर ही दोबारा दिल्ली आ रहे हैं। और देखिए एक तरीके से सिद्धारमैया पिछली बार भी जब दिल्ली आए थे तब वो डीके शिवकुमार के साथ नहीं आए थे, भले ही उनके साथ पूरी उनकी कैबिनेट आई थी और सुबह नाश्ता भी सभी पूरी कैबिनेट ने एक साथ मतलब कि 7-8 बड़े मंत्री आए थे और उन्होंने एक साथ नाश्ता किया था। और इस बार भी भले ही 1-2 घंटे की फ्लाइट का अंतर है, दोनों लोग अलग अलग दिल्ली आ रहे हैं, लेकिन पासा पलटा हुआ है। सिद्धारमैया ने रिजाइन कर दिया है और उनकी 1-on-1 मीटिंग होनी है पार्टी हाईकमान के साथ। बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी से भी सिद्धारमैया मिलेंगे। और अब सबसे बड़ी चुनौती होगी पार्टी हाईकमान के सामने, क्योंकि कर्नाटक की राजनीति सिद्धारमैया ने अब तक की है और पार्टी हाईकमान चाहता है, उन्होंने मुख्यमंत्री पद तो छोड़ा लेकिन पार्टी हाईकमान चाहता है कि वो अब दिल्ली की राजनीति करें। तो क्या इस बात पर मना पाएंगे सिद्धारमैया को राहुल गांधी, ये सबसे कठिन और जटिल सवाल है इस पूरे ट्रांजिशन में, क्योंकि राज्यसभा की सीट को लेके ऑफर किया था राहुल गांधी ने और हमारे सूत्र बताते हैं सिद्धारमैया रिलक्टेंट थे, वो राज्यसभा के जरिए दिल्ली नहीं आना चाहते थे। तो क्या अब कुछ 2 दिन में कुछ बदला है, ये हमें देखने को मिलेगा।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि बीजेपी के संगठन में बदलाव की खबरें लगातार आ रही हैं। बड़ी खबर यही है कि जल नितिन नवीन की टीम का विस्तार हो सकता है, इसके साथ ही बीजेपी शासित कई राज्यों में कैबिनेट रीशफल की भी बात हो रही है। इस बाबत MP, छत्तीसगढ़, राजस्थान और ओडिशा के CM से मुलाकात हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में भी नए प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी की टीम का जल्द विस्तार हो सकता है। उनकी टीम के लिए 2 राउंड की चर्चा हो चुकी है और इसके साथ ही कर्नाटक में सेंट्रल ऑब्जर्वर ने अपनी रिपोर्ट आलाकमान को सौंप दी है। माना जा रहा है कि कर्नाटक में भी कैबिनेट रीशफल होगा। माना यह भी जा रहा है कि जून के पहले सप्ताह में केंद्रीय मंत्रिमंडल विस्तार होगा और जून के दूसरे हफ्ते में नितिन नवीन की टीम का ऐलान किया जाएगा। हिमांशु मिश्रा मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। हिमांशु, इतने सारे बड़े और अहम बदलाव किए जा रहे हैं, वजह क्या है?
3: देखिए सबसे बड़ी बात यह है क्योंकि लगभग 2 साल के करीब जो है इन राज्यों में भी होने वाले हैं जहां पर कैबिनेट रीशफल नहीं हुआ है। अगर आप देखें मध्य प्रदेश में नहीं हुआ है, छत्तीसगढ़ नहीं हुआ है, राजस्थान में नहीं हुआ है, उड़ीसा में भी जो है अब जो है 2 साल होने वाले हैं जब कैबिनेट रीशफल की जरूरत है, क्योंकि लोकसभा चुनाव के साथ ही जो है उड़ीसा के चुनाव हुए थे। तो ऐसे में चारों प्रदेशों के अंदर जो है वो रीशफल होना है, यानी कैबिनेट का विस्तार भी होगा, कुछ मंत्रियों को संगठन में लाया जा सकता है, कुछ को छुट्टी होगी और कुछ को नई जिम्मेदारी जो है कैबिनेट में मिलेगी। उसके साथ साथ नितिन नवीन 20 जनवरी को जो है वो पार्टी के अध्यक्ष की उन्होंने कमान संभाली थी और अब 5 महीने से ज्यादा का समय जो है वो हो चुका है जब उनकी नई टीम नहीं बनी है। और अब उनकी नई टीम को लेकर भी जो है कयास पूरी तरीके से है कि जून के पहले सप्ताह के अंदर ही जो है वो उनकी नई टीम जो है वो आ जाएगी, जिसमें अनुभवी युवाओं और महिलाओं को तरजीह दी जाएगी और जिन राज्यों के अंदर चुनाव है जाहिर तौर पर वहां पर भी जिम्मेदारियां जो है वो दी जाएंगी। लेकिन बड़ी चीज ये है कि अगर आप देखें तो पिछले दिनों उत्तर प्रदेश के अंदर जो है कैबिनेट का विस्तार हुआ, उससे पहले आपने देखा होगा उत्तराखंड के अंदर कैबिनेट विस्तार हुआ था। तो एक नेचुरल प्रक्रिया है और जब ये सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएंगी तो कैबिनेट का विस्तार होना है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो मोदी सरकार 3.0 है उसमें भी 2 साल जो है वो 9 नवंबर को हो जाएंगे। तो ये माना जाता है कि 2 साल के अंदर एक कैबिनेट का रिशफल होता है। अगर आप कोविड काल में छोड़ दें 2019 में जब मोदी ने एक बार फिर से शपथ ली थी, दूसरी बार प्रधानमंत्री बने थे, तो कोविड के चलते जो है 2 साल से ज्यादा का समय जो है 2 साल 1 महीने के करीब का समय जो है वो लगा था कैबिनेट रिशफल करने में। तब भी उन्होंने एक बड़ा रिशफल जो है वो किया था और इस बार भी माना जा रहा है कि 2 साल जब उनके कंप्लीट होंगे 9 जून को, तो उसके बाद जो है एक बड़ा कैबिनेट रीशफल जो है आपको देखने को मिलेगा जो मानसून सत्र से पहले का होगा।
0: ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका। वही बात करेंगे अब उर्दू शायरी की, जिसकी दुनिया से एक दुखद खबर सामने आई। मशहूर शायर डॉक्टर बशीर बद्र का आज दोपहर भोपाल में निधन हो गया। उन्होंने 91 साल की उम्र में अपने घर पर अंतिम सांस ली। डॉक्टर बशीर बद्र लंबे समय से डिमेंशिया की बीमारी से जूझ रहे थे। उनकी याददाश्त काफी कमजोर भी हो चुकी थी और वो लोगों को पहचान नहीं पा रहे थे।
4: इबादतों की तरह मैं ये काम करता हूँ। मेरा उसूल है, पहले सलाम करता हूँ। मुखालफत से मेरी शख्सियत संवरती है। मैं दुश्मनों का बड़ा एहतराम करता हूँ। मैं डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से। जरा सी धूप बिछा कर कयाम करता हूँ। मैं डर गया हूँ बहुत सायादार पेड़ों से। जरा सी धूप बिछा कर कयाम करता हूँ। मुझे खुदा ने गजल का दयार बख्शा है। ये सल्तनत मैं मोहब्बत के नाम करता हूँ।
0: इस बुलेटिन में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
5: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से इन एसोसिएशन विद भारत।
6: To 15-year-old Harper, buying an $80 vintage rock t-shirt is a great investment. To Harper's mom, this logic has a few holes in it. So she helped Harper open a Wells Fargo Clear Access banking account. With no overdraft fees and tools to track spending, Harper's learning, one heavy metal tee at a time. However you make money work, Wells Fargo can work with that.
7: Terms apply. Visit wellsfargo.com/deposit-disclosures for fees and details.
8: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
9: TuneIn is bringing people together through radio. Listen to all your favorite music, news, sports, and more all in one place. And hear all the audio you love. Whether you're a music lover, interested in what's going on around the world,
10: I have no idea how this election is going to play out,
9: or want to catch up on your team's live play-by-play, it's all right here on TuneIn. Just sit back, relax, and listen.
5: Presented by पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से परोसा इन एसोसिएशन विद
11: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
12: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

0: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
1: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears.
2: It's my music and it's my station.
1: Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.
3: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
4: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
3: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
5: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी,
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट,
7: जेके मैक्स।
5: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।
8: सर, म्यूचुअल फंड्स के बारे में आपसे एक सवाल पूछना था।
9: सॉरी सर, मार्केट की बात करके आपको डिस्टर्ब नहीं करना था।
10: ऐसे सवाल मुझे डिस्टर्ब ही नहीं कर सकते। म्यूचुअल फंड्स की कोई भी बात हो ना, मैं शांति को साथ रखता हूँ। म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का नहीं, और म्यूचुअल फंड से सही।
11: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
12: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
13: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
14: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
15: सोच बदलो और बैंक भी।
16: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
17: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
18: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
16: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
19: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
17: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
16: जहाँ खबर वहाँ खबरदार।
20: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: SIR की प्रक्रिया से भयभीत होकर बांग्लादेशी जो पिछले कई सालों में भारत वर्ष में आए हैं, खास तौर पर दलालों को पैसा देकर, पिछले 2-3 दिनों से यही प्रक्रिया दोबारा देखने को मिल रही है। एक पैनिक क्रिएट हो गया है, इसलिए अब वो वापस बांग्लादेश जाने के लिए इसी हाकिमपुर बॉर्डर पर एकत्रित हो रहे हैं।
22: ये माना जा रहा है कि ये होल्डिंग सेंटर बनाने की खबर फैलने के बाद लोगों में, खासकर इन घुसपैठियों में, एक आतंक बैठ गया है कि अगर उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया तो फिर आगे क्या होगा। तो आने वाले दिनों में ये तादाद और कितना बढ़ता है कि उन्हें उस पार यानी बांग्लादेश भेजा जाए। वीडियो जर्नलिस्ट लेसन लोध के साथ तपस सिंह गुप्ता, आज तक, हकीमपुर।

0: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।
2: इन एसोसिएशन विद
3: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
4: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

मिशन बॉर्डर पर निकले गए मंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस से राज बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। केस में सास गिरे बाला सिंह गिरफ्तार, 6 घंटे पूछताछ के बाद सीबीआई ने किया अरेस्ट, जांच में सामने आए हैं गंभीर आरोप। भीषण गर्मी से दिल्ली वालों को मिली राहत, हल्की बारिश से मौसम सुहाना, तापमान में आई गिरावट।

0: सामने टीपी नहीं है। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं विशेष, आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। आज हम विशेष में बात करेंगे हिंदुस्तान क्रिकेट के नए सूर्य वैभव सूर्यवंशी की। इस दुनिया में सूर्य से ज्यादा चमकदार और कुछ भी नहीं है, और वैभव सूर्यवंशी का मौजूदा आईपीएल देखकर यही लगता है कि वो क्रिकेट की दुनिया के सबसे चमकदार सितारे बनने जा रहे हैं। भारत को एक ऐसा सुपरस्टार मिल चुका है जो सीनियर टीम में आने को बेताब है, जिसके लिए पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है कि उसे जल्द से जल्द भारत की सीनियर टीम में शामिल किया जाए।
1: कौन मानेगा कि सिर्फ 15 साल के एक लड़के ने दुनिया हिलाकर रख दी। कौन मानेगा कि सिर्फ 15 साल के एक लड़के के हौसलों के आगे क्रिकेट के सारे रिकॉर्ड छोटे लगते। कौन मानेगा कि 15 साल के छोटे से लड़के ने दुनिया के बड़े बड़े बॉलर्स की बॉलिंग का जनाजा निकाल दिया। पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, जसप्रीत बुमराह, जॉश हेजलवुड और कगिसो रबाडा, ये अभी पूरी दुनिया के 5 बेस्ट बॉलर्स हैं, और वैभव सूर्यवंशी अपनी बैटिंग के आगे इन्हें भी कुछ नहीं समझता। रिकॉर्ड्स ये बता रहे हैं, वैभव सूर्यवंशी ने अब तक पैट कमिंस को 5 छक्के मारे हैं, मिचेल स्टार्क को भी 1 छक्का मारा है, जॉश हेजलवुड के 1 ओवर में 3 चौके और 1 छक्का मारा, जसप्रीत बुमराह को 1 ही ओवर में 2 छक्के मारे, सूर्यवंशी रबाडा को भी 2 छक्के मार चुका है। इसीलिए तो वैभव को

0: अनुभव ने सिर्फ 266 गेंद खेलकर 65 छक्के लगाए। आईपीएल के एक सीजन में किसी अनकैप्ड बैटर यानी कि बिना अपने देश के लिए खेले हुए बल्लेबाज के तौर पर सबसे ज्यादा रन बनाए हैं 680। आईपीएल के प्लेऑफ गेम्स में सबसे तेज 50 के रिकॉर्ड की बराबरी की। 2014 में सुरेश रैना ने 16 गेंद में बनाई थी, कल वैभव ने भी 16 गेंद में अपनी 50 पूरी की। अभी तक वैभव सूर्यवंशी ने पावर प्ले के अंदर 5 बार 50 से ज्यादा का स्कोर बनाया है। डेविड वार्नर ने 6 बार बनाया है। आईपीएल के एक सीजन में एक मैच में 10 से ज्यादा छक्के 3 बार मारने वाले पहले बल्लेबाज बने।
1: जीते तो अच्छा पॉजिटिव इंटेंट लेके नेक्स्ट मैच पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट मैच को सेम जीत कर निकलेंगे फाइनल। थोड़ा बहुत सोचता हूँ, ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बस ट्राई करता हूँ जो गेम है वही खेलूँ, ज्यादा सोचू ना। बट कहीं पे अगर मुझे लगता है मुझे काम करना है तो वो देखता हूँ मैं। सर बस यही सोचता हूँ कि सामने वाली टीम के बॉलर्स कौन है, मैं इस विकेट पे किस तरीके से उनको फेस कर सकता हूँ, बाउंड्रीज कितनी भरी है, यही सब बस।
0: इसीलिए तो कल के मैच के बाद वैभव सूर्यवंशी की जमकर तारीफ हो रही है। किस किसने वैभव की तारीफ नहीं की, सचिन तेंदुलकर, युवराज सिंह, क्रिस गेल, पूरा सोशल मीडिया वैभव सूर्यवंशी की तारीफों से भरा पड़ा है। खुद सचिन तेंदुलकर ने लिखा है, वैभव सूर्यवंशी का बैट स्विंग बहुत शानदार है और सबसे ज्यादा शानदार यह है कि जो बॉल उसके पैरों पर आती है वो उन्हें खेलने के लिए कितने खूबसूरत तरीके से फ्रंट फुट पर आकर रूम बनाता है। यही आजादी उसे वैसा खेल खिलाती है जैसा वो खेलता है। ये इनिंग बहुत शानदार है। वैभव सूर्यवंशी की तुलना बड़े बड़े क्रिकेटर्स से हो रही है, सचिन तेंदुलकर से। बहुत पहले एक इंटरव्यू में वैभव ने बताया था कि सचिन से उनकी तुलना उन्हें और ज्यादा अच्छा खेलने का मोटिवेशन देती है।
2: आपके नाम के साथ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स क्रिकेट हैज एवर सीन, इनफैक्ट उनका नाम जोड़ा जा रहा था, सचिन तेंदुलकर। जब आपका नाम एक सचिन तेंदुलकर जैसे जने के साथ लिया जाता है तो क्या एक वो एक आप पे एडिड प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर, ज्यादा प्रेशर आप पे लाता है या फिर आपको मोटिवेशन देता है कि मैंने अभी आगे जाके काफी कुछ और भी करना है?
1: मोटिवेशन ही एक तरीके से कि सचिन तेंदुलकर सर के साथ मेरा नाम जुड़ा जा रहा था तो, बट थोड़ा बहुत अच्छा लगा कि उनके साथ मेरा कंपेयर किया जा रहा है। बट मुझे वहाँ बस ये नहीं था कि डेब्यू कर लिया बस ये हो गया, मेरा मोटिव ये है कि वहाँ रन्स करके और ऊपर कैसे खेलना है।
0: आने वाले दिनों में पूरी दुनिया इस बात पर रिसर्च कर रही होगी कि सिर्फ 15 साल के एक बच्चे के दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि वो इतने छक्के मारता है और ज्यादातर पहली बॉल से ही मारता है। वैभव की ट्रेनिंग ही ऐसी है कि अगर पहली बॉल ही उसके स्लॉट में आ गई तो वो छक्का ही मारता है। उसके पुराने कप्तान संजू सैमसन से सुनिए।
3: आपके कोच जो थे वो यहाँ बैठे हैं, वो खुद डेढ़ डेढ़ दिन बैटिंग करते थे, एक दो ऐसे नहीं डेढ़ दिन बैटिंग करते थे, कभी कभी दो दिन बैटिंग करते थे। उनसे क्या बातचीत हुई कि मैं जाके पहला बॉल सिक्स मारूंगा?
1: सो मैच से पहले दिन में संजू भैया और सर ने बुलाया था मुझे रूम में और पूछ रहे थे मेरे से क्या करना है, तो मैंने बोला भी था कि सर कुछ करना नहीं है, मिलेगा तो अगर मारने का बोले तो मारूंगा।
4: I was there in the meeting. Can I interrupt actually? Yes. तो सर invited him to the room. Sanju, we need to talk to him. Very young kid. We have to tell him how to go about it. So Rahul sir, आज वैभव, what's the plan?
5: ऐसा कुछ नहीं है सर, हम तो खेलेंगे, तो क्या है, ऐसा है? No, what is your game plan? Like अगर हमें पहला मिला तो हम पहला ही उड़ा देंगे। That is not exactly it actually. So भाई ये अलग वीडियो गेम ही खेल रहे हैं।
0: वैभव सूर्यवंशी भले ही सिर्फ 15 साल के हों लेकिन वो मेंटली बहुत मैच्योर है, नहीं तो इतनी छोटी सी उम्र में अपने से दोगुनी उम्र और बहुत ज्यादा अनुभव वाले बॉलर्स को वो ऐसे ही नहीं मार सकता। सामने जसप्रीत बुमराह हो, हेजलवुड हो, कगिसो रबाडा हो, पैट कमिंस हो, मिचेल स्टार्क हो, तो 15 साल का तो कोई भी बच्चा वैसे ही घबरा जाएगा। जिन लोगों को उसने बचपन से खेलते हुए देखा हो, जिन्हें टीवी पर देख देख कर वो बड़ा हुआ हो, वो उसके सामने जब बॉलिंग कराने आएंगे तो अगर वो मेंटली मजबूत न हुआ तो घबरा जाएगा। लेकिन वैभव के साथ ऐसा नहीं है। सम्मान वो सबको देता है, सबके पैर छूता है, लेकिन ग्राउंड में किसी को छोड़ता भी नहीं है।
2: तो इस टाइम पे आप अपनी मेंटल प्रिपरेशन कैसे करते हैं? आप मेडिटेशन करते हैं, विजुअलाइजेशन करते हैं, जो चीज हमने काफी सारे सीनियर प्लेयर से करी है, सुनी है इस बारे में, तो आपका क्या प्रोसेस रहता है अपने आपको मेंटली प्रिपेयर्ड रखने का?
1: नहीं, यही चीजें होती है और स्किल का भी काफी बड़ा रोल रहता है। बट आपको ऊपर के क्रिकेट में सिर्फ स्किल से नहीं, मैच्योरिटी और मेंटली आपको काफी मजबूत होना पड़ेगा, तब आप ऊपर के क्रिकेट में वहां पे रुक पाएंगे। बस स्किल से आप ऊपर का क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपको

0: मेंटली काफी मजबूत होना पड़ेगा, क्योंकि काफी प्लेयर्स के खराब फेजेस आते हैं, अच्छे फेजेस आते हैं, तो दोनों को आपको फेस करना पड़ेगा कि रन्स नहीं आ रहे हैं तो मैं कैसे इससे निकल के रन्स करूं, 10 इनिंग्स नहीं आएंगे, 20 इनिंग्स नहीं आएंगे, काफी काफी 6-6 महीने रन्स नहीं आते हैं, बट आपको उसमें ये नहीं कि अरे यार रन नहीं हो रहा है क्या करूँ, ये नहीं, अपने आप को खुद को पुश करना पड़ेगा, तब जाके 1-2 इनिंग आएंगे ऐसे कि अच्छा हो, फिर वहां से फिर आपका पीक आने लगेगा वापस।
1: वैभव की सबसे बड़ी खूबी यह है कि वो जमीन से जुड़ा हुआ बच्चा है, ग्राउंडेड रहता है, उसके संस्कार ही ऐसे हैं कि वो अपने से बड़े हर किसी के पैर छूता है और हर टीम में, हर ग्राउंड में उससे बड़ा तो हर कोई है, वो सबसे छोटा है।
2: बार बार बार बोलते रहता हूँ कि आप 15 साल की जो उम्र में जिस तरीके से आपकी मैच्योरिटी है, जिस तरीके का माइंड सेट है, मुझे लगता है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो, बस बात ये है कि इसी तरीके से ग्राउंडेड, इसी तरीके से उस गेम को आगे से बढ़ाते रहो, उसी से प्रिपरेशन रखो। मम्मी डैडी से बात हुई आज?
0: नहीं सर, अभी नहीं हुई, सबसे करूंगा आराम से, क्योंकि
2: वैसे डैडी का फोन मुझे आया था, मैं तुमको झूठ नहीं बोलना चाहूंगा।
0: नहीं, मेरे से पहले आपको आ जाता वैसे भी हर बार।
2: तो मुझे बोला उन्होंने टीवी स्क्रीन पे देखा तो मुझे बोला कि वो सबसे पैर क्यों नहीं पड़ा, तो मैंने बोला सर कि अभी वो जब वापस आए तो मैंने बोला वो एक अपने जून में था और उसका पर, अरे मेरे नहीं बाबा, कोचेस की बात कर रहा हूँ भाई, मेरे तो मैं जस्ट बता रहा हूँ। तो हालांकि मुझे इतना अच्छा लगता है कि घर के संस्कार इतने अच्छे हैं और वो तुमको हमेशा वो इस आउट होने की बात और ये सब बात न करते हुए,
0: वो अभी इस बात तुम मुझे 10 मिनट समझाने भी वाले हैं कि जब तुम आउट होकर आए तो सारे कोचेस का तुमने पाँव नहीं क्यों छुआ, बट उस टाइम में इतने लोग थे वहाँ पे खड़े और सब सीनियर ही है, तो मैं उस टाइम पे उस फ्लो में मैं अंदर चले गया, ध्यान नहीं दे पाया, तो पापा को सॉरी भूल गया।
3: अच्छा। वैभव सूर्यवंशी ने सिर्फ 15 साल की उम्र में वो कारनामा कर दिखाया है जैसे देखकर पूरी क्रिकेटिंग दुनिया हैरान है। दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ कर रहे हैं, बड़े बड़े अखबारों के खेल पेज पर वैभव सूर्यवंशी की तारीफ में बड़े बड़े आर्टिकल छप रहे हैं। वैभव सूर्यवंशी, भारत के नए शौर्यवंशी की वैभव गाथा ये देखिए।

0: बिहार की गलियों से निकला ये लड़का आज क्रिकेट की दुनिया का सबसे बड़ा आकर्षण बन चुका है। नाम वैभव सूर्यवंशी, उम्र सिर्फ 15 साल, लेकिन खेल दिग्गजों जैसा। जब बाकी बच्चे कूल और मोबाइल गेम्स में व्यस्त, तब वैभव घंटों नेट्स में पसीना बहाते थे। बैट उनके लिए खिलौना नहीं, जुनून था। परिवार ने संघर्ष किया, कोच ने हुनर पहचाना और वैभव ने हर मौके को रन में बदल दिया। लोकल टूर्नामेंट से लेकर जूनियर क्रिकेट तक हर जगह सिर्फ एक चर्चा होने लगी, ये लड़का अलग है।
1: बहुत बहुत बहुत बहुत,
2: आपने काफी मेहनत भी किया।
1: तो आपसे छिपा हुआ है क्या
2: जी?
1: आप थे ना, गवाह है ना। बहुत बचपन से ही मेहनत की है।
2: आपको लगा कि हाँ ये खेल सकता है?
1: एकदम एकदम,
2: हम लोग एक साथ थे तो उस समय आपने पढ़ा।
1: हाँ हाँ, एकदम एकदम एकदम लगा, मेहनत किए, बच्चा भी बहुत मेहनत किया, उसी का परिणाम है कि आज
2: सफल हो
1: गया। एकदम एकदम आगे और जो सफलता का डगर जो है अभी बहुत लंबा है, बहुत दूर तक जाना है उस।
0: वैभव बिहार के छोटे से जिले समस्तीपुर का रहने वाला है। आज वैभव की वजह से समस्तीपुर और उसके गांव ताजपुर का नाम हर किसी की जुबान पर है। वैभव की कल की परफॉर्मेंस के बाद उनके गांव में जश्न मन रहा है।
3: हम सबका लाल, हमारा लाल, हमारे देश का लाल आज छोटे से गांव ताजपुर से निकलकर पूरे देश में अपना परचम लहरा रहा। समस्त बिहार वासियों का भी मनोबल और उनका गर्व सर जो है सो गर्व से ऊंचा कर दिया है। उसको बचपन से ही, जब 4 साल का था तभी से उसको क्रिकेट का शौक था और हमारे संजीव भैया का बहुत बड़ा योगदान रहा उसको जो है सो आज इस मुकाम तक लाने में। वैभव वैभव वैभव वैभव,
0: वैभव को ताजपुर वालों ने नया खिताब दिया है, ताजपुर का शेर,
3: ताजपुर का शेर।
0: वैभव सूर्यवंशी ताजपुर, समस्तीपुर या बिहार का ही नहीं, अब तो पूरे देश का वो शेर है जो जोर जोर से दहाड़ रहा है। अपनी परफॉर्मेंस से बता रहा है कि जल्द से जल्द सीनियर टीम में ले लो।
4: उनसे देख करके बहुत ज्यादा इच्छुक हो गए हैं, ठीक ना, बच्चे लोग बहुत मतलब इच्छुक हो गए हैं कि हम भी प्रैक्टिस करें और आगे तक खेलें। और यहाँ
5: प्रत्यक्ष ब्रेक का हो चला है, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: This is the sound of Jack buzz-cutting his way to a small fortune. To Jack, every time he cuts his own hair, that's 50 bucks right in his pocket. If Jack sees DIY buzz cuts as a saving strategy, Wells Fargo is right behind him. And with their mobile app, tracking his savings is easy.
1: Oh, ouch.
0: However you make money work, we can work with that.
2: Mobile carrier's message and data rates may apply. Wells Fargo Bank, N.A., member FDIC.
3: Nothing sets the tone for your day like country hits. That's why TuneIn's exclusive Country Roads is here to make your journey just a bit better. With classic, feel-good country songs to bring summer vibes all year long. To top 40 hits you just can't get enough of. TuneIn's Country Roads are your route for the best in country music. Just search Country Roads or ask your device to play Country Roads on TuneIn for a little Southern hospitality now.
4: Stay connected to the sports world with ESPN Radio on TuneIn.
5: Third period comes to an end. Game two headed to overtime.
4: Whether you're listening to game coverage or expert analysis, ESPN Radio is your go-to for everything sports. Listen to your favorite radio personalities and nonstop sports talk so you don't miss a second of action.
5: They score!
4: Search ESPN Radio or tell your device to play ESPN Radio on TuneIn to listen.
6: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
7: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
8: भाई, भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूव कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
7: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
9: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
10: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
11: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
12: AU सेविंग्स अकाउंट में मिलते हैं अमेजिंग बेनिफिट्स, पेपरलेस बैंकिंग एंड हायर इंटरेस्ट, वो भी हर महीने।
13: मनी मनी मनी मनी एवरी मंथ।
14: सोच बदलो और बैंक भी।
15: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
16: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
17: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
15: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
18: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
16: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
15: जहां खबर वहां खबरदार।
19: इन एसोसिएशन विद
20: E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।

0: ईरान से जंग में ट्रंप ने अब तक होर्मुज की शर्त रखी थी, यूरेनियम की शर्त रखी थी, न्यूक्लियर प्रोग्राम बंद करने की शर्त रखी थी, बैलिस्टिक मिसाइलें खत्म करने की शर्त रखी थी। लेकिन अब ईरान को तबाही से रोकने के लिए ट्रंप ने अरब मुल्कों के सामने एक नई पेशकश रख दी है और कहा है कि अगर अब्राहम अकॉर्ड पर मुस्लिम मुल्क दस्तखत नहीं करते हैं तो ईरान से डील भी फंस सकती है।
1: If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries, and it's turned out to be so good, so effective, and so we're requesting strongly that they join. It'll be great. It'd be great for Saudi Arabia. It'd be great.
0: ट्रंप ने 23 मई को भी अरब मुल्कों के साथ हुई उच्च स्तरीय बातचीत के दौरान सऊदी, कतर, पाकिस्तान, तुर्की जैसे देशों को कहा था कि वो इसराइल को मान्यता देने वाले अब्राहम अकॉर्ड को मंजूर करें। सोशल मीडिया पर तमाम खबरें चल रही हैं कि जब ट्रंप ने ऐसी पेशकश रखी थी तो फोन लाइन पर सन्नाटा छा गया। तब मजाक में ट्रंप ने पूछा कि आप लोग लाइन पर हैं भी या नहीं। दरअसल ट्रंप के इस ऐलान से पाकिस्तान जैसे देशों के लिए मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी तक इसराइल को एक देश को तौर पर मान्यता नहीं दी है। हालांकि इससे पहले 1979 में मिस्र, 1994 में जॉर्डन और 2020 में बहरीन और यूएई ने इसराइल को मान्यता देते हुए अब्राहम अकॉर्ड साइन कर लिया है। अब अमेरिका की कोशिश है कि बाकी के अरब मुल्क और पाकिस्तान भी इसराइल के सहअस्तित्व को मान्यता दें, वरना इसराइल पर मुस्लिम मुल्कों की ओर से हमले का खतरा बना रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट आज तक।

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of...
2: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. Country roads.
3: Thank God I get to wake
2: and everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
4: Listening to your favorite station just got even easier. With Google Assistant and TuneIn, your go-to station is just a voice away.
5: You're listening to CNBC.
6: This is 80s hits exclusively on TuneIn. This is Pop Hits.
7: Keep it on smooth jazz.
8: This is Roots Reggae.
9: Exclusively on TuneIn.
10: This is Classic Hip Hop.
11: Exclusively on TuneIn.
4: Just tell Google to play your favorite station on TuneIn and you're instantly connected. The shows, music, and news you love anytime you want.
2: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX. There's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
0: Sanitary Solutions.
12: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है.
13: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें.
14: लखनऊ में तो शहर के ट्रैफिक सिग्नल पर प्रशासन की तरफ से ऐसा ग्रीन शेड बना दिया गया है. हरा कपड़ा लगा है ताकि रेड लाइट में खड़े लोग गर्मी में झुलसने से बच जाएं. इस पर बकायदा पानी का छिड़काव भी हो रहा है
15: क्योंकि भीषण गर्मी से बचने के लिए अब जो है लखनऊ में ग्रीन शेड्स लगाए गए हैं. ये ग्रीन शेड्स क्या हैं? आप पहले देखें क्या हैं. ग्रीन शेड्स की खासियत ये है कि ये उन स्थानों पर लगाए गए हैं जहां जहां ट्रैफिक का सिग्नल है. यानी कि अब मैं आपको दिखाऊंगा पहले सामने ये ट्रैफिक सिग्नल है यानी कि रेड लाइट होती है. तो गर्मी में अगर आप बाइक से जा रहे हैं या रिक्शे पर जा रहे हैं तो भाई लाइट दो मिनट की अगर है तो दो मिनट के लिए आपको भीषण गर्मी और सूरज के नीचे रहना पड़ता है. ऐसे में पसीना अत्यधिक होता है. तो इस तरह के जो ग्रीन शेड्स हैं इनके जरिए ये चीज इंश्योर की जाएगी कि कम से कम जो ट्रैफिक सिग्नल पर खड़े हैं उन्हें दिक्कत ना हो. तो कुल मिलाकर ये ग्रीन शेड्स लगाएगा और इतना ही नहीं इन ग्रीन शेड्स के को पानी भी इस पे स्प्रिंकल करेगा. नगर निगम और ट्रैफिक पुलिस ने मिलकर काम किया है. अब आपको मैं दिखाऊं यहाँ पर इस चीज को देखें एक वाटर टैंकर लगा गया है. इस वाटर टैंकर में एक ये मशीन है. पानी इसके जरिए ऊपर जाएगा और इन वाइट पाइप्स के जरिए जो सफेद पाइप बने हुए हैं इनके जरिए ऊपर जाएगा. और ऊपर जो है वो जो छोटे छोटे आपको वाइट कलर के पाइप के बीच में दिख रहे हैं एक नल रूपी स्वरूप छोटे से उनसे पानी की बौछार यानी कि थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल होगा.
14: इस भीषण गर्मी में लोग कब तक झुलसते रहेंगे कब उन्हें राहत मिलेगी हर किसी का यही सवाल है. ऐसे में मौसम विभाग की तरफ से एक खुशखबरी आई है और खबर यह है कि आज से तापमान में कुछ राहत मिल सकती है क्योंकि मौसम विभाग के अनुसार आज से एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है जो हिमालयी राज्यों को हिट करेगा और उससे बारिश होगी. मौसम विभाग के अनुसार पहाड़ों पर होने वाली इस बारिश से तापमान में 8 से 10 डिग्री की कमी आएगी. इसके साथ ही इन पहाड़ी राज्यों में 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान जताया गया है.
16: How would you characterize the current state of the talks with Iran? I guess if it were a football field, what yard line would you be on?
17: Well, I think we're doing very well. I think they're starting to give us the things that they have to give us. And if they do, that's great. And if they won't, then the man on my left is going to finish him off.
16: Is there a time frame in your mind?
17: What?
16: Is there a time frame in your mind for...
17: I mean, it happens quickly. The problem is every time I mention a time frame, for instance, I see, you know, we've been doing this for a few months. Vietnam lasted 19 years. Korea lasted 8 years, Afghanistan lasted many years. They were all many, many years, and we were into it for a few months. And
8: the U.S. considering easing sanctions on Iran to allow Iran to sell its crude to market?
17: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
10: Would you be comfortable with Russia or China taking their stockpile of highly enriched uranium, and have they offered to do
17: that? No, I wouldn't be comfortable.
18: Mr. President?
17: That would not make me comfortable.

0: ब्रेक का उछला है। आगे देखिए खबरदार, मेरी सहयोगी श्वेता सिंह के साथ।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
1: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से शिक्षा मंत्री सुपर एक्सक्लूसिव बातचीत में कई बातें कही। आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिवकुमार के सिर सजेगा ताज। ट्विशा केस में सास गिरिबाला सिंह गिरफ्तार, 6 घंटे पूछताछ के बाद सीबीआई ने किया अरेस्ट, जांच में सामने आए हैं गंभीर आरोप। भीषण गर्मी से दिल्ली वालों को मिली राहत, हल्की बारिश से मौसम हुआ सुहाना, तापमान में आई गिरावट।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her. Durable pipes, fittings and tanks, a complete range of sanitary solutions.

0: के 8 बज रहे हैं। वक्त है बड़ी खबरों से आपको खबरदार करने का। मौसम बदल रहा है। देश में मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 24 घंटों में देश के कई राज्यों को भीषण गर्मी और हीट वेव से राहत मिलने वाली है। ऐसे ही कई जगह खबरों में मौसम। आज सबसे पहले आपको खबरदार करेंगे कि बकरीद पर आज बंगाल में गो पूजन करके शुभेंदु अधिकारी ने क्या सियासी संदेश दिया। क्या आप देश के मुस्लिम भी मानने लगे हैं कि जो गाय पूजी जाती है उसकी कुर्बानी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद आपको उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूल के शिक्षकों के लिए निकले अपमानित करने वाले फरमान से खबरदार करेंगे। क्या टीचर की ड्यूटी गाय के लिए भूसा लाने में लगानी चाहिए। नीट पेपर लीक से लेकर सीबीएसई के कॉपी चेकिंग विवाद पर मैंने आज केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से हर छात्र के हित का सवाल पूछा है। और फिर आपको हम नॉनस्टॉप गाली देने वाले मंत्री से खबरदार करेंगे जो जनता को कुछ नहीं समझते। लेकिन सबसे पहले बकरीद पर आज बदले हुए बंगाल की खबर। बीजेपी के तमाम नेताओं की तरफ से आपने अक्सर यह नारा सुना होगा, भारत में अगर रहना होगा वंदे मातरम कहना होगा। वंदे मातरम गीत की रचना की धरती पर शुभेंदु सरकार अब एक नया नारा गढ़ रही है, बंगाल में अगर रहना होगा गाय को माता कहना होगा। बकरीद के दिन पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गाय की पूजा की, नादिया के इस्कॉन मंदिर जाकर संतों का आशीर्वाद लिया, कहा कि गाय तो हमारी माता है। खबरदार करता सवाल यह है कि शुभेंदु अधिकारी गाय की पूजा करके गाय को माता बताकर बंगाल में कौन सा राजनीतिक संदेश दे रहे हैं।
1: सबका साथ सबका विकास भी होगा, सबका हिसाब भी होगा। भारत आगमन, भारत माता की, भारत माता की।
2: शुभेंदु अधिकारी ने पहले ही तय कर दिया था कि उनकी सरकार में पश्चिम बंगाल पहले से बिल्कुल अलग होगा। इसका ये ताजा सबूत है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी गौ पूजा कर रहे हैं। पहले शुभेंदु अधिकारी ने गोवंश को माला पहनाई।
3: गर्भिणी जनयेत पुत्रम कन्या भरतारम आप्नुयात अहोरात्रै।
2: स्वास्तिक के निशान वाला लाल कपड़ा उठाया।
3: परिमुच्यते फलम दोवो सहस्रस्याम।
2: फिर आरती उतारी, लड्डू खिलाया। इस दौरान मंदिर शंखनाद से गूंजता रहा।
3: ओम सुरभि वैष्णवी माता नित्यं विष्णु पदे स्थिता।
2: मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने गोवंश के पैर धोए और उनके खुरों को हाथ से साफ किया। पश्चिम बंगाल से ये तस्वीर उस दिन आई जब कोलकाता समेत पूरे राज्य और देश में बकरीद की नमाज हो रही थी। कोलकाता के जिस रेड रोड पर सामूहिक नमाज अब से पहले बकरीद पर होती आई, वहाँ इस बार ट्रैफिक चलता हुआ दिखा। जबकि यहाँ पर साल 1919 से लगातार ईद की नमाज होती रहती थी, लेकिन इस बार बंगाल बदल गया। कोलकाता में इस बार ईद की नमाज के लिए नई जगह तय की गई। ब्रिगेड परेड मैदान पर नमाजी सुबह से जुटने लगे।
4: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद। और यहाँ पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए। और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है। और ये शुभेंदु सरकार के आने के बाद ये फैसला लिया गया कि नमाज जो है वो सड़कों पर अदा नहीं की जाएगी। ऐसे में बातचीत शुरू हुई। खिलाफत कमेटी जो इस नमाज को ऑर्गेनाइज करती है उसने पहले एनओसी ली आर्मी से, इसके बाद कोलकाता पुलिस से, और इसके बाद यहां पर आयोजन किया गया। दरी और चादर बिछाई गई, चूंकि बरसात हो सकती थी ऐसे में नए कपड़े गंदे हो सकते हैं, तो पूरे इंतजाम किए गए। दरी चादर बिछा कर यहां पर इंतजाम किए गए।
2: पश्चिम बंगाल में हर उत्सव और पर्व के जरिए राजनीतिक संदेश देने की परंपरा देखी गई। इस बार भी ऐसा ही देखने को मिला। पश्चिम बंगाल में बकरीद के दिन शुभेंदु अधिकारी मायापुर के इस्कॉन मंदिर में भजन गाते दिखे। बंगाल में इस बार बकरीद पर गाय को लेकर नए नियमों पर भारी विवाद चलता रहा। इसके बाद शुभेंदु अधिकारी का बकरीद के दिन गाय की पूजा करना, क्या इसमें कोई सियासी संदेश? गौ पूजा करके आखिर शुभेंदु क्या कहना चाहते हैं?
5: सनातनी का वो आशीर्वाद लेते हुए मैं जिम्मेदारी लेने का बाद हर मठ मंदिर में हमारी प्रतिष्ठित जो गीता का प्रचार करता है, जो नाम हट्टो है, सबका सद में दर्शन किया, यहाँ भी आया। आज आकर मैं मेरा जो
6: तो सेवा का मौका मिला
5: नहीं, ये तो माता है हमारी।
2: तो शुभेंदु कह रहे हैं गाय माता है हमारी। ये बात उन्होंने उस मंदिर में खड़े होकर कही जो गौड़ीय वैष्णव परंपरा का प्रमुख आध्यात्मिक और सांस्कृतिक केंद्र है, जहाँ पर प्राचीन काल से ही संस्कृत, न्याय दर्शन और धर्म शिक्षा दी जाती रही, जो चैतन्य महाप्रभु की जन्मस्थली, जहां से हरे कृष्ण महामंत्र और संकीर्तन आंदोलन की शुरुआत हुई। नादिया के मायापुर का इस्कॉन मंदिर दुनिया भर के सनातनियों और कृष्ण भक्तों का सबसे बड़ा केंद्र है, इसीलिए यहां आकर पूजा करना, भगवान को दंडवत प्रणाम करना बंगाल में शुभेंदु की राजनीति के हिसाब से अहम है। शुभेंदु अधिकारी की इस धार्मिक यात्रा के केंद्र में वो गाय है जिसे हिंदू धर्म में अत्यंत पवित्र और पूजनीय माना गया। जिस गाय का भारतीय राजनीति में हिंदू वोट से करीबी रिश्ता है, जो बंगाल के ही नहीं देश भर के 96 करोड़ हिंदू वोटों पर असरदार है।
7: गौ माता का आज का विषय नहीं है, ये अनादिकाल से हमारे शास्त्र में कहते हैं। भगवान का या कृष्ण का एक नाम है गोविंद, जो गौ की रक्षा करते हैं। भगवान का एक नाम गोपाल है, तो ये आज का कोई नया बात है नहीं। तो और भगवान का निवास भी होता है गोकुल में, जहाँ पे गाय रहते हैं, भगवान वहीं रहते हैं। तो भगवान जहाँ हैं, भक्त भी वहीं पे हैं। तो भगवान, भगवान के भक्त और गौ माता एक ही चीज है।
2: बंगाल में शुभेंदु सरकार के 19 दिनों के भीतर राज्य में बदलाव साफ देखा जा सकता है। कोलकाता में 107 साल बाद नमाज की जगह बदली गई। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सिर्फ 2 लाइन में बकरीद की बधाई दी। खुद गाय की पूजा करके शुभेंदु बताते हैं कि हर हिंदू की तरह गाय उनके लिए पूज्य है, उनके शासन में उसे बचाने के लिए वो हर संभव कार्य करेंगे। बहुसंख्यक जिसको पूछते हैं उसकी कुर्बानी देकर सौहार्द बिगाड़ने नहीं देंगे। मुस्लिम तुष्टिकरण नहीं चलेगा, जो तुष्टिकरण के खिलाफ है उनके साथ ही सरकार है।
1: अपना राव बोले चंद सबका साथ सबका विकास, आर बोलबो ना बोलबो, जो हमारे साथ हम उनका साथ, सबका साथ सबका विकास बंद करो।
2: तो शुभेंदु अधिकारी अपनी राजनीति के हिसाब से संदेश दे रहे हैं कि जो पहले होता था अब वो बंगाल में नहीं होगा, बंगाल के उनके इस परिवर्तन के केंद्र में गाय रहेगी।
0: पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर नियमों की सख्ती के बाद गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग मुस्लिम संगठनों मौलानाओं की तरफ से की जा रही। अब सवाल यह है कि जो बीजेपी गाय को लेकर इतना आक्रामक है राजनीतिक रूप से, उसकी केंद्र में सरकार ऐसा करेगी क्या?
2: पश्चिम बंगाल का मालदा, जहां पर इस बार ईद पर कुर्बानी पर सख्ती देखी गई। कुर्बानी के दौरान पश्चिम बंगाल में न सिर्फ पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से मौजूद रहा, बल्कि ड्रोन कैमरे से निगरानी और तलाशी अभियान चलाया गया। ईद पर गाय को लेकर इस बार एक नई मांग देखने को मिल रही है। मुस्लिम संगठन और विपक्षी दल लगातार गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग कर रहे हैं।
8: सभी हम लोग के लिए अच्छा है, सभी कलकत्ता में, बाजू में रेड रोड, बाजू में ब्रिगेड, फिर उसके बाद बोलेंगे अगर और दूसरे तरफ चले जाओ उधर चले जाएंगे। हम लोग नमाज पढ़ना है, साल में 2 दिन है, आधा आधा घंटा का, एक एक घंटे का मसला है, उसके लिए मुसलमानों को क्या परेशान है? कुर्बानी को लेकर कहेंगे कि बड़े जानवर को, गाय गोरू को, जो क्या नाम है उनको पूजनीय जानवर है, उसको नेशनल एनिमल के हिसाब से गवर्नमेंट घोषणा कर दे तो सब झमेला का समाप्त हो जाएगा।
2: बकरीद का त्योहार आमतौर पर शांति, सौहार्द और भाईचारे का मौका होता है, लेकिन सड़कों पर नमाज और कुर्बानी को लेकर पिछले कुछ दिनों से जिस तरह की बयानबाजी और विवाद सामने आए उससे इस बार हर जगह अभूतपूर्व सुरक्षा इंतजाम देखने को मिले।
9: बकरीद को लेकर संभल में पुलिस प्रशासन अलर्ट है और संभल में कड़ी सुरक्षा के बीच संभल जिले के अलग अलग इलाकों में बकरीद की नमाज़ अदा की जा रही है। और आप यहां जो देख सकते हैं, देखिए जो पुलिस फोर्स की मौजूदगी यहां पर आपको जो दिखाई देगी और यहां आप जो देखेंगे तो देखिए लाइन से आपको पुलिसकर्मी यहाँ पर आपको जो तैनात नज़र आएंगे। फिलहाल आपको यहाँ जो ईदगाह स्थल की वो तस्वीरें हैं जहाँ पर महिला और पुरुष पुलिसकर्मी तैनात है। इसी के साथ देखिए डीएम और एसपी की जो मौजूदगी है वो खुद इस पूरे इलाके में जो बनी हुई है, जबकि बेहद कड़े सुरक्षा इंतजामों के बीच यहाँ पर ईद की नमाज जो संपन्न कराई जा रही है। इसके अलावा अपर पुलिस अधीक्षक, सीओ, सिटी मजिस्ट्रेट के साथ ही तहसीलदार और नायब तहसीलदार भी इस पूरे इलाके में तैनात है।
2: लेकिन बंगाल की तरह उत्तर प्रदेश में भी गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग समाजवादी पार्टी की तरफ से की गई है।
10: हम तो ये कहते हैं कि गाय को नेशनल एनिमल डिक्लेयर करें। गाय हमारे करोड़ों हिंदू भाइयों की आस्था है। हम मुसलमान इसी वजह से उसका इस्तेमाल नहीं करते कि हमारे हिंदू भाइयों की धार्मिक आस्था को कोई ठेस ना पहुंचे, तो बंद होनी चाहिए।
2: उत्तर प्रदेश की तरह बिहार में भी ईद की नमाज के बाद लोग हाथों में तख्तियां लेकर गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित करने की मांग के साथ देखे गए।
11: पूरे मुसलमान जितने कौम है ये चाहते हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए। और जिस तरह से स्लॉटर हाउस चल रहा है और रोज लाखों लाख गाय को काट करके विदेशों में सप्लाई किया जाता है, तो उस वक्त में इन लोगों की जो आस्था है वो आहत नहीं होती है। तो आज ये मुसलमान चाहता है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए।
12: अगर हमारे हिंदू भाई को, हमारे मुस्लिम भाई को, बिरादरान वतन को इससे तकलीफ है, इससे आस्था जुड़ा हुआ है, तो हमारे पास ऑप्शन है छोटे जानवर का, हम बकरा करेंगे, बकरी करेंगे।
2: गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने की मांग समय समय पर उठाई जाती रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर अब तक ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है। केंद्रीय मछली पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल इस पर पूछे गए सवाल पर लिखित जवाब में बताया था कि संविधान के अनुच्छेद 246 भाग 3 के मुताबिक संघ और राज्यों के बीच विधायी शक्तियों के बंटवारे में पशुओं का संरक्षण ऐसा विषय है जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य की विधानसभाओं के पास है। तो सरकार भले ही गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित नहीं करने के पीछे संवैधानिक वजह बताए, लेकिन विपक्ष का आरोप है कि वो ऐसा जानबूझकर नहीं करना चाहती ताकि इसी बहाने गाय पर राजनीति होती रहे।
13: सरकार से हम अपील करते हैं कि तमाम स्लॉटर हाउस को बंद कर दीजिए, गाय कुर्बानी नहीं हो, कोई भी बड़ा जानवर कुर्बानी नहीं हो, और गाय को नेशनल एनिमल का दर्जा दे दीजिए।
2: तो गाय के ऊपर चौतरफा राजनीति होती है, लेकिन यहाँ एक सवाल है कि बंगाल और बाकी राज्यों में हिंदुओं की भावनाओं का ख्याल अभी नेताओं को क्यों आ रहा है, जबकि गाय को लेकर हिंदुओं की भावनाएं किसी से छिपी नहीं। कई सर्वे में बात सामने आई है कि भारत में गाय की राजनीति का इतिहास और उसका चुनावी असर काफी गहरा है, जो बहुसंख्यक मतदाताओं को भावनात्मक रूप से जोड़ता है और चुनावों में ध्रुवीकरण की एक वजह बनता है। शायद यही वजह है कि शुभेंदु अधिकारी ने भी बकरीद के दिन पूजा करके अपने मतदाताओं को संकेत दिया कि वो गाय की रक्षा करेंगे। सवाल है कि क्या गाय को लेकर बंगाल से शुरू हुआ ये नया प्रयोग बीजेपी को सियासी तौर पर बाकी राज्यों में और मजबूत करेगा।
14: तुष्टीकरण के खिलाफ ही पूरा का पूरा चुनाव है। पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है वो अपीजमेंट के खिलाफ चुनाव है, हिंदुत्व के लिए चुनाव है। एक जो पैराडाइम देश में चलता है कि अपीजमेंट के साथ आप सरकार बना सकते हैं 20% वोट को, अक्सर आपको याद होगा कि चुनाव जब चल रहे थे तो ये बात की जा रही थी ममता बनर्जी तो 30% वोट से शुरू करती हैं। 30% वोट का मतलब कि माइनॉरिटी का जो वोट है, उस वोट के खिलाफ शुभेंदु अधिकारी जीते, तो पहली बात तो उससे साफ ही हो गई कि वो तुष्टीकरण की राजनीति के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। लेकिन जब बकरीद पर वो गाय की पूजा करते हैं तो वो अपने मैसेज को और अपना जो वोटर है उसको मजबूती देते हैं, उसको भरोसा देते हैं कि ये सरकार किस रास्ते पर चलने वाली है। लेकिन मैं इसको इस तरह से नहीं देखता कि गौ पूजा करके वो हिंदुत्व की सरकार बनेगी। आज एक काम और किया शुभेंदु अधिकारी ने कि वहां कोलकाता के ग्राउंड में आराम से जो नमाज थी वो पूरी की गई। ये बेहतर बात है। इस देश में, इस राज्य में, किसी भी राज्य में जो सरकार बने वो हर मत मतांतर के लोगों का ध्यान रखे और अपनी बात को भी रख सके। इन दोनों का बैलेंस मुझे दिखाई दे रहा है।
0: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया है। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है, उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा और गुंडागर्दी के इन आरोपियों को पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमा रही है। ये संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब बदल गया है।
15: मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर भीगा करें।
2: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृहमंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। जो पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया, ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
16: इसको पिछले चोर छोड़ो ना।
2: बोलो। अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
16: अरे आखिर तो बोलो ना।
2: दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती। बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और काचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे काचरा पार्क क्षेत्र में फैला था।
16: तृणमूल कांग्रेस যারা নেতা তারা পালিয়ে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়ে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখনো আছি।
2: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
15: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों।
2: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे। पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिले और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनिए। हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाना, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही है।
5: देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत अब बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
2: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
0: पश्चिम बंगाल में नई सरकार नई सियासी समीकरण राज्य में बैठाने जा रही है, तो ऐसे में उम्मीद राज्य की आर्थिक बदहाली बदलने की भी की जानी चाहिए। शुभेंदु अधिकारी एक ऐसे राज्य को संभाल रहे हैं जो देश के सबसे कर्जदार राज्यों में शामिल है, जहां पर चाहे देसी और विदेशी निवेशक जाने से कतराते हैं। पश्चिम बंगाल की आर्थिक हालत कितनी खराब है उसका अंदाजा आपको प्रति व्यक्ति आय के आंकड़ों से मिलेगा। देश की औसत आय 2 लाख से ज्यादा है तो पश्चिम बंगाल की औसत आय 1,63,000 रुपए के करीब है। इस तरह राष्ट्रीय औसत से यह काफी कम है। देश के जीडीपी में पश्चिम बंगाल का हिस्सा साल 1960 में 10% था, जो साल 2023-24 में 5.6% हो गया, मतलब ये आधा रह गया। पश्चिम बंगाल कर्ज में फंसे सबसे खराब राज्यों में से एक है। पश्चिम बंगाल पर 7,00,000 करोड़ से ज्यादा का कर्ज है, जो देश का 5वां सबसे बड़ा कर्जदार कहा जा सकता है। गाय पर केंद्रित होती राजनीति में क्या टीचर से गाय का भूसा मंगवाया जाएगा? अब खबर उत्तर प्रदेश के सरकारी स्कूल के उन शिक्षकों से जुड़ी हुई जिन्हें भर्ती तो बच्चों को पढ़ाने के लिए किया जाता है, लेकिन फिर मानो उन्हें बंधुआ मजदूर समझकर हर काम में जोत दिया जाता है। इस वक्त गर्मी में जनगणना की ड्यूटी ये शिक्षक निभा रहे हैं, जिनसे अब यूपी के बरेली में प्रशासन चाहता है कि सरकारी शिक्षक गाय के लिए भूसा भी बटोर कर लाएं। इसीलिए बाकायदा आदेश निकाला गया, कहा गया है कि हर स्कूल को 7 दिन में 46-46 किलो भूसा लेकर आना है, वरना एक्शन लिया जाएगा।
2: हुआ कुछ ज्यादा बड़ा नहीं है, बस ये हुआ कि उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूल के टीचर, जिनके बारे में कहा जाता है कि धनिया पत्ती की तरह हर चीज में थोड़ा थोड़ा छिड़क दिए जाते हैं, बस उन्हें एक और जगह छिड़का गया है। अब जनगणना कराते सरकारी टीचर के बारे में प्रशासन को लगा कि 45 डिग्री में ये लोग पता नहीं काम कर रहे हैं या नहीं, तो बरेली में फरमान निकला है कि सरकारी टीचर हाथ में बोरा लेकर निकलेंगे, जाएंगे जाकर गाँव से भूसा दान लेकर आएंगे और फिर वो भूसा गाय गोवंश की सेवा में लाकर 100 क्विंटल भूसा सरकारी आदेश के तहत लाकर दान करेंगे।
17: गौ सेवा को केवल एक सरकारी कार्य न समझते हुए इसको एक व्यक्तिगत रूप से एक कह सकते हैं कि एक धार्मिक परोपकार के रूप से भी इसको जोड़कर देखें, क्योंकि जब इसको देखेंगे तभी इसको हम बेहतर तरीके से उनकी सेवा कर सकेंगे, क्योंकि वो मुँह पे वो बोल नहीं सकते हैं लेकिन सेवा का एक मतलब वो समझते हैं।
2: आपको लगेगा क्या ये क्या मजाक है, गाय के भूसे का इंतजाम सरकारी टीचर क्यों करेंगे? इसीलिए बरेली में जारी सरकारी चिट्ठी को देख लीजिए। बरेली में खंड शिक्षा अधिकारी की तरफ से जारी चिट्ठी में लिखा गया है कि डीएम साहब और बेसिक शिक्षा अधिकारी के लेटर के आधार पर हर खंड शिक्षा अधिकारी को 100 क्विंटल भूसा इकट्ठा करना है, इसलिए हर स्कूल को 46 किलो भूसा का दान खंड विकास अधिकारी के दफ्तर में 1 हफ्ते के भीतर कर देना होगा। ये भूसा हर स्कूल की तरफ से 46 किलो नहीं आया तो फिर विभागीय कार्रवाई होगी।
18: हम लोग जनगणना कर रहे हैं, इससे पहले SIR भी दे चुके हैं। हम लोगों का मेन काम है शिक्षा और हमें शिक्षा तक ही रहने दें, यही हमारी अपील अधिकारियों से।
19: हमारी ड्यूटी सर विद्यालय में पढ़ाने की है, ना कि सर हमारे जो पंचायत के या राजस्व के कार्य करने की है। ये सर चाहे प्रधानों से कहा जाए या राजस्व से कहा जाए या पंचायत विभाग से कहा जाए, ये हमारा काम नहीं है। हमारे लिए शुरू में ही हमारे लिए स्कूलों से अलग कर दिया गया है। पहले SIR में कम से कम हमारे 6 महीने चले गए जिसमें हमारे बच्चे पढ़ नहीं पाए, अब छुट्टियां पड़ी हमारी, अब हमको जनगणना में लगा दिया।
20: ये उचित नहीं है भाई शिक्षक आज आप भूसे इकट्ठे करवा रहे हो, कल को आप कहोगे कि क्या नाम है गाय भैंसों का गोबर साफ करिए जाके, या उनके क्या नाम है बच्चों को नहलवाइए, बछड़ों को नहलवाइए जाके।
2: टीचर को भूसा लेकर आओ कहने वाला यह आदेश कोई नया नहीं है। पढ़ाने के अलावा सरकारी स्कूल के टीचर इतने काम करते हैं कि कोई सोच ही नहीं सकता कि वहाँ पढ़ाई हो पा रही है या फिर नहीं, क्योंकि मिड डे मील की सब्जी लाने से लेकर मिड डे मील का सिलेंडर लाने तक, मिड डे मील बनवाने से लेकर किताबें लाना बंटवाना, स्कूल की रंगाई पुताई कराना, शिक्षा समिति का खाता संभालना, बच्चों को घरों से स्कूल लेकर आना, विद्यालय प्रबंध समिति का काम, रैपिड सर्वे अपार आईडी बनाना जैसे काम, पोलियो ड्रॉप पिलवाना, बीएलओ बन जाना, चुनाव ड्यूटी करना, जनगणना कराना, दिवाली पर दीपोत्सव के दीप लगाने से लेकर बड़े सरकारी कार्यक्रम में भीड़ बढ़ाने वाली जिम्मेदारी इन्हीं सरकारी स्कूल के टीचर को ही दे दी जाती है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जो दवाएं बंटवानी होती हैं, वो भी ये बंटवाते हैं। जागरूकता अभियान जैसे मच्छर से बचने के उपाय, टंकी नाली कैसे साफ होगा, टीकाकरण, ये सब सरकारी स्कूल के मास्टर साहब लोग करा रहे हैं।
19: इस वर्ष में देखना जो हमारे सरकारी विद्यालय हैं उनमें सबसे ज्यादा नामांकन कटेगा। उसका कारण ये है क्योंकि हम लंबे समय से विद्यालय में पढ़ा नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे लिए अन्य कार्यों में लगा दिया गया है। अब ऊपर से हमसे कहा जाए कि अच्छी गुणवत्ता बच्चों के लिए शिक्षा दी जाए, हम कहाँ से दे पाएंगे।
2: टीचर ही भूसा गायों के लिए लेकर आए ऐसा आदेश देने वाली सोच असल में बच्चों के भविष्य के बारे में सोचती नहीं। ऐसे अधिकारी और प्रशासन को ना तो काम करना आता है ना काम कराना आता है। ऐसी सोच वालों के दिमाग में भूसा भरा हुआ है और ऐसे आदेश देने वालों पर कार्रवाई होनी जरूरी है।
0: और अब मुद्दा देश की उस शिक्षा व्यवस्था का, जहां पिछले कई दिनों से लाखों छात्र, लाखों परिवार और पूरा देश चिंतित हुआ है। चिंता की वजह पहले नीट पेपर लीक और फिर सीबीएसई की 12वीं की कॉपियों की जांच में फेल हुई व्यवस्था है, जिस पर अब आज तक से बातचीत में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने बड़ा बयान दिया है। कहा है कि छात्रों के हितों से समझौता नहीं किया जाएगा और माफियाओं पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। सीबीएसई विवाद को लेकर भी उन्होंने जवाब दिया है, कहा है कि जांच जारी है, तह तक जाएंगे, जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होगी। वहीं लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी के आरोपों को लेकर कहा है कि राहुल गांधी फैक्ट चेक नहीं करते। धर्मेंद्र प्रधान का दावा है कि जिस कंपनी पर राहुल गांधी सवाल उठा रहे हैं वो खुद कांग्रेस शासित राज्यों में काम कर रही है। सीबीएसई का जिक्र आ जाता है, इस बार जिस तरीके से परीक्षा हुई है, बताया जा रहा है कि चार में से एक छात्र को आपत्ति हुई है और रीटेस्ट के लिए उन्होंने
21: नहीं आपत्ति नहीं हुई। देखिए ये जो प्रक्रिया हुई है, इस बार उन्होंने एक मूलभूत परिवर्तन किया, सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग की व्यवस्था किया। 17 लाख विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 98 लाख क्वेश्चन सेट से, आंसर सीट 98 लाख से, इसको पारदर्शी तरीके से करने के लिए उसको डिजिटल करके ऑन स्क्रीन मार्किंग करने की व्यवस्था किया जा रही है। एक आधुनिक व्यवस्था है, 98 लाख में से 11 लाख आंसर शीट बच्चों में गया है। अमूमन उसमें हमको अनुमान है, जो ट्रेंड है, 15-20% बच्चे फिर रिवर्ट करेंगे कि मेरे को इस इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या, ये मेरा शंका है। इसलिए अभी भी हमारा मानना है कि एक संख्या 15-20% पहले भी आता था, इस बार भी 15-20% या 30% आ जाएगा। उसको लेने के लिए जो प्लेटफॉर्म की रोबस्टनेस है उसको बनाया जा रहा है। हमारी 4 पीएसयू बैंक को उसमें से जोड़ा गया है, वित्त मंत्री उसमें से अपना निर्देश दिए हैं, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये 4 बैंक पूरा। आज मैंने भी शाम को उनके साथ बैठा था, उनका प्लेटफॉर्म और सीबीएसई की प्लेटफॉर्म दोनों की इंटीग्रेशन हो गया है, उनकी एक ड्राई रन भी हो गया है बच्चों के साथ, और उसमें आईआईटी को, 2 प्रेस्टिजियस आईआईटी को, कानपुर और मद्रास की आईआईटी को दायित्व दिया गया है कि उसकी रोबस्टनेस को चेक करना, उसकी सिक्योरिटी फीचर को चेक करना, उसकी लोड फैक्टर को चेक करना।
0: आपने आईआईटी मद्रास का नाम लिया तो एक आरोप ये भी लग रहा है कि वही तो उसके पीछे थे, मतलब जब उनके डायरेक्टर ही नए ओएसएम के पीछे थे तो उनको आखिर रिव्यू करने के लिए।
21: आप जैसे बड़े विद्वान पत्रकार श्वेता जी, थोड़ा तथ्य पे बोलना चाहिए।
0: मैं जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में,
21: तथ्य आप आरोप पे क्यों बढ़ा रहे हो, आप तथ्य पे जाओ,
0: ये सही नहीं है,
21: ये बेबुनियाद और झूठी बात है।
0: दूसरी चीज सर, एक स्टूडेंट ने वार्निंग भेजा था हैक करके सिस्टम में, और बाद में जब ये बात सामने आई, ये फरवरी की बात थी, उसने कहा कोई एक्शन नहीं लिया गया, क्या आपको लग रहा है कि इस तरह की कंप्लेंट्स को
21: जो सीबीएसई को मैंने जानकारी लिया, सीबीएसई उसकी एक एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने एक आईआईटी की विशेषज्ञ टीम को लगाया, सारे आरोपों को एंड टू एंड एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। ये जो विषय है उसमें से आगे चल के ग्लिच भी हुई, पेमेंट गेटवे में भी चैलेंज आया, ये सारे उसमें कोरिलेट करके हमने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाया है, उसको हम तहकीकात कर रहे हैं, उसको हम तह तक जाएंगे, उसकी जिम्मेवार लोगों को हम बात करेंगे।
0: अब राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं और रोज वो सीबीएसई के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि जो सीबीएसई में कोएम्प्ट की भूमिका रही वो पहले से संदिग्ध थी, दूसरे नाम से वो संस्था रही और आप लोगों ने बिना बैकग्राउंड चेक किए उसको।
21: देखिए, मैं सीबीएसई की प्रक्रिया अपनाया है, उसमें भी मैंने आज सीबीएसई जब गया था सीबीएसई के अंदर मैं कह के आया हूं, ये सारा विषय को पारदर्शी तरीके से दिखने की आवश्यकता है, इसकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसकी प्रोक्योरमेंट की डिसीजन, ये सारे अभी पारदर्शी तरीका से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। अगर कहीं आपत्ति आ रहा है, कहीं आरोप आ रहे, उसको भी अनुसंधान किया जाएगा, उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इसमें कोई भी जिम्मेवार होगा, वो कंपनी हो, सीबीएसई के अंदर से कोई हो, बाहर से कोई हो, या सरकार के अंदर से कोई होगा, जो इस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी हुई है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी रहा राहुल गांधी जी के अप्रोच मैंने आरोप के ऊपर, मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है, भारत में कोई भी परिवर्तन को सज्ज नहीं कर पाते हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया था, उन्होंने ईवीएम को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं। ये एक दिवालिया मानसिकता के लक्षण है, आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर। बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है, उन्हीं के शासित दो राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की ओएसएम काम कर रहा है। अच्छा। उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे, इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं, ये उनकी मिथ्या कहने का अभ्यास गति उनका एक और एक प्रमाण मिला,
0: क्योंकि उन्होंने कहा कि आप चाहे उनके ऊपर जो भी आरोप लगा लें वो सवाल पूछते रहेंगे।
21: नहीं, और सवाल बुनियाद के आधार पे होनी चाहिए, आप इसकी तो उत्तर दो, जिस कंपनी के बारे में आप प्रश्न उठा रहे हो, आप ही के शासित राज्य में वो भी काम कर रहे हैं, आज भी है 28/5/26, आज भी वो काम कर रहा है, तो उसमें आप क्या उत्तर दोगे? कभी आपकी खुद की गरेबान में थोड़ा आपने झांक के देखा है क्या? राहुल गांधी जी का एक कुंठा मन में है कि मैं क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा हूं। प्रजातंत्र में आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपकी प्रश्न पूछने का अधिकार है, हम उस प्रश्न से बिल्कुल नतमस्तक होकर उसको सुनना चाहेंगे, उसकी एक तार्किक उत्तर भी देने का कोशिश करेंगे अगर हमारे पास तथ्य है तो, लेकिन बेबुनियाद बात की, असभ्यता की कोई उत्तर नहीं है।
0: बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। एनटीए अब जब नीट की परीक्षा दोबारा कराने जा रहा है तो क्या गारंटी है कि पेपर लीक नहीं होगा? कैसे सुरक्षा इंतजाम में अब की नीट का एग्जाम होगा? इन सारे सवालों पर शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का पूरा इंटरव्यू आप रात 10 बजे आज तक पर देख सकते हैं। मंत्री हैं तो क्या गाली देंगे? मंत्री हैं तो क्या केवल अफसर या अमीर आदमी को एसी में हवा खाने का हक समझेंगे? मंत्री है तो क्या नैतिकता भूल जाएंगे? मंत्री है तो क्या

0: कहा कि मंत्री गौतम दत्त को अपने कार्यकर्ता के घर पुलिस पहुंचने और आरोप है कि पैसा मांगने से भारी गुस्सा आया, सीधे चित्तौड़गढ़ के डुंगला थाने पहुंचे, सबके सामने कांस्टेबल को गाली दे देकर खूब सुनाया।
1: शर्म नहीं आती किसी को, फालतू टच किया है ना, यही इलाज करेंगे, यहाँ तुम्हें लेकर के आए जो इसलिए नहीं मेरे एरिया के लोगों करने के लिए नहीं लाया तुम्हें यहाँ पर, मेरे को पहले भी नजर नहीं आया था, बुला बुला के हजार हजार आदमियों को लेकर।
0: ऑडियो वायरल हुआ, मंत्री कहने लगे मेरी आवाज नहीं है।
2: सोशल मीडिया पर मेरा एक ऑडियो प्रसारित किया गया है जिसमें तकनीक का दुरुपयोग कर इस ऑडियो को एडिट किया गया है, इस एडिटेड ऑडियो से मेरा कोई संबंध नहीं है।
0: एक मंत्री कांस्टेबल को फटकारते हैं, दूसरे मंत्री कांस्टेबल को गाली देने के आरोपी हैं। राजस्थान में पारा जितना चढ़ा है उससे ज्यादा लगता है मंत्रियों के माथे पर उनकी कुर्सी की गर्मी चढ़ी है।
3: खबर अब बेरोजगारों के हक की। आज तक लगातार हर युवा की लटकी नौकरी की लड़ाई लड़ता है, आज राजस्थान के बेरोजगारों के लिए खबरदार करेंगे। राजस्थान में नौकरियों की घोषणा बहुत हो रही है लेकिन बेरोजगारों का दर्द कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। परीक्षा देकर भी कहीं रिजल्ट के लिए भटक रहे हैं, कहीं ज्वाइनिंग के लिए भटक रहे हैं। राज्य में 1,00,000 से ज्यादा छात्रों के रिजल्ट फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ जिन परीक्षाओं की घोषणा हुई है वो भी नहीं हो पा रहे।
4: 1,00,000 भर्ती वाला वार्षिक भर्ती कैलेंडर जारी किया है जिससे आपको ये पता लगेगा कि विज्ञप्ति कब निकलेगी, फॉर्म कब भरेगा, परिणाम कब आएगा, परिणाम आने के बाद नियुक्ति पत्र आपको कब मिलेगा। ये पूरी पारदर्शिता के साथ हमने उजागर किया है।
0: रुक जाइए मुख्यमंत्री जी, साल 2026 में 1,00,000 युवाओं को नौकरी देने का कैलेंडर जैसे ही आपने जारी किया, बेरोजगार युवा तो उम्मीद की तख्ती लेकर धन्यवाद करने लगे। लेकिन अब आज की हालत देखिए, जयपुर में विधायकों से अपनी पीड़ा बताने आए ये वो बेरोजगार है जो LLB, BSc और BEd करने के बाद 2 साल से चपरासी की नौकरी के लिए भटक रहे हैं। सही सुना, चपरासी की भर्ती। राजस्थान की सबसे बड़ी 4th grade यानी चपरासी भर्ती की परीक्षा 53,754 पदों के लिए जून 2024 में हुई थी। रिजल्ट निकले भी साल होने जा रहा लेकिन आज तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ही चल रहा है। पर अब हाई कोर्ट के विशेष कैटेगरी में 0 नंबर पर छात्रों के चयन पर रोक लगाने पर सरकार फैसले के खिलाफ अपील करने जा रही है, पता नहीं अब कब मामला सुलझेगा। हालत यह है, मुरारी लाल योगी गणित में BSc करने के बाद 12 परीक्षाओं में मामूली से चूक गए तो अंकित राजस्थान यूनिवर्सिटी से LLB कर अब ब्लिंकिट में काम करने के लिए मजबूर है। ये सारे 2 साल से चपरासी की नौकरी के इंतजार में लगे हुए।
5: एक एग्जाम जो करवाते हैं भर्ती उसको 3 साल लग रहे हैं एक भर्ती को करवाने में, इनको तो एक 5 साल की सरकार रहती है तो 1 साल एक बार एक भर्ती एक बार में करवाने की, यही
6: पूरी हमारे जो परिवार का वो है गुजारा कर देगी सर ये भर्ती, इसलिए जरूरी है सर।
7: मैं लोग ग्रेजुएट हूँ और ये नौकरी इसलिए कि मतलब हम बेरोजगार हैं, हमारे पास कोई काम नहीं है इसलिए हम ये करना चाहते हैं और हमारी सरकार से यही मांगे कि वो 1 साल वाला वेटिंग वाला नियम इस भर्ती से ही लागू करें जिससे और बेरोजगारों को फायदा होगा।
8: रोज ताना मारते हैं घर वाले, ऐसा कोई सा भी दिन नहीं जाता जिस दिन ये ना कहे कि नौकरी का क्या हुआ, कब तक हमारे पास ये ऐसे ही रहेगा या हमसे खर्चा पानी लेता रहेगा ऐसा कुछ।
0: चिलचिलाती धूप में स्वास्थ्य भवन का चक्कर लगाते ये चयनित ग्राम विकास अधिकारी हैं जिनकी परीक्षा जून 2025 में हुई थी। पंचायत राज विभाग के सचिव स्वास्थ्य विभाग का भी जिम्मा संभालते हैं इसलिए इन चयनित बेरोजगारों को दो दो जगह जाकर चक्कर लगाना पड़ता है। पद भी 850 है इसलिए ये भी नहीं कहते कि बड़ी भर्ती है, मगर ये बच्चे मुख्यमंत्री से लेकर मंत्री मदन दिलावर तक से मिला पर आश्वासन के अलावा इनको कुछ नहीं मिला।
9: CM साहब के रेजिडेंस पे भी जा चुके हैं, उसके अलावा हम मदन दिलावर जी जो हमारे PRD मंत्री हैं उनके पास भी जा चुके हैं और हम कम से कम 6 से 7 बार से ज्यादा यहाँ पे अपने पंचायत राज डिपार्टमेंट में भी आ चुके हैं। हम 2 बार जो हमारे जो सचिव है जोगाराम जी उनसे भी मिल चुके हैं लेकिन सर अभी भी हम चक्कर ही काट रहे हैं। अभी भी हमको विभाग यही कह रहा है कि अभी भी प्रोविजनल है, अभी भी टाइम लगेगा, टीमें गई भी है।
10: 120 से 130 किलोमीटर से इस धूप में मैं बार बार आ रहा हूं विभाग, सिर्फ हमें ये आश्वासन दिया जाता है कि आपका अब रिजल्ट आ जाएगा। पहले हमें 24 अप्रैल का बोला गया था अधिकारियों के द्वारा, फिर 10 मई का टाइम दिया गया था, फिर 20 का दिया गया था और अभी भी जून तक भी कोई उम्मीद नहीं है कि हमारा रिजल्ट आ जाएगा।
0: बेरोजगार बच्चे राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग और RPSC के अध्यक्ष का मीम बनाकर सोशल मीडिया पर गुहार लगाते हैं। अलग अलग मीम में अलग अलग लटकी भर्तियों का जिक्र होता है। आज तक संवाददाता शरद कुमार

0: इसीलिए लटकी हुई भर्तियों पर खबरदार करते हुए जब कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष से सवाल पूछते हैं कि आखिर देरी क्यों हो रही, तो जवाब सुनिएगा।
1: फुदरेट का कर्जा टटका हुआ नहीं है, ये काफी बड़ी भर्ती है। इसमें लगभग 54,000 वैकेंसी है। ये सबसे बड़ी भर्ती है राजस्थान के अभी तक इतिहास के अंदर, पिछले 50-60 साल के अंदर। और चूंकि हम जब हम इसका डीवी कराते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराते हैं, तो ये दुगना का कराते हैं। और चूंकि ऐसी भर्ती है इसके अंदर की एक एक पॉइंट के ऊपर हजार हजार बच्चे बैठे हुए हैं।
0: राजस्थान में सरकार में 2.5 साल में 166,457 पदों पर भर्ती जारी है, जिसमें से अब तक 34,639 पदों पर ही नौकरी मिल पाई है। बड़ी नौकरियों में शिक्षा विभाग की 15,201, स्वास्थ्य विभाग की 16,428 नौकरियों में बेरोजगार रिजल्ट और ज्वाइनिंग का इंतजार कर रहे हैं। वहीं वाहन चालक के 2,756, ऊर्जा विभाग के 2,136, राजस्व विभाग के 3,705, ग्रामीण विकास के 2,600 पदों पर छात्र नौकरी का इंतजार कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने भर्ती कैलेंडर जारी कर वाहवाही लूटी थी, लेकिन एक साथ इतनी नौकरियों की वैकेंसी भी नहीं निकल रही। मई 2026 तक करीब 51,000 नौकरियों का कैलेंडर राजस्थान में पीछे चल रहा है।
2: बेरोजगारों के लिए नौकरी की लड़ाई आसान नहीं है। पहले वैकेंसी के लिए लड़ो, फिर परीक्षा के लिए, फिर रिजल्ट के लिए, और आखिरी में ज्वाइनिंग के लिए भटकते रहो। पहले की सरकारें आखिरी साल में नौकरी दिया करती थी, ये सरकार पहले साल से नौकरियां तो निकाल रही है, मगर लग रहा है कि आखिरी साल में ज्वाइनिंग मिलेगी। बेरोजगार कह रहे हैं तो फिर हमारे साथ भला क्या हुआ। कैमरा मनोज के साथ शरद कुमार, जयपुर आज तक।
3: और अब बात क्रिकेट की दुनिया के नए तूफान वैभव सूर्यवंशी की। क्रिकेट का यह सितारा ध्रुव तारे की तरह आया है और पूरी दुनिया पर छा गया। 15 साल का क्रिकेट स्टार ऐसे ऐसे शॉट्स मारता है कि बड़े बड़े गेंदबाज आसमान की ओर देखने लगते हैं। केवल 14 साल की उम्र में आईपीएल में डेब्यू करने वाले वैभव ने अपने आईपीएल पारी की शुरुआत ही छक्का लगाकर की और इस सीजन छक्कों के रिकॉर्ड में क्रिस गेल को भी पीछे छोड़ दिया।
4: One thing scoring runs when there's no expectation. But as this season's continued, there is pressure. He is a fundamental part of this team.
5: दीदार कीजिए क्रिकेट के आसमान के इस नए ध्रुव तारे की चमक का। करतल ध्वनि के साथ इस्तकबाल कीजिए भविष्य के सितारे की धमक का।
6: 15 16 deliveries. And he's with 8 sixes so far. He's only one boundary, but 8 sixes. And he's been proven.
5: पल्ले की नई बादशाहत का, इतिहास के पन्नों को मिटाकर लिखी जा रही अविश्वसनीय इबारत का।
6: It's not just about line hitting, it's not.
5: और 140 करोड़ भारतीयों के दिल से निकल रही चाहत का, जिसमें अघोषित दुआओं का असंख्य इंद्रधनुष है। ईश्वरीय प्रतिभा और मेहनत की भट्टी में तप कर निखरा ऐसा बल्लेबाज जिसके नाम पर कीर्तिमानों का एवरेस्ट है, जो दिग्गजों की फेहरिस्ट में द बेस्ट है। उम्र सिर्फ 15 साल 2 महीने, लेकिन बाजुओं में ऐसा जोर कि पूरा हिंदुस्तान तालियों के शोर में सराबोर है।
7: स्ट्रेट बैक डाउन द ग्राउंड अगेन, ही इज पुटिंग ऑन अ शो दिस यंग मैन वैभव सूर्यवंशी।
5: बीती रात न्यू चंडीगढ़ में मानो सुनामी आई। 15 साल के वैभव सूर्यवंशी की सुनामी, इस लड़के के बल्ले से छक्कों की ऐसी सुनामी कि हैदराबाद के बड़े बड़े धुरंधर तिनके की मानिंद उड़ गए। हैदराबाद के फाइनल में पहुंचने की उम्मीदों को वैभव सूर्यवंशी ने अकेले ही मिट्टी में मिला दिया। एक ऐसी तूफानी पारी खेली जिसे हैदराबाद की टीम जल्द से जल्द भुला देना चाहेगी।
8: जीते तो अच्छा, पॉजिटिव इंटेंट लेके नेक्स्ट मैच पे मूव ऑन करेंगे और नेक्स्ट मैच को सेम जीत कर निकलेंगे फाइनल। थोड़ा बहुत सोचता हूँ, ज्यादा सोचता नहीं हूँ, बस ट्राई करता हूँ जो गेम है वही खेलूँ, ज्यादा सोचू ना। बट कहीं पे अगर मुझे लगता है मुझे काम करना है तो वो देखता हूँ मैं। बस यही सोचता हूँ कि सामने वाली टीम के बॉलर्स कौन है, मैं इस विकेट पे किस तरीके से उनको फेस कर सकता हूँ, बाउंड्रीज कितनी बड़ी है, यही सब बस। सर मैं ट्राई करता हूँ कि मतलब मैं जब भी अच्छे इंटेंट में रहता हूँ तो बॉलर प्रेशर में रहते हैं, तो मैं ट्राई करता हूँ कि उसको कंटिन्यू करूँ और डोमिनेट करके।
3: रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप रहिए खबरदार।
9: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
10: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
9: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
11: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads.
12: Thank God I get to wake up.
11: And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
13: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars NSYNC and Britney Spears. Or rock artists like Sublime and Third Eye Blind. Reminisce about the good old days of the 90s. Just search 90s hits or ask your device to play 90s hits on TuneIn.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
2: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
1: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
3: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
4: आज ही paisabazaar.com पर अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें, फ्री में, वो भी चारों क्रेडिट ब्यूरो से। लोन की जरूरत पड़ेगी तो काम आएगा।
5: They were not built like everyone else. So they built something else. A different rhythm. A different fire. A different definition of impossible. No sympathy.

0: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
1: भाई, भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
0: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
2: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, एफर्टलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
3: और भाई कहाँ गए थे घूमने?
4: जीके मैक्स।
5: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
4: जीके मैक्स। बेस्ट पुट्टी
6: जेके वॉल मैक्स।
7: बेस्ट पेंट
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं, लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स, खुशियों के रंग।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: टेबल को ऊपर से जब भी खाते हैं दबा के खाते हैं। ये भाई साहब सब पचा देते,
3: पर दिक्कत तो उन्हें आती है जो टेबल के नीचे से खाते।
4: मुल्तानी पश्मीना, अपने हक का खाओ, सब कुछ पचाओ।
5: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
6: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
7: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड्स लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
8: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream, the world comes together at Sharda University. So where are you?
9: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
10: करेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
11: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
12: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
11: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर। ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
13: Tune in's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Did you know you can control the speed of what you're listening to? During playback, you can tap on the speed control setting to adjust the speed, whether you'd like to make it faster to get to the end or take it a bit slower to give it time to digest. You can listen to all your favorite podcasts and audiobooks however you want. Plus, if you follow your favorite podcast and books, you'll get recommendations on what to listen to next. Why not try out this feature today?
15: There's just something about classic soul music that gets you moving. And TuneIn's exclusive soul groove station has all the right moves. Hit play on the grooviest 70s selection. Get your masters in melody with Motown classics. Or just set the right tone with smooth, soulful vibes from Marvin Gaye and more. It's all right here on TuneIn, ready to set the perfect 70s tone. Search Soul Groove or tell your device to play Soul Groove on TuneIn now to listen.
16: The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.

0: feels like summer. Monte Carlo, it's the way you make me feel.
1: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
2: They were not built like everyone else, so they built something else. A different rhythm, a different fire, a different definition of impossible. No sympathy,

0: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
1: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दे।
2: Where the software engineer meets the cool UI UX designer meets the gifted content writer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
3: सर हमने भी म्यूचुअल फंड्स में SIP शुरू कर दी है,
4: पर मार्केट की समझना बाउंसर जा रही है।
3: आप कैसे कर लेते हो?
5: मैं धीरज को अपने साथ रखता हूँ।
4: म्यूचुअल फंड्स में लॉन्ग टर्म गोल पे फोकस करो और SIP करते वक्त धीरज को अपने साथ रखो,
5: तो लॉन्ग टर्म से फोकस हटाने का
6: नहीं
4: और म्यूचुअल फंड्स है
6: सही।
7: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है, योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
8: गोल्डी हिंग का तड़का लगे तो सभी दबा के खाते हैं। गोल्डी हिंग कण कण में जान।
9: केंट से पानी होता है 100% प्योर।
10: केंट आरो प्योरिटी दिखाता भी है।
9: केंट देता है सबसे शुद्ध पानी।
11: पैसा बाजार CPL में अब अपना क्रेडिट स्कोर चेक करके 1,00,000 तक जीत सकते हैं।
12: पैसा बाजार क्रेडिट प्रीमियर लीग, क्रेडिट स्कोर देखो जीतो।
13: हनी इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
14: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
15: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।

क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com। डिवाइसेस पर पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: भीषण गर्मी के साथ अच्छी खबर यह है कि उत्तर भारत के कई इलाकों में बरसात थोड़ी बहुत देखने के लिए मिली है। तापमान हो सकता है थोड़ा नीचे जाए। खबरदार में अभी के लिए इतना ही। आगे देखिए ब्लैक एंड व्हाइट। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक और हरदम रहिए खबरदार।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से देश में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था कि सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी रोकने के सरकारी दिशा निर्देश मुस्लिम विरोधी हैं, लेकिन आज उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली तक की तस्वीरों ने इस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। आज देश में एक नया मॉडल दिखा, जहां बिना किसी विवाद के मस्जिदों और मैदानों में बेहद शांति से नमाज भी अदा की गई और कानून का राज भी कायम रहा। यानी त्योहारों के सम्मान के लिए अब कानून को एक दिन की छुट्टी पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन भारत के इसी अनुशासित और खूबसूरत बदलाव से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छटपटा रहा है। आज हम इस प्रोपेगेंडा की पोल खोलेंगे और दिखाएंगे कि खुद को सहिष्णु बताने वाले मुस्लिम देशों के अपने नियम क्या हैं और भारत को लेकर उनका दोहरा मापदंड क्यों है। इसके बाद आपको बताएंगे कि रमजान में शुरू हुआ अमेरिका ईरान युद्ध कैसे बकरीद पर एक बार फिर से भड़क चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी टैंकर पर कई गोलीबारी के बाद अमेरिका की नेवी ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भीषण एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। बात यही नहीं रुकी, बौखलाए ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत में मौजूद अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस पर मिसाइलें दाग दी हैं। जब कुवैत में अजान गूंजनी चाहिए थी, तब वहां मिसाइल हमलों के सायरन बज रहे थे। खबर यह भी है कि ईरान ने अमेरिकी नौसेना पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। यानी साफ है कि अब सीज फायर पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि नीट पेपर लीक का घाव अभी भरा भी नहीं था कि अब देश के 17 लाख छात्र CBSE का रिजल्ट देखकर परेशान घूम रहे हैं। वजह है डिजिटल सुधार के नाम पर बिना तैयारी के थोपा गया OSM, यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। दावा था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपी जांचने से पारदर्शिता आएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कहीं पोर्टल क्रैश हुआ, कहीं कॉपियां धुंधली दिखी, कहीं आंसर शीट्स बदले जाने के गंभीर आरोप लगे। नतीजा, करीब 4 लाख छात्रों को रीचेकिंग की गुहार लगानी पड़ी। बंडल से डिजिटल होने की इस जल्दबाजी का खामियाजा देश के भविष्य ने कैसे भुगता है, आज आपको बताएंगे। और आखिर में आपको वैभव सूर्यवंशी का वो तूफान दिखाएंगे जिसे रोक पाना अब किसी भी टीम के लिए मुश्किल नजर आ रहा है और जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज पानी भरते नजर आ रहे हैं। कल रात 15 साल के इस लड़के ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का 14 साल पुराना सिक्सर किंग का ताज ही छीन लिया। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब किसी धर्म को कानून से ऊपर नहीं रखा जाता, तब इसका मतलब ये नहीं होता कि उस धर्म का अपमान किया जाता है या उस धर्म को दबाया जा रहा है। ये वो नैरेटिव है जो पिछले कई दिनों से हमारे देश में लगातार चलाया जा रहा था। जिन राज्यों में सरकारों और पुलिस ने कानून के मुताबिक बकरीद का त्योहार मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए और ये कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ना या खुले में जानवरों की कुर्बानी देना कानून का उल्लंघन होगा, उन राज्यों के दिशा निर्देशों पर खूब विवाद हुआ। इतना विवाद हुआ कि इन्हें हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई। यहां तक कहा गया कि इन राज्यों की सरकारें मुसलमानों को उनका त्योहार मनाने से ही रोक देना चाहती हैं। लेकिन हकीकत में यह मामला किसी धर्म को रोकने का था ही नहीं। सवाल है लॉ ऑफ द लैंड का, कानून मानना है या नहीं मानना है, एक दिन के लिए कानून को छुट्टी पर भेज देना है। मामला था नियमों के पालन का और यह मामला यह था कि क्या कानून और धार्मिक त्योहारों का सम्मान एक साथ नहीं हो सकता। इन्हीं सवालों के साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में मुस्लिम समुदाय से यह अपील की गई कि इस बार वो बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। जो निर्धारित स्थान है, बड़े बड़े पार्क है, वहां पर आराम से पढ़े और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना दे, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में कुर्बानी देना इलीगल है। अब इस पर ऐसा हो हल्ला हुआ कि निर्देशों के कारण इन राज्यों के मुसलमान अपना त्योहार नहीं मना पाएंगे, उनको तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है। लेकिन हकीकत में ये सारी चिंताएं पूरी तरह गलत साबित हुई। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज इन्हीं राज्यों में बकरीद का त्योहार सबसे व्यवस्थित कानूनी तरीके से खूब अच्छे से मनाया गया और ऐसा नहीं है कि सरकार ने सड़कों पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी तो मुसलमान बकरीद की नमाज ही नहीं पढ़ पाए। अलग अलग जो तय जगह थी, बड़े बड़े मैदान थे, वहां पर पहले से ही जगह तय कर दी गई थी, वहां पर उन्होंने नमाज पढ़ी।
इन सभी राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी पढ़ी गई। बकरीद पर वो सारे धार्मिक आयोजन हुए जो हर साल हुआ करते थे। इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ी सीख मिली वो ये थी कि हमारे देश में एक ही वक्त पर कानून का भी सम्मान हो सकता है और लोगों की धार्मिक भावनाओं और त्योहारों का भी सम्मान हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि त्योहारों के सम्मान के लिए कानून को एक दिन के लिए छुट्टी पर भेजना जरूरी है। इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो कोलकाता के मैदानी इलाके से आई है। ये देखिए, इस इलाके में इंदिरा गांधी सरणी नाम की एक बहुत बड़ी सड़क है जिसे रेड रोड भी कहा जाता है। हर साल बकरीद के मौके पर इस सड़क को मुसलमानों की नमाज के लिए बंद कर दिया जाता था। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तब वहां कैसे इस सड़क को पूरी तरह से रोक दिया जाता था। ये जून 2025 की तस्वीर है। रोड ब्लॉक, और रोड ब्लॉक करके हजारों मुसलमान बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए यहां पर पहुंचते थे। और ऐसा नहीं कि ये पिछले कुछ सालों से हो रहा था। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक से यहां इसी सड़क पर हर साल बकरीद के खुले में नमाज पढ़ी जाती थी और इसके कारण आम राहगीरों के लिए ये सड़क ही बंद कर दी जाती थी। अब ये पुरानी सरकारों का वो मॉडल था जिसे माना जाता था कि त्योहारों के सम्मान के लिए एक दिन कानून में थोड़ी ढील दी जा सकती है। लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो एक नए मॉडल को परिभाषित करती है, और ये मॉडल कहता है कि बकरीद या किसी भी त्योहार के लिए कानून को एक दिन की छुट्टी पर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी जगह कानून और त्योहार साथ साथ मनाइए, दोनों को साथ साथ सम्मान दिया जा सकता है। कोलकाता की जिस रेड रोड पर 1970 से खुले में नमाज पढ़ी जा रही थी, आज वहां इस सड़क पर खुले में नमाज नहीं हुई, लेकिन इसकी जगह इस सड़क के पास ब्रिगेड परेड ग्राउंड है। बकरीद की नमाज के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसे सड़क को बंद ही ना करना पड़े। और जानते हैं, इस बदलाव से कुछ नहीं बिगड़ा। मुसलमानों ने अपना त्योहार वैसे ही मनाया जैसे वो हर साल मनाते हैं और वैसे ही नमाज पढ़ी जैसे वो हर साल पढ़ते हैं। और सोचिए इससे क्या पता चलता है। नमाज के लिए सड़कों का बंद करना जरूरी नहीं है, नमाज के लिए कानून को रोकना जरूरी नहीं है। यह बात सिर्फ कोलकाता की नहीं, अब आप लखनऊ की तस्वीरें देखिए जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों ने आज बकरीद की नमाज पढ़ी, लेकिन इसके लिए किसी सड़क को बंद नहीं किया गया। इसकी जगह स्थानीय प्रशासन, पुलिस ने मस्जिद समितियों से बात की, ऐसे इंतजाम किए जिससे सड़कों को बिना बंद किए जमात में बकरीद की नमाज भी पढ़ी जा सके और अपना त्योहार भी मनाया जा सके। और यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में भी आज बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाया गया है। हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद दिल्ली की तस्वीरें, उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए, नैनीताल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड, नैनीताल, हर जगह की तस्वीरें देखिए। बकरीद की नमाज के लिए मुख्य सड़कों को घेरा नहीं गया बल्कि व्यवस्थाएं बनाई गई, बड़े मैदानों में नमाज पढ़ी गई। सोचिए, इन राज्यों में भी शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का त्योहार मनाया गया, जबकि एक दिन पहले तक क्या नैरेटिव था कि भाई मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। एक दिन पहले तक यह कहा जा रहा था कि अगर खुले में नमाज और खुले में कुर्बानी को रोका गया तो इस देश के मुसलमान बकरीद का त्योहार नहीं मना पाएंगे, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। यह नैरेटिव सिर्फ हमारे देश के कुछ लोग नहीं गढ़ रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पर भारत को बदनाम करने के लिए लेख लिख रहा है। पूरी ताकत झोंकी जा रही है, वही प्रोपेगेंडा, वही नैरेटिव। और देखिए, अल जजीरा जिसने भारत के खिलाफ ये लेख लिखा है, शीर्षक क्या है, नेचुरली स्केर्ड, मतलब स्वाभाविक रूप से डरे हुए, इंडियाज मुस्लिम्स डिनाइड पब्लिक स्पेसेस फॉर ईद प्रेयर्स। आप सोचे, पब्लिक प्लेसेस, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये तमाम पार्क जहां पर वो नमाज पढ़ रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है। स्वाभाविक रूप से डरे हुए भारत के मुसलमानों को ईद की नमाज के लिए सार्वजनिक स्थानों से वंचित किया जा रहा है, इसका हमने हिंदी में रूपांतरण कर दिया आपके लिए। अब इस शीर्षक में दो बातों पर सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है, आइए इनका फैक्ट चेक करते हैं। एक है नेचुरली स्केर्ड, यानी बड़ी आसानी से ये नैरेटिव स्लिप कर दिया कि भारत का मुसलमान इस वक्त स्वाभाविक रूप से डरा हुआ है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि इस देश में उन्हें डराया ही जा रहा है। और दूसरा है,
पब्लिक स्पेसेस, यानी वो सार्वजनिक स्थान जहां मुसलमानों के अब बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। अब ये दोनों बातें सरासर गलत है, ये तस्वीरें इसका प्रमाण है। पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन तमाम जगहों पर, राजस्थान हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों में आज पार्कों और खाली मैदानों में नमाज पढ़ी गई। ये सार्वजनिक जगह ही है। अगर कहीं नमाज नहीं पढ़ी गई तो वो है सड़क। लेकिन अल जजीरा ने अपनी हेडलाइन में सड़क कहीं नहीं लिखा, बल्कि इसकी जगह सार्वजनिक स्थान लिख दिया, ताकि दुनिया को ये लगे कि भारत में मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। और यहां बात सिर्फ इस हेडलाइन की नहीं है। अल जजीरा ने इस रिपोर्ट के लिए भारत के एक ऐसे गांव को चुना जहां पिछले 4 दशकों से सांप्रदायिक तनाव और विवाद रहा है। इस गांव का नाम है मलियाना, जहां 1987 में शबे बारात के मुस्लिम त्योहार के दौरान हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए थे और इन दंगों में 72 मुसलमानों की जान गई थी। अब किसी देश के खिलाफ दुष्प्रचार को कैसे गढ़ा जाता है वो समझिए। उस साल 1987 में सिर्फ मेरठ के मलियाना गांव में सांप्रदायिक हिंसा नहीं भड़की थी, बल्कि उस वक्त पूरा मेरठ जला था, 51 हिंदू भी मारे गए थे। लेकिन अल जजीरा सिर्फ इस गांव की बात करता है, और इसलिए करता है क्योंकि वो इसके जरिए पूरे भारत को मुस्लिम विरोधी दिखाना चाहता है। वो इसमें लिखता है कि मेरठ के मुसलमान न सिर्फ बकरीद की नमाज पढ़ने से डर रहे हैं, स्वाभाविक डर रहे हैं, बल्कि अब उन्हें मस्जिद के बाहर खड़े होने से भी डर लगता है। इस पूरे लेख की जो हेडलाइन थी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से रोकने की बात लिखी थी, उस बात के लिए पिछले हफ्ते के विश्व हिंदू परिषद के एक बयान को उन्होंने आधार बना लिया है। वो भी ऐसा बयान जिसके बारे में हमारे देश के लोग ही नहीं जानते। हमने भी जब ये आर्टिकल पढ़ा तब देखा कि ये क्या बयान है भाई। किसी ने कवर तक नहीं किया भारत में, किसी ने गंभीरता से उनका बयान नहीं लिया, लेकिन सिर्फ इस बयान के आधार पर अल जजीरा भारत के मुसलमानों को खतरे में बता देता है। हम तो अल जजीरा के लिए ताली बजाएंगे कि कैसे ये लोग किसी देश को बदनाम करते हैं, और खास तौर पर जब बात भारत की आती है। इसके बाद इसी रिपोर्ट पे प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर यह लिखा जाता है कि पिछले एक दशक से, खासकर 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, कई दक्षिणपंथी हिंदू संगठन सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं और इससे मुसलमानों को दबाया जा रहा है। यानी यहां भी यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि इन तमाम परिस्थितियों के पीछे नरेंद्र मोदी है जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें यह भी लिखा है कि भारत के मुसलमान इस चिंता में डूबे हैं कि क्या वो बिना किसी विवाद, बिना जांच पड़ताल, बिना विरोध के शांति से बकरीद की नमाज अदा कर पाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि आज पूरे भारत में बकरीद की नमाज पढ़ी गई, कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं ऐसा नहीं दिखा कि कोई भी मुस्लिम चिंतित। इसी में आगे यह भी लिखा गया है कि पहले भारत में ईद की सुबह खुशियों से भरी होती थी, लेकिन इस बार भारत के मुसलमान डर में सुबह बिता रहे हैं और उन्हें ईद से पहले इस बात की चिंता होती है कि वो नमाज कहां पढ़ेंगे। अब यह बात तो अल जजीरा लिख रहा है, लेकिन जिसके अपने देश में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अल जजीरा की शुरुआत कतर के दोहा से हुई थी और आज भी दोहा में इसका विशाल दफ्तर है। लेकिन क्या आपको पता है कि दोहा की सरकार ने रमजान की ईद को लेकर अपने दिशा निर्देशों में क्या लिखा था? इसको लेकर आई हूं। इसमें लिखा है कि भीड़ से बचने के लिए मस्जिदों में समय से पहले पहुंचे ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। पूरा बाकायदा ये नियम जो हमने आज इट इज आपके लिए स्क्रीन पर भी बनाया है, इसमें लिखा है। फिर क्या लिखा है कि अगर मस्जिद पूरी तरह भर जाए या वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाए तो लोग पास की दूसरी मस्जिद में जाएं, यानी सड़क पर नमाज ना पढ़ें बल्कि दूसरी मस्जिद में जाएं। फिर और आगे लिखा है कि खुले बाहरी स्थानों में नमाज अता ना करें। इसमें साफ साफ लिखा है, परफॉर्म प्रेयर्स ओनली इन डेसिग्नेटेड एरियाज विद इन द मॉस्क। मस्जिद के भी अंदर जो जगह तय की गई है वहीं पे नमाज पढ़नी है, मस्जिदों के अंदर ही अदा की जानी चाहिए नमाज। ये सब इसमें लिखा हुआ है। रिमेन इनसाइड द मॉस्क, मस्जिद के अंदर ही रहें। अगर आप बाहर हैं तो मस्जिद के अंदर वापस जाइए। तो ये साफ साफ शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन अब आप सोचिए, अल जजीरा के अपने देश की सरकार लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकती है, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से उनको कहा जाता है कि आप ऐसा ना करें,
भीड़ होने पर ये कहती है कि दूसरी मस्जिद में जाइए, शिफ्ट में नमाज पढ़े, तब सही है। लेकिन अगर लॉ ऑफ द लैंड यानी भारत में कानून लागू हो तो उनको स्वाभाविक रूप से भयभीत मुस्लिम दिखते हैं। लेकिन हमारे देश में जब सरकारें इन्हीं कानूनों का पालन करने के लिए कहती है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छाती पीटने लगता है और हमारे देश को बदनाम करने के लिए पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिख दी जाती है और कई लोग इस देश में उस डफली में अपना राग जोड़ देते हैं। दुख की बात यह है कि इस देश के बहुत सारे लोग सिर्फ बीजेपी का विरोध करने के लिए प्रोपेगेंडा को सच मानकर स्वीकार कर लेते हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लड़ाई बीजेपी से है तो लड़िए, खूब आलोचना कीजिए बीजेपी की, बीजेपी को जो कहना है कहिए। लेकिन अगर कोई विदेशी मीडिया हमारे देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है कि भारत में लोग डरे हुए हैं, स्वाभाविक रूप से डरे हुए हैं, तो ये राजनीति का मन सजाने के लिए हम उनको इजाजत नहीं दे सकते। आज सारा शोर इसी बात पर हो रहा है कि भारत में मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि मुस्लिम देशों में मुसलमानों से सड़कों पर खुले में नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ये तस्वीरें सऊदी अरब, यूएई, इजिप्ट, कतार, इराक, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों की हैं। यहां बकरीद की नमाज मस्जिद और उनके परिसर में ही पढ़ी गई और कानून के तहत हुआ, लेकिन हमारे देश में इसको मुस्लिम विरोध कह दिया जाता है। आज हम ये सवाल पूछते हैं कि मुस्लिम देशों के कानून कानून है, वहां बिना किसी विवाद के मुसलमान इन कानूनों का पालन कर सकते हैं, तो फिर हमारे देश से ये उम्मीद क्यों की जाती है कि यहां कानून में मुसलमानों को विशेष रियायतें दी जाए, उन्हें खुले में नमाज, खुले में कुर्बानी करने दी जाए। देखिए,

حمده.

0: ของหัวข้างเบ้าหัว
1: มีเงินแล้วนะครับ

0: अब आप भारत की इन तस्वीरों को देखिए जहां बकरीद पर पहली बार कानून का भी सम्मान हुआ, लोगों की धार्मिक भावनाएं और त्योहार का भी सम्मान हुआ है।
1: बकरीद पर नमाज भी हुई, इबादत का समंदर भी उमड़ा, लेकिन देश के इतिहास में दशकों बाद बकरीद पर तमाम सड़कें खाली रहीं। पहले कई दिनों तक जिस कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया जाता था, ऐसा लगता था मानो कानून छुट्टी पर चला गया हो। आज उसी देश में कानून का भी सम्मान हुआ और त्योहार का भी। खुले में सड़कों को बंधक बनाकर नमाज पढ़ने पर ऐसी रोक लगी कि अकीदत भी पूरी हुई और आम जनता को परेशानी का एक कतरा भी नहीं झेलना पड़ा। बदलाव की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आई। साल 1978 के बाद ये पहली बार हुआ जब ईद उल अजहा के मौके पर कोलकाता की लाइफ लाइन कही जाने वाली रेड रोड को नमाज के लिए ब्लॉक नहीं किया गया। प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए इस बार नमाज का पारंपरिक ठिकाना बदला गया और इसे पास के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट किया गया। नतीजा, न तो कोई ट्रैफिक जाम हुआ, न राहगीरों को दिक्कत और बेहद व्यवस्थित तरीके से नमाज मुकम्मल हुई। इस बात की तस्दीक है कि जब समाज और प्रशासन मिलकर कदम उठाते हैं तो बदलाव आता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नो नमाज ऑन रोड का निर्देश इस बार जमीन पर पूरी तरह लागू दिखा। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजी जुटे, लेकिन मजाल है कहीं भी सड़क का घेराव हुआ।
0: अब इन सब के बीच आज बात पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बकरीद के मौके पर मायापुर के इस्कॉन मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धोती कुर्ता पहनकर नंगे पांव गौशाला में गौ सेवा की और इस्कॉन के संतों से मुलाकात की। और ये भी तब हुआ जब बकरीद पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गाय और गौवंश की कुर्बानी को लेकर नियम सख्त किए और ये सख्ती भी बंगाल में पहली बार लागू हुई है। देखिए,
2: विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो धरा प्रचोदयात् तन्नो लक्ष्मी।

इन तस्वीरों को देखकर हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो नारा याद आ रहा है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की रैलियों में कहा था कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले बांग्लादेश में होने वाली गौ तस्करी को रोकने की कसम खाई, फिर गौवंश की कुर्बानी के नियम सख्त किए, फिर बकरीद की दो छुट्टियों को भी बाकी राज्यों की तरह एक कर दिया। ये कहा कि अब तुष्टिकरण के लिए किसी को विशेष रियायतें नहीं मिलेंगी, कानून का भी पालन करना पड़ा और छुट्टी भी बाकी पूरे देश की तरह एक दिन की हो गई। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि त्योहारों पर सबसे ज्यादा छुट्टियां मुस्लिम्स को नहीं मिलती हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक पूरी दुनिया में त्योहारों पर सबसे ज्यादा 39 छुट्टियां हिंदू धर्म में है, 33 छुट्टियां यहूदी धर्म में है, 26 छुट्टियां सिख धर्म में है, 12 छुट्टियां ईसाई धर्म में है और इन सबसे कम जो छुट्टियां हैं वो सिर्फ 7 छुट्टियां ही इस्लाम धर्म में त्योहारों के लिए ली जाती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हिंदू धर्म में त्योहार अब अगली खबर जो छुट्टियां हैं वो सिर्फ 7 छुट्टियां ही इस्लाम धर्म में त्योहारों के लिए ली जाती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हिंदू धर्म में त्योहार ज्यादा है जबकि इस्लाम धर्म में सिर्फ 6 से 7 ऐसे दिन आते हैं। खैर अब अगली खबर का रुख करते हैं इंटरनेशनल और आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये खबर हर किसी को परेशान कर रही है क्योंकि फिर से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। रमजान के महीने में शुरू हुआ ईरान युद्ध आज ईद उल अजहा के मौके पर एक बार फिर से सुलग उठा। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल रात अमेरिका का एक टैंकर अपना रडार सिस्टम बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जवानों ने उसे इंटरसेप्ट किया, गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में अमेरिका की नौसेना इतनी आग बबूला हुई है कि उसने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगी ईरान की वही पोर्ट सिटी है जिस पर अमेरिका ने 3 दिन पहले भी हमला किया था। उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि ईरान बंदर अब्बास में मिसाइल ठिकाने बना रहा है, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में ये हमले किए। लेकिन आज उसने ये कहा है कि बंदर अब्बास में ईरान का सैन्य ठिकाना अमेरिकी नौसेना और हॉर्मूज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा है, इसलिए उसने ये एयर स्ट्राइक्स किए हैं। और स्पॉट सिटी के पूर्वी हिस्से में 3 बड़े धमाके हुए हैं, उसी का आप वीडियो देख रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इन मिसाइल हमलों से ईरान की सैन्य संरचनाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा सेटबैक है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका के ये हमले निष्क्रिय रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये बात कहकर भी ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमले किए हैं। उसने बकरीद के मौके पर सुबह की पहली नमाज के वक्त मुस्लिम देश कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, मिसाइल हमला। और जब कुवैत में अजान की आवाज गूंजनी चाहिए थी तब कुवैत में मिसाइल हमलों का सायरन अलर्ट गूंज रहा था। ईरान ने कुवैत के जिस अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए उसका नाम अली अल सलेम एयरबेस है जहां अमेरिका के लड़ाकू विमानों की पूरी फ्लीट तैनात रहती है। इनमें भी MQ रीपर ड्रोन और C-130 सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सबसे प्रमुख है। हालांकि अमेरिका ने अभी ये नहीं बताया है कि ईरान के इन हमलों में उससे कितना नुकसान हुआ है और क्या ये हमले अब रुक चुके हैं। दुनिया में मुस्लिम भाईचारे को लेकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हकीकत यही है कि इस युद्ध की शुरुआत से ही ईरान अमेरिका के हर हमलों का जवाब पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमले करके दे रहा है। आज भी वही हुआ और वो भी बकरीद के दिन। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जिन्हें सेंट्रल कमांड ने इंटरसेप्ट कर लिया है। और इससे यह भी पता चलता है कि इस युद्ध में लागू हुए सीज फायर का अब मतलब रह ही नहीं गया है। देखिए

0: यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिका ईरान के बंदर अब्बास को लगातार निशाना क्यों बना रहा है, और दूसरा अमेरिका और ईरान की डील हो क्यों नहीं पा रही, और इसका आप पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि जब तक हॉर्मूज में युद्ध का हाहाकार रहेगा, तब तक हमारे देश में तेल का, गैस का संकट खत्म नहीं होगा। अमेरिका बार बार ईरान के बंदर अब्बास पर हमले कर रहा है, और इस हमले के पीछे कुल 5 कारण हैं। पहला, बंदर अब्बास ईरान की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ऑयल आर्टरी यानी तेल की धमनियां कहा जाता है। अगर बंदर अब्बास नहीं होता तो ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंधक बनाना मुश्किल होता, और अभी यही वजह है कि बंदर अब्बास पर हमले करके अमेरिका हॉर्मूज पर ईरान के नियंत्रण को कमजोर करना चाहता है। दूसरा, ईरान की नौसेना का मुख्य अड्डा इसी बंदर अब्बास में है, जहां IRGC नेवी का मुख्यालय है, कई मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं, जिन्हें मच्छर बोट भी हम कहते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था, झुंड में जाते हैं, और यही समुद्री माइंस बिछाने वाली नावें भी ईरान से छिपा कर रखी हैं। यानी अगर ईरान किसी जहाज पर हमला करना चाहे या हॉर्मूज को बंद करके रखना चाहे, तो उसका आदेश और संचालन काफी हद तक बंदर अब्बास से ही होता है। तीसरा, अमेरिका बंदर अब्बास पर इसलिए भी हमले कर रहा है क्योंकि वो ईरान की समुद्री धमकी को खत्म करना चाहता है। अमेरिका और इसराइल का मानना है कि अगर ईरान की नौसैनिक क्षमता कमजोर कर दी जाए तो वो हॉर्मूज को बंद नहीं कर पाएगा, और इसलिए तेल सप्लाई सुरक्षित रहेगी, और इसीलिए अमेरिका माइंस बिछाने वाली नावों, एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन सेंटर्स और नौसैनिक ठिकानों को बंदर अब्बास में टारगेट कर रहा है। एक और कारण है, बंदर अब्बास ईरान की तेल लाइफलाइन माना जाता है। इसके पास स्थित शहीद रजाई पोर्ट ईरान के कुल व्यापार का लगभग 50% और कंटेनर ट्रैफिक का 85-90% व्यापार करता है। और सबसे बड़ी बात, बंदर अब्बास ईरान के हॉर्मोजगान प्रांत की राजधानी है, जहां 7 लाख लोग रहते हैं। यह हॉर्मूज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। 26 मार्च को IRGC नेवी के पूर्व कमांडर अलीरेजा तंगसीरी इसी बंदर अब्बास में मारे गए थे, और अमेरिका की कोशिश यही है कि वो किसी भी तरह बंदर अब्बास को खत्म कर दे। हालांकि ईरान एक दूसरा गेम खेल रहा है, वो हॉर्मूज को अब आजाद नहीं करना चाहता। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की योजना बनाई है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ओमान को ही यह धमकी दी है कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ गया तो अमेरिका ईरान की तरह उसे भी उड़ाने में ज्यादा समय नहीं लेगा। देखिए,
1: nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine. International waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the.
0: वैसे पूरी दुनिया को धमकियां देने वाले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का असर अब इंसानों तक ही सीमित नहीं रहा है। ये खबर बड़ी दिलचस्प है, आपने भी शायद कहीं देखी हो, लेकिन विस्तार से सुनिए। अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां एक विशाल भैंसा बकरीद की कुर्बानी से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसलिए है क्योंकि इस भैंसे के माथे पर सुनहरे पीले रंग के लंबे बालों का गुच्छा है। सोशल मीडिया पर यह वायरल होने लगा। पिछले कुछ दिनों में इस भैंसे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला लिया, खुद उसे खरीद लिया, और अब इस भैंसे की मंजिल कुर्बानी का मैदान नहीं बल्कि एक चिड़ियाघर होगा। ऐसा शायद भी ही कभी किया गया हो, क्योंकि बांग्लादेश सरकार को डर था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नाम के इस भैंसे की बकरीद पर कुर्बानी दे दी गई तो इससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो सकते हैं, बांग्लादेश को नई धमकी दे सकते हैं। और देखिए, सरकार ने इंटरवीन किया, सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे दिखने वाले हैं इसलिए लोकप्रिय होने वाले एक भैंसे को खरीदा ताकि उसकी कुर्बानी न दी जा सके। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले एक साल में दुनिया के 15 देशों को धमकी दी है ना, वैसे ही बांग्लादेश को डर था कहीं टैरिफ वाली कोई धमकी ना आ जाए। ऐसे राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति का एक बड़ा हथियार उनकी धमकियां ही रहे हैं। कभी टैरिफ की धमकी, कभी प्रतिबंध की धमकी, कभी युद्ध की धमकी, लेकिन बांग्लादेश में तो कहानी ही उल्टी हो गई। यहां ट्रंप नाम ने किसी को नहीं डराया बल्कि एक भैंसे की जान बचा दी है। अब ये भैंसा चिड़ियाघर में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। शायद आने वाले दिनों में बच्चे अपने माता पिता से पूछे ये कौन है, जवाब मिलेगा ये वही ट्रंप है जिसे देखकर इस बार कुर्बानी भी अपना रास्ता बदल गई।

अब हम सीबीएसई रिजल्ट देखकर परेशान हो रहे 12वीं के 17 लाख छात्रों की बात करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले सेफ एंड सिक्योर कही गई नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक के बाद कहा गया कि अब ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें नीट की परीक्षा डिजिटल तरीके से होगी। लेकिन कई बार देखा गया है कि हमारे देश में जब भी डिजिटल तरीकों से कोई चीज शुरू की जाती है तो उसे बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया जाता है और फिर इसके बाद भयंकर परिणाम आते हैं। सीबीएसई का ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम भी इसी आधी अधूरी तैयारी का एक नया उदाहरण है। समझिए, पहले ही प्रयोग में इसमें कई तरह की दिक्कतें आईं, जैसे पोर्टल क्रैश होने लगा, छात्रों की आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गईं। आप कल्पना कीजिए, आंसर शीट धुंधली मिली, पोर्टल के हैक होने के दावे किए गए और यही नहीं, छात्रों ने नए मार्किंग सिस्टम के प्रोसेस पर आरोप लगाया कि उनके मुताबिक उन्हें अपेक्षा से कम नंबर दिए गए। इस साल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 98,66,000 आंसर शीट्स को ओएसएम सिस्टम के तहत जांचा गया था और इस काम में लगभग 70,000 एग्जामिनर्स शामिल थे। ओएसएम सिस्टम में इतनी खामियां थी कि 26 मई तक करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने आंसर शीट्स की रीचेकिंग की डिमांड की, यानी वो कॉपी दोबारा से चेक करवाना चाहते थे। भाई, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, कोई बहुत होनहार बच्चा, उसके इतने कम मार्क्स। सीबीएसई ये सिस्टम इसलिए लेकर आया था ताकि कॉपी चेक करने के पारंपरिक मॉडल को बदला जा सके। अब इस नए सिस्टम को डिजिटल सुधार के तौर पर पेश किया गया कि हम बड़ी क्रांति कर रहे हैं। पारंपरिक रूप से एग्जामिनर को कॉपी का बंडल दे दिया जाता था, जो शायद हम लोगों की पीढ़ी में होता था, इतने मोटे मोटे बंडल ऐसे बांधकर टीचर के घर चले जाते थे, फिर वो उसको जांचते थे। लेकिन ओएसएम सिस्टम क्या है, इसमें छात्रों की आंसर शीट को कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया गया। एग्जामिनर को छात्रों की आंसर शीट ओएसएम पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में दी गई। भाई, आंसर शीट उस पर अपलोड होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में वो मिलता है। ये पीडीएफ कॉपी आंसर शीट की एक स्कैन कॉपी थी। अब इस नए सिस्टम के तहत छात्रों की आंसर शीट को परीक्षा केंद्र से रीजनल सेंटर्स पर भेजा गया। इन रीजनल सेंटर्स पर आंसर शीट को स्कैन करके उसकी पीडीएफ कॉपी तैयार की गई। ऐसा करने से आंसर शीट का डिजिटलीकरण एक तरह से आप कह सकते हैं डिजिटाइजेशन हो गया। हर आंसर शीट की पीडीएफ कॉपी को एक यूनिक कोड दिया गया और छात्र का नाम, छात्र का रोल नंबर उस पर छिपा दिया गया। आप समझ रहे हैं, इसका उद्देश्य यह था कि भाई छात्र का नाम नहीं है, उसका रोल नंबर नहीं है, तो कोई भी उसमें घपला नहीं कर सकता है, सिर्फ आंसर शीट दिख रहा है। इसके बाद आंसर शीट को ओएसएम पोर्टल के सर्वर पर अपलोड कर दिया गया। कॉपी जांचने के लिए एग्जामिनर्स को उनके लॉगिन पर छात्रों की डिजिटल आंसर शीट दी गई। एग्जामिनर्स ने कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आंसर शीट को जांच कर नंबर्स दिए। अच्छा, उन्हें पता नहीं है कि वो किसका देख रहे हैं या क्या रोल नंबर है, किस स्कूल का है। ओएसएम सिस्टम को लेकर दावा यह है कि इससे मार्किंग में पारदर्शिता आती है, टोटल मार्किंग में किसी तरह की चूक नहीं होती क्योंकि सिस्टम अपने आप ये करता है। ओएसएम सिस्टम में पहले से तय मार्किंग पैटर्न पर ही नंबर दिए गए थे, लेकिन इस सिस्टम की खामियों को लेकर छात्र और शिक्षकों के 4 बड़े आरोप है। समझिए, पहला आरोप, आंसर शीट की स्कैन कॉपी की क्वालिटी ही बहुत खराब थी। अब लीजिए, चेकिंग कर लीजिए, धुंधली है या कुछ पेज में आंसर ही नहीं पढ़ा जा रहा है। अब इस वजह से हुआ ये कि एग्जामिनर्स को कॉपी चेक करने में बड़ी दिक्कतें आई, कहीं कैलकुलेशन समझ नहीं आई, नंबर्स गड़बड़ दिख रहे हैं, हेजी है, तो कहीं डायग्राम सही से दिखाई नहीं दे रहा है, अब नंबर देना मुश्किल। दूसरा आरोप, कुछ छात्रों की शिकायत थी कि उनकी आंसर शीट बदल दी गई, जिसकी वजह से उनको जो नंबर मिले वो किसी अन्य छात्र की आंसर शीट के नंबर्स थे। तीसरा आरोप यह है कि ओएसएम सिस्टम में एनसीईआरटी के पैटर्न पर दिए गए जवाबों को सही माना गया, यानी अगर किसी छात्र ने उस पैटर्न के अलावा अन्य शब्दों में या अन्य पैटर्न पर सही जवाब लिखा हो, जो कि मायने शायद वही रखता हो लेकिन आंसर करने का तरीका अलग हो, तो उसको कम नंबर दिए गए। चौथा आरोप,
जिन सवालों के लंबे जवाब लिखे गए थे वो OSM स्क्रीन पर ठीक से दिख ही नहीं रहे थे, ऐसे में उन सवालों के जवाब को जांचना ही मुश्किल हो गया था। अब आप खुद देखिए और खुद सोचिए कि जब एग्जामिनर को कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर शीट ठीक से नहीं दिखाई देगी तो जांचेगा कैसे। जब OSM का सॉफ्टवेयर आंसर शीट की वर्ड बाय वर्ड मार्किंग करेगा

0: सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है ना सर, वो ये रही है कि जो सीटें ब्लर हुई है ना, जिसको चेक करने में बहुत परेशानी हुई है।
1: छात्र तो यहां तक कह रहे हैं कि नए ओएसएम सिस्टम की इन खामियों की वजह से ही इस बार सीबीएसई की 12वीं का परिणाम पिछले 5 वर्षों में सबसे कम रहा है। इस साल का रिजल्ट करीब 85% था, जबकि साल 2025 में 88%, 24 में 88%, साल 2023 में 87% और 2022 का रिजल्ट करीब 93% था, 93%। अब परीक्षा देने वाले छात्र को उनका रिजल्ट देखकर बहुत हैरानी हुई। उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा कम नंबर दिए गए। उन्हें मालूम था कि इस बार ओएसएम सिस्टम के तहत मार्किंग होगी, लेकिन उन्हें ये भरोसा नहीं था कि उन्हें बहुत कम नंबर्स इस तरह से दिए जाएंगे। कई छात्रों ने तो सोशल मीडिया पर दावा किया कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में उन्हें 30 से 40 नंबर कम दिए गए। छात्रों का कहना था कि प्री बोर्ड कोचिंग के टेस्ट रिजल्ट और एंट्रेंस एग्जाम में भी उनके अच्छे नंबर्स आए, लेकिन बोर्ड परीक्षा में एकदम कम नंबर्स। पता नहीं आपके घर में कोई 12th का एग्जाम दे रहा है, नहीं दे रहा है। 10, 12th के बोर्ड्स के जो ये एग्जाम होते हैं, हम देखते हैं बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं, खाना पीना घूमना बाहर जाना सब कुछ भूल कर तमाम दबाव में रहते हुए स्ट्रेस में दिन रात एक करना, रात रात भर जग कर पढ़ते हैं। इसी के लिए अब शिकायतों के निपटारे के लिए सीबीएसई ने भी पारदर्शिता बरती। उन्होंने रीचेकिंग के लिए छात्रों को स्कैन आंसर शीट कॉपी का एक्सेस दे दिया। इससे अगली खबर का रुख करते हैं। इसे सिर्फ क्रिकेट की पारी मत कहिए, ये तबाही का वो मंजर था जिसने आईपीएल के 18 साल के इतिहास को हिला कर रख दिया। तारीख 27 मई 2026, जगह न्यू चंडीगढ़ का मैदान और मौका आईपीएल 2026 का करो या मरो वाला एलिमिनेटर मुकाबला। सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद की घातक गेंदबाजी। दबाव इतना कि बड़े बड़ों के पैर कांप जाए, लेकिन क्रीज पर खड़ा था 15 साल का एक लड़का वैभव सूर्यवंशी। और फिर जो हुआ उसने इतिहास की किताबों के पुराने पन्ने फाड़ कर नए रिकॉर्ड लिख दिए हैं। आज हर तरफ उसी की चर्चा है। कल रात वैभव ने फियरलेस और अटैकिंग क्रिकेट की नई परिभाषा लिख दी। इस 15 साल के ओपनर ने हैदराबाद के गेंदबाजों को ऐसी रिमांड पर लिया कि मैदान छोटा पड़ गया। महज 29 गेंदों में 12 गगनचुंबी छक्के, 5 चौकों की मदद से वैभव ने 97 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी की 29वीं गेंद पर अगर सीमा पार जाती तो वो एक और ऐसा इतिहास रच देते जिसे 2013 से कोई तोड़ नहीं पाया है। क्रिस गेल ने 30 बॉल में आईपीएल का सबसे तेज शतक बनाया। उन्होंने ये रिकॉर्ड 33 साल की उम्र में बनाया और तब सूर्यवंशी महज 2 साल के थे जब क्रिस गेल ने बनाया था। कुल मिलाकर वो सिर्फ 3 रन से आईपीएल इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए। दिलचस्प बात यह है कि गेल के बाद सबसे तेज शतक के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर भी वैभव ही हैं, वैभव सूर्यवंशी। कल के मैच में वैभव ने एक और कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका है। कल की इस पारी के साथ ही वैभव ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गेल ने 2012 में आईपीएल के एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में अब तक 65 छक्के लगा दिए हैं और 65 छक्के ठोक कर इतिहास का सबसे बड़ा सिक्स किंग होने का तमगा अपने नाम कर लिया है। इस सीजन में 680 रन और 242 से ऊपर का स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी का। खुद क्रिस गेल ने ट्वीट किया और क्रिस गेल ने ट्वीट करके कहा, क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये लड़का, नई सिक्स मशीन है। गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाले इस जिगरे के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। एक पिता के बेमिसाल संघर्ष की कहानी है ये। बिहार के समस्तीपुर के एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी का खुद का सपना क्रिकेटर बनने का था जो अधूरा रह गया, लेकिन जब उन्होंने 3.5 साल के वैभव के हाथों में बैट देखा तो ठान लिया कि बेटा इतिहास रचेगा। मैं ना कर पाया तो क्या, मेरा बेटा करेगा। बेटे की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए वैभव के पिता अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ दांव पर लगाकर पहुंच गए मुंबई। अब मुंबई में बिना किसी बड़े सहारे, किसी को जाने बिना वहां पर रहना भी तो बड़ी मुश्किल है ना। आर्थिक तंगहाली से जूझना पड़ता है। लोकल ट्रेन के धक्कों के बीच वैभव को आजाद मैदान और शिवाजी पार्क ले जाना संजीव की रोज की जंग थी। उन्होंने संघर्ष के बाद भी बेटे की डाइट और किट दोनों में कभी कमी नहीं होने दी। उनका डाइट हो, उनका किट बैग हो, पिता ने खुद थ्रो डाउन फेक फेक कर वैभव की नजरों को इतना तेज

0: बनाया कि आज 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद भी इस बच्चे को खिलौने की तरह दिखती है, या फिर कहिए फुटबॉल की तरह। ये भारत की टीम साल 2011 में वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच रही थी, तब वैभव सूर्यवंशी मात्र 6 दिन के थे, लेकिन आज वो छक्के छक्कों में ही बातें करते हैं। आज वैभव भले 15 साल के हैं, लेकिन उनकी हिम्मत की दास्तां तब शुरू हुई थी जब वो महज 12 साल के थे। जनवरी 2024 में उन्होंने बिहार के लिए रणजी डेब्यू किया और सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे कम उम्र में प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। जब हम उम्र बच्चे स्कूल में के टेस्ट से डरते हैं, वैभव रणजी में अपनी उम्र से दोगुने बड़े गेंदबाजों की तेज बाउंसर्स अपनी छाती पर झेल रहे थे। दर्द मिला, चोटें आई, लेकिन इस लड़के ने कभी क्रीज नहीं छोड़ी। यही वो बेबाकी है जो आज राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में उनके खेल को सबसे जुदा, सबसे अलग बनाती है। वैभव कैसी है, बेखौफ अंदाज का एक अनसुना किस्सा है। अब भारत की अंडर 19 टीम का ये किस्सा है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में मैच था। टीम मैनेजमेंट ने वैभव से कहा था कि भाई पिच नहीं है, थोड़ा संभल कर वक्त बताना, नहीं तो आउट हो गए, बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वैभव ने मासूमियत और पूरे आत्मविश्वास से कहा था, सर गेंद जहां मारने वाली होगी वहां तो मारनी ही पड़ेगी। नतीजा, सिर्फ 58 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ाते हुए वैभव ने इतिहास का दूसरा सबसे तेज अंडर 19 टेस्ट शतक जड़ दिया था। वो गेंदबाजों के नाम या कद से नहीं डरते, वो सिर्फ गेंद की मेरिट पर प्रहार करते हैं। वैभव की इस अंधी ने सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है। बिहार के समस्तीपुर से निकला ये लड़का आज भारतीय क्रिकेट के क्षितिज पर सबसे चमकदार सितारा बन चुका है। पिता का त्याग, खुद की अटूट हिम्मत और खेलने का वो अंदाज जिसने किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, वैभव सूर्यवंशी इस सदी के बड़े क्रिकेट सुपरस्टार बनने की राह पर बढ़ चले हैं। कल की इस ऐतिहासिक जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स अब क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ने के लिए तैयार है और विरोधी टीमें अब सिर्फ वैभव को रोकने के लिए ही प्लान बी प्लान सी बनाने में लग गई हैं कि भाई इस सिक्सर मशीन को कैसे तोड़ा जाए, रोका जाए।
1: सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया।
2: एक चीज ध्यान में रखें, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता यार। वो जिस तरीके से छक्के मारता है वो, ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है।
3: मिस्टर बबलू सूर्यवंशी का है 97 बॉल में यार, और 35 बॉलों में भी इसका ही 100 है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा दिन रुके, पूरी दुनिया में छा जाएगा ये बच्चा। इंटरनेशनल जब खेलेगा, जब देखेंगे, ये उड़ा देगा
4: भाई। वो भी कानों को हाथ लगा।
0: इसी के साथ ब्लैक एंड व्हाइट में हम रुक रहे हैं ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार अंजना की विचारधारा, देखते रहिए आज।
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: Feeling a bit nostalgic for the 90s? TuneIn has got you covered with 90s hits. Jam out to your favorite artists from the 90s, like pop stars.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: जिंदगी में हम सबका एक सपना होता है, सपना अपनी दुनिया बसाने का, अपना एक घर बनाने का, और जब इस सफर में कोई अपना साथ दे तो सपने साकार हो ही जाते हैं।
3: भरोसे से ही बनता है आपके अपने सपनों का आशियाना, ऐसा ही आपका अपना साथी पंजाब नेशनल बैंक, जो बरसों से जीत रहा है देश का भरोसा। PNB, मेरा अपना बैंक।
4: कूल फैंस के स्टाइलिश डिजाइन से घर की शान बढ़ाएं।
5: कूल फैंस जो दे आधी बिजली में ज्यादा हवा कम आवाज की है।
4: कूल फैंस स्मार्ट भी स्टाइलिश भी।
6: जब अपना कोई मूव किसी को मूव करता है ना यार, फील आ जाती है।
7: भाई तू अपना है, तेरा सफर मुझे भी करना है। तूने प्रूफ कर दिखाया यार, एनीबॉडी कैन ड्रीम।
6: मुझे लगा मैं नहीं, पूरा का पूरा मूवमेंट चल रहा है।
8: ब्रीदेबल फैब्रिक्स, ऑसम कंफर्ट, वेफरलेस स्टाइल, एडी फ्रॉम द हाउस ऑफ अरविंद।
9: ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
10: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
9: ज्यादा बड़ी ना है।
10: छोटे ऑन कर दे,
11: ऑन कर दे, ऑन कर दे।
9: पैक कर दे समर कूल।
10: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
12: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
13: Vikram chahe jitna bhi phad phada le, dhoond nahi payega.
14: Security! Priya!
15: Hey Priya, kaisa laga mera stunt?
16: एक हिंट तो देते।
17: विक्रम!
16: हिंट।
15: बड़े आराम से।
18: आगे आगे।
19: अरे उधर
18: उधर।
19: करेक्ट करेक्ट।
20: मिल गया। आपके पास दो ऑप्शंस हैं। या तो फर्नीचर के टूटे किनारों को ढूंढने में जिंदगी गुजार दीजिए, या E3 मैचिंग एज बैंड से किनारों को हमेशा के लिए स्मूथ बना लीजिए। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
21: They were not built like everyone else. So they built something else. A different rhythm. A different fire. A different definition of impossible. No sympathy.

0: एक्सपेक्टेशन से बेटर प्लेसमेंट मिली है तुझे, अब सब सेट है ना?
1: सब सेट है, बस अब चाहिए एक सैलरी अकाउंट जो मैच करे मेरी लाइफस्टाइल से।
2: तो सोचना क्या है, मेरा अपना बैंक है ना,
0: मतलब
2: पंजाब नेशनल बैंक, जो दे तुम्हारी चॉइस का सैलरी अकाउंट नंबर, OTT सब्सक्रिप्शन, लाउंज एक्सेस एंड मेनी मोर बेनिफिट जो तुम्हारे लाइफस्टाइल को मैच करे।
1: वाओ दी, मैं कल ही बैंक जाता हूँ।
2: पर जाना क्यों है, सब ऑनलाइन ही हो जाता है। PNB, मेरा अपना बैंक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो,
3: चोगन परफ्यूम्स, द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर, ड्यूरेबल पाइप्स, फिटिंग्स एंड टैंक्स, अ कंप्लीट रेंज ऑफ सैनिटरी सॉल्यूशंस।
5: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn.
6: TuneIn has the music.
5: Take a vacation.

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: कोई ऐसा कूलर दिखा, पूरी फैमिली बोले वाह।
3: फैमिली कितनी बड़ी है चाचा?
2: ज्यादा बड़ी ना है,
3: छोटे। ऑन कर दे,
4: ऑन कर दे, ऑन कर दे,
2: पैक कर दे समर कूल।
3: समर कूल कूलर, हवा ऐसी छोड़े पूरी फैमिली को ठंडक से जोड़े। समर कूल, लाइफ बनाए वंडरफुल।
5: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
6: कैसा लगा मेरा स्टंट?
7: विक्रम, एक हिंट तो देते।
8: विक्रम!
7: हिंट?
6: बड़े आराम से।
9: They were not built like everyone else. So they built something else. A different rhythm. A different fire. A different definition of impossible. No sympathy.

0: presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और जिनको मैंने सुख में बुलाया वो मेरे अपने थे और जो मेरे दुख में आए मैं उनका अपना था। नमस्कार।
3: आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल पावर्ड बाय वेक्टर्स। अगली बार दुकान पर जाना तो टंकी नहीं वेक्टर्स मांगना।
0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच
1: इन एसोसिएशन विद भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
0: चोगन परफ्यूम्स द फ्रेंच एडिशन फॉर हिम एंड हर।

केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज, सूत्रों से खबर। प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून से पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से शिक्षा मंत्री सुपर एक्सक्लूसिव। आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों के हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण।

ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा। कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिवकुमार के सिर सजेगा ताज, कल दिल्ली में बैठक। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी। 21 जून कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो
0: Chogan Perfumes, the French edition for him and her.
2: जो दिक्कत आई है उसके लिए हम जिम्मेदारी लेते हैं। किसी को हम स्पेयर नहीं करेंगे। वो कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, CBSE के अंदर हो, CBSE के बाहर हो, या सरकार के अंदर हो।
3: CBSE students right now and their parents are anxious. They've been traumatized. And the Prime Minister of India has nothing to say.
4: माननीय राहुल गांधी न मैट्रिक किए न ग्रेजुएशन किए, वो नीट पर चर्चा करें, मुझे जरा आश्चर्य लगता है, दुख लगता है।
2: राहुल गांधी जी एक अलग मानसिकता में पहुंच चुके हैं। निरंतर चुनाव हारने के कारण वो फ्रस्ट्रेशन में जा चुके हैं।
5: नीट का भी मसला है, हर चीज में वो ध्यान ही नहीं देते, रिव्यू नहीं करते।
2: भारत सरकार की जो प्रोक्योरमेंट पॉलिसी है उसी के तहत उन्होंने किया है, उसके ऊपर मैं आश्वस्त करता हूँ।
6: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह। देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान हमारे साथ हैं और धर्मेंद्र प्रधान जी, मैं कह सकती हूं कि इस समय जो शिक्षा मंत्री हैं और शिक्षा मंत्रालय है उसकी सबसे बड़ी परीक्षा चल रही है नीट, जो री एग्जाम होना है उसके लिए कैसी तैयारियां हैं आप लोगों की, किस तरह के आप लोग बंदोबस्त कर रहे हैं कि जो पिछले महीने हुआ वो दोबारा न हो।
7: पिछले महीना जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण है, वो नहीं होनी चाहिए थी। हमारी चिंता बच्चों की मानसिक स्थिति के साथ जुड़ा हुआ है और हम जिम्मेदारी लेते हैं। तब भी मैंने कहा था, पिछले बार जब मैंने आप लोगों को मिला था और कहा था कि हम जिम्मेदारी लेते हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं परीक्षा को निर्भुल करने के लिए। 21 जून को री नीट की तिथि तय हुई है। पिछले दिनों में भी नीट की एक प्रोटोकॉल है कैसे ये परीक्षा होगी, इसमें इस बार और मजबूती और स्पष्टता और सुरक्षा की व्यवस्था लाने की आवश्यकता है। इस सारे प्रबंधन के बाद इस बार जो घटना हुई या आगे कैसे ना हो उसकी जिम्मेवारी हम सभी के ऊपर है। हम पूरा सरकार की सभी घटक मिलकर होल ऑफ द गवर्नमेंट के एक अप्रोच से ये शुरू से नई अप्रोच कैसे प्रश्न पत्र तैयारी करने से लेकर परीक्षा होने तक और परीक्षा होने के बाद प्रश्न पत्र कैसे सुरक्षित केंद्र में लौट के आए, इस सारे की एक फुल प्रूफ व्यवस्था किया जा रहा है। राज्य सरकारों की मदद लिया जा रहा है, इसकी कोऑर्डिनेशन जिला स्तर तक होगी। ये स्टूडेंट सेंट्रिक एग्जामिनेशन हो, इसलिए हमने दायित्व लिया था कि बच्चों को थोड़ा तनाव मुक्त करने के लिए, बोझ मुक्त करने के लिए हमने पिछले बार की जो फीस था, जो परीक्षा कैंसिल हुई उसकी फीस हम लौटाएंगे, जो अभी की परीक्षा होगा उसको फीस माफ करेंगे, फीस नहीं लेंगे। और बच्चों को हमने अवसर दिया था, अगर वो अपना चॉइस बदलना चाहते हैं सेंटर, वो भी हमने बच्चों को दिया। लगभग अच्छे खासा 2.5-3 लाख बच्चे अपना सेंटर को भी बदले हैं, उसको भी हमने अकोमोडेट किया। एक राज्य सरकारों का मदद लेके जो 5,400 केंद्र होगा, ये कैसे सुरक्षित हो, सरकारी संस्थानों में हो, उसकी प्रोटोकॉल पूरा हो, उसकी SOP पूरा हो, उसकी सारे जिम्मेवारी उसके हम लोग के पूरे अमूल चूल उसकी फिर नए सिरे से तैयारी कर रहे हैं।
6: सर, पर संभव कैसे होगा, क्योंकि जो हम देख रहे हैं उसमें तो जो घर के भीतर के लोग हैं वो इसमें लिप्त पाए गए, जो पेपर सेट कर रहे थे वो इसमें इन्वॉल्व रहे।
7: देखिए, ये दुर्भाग्यजनक घटना है, ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, इसमें ये नहीं होनी चाहिए थी। ये हमारी कभी ये पिछले 24 की जो अनुभव आई, जिसके उपरांत राधाकृष्ण कमेटी बनी, राधाकृष्ण कमेटी ने जो रिकमेंडेशन किया, इसको हमने पूरा एंड टू एंड पालन करने, जो शॉर्ट टर्म था उसको लगभग पूरा हमने पालन भी किया।
6: विपक्ष आरोप लगा रहे हैं कि आपने नहीं पालन किया।
7: देखो, तो सारे स्पष्ट है ना, राधाकृष्णन जी खुद एक लंबे इंटरव्यू में खुद कहा है कि लगभग जो शॉर्ट टर्म, उन्होंने 3 प्रकार की रिकमेंडेशन किया था, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म, लॉन्ग टर्म। लगभग शॉर्ट टर्म की 70 से ज्यादा रिकमेंडेशन हमने पूरा पालन किया, इसीलिए
6: 70 से ज्यादा,
7: इसलिए उनका 102 रिकमेंडेशन था। जो शॉर्ट टर्म रिकमेंडेशन था सारे उसको पालन किया गया, उसके बावजूद भी चूक हुई उसकी, उसके लिए हमारी मन में दुख है, खेद है। और हम बच्चों के प्रति दायित्व बांधने बच्चों को बताते हैं, हम उत्तरदायी भी है। हम हमारे पास उसके लिए क्षमा याचना के अलावा कोई विकल्प भी नहीं है।
6: जिस पैमाने पर आप लोग तैयारियां कर रहे हैं उसमें हम देख रहे हैं कि पीएमओ की तरफ से भी कहा जा रहा है कि हमारी नजर रहेगी इस पर, मतलब देश के आपके बाकी जो कैबिनेट के सहयोगी हैं वो सब राजनाथ जी के साथ बैठकें हो रही हैं, तो यानी कि पूरा तंत्र इस समय लग गया है कि देश का भविष्य।
7: हमने कहा ना कि हम होल ऑफ गवर्नमेंट में, आप सरकार की कोई विभाग का दायित्व हो सकता है लेकिन दायित्व तो सभी के ऊपर है। सरकार की पूरा नेतृत्व स्वयं हमारे प्रधानमंत्री हमारे नेता है, उनकी निश्चित जानकारी में सभी चीज को किया जा रहा है, वो उसकी मॉनिटरिंग भी कर रहे हैं। लेकिन मैं आश्वस्त करना चाहता हूँ सरकार के सारे घटक, केवल केंद्र सरकार नहीं राज्य सरकार को, क्योंकि आखिर ये केंद्र तो 5400 केंद्र होगा, 1,00,000 क्लासरूम्स में परीक्षा होगी, 22,00,000 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, ये सारे की एक कलेक्टिव अप्रोच से सामूहिक उत्तरदायित्व से पूरा काम किया जाएगा।
6: एनटीए की भूमिका क्या चिंता का विषय बन रही है? इतनी सारी परीक्षाएं, मतलब उनकी जिम्मेदारियों का विस्तार हो रहा है लेकिन नीट एक के बाद एक दूसरी बार, लाखों छात्रों का भविष्य।
7: देखिए एनटीए को एक बैकग्राउंड से बनाया गया था, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे एनटीए बनी थी। एनटीए विकसित हो ही रहा है, उसमें और भी काम बाकी है। अभी के जो एनटीए के नेतृत्व है, मेरे वो भरोसा है वो लोग उसको बना पाएंगे। एनटीए एक स्वतंत्र ऑर्गेनाइजेशन है, एनटीए को हमने स्वतंत्रता दिया है अपने बिल्डअप करने के लिए, और मेरा पूरा भरोसा है जो अनुभव इन दिनों में हुई है, एनटीए भारत में एक टेक्नोलॉजी सा भी संस्था बनेगी। अभी भी एनटीए लगभग 1 करोड़ विद्यार्थियों का सालाना परीक्षा करती है। नीट हमारी एक चुनौती, इसलिए हमने इस बार शुरू से कहा था नीट को हम आने वाले सालों में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में कन्वर्ट करेंगे। ये पेन एंड पेपर की एक नई चुनौती बन जाता है। इसके अलावा और भी एक मत चल रहा है कि भाई नीट को विकेंद्रीकरण किया जा सकता है, कि वो भी एक सोच समाज में है, देखते हैं आगे आने वाले दिनों में क्या होगा। लेकिन एनटीए केवल नीट नहीं, अनेकों परीक्षा करती है, सीयूईटी करती है, जेई करती है, अनेक एग्जामिनेशन जेआरएफ का, यूजीसी नेट का परीक्षा करती है, ये सारे परीक्षा निर्भुल भी कर रहा है, इसको आने वाले दिनों में और मजबूती करने का आवश्यकता है।
6: सर, क्योंकि आपने कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की बात की तो यहाँ पर सीबीएसई का जिक्र आ जाता है। इस बार जिस तरीके से परीक्षा हुई है, बताया जा रहा है कि 4 में से 1 छात्र को आपत्ति हुई है और रीटेस्ट के लिए उन्होंने
7: नहीं आपत्ति नहीं हुई। देखिए ये जो प्रक्रिया हुई है, इस बार उन्होंने एक मूलभूत परिवर्तन किया, सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग की व्यवस्था किया। 17,00,000 विद्यार्थी परीक्षा देते हैं, 98,00,000 क्वेश्चन सेट से, आंसर सीट 98,00,000 से। इसको पारदर्शी तरीके से करने के लिए उसको डिजिटल करके ऑन स्क्रीन मार्किंग करने की व्यवस्था किया जा रही है, एक आधुनिक व्यवस्था है। अनेक यूनिवर्सिटी आज भारत में भी, अनेक संस्था अपने परीक्षा को ऑन स्क्रीन में कन्वर्ट कर चुके हैं। सीबीएसई ने उस प्रयोग को इस बार किया। आपत्ति उसमें आई है कि इसको थोड़ा और पूर्व तैयारी करनी चाहिए था, हम उसको देख रहे हैं कि इसमें तथ्य कितना है, उसमें क्या किया जा सकता था, ये अभी आफ्टर थॉट ये चर्चा आ रही है उसमें। लेकिन जब इतने संख्या में विद्यार्थी परीक्षा, ऐसे भी सीबीएसई की एक पुराना प्रक्रिया है, परीक्षा के बाद विद्यार्थी को अवसर मिलता है वो अपनी पेपर्स को रिवैल्यूएशन कर सकता है, वो भी डिजिटली होता था, इसमें कोई पहली बार डिजिटल हो रहा है ऐसा नहीं। जब परीक्षा देने के बाद उनकी इसकार इवैल्यूएशन इस बार ऑन स्क्रीन हुई है, लेकिन पहले भी उस पुराने पद्धति का ऑन स्क्रीन इवैल्यूएशन के बाद विद्यार्थी के मन में शंका आती थी कि मान लो मेरे और मार्क्स होने चाहिए था, वो अपना पेपर को देख पाता था। पिछले दिनों में भी लाखों की संख्या में लोग पेपर देखते थे, इस बार थोड़ा ज्यादा हुई है। लेकिन हमारी जो टेक्नोलॉजी की प्लेटफॉर्म अभी हमारी बनाई गई थी सीबीएसई की ओर से, उसमें थोड़ा ज्यादा संख्या होने से ग्लीच हुई, उसमें लोड बढ़ी, उसको संभाला गया। पेमेंट गेटवे की कुछ चुनौती था, लेकिन हमने उसमें हस्तक्षेप करके विभाग ने उसको दो कदम, हमने अभी जो अभी तो आंसर शीट बच्चों के हाथ में चला गया है, 11,00,000 आंसर शीट बच्चों के हाथ में गया है, 98,00,000 में से 11,00,000 आंसर शीट बच्चों में गया है। अमूमन उसमें हमको अनुमान है, जो ट्रेंड है, 15-20% बच्चे फिर रिवर्ट करेंगे कि मेरे को इस इम्प्रूवमेंट हो सकता है क्या, ये मेरा शंका है। इसलिए अभी भी हमारा मानना है कि एक संख्या 15-20% पहले भी आता था, इस बार भी 15-20% या 30% आ जाएगा। उसको लेने के लिए जो प्लेटफॉर्म की रोबस्टनेस है उसको बनाया जा रहा है, हमारी 4 PSU बैंक को उसमें से जोड़ा गया है, वित्त मंत्री उसमें से अपना निर्देश दिए हैं, स्टेट बैंक, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा, ये चार बैंक पूरा। आज मैंने भी शाम को उनके साथ बैठा था, उनका प्लेटफॉर्म और सीबीएसई की प्लेटफॉर्म दोनों की इंटीग्रेशन हो गया है, उनकी एक ड्राई रन भी हो गया है बच्चों के साथ, और उसमें आईआईटी को, दो प्रेस्टिजियस आईआईटी को, कानपुर और मद्रास की आईआईटी को दायित्व दिया गया है कि उसकी रोबोस्टनेस को चेक करना, उसकी सिक्योरिटी फीचर को चेक करना, उसकी लोड फैक्टर को चेक करना।
6: आपने आईआईटी मद्रास का नाम लिया तो एक आरोप ये भी लग रहा है कि वही तो उसके पीछे थे, मतलब जब उनके डायरेक्टर ही नए ओएसएम के पीछे थे तो उनको आखिर रिव्यू करने के लिए।
7: आप जैसे बड़े विद्वान पत्रकार श्वेता जी, थोड़ा तथ्य पे बोलना चाहिए।
6: मैं जो आरोप लग रहे हैं उनके बारे में,
7: तथ्य आप आरोप पे क्यों बढ़ा रहे हो, आप तथ्य पे जाओ।
6: ये सही नहीं है,
7: ये बेबुनियाद और झूठी बात है।
6: दूसरी चीज सर, एक स्टूडेंट ने वार्निंग भेजा था हैक करके सिस्टम में, और बाद में जब ये बात सामने आई, ये फरवरी की बात थी, उसने कहा कोई एक्शन नहीं लिया गया। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के कंप्लेंट्स को
7: सीबीएसई को, मैंने जानकारी लिया सीबीएसई उसकी एक एक्सप्लेनेशन देता है, लेकिन उसके ऊपर भी मैंने एक आईआईटी की विशेषज्ञ टीम को लगाया, सारे आरोपों को एंड टू एंड एक बार वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। हमारी कोई भी नागरिक उस पर प्रश्न उठाते थे, हमारी प्रजातंत्र में हमारी दायित्व बनता है उसको संतुष्टि के उत्तर देना। ये जो विषय है उसमें से आगे चल के ग्लिच भी हुई, पेमेंट गेटवे में भी चैलेंज आया, ये सारे उसमें कोरिलेट करके हमने एक हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी बिठाया है, उसको हम तहकीकात कर रहे हैं, उसको हम तह तक जाएंगे, उसकी जिम्मेवार लोगों को हम बात करेंगे।
6: अब राहुल गांधी जो आरोप लगा रहे हैं और रोज वो सीबीएसई के मुद्दे को उठा रहे हैं, वो कहते हैं कि जो सीबीएसई में कोएम्प्ट की भूमिका रही वो पहले से संदिग्ध थी, दूसरे नाम से वो संस्था रही और आप लोगों ने बिना बैकग्राउंड चेक किए उसको।
7: देखिए, मैं सीबीएसई की प्रक्रिया अपनाया है, उसमें भी मैंने आज सीबीएसई जब गया था सीबीएसई के अंदर में कह के आया हूँ, ये सारा विषय को पारदर्शी तरीके से दिखने की आवश्यकता है, इसकी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी, उसकी प्रोक्योरमेंट की डिसीजन, ये सारे अभी पारदर्शी तरीका से होना चाहिए, हमारी अपेक्षा है। अगर कहीं आपत्ति आ रहा है, कहीं आरोप आ रहे, उसको भी अनुसंधान किया जाएगा, उसमें किसी को छोड़ा नहीं जाएगा, इसमें कोई भी जिम्मेवार होगा, वो कंपनी हो, सीबीएसई के अंदर से कोई हो, बाहर से कोई हो, या सरकार के अंदर से कोई होगा, जो इस प्रकार की अगर कोई गड़बड़ी हुई है किसी को बख्शा नहीं जाएगा। बाकी रहा राहुल गांधी जी के अप्रोच, मैंने आरोप के ऊपर, मैं उनकी एक आदत, उनको एक बीमारी आ गई है, भारत में कोई भी परिवर्तन को सहज नहीं कर पाते हैं। उन्होंने एसआईआर को विरोध किया था, उन्होंने ईवीएम को विरोध किया था, उन्होंने भारत की अनेकों व्यवस्था को, भारत की डिजिटल इंडिया को विरोध करते हैं। ये एक दिवालिया मानसिकता के लक्षण है, आपको मैं क्या कह पाऊंगा, उनकी एक अंडरस्टैंडिंग है विषयों के ऊपर। बाकी रहा कोई स्पेसिफिक कंपनी के बारे में वो कह रहे हैं, मेरे शाम तक मेरे पास जो जानकारी है, उन्हीं के साथ सिद्ध दो राज्यों में, कर्नाटक और तेलंगाना में, वो संस्था 5 शिक्षानुष्ठान की ओएसएम काम कर रहा है।
6: अच्छा,
7: उनकी वेबसाइट चला रहे, उनकी सॉफ्टवेयर पोर्टल चला रहे। इसलिए तो ये तो कोई, कभी राहुल गांधी कोई विषय कुछ बोलते हैं तो फैक्ट चेक तो करते ही नहीं, बेबुनियाद बातों पे वो एक दुनिया गढ़ बैठते हैं। ये उनकी मिथ्या कहने का अभ्यास गति, उनका एक और एक प्रमाण मिला,
6: क्योंकि उन्होंने कहा कि आप चाहे उनके ऊपर जो भी आरोप लगा लें वो सवाल पूछते रहेंगे।
7: नहीं, और सवाल बुनियाद के आधार पे होनी चाहिए, आप इसकी तो उत्तर दो, जिस कंपनी के बारे में आप प्रश्न उठा रहे हो, आप ही के शासित राज्य में वो भी काम कर रहे हैं, आज भी है 28/5/26, आज भी वो काम कर रहा है।
6: अच्छा,
7: तो उसमें आप क्या उत्तर दोगे? कभी आपकी खुद की गरेबान में थोड़ा आपने झांक के देखा है क्या? राहुल गांधी जी का एक कुंठा मन में है कि मैं क्यों प्रधानमंत्री नहीं बन पा रहा हूं। प्रजातंत्र में आप नेता प्रतिपक्ष हो, आपके प्रश्न पूछने का अधिकार है, हम उस प्रश्न से बिल्कुल नतमस्तक होकर उसको सुनना चाहेंगे, उसकी एक तार्किक उत्तर भी देने का कोशिश करेंगे अगर हमारे पास तथ्य है तो, लेकिन बेबुनियाद बात की, असभ्यता की, कोई उत्तर नहीं।
6: ये जो तमाम मुश्किलें चल रही हैं, गड़बड़ियां आ रही हैं, एक शिक्षा मंत्री के तौर पर निजी रूप से आपको सबसे ज्यादा किस बात को लेकर चिंता हो रही है? हमने देखा कि बहुत जल्दी डेट आपने दिया नीट री एग्जाम के लिए, क्या व्यथा थी मन में? जिसके
7: मन में ये व्यथा भी तो थी और दायित्व भी था, हमने उसी दिन भी कहा था हमारा दायित्व बनता है, एक भी सही विद्यार्थी के हक नहीं हनन होनी चाहिए शिक्षा माफियाओं के लिए, परीक्षा माफियाओं के लिए। समाज में एक कुप्रथा आ चुकी है, कुछ लोगों की पैसे की ताकत में वो चाहते हैं, वो मन उनका मन में आ गया है, हम व्यवस्था को तोड़ पाएंगे, व्यवस्था का हमने गेम कर सकते हैं, उन्होंने किया उसको मैं स्वीकार करता हूँ। ये कुप्रथा है, सोशल इविल है, उसमें एक बड़ा व्यापक जन जागृति करके आखिर इसमें पैसा कौन खर्चा करता है? कुछ पेरेंट्स तो खर्चा करते हैं, कुछ बच्चों के मन में लोभ तो आता है कि मेरी योग्यता हो ना हो लेकिन मैं एंट्री कर जाऊं, इसलिए वो इस शॉर्टकट और रास्ता ढूंढते हैं ना। इसलिए हमारी जिम्मेदारी था कि एक भी सही विद्यार्थी का हक मारी ना हो, इसलिए हमने इसको स्वीकार किया। नेतृत्व ने उसको तुरंत फैसला किया कि उसको री एग्जामिनेशन करे, सीबीआई को सौंप दिया जाए, सीबीआई तेजी से, मेरा सीबीआई पे पूरा भरोसा है। मैं तो सीबीआई से ये भी अपेक्षा करो, मैं माननीय गृह मंत्री जी को ये भी अनुरोध किया हूँ कि इसकी जो हमारी न्यायिक व्यवस्था में सीबीआई की एक स्पेशल कोर्ट के माध्यम से, सीबीआई ऐसे ही एक स्पेशल कोर्ट है लेकिन इसकी फास्ट ट्रैक ट्रायल हो, जो दोषी पाए जाए उसको दृष्टांत मूलक उनके ऊपर कार्रवाई होने से समाज में कुप्रथा बंद होने का थोड़ा प्रयास हम करेंगे। हमने हमारी आज की हमारी एक ही दायित्व है कि जो बच्चे जो मानसिक तनाव में, मैं आज कुछ बच्चों के साथ री नीट की जो सीबीएसई के जो री वैल्यूएशन की अप्लाई करने वाले बच्चों के साथ शाम को अभी एक बार थोड़ा अनुभव ले रहा था, ट्रायल रन के बाद अनुभव ले रहा था, मैं चिंतित हो जाता था, मेरे दायित्व और मेरी जिम्मेवारी और बढ़ जाता है, हमारी दायित्व बनता है, मैं उस दायित्व से हम लोग मुंह छुपा नहीं सकते हैं, दायित्व हम लिए हैं, इसलिए त्वरित हमको व्यक्तिगत निंदा अपमान आलोचना ये कोई आपत्ति नहीं है, और उस आलोचना से हमको रास्ता मिलता है सुधार करने के लिए। हमारी दायित्व है एक सुधार की रास्ता स्थापित करना।
6: हो जाएगा सर, क्योंकि हमको लगता है ना कि देखिए देश हमारा कहां कहां नहीं, क्या क्या जो असंभव चीजें हैं वो संभव कर रहे हैं हम, लेकिन एक पेपर लीक से नहीं रुक पा रहा है। और मैं इसे नेगेटिव तरीके से नहीं, मैं एक उम्मीद से भरकर पूछ रही हूँ आपसे, वो दिन आएगा।
7: मैं आपको आश्वस्त करता हूँ, इस पेपर कंप्रोमाइज को हम खत्म करके रहेंगे। इस बार नीट हमको एक अवसर दिया है एंड टू एंड उसको और सुचारू रूप से व्यवस्थित करने के लिए, हम पूरा सरकार के सभी घटक उस काम पे लगे हैं।
6: बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जो कि एनटीए सीबीएसई नीट हर मुद्दे पर बोले हैं, अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
8: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल
1: बोलो जुबान केसरी।
2: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
3: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना रही।
4: और वही कहाँ गए थे घूमने?
5: जीके मैक्स।
6: वैसे रोहन पढ़ाई में कैसा है?
5: जीके मैक्स बेस्ट पुट्टी।
7: जेके वॉल मैक्स
5: बेस्ट पेंट।
8: जेके मैक्स।
9: बाकी सब सवालों का पता नहीं लेकिन मोस्ट ब्यूटीफुल वॉल्स के लिए सिर्फ जेके मैक्स पेंट्स। जेके मैक्स पेंट्स खुशियों के रंग।
10: They were not built like everyone else. So they built something else. A different rhythm. A different fire. A different definition of impossible. No sympathy. No shortcuts. No excuses. Sympathy.

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए यह शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली सुपर एक्शन फैमिली।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: Sir, mutual funds ke baare mein aapse ek sawal poochna tha.
3: Sorry sir, market ki baat karke aapko disturb nahi karna tha.
4: Aise sawal mujhe disturb bhi nahi kar sakte. Mutual funds ki koi bhi baat ho na, main Shanti ko saath rakhta hu. म्यूचुअल फंड में आपकी शांति और लॉन्ग टर्म गोल्स पे फोकस दोनों बनी रहनी चाहिए। अपने लॉन्ग टर्म गोल से फोकस हटाने का
5: नहीं,
4: और म्यूचुअल फंड से सही।
6: म्यूचुअल फंड निवेश बाजार जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।
7: ऊंचाई पर बने रहने के लिए जरूरी है इरादों का प्योर होना। कैलेंट एडवांस बनाते हैं ऐसा स्टील जो अंदर से है ज्यादा प्योर, ज्यादा मजबूत। कैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो।
8: आपके पास दो ऑप्शंस हैं, या तो सुपरमैन बनकर फर्नीचर को भीगने से बचा लो, या E3 HDMR बोर्ड लगाकर फर्नीचर को लाइफटाइम के लिए वाटर और टर्माइट प्रूफ बना लो। E3 प्रोडक्ट्स, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: विक्रम चाहे जितना भी फड़फड़ा ले, ढूंढ नहीं पाएगा।
10: प्रिया, कैसा लगा मेरा स्टंट?
2: एक हिंट तो देते।
10: हिंट बड़े आराम से।
11: डायरेक्टर, द टेस्ट ऑफ सक्सेस।
12: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
13: सोच बदलो और बैंक भी।
14: हनी, इस घर में कुछ है जो टूटता नहीं।
15: ये पिलर कभी नहीं टूटेगा। रुंगटा स्टील TMT से बना।
16: रुंगटा नहीं तो घर स्ट्रॉन्ग नहीं। रुंगटा स्टील TMT बार एकदम सॉलिड।
17: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
18: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
19: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, NTO को पता नहीं।
17: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
20: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
18: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, NTA जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
17: जहां खबर वहां खबरदार।
21: In association with E3 HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
22: गंगा के तट पर बसा शहर समेटे संस्कृति, संघर्ष और स्वाभिमान, जहां उद्योग की ताकत भी है और राजनीति की गूंज भी। क्रांति की विरासत से लेकर आधुनिक विकास तक जहां गूंजेगी विकसित यूपी की ऐतिहासिक बैठक। विकसित यूपी बैठक कानपुर, सिर्फ यूपी तक पर।
23: कोटा मेडिकल कॉलेज के सरकारी अस्पतालों में 5 प्रसूताओं के मौत के मामले में नया खुलासा हुआ है कि मरने वाली 5 महिलाओं को ऑक्सीटोसिन का जो इंजेक्शन लगाया गया था दरअसल वो नकली था। अब बड़ा सवाल है, सरकारी अस्पताल में नकली इंजेक्शन कैसे पहुंचा? राजस्थान सरकार के तरफ से आज तक कुछ भी नहीं बताया गया है इन महिलाओं की मौत कैसे हुई थी। शरद कुमार, जयपुर आज तक।
24: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए विशेष अलर्ट जारी किया हुआ है। अनुमान है कि अगले 4 दिनों तक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इन राज्यों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका है। 28 मई को भी उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भी तेज हवाओं, बारिश, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की संभावना के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 मई को प्रदेश के कई जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेधार हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा बहुत से तटीय राज्यों में प्री मानसून बारिश की भी संभावना है।
18: राज्यों की बात करें तो प्री मानसूनी बारिश जो होती है वो जरूर देखी जा रही है, क्योंकि दक्षिणी छोर पे जो है 26 मई को मानसून जो है वो दस्तक देना था, हालांकि अभी तक दस्तक नहीं दिया है, लेकिन प्री मानसून बारिश जो है चाहे केरल, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम में बात करी जाए तो इस पूरे पूर्वोत्तर भारत में या फिर दक्षिण छोर पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जो है जारी किया गया है। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और इन सब की बात की जाए तो यहाँ पर रेड अलर्ट हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उसके बाद तापमान एक बार कम जाएंगे और लोगों को इस गर्मी से, इस चिलचिलाती धूप से राहत मिल सकती है।
24: इस प्री मानसून बारिश की इस वक्त पूरे उत्तर भारत को सख्त जरूरत है। पहाड़ों पर भी बारिश हो गई तो उसकी राहत पूरे नॉर्थ इंडिया को मिलेगी। मौसम विभाग बता ही रहा है कि जिन राज्यों में इस वक्त लू चल रही है वहां 8 से 10 डिग्री का तापमान कम रहेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के शहरों में तो अब तालाब और झीलों तक का पानी भी गर्मी से सूख रहा है।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा,
1: इन एसोसिएशन विद
2: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज, सूत्रों से खबर। प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून से पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से शिक्षा मंत्री सुपर एक्सक्लूसिव। आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों के हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण।

मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा। कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिवकुमार के सिर सजेगा ताज, कल दिल्ली में बैठक। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी। 21 जून कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाए स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से, इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
2: ईरान ने लिया अमेरिकी हमले का बदला, कुवैत के अमेरिकी बेस पर दागी मिसाइल, अमेरिकी तेल टैंकरों पर ईरान की गोलीबारी, हमला करने आ रहे ईरानी ड्रोन को अमेरिका ने मार गिराया, हॉर्मुज पर कब्जे के ईरान ओमान के प्लान पर भड़के ट्रंप, ट्रंप की धमकी सुधर जाए ओमान वरना उड़ा देंगे, कैबिनेट की मीटिंग में अरब देशों को भी ट्रंप का अल्टीमेटम, अब्राहम अकॉर्ड्स में शामिल नहीं हुए तो बुरा होगा अंजाम, बुरे फंसे ट्रंप, आक्रामक हुआ ईरान।
3: नमस्कार, मैं हूं श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। बीती रात जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकरों पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था। यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अब भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हम्ले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। तीन जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिला कर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: No, the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान, जहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप

0: लेबनान पर इसराइल का अब तक का सबसे भीषण हमला। जहरानी नदी तक बढ़ा इजरायली सेना का दायरा। टायर और नबात ये शहर बने इसराइल का मुख्य निशाना। महज एक घंटे में इसराइल ने किए ताबड़तोड़ 7 हवाई हमले। टायर शहर से 2,00,000 से ज्यादा आबादी का पलायन। जहरानी नदी के दक्षिण का पूरा इलाका कॉम्बैट जोन घोषित। रेड क्रॉस की चेतावनी, लेबनान में गहराया मानवीय संकट। 24 घंटे में 30 से ज्यादा मौतें, मलबे में जिंदगी की तलाश। सीज फायर पूरी तरह धुआं, हिजबुल्लाह का पलटवार जारी।
1: एक तरफ अमेरिका और ईरान भिड़ रहे हैं, दूसरी तरफ इसराइल ने लेबनान में कोहराम मचा रखा है। लेबनान पर इसराइल का भीषण हमला हुआ, इसराइल और हिजबुल्ला के बीच छिड़ी जंग अब अपने सबसे खतरनाक दौर में पहुंच गई है। दक्षिणी लेबनान में जहरानी नदी के दक्षिण का पूरा इलाका जंग के मैदान में तब्दील हो गया है और लाखों लोग पलायन को मजबूर हैं।
2: इजरायली डिफेंस फोर्सेज ने दक्षिणी लेबनान के प्रमुख शहरों और घनी आबादी वाले रिहायशी इलाकों को निशाना बनाते हुए अब तक का सबसे बड़ा और विनाशकारी सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। इस ताजा सैन्य कार्रवाई के केंद्र में लेबनान का ऐतिहासिक और तीसरा सबसे बड़ा शहर टायर और नबातीह बने हुए हैं। इजरायली सेना ने चौंकाने वाला कदम उठाते हुए इसराइल लेबनान सीमा से करीब 40 किलोमीटर उत्तर में बहने वाली जहरानी नदी के दक्षिण के पूरे इलाके को आधिकारिक तौर पर कॉम्बैट जोन घोषित कर दिया है। पहले जहां इसराइल लिटानी नदी तक के इलाके को सुरक्षा क्षेत्र में बदलने की बात कर रहा था, वहीं अब उसने अपनी लक्ष्मण रेखा को जहरानी नदी तक खींच दिया है।
3: इसराइल का कहना है कि हिजबुल्ला को डिसआर्म करना है, यानी जिस तरह से लेबनान में रहते हुए हिजबुल्ला लगातार रिप्लेनिश कर रहा है, अपने वेपन्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, सीरिया के रास्ते उन्हें स्मगल करते हुए लेकर आ रहा है, वो सब कुछ खत्म होना चाहिए और तभी वो इस डील को पूरी तरह से मानेगा, वरना जो एक्शन है इसराइल का हिजबुल्ला के खिलाफ वो ऐसे ही जारी रहेगा। और सीज फायर वायलेशंस की अगर हम बात करें तो अप्रैल में जब सीज फायर घोषित हुआ तब से 17 मई यानी लगभग एक महीने में 400 हमले किए गए हिजबुल्ला की तरफ से इसराइल की तरफ और उनको काउंटर किया इसराइल ने। तो इस तरह का ये एक सक्रिय ऑपरेशन आप देख सकते हैं इस पूरे इलाके में लगातार चल रहा है। कुछ दूर से कुछ धमाकों की आवाजें भी बीच बीच में आ रही हैं, जिससे ये पता चल रहा है कि ये जो ऑपरेशन है इसराइल की तरफ से ये कितना ज्यादा तेजी से चल रहा है, एक अग्रेसिव ऑपरेशन चल रहा है। इस इलाके में जहां मैं खड़ी हूं, ये जो बॉर्डर का इलाका है, तमाम गांव हैं जहां पर ज्यूइश कम्युनिटी भी रहती है, ड्रूस रहते हैं और स्कूल बंद हैं, बच्चे घर में बैठकर पढ़ाई कर रहे हैं क्योंकि लगातार ये ऑपरेशन तेजी से चल रहा है।
2: IDF के प्रवक्ता ने अरबी भाषा में सख्त चेतावनी जारी करते हुए इस क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सैकड़ों गांवों, कस्बों और मुख्य शहरों के निवासियों को तुरंत अपने घर छोड़कर जहरानी नदी के उत्तर में चले जाने का आदेश दिया है।
4: लेबनान के निवासियों के लिए अत्यावश्यक सूचना, कृपया ध्यान दें। हिजबुल्लाह द्वारा बार बार युद्ध विराम समझौते का उल्लंघन करने के कारण IDF उनके खिलाफ भारी बल प्रयोग करेगा। हम दक्षिणी लेबनान के सभी निवासियों से हिजबुल्लाह के कार्यकर्ताओं, ठिकानों और हथियारों से दूर रहने का आह्वान करते हैं। हिजबुल्लाह लेबनान में तबाही मचा रहा है, लेबनानी लोगों का शोषण कर रहा है और उनके जीवन को खतरे में डाल रहा है। हम दक्षिणी लेबनान के निवासियों को जहरानी नदी के उत्तर में जाने की सलाह देते हैं, क्योंकि नदी के दक्षिण के सभी क्षेत्रों को अभियुद्ध क्षेत्र घोषित किया गया है। IDF का नागरिकों को नुकसान पहुँचाने का कोई इरादा नहीं है। इस बयान पर ध्यान दें और सतर्क रहें।
2: दावा ये किया जा रहा है कि इसराइल अब दक्षिणी लेबनान के दो प्रमुख शहरों टायर और नबातीये पर कब्जे की तैयारी में है। इजरायली सेना नबातीये से 5 किलोमीटर दूर रह गई है, जबकि टायर के निवासियों को पहले ही शहर खाली करने के आदेश मिल चुके हैं। लेकिन इसराइल

0: का हमला दो शहरों तक ही सीमित नहीं रहा, उसने लेबनान के तीसरे सबसे बड़े शहर सिडोन पर भी बड़ा हवाई हमला किया। सिडोन में इस्लामिक ग्रुप के एक सिविल डिफेंस सेंटर को सीधे मिसाइल हमले का निशाना बनाया गया। ये फर्स्ट रिस्पोंडर फैसिलिटी थी, यानी हमले के वक्त अंदर कई रेस्क्यू और मेडिकल स्टाफ मौजूद थे। मलबे से तीन लोगों के शव बरामद किए जा चुके हैं, जबकि पांच गंभीर रूप से घायलों को अस्पताल भेजा गया। टायर नबातियह और बेका घाटी के बाद अब सिडोन जैसे विशाल आबादी वाले केंद्र पर हमला करके इजराइल ने साफ कर दिया है कि वो लेबनान में किसी भी हद तक जाने को तैयार।
1: उत्तरी इसराइल में मैं इस वक्त लेबनान के बॉर्डर के नजदीक खड़ी हुई हूं, जहां पिछले कुछ घंटों से एक सक्रिय ऑपरेशन आईडीएफ चला रहा है। 24 घंटों के दौरान 150 अलग अलग स्ट्राइक्स की गई हैं, जिसमें अब तक इस पूरे ऑपरेशन में 3000 से ज्यादा हिजबुल्ला ऑपरेटिव्स को न्यूट्रलाइज करने के दावे किए जा रहे हैं। इस पूरे इलाके की अगर हम बात करें तो ये एक ऐसा संवेदनशील इलाका है जहां पर सक्रिय ऑपरेशन लगातार जारी है। इजरायली डिफेंस फोर्सेज यहां पर हिजबुल्ला के अलग अलग ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। ये जो रिज आपको दिखाई दे रहे हैं, ये वो इलाका है जहां से लेबनान की बाउंड्री शुरू होती है। उसके इस तरफ लगातार इजरायली डिफेंस फोर्सेस तैनात हैं और दूसरी तरफ भी इनके ऑपरेशंस चल रहे हैं, चाहे वो ग्राउंड ऑपरेशंस हो, जहां पर दावे किए जा रहे हैं कि टनल्स के अंदर हथियारों के जखीरे बरामद हो रहे हैं, एयर ऑपरेशंस जहां पर स्ट्राइक किए जा रहे हैं वो इजरायल की तरफ से किए जा रहे हैं। और इजरायल का ये कहना है कि हिजबुल्ला की तरफ से एक प्लान के तहत इजरायल के अंदर घुसने, इजरायली ज्यूज को मारने, उनको खत्म करने की एक प्लानिंग की जा रही थी, लिहाजा अपने आप को बचाने के लिए, अपने बचाव में आईडीएफ इस ऑपरेशन को जारी रखे हुए है।
0: इसराइल के इतने भीषण हमलों के बावजूद हिजबुल्ला हार मानने को तैयार नहीं। सोशल मीडिया पर यह वायरल वीडियो हिजबुल्ला की ओर से इजरायली सैनिकों पर ड्रोन हमले का है। सुइसाइड ड्रोन ने जीप पर सवार इजरायली सैनिकों पर खतरनाक हमला किया। ड्रोन के हमले से पहले ही इजरायली सैनिक जीप से कूद गए और उनकी जान बाल बाल बच गई।
1: ये जो ऑपरेशन है, इस ऑपरेशंस के बारे में इजरायल का ये भी कहना है कि भले ही ईरान और अमेरिका के बीच में जो बातचीत हो रही हो, वो जो बड़ी एक लड़ाई शुरू हुई थी फरवरी में उसको लेकर, लेकिन इस इलाके में अगर हिजबुल्ला के ठिकाने इस तरह से बने रहे जहां पर हथियार रहे, तो फिर इजराइल स्वतंत्र है हिजबुल्ला के खिलाफ एक्शन के लिए। और ये आप देख रहे हैं कि ये इस बॉर्डर के इलाके में एक बंकर बनाया गया है। ये बंकर इसलिए बनाया गया है क्योंकि यहां पर लगातार मिसाइल्स आते हैं, यूएवीज और अब एफपीवी ड्रोन्स, जो फर्स्ट पर्सन व्यू ड्रोन्स हैं, जो बेहद छोटे हैं, जिन्हें आयरन डोम पकड़ नहीं पाता, और अब एक और ऑप्टिकल फाइबर के साथ इन्हें जोड़कर हिजबुल्ला यहां पर उन ड्रोन्स को भेज रहा है। पिछले कुछ दिनों में 10 से ज्यादा इजरायली सोल्जर्स इस इलाके में मारे जा चुके हैं। ये आप बंकर देखिए, ये बंकर इस लिहाज से बनाया गया है कि अगर बॉर्डर के इलाके में या जो कम्युनिटी यहां पर रहती है वो एक्सपोज होती है और मिसाइल्स आती हैं, जिस तरह से रॉकेट्स आते हैं हिजबुल्ला की तरफ से, तो अपने आप को इसमें सुरक्षित रखा जा सके।
0: इससे पहले भी हिजबुल्ला ने इजरायली सेना और उनके सैन्य ढांचों पर ड्रोन से हमले का वीडियो जारी किया था। इन हमलों के बाद इजरायल ने लेबनान में हिजबुल्ला के ऊपर भीषण हमले शुरू कर दिए।
2: हमारी इस पेशकश में अभी के लिए इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए देखते रहिए आज तक।
3: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच, इन एसोसिएशन विद
4: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।
5: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems, from OGs like Tupac and Biggie, to chart-topping bangers from the biggest artists of all time, like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow?
6: It's your boy,
5: just
6: Jay-Z.
5: Search classic hip-hop, or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen. The music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial-free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial-free, on TuneIn.
6: The wide world of sports comes alive on TuneIn with top stations, game-changing podcasts, and even live play-by-play. It's your playbook for every league. MLB.
7: Gone! Home run!
6: NHL.
7: It scores!
6: College basketball.
8: He shoots it immediately.
9: He makes it in!
6: Tennis. Golf. And even top motorsports like NASCAR.
10: One lap to go.
6: And IndyCar. No matter what gets your heart racing and fuels your fandom, hear it here on TuneIn.
11: मौसम विभाग ने कहा है कि इस साल भारत में गर्मी का असर बहुत ही ज्यादा होने वाला है।
12: रामराज व्हाइट शर्ट्स इस समर को कूल बना दें।
13: They were not built like everyone else. So they built something else. A different rhythm. A different fire. A different definition of impossible.

0: इसमें है फाइबर, बीटा ग्लूकोन, प्रोटीन, मैग्नीशियम तत्व, इसलिए ये शारीरिक संतुलन के साथ साथ शरीर को स्वस्थ रखता है। लायन ओट्स फैमिली, सुपर एक्शन फैमिली।
1: Where the software engineer meets the gifted content writer, meets the cool UI UX designer, meets the talented photographer to create the big dream. The world comes together at Sharda University. So where are you?
2: AU करंट अकाउंट के साथ मिलता है फ्री UPI QR ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी और एक ही ऐप से बैंक के सारे काम। AU
3: सोच बदलो और बैंक भी।
4: 11 मई आज तक पर पेपर लीक कनेक्शन का पर्दाफाश।
5: नीट की परीक्षा से पहले एक गेस पेपर धड़ल्ले से मोबाइल पर बंटता है। 135 सवाल उसी गेस पेपर से हूबहू मिलते हैं।
6: 15 दिन पहले से पूरे देश में बट रहा था, एनटीए को पता नहीं।
4: 12 मई आज तक के खुलासे पर मुहर।
7: जिम्मेदारी लेते हैं कि जो हुआ गलत हुआ।
5: आज तक की खबर के बाद आज सरकार की तरफ से एक्शन हुआ, एनटीए जागी, पेपर रद्द हुआ। हमने आज तक पर लगातार दस्तक दी है, खबरदार किया है, हर दल की सरकार को जगाया है, बताया है कि पेपर लीक रोक लीजिए वरना बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ होता रहेगा।
4: जहां खबर वहां खबरदार।
8: इन एसोसिएशन विद E3HDMR, ये रिश्ता लंबा चलेगा।
9: पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में पूरी प्रचंड गर्मी इस समय है। पारा 45 डिग्री के पार है और सुखना लेक पर आप देखिए कि जो पानी का स्तर भी था वो भी अपने लेवल से 5 से 6 फीट कम नजर आपको आएगा। और ये जो मिट्टी के निशान पत्थरों पर हैं, तो ये पहले यहाँ पर पानी था, लेकिन जिस तरीके से पिछले 15 से 20 दिनों में पूरा 45 डिग्री के पार तापमान रहा है और पूरा हीट वेव रही है उत्तर भारत में, खासकर पंजाब हरियाणा में, तो उसका असर आप देखिए कि हर चीज पर है। लोगों का व्यवसाय हो, लोगों का कामकार हो, और प्राकृतिक तौर पर भी आप देखिए कि जो जल स्रोत हैं या जिस तरीके से हीट वेव है उसका असर पूरे तरीके से है। इस समय पंजाब के बठिंडा में सबसे ज्यादा तापमान दर्ज किया गया है 45 डिग्री, और हरियाणा का सिरसा ऐसा शहर है जो 46 डिग्री पारे के साथ सबसे हीटेड शहर है। और आप देखिए कि ये सुखना लेक पर जो चहल पहल होती थी, हरा भरा रहता था और आवाजाही रहती थी, लोग यहाँ पर आते थे, तो वो भी अब पूरा सन्नाटा पसरा हुआ है। लोग इस समय धूप में सुबह के वक्त भी निकलना पसंद नहीं कर रहे। अगर
8: Presented by Patanjali Dant Kanti Toothpaste, complete oral health ka sach. In association with
10: Bharat ki apni electric sawari, Sokudo.

0: दिल्ली में पानी का संकट तो है ही, कई कॉलोनियों में पानी ही नहीं आ रहा। इस भीषण गर्मी में बड़ा जल संकट पैदा हो गया है, लेकिन दिल्ली के गुलमोहर पार्क में नाले जैसे पानी की सप्लाई हो रही, जिसकी वजह से बहुत से लोग बीमार भी हो गए। दिल्ली का गुलमोहर पार्क सबसे ज्यादा पॉश इलाकों की लिस्ट में आता है। यहाँ बड़े और अमीर लोग रहते हैं और उन्हें भी पीने का साफ पानी नहीं मिल पा रहा। पानी से सीवर की बदबू आ रही है।
1: देश की राजधानी दिल्ली पानी की किल्लत से जूझ रही है, लेकिन सामान्य इलाकों को छोड़िए, वो इलाके जहां लखपति करोड़पति रहते हैं, सबसे महंगे इलाकों में से एक गुलमोहर पार्क में पानी गंदा आ रहा है। अब हम जिन इलाकों में आए हैं, बंगलों में, आप सोचिए कि ये जो पानी है ये पीने के पानी का टैंक है, लेकिन ये पानी पूरा काला है। काली पानी की सप्लाई इसमें बदबू है, जिसके चलते बहुत लोगों को यहाँ बीमारियां हुई हैं, रैशेस हुई हैं और पेट से जुड़ी, लिवर से जुड़ी दूसरी बीमारियां। तो अब ज्यादातर लोग क्या कर रहे हैं, टैंक में पानी भर गया है, इसको खाली करवा के अब इसके बाहर निकलवा रहे हैं, ताकि जब जल बोर्ड की साफ पानी आएगी, सप्लाई आएगी, तब इन टैंक को भरा जाएगा। आप सोचिए कि गर्मी बढ़ी, पानी की किल्लत शुरू हुई, दूसरे इलाकों में बिजली की किल्लत है, दिल्ली में पानी की कमी है, और जहां पानी आ रहा है वो भी ऐसे इलाकों में, सोचिए कि इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, महंगा इलाका है, इस पानी में बदबू है। और ये पिछले 5-6 दिनों से गुलमोहर पार्क जैसे प्रतिष्ठित इलाकों में, उन इलाकों में जहां संपन्न लोग रहते हैं, धनाढ्य तबका रहता है, वहां भी इस तरह का गंदा पानी आ रहा है। दैट्स लिटरली लुक द बैड स्मेल।
2: जो है अब जो है 3-4 दिन से तो बहुत ज्यादा खराब हालत है।
1: तो स्मेल रैशेस,
2: स्मेल रैशेस तो नहीं, यूज ही नहीं कर रहा, यूज करना बंद कर दिया है पानी हमने,
1: इसकी वजह से तबीयत वगैरह भी बिगड़ी लोगों।
2: हाँ, मेरे को डायरिया खुद हुआ है, तो 3 दिन से तो मैं बीमार बैठा हूँ।
1: आप लोग कम क्लीनिंग कर रहे हैं?
3: हाँ जी, जीडी वाटर कंसल्ट से हूँ मैं।
1: अच्छा।
3: और ये पंचशील, गुलमोहर पार्क और डिफेंस कॉलोनी जैसे पौष इलाकों में पानी की यही दिक्कत आ रही है।
1: आपको रोज कितने टैंक क्लीन करने जाना पड़ रहा है?
3: हमारी कम से कम 20 टीमें हैं, और हमारा डेली का कम से कम 40 से 45 कॉल हो रही है, 40 से 45 घरों में जा रहे हैं, वहाँ पे ज्यादातर यही दिक्कत आ रही है।
0: बाहर हमें दिल्ली जल बोर्ड के कर्मचारी भी मिले, जो इस गंदे पानी की लाइन को ठीक कर रहे थे। जल बोर्ड इस गंदे पानी का ठीकरा कॉलोनी में निर्माण और PWD पर फोड़ रहा है।
4: देश की राजधानी दिल्ली के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे की ये वो तस्वीरें हैं जो बता रही हैं कि पश्चिम एशिया के युद्ध से बने हालात का असर क्या हो रहा है। टैक्सी और ऑटो यूनियन किराए में फौरन बढ़ोतरी की मांग पर 3 दिनों की हड़ताल पर है, क्योंकि पेट्रोल डीजल की कीमतें बढ़ गई हैं। भारत में पेट्रोल डीजल की कीमतें तकरीबन 4% बढ़ी हैं। इसका असर लगभग हर क्षेत्र पर हो रहा है। मारुति सुजुकी ने अपनी गाड़ियों के दाम बढ़ाने का ऐलान कर दिया है। कंपनी ने कहा है कि अगले महीने यानी जून से कारों के दाम 30,000 रुपए तक बढ़ जाएंगे। कंपनी का कहना है कि इनपुट कॉस्ट लगातार बढ़ने की वजह से कंपनी कारों के दाम बढ़ाने के लिए मजबूर है। उधर दिल्ली और केरल में दूध के दाम बढ़ने के बाद बिहार में सुधा दूध और राजस्थान में सरस दूध के दाम भी 2-2 रुपए प्रति लीटर बढ़े हैं। देश भर की सब्जी मंडियां, फल मंडियां पहले से महंगी होने लगी हैं। चढ़ रही महंगाई के बीच सियासत का पारा भी चढ़ रहा। असम में नई विधानसभा के पहले सत्र में राज्यपाल के भाषण में बढ़ती कीमतों का जिक्र नहीं होने का मुद्दा उठाकर कांग्रेस ने वॉकआउट करके प्रदर्शन किया। इस बीच जब आर्थिक तूफान आने की आशंका में सियासत जमकर हो रही है, तो आमतौर पर बीजेपी के विरोध में रहने वाले एक्टर कमल हासन ने बचत की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील का समर्थन किया है। साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्रियों का सम्मेलन बुलाने की भी मांग की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विश्व नेताओं के साथ अपनी मुलाकातों में वैश्विक संकट से पड़े असर का समाधान तलाशते नजर आ रहे हैं। साइप्रस के राष्ट्रपति क्रिस्टोडुलिडिस के साथ मुलाकात में उन्होंने ग्लोबल संस्थाओं के रिफॉर्म पर जोर दिया। 5 देशों के दौरे के बाद मंत्रिपरिषद की बैठक की तस्वीर भी प्रधानमंत्री ने साझा की, जिसमें ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पर जोर दिया गया। आज तक ब्यूरो।
5: क्या आप अपना मीडिया प्लान बनाना चाहते हैं स्मार्ट? तो चुनिए नए चैनल आज तक लाइव टीवी को अपने कनेक्टेड डिवाइसेस पर। पहुंचिए इंटरनेट से जुड़े करीब 100 मिलियन स्मार्ट व्यूअर्स तक। एडवर्टाइज करने के लिए ईमेल कीजिए sales@aajtak.com।

0: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच इन एसोसिएशन विद
1: भारत की अपनी इलेक्ट्रिक सवारी सोकुडो।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज, सूत्रों से खबर। पीएम मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से शिक्षा मंत्री सुपर एक्सक्लूसिव। आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों के हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा। कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी है बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा। कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। कल दिल्ली में बैठक। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी। 21 जून कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग।
1: नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहर खान और आप देख रहे हैं वारदात। जिनके हुक्म पर कभी गिरफ्तारियां हुआ करती थी, आज खुद उन्हें गिरफ्तार होना पड़ा। जी हां, कभी जज रही ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह को आखिरकार 16 दिन बाद सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। इससे पहले बुधवार को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। इस तरह अब ट्विशा की मौत के मामले में पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह दोनों सीबीआई की हिरासत में हैं।

0: 28 मई गुरुवार सुबह की तस्वीर है। ट्विशा की जज रही सास गिरिबाला सिंह सुबह सुबह अपने घर के बाहर कुत्तों को खाना खिला रही है। बुधवार की रात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत अर्जी खारिज होने के बाद ये गिरिबाला सिंह की पहली तस्वीर है। क्या पता शायद किसी ने कहा हो कि सुबह सुबह कुत्तों को खाना खिलाने से इनकी बला टल जाएगी, पर ऐसा हुआ नहीं, क्योंकि इस तस्वीर के कुछ घंटे बाद ही सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंच चुकी थी। इसके बाद जब सीबीआई गिरिबाला सिंह के घर से बाहर निकली तो अकेली नहीं निकली, बल्कि गिरिबाला सिंह को अपने साथ गिरफ्तार करने के बाद निकली।
1: सीबीआई गिरिबाला सिंह को लेकर निकल रही है उस घर से जहां तकरीबन 5 घंटे तक पूछताछ हुई है, और ये आप देखिए सामने हम आपको दिखा रहे हैं, वो बीच में गिरिबाला सिंह बैठी हुई है इस गाड़ी में सीबीआई के साथ, और ये तस्वीरें देखिए आप बीच में गिरिबाला सिंह, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आज तक पे हम आपको दिखा रहे हैं गिरिबाला सिंह की जो बीच में बैठी हुई है, और इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए वो सीबीआई ने 5 घंटे तक पूछताछ की और अब गिरिबाला सिंह को लेके सीबीआई रवाना हो गई है। यहाँ से कहाँ ले जाएंगे ये साफ नहीं है, लेकिन हमने आपको एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाई गिरिबाला सिंह की, किस तरीके से फिलहाल गिरिबाला सिंह को लेकर के सीबीआई अब रवाना हो चुकी है।
0: तो आखिरकार ट्विशा की मौत के पूरे 16 दिन बाद ट्विशा की जज रही सास गिरफ्तार हो ही गई। बुधवार रात मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। उसी के बाद ये तय हो चुका था कि गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी अब तय है। गुरुवार को सीबीआई ने गिरिबाला सिंह से उनके घर पर करीब 7 घंटे तक पूछताछ की, फिर उनकी गिरफ्तारी का ऐलान कर दिया। इस तरह अब माँ बेटे दोनों यानी ट्विशा का पति समर्थ सिंह और सास गिरिबाला सिंह सीबीआई की हिरासत में है। सूत्रों के मुताबिक जल्द ही माँ बेटे दोनों को आमने सामने बिठा कर अब पूछताछ की जाएगी। एक जज ने एक पूर्व जज को जल्दबाजी में अग्रिम जमानत दी, तो इन दोनों जज से बड़े एक दूसरे जज साहब ने कभी जज रही ट्विशा की सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी, और इसी के साथ गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी का रास्ता साफ हो गया था। लेकिन सीबीआई ने गिरिबाला सिंह को गिरफ्तार करने में जल्दबाजी नहीं दिखाई, बल्कि गिरफ्तारी से पहले करीब 7 घंटे तक उनके घर पर लंबी पूछताछ की। गुरुवार की सुबह 10:30 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची थी। इसके बाद शाम करीब 5 बजे गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी का ऐलान किया गया। दरअसल ट्विशा की मौत के तीसरे ही दिन जब ट्विशा की लाश मुर्दा घर में पड़ी थी, तभी बेहद जल्दबाजी में भोपाल की एक निचली अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी। लेकिन तब जांच कर रही भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह को पूछताछ के लिए 3-3 नोटिस भेजे, लेकिन तब भी वो पूछताछ के लिए पुलिस के सामने हाजिर नहीं हुई। इससे भोपाल पुलिस की फजीहत हो रही थी, लिहाजा आखिर में भोपाल पुलिस ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी लगा दी। उसी पर हाईकोर्ट ने सुनवाई के बाद बुधवार को गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। ये मध्य प्रदेश सरकार के वकील है तुषार मेहता। तुषार मेहता भारत के सॉलिसिटर जनरल भी हैं। और ये रही वो अर्जी जो भोपाल पुलिस ने मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में ट्विशा की जज रही सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए अदालत में दायर की थी। इसमें साफ साफ लिखा है कि निचली अदालत ने बेहद जल्दबाजी में गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दी थी। इस अर्जी के मुताबिक 12 मई को ट्विशा की मौत हुई, 13 मई को पोस्टमार्टम हुआ, 14 मई को गिरिबाला सिंह ने कोर्ट में अग्रिम जमानत की अर्जी दी, और 12 घंटे के अंदर अंदर 15 मई को उन्हें जमानत भी मिल गई। इसी के बाद मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए दोनों पक्षों की तरफ से बहस हुई। खुद सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में खुद ही संज्ञान लेते हुए कहा था कि लोगों की यह राय बन चुकी है कि मामला चूंकि न्यायपालिका से जुड़ा है, यानी आरोपी गिरिबाला सिंह एक जज रही है, इसलिए मामले की जांच ईमानदारी से नहीं हो रही। सुप्रीम कोर्ट के इस कमेंट के बाद ही ये तय हो गया था कि जल्दबाजी में दी गई गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज हो जाएगी, और बुधवार देर रात मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने गिरिबाला की अग्रिम जमानत खारिज कर दी। हालांकि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज करने का अपना फैसला बहस पूरी होने के बाद कोर्ट रूम में नहीं सुनाया। गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज किए जाने की जानकारी देर रात हाई कोर्ट के वेबसाइट पर अपलोड किए जाने के बाद ही सामने आई। गिरवाला सिंह को अग्रिम जमानत देने के निचली अदालत के फैसले में मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने कई गलतियां पाई। हाई कोर्ट में सीधे इस आधार पर ही सवाल उठाए गए जिस आधार पर गिरवाला सिंह को अग्रिम जमानत दी गई थी।
2: तो हमने तो वो आधारों को चैलेंज किया था जिन आधारों पर गिरिबाला को बेल दी गई थी, और हम पहले से भी कहते आ रहे हैं कि अगर बेल इन मामलों में, ऐसे गंभीर मामलों में, सिर्फ इस आधार पर दी जानी हो कि सास की आयु 60-63 वर्ष हो, उसके ऊपर पहला क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं हो और वो उसी स्थान की स्थायी निवासी हो, अगर इन्हीं तीनों ग्राउंड पर दी जानी चाहिए तो फिर तो हर मामले में बेल हो जाएगी, ये हम शुरू से कहते आ रहे थे। लेकिन शासन की ओर से महाधिवक्ता महोदय ने और सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता जी ने बहुत विस्तार से यह पक्ष रखा है कि क्या क्या इसमें बेल में दिए जाने में खामियां थी और क्यों गिरिबाला की कस्टोडियल इंट्रोगेशन की जरूरत थी।
0: दरअसल जिस तरह अग्रिम जमानत की अर्जी देने के 12 घंटे के अंदर अंदर गिरिबाला सिंह को निचली अदालत ने जमानत दी, उस पर सबसे ज्यादा सवाल उठे थे। जाँच शुरू होने से पहले और बिना पूछताछ किए ही गिरिबाला सिंह को निचली अदालत ने अग्रिम जमानत की राहत दे दी थी।
2: भोपाल की कोर्ट ने, सेशन कोर्ट ने जो बेल ऑर्डर दिया है वो 12 घंटे के अंदर ही, FIR दर्ज हुई है 15 तारीख को सुबह सुबह 2:44 में, और फिर उसी दिन में 12 घंटे के अंदर ही बहुत ही त्वरित तरीके से बिना इन्वेस्टिगेशन प्रॉपरली स्टार्ट हुए, बिना कोई इन्वेस्टिगेशन का मटेरियल कलेक्ट करे बेल दे दी गई है, बहुत ही हरीडली, बहुत ही त्वरित तरीके से इस पे उन्होंने पक्ष रखा है।
0: वकीलों की दलीलों पर हाईकोर्ट ने इस बात को भी माना कि अग्रिम जमानत की जो शर्तें थी उसे भी गिरिबाला पूरी नहीं कर पा रही थी। भोपाल पुलिस की तरफ से बाकायदा अदालत में कहा गया कि पूछताछ के लिए 3-3 नोटिस दिए जाने के बावजूद गिरिबाला लगातार पुलिस का सामना करने से बचती रही, इसके लिए अलग अलग बहाने करती रही।
2: बेल मिलने के बाद गिरिबाला लगातार बेल की कंडीशन को अवॉइड कर रही थी, 3-3, 4-4 बार पुलिस ने इंट्रोगेशन के लिए उनको बुलाया लेकिन वो नहीं आई थी, और आखिरी बार भी उन्होंने लिखा, मेल करके बोल दिया था कि वह सुबह नहीं आ पाएंगी, शाम को आएंगी। इस तरीके से उन्होंने इन्वेस्टिगेशन को टरकाया है और जो इन्वेस्टिगेशन के लिए नोटिसेस इंट्रेट का पालन नहीं किया है, और साथ ही साथ उन्होंने इन्वेस्टिगेशन में भाग लेने के बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस करके और वीडियो वगैरह दे करके और अपना पक्ष रख करके और त्रिशा के बारे में अनर्गल प्रलाप करके इन चीजों में इन्वेस्टिगेशन को इन्फ्लुएंस करने के लिए।
0: निचली अदालत के अग्रिम जमानत दिए जाने के फैसले को लेकर ये भी सवाल उठे कि जब गिरिबाला को जमानत दी गई तब न तो क्राइम सीन या घर के CCTV फुटेज जब्त किए गए थे, न दस्तावेज जब्त किए गए, उल्टे गिरिबाला सिंह जांच से जुड़े इन सबूतों को बाकायदा मीडिया के सामने पुलिस से पहले ही पेश करती रही।
2: कि वो सारे दस्तावेज, वो सारी चीजें जो इन्वेस्टिगेशन को जब्त करनी चाहिए थी और उन्होंने जब्त की भी हैं, लेकिन जब्त करने के पहले ही जो CCTV फुटेज और DVR वगैरह है वो स्वयं उन्होंने लीक करा, उन्होंने खुद दिया, यानी उन्होंने उसको निकाला है उसमें से, जो बाद में पुलिस ने जब्त किया। तो अब ये इन्वेस्टिगेशन का मैटर है कि उसको किस तरीके से उन्होंने क्या मैनिपुलेट किया है, क्या उसमें कोई उन्होंने फेरबदल किए, ये सब अब इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है क्योंकि अब DVR उनके पास है।
0: गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज होने की एक और वजह पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मिले जख्मों के निशान भी रहे। मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से हाई कोर्ट में पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट के सामने डिटेल में ट्रिशा के शरीर पर मिले जख्मों के बारे में बताया। ट्रिशा के शरीर पर कुल 7 जख्म मिले थे जो उसकी मौत से पहले के थे।
2: एडवोकेट जनरल साहब ने पोस्टमार्टम की इंजुरीज को हाईलाइट किया है, उन्होंने ये बताया है कि गले पे जो निशान थे उसके अलावा, गले पे जो उसके पट्टे के निशान थे उसके अलावा सिर में भी चोट थी, हाथ में चोट थी, कोहनी में चोट थी, उंगली में चोट थी, कमर में चोट थी, 7 चोट थी। और उन्होंने पोस्टमार्टम, पहली पोस्टमार्टम, हालांकि अभी सेकंड पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है, लेकिन पहली पोस्टमार्टम रिपोर्ट को ही उन्होंने देख करके ये बताया है कि इसमें ये स्पष्ट डॉक्टरों ने लिखा है कि ये सातों चोट त्रिशा के मरने के पूर्व की थी, ये मरने के बाद की नहीं थी, ये मरने के पूर्व की थी।
0: यही वो तमाम वजह नहीं जिसको हाईकोर्ट ने सही मानते हुए निचली अदालत के फैसले को पलट दिया और गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी का रास्ता साफ कर दिया। अग्रिम जमानत खारिज होते ही अगले दिन यानी गुरुवार की सुबह करीब 10:30 CBI की टीम गिरिबाला सिंह के घर पहुंची। पिछले 3 दिनों में यह तीसरा मौका था जब CBI की टीम गिरिबाला सिंह के घर यानी ट्विशा के ससुराल आए। लेकिन गुरुवार सुबह ये पहली बार था जब गिरिवाला सिंह की गिरफ्तारी को रोकने वाला अग्रिम जमानत का कवच टूटने के बाद सीबीआई उनसे पूछताछ कर रही थी। उधर समर सिंह भी अब पुलिस हिरासत में है और उससे पूछताछ लगातार जारी है। समर सिंह की 5 दिन की पुलिस हिरासत शुक्रवार को खत्म हो जाएगी। अब ये सीबीआई पर है कि वो आगे भी उसकी पुलिस कस्टडी मांगती है या नहीं। यह गिरिबाला सिंह का घर है और ये उसी घर के छत की तस्वीर है जिस छत पर 12 मई की रात ट्रिशा की मौत हुई थी। इस छत और यहाँ रखे सामान को देखकर ये साफ पता चलता है कि इस जगह को एक जिम के तौर पर भी इस्तेमाल किया जाता था। तस्वीर में आपको जमीन पर ट्रिशा की चप्पल भी पड़ी दिखाई देगी, लेकिन इस तस्वीर की सबसे खास बात यह है कि इसमें इलास्टिक का वो फंदा भी नजर आ रहा है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि उसी फंदे से ट्रिशा ने खुदकुशी की थी। छत से नीचे रबड़ जैसे दिखने वाले रिंग के 2 टायर आपको लटके हुए नजर आ रहे होंगे। इन दोनों ही रिंग के साथ इलास्टिक की 2 रस्सियां भी अब भी लटकी हुई है। बाईं तरफ की रस्सी बिल्कुल सीधी है और लगभग जमीन से टकरा रही है, लेकिन दाहिनी तरफ की इलास्टिक की रस्सी सीधी नहीं बल्कि उसका एक सिरा छोटा और एक सिरा बड़ा है। इसे देखकर साफ पता चलता है कि दाहिनी तरफ वाले रिंग से ही लटकती इलास्टिक की रस्सी का फंदा बना होगा। तस्वीर में छत पर या यूं कहें कि इस क्राइम सीन पर 2 लोग भी नजर आ रहे हैं। तस्वीर से ये भी साफ है कि ये तस्वीर रात के अंधेरे की नहीं बल्कि दिन के उजाले की है। अब रिपोर्ट के मुताबिक ट्रिशा की मौत रात 10 से 10:30 बजे के दरमियान हुई, पर कमाल देखिए, रात को पुलिस छत पर इस क्राइम सीन पर पहुंची। जाहिर है पूछताछ में पुलिस को ये बताया गया होगा कि किस फंदे से ट्रिशा को घरवालों ने उतारा था, लेकिन पूरी रात बीत गई, सुबह हो गई, 12 घंटे निकल गए, फिर भी पुलिस को यह ख्याल ही नहीं आया कि जिस फंदे से ट्रिशा की मौत हुई है उस पर लिगेचर मार्क के अलावा उंगलियों के निशान और दूसरे कई सबूत हो सकते हैं। उसे अपने कब्जे में लेना चाहिए, पर पुलिस ऐसा करती नहीं। ट्रिशा की मौत के बाद 13 मई को कहीं जाकर पुलिस फंदे नुमा इस सबूत को अपने साथ ले जाती है। क्या ये अनजाने में हुई भोपाल पुलिस की गलती थी या जज रही गिरिबाला सिंह का खौफ? आप ही बताएं। 12 मई को ट्रिशा की मौत होती है, 13 मई को पोस्टमार्टम होता है, 14 मई को गिरिबाला सिंह अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट पहुंचती है, और कमाल ये कि कोर्ट पहुंचने के 24 घंटे के अंदर अंदर 15 मई को उन्हें अग्रिम जमानत भी मिल जाती है। गिरिबाला सिंह अगर जज की कुर्सी पर न बैठी होती तो क्या इतनी जल्दी ये सब कुछ हो पाता? क्या किसी आम इंसान को अग्रिम जमानत की इतनी जल्दी ऐसी सहूलियत मिल पाती? फिर जांच को लेकर लोगों की राय गलत कहाँ थी? हमारी छोड़ी, मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से वकील और भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता तक गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज करने के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में जो अर्जी लगाते हैं उसमें भी उन्होंने ठीक यही बात कही है। जांच ढंग से नहीं होगी, ये राय कैसे गलत है, जबकि ट्रिशा की मौत के 15 दिन बाद भी जज रही सास से पुलिस पूछताछ तक नहीं कर पाई। गिरिबाला सिंह को अदालत ने अग्रिम जमानत दी है, यानी उनकी गिरफ्तारी पर रोक है, पर पूछताछ पर तो कोई रोक नहीं थी। फिर ऐसी क्या मजबूरी रही कि पिछले 15 दिनों में भोपाल पुलिस गिरिबाला सिंह से एक बार भी पूछताछ नहीं कर पाई? हालांकि इस मजबूरी के बारे में जब भोपाल के पुलिस कमिश्नर संजय कुमार से पूछा गया तो उन्होंने सफाई दी कि पुलिस की तरफ से एक नहीं बल्कि 3-3 बार गिरिबाला सिंह के घर पर उन्हें पुलिस के सामने पूछताछ के लिए पेश होने के संबंध में नोटिस दिए गए थे, लेकिन इसके बावजूद वो पुलिस वालों के सामने हाजिर नहीं हुई, न ही वो जांच में सहयोग कर रही है। गिरिबाला सिंह को लेकर भोपाल पुलिस की ये मेहरबानी तब है जब इन्हीं गिरिबाला सिंह ने अपनी बहू ट्रिशा की मौत के अगले दिन यानी 13 मई को उस ब्यूटी पार्लर से धोखे से सीसीटीवी फुटेज मंगाने के लिए कुल 5 वकीलों को भेजा था जिस ब्यूटी पार्लर में मौत से महज चंद घंटे पहले ट्रिशा गई थी। इतना ही नहीं, जज रही यही गिरिबाला सिंह 13 मई को ब्यूटी पार्लर में फोन कर बाकायदा ट्रिशा की जानकारी ले रही थी। सीसीटीवी की ये तस्वीर उसी 12 मई की शाम की है जिस 12 मई की रात ट्रिशा की मौत हुई थी। इस कुर्सी पर बैठी ये ट्रिशा ही जो इस वक्त हेड मसाज करा रही है।
3: मुझे पता चला जब गिरीबाला मैम का फर्स्ट कॉल आया और उनने मुझसे पूछा कि ट्विशा कब आई थी, कब गई, तो मैंने फिर उनको बोला कि ठीक है मैं पार्लर पहुंच के बताती हूँ स्टाफ से पूछ के कि कब आई थी कब गई थी। फिर उनका सेकंड कॉल आया था तो मिस कॉल था, मैं उठा नहीं पाई थी, तो मैंने वापस उनको कॉल बैक किया, उनसे पूछा कि मैम आपने कॉल किया था क्या, तो उनने बोला हाँ मुझे पता करना था, पूछना था कि ट्विशा कब आई और कब गई।
4: ये कब कॉल आया था आपके पास?
3: वो ये 13 तारीख के ही कॉल है।
4: 13।
3: फिर मैं जब यहाँ आई तो मैंने उनको कॉल लगा के बताया कि मैम ट्विशा मैम आई थी, वो इतने बजे आई थी और इतने बजे गई। मैंने बाहर का फुटेज देखा कि वो गई कैसे, क्योंकि उस टाइम पे जब मैं यहाँ आई तो मैंने देखा बाहर कि मैडम लग रहा है घर पहुंची नहीं है या कुछ तो भी ऐसा है जिसकी वजह से मैम का बार बार कॉल आ रहा है। फिर मैंने उनको जब बताया फोन करके कि मैम इतने बजे आई थी इतने बजे गई थी, फिर मैम ने मुझसे मैंने मैम से पूछा कि क्या हो गया है मैम, ट्विशा मैम ठीक तो है ना, तब उनने मुझे बताया कि उनने सुसाइड कर ली है।
4: आपको भरोसा हुआ?
3: नहीं, मेरे को लगा शायद मैंने कुछ गलत सुन लिया है, उनने कोशिश करी होगी या कुछ हुआ नहीं होगा। तो फिर जब 5 लोग बाद में आए थे, मैंने उनसे पूछा जो फुटेज लेने के लिए आए थे,
4: कौन लोग थे वो?
3: उनको वो एडवोकेट लग रहे थे मुझे।
4: अच्छा,
3: मतलब एडवोकेट वाले का, हाँ उनके पास आई कार्ड भी था, वो पहने हुए थे और एडवोकेट थे, और उनने बताया कि वो मतलब फुटेज चाहिए पुलिस को, मैडम आई थी गई थी तो वो आप दिखा सकते हैं क्या सीसीटीवी, तो मैंने बोला दिखाया उनको, फिर उसके बाद उनने फुटेज ली।
0: बहू की मौत हो चुकी है, लाश उस वक्त भी भोपाल एम्स के मुर्दा घर में पड़ी थी, तब तक बेटा समर्थ फरार हो चुका था। अब ऐसी सूरत में गिरिबाला सिंह को आखिर उस ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी फुटेज की क्या जरूरत पड़ गई, जिसे हासिल करने के लिए काले कोट में उन्होंने 5 लोगों को ब्यूटी पार्लर भेजा था। हालांकि इस बात को भी 12 दिन बीत चुके हैं। जज रही गिरिबाला सिंह ट्विशा की मौत के अगले ही दिन ब्यूटी पार्लर से फुटेज मंगवा भी चुकी है, लेकिन कमाल भोपाल पुलिस जो अब तक पूछताछ के नाम पर ही सही एक बार भी इस ब्यूटी पार्लर तक नहीं गई।
4: पुलिस वैसे आई कि नहीं अभी तक आपके पास सीसीटीवी?
3: पुलिस तो नहीं आई
4: अभी, कोई इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं?
3: नहीं, कोई नहीं आया।
0: वो तो अब मीडिया की बदौलत भोपाल पुलिस तक इस ब्यूटी पार्लर की कहानी पहुंची, तब कहीं जाकर उन्हें पता चला कि गिरिबाला सिंह पार्लर से सीसीटीवी फुटेज ले जा चुकी है। इसी के बाद अब पुलिस जागी और कह रही है कि वो इसकी भी जांच करेगी।
5: नहीं, वो तो देखो जो मैंने बताया कि इन्वेस्टिगेशन के लिए जो रेलेवेंट होगा उन सब चीजों के बारे में हम अपने एविडेंस कलेक्ट कर रहे हैं और उनका इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं।
0: दरअसल 12 मई को ट्विशा दोपहर 3 बजे से शाम 6 बजे तक इसी ब्यूटी पार्लर में थी। यह ब्यूटी पार्लर भोपाल में ट्विशा के घर से बिल्कुल करीब है, इसलिए वो घर से पैदल ही यहाँ तक आई थी।
3: वो 3 बजे आई थी अराउंड और 6 बजे गई थी।
4: कोई उन्हें ड्रॉप करने या पिक करने भी आया था?
3: नहीं नहीं नहीं, वो पैदल आई थी और पैदल ही गई थी।
4: अच्छा, पास में ही घर है उनका?
3: हाँ हाँ, उनका पास में ही घर है।
4: अच्छा, तो जब यहाँ पे आप लोगों ने उस दिन उन्हें उनसे को देखा, उन्हें सर्विस दी, तो किसी तरीके का उनके चेहरे पे कोई स्ट्रेस या आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बॉडी लैंग्वेज उनकी ऐसी थी जो कि कुछ ही घंटों बाद कथित रूप से उन्होंने फांसी लगा ली?
3: नहीं, बिल्कुल नहीं।
4: क्योंकि इतने सारे कस्टमर्स आते होंगे आपके पास, बहुतों से आपकी बात होती होगी, नेचर आपको पता ही होगा, तो उस दिन क्या था? उस दिन जब वो यहाँ पे आई तो जैसे वो पहले भी आती थी बिल्कुल वैसा ही नेचर था, या थोड़ा सा आपको कुछ लगा कि आज थोड़ी सी बदली हुई लग रही है?
3: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। वो हंसते हुए अंदर आई थी और उनकी जो सर्विसेज पेंडिंग थी वो उन्होंने करवाया था। उनको हल्का सा वो सिर बोल रही थी कि मेरे को रिलैक्स होने वाला कुछ चाहिए, इसलिए मैं सबसे पहले कुछ ऐसा बताऊं कि मैं क्या करवाऊं, तो फिर उन्होंने हेड ऑयल मसाज का सजेस्ट किया होगा, तो उन्होंने हेड ऑयल मसाज कराई।
0: रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। गिरिबाला सिंह की गिरफ्तारी के बाद उन पर जितने भी इल्जाम हैं अब सीबीआई तफसील से उस पर पूछताछ करेगी। बाकी तमाम इल्जामों के साथ साथ गिरिबाला सिंह पर एक इल्जाम ये भी है कि ट्विशा की मौत के बाद उन्होंने शहर के कई ताकतवर लोगों को फोन किए थे, जिनमें एक जज भी थे। ब्यूटी पार्लर से घर आने के बाद ट्विशा समर्थ के साथ कुछ देर पार्क में टहलती है, फिर घर में सभी के साथ खाना खाती है, इसके बाद कुछ देर टीवी देखती है और आखिर में रात 10 से 10:30 बजे के दरमियान छत पर उसकी लाश मिलती है। मतलब दोपहर से शाम तक और शाम से रात 10 बजे तक सब कुछ ठीक ठाक था, ट्विशा ने अपनी माँ से फोन पर बात भी की थी, लेकिन इसके बाद ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा की मौत हो गई। बस इन्हीं आखिरी पलों की 2-4 घंटे की जांच होनी थी जिससे सारा सच सामने आ जाता, मगर भोपाल पुलिस ये कर नहीं पाई, या शायद गिरिवाला की जज की कुर्सी के खौफ ने उसे जानबूझकर ऐसा करने नहीं दिया। अगर भोपाल पुलिस पहले दिन से अपना काम ईमानदारी से करती तो आज यूं ये केस उसके हाथ से लेकर सीबीआई को सौंपने की न जरूरत पड़ती, न भोपाल पुलिस की यूं रुसवाई होती। हालांकि भोपाल के पुलिस कमिश्नर अब भी ये मानने को तैयार नहीं है कि 2 दिन बाद FIR दर्ज कर उन्होंने कोई गलती की। इस बीच ट्विशा के परिवार वालों ने एक और सनसनीखेज इल्जाम लगाया है। इल्जाम ये कि 12 मई की रात ट्विशा की मौत के बाद से लेकर अगले दिन यानी 13 मई तक ट्विशा की सास गिरिवाला सिंह ने कई ताकतवर लोगों को फोन किया। इनमें चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, लोकायुक्त, जुडिशरी से जुड़े कुछ लोग, CCTV कैमरा इंस्टॉल करने वाला और उस एम्स में भी कुछ लोगों के फोन पर बात हुई जिस एम्स में ट्विशा को ले जाया गया था। परिवार का सवाल है कि ट्विशा की मौत के फौरन बाद इन ताकतवर लोगों को गिरिवाला सिंह ने क्यों फोन किया, इसकी पूरी जांच होनी चाहिए। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।
6: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का, हर माँ का भरोसा, प्यार से परोसा।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज, सूत्रों से खबर। पीएम मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से शिक्षा मंत्री सुपर एक्सक्लूसिव। आज तक से बोले धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों के हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृह मंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा। कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी है बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा। कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। कल दिल्ली में बैठक। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी। 21 जून कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि गाय का घी, लगाएं स्वाद और सेहत का तड़का हर माँ का भरोसा प्यार से।
0: नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि शर्मा। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर मुंबई मेट्रो से पहले आपको बता दें महाराष्ट्र से मिल रही है। और बड़ी और अहम खबर ये कि नासिक टीसीएस धर्मांतरण मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। टीसीएस यौन उत्पीड़न और कथित धर्मांतरण के प्रयासों के 8 मामलों में चार्जशीट दाखिल की गई है। अभी तक इस पूरे मामले में कई आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। कई सारे तार अलग अलग जगहों से जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से इस पूरे के पूरे रैकेट को चलाया जा रहा था, किस तरीके से धर्मांतरण को अंजाम दिया जा रहा था, कैसे लोगों को फंसाया जा रहा था और कहीं डरा धमका कर भी धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा था, ये तमाम चीजें सामने आई हैं। और आपको बता दें कि इस पूरे मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है और कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में अभी तक हो चुकी हैं। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ हमारे संवाददाता दिवेश जुड़ गए, उनका हम रुख करेंगे। दिवेश, और क्या ज्यादा जानकारी है?
2: जी, आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जो पहला केस था, जो देवलाली कैंप का केस था, जिसमें निदा खान और अन्य आरोपी थे, जिन्होंने एक महिला पीड़ित के साथ उसे कन्वर्ट करने की कोशिश की, उसके धर्मांतरण करने की कोशिश की और उसके साथ यौन उत्पीड़न भी हुआ टीसीएस में, और टीसीएस नासिक बीपीओ में, वहां पर उस मामले में चार्जशीट दाखिल की गई थी। और आज नासिक पुलिस ने 8 और मामले, टोटल इस मामले में जो टीसीएस नासिक यौन उत्पीड़न और धर्मांतरण का मामला सामने आया था उसमें 9 FIR दर्ज थी। आज 8 जो अन्य FIR थी उसमें भी चार्जशीट नासिक पुलिस की SIT स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने यौन उत्पीड़न के मामले, जबरन धर्मांतरण और अन्य धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के मामले में दाखिल की है। ये नासिक सिटी एंड सिविल कोर्ट में ये चार्जशीट फाइल की गई है। आपको बता दें कि जो अन्य मामले थे, जो पहला केस था वो देवलाली कैंप पुलिस स्टेशन का केस था, और जो 8 अन्य FIR थी वो मुंबई नाका पुलिस स्टेशन नासिक में रजिस्टर की गई थी और वहां पर इस मामले को रजिस्टर।
0: बार बार कहा जा रहा था कि इसके तार बहुत दूर दूर तक जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से बाहर से पैसा आ रहा है, जिस तरीके से इस पूरे के पूरे रैकेट को चलाया जा रहा था, क्या और भी जानकारी है कि इस जगह के अलावा, इस टीसीएस कंपनी के अलावा कहीं और भी इसी तरह से इसी आधार पर धर्मांतरण का खेल खेला जा रहा है?
2: जी, आपको बता दें कि जो नासिक पुलिस का मामला था वो टीसीएस का जो बीपीओ था, जो नासिक में कार्यरत था, नासिक में चल रहा था, वहां पर जो एम्प्लॉय थे उनके साथ यौन उत्पीड़न, उनके साथ जबरन धर्मांतरण या फिर उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर, उनके धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाकर उनके देवी देवताओं के बारे में अन्य जो टिप्पणियां या फिर स्टेटमेंट ये आरोपी करते थे, उसको लेकर ये मामला दर्ज किया गया था। और उसको जब वो मामला सामने आया तो 9 FIR, कुल 9 FIR दर्ज किए गए थे, और 9 FIR जो दर्ज किए गए थे उसमें ये चार्जशीट फाइल हो गई है। पहली चार्जशीट एक दिन पहले निदा खान और अन्य आरोपियों के खिलाफ दर्ज हुई थी, और जो अन्य आरोपी थे जो 8 और मामलों में शामिल थे, जो की बहुत से मामलों में है, मतलब जो पहले केस में भी आरोपी थे और अन्य 8 मामलों में भी आरोपी थे, ये सम्मिलित आरोपी है वही आरोपी हैं जो पहले केस में भी थे और अन्य केस में भी थे। मिर्जा खान पर सिर्फ पहला केस था और अन्य आरोपी जो पुरुष है उन पर महिला के ऊपर अत्याचार करना,
0: बिल्कुल
2: उनकी
0: देवेश, हम समझ
2: बलात्कार
0: सकते हैं,
2: करना।
0: चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। कई गिरफ्तारियां इस पूरे मामले में हुई हैं और आज चार्जशीट भी दाखिल कर दी गई है इस पूरे मामले में। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे किस तरह से किसान बेहाल है उनके बारे में। महाराष्ट्र में प्याज के किसान इन दिनों आर्थिक तंगी में बुरी तरह से जीने के लिए मजबूर हैं और आलम अब यह है कि प्याज का की जो उत्पादन लागत है वो भी नहीं निकल पा रही हर साल की तरह। जिस प्याज की खेती में 15 रुपए प्रति किलो का खर्च आ रहा है और थोक मंडी में उसे बेचने पर 2 से 6 रुपए प्रति किलो का प्याज का कीमत किसानों को मिल रहा है। लिहाजा प्याज के किसान सरकार से लगातार गुहार लगा रहे हैं, उनकी सुध ली जाए, बार बार वो मिन्नतें कर रहे हैं, नहीं तो किसान आंदोलन और आत्महत्या के लिए वो मजबूर होंगे।
3: महाराष्ट्र में प्याज की खेती करने वाले किसान एक बार फिर संकट में हैं। इसीलिए विपक्ष परेशान किसानों की आवाज बुलंद कर रहा है। देखिए महाविकास अघाड़ी के नेता कैसे प्याज के किसानों के समर्थन में मोर्चा निकाल रहे हैं और सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लेकिन जब एमबीए का आक्रोश बढ़ा तो फिर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में जमकर बहस हुई। उसके बाद पुलिस ने प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं को हिरासत में ले लिया। इस दौरान भी सरकार विरोधी नारेबाजी जारी रही। प्याज को उचित दाम दिलाने की मांग को लेकर नासिक के चांदवड़ में एनसीपी शरद गुट के विधायक रोहित पवार के नेतृत्व में किसानों और कई राजनीतिक दलों ने मोर्चा निकालकर रास्ता रोको आंदोलन किया।
4: पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस आज तक जब से हमको इंडिपेंडेंस मिला आज तक 100 के आगे कमी नहीं गए। अभी मोदी साहब के टाइम में गए। किसानों के जो आत्महत्या सबसे ज्यादा अभी के टाइम में है, महिला अत्याचार सबसे ज्यादा अभी अभी के टाइम में है, उसके साथ बेरोजगारी सबसे ज्यादा इसी के टाइम में है। तो 12 साल में क्या हुआ, तो ये हुआ और गरीब लोग और सामान्य लोग जो है वो अड़चन में आए। लेकिन कुछ 6-7 लोग वो बहुत अमीर हो गए और गरीब लोग गरीबी रह गए, ऐसी आज की परिस्थिति है।
3: लेकिन किसानों के प्रदर्शन पर सीएम फडणवीस ने कहा कि जो किसान सड़क पर आंदोलन कर रहे हैं उनकी हालत ऐसी है कि प्याज काटने पर भी उनकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। हालांकि 27 मई को दिल्ली पहुंचे सीएम फडणवीस ने सहकारिता मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की थी। उन्होंने अमित शाह के सामने प्याज की कीमतों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाया था।
5: हमसे जो मुख्य मांगना होता कि आता जी नाफेड आणि एनसीसीएफ ने कांदा खरेदी सुरू के लिए ही बाजारामध्ये झाली पाहिजे, ती व्यापाराकडनं नाही तर ती शेतकऱ्याकडनं केली पाहिजे, त्याला मान्यता मिळालेली आहे। आम्ही दुसरी मागणी केली आहे की 2 लाख टनाच्या ऐवजी 10 लाख टन खरेदी ही एनसीसीएफ आणि नाफेडने करावी, त्यावर सकारात्मक निर्णय होईल अशी आम्हाला अपेक्षा आहे। यासोबत काही अजून कांदा उत्पादक शेतकऱ्यांना मदत करण्याकरता आणि कांद्याचे भाव स्थिर राहावे याच्याकरता उपाययोजना सुचवलेल्या आहेत, त्याच्यावरही त्यांनी

0: आणि म्हणून त्याच्यावर मोठ्या प्रमाणात एक्सपोर्ट सरचार्ज लावला पाहिजे, ही पण मागणी या ठिकाणी आली, तीही त्यांनी मान्य केलेली आहे.
1: किसानों का कहना है कि सरकार को उत्पादन लागत के आधार पर उचित समर्थन मूल्य तय करना चाहिए.
2: केंद्र सरकार की घोषणा के बाद अब नाफेड नासिक में जाएगी, वहां प्याज की जो प्रोक्योरमेंट है वो शुरू होगी. 15 रुपए 80 पैसे तक 1 किलो को मिलेंगे. लेकिन अब किसानों का यह कहना है कि ये घोषणा केंद्र सरकार की सिर्फ कागज पर है, यहाँ ग्राउंड पर ना ही कोई अफसर दिखाई दे रहा है, ना ही उन्हें कोई मदद के लिए बुला रहा है.
1: नासिक और पुणे में प्याज की खेती करने वाले किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है. कहीं बेमौसम बारिश तो कहीं भीषण गर्मी ने प्याज के उत्पादन पर असर डाला है. वहीं किसानों को प्याज महज 2 से 6 रुपए प्रति किलो बेचने को मजबूर होना पड़ रहा है.
3: अभी जो हालत खराब जो हो रही है प्याज के वास्ते, तो इतनी सारी हालत अभी प्याज के किसान जो है, हम सब इतने परेशान है कि बाजार में जो मंडी में हम प्याज लेते ले जाते हैं, तो जो खर्चा जो है वो हमारे जेब से देना पड़ रहा है. यानी कि ट्रांसपोर्ट है, वहाँ का जो कुछ खर्चा जो है, अभी कुछ जो पड़तल निकली है तो कुछ किसान के आपको मालूम भी पड़ा है, अखबार में भी आए है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, तो प्रोडक्शन जो है उसका भी खर्च नहीं निकल रहा है, जो उत्पादन में जो खर्चा आता है, तो ये सब सरकार नहीं कर रही है. और दाम इतने गिर रहे तो अभी बहुत सारे मुश्किल में आ रहे हैं किसान लोग हम सब. और प्याज की खेती या खेती के लिए जो दिन अच्छे दिन चाहिए वो नहीं आ रहे.
1: किसानों का आरोप है कि केंद्र सरकार की निर्यात नीति और बाजार प्रबंधन की विफलता की वजह से उन्हें लगातार नुकसान झेलना पड़ रहा है, इसीलिए वो अब प्याज की खेती नहीं करेंगे.
4: अभी तक खर्च हुआ है 90-95 हजार रुपए हो गए. अभी मार्केट को रेट है 11-12 रुपए, उसमें से भी मेरा जो 2.5 पीसवी निकला है उसमें से 3 ग्रेडिंग हो जाएगा, उसमें से एक गोला निकल जाएगा, एक मीडियम निकल जाएगा और एक भुगी, बाद में वो सड़ा हुआ भी होता है वो भी निकल जाएगा. अभी मेरे को कुछ मिलेगा नहीं, इसमें से वो जो किलो का भाव है अभी वही किलो का भाव मेरे को उधर मिल रहा है बाजार में, तो मैं क्यों खेती कर रहा हूँ, मैं क्यों प्याज लगाऊँ, मेरा घर भी नहीं चलता इससे, क्या करेगा.
1: केंद्र सरकार ने नासिक जिले के रब्बी प्याज 2026 की खरीद के लिए 26 मई 2026 से 1580 रुपए प्रति क्विंटल का न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है. लेकिन किसानों का कहना है कि ये दर उत्पादन लागत के मुकाबले बेहद कम है. किसानों के मुताबिक प्याज उत्पादन पर प्रति किलो 20 से 25 रुपए तक खर्च आता है, जबकि उन्हें बाजार में महज 2 से 6 रुपए किलो का भाव मिल रहा है. ओतुर की महिला किसान बालिशा चौहान की लाचारी देखी. उन्होंने 41 बोरी प्याज बाजार में बेचा, लेकिन इन्हें हर 1 किलो के सिर्फ 2 रुपए मिले हैं. हालत ये रही कि उत्पादन और परिवहन लागत तक भी निकल नहीं पाई, जिससे उनकी आंखों में आंसू आ गए. पुणे और नासिक के किसान अब सरकार से राहत और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं.
2: अब किसान तो डिमांड कर रहे हैं कि प्याज को एसेंशियल कम्युनिटी एक्ट से निकाल दिया जाए, लेकिन अहम बात यह है कि अभी मार्केट में 2 और 4 रुपए से किसानों को पैसे मिल रहे हैं, वहीं जब ग्राहक प्याज खरीदने जाते हैं तो उन्हें 30 रुपए किलो से लेना पड़ता है. इसी के कारण ना ही किसान खुश है ना ही ग्राहक संतुष्ट है. और अभी विपक्ष का भी यही कहना है, जहां रोहित पवार हो या फिर विजय वरेट्टीवार हो या फिर अन्य कांग्रेसी दल, वो सभी यही कह रहे हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की जो नीतियां हैं उनमें बदलाव जरूरी है. जब तक पॉलिसी मेकिंग नहीं होता तब तक वो किसानों के साथ रहेंगे और महाराष्ट्र भर में ये आंदोलन कायम रहेंगे. कैमरा पर्सन गोपाल हरने के साथ ओमकार वाबले, आज तक पुणे.
5: महाराष्ट्र में जल जीवन मिशन को लेकर सियासत तेज हो चुकी है. एक तरफ सरकार इस योजना को ग्रामीण इलाकों तक पानी पहुंचाने वाली बड़ी योजना बता रही है, तो वही विपक्ष इसे भ्रष्टाचार और अधूरे कामों का मॉडल बता रहा है.
1: जल जीवन मिशन को लेकर महाराष्ट्र का सियासी पारा चढ़ गया है. 27 मई को दिल्ली में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ संबंधित विभाग के मंत्रियों ने केंद्रीय जल शक्ति मंत्री सीआर पाटिल के साथ बैठक कर योजना की समीक्षा की.
0: जल जीवन मिशन या संदर्भात एक महत्वाची बैठक या ठिकाणी होती, ज्यामध्ये संपूर्ण जल जीवन मिशनचा आढावा घेऊन त्यातल्या काय कंप्लायन्सेस आहेत ते कंप्लायन्सेस आपण केलेले आहेत आणि आता

0: ऍडिशनली आपल्याला त्याच्यामध्ये जो काही निधी आहे त्याची मागणी आपण केली आहे. आपल्याला केंद्र सरकारने आश्वस्त केलं आहे की यावर्षी 75% जास्त ज्या स्कीम्स आपल्या पूर्ण झाल्या आहेत त्याच्याकरता आपल्याला पैसा मिळणार आहे. 50 ते 75 वाल्यांकरताही पैसा मिळणार आहे. जवळपास 6,800 कोटी रुपये हे आता केंद्र सरकार या योजना पूर्ण करण्याकरता आपल्याला देत आहे, त्यामुळे मोठ्या प्रमाणात आपल्या योजना कम्प्लीट होतील. त्यासोबत 100% ज्या गावांचं काम झालंय त्याचं सर्टिफिकेशन करायचं आहे.
1: सरकार आंकड़े गिनाते नहीं थक रही तो विपक्ष सरकार के दावों पर सवाल उठा रहा है. शिवसेना यूबीटी नेता अंबादास दानवे ने कहा कि हर घर नल योजना लाई गई लेकिन हर घर जल अब तक नहीं पहुंचा.
2: हर घर जल हर घर नल 2022 तक इस देश के हर घर में नल होगा और हर घर में जल होगा, ऐसी ये योजना थी. लेकिन अभी हम देखे जाए तो ये योजना हम देखे जाए तो जिला परिषद से तरफ से किया जाता है और बड़ी योजना जल जीवन प्राधिकरण जो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट है इसके तरफ से किया जाता है. बड़ी योजना ये प्राधिकरण करता है, छोटी योजना जिला परिषद करता है. अगर हम देखे जाए तो अभी इस राज्य के हिसाब से देखा जाए तो 10-20% भी काम कंप्लीट नहीं. क्यों? इसके लिए फंड नहीं है. केंद्र फंड नहीं देता है, राज्य का शेयर उसमें नहीं आ रहा है, इसलिए ये योजना सिर्फ कागज पे रही है. हर घर जल बिल्कुल नहीं, हर घर नल पहुंचेगा लेकिन जल पहुंच नहीं सकता, इस प्रकार की स्थिति अभी है. राज्य सरकार या केंद्र सरकार दोनों भी जनता को गुमराह कर रही है.
1: महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन पर श्वेत पत्र जारी करे.
3: क्या पॉजिटिव, जितना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है इतना.
1: हर्षवर्धन सपकाल ने आरोप लगाया है कि जल जीवन मिशन में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ है. उन्होंने कहा कि सरकार जल जीवन मिशन पर श्वेत पत्र जारी करे.
3: क्या पॉजिटिव, जितना उसमें भ्रष्टाचार हुआ है इतना घनघोर भ्रष्टाचार हुआ है कि उन गांव को कभी पानी मिल ही नहीं सकता. तो ये जल जीवन मिशन नहीं तो जीवन खत्म करने वाला एक मामला जल जीवन मिशन के माध्यम से किया गया है. इसका इसकी जांच होना चाहिए और इसकी एक व्हाइट पेपर इसका जो है श्वेत पत्रिका जल जीवन मिशन को लेकर कितनी योजनाएं महाराष्ट्र में हुई थी, किन किन को काम मिला, कौन से गांव में मिला, कब तक काम पूरा होना चाहिए था, इसकी एक श्वेत पत्रिका मुख्यमंत्री इतना यदि कहते हैं और ढिंडोरा खुद का पिटते हैं तो सबसे पहले व्हाइट पेपर पब्लिश करें.
1: अब जल जीवन मिशन को लेकर महाराष्ट्र की राजनीति में सरकार बनाम विपक्ष की लड़ाई और तेज हो गई है. सरकार इसे विकास की बड़ी योजना बता रही है जबकि विपक्ष भ्रष्टाचार और अधूरे कामों का आरोप लगाते हुए सरकार पर हमलावर है. ऋत्विक भालेकर, मुंबई आज तक.
4: 3 दिन से हाउसिंग सोसाइटी में कुर्बानी को लेकर मचे कोहराम ने आखिरकार महाराष्ट्र में बकरीद शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुई है. लेकिन कल्याण के दुर्गाड़ी किले में बकरीद के मौके पर शिव सैनिकों ने दुर्गा मंदिर में पूजा की मांग करते हुए जमकर हंगामा किया. पूरा का पूरा मामला क्या है, कब से ये घंटा नाद आंदोलन हो रहा है और इस मामले में बाला साहेब ठाकरे का क्या कनेक्शन है, इस रिपोर्ट के जरिए जानेंगे.
1: बकरीद पर कल्याण में दुर्गाडी किला बना सियासी महाभारत का डाल. किले में पूजा से रोका तो शिवसेना के दोनों गुटों का घंटानाद आंदोलन. बकरीद पर दुर्गाडी किला छावनी में तब्दील. महाराष्ट्र के कल्याण में बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किले पर मजहबी सियासत तेज हो गई. दुर्गाडी किले में मौजूद दुर्गा माता मंदिर बंद किए जाने के विरोध में शिवसेना के दोनों गुटों ने सामूहिक रूप से प्रदर्शन किया.
5: ये घंटानाद आंदोलन जो है वो धर्मवीर आनंदी के साहब ने 30-35 साल के पहले चालू किया था. जब नमाज के टाइम मंदिर बंद किया गया घंटा बांध तो उसके निषेधार्थ ये आंदोलन शुरू हुआ. वो 30-35 साल में अनेक सरकार आई लेकिन इसको न्याय नहीं मिला. एक बार जब 3 साल जब ईद और दुर्गाड़ी नवरात्र उत्सव इकट्ठा है तभी दोनों धर्म के लिए प्रार्थना स्थल खुले थे, मंदिर खुला था और नमाज भी हुआ. तभी पुलिस प्रशासन ने जो ट्रेजेडी और जो उपाय योजना की वैसी उपाय योजना हर साल करना मांगता था लेकिन किया नहीं।
1: खास बात ये रही कि पहली बार बीजेपी ने भी इस आंदोलन में हिस्सा लिया। पुलिस के लिए आज का दिन बहुत चुनौतीपूर्ण रहा, इसीलिए संगीनों के साए में मुस्लिम समाज ने इसी किले में मौजूद मजार पर नमाज पढ़ी। प्रदर्शन से पहले ही पुलिस ने बीजेपी नेता महेश पाटिल को हिरासत में ले लिया।
6: थाने के कल्याण इलाके का दुर्गाड़ी किला काफी समय से विवादों में रहा है। बरसों से इसके ऊपर कभी मुस्लिम समुदाय का राज था तो उसके बाद मराठा किंगडम ने भी इस पर कब्जा किया था, और इसी के वजह से क्योंकि वहां पहाड़ पर एक तरफ जहां मंदिर भी है तो वहीं वहां पे मजार भी है, और इसकी वजह से दोनों समुदाय के जो लोग हैं वहां पर आना जाना और वहां पे अपना पूजा अर्चना करते रहते हैं। और लेकिन हमेशा से यही हुआ है कि हर साल देखने को मिलता है कि जब बकरीद का समय आता है तब वहां पर क्योंकि ज्यादा तादाद में लोग नमाज पढ़ने जाते हैं तो उसी समय कई सारे जो हिंदू समाज के लोग हैं वो भी जाना चाहते हैं उस समय अपनी पूजा अर्चना करने के लिए, तो ताकि कोई किसी तरीके की कोई लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन खराब ना हो, कोई सब कुछ सौहार्दपूर्ण तरीके से हो जाए, तो पुलिस कई बार जो मंदिर है उसकी तरफ जाने के लिए लोगों को नहीं देती और नमाज लोगों को अदा करने के लिए दिया जाता है।
1: दरअसल दुर्गाडी किले पर हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदायों के धार्मिक स्थल मौजूद है। कई साल से बकरीद के मौके पर यहाँ मुस्लिम समुदाय नमाज अदा करता है जबकि हिंदू पक्ष मंदिर में घंटानाद और पूजा की मांग अदा करता है संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस हर साल मंदिर तक जाने वाले रास्ते को बंद कर देती है। घंटानाद आंदोलन की शुरुआत साल 1986 में बालासाहेब ठाकरे के निर्देश पर धर्म अदा करता है जबकि हिंदू पक्ष मंदिर में घंटानाद और पूजा की मांग करता है संभावित तनाव को देखते हुए पुलिस हर साल मंदिर तक जाने वाले रास्ते को बंद कर देती है घंटानाद आंदोलन की शुरुआत साल 1986 में बालासाहेब ठाकरे के निर्देश पर धर्मवीर आनंद दिघे ने की थी। तभी से हर साल बकरीद के मौके पर शिव सैनिक दुर्गाडी किले के सामने प्रदर्शन करते आ रहे हैं।
7: घंटानाद आंदोलन 40-50 साल की परंपरा है और यहाँ पे दुर्गाडी देवी का मंदिर है दुर्गाडी किले पे, वहाँ पे जाने से हिंदू बांधव को रोका जाता है, कोई कारण नहीं है, कोई वजह नहीं है, हिंदू का मंदिर है, हिंदू के मंदिर में जाने को किसी को रोकना ये गलत बात है, कोई कायदे में इसका कोई कानून में कोई लिखा गया नहीं है, हर धर्म की अपने अपने धर्म की जो भी प्रथा है वो प्रथा अपने मस्जिद में और मंदिर में होनी चाहिए, रोड पे नमाज पठन करना इसको हमारा विरोध है।
1: वहीं ठाणे के मीरा रोड इलाके की पूनम स्टेट सोसाइटी में भी पुलिस की मौजूदगी में शांतिपूर्ण ढंग से बकरीद मनाई गई। यहां सोसाइटी के अंदर कुर्बानी को लेकर हिंदू संगठनों ने 3 दिन तक प्रदर्शन किया था।
6: बकरीद का दिन है और इस वक्त हम खड़े हैं पूनम स्टेट क्लस्टर 1 जहां पर कुछ दिन पहले काफी हंगामा हुआ था। इस वक्त हमारे साथ यहां पर रहने वाले मुस्लिम पक्ष के कुछ लोग हैं, आइए उनसे बात करते हैं।
8: और मैं पिछले 11 साल से इस सोसाइटी में हूं, हमारे बीच में कभी भी इस तरीके का तनाव नहीं हुआ। जिस तरह एक फैमिली होती है, फैमिली में सभी लोग मिलकर रहते हैं, उसी तरह हमारा ये क्लस्टर 1 सोसाइटी भी था। यहाँ पर भी सभी लोग कभी कभार थोड़ी बहुत ऊंच नीच हुआ करती थी लेकिन वो छोटी मोटी बात होती थी जिसको हम लोग बैठकर अंदर ही सॉल्व किया कर लेते थे। वो हर जगह होता है, इवन एक छोटी सी फैमिली में भी होता है। लेकिन जो पिछले 3 दिन में जो माहौल बना वो मेरा खुद का पर्सनल ये मानना है कि वो बाहर वालों की वजह से बना, अंदर वालों का उसमें कोई भी ऐसा इन्वॉल्वमेंट नहीं था कि जिसकी वजह से माहौल इतना बिगड़ जाए।
1: सोसाइटी में रहने वाले लोगों ने कहा कि बाहर से आए लोगों ने सोसाइटी के मामूली से विवाद को इतना बढ़ा दिया जबकि हर बार हम लोग मिलजुल कर हर त्योहार मनाते हैं।
9: मतलब ये पहली बार ऐसा नहीं हुआ कि 10-11 सालों से हम लोग इस तरीके से सारे फेस्टिवल हमारी कमेटी ने डिसाइड किए हुए कौन कौन से फेस्टिवल्स बनाने हैं। ऐसा नहीं कि हम लोग अपनी मर्जी से कोई नया फेस्टिवल मना लेते हैं या कोई भी प्रोग्राम यहाँ पे अपनी मर्जी से नहीं कर सकते, अभी आपको भी पता है।
6: तो ऐसा क्या हुआ जो इतना हंगामा इस बार हुआ?
9: नहीं, इसका रीजन तो कुछ खास ऐसा पता चला नहीं, बट लेकिन क्या होता है कि कुछ छोटी मोटे लोग चीजों को फायदा उठा के उसको एक बड़ा इशू बनाने की कोशिश करते हैं, वही चीज हुई यहाँ पे।
1: लोगों ने कहा कि पहले भी बकरीद पर कुर्बानी की इजाजत बीएमसी ने दी थी लेकिन विरोध के बाद मंजूरी को रद्द कर दिया गया।
10: मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग सब एक हो जाएं और एक ही है हम लोग सब एक है। रामनवमी पे मैंने राम जी का मैंने भजन गाना गाया था, राम जी की निकली सवारी, और बहुत लोगों ने पसंद किया है उसको। अब मैं नहीं मानता हूँ हिंदू,
9: आप यूट्यूब पे देख सकते हो,
10: वहाँ पे उनके साथ बैठता हूँ जाकर, उनके साथ हम लोग खाना खाते हैं।
6: जिस तरीके से ये हुआ ये न सोसाइटी के लोगों को भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्यों हुआ, लेकिन अब क्योंकि ये वाकया 3 दिन जो चला है उसे अब भूलने की कोशिश ये यहाँ के लोग जरूर करेंगे ऐसा ये कह रहे हैं। कैमरा
1: पुलिस अधिकारी लगातार इस सोसाइटी और उसके आसपास के इलाकों में गश्त कर रहे हैं, जिससे त्योहार के दिन कोई मजहबी तनाव ना हो।
11: आप खुद ही देख रहे हैं कि आज पुलिस का भारी डिप्लॉयमेंट है, सब सीनियर ऑफिसर्स, हमारा राइट डाउन टू द जूनियर मोस्ट लेवल, हर पुलिस वाला जो है आज सतर्क है और जैसी जरूरत है उसके हिसाब से बंदोबस्त लगाया गया है। अभी तक जो है सारी नमाज पीसफुली हुई है, त्यौहार पीसफुली पूरे शहर में मनाया जा रहा है, किसी भी तरह की अप्रिय घटना हुई नहीं है। और मुझे
4: और इसी के साथ हम यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
12: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।
13: TuneIn's How To, a brief look at all the special functions and things you might not know we have.
14: Missed out on your latest podcast episodes? Don't worry, TuneIn has got you covered. Not only can you catch up and stream all the episodes you missed, but we can remind you when the next episode airs, so you don't miss a thing. Just favorite the podcast you love. All new episodes will appear on the homepage. Nice, right?
15: Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
12: Presented by पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें थे। सूत्रों से खबर, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी, 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग।
1: प्रेजेंटेड बाय पतंजलि दंत कांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच।

आज तक से शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के एक्सक्लूसिव इंटरव्यू का, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता है, दूर होंगी सभी समस्याएं। 21 जून को नीट के री एग्जाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने पुख्ता तैयारियों की बात की, कहा कंप्यूटर आधारित कराएंगे परीक्षा। नीट पेपर लीक कांड को लेकर धर्मेंद्र प्रधान ने बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले आगे ऐसी घटना न हो ये सुनिश्चित किया जाएगा। राहुल गांधी ने शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान पर हमला बोला, कहा आप नियम को फिक्र होती है आपको पद से हटा देते, एनटीए पर सवाल उठाए। राहुल गांधी को शिक्षा मंत्री का जवाब, कहा सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर बनी थी एनटीए, पूछा कांग्रेस शासित राज्यों में भी वही एजेंसी क्यों। नीट के लिए बनी कमेटी की आज अहम बैठक है, एनटीए के महानिदेशक और सीबीआई के निदेशक भी होंगे शामिल, परीक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा। गुरुवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के घर नीट मामले में हुई थी बैठक, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे मौजूद, पीएमओ के वरिष्ठ अधिकारी भी बैठक में शामिल। नीट पर बड़ी बैठक में पेपर सेटिंग, प्रिंटिंग और अंतिम छात्र के हाथ पेपर पहुंचने तक की पूरी प्रक्रिया पर पीएमओ अधिकारियों ने कड़ी निगरानी की बात कही, सूत्रों के मुताबिक मामले पर पीएम मोदी की पैनी नजर। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में री वैल्यूएशन को लेकर सीबीएसई मुख्यालय में शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में हाई लेवल मीटिंग। सीबीएसई की 12वीं की परीक्षा में 11 लाख स्कैन कॉपी पोर्टल पर हुई एक्सेस, सर्वर क्षमता की भी समीक्षा। डीके शिव कुमार का कर्नाटक का अगला मुख्यमंत्री बना तय, सिद्धरमैया ने कल इस्तीफा देने के बाद उनके नाम का रखा प्रस्ताव। आज सुबह 9 बजे राहुल गांधी से दिल्ली में मिलेंगे सिद्धरमैया, उनके आगे की जिम्मेदारी को लेकर होगी बात। राहुल गांधी से मुलाकात से पहले सिद्धरमैया आज का अहम बयान, केंद्र की राजनीति में मेरी कोई रुचि नहीं, हाईकमान ने राज्यसभा जाने के लिए कहा लेकिन मैंने मना कर दिया। सिद्धरमैया के इस्तीफे से कर्नाटक के कई इलाकों में उनके नाराज समर्थकों का प्रदर्शन, बेंगलुरु में उनके आवास के बाहर भी कार्यकर्ताओं ने उनका इस्तीफा वापस लेने की अपील की। कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन के बीच दिल्ली में भी हलचल तेज हुई, पार्टी अध्यक्ष खड़गे से मिले राहुल गांधी और केसी वेणुगोपाल। बंगाल में घुसपैठ पर गृहमंत्री अमित शाह का बयान, पहले ममता सरकार में बांग्लादेश से घुसपैठ होती थी, अब वापस जाने लगे हैं घुसपैठिए। अमित शाह ने शुभेंदु अधिकारी की जमकर तारीफ की, का बंगाल में बन रहा है डिटेंशन सेंटर, देश में नहीं बचेगा एक भी घुसपैठिया। बंगाल में बांग्लादेश बॉर्डर पर फेंसिंग के लिए सरकार ने बीएसएफ को सौंपी है 600 हेक्टेयर जमीन, तारबंदी का भी काम जारी। पूर्व टीएमसी सांसद शांतनु सेन का पार्टी प्रवक्ता पद से इस्तीफा, आरजी की घटना और भ्रष्टाचार का हवाला दिया। बंगाल में टीएमसी नेता काकोली दस्तीदार ने आरोपों को, कल्याण बनर्जी ने निराधार कहा, बोले चीफ व्हिप पद से हटाए जाने से वो गुस्सा है, उसी वक्त क्यों नहीं कर दी थी शिकायत। दिल्ली संगठन में बड़ा बदलाव, नया प्रदेश अध्यक्ष हर्ष मल्होत्रा को सौंपी गई है कमान। अर्चना गुप्ता हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष बनी है तो केबल सिंह ढिल्लो को पंजाब बीजेपी का अध्यक्ष बनाया गया। बीजेपी आलाकमान ने संगठनात्मक फेरबदल करते हुए विधायक अभिषेक देबरॉय को त्रिपुरा प्रदेश का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने की घोषणा। हीटवेव के संबंध में सीएम योगी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, लू से बचाव के लिए जनता से सतर्क रहने की सीएम ने अपील की। डीएम, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को अलर्ट मोड में रहने के आदेश दिए गए, हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए पुख्ता इंतजाम के भी ऑर्डर। प्रधानमंत्री मोदी की राज्यों से अपील, सहयोग से सुलझाएं जल विवाद, मिसाल बने कि देवता प्रोजेक्ट मिशन मोड में करना होगा काम। सीबीएसई को लेकर अखिलेश ने पोस्ट सरकार पर निशाना साधा, कहा कोई नहीं ले रहा जिम्मेदारी, ना कोई इस्तीफा दे रहा है, लिखा यूथ कहे आज का नहीं चाहिए बीजेपी। आज तक की खबर का असर, बरेली में टीचर ने भूसा मंगवाने वाले मामले में बीएसए ने आदेश में दिया है किया संशोधन, बेसहारा गौवंश को भूसा दान इच्छा अनुसार। अमृतसर में आम आदमी पार्टी के नेता जयपाल सिंह को गोली मारी गई, अस्पताल में इलाज जारी है, लड़ चुके हैं पार्षद का चुनाव। नहीं रहे मशहूर शायर बशीर बद्र, 91 साल की उम्र में भोपाल में निधन हुआ, लंबे समय से बीमारी से जूझ रहे थे। दिल्ली एनसीआर में बारिश से तपती गर्मी से मिली राहत, तेज हवाओं से तापमान में कई डिग्री की आई है गिरावट। मौसम विभाग के अनुमान के मुताबिक अगले 1 से 2 दिन तक झुलसाने वाली गर्मी से राहत मिल जाएगी, आज भी हल्की बारिश के आसार। 49 डिग्री के पार पहुंचने के बाद राजस्थान के श्रीगंगानगर में कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि, करीब 20 मिनट की बरसात से मौसम सुहाना। महाराष्ट्र में भी बदला है मौसम, अमरावती में अचानक से बरसी राहत की फुहारें, पहले करीब 45 डिग्री सेल्सियस तक गया था शहर का तापमान। उत्तराखंड के बागेश्वर में तेज बारिश और ओलावृष्टि से जंगलों की भीषण आग बुझ गई है, लेकिन ओला गिरने से फलों और सब्जियों के कष्टकार परेशान।
चारधाम यात्रा में भारी बारिश के बीच उमड़ा आस्था का जनसैलाब, अब तक 24.5 लाख के पार श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। सबसे ज्यादा बाबा केदार के दर्शनों के लिए पहुंचे हैं भक्त, आंकड़ा पहुंचा है 9 लाख के पार। बद्रीनाथ धाम को लेकर भी भक्तों में जोरदार उत्साह है, अब तक करीब 1 लाख लोगों ने दर्शन किए हैं। यमुनोत्री धाम और गंगोत्री धाम में लगाया भक्तों का मेला, अब तक दोनों ही जगहों पर 8.5 लाख भक्तों ने हाजिरी लगाई। हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा में भी भक्तों का तांता, अब तक 20,000 से ज्यादा लोगों ने किए हैं दर्शन। विशा केस में सास गिरबाला सिंह गिरफ्तार, सीबीआई ने 6 घंटे पूछताछ के बाद अरेस्ट किया। हाईकोर्ट ने नहीं मिली थी गिरबाला सिंह को राहत, कोर्ट ने रद्द कर दी थी अग्रिम जमानत की अर्जी। आज गिरबाला सिंह की कोर्ट में होगी पेशी, केस से जुड़े सारे सबूतों को सीबीआई ने इकट्ठा किया। एफआईआर के मुताबिक पेशा के ससुराल वालों ने दहेज को लेकर किया था परेशान, बार बार शादी के खर्चे को लेकर ताना दिया जाता था। पेशा के पिता का आरोप, बेटी को ससुराल वाले अपने खर्च के लिए नहीं देते थे पैसे, पेशा को ऑनलाइन देने पड़ते थे पैसे। पठानकोट के सुजानपुर में लगी भीषण आग, मजदूरों को सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हुई। लातेहार में कोल माइंस से निकलने वाली गाड़ियों का विरोध, बड़ी संख्या में सड़क पर बैठे ग्रामीण, 200 से ज्यादा गाड़ियों की लंबी कतार। रोहतास में 2.5 करोड़ का 5 क्विंटल गांजा जब्त किया गया, पिकअप वैन में छुपा कर ले जाया जा रहा था गांजा। नक्सलियों को बड़ा हथियार निर्माण कारखाना ध्वस्त हुआ, गढ़चिरौली छत्तीसगढ़ पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। ग्वालियर में पत्नी से परेशान होकर बॉलीवुड एक्टर दीपक तिजोरी को मिला बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान, कैंस में आयोजित प्रतिष्ठित फ्रेंच रिवेरा फिल्म फेस्टिवल में इंग्लिश शॉर्ट फिल्म इकोज ऑफ अस के लिए मिला है बेस्ट एक्टर का अवार्ड। अक्षय कुमार की प्रीडेटर एलियन थ्रिलर फिल्म समुख में दिखेगा हॉलीवुड का जादू, प्रीडेटर फिल्म का हिस्सा रहे एलेक गिलिस डिजाइन कर रहे हैं एलियन क्रिएचर। कोलकाता में दादा सौरभ गांगुली बायोपिक की शूटिंग शुरू हो गई, मैदान ईडन गार्डन्स पर कैमरा क्रू संग नजर आए सौरभ, किरदार निभा रहे राजकुमार राव। ओटीटी के बाद बड़े पर्दे पर अब नजर आएगा कालीन भैया का साम्राज्य, 4 सितंबर 2026 को रिलीज होगी मिर्जापुर द मूवी। फिल्म नागाबंधम में अहमद शाह अब्दाली और उनके मॉडर्न अवतार के डबल रोल में नजर आएंगे ऋषभ सहनी।

नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप और ब्लैक एंड व्हाइट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले कई दिनों से देश में एक ऐसा नैरेटिव खड़ा किया जा रहा था कि सड़कों पर नमाज और खुले में कुर्बानी रोकने के सरकारी दिशा निर्देश मुस्लिम विरोधी हैं। लेकिन आज उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम बंगाल और दिल्ली तक की तस्वीरों ने इस प्रोपेगेंडा की हवा निकाल दी। आज देश में एक नया मॉडल दिखा जहां बिना किसी विवाद के मस्जिदों और मैदानों में बेहद शांति से नमाज भी अदा की गई और कानून का राज भी कायम रहा। यानी त्योहारों के सम्मान के लिए अब कानून को एक दिन की छुट्टी पर भेजने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन भारत के इसी अनुशासित और खूबसूरत बदलाव से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छटपटा रहा है। आज हम इस प्रोपेगेंडा की पोल खोलेंगे और दिखाएंगे कि खुद को सहिष्णु बताने वाले मुस्लिम देशों के अपने नियम क्या हैं और भारत को लेकर उनका दोहरा मापदंड क्यों है। इसके बाद आपको बताएंगे कि रमजान में शुरू हुआ अमेरिका ईरान युद्ध कैसे बकरीद पर एक बार फिर से भड़क चुका है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिकी टैंकर पर कई गोलीबारी के बाद अमेरिका की नेवी ने ईरान के बंदर अब्बास पोर्ट पर भीषण एयर स्ट्राइक्स कर दी हैं। बात यही नहीं रुकी, बौखला ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत में मौजूद अमेरिकी अली अल सलेम एयरबेस पर मिसाइलें दाग दी हैं। जब कुवैत में अजान गूंजनी चाहिए थी तब वहां मिसाइल हमलों के सायरन बज रहे थे। खबर यह भी है कि ईरान ने अमेरिकी नौसेना पर 5 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी हैं। यानी साफ है कि अब सीज फायर पूरी तरह खत्म होता दिख रहा है। इसके बाद आपको बताएंगे कि नीट पेपर लीक का घाव अभी भरा भी नहीं था कि अब देश के 17 लाख छात्र CBSE का रिजल्ट देखकर परेशान घूम रहे हैं। वजह है डिजिटल सुधार के नाम पर बिना तैयारी के थोपा गया OSM यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम। दावा था कि कंप्यूटर स्क्रीन पर कॉपी जांचने से पारदर्शिता आएगी, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। कहीं पोर्टल क्रैश हुआ, कहीं कॉपियां धुंधली दिखी, कहीं आंसर शीट्स बदले जाने के गंभीर आरोप लगे। नतीजा, करीब 4 लाख छात्रों को रीचेकिंग की गुहार लगानी पड़ी। बंडल से डिजिटल होने की इस जल्दबाजी का खामियाजा देश के भविष्य ने कैसे भुगता है, आज आपको बताएंगे। और आखिर में आपको वैभव सूर्यवंशी का वो तूफान दिखाएंगे जिसे रोक पाना अब किसी भी टीम के लिए मुश्किल नजर आ रहा है और जिसके आगे बड़े बड़े दिग्गज गेंदबाज पानी भरते नजर आ रहे हैं। कल रात 15 साल के इस लड़के ने सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों की ऐसी धज्जियां उड़ाई कि यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का 14 साल पुराना सिक्सर किंग का ताज ही छीन लिया। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको ये बताएंगे कि जब किसी धर्म को कानून से ऊपर नहीं रखा जाता तब इसका मतलब ये नहीं होता कि उस धर्म का अपमान किया जाता है या उस धर्म को दबाया जा रहा है। ये वो नैरेटिव है जो पिछले कई दिनों से हमारे देश में लगातार चलाया जा रहा था। जिन राज्यों में सरकारों और पुलिस ने कानून के मुताबिक बकरीद का त्यौहार मनाने के लिए दिशा निर्देश जारी किए और ये कहा कि सड़कों पर नमाज पढ़ना या खुले में जानवरों की कुर्बानी देना कानून का उल्लंघन होगा, उन राज्यों के दिशा निर्देशों पर खूब विवाद हुआ। इतना विवाद हुआ कि इन्हें हिंदू मुसलमान का सांप्रदायिक रंग देने की कोशिश शुरू हो गई। यहां तक कहा गया कि इन राज्यों की सरकारें मुसलमानों को उनका त्योहार मनाने से ही रोक देना चाहती हैं। लेकिन हकीकत में यह मामला किसी धर्म को रोकने का था ही नहीं। सवाल है लॉ ऑफ द लैंड का, कानून मानना है या नहीं मानना है, एक दिन के लिए कानून को छुट्टी पर भेज देना है। मामला था नियमों के पालन का और यहां मामला यह था कि क्या कानून और धार्मिक त्योहारों का सम्मान एक साथ नहीं हो सकता। इन्हीं सवालों के साथ उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड जैसे राज्यों में मुस्लिम समुदाय से यह अपील की गई कि इस बार वो बकरीद के मौके पर सड़कों पर नमाज ना पढ़े। जो निर्धारित स्थान है, बड़े बड़े पार्क है, वहां पर आराम से पढ़े और सार्वजनिक जगहों पर कुर्बानी ना दे, क्योंकि पब्लिक प्लेसेस में कुर्बानी देना इलीगल है। अब इस पर ऐसा हो हल्ला हुआ कि निर्देशों के कारण इन राज्यों के मुसलमान अपना त्योहार नहीं मना पाएंगे, उनको तंग किया जा रहा है, सताया जा रहा है। लेकिन हकीकत में ये सारी चिंताएं पूरी तरह गलत साबित हुई। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। आज इन्हीं राज्यों में बकरीद का त्योहार सबसे व्यवस्थित कानूनी तरीके से खूब अच्छे से मनाया गया। और ऐसा नहीं है कि सरकार ने सड़कों पर मुसलमानों को नमाज नहीं पढ़ने दी तो मुसलमान बकरीद की नमाज ही नहीं पढ़ पाए। अलग अलग जो तय जगह थी, बड़े बड़े मैदान थे, वहां पर पहले से ही जगह तय कर दी गई थी, वहां पर उन्होंने नमाज पढ़ी।
इन सभी राज्यों में शांतिपूर्ण तरीके से नमाज भी पढ़ी गई। बकरीद पर वो सारे धार्मिक आयोजन हुए जो हर साल हुआ करते थे। इस पूरे घटनाक्रम से जो सबसे बड़ी सीख मिली वो ये थी कि हमारे देश में एक ही वक्त पर कानून का भी सम्मान हो सकता है और लोगों की धार्मिक भावनाओं और त्योहारों का भी सम्मान हो सकता है। और ऐसा बिल्कुल नहीं है कि त्योहारों के सम्मान के लिए कानून को एक दिन के लिए छुट्टी पर भेजना जरूरी है। इस बात को आप इन तस्वीरों से भी समझ सकते हैं जो कोलकाता के मैदानी इलाके से आई है। ये देखिए, इस इलाके में इंदिरा गांधी सरणी नाम की एक बहुत बड़ी सड़क है जिसे रेड रोड भी कहा जाता है। हर साल बकरीद के मौके पर इस सड़क को मुसलमानों की नमाज के लिए बंद कर दिया जाता था। और आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि तब वहां कैसे इस सड़क को पूरी तरह से रोक दिया जाता था। ये जून 2025 की तस्वीर है। रोड ब्लॉक, और रोड ब्लॉक करके हजारों मुसलमान बकरीद की नमाज पढ़ने के लिए यहां पर पहुंचते थे। और ऐसा नहीं कि ये पिछले कुछ सालों से हो रहा था। टेलीग्राफ की एक रिपोर्ट के मुताबिक 1970 के दशक से यहां इसी सड़क पर हर साल बकरीद के खुले में नमाज पढ़ी जाती थी और इसके कारण आम राहगीरों के लिए ये सड़क ही बंद कर दी जाती थी। अब ये पुरानी सरकारों का वो मॉडल था जिसमें माना जाता था कि त्योहारों के सम्मान के लिए एक दिन कानून में थोड़ी ढील दी जा सकती है। लेकिन अब आप इन तस्वीरों को देखिए जो एक नए मॉडल को परिभाषित करती है, और ये मॉडल कहता है कि बकरीद या किसी भी त्योहार के लिए कानून को एक दिन की छुट्टी पर भेजने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि इसकी जगह कानून और त्योहार साथ साथ मनाइए, दोनों को साथ साथ सम्मान दिया जा सकता है। कोलकाता की जिस रेड रोड पर 1970 से खुले में नमाज पढ़ी जा रही थी, आज वहां इस सड़क पर खुले में नमाज नहीं हुई, लेकिन इसकी जगह इस सड़क के पास ब्रिगेड परेड ग्राउंड है। बकरीद की नमाज के लिए ऐसी व्यवस्थाएं की गई जिसे सड़क को बंद ही ना करना पड़े। और जानते हैं, इस बदलाव से कुछ नहीं बिगड़ा। मुसलमानों ने अपना त्योहार वैसे ही मनाया जैसे वो हर साल मनाते हैं और वैसे ही नमाज पढ़ी जैसे वो हर साल पढ़ते हैं। और सोचिए इससे क्या पता चलता है। नमाज के लिए सड़कों का बंद करना जरूरी नहीं है, नमाज के लिए कानून को रोकना जरूरी नहीं है। यह बात सिर्फ कोलकाता की नहीं है, अब आप लखनऊ की तस्वीरें देखिए जहां बड़ी संख्या में मुसलमानों ने आज बकरीद की नमाज पढ़ी, लेकिन इसके लिए किसी सड़क को बंद नहीं किया गया। इसकी जगह स्थानीय प्रशासन, पुलिस ने मस्जिद समितियों से बात की, ऐसे इंतजाम किए जिससे सड़कों को बिना बंद किए जमात में बकरीद की नमाज भी पढ़ी जा सके और अपना त्योहार भी मनाया जा सके। और यकीन मानिए, उत्तर प्रदेश में भी आज बकरीद का त्योहार शांतिपूर्ण और व्यवस्थित तरीके से मनाया गया है। हर जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इसके बाद दिल्ली की तस्वीरें, उत्तराखंड की तस्वीरें देखिए, नैनीताल की तस्वीरें आपको दिखाएंगे। ये दिल्ली की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तराखंड, नैनीताल, हर जगह की तस्वीरें देखिए। बकरीद की नमाज के लिए मुख्य सड़कों को घेरा नहीं गया बल्कि व्यवस्थाएं बनाई गई, बड़े मैदानों में नमाज पढ़ी गई। सोचिए, इन राज्यों में भी शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद का त्योहार मनाया गया, जबकि एक दिन पहले तक क्या नैरेटिव था कि भाई मुसलमानों को तंग किया जा रहा है। एक दिन पहले तक यह कहा जा रहा था कि अगर खुले में नमाज और खुले में कुर्बानी को रोका गया तो इस देश के मुसलमान बकरीद का त्योहार नहीं मना पाएंगे, उनको टारगेट किया जा रहा है, उनके साथ अन्याय हो रहा है। यह नैरेटिव सिर्फ हमारे देश के कुछ लोग नहीं गढ़ रहे, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी इस पर भारत को बदनाम करने के लिए लेख लिख रहा है। पूरी ताकत झोंकी जा रही है, वही प्रोपेगेंडा, वही नैरेटिव। और देखिए, अल जजीरा जिसने भारत के खिलाफ ये लेख लिखा है, शीर्षक क्या है, नेचुरली स्केर्ड, मतलब स्वाभाविक रूप से डरे हुए, इंडियाज मुस्लिम्स डिनाइड पब्लिक स्पेसेस फॉर ईद प्रेयर्स। आप सोचे, पब्लिक प्लेसेस, ये फैक्चुअली इनकरेक्ट है। ये तमाम पार्क जहां पर वो नमाज पढ़ रहे हैं, ये पब्लिक प्लेस है। स्वाभाविक रूप से डरे हुए भारत के मुसलमानों को ईद की नमाज के लिए सार्वजनिक स्थानों से वंचित किया जा रहा है, इसका हमने हिंदी में रूपांतरण कर दिया आपके लिए। अब इस शीर्षक में दो बातों पर सबसे ज्यादा गौर करने की जरूरत है, आइए इनका फैक्ट चेक करते हैं। एक है नेचुरली स्केर्ड, यानी बड़े आसानी से ये नैरेटिव स्लिप कर दिया कि भारत का मुसलमान इस वक्त स्वाभाविक रूप से डरा हुआ है। ऐसा होना स्वाभाविक है क्योंकि इस देश में उन्हें डराया ही जा रहा है। और दूसरा है,
पब्लिक स्पेसेस यानी वो सार्वजनिक स्थान जहां मुसलमानों के अब बकरीद की नमाज नहीं पढ़ने दी जा रही। अब ये दोनों बातें सरासर गलत है, ये तस्वीरें इसका प्रमाण है। पश्चिम बंगाल हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, मध्य प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, इन तमाम जगहों पर, राजस्थान हो, बिहार हो, इन सभी राज्यों में आज पार्कों और खाली मैदानों में नमाज पढ़ी गई। ये सार्वजनिक जगह ही है। अगर कहीं नमाज नहीं पढ़ी गई तो वो है सड़क। लेकिन अल जजीरा ने अपनी हेडलाइन में सड़क कहीं नहीं लिखा, बल्कि इसकी जगह सार्वजनिक स्थान लिख दिया, ताकि दुनिया को यह लगे कि भारत में मुसलमानों पर कितना जुल्म हो रहा है। और यहां बात सिर्फ इस हेडलाइन की नहीं है। अल जजीरा ने इस रिपोर्ट के लिए भारत के एक ऐसे गांव को चुना जहां पिछले 4 दशकों से सांप्रदायिक तनाव और विवाद रहा है। इस गांव का नाम है मलियाना, जहां 1987 में शबे बारात के मुस्लिम त्योहार के दौरान हिंदू और मुसलमानों के दंगे हुए थे और इन दंगों में 72 मुसलमानों की जान गई थी। अब किसी देश के खिलाफ दुष्प्रचार को कैसे गढ़ा जाता है वो समझिए। उस साल 1987 में सिर्फ मेरठ के मलियाना गांव में सांप्रदायिक हिंसा नहीं भड़की थी, बल्कि उस वक्त पूरा मेरठ जला था, 51 हिंदू भी मारे गए थे। लेकिन अल जजीरा सिर्फ इस गांव की बात करता है, और इसलिए करता है क्योंकि वो इसके जरिए पूरे भारत को मुस्लिम विरोधी दिखाना चाहता है। वो इसमें लिखता है कि मेरठ के मुसलमान न सिर्फ बकरीद की नमाज पढ़ने से डर रहे हैं, स्वाभाविक डर रहे हैं, बल्कि अब उन्हें मस्जिद के बाहर खड़े होने से भी डर लगता है। इस पूरे लेख की जो हेडलाइन थी, जिसमें सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से रोकने की बात लिखी थी, उस बात के लिए पिछले हफ्ते के विश्व हिंदू परिषद के एक बयान को उन्होंने आधार बना लिया है। वो भी ऐसा बयान जिसके बारे में हमारे देश के लोग ही नहीं जानते। हमने भी जब ये आर्टिकल पढ़ा तब देखा कि ये क्या बयान है भाई। किसी ने कवर तक नहीं किया, भारत में किसी ने गंभीरता से उनका बयान नहीं लिया। लेकिन सिर्फ इस बयान के आधार पर अल जजीरा भारत के मुसलमानों को खतरे में बता देता है। हम तो अल जजीरा के लिए ताली बजाएंगे कि कैसे ये लोग किसी देश को बदनाम करते हैं, और खास तौर पर जब बात भारत की आती है। इसके बाद इसी रिपोर्ट पे प्रधानमंत्री मोदी को निशाना बनाकर यह लिखा जाता है कि पिछले एक दशक से, खासकर 2014 में नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद, कई दक्षिणपंथी हिंदू संगठन सार्वजनिक जगहों पर नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे हैं और इससे मुसलमानों को दबाया जा रहा है। यानी यहां भी यह साबित करने की कोशिश की जाती है कि इन तमाम परिस्थितियों के पीछे नरेंद्र मोदी है जो इस वक्त भारत के प्रधानमंत्री हैं। आगे बढ़ेंगे तो इसमें यह भी लिखा है कि भारत के मुसलमान इस चिंता में डूबे हैं कि क्या वो बिना किसी विवाद, बिना जांच पड़ताल, बिना विरोध के शांति से बकरीद की नमाज अदा कर पाएंगे। जबकि हकीकत यह है कि आज पूरे भारत में बकरीद की नमाज पढ़ी गई, कोई विवाद नहीं हुआ, कहीं ऐसा नहीं दिखा कि कोई भी मुस्लिम चिंतित। इसी में आगे यह भी लिखा गया है कि पहले भारत में ईद की सुबह खुशियों से भरी होती थी, लेकिन इस बार भारत के मुसलमान डर में सुबह बिता रहे हैं और उन्हें ईद से पहले इस बात की चिंता होती है कि वो नमाज कहां पढ़ेंगे। अब यह बात तो अल जजीरा लिख रहा है, लेकिन जिसके अपने देश में सार्वजनिक स्थानों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती। अल जजीरा की शुरुआत कतर के दोहा से हुई थी और आज भी दोहा में इसका विशाल दफ्तर है। लेकिन क्या आपको पता है कि दोहा की सरकार ने रमजान की ईद को लेकर अपने दिशा निर्देशों में क्या लिखा था? इसको लेकर आई हूं। इसमें लिखा है कि भीड़ से बचने के लिए मस्जिदों में समय से पहले पहुंचे ताकि कोई भी अव्यवस्था ना हो। पूरा बाकायदा ये नियम जो हमने आज से आपके लिए स्क्रीन पर भी बनाया है, इसमें लिखा है। फिर क्या लिखा है कि अगर मस्जिद पूरी तरह भर जाए या वहां पर भीड़ ज्यादा हो जाए तो लोग पास की दूसरी मस्जिद में जाएं, यानी सड़क पर नमाज ना पढ़ें बल्कि दूसरी मस्जिद में जाएं। फिर और आगे लिखा है कि खुले बाहरी स्थानों में नमाज अता ना करें। इसमें साफ साफ लिखा है, परफॉर्म प्रेयर्स ओनली इन डेसिग्नेटेड एरियाज विद इन द मॉस्क। मस्जिद के भी अंदर जो जगह तय की गई है वहीं पे नमाज पढ़नी है, मस्जिदों के अंदर ही अता की जानी चाहिए नमाज। ये सब इसमें लिखा हुआ है। रिमेन इनसाइड द मॉस्क, मस्जिद के अंदर ही रहें। अगर आप बाहर हैं तो मस्जिद के अंदर वापस जाइए। तो ये साफ साफ शब्दों में यहां पर लिखा हुआ है। लेकिन अब आप सोचिए, अल जजीरा के अपने देश की सरकार लोगों को सड़क पर नमाज पढ़ने से रोकती है, सार्वजनिक स्थानों पर नमाज पढ़ने से उनको कहा जाता है कि आप ऐसा ना करें,
भीड़ होने पर ये कहती है कि दूसरी मस्जिद में जाइए, शिफ्ट में नमाज पढ़े, तब सही है। लेकिन अगर लॉ ऑफ द लैंड यानी भारत में कानून लागू हो तो उनको स्वाभाविक रूप से भयभीत मुस्लिम दिखते हैं। लेकिन हमारे देश में जब सरकारें इन्हीं कानूनों का पालन करने के लिए कहती है तो अंतर्राष्ट्रीय मीडिया छाती पीटने लगता है और हमारे देश को बदनाम करने के लिए पूरी लंबी चौड़ी कहानी लिख दी जाती है और कई लोग इस देश में उस डफली में अपना राग जोड़ देते हैं। दुख की बात यह है कि इस देश के बहुत सारे लोग सिर्फ बीजेपी का विरोध करने के लिए प्रोपेगेंडा को सच मानकर स्वीकार कर लेते हैं। आज हम कहना चाहते हैं कि अगर आपकी लड़ाई बीजेपी से है तो लड़िए, खूब आलोचना कीजिए बीजेपी की, बीजेपी को जो कहना है कहिए। लेकिन अगर कोई विदेशी मीडिया हमारे देश के खिलाफ दुष्प्रचार कर रहा है कि भारत में लोग डरे हुए हैं, स्वाभाविक रूप से डरे हुए हैं, तो ये राजनीति का मन सजाने के लिए हम उनको इजाजत नहीं दे सकते। आज सारा शोर इसी बात पर हो रहा है कि भारत में मुसलमानों को सड़क पर नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों नहीं दी गई। लेकिन कोई ये क्यों नहीं कह रहा है कि मुस्लिम देशों में मुसलमानों से सड़कों पर खुले में नमाज क्यों नहीं पढ़ी। ये तस्वीरें सऊदी अरब, यूएई, इजिप्त, कतार, इराक, कुवैत, जॉर्डन जैसे देशों की है। यहां बकरीद की नमाज मस्जिद और उनके परिसर में ही पढ़ी गई और कानून के तहत हुआ, लेकिन हमारे देश में इसको मुस्लिम विरोध कह दिया जाता है। आज हम ये सवाल पूछते हैं कि मुस्लिम देशों के कानून कानून है, वहां बिना किसी विवाद के मुसलमान इन कानूनों का पालन कर सकते हैं, तो फिर हमारे देश से ये उम्मीद क्यों की जाती है कि यहां कानून में मुसलमानों को विशेष रियायतें दी जाए, उन्हें खुले में नमाज, खुले में कुर्बानी करने दी जाए। देखिए,

0: vida.
1: Oh,

0: ของหวยมาเบ้าหัว
1: มีเงินแล้วครับ

0: अब आप भारत की इन तस्वीरों को देखिए जहां बकरीद पर पहली बार कानून का भी सम्मान हुआ, लोगों की धार्मिक भावनाएं और त्योहार का भी सम्मान हुआ है।
1: बकरीद पर नमाज भी हुई, इबादत का समंदर भी उमड़ा, लेकिन देश के इतिहास में दशकों बाद बकरीद पर तमाम सड़कें खाली रहीं। पहले कई दिनों तक जिस कानून व्यवस्था को ताक पर रख दिया जाता था, ऐसा लगता था मानो कानून छुट्टी पर चला गया हो। आज उसी देश में कानून का भी सम्मान हुआ और त्योहार का भी। खुले में सड़कों को बंधक बनाकर नमाज पढ़ने पर ऐसी रोक लगी कि अकीदत भी पूरी हुई और आम जनता को परेशानी का एक कतरा भी नहीं झेलना पड़ा। बदलाव की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक तस्वीर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता से आई। साल 1978 के बाद ये पहली बार हुआ जब ईद उल अजहा के मौके पर कोलकाता की लाइफलाइन कही जाने वाली रेड रोड को नमाज के लिए ब्लॉक नहीं किया गया। प्रशासनिक निर्देशों का पालन करते हुए इस बार नमाज का पारंपरिक ठिकाना बदला गया और इसे पास के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में शिफ्ट किया गया। नतीजा, न तो कोई ट्रैफिक जाम हुआ, न राहगीरों को दिक्कत और बेहद व्यवस्थित तरीके से नमाज मुकम्मल हुई। इस बात की तस्दीक है कि जब समाज और प्रशासन मिलकर कदम उठाते हैं तो बदलाव आता है। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का नो नमाज ऑन रोड का निर्देश इस बार जमीन पर पूरी तरह लागू दिखा। लखनऊ की ऐशबाग ईदगाह और टीले वाली मस्जिद में हजारों की संख्या में नमाजी जुटे, लेकिन मजाल है कहीं भी सड़क का घेराव हुआ।
0: अब इन सब के बीच आज बात पश्चिम बंगाल की, जहां पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बकरीद के मौके पर मायापुर के इस्कॉन मुख्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने धोती कुर्ता पहनकर नंगे पांव गौशाला में गौ सेवा की और इस्कॉन के संतों से मुलाकात की। और ये भी तब हुआ जब बकरीद पर शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने गाय और गौवंश की कुर्बानी को लेकर नियम सख्त किए और ये सख्ती भी बंगाल में पहली बार लागू हुई है। देखिए,
2: विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो धरा प्रक्षुभ।

इन तस्वीरों को देखकर हमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वो नारा याद आ रहा है जिसमें उन्होंने पश्चिम बंगाल की रैलियों में कहा था कि गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को बंटने नहीं देंगे। और उसके बाद मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने पहले बांग्लादेश में होने वाली गौ तस्करी को रोकने की कसम खाई, फिर गौवंश की कुर्बानी के नियम सख्त किए, फिर बकरीद की दो छुट्टियों को भी बाकी राज्यों की तरह एक कर दिया। ये कहा कि अब तुष्टिकरण के लिए किसी को विशेष रियायतें नहीं मिलेंगी, कानून का भी पालन करना पड़ा और छुट्टी भी बाकी पूरे देश की तरह एक दिन की हो गई। हालांकि यहां हम इस बात को भी जोड़ना चाहते हैं कि त्योहारों पर सबसे ज्यादा छुट्टियां मुस्लिम्स को नहीं मिलती हैं। नेशनल ज्योग्राफिक के मुताबिक पूरी दुनिया में त्योहारों पर सबसे ज्यादा 39 छुट्टियां हिंदू धर्म में है, 33 छुट्टियां यहूदी धर्म में है, 26 छुट्टियां सिख धर्म में है, 12 छुट्टियां ईसाई धर्म में है और इन सबसे कम जो छुट्टियां हैं वो सिर्फ 7 छुट्टियां ही इस्लाम धर्म में त्योहारों के लिए ली जाती हैं। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि हिंदू धर्म में त्योहार ज्यादा है जबकि इस्लाम धर्म में सिर्फ 6 से 7 ऐसे दिन आते हैं। खैर, अब अगली खबर का रुख करते हैं इंटरनेशनल और आपको ये बताते हैं कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान युद्ध को खत्म नहीं करना चाहते हैं। ये खबर हर किसी को परेशान कर रही है क्योंकि फिर से ऐसे हालात पैदा हो रहे हैं। रमजान के महीने में शुरू हुआ ईरान युद्ध आज ईद उल अजहा के मौके पर एक बार फिर से सुलग उठा। ईरान की तस्नीम न्यूज एजेंसी के मुताबिक कल रात अमेरिका का एक टैंकर अपना रडार सिस्टम बंद करके स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसी दौरान ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स के जवानों ने उसे इंटरसेप्ट किया, गोलीबारी शुरू कर दी। इस हमले में अमेरिका की नौसेना इतनी आग बबूला हुई है कि उसने ईरान के बंदर अब्बास पर हमला कर दिया। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से लगी ईरान की वही पोर्ट सिटी है जिस पर अमेरिका ने 3 दिन पहले भी हमला किया था। उस वक्त अमेरिका ने कहा था कि ईरान बंदर अब्बास में मिसाइल ठिकाने बना रहा है, इसलिए उसने सेल्फ डिफेंस में ये हमले किए। लेकिन आज उसने ये कहा है कि बंदर अब्बास में ईरान का सैन्य ठिकाना अमेरिकी नौसेना और हॉर्मूज से गुजरने वाले कमर्शियल जहाजों के लिए खतरा है, इसलिए उसने ये एयर स्ट्राइक्स किए हैं। और स्पोर्ट सिटी के पूर्वी हिस्से में 3 बड़े धमाके हुए हैं, उसी का आप वीडियो देख रहे हैं। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इन मिसाइल हमलों से ईरान की सैन्य संरचनाओं को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, बड़ा सेटबैक है, लेकिन ईरान कह रहा है कि अमेरिका के ये हमले निष्क्रिय रहे हैं, उनका कोई नुकसान नहीं हुआ। हालांकि ये बात कहकर भी ईरान ने अमेरिका पर जवाबी हमले किए हैं। उसने बकरीद के मौके पर सुबह की पहली नमाज के वक्त मुस्लिम देश कुवैत के अमेरिकी एयरबेस पर हमला किया, मिसाइल हमला। और जब कुवैत में अजान की आवाज गूंजनी चाहिए थी तब कुवैत में मिसाइल हमलों का सायरन अलर्ट गूंज रहा था। ईरान ने कुवैत के जिस अमेरिकी एयरबेस पर हमले किए उसका नाम अली अल सलेम एयरबेस है जहां अमेरिका के लड़ाकू विमानों की पूरी फ्लीट तैनात रहती है। इनमें भी MQ रीपर ड्रोन और C-130 सुपर हर्क्यूलिस ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट सबसे प्रमुख है। हालांकि अमेरिका ने अभी यह नहीं बताया है कि ईरान के इन हमलों में उससे कितना नुकसान हुआ है और क्या ये हमले अब रुक चुके हैं। दुनिया में मुस्लिम भाईचारे को लेकर अक्सर बड़ी बड़ी बातें होती है, लेकिन हकीकत यही है कि इस युद्ध की शुरुआत से ही ईरान अमेरिका के हर हमलों का जवाब पड़ोसी मुस्लिम देशों पर हमले करके दे रहा है। आज भी वही हुआ और वो भी बकरीद के दिन। द न्यूयॉर्क टाइम्स के हवाले से एक बड़ी खबर यह भी आ रही है कि ईरान ने अमेरिकी नौसेना के जहाजों पर 5 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं जिन्हें सेंट्रल कमांड ने इंटरसेप्ट कर लिया है। और इससे यह भी पता चलता है कि इस युद्ध में लागू हुए सीज फायर का अब मतलब रह ही नहीं गया है। देखिए,

यहाँ ये समझना भी जरूरी है कि अमेरिका ईरान के बंदर अब्बास को लगातार निशाना क्यों बना रहा है, और दूसरा अमेरिका और ईरान की डील हो क्यों नहीं पा रही, और इसका आप पर क्या असर होने वाला है। क्योंकि इस बात को गांठ बांध कर रख लीजिए कि जब तक हॉर्मूज में युद्ध का हाहाकार रहेगा, तब तक हमारे देश में तेल का, गैस का संकट खत्म नहीं होगा। अमेरिका बार बार ईरान के बंदर अब्बास पर हमले कर रहा है, और इस हमले के पीछे कुल 5 कारण हैं। पहला, बंदर अब्बास ईरान की समुद्री ताकत का सबसे बड़ा केंद्र है, जिसे स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की ऑयल आर्टरी यानी तेल की धमनियां कहा जाता है। अगर बंदर अब्बास नहीं होता तो ईरान के लिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को बंधक बनाना मुश्किल होता, और अभी यही वजह है कि बंदर अब्बास पर हमले करके अमेरिका हॉर्मूज पर ईरान के नियंत्रण को कमजोर करना चाहता है। दूसरा, ईरान की नौसेना का मुख्य अड्डा इसी बंदर अब्बास में है, जहां IRGC नेवी का मुख्यालय है, कई मिसाइल लॉन्चर्स हैं, ड्रोन कंट्रोल स्टेशंस हैं, फास्ट अटैक बोट्स हैं, जिन्हें मच्छर बोट भी हम कहते हैं, जैसा हमने आपको पहले बताया था, झुंड में जाते हैं, और यही समुद्री माइंस बिछाने वाली नावें भी ईरान से छिपा कर रखी है। यानी अगर ईरान किसी जहाज पर हमला करना चाहे या हॉर्मूज को बंद करके रखना चाहे, तो उसका आदेश और संचालन काफी हद तक बंदर अब्बास से ही होता है। तीसरा, अमेरिका बंदर अब्बास पर इसलिए भी हमले कर रहा है क्योंकि वो ईरान की समुद्री धमकी को खत्म करना चाहता है। अमेरिका और इसराइल का मानना है कि अगर ईरान की नौसैनिक क्षमता कमजोर कर दी जाए तो वो हॉर्मूज को बंद नहीं कर पाएगा, और इसलिए तेल सप्लाई सुरक्षित रहेगी, और इसीलिए अमेरिका माइंस बिछाने वाली नावों, एंटी शिप मिसाइल्स, ड्रोन सेंटर्स और नौसैनिक ठिकानों को बंदर अब्बास में टारगेट कर रहा है। एक और कारण है, बंदर अब्बास ईरान की तेल लाइफलाइन माना जाता है। इसके पास स्थित शहीद रजाई पोर्ट ईरान के कुल व्यापार का लगभग 50% और कंटेनर ट्रैफिक का 85-90% व्यापार करता है। और सबसे बड़ी बात, बंदर अब्बास ईरान के हॉर्मोजगान प्रांत की राजधानी है, जहां 7 लाख लोग रहते हैं। यह हॉर्मूज से सिर्फ 70 किलोमीटर दूर है। 26 मार्च को IRGC नेवी के पूर्व कमांडर अलीरेजा तंगसीरी इसी बंदर अब्बास में मारे गए थे, और अमेरिका की कोशिश यही है कि वो किसी भी तरह बंदर अब्बास को खत्म कर दे। हालांकि ईरान एक दूसरा गेम खेल रहा है, वो हॉर्मूज को अब आजाद नहीं करना चाहता। ईरान ने ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों से टैक्स वसूलने की योजना बनाई है, जिससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो गए। राष्ट्रपति ट्रंप ने पहले ओमान को ही यह धमकी दी है कि अगर वो अमेरिका के खिलाफ गया तो अमेरिका

ही रहा है। ये खबर बड़ी दिलचस्प है, आपने भी शायद कहीं देखी हो, लेकिन विस्तार से सुनिए। अगली खबर बांग्लादेश से है, जहां एक विशाल भैंसा बकरीद की कुर्बानी से सिर्फ इसलिए बच गया क्योंकि इसका नाम डोनाल्ड ट्रंप है। अब डोनाल्ड ट्रंप इसलिए है क्योंकि इस भैंसे के माथे पर सुनहरे पीले रंग के लंबे बालों का गुच्छा है। सोशल मीडिया पर यह वायरल होने लगा। पिछले कुछ दिनों में इस भैंसे की लोकप्रियता इतनी बढ़ गई कि बांग्लादेश की सरकार ने यह फैसला लिया, खुद उसे खरीद लिया, और अब इस भैंसे की मंजिल कुर्बानी का मैदान नहीं बल्कि एक चिड़ियाघर होगा। ऐसा शायद भी ही कभी किया गया हो, क्योंकि बांग्लादेश सरकार को डर था कि अगर डोनाल्ड ट्रंप नाम के इस भैंसे की बकरीद पर कुर्बानी दे दी गई तो इससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हो सकते हैं, बांग्लादेश को नई धमकी दे सकते हैं। और देखिए, सरकार ने इंटरवीन किया, सोशल मीडिया पर डोनाल्ड ट्रंप के जैसे दिखने वाले हैं इसलिए लोकप्रिय होने वाले एक भैंसे को खरीदा ताकि उसकी कुर्बानी ना दी जा सके। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने पिछले एक साल में दुनिया के 15 देशों को धमकी दी है ना, वैसे ही बांग्लादेश को डर था कहीं टैरिफ वाली कोई धमकी ना आ जाए। वैसे राष्ट्रपति ट्रंप की राजनीति का एक बड़ा हथियार उनकी धमकियां ही रही हैं। कभी टैरिफ की धमकी, कभी प्रतिबंध की धमकी, कभी युद्ध की धमकी, लेकिन बांग्लादेश में तो कहानी ही उल्टी हो गई। यहां ट्रंप नाम ने किसी को नहीं डराया बल्कि एक भैंसे की जान बचा दी है। अब ये भैंसा चिड़ियाघर में लोगों के आकर्षण का केंद्र बनेगा। शायद आने वाले दिनों में बच्चे अपने माता पिता से पूछे ये कौन है, जवाब मिलेगा ये वही ट्रंप है जिसे देखकर इस बार कुर्बानी भी अपना रास्ता बदल गई।

अब हम सीबीएसई रिजल्ट देखकर परेशान हो रहे 12वीं के 17 लाख छात्रों की बात करेंगे। अभी कुछ ही दिन पहले सेफ एंड सिक्योर कही गई नीट परीक्षा का पेपर लीक हो गया था, जिसके बाद परीक्षा को रद्द कर दिया गया। पेपर लीक के बाद कहा गया कि अब ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है जिसमें नीट की परीक्षा डिजिटल तरीके से होगी। लेकिन कई बार देखा गया है कि हमारे देश में जब भी डिजिटल तरीकों से कोई चीज शुरू की जाती है तो उसे बिना पूरी तैयारी के ही थोप दिया जाता है और फिर इसके बाद भयंकर परिणाम आते हैं। सीबीएसई का ओएसएम यानी ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम भी इसी आधी अधूरी तैयारी का एक नया उदाहरण है। समझिए, पहले ही प्रयोग में इसमें कई तरह की दिक्कतें आईं, जैसे पोर्टल क्रैश होने लगा, छात्रों की आंसर शीट यानी उत्तर पुस्तिकाएं बदल दी गईं। आप कल्पना कीजिए, आंसर शीट धुंधली मिली, पोर्टल के हैक होने के दावे किए गए और यही नहीं, छात्रों ने नए मार्किंग सिस्टम के प्रोसेस पर आरोप लगाया कि उनके मुताबिक उन्हें अपेक्षा से कम नंबर दिए गए। इस साल सीबीएसई की 12वीं बोर्ड परीक्षाओं में लगभग 98,66,000 आंसर शीट्स को ओएसएम सिस्टम के तहत जांचा गया था और इस काम में लगभग 70,000 एग्जामिनर्स शामिल थे। ओएसएम सिस्टम में इतनी खामियां थी कि 26 मई तक करीब 4 लाख से ज्यादा बच्चों ने आंसर शीट्स की रीचेकिंग की डिमांड की, यानी वो कॉपी दोबारा से चेक करवाना चाहते थे। भाई, किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था, कोई बहुत होनहार बच्चा, उसके इतने कम मार्क्स। सीबीएसई ये सिस्टम इसलिए लेकर आया था ताकि कॉपी चेक करने के पारंपरिक मॉडल को बदला जा सके। अब इस नए सिस्टम को डिजिटल सुधार के तौर पर पेश किया गया कि हम बड़ी क्रांति कर रहे हैं। पारंपरिक रूप से एग्जामिनर को कॉपी का बंडल दे दिया जाता था, जो शायद हम लोगों की पीढ़ी में होता था, इतने मोटे मोटे बंडल ऐसे बांधकर टीचर के घर चले जाते थे, फिर वो उसको जांचते थे। लेकिन ओएसएम सिस्टम क्या है, इसमें छात्रों की आंसर शीट को कंप्यूटर स्क्रीन पर चेक किया गया। एग्जामिनर को छात्रों की आंसर शीट ओएसएम पोर्टल पर पीडीएफ फॉर्मेट में दी गई। भाई, आंसर शीट उस पर अपलोड होता है, पीडीएफ फॉर्मेट में वो मिलता है। ये पीडीएफ कॉपी आंसर शीट की एक स्कैन कॉपी थी। अब इस नए सिस्टम के तहत छात्रों की आंसर शीट को परीक्षा केंद्र से रीजनल सेंटर्स पर भेजा गया। इन रीजनल सेंटर्स पर आंसर शीट को स्कैन करके उसकी पीडीएफ कॉपी तैयार की गई। ऐसा करने से आंसर शीट का डिजिटलीकरण एक तरह से आप कह सकते हैं

0: डिजिटाइजेशन हो गया। हर आंसर शीट की पीडीएफ कॉपी को एक यूनिक कोड दिया गया और छात्र का नाम, छात्र का रोल नंबर उस पर छिपा दिया गया। आप समझ रहे हैं, इसका उद्देश्य यह था कि भाई छात्र का नाम नहीं है, उसका रोल नंबर नहीं है, तो कोई भी उसमें घपला नहीं कर सकता है, सिर्फ आंसर शीट दिख रहा है। इसके बाद आंसर शीट को ओएसएम पोर्टल के सर्वर पर अपलोड कर दिया गया। कॉपी जांचने के लिए एग्जामिनर्स को उनके लॉगिन पर छात्रों की डिजिटल आंसर शीट दी गई। एग्जामिनर्स ने कंप्यूटर स्क्रीन पर ही आंसर शीट को जांच कर नंबर्स दिए। अच्छा, उन्हें पता नहीं है कि वो किसका देख रहे हैं या क्या रोल नंबर है, किस स्कूल का है। ओएसएम सिस्टम को लेकर दावा यह है कि इससे मार्किंग में पारदर्शिता आती है, टोटल मार्किंग में किसी तरह की चूक नहीं होती क्योंकि सिस्टम अपने आप ये करता है। ओएसएम सिस्टम में पहले से तय मार्किंग पैटर्न पर ही नंबर दिए गए थे, लेकिन इस सिस्टम की खामियों को लेकर छात्र और शिक्षकों के चार बड़े आरोप हैं। समझिए, पहला आरोप, आंसर शीट की स्कैन कॉपी की क्वालिटी ही बहुत खराब थी। अब लीजिए, चेकिंग कर लीजिए, धुंधली है या कुछ पेज में आंसर ही नहीं पढ़ा जा रहा है। अब इस वजह से हुआ ये कि एग्जामिनर्स को कॉपी चेक करने में बड़ी दिक्कतें आई, कहीं कैलकुलेशन समझ नहीं आई, नंबर्स गड़बड़ दिख रहे हैं, हेजी है, तो कहीं डायग्राम सही से दिखाई नहीं दे रहा है, अब नंबर देना मुश्किल। दूसरा आरोप, कुछ छात्रों की शिकायत थी कि उनकी आंसर शीट बदल दी गई, जिसकी वजह से उनको जो नंबर मिले वो किसी अन्य छात्र की आंसर शीट के नंबर्स थे। तीसरा आरोप यह है कि ओएसएम सिस्टम में एनसीईआरटी के पैटर्न पर दिए गए जवाबों को सही माना गया, यानी अगर किसी छात्र ने उस पैटर्न के अलावा अन्य शब्दों में या अन्य पैटर्न पर सही जवाब लिखा हो, जो कि मायने शायद वही रखता हो लेकिन आंसर करने का तरीका अलग हो, तो उसको कम नंबर दिए गए। चौथा आरोप, जिन सवालों के लंबे जवाब लिखे गए थे वो ओएसएम स्क्रीन पर ठीक से दिख ही नहीं रहे थे, ऐसे में उन सवालों के जवाब को जांचना ही मुश्किल हो गया था। अब आप खुद देखिए और खुद सोचिए कि जब एग्जामिनर को कंप्यूटर स्क्रीन पर आंसर शीट ठीक से नहीं दिखाई देगी तो जांचेगा कैसे? जब ओएसएम का सॉफ्टवेयर आंसर शीट की वर्ड बाय वर्ड मार्किंग करेगा, तब उन बच्चों को पूरे नंबर कैसे मिलेंगे जो अलग तरीके से सही जवाब दे रहे थे? कई शिक्षकों ने ओएसएम की इन खामियों की शिकायत की है। उनका कहना है कि ओएसएम को लॉन्च करने से पहले इसकी ट्रेनिंग के लिए शिक्षकों को मात्र 1 से 2 हफ्ते का समय दिया गया। क्या जल्दबाजी थी, जबकि नए प्रयोगों को लागू करने में कम से कम 6 महीने की ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि व्यवस्था में कोई चूक ना हो। लेकिन सीबीएसई ने कॉपी जांचने की पूरी व्यवस्था को बंडल से डिजिटल बनाने की जल्दबाजी में आधी अधूरी तैयारी के साथ लॉन्च कर दिया। खामियाजा छात्रों को भुगतना पड़ रहा है।
1: सीबीएसई कैसे उस पर मार्क्स दे सकती है जब वो पेपर ही ब्लैंक है, बिल्कुल शो ही नहीं हो रहा। मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मेरा 90+ जाएगा, बट एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग मेरा मार्क्स नहीं आया।
2: मेरे एक दोस्त की कुछ टाइम बाद, लाइक 4 दिन बाद ही उसकी शीट आई थी, एंड हम साथ में बैठ के देख रहे थे कि उसकी शीट कैसी है। तो हमने नोटिस करा कि लाइक सीबीएसई की शीट नॉर्मल लाइंड होती चाहिए, बट उसकी शीट पे काफी सारे स्मजेस थे, रेड स्मजेस थे, 1-2 क्वेश्चन ब्लर हो चुके थे। तो इवन हम लोगों को भी दिक्कत आई थी उन स्मजेस में, उन ब्लर में रीड करना, तो चेकर्स ने कैसे करा होगा।
3: पूरे साल मेहनत करते हैं और जस्ट बिकॉज किसी सिस्टम की गलती की वजह से हम बच्चे सफर करते हैं, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अगर हम, क्योंकि हम पेपर देते हैं, हमें पता है हमने तैयारी करी है, लेकिन जैसे हमारे पेरेंट्स हो गए, कोई दोस्त हो गया, उसे ये लगता है ये झूठ बोल रहा है, ये बहाने बना रहा है। हम खुद, मेरे नोन में दोस्त ने पता चला सीयूटी का पेपर देने के, कई लोगों पे तो कंप्यूटर ही नहीं चल रहे थे, वहां पे सही से चल नहीं पा रहा था, सीयूटी का एग्जाम वो नहीं दे पा रहे थे, ब्लड आंसर शीट आ रही है, और पूरे ऑनलाइन में अलग अलग इंसिडेंट्स भरे हुए हैं, अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं बच्चे, कहीं पे कैप्चा की दिक्कत, कहीं पे क्रैश हो रही है वेबसाइट, कहीं पेमेंट की दिक्कत, रजिस्टर ही नहीं कर पा रहे, लॉग इन ही नहीं कर पा रहे, ब्लर आ रही है आंसर शीट, एक प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर हम ये बात समझे, चलिए एक प्रॉब्लम हमारी तरफ से हो, 2 प्रॉब्लम हमारी तरफ से हो, लेकिन अगर हर प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कहीं तो प्रॉब्लम है ना। हम ये बात समझे, चलिए एक प्रॉब्लम हमारी तरफ से हो, 2 प्रॉब्लम हमारी तरफ से हो, लेकिन अगर हर प्रॉब्लम आपकी तरफ से हो रही है तो कहीं ना कहीं कुछ कहीं तो प्रॉब्लम है ना।
4: सबको ट्रेनिंग दी गई थी, लेकिन बहुत सारी ऐसी टेक्निकलिटीज थी जिसको बहुत सारे लोग समझ भी नहीं पाए। फिर जो एप्लीकेंट्स हैं, बच्चे जो एग्ज़ाम ने जिन्होंने एग्ज़ाम दिया, जो उनकी एक्सपेक्टेशन थी, उनके मार्क्स भी उनसे कम आए, क्योंकि चेकिंग के दौरान पहले होता था स्टेप मार्किंग, मैनुअली चेक करते थे, तो स्टेप मार्किंग के व्यापार बच्चों को मार्क्स मिल जाते थे। बट इस बार चेकिंग में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई। सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम थी वो सीट के ब्लर होने की थी। अब मान लीजिए फिजिक्स में कोई बच्चा कुछ लिख रहा है, कोई डायग्राम बना रहा है, अब डायग्राम क्लियर नहीं है, लेवलिंग सही नहीं है हो रही है, तो फिर उसमें एग्जामिनर को मार्क्स देने में बहुत परेशानी आ रही थी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो रही है ना सर, वो ये रही है कि जो सीटें ब्लर हुई है ना, जिसको चेक करने में बहुत परेशानी हुई है।
0: छात्र तो यहाँ तक कह रहे हैं कि नए OSM सिस्टम की इन खामियों की वजह से ही इस बार CBSE की 12वीं का परिणाम पिछले 5 वर्षों में सबसे कम रहा है। इस साल का रिजल्ट करीब 85% था, जबकि साल 2025 में 88%, 24 में 88%, साल 2023 में 87% और 2022 का रिजल्ट करीब 93% था, 93%। अब परीक्षा देने वाले छात्र को उनका रिजल्ट देखकर बहुत हैरानी हुई, उन्हें उम्मीद से कहीं ज्यादा कम नंबर दिए गए। उन्हें मालूम था कि इस बार OSM सिस्टम के तहत मार्किंग होगी, लेकिन उन्हें ये भरोसा नहीं था कि उन्हें बहुत कम नंबर्स इस तरह से दिए जाएंगे। कई छात्रों ने तो सोशल मीडिया पर दावा किया कि मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी में उन्हें 30 से 40 नंबर कम दिए गए। छात्रों का कहना था कि प्री बोर्ड कोचिंग के टेस्ट रिजल्ट और एंट्रेंस एग्जाम में भी उनके अच्छे नंबर्स आए, लेकिन बोर्ड परीक्षा में एकदम कम नंबर्स। पता नहीं आपके घर में कोई 12th का एग्जाम दे रहा है नहीं दे रहा है। 10, 12th के बोर्ड्स के जो ये एग्जाम होते हैं, हम देखते हैं बच्चे किस तरह से मेहनत करते हैं, खाना पीना घूमना बाहर जाना सब कुछ भूल कर तमाम दबाव में रहते हुए स्ट्रेस में दिन रात एक करना, रात रात भर जग कर पढ़ते हैं। इसी के लिए अब शिकायतों के निपटारे के लिए CBSE ने भी पारदर्शिता बरती। उन्होंने रीचेकिंग के लिए छात्रों को स्कैन आंसर शीट कॉपी का एक्सेस दे दिया। इससे अगली खबर का रुख करते हैं। इसे सिर्फ क्रिकेट की पारी मत कहिए, ये तबाही का वो मंजर था जिसने IPL के 18 साल के इतिहास को हिलाकर रख दिया। तारीख 27 मई 2026, जगह न्यू चंडीगढ़ का मैदान और मौका IPL 2026 का करो या मरो वाला एलिमिनेटर मुकाबला। सामने थी सनराइजर्स हैदराबाद की घातक गेंदबाजी, दबाव इतना कि बड़े बड़ों के पैर कांप जाए, लेकिन क्रीज पर खड़ा था 15 साल का एक लड़का वैभव सूर्यवंशी। और फिर जो हुआ उसने इतिहास की किताबों के पुराने पन्ने फाड़ कर नए रिकॉर्ड लिख दिए हैं। आज हर तरफ उसी की चर्चा है। कल रात वैभव ने फियरलेस और अटैकिंग क्रिकेट की नई परिभाषा लिख दी। इस 15 साल के ओपनर ने हैदराबाद के गेंदबाजों को ऐसी रिमांड पर लिया कि मैदान छोटा पड़ गया। महज 29 गेंदों में 12 गगनचुंबी छक्के, 5 चौकों की मदद से वैभव ने 97 रनों की तूफानी पारी खेली। उनकी इस पारी की 29वीं गेंद पर अगर सीमा पार जाती तो वो एक और ऐसा इतिहास रच देते जिसे 2013 से कोई तोड़ नहीं पाया है। क्रिस गेल ने 30 बॉल में IPL का सबसे तेज शतक बनाया। उन्होंने ये रिकॉर्ड 33 साल की उम्र में बनाया और तब सूर्यवंशी महज 2 साल के थे जब क्रिस गेल ने बनाया था। कुल मिलाकर वो सिर्फ 3 रन से IPL इतिहास का सबसे तेज शतक लगाने से चूक गए। दिलचस्प बात यह है कि गेल के बाद सबसे तेज शतक के मामले में दूसरे और तीसरे नंबर पर भी वैभव ही हैं, वैभव सूर्यवंशी। कल के मैच में वैभव ने एक और कारनामा कर दिखाया जो आज तक कोई भारतीय नहीं कर सका है। कल की इस पारी के साथ ही वैभव ने यूनिवर्स बॉस क्रिस गेल का 14 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। गेल ने 2012 में IPL के एक सीजन में 59 छक्के लगाए थे, लेकिन वैभव सूर्यवंशी ने इस सीजन में अब तक 65 छक्के लगा दिए हैं और 65 छक्के ठोक कर इतिहास का सबसे बड़ा सिक्सर किंग होने का तमगा अपने नाम कर लिया है। इस सीजन में 680 रन और 242 से ऊपर का स्ट्राइक रेट वैभव सूर्यवंशी का। खुद क्रिस गेल ने ट्वीट किया और क्रिस गेल ने ट्वीट करके कहा, क्या जबरदस्त खिलाड़ी है ये लड़का, नई सिक्स मशीन है। गेंदबाजों के हौसले पस्त करने वाले इस जिगरे के पीछे की कहानी आपको बताते हैं। एक पिता के बेमिसाल संघर्ष की कहानी है ये। बिहार के समस्तीपुर के एक बेहद साधारण परिवार से ताल्लुक रखने वाले वैभव सूर्यवंशी के पिता संजीव सूर्यवंशी का खुद का सपना क्रिकेटर बनने का था जो अधूरा रह गया, लेकिन जब उन्होंने 3.5 साल के वैभव के हाथों में बैट देखा तो ठान लिया कि बेटा इतिहास रचेगा। मैं ना कर पाया तो क्या, मेरा बेटा करेगा। बेटे की खेल प्रतिभा को निखारने के लिए वैभव के पिता अपना सब कुछ त्याग कर, सब कुछ दांव पर लगाकर पहुंच गए मुंबई। अब मुंबई में बिना किसी बड़े सहारे, किसी को जाने बिना वहां पर रहना भी तो बड़ी मुश्किल है ना, आर्थिक तंगहाली से जूझना पड़ता है। लोकल ट्रेन के धक्कों के बीच वैभव को आजाद मैदान और शिवाजी पार्क ले जाना संजीव की रोज की जंग थी। उन्होंने संघर्ष के बाद भी बेटे की डाइट और किट दोनों में कभी कमी नहीं होने दी, उनका डाइट हो उनका किट बैग हो। पिता ने खुद थ्रो डाउन फेंक फेंक कर वैभव की नजरों को इतना तेज बनाया कि आज 145 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाली गेंद भी इस बच्चे को खिलौने की तरह दिखती है, या फिर कहिए फुटबॉल की तरह। ये भारत की टीम साल 2011 में वर्ल्ड कप जीतकर इतिहास रच रही थी, तब वैभव सूर्यवंशी मात्र 6 दिन के थे, लेकिन आज वो छक्के छक्कों में ही बातें करते हैं। आज वैभव भले 15 साल के हैं, लेकिन उनकी हिम्मत की दास्तां तब शुरू हुई थी जब वो महज 12 साल के थे। जनवरी 2024 में उन्होंने बिहार के लिए रणजी डेब्यू किया और सचिन तेंदुलकर के बाद सबसे कम उम्र में प्रथम श्रेणी मैच खेलने वाले खिलाड़ी बने। जब हम उम्र बच्चे स्कूल में के टेस्ट से डरते हैं, वैभव रणजी में अपनी उम्र से दोगुने बड़े गेंदबाजों की तेज बाउंसर्स अपनी छाती पर झेल रहे थे। दर्द मिला, चोटें आई, लेकिन इस लड़के ने कभी क्रीज नहीं छोड़ी। यही वो बेबाकी है जो आज राजस्थान रॉयल्स की जर्सी में उनके खेल को सबसे जुदा सबसे अलग बनाती है। वैभव कैसी है बेखौफ अंदाज का एक अनसुना किस्सा है। अब भारत की अंडर-19 टीम का ये किस्सा है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चेन्नई में मैच था। टीम मैनेजमेंट ने वैभव से कहा था कि भाई पिच नहीं है, थोड़ा संभल कर वक्त बिताना, नहीं तो आउट होगे बाहर आना पड़ेगा। लेकिन वैभव ने मासूमियत और पूरे आत्मविश्वास से कहा था, सर गेंद जहां मारने वाली होगी वहां तो मारनी ही पड़ेगी। नतीजा, सिर्फ 58 गेंदों में ऑस्ट्रेलिया के परखच्चे उड़ाते हुए वैभव ने इतिहास का दूसरा सबसे तेज अंडर-19 टेस्ट शतक जड़ दिया था। वो गेंदबाजों के नाम या कद से नहीं डरते, वो सिर्फ गेंद की मेरिट पर प्रहार करते हैं। वैभव की इस अंधी ने सिर्फ भारत नहीं बल्कि पूरी दुनिया को अपना दीवाना बना दिया है। बिहार के समस्तीपुर से निकला ये लड़का आज भारतीय क्रिकेट के क्षितिज पर सबसे चमकदार सितारा बन चुका है। पिता का त्याग, खुद की अटूट हिम्मत और खेलने का वो अंदाज जिसने किसी के आगे झुकना नहीं सीखा, वैभव सूर्यवंशी इस सदी के बड़े क्रिकेट सुपरस्टार बनने की राह पर बढ़ चले हैं। कल की इस ऐतिहासिक जीत के बाद राजस्थान रॉयल्स अब क्वालिफायर 2 में गुजरात टाइटंस से भिड़ने के लिए तैयार है और विरोधी टीमें अब सिर्फ वैभव को रोकने के लिए ही प्लान बी प्लान सी बनाने में लग गई कि भाई इस सिक्सर मशीन को कैसे तोड़ा जाए, रोका जाए।
5: सूर्यवंशी का खेलने का स्टाइल बहुत ही डिफरेंट है। 36 पे 100 कर दी, 38 पे 100 कर दी है। उस तरह का टैलेंट शायद हमारे पास अभी नहीं आया है, लेकिन हमें क्या उस तरह के टैलेंट की जरूरत भी है? ये हमारे लिए काफी है। माज लड़का हो गया, ये हो गया।
6: एक चीज ध्यान में रखें, ये जो सूर्यवंशी वाला टैलेंट है ये नेचुरल टैलेंट है, लेकिन मैं अभी भी कह रहा हूँ इस एज में छक्के इतने बंदे नहीं मार सकता यार। वो जिस तरीके से छक्के मारता है वो, ये 15 साल का इतने मसल पावरफुल होता है, नेचुरल, इतना नेचुरल 15 साल में मैं नहीं समझता कोई होगा। ठीक है, मुझे ऐसा लगता है वो बड़ा है।
7: मिस्टर बबलू सूर्यवंशी का है 97 29 बॉल में यार, और 35 बॉलों में भी इसका ही 100 है। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये ज्यादा दिन रुके, पूरी दुनिया में छा जाएगा ये बच्चा। इंटरनेशनल जब खेलेगा जब देखेंगे।
0: तो आज के लिए ब्लैक एंड व्हाइट में इतना ही। अब आपसे हमारी अगली मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। तब तक आप खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। और जिनको मैंने सुख में बुलाया वो मेरे अपने थे, और जो मेरे दुख में आए मैं उनका अपना था। नमस्कार।

0: कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिव कुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की यह तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर लेफ्ट पार्टी टेक एडिशन कांग्रेस लीडर पार्टी टेक एडिशन एंड हाई कमांड टेक एडिशन ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आला कमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं। ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತವನು ಮತದಾರರೇ ನಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವರು।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ विप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये आफ्टर थॉट, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोच है उनका कुछ मंशा है। स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक FIR किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया। वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
3: दरअसल नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ बिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह सुजीत शाह के घर करेंसी राइफल गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया मुर्शिदाबाद कुछ बिहार जैसे जिलों में प्रधानों पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई FIR दर्ज कर ली गई। TMC के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो TMC के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले TMC के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। TMC सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। TMC के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से TMC के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। TMC के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। TMC विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा CM की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से TMC के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। TMC के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
5: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এর পরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
3: BJP কে রহি হ্যাঁ দিল্লি সে হরি ঝন্ডি মিল যায় তো TMC কা নাম ও নিশান মিট যায়।
6: 20 জন সাংসদ কেন্দ্রীয় BJP এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু বাবু সমিতিটা যদি দরজা খুলে দেয়, 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত।
3: इससे 50 नाराज विधायकों समेत मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण बंगाल के 18 से अधिक TMC नेताओं और सांसदों को BJP के संपर्क में होने का दावा किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से 150 से अधिक विधायकों, सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़कर BJP ज्वाइन की है। उससे पहले भी 2024 के चुनाव में BJP के 28% उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37 नेता कांग्रेस से BJP में आकर उम्मीदवार बने। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे BJP के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है जो पिछले महीने ही BJP में आए हैं।
0: और अब बात करेंगे बकरीद और उस पर हो रही लगातार सियासत के बारे में, क्योंकि बकरीद के लिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा करके प्रखर हिंदुत्व का संदेश दिया, तो महाराष्ट्र में बकरीद के दिन बखेड़ा देखने को मिला है। इन सबके बीच यूपी में शांति से त्योहार मनाया गया।
7: बकरीद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी के गाय पूजन ने यह साफ संदेश दिया कि वो अब बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं। संदेश साफ था, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए।
8: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा TMC को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
7: नई सरकार में बंगाल की सड़कों का नजारा भी बदला दिखा। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
9: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए, और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।
7: उधर महाराष्ट्र के कल्याण पर बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किला जंग का अखाड़ा बन गया। दुर्गा माता मंदिर के बंद का विरोध करने इस बार शिवसेना के दोनों गुट के अलावा BJP के नेता भी पहुंचे। एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी ओर भारी पुलिस बल बैरिकेडिंग लगाकर हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चालीस साल पहले बाला साहब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिखे ने यहां पर घंटानाद आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि यहां पर नमाज के वक्त मंदिर को बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी यहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
10: जो निषेध मोर्चा है, जिसका अपना अस्मिता को ठेस पहुंचा है, जिधर अपने दर्द हो रहा है कि मंदिर बंद है, उधर फटाकड़े फोड़ने का प्रयोजन का है। फटाकड़े आनंद उत्सव साझे करने के लिए किया जाता है ना।
7: इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज की तस्वीरें आई। यूपी में योगी सरकार ने पहले ही बकरीद को लेकर हिदायत दे दी थी, ऐसे में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक दिखी तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही ताकि माहौल खराब न हो। आज तक ब्यूरो
0: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया था। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा और गुंडागर्दी के इन आरोपियों पर पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमाती हुई नजर आई और यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब पूरी तरह से बदल गया है।
11: मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर।
3: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृहमंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया। ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
12: इसको पिछले चोर छोड़ो गा।
3: बोलो। अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
12: अरे आखिरकार बोलो ना।
3: दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती
12: थी।
3: बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और काचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे काचरा पार क्षेत्र में फैला था।
12: যারা নেতা তারা পালিয়ে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখনো আছি।
3: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
11: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों।
3: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे। पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिले और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमी महमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमी मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनी। हावड़ा के कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही है।
8: देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत अब बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा, तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
3: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
0: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने अजीबोगरीब तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। वीआईपी कल्चर के खिलाफ ऐसा आक्रोश शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा।
7: किसी नेता के खिलाफ ऐसा अनोखा प्रदर्शन आप पहली बार देख रहे होंगे। सामूहिक रूप से हॉर्न बजाकर यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ प्रदर्शन है। दरअसल सीएम मोहन यादव का काफिला सिंगरौली की सड़कों से गुजरा तो आम आदमी के लिए थोड़ी देर के लिए रास्ता रोक दिया गया। ऐसी भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली धूप में लोग काफी देर तक सड़क पर खड़े रहे तो धैर्य जवाब दे गया।
13: क्या बोले ही बोले कि नेताजी तो एसी में बैठ के मौज कर रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं और जितनी इतनी पब्लिक सड़क परेशान है उनके चलते।
7: पीएम की अपील के बाद पेट्रोल डीजल में कटौती के लिए नेताओं ने काफिले को कम किया था, वीआईपी कल्चर को त्याग दिया था, मगर चंद रोज बाद ही फिर से वैसा ही वीआईपी कल्चर दिखा जिसके खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा। हरिओम सिंह, सिंगरौली, आज तक।
0: ट्विशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ट्विशा की मौत के 18 दिन के बाद आखिरकार ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
1: तमाम रस्साकसी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
14: जो एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की एफआईआर यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
1: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी हैं।
14: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्रिशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
1: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी, जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से ट्विशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल, आज तक।
0: और अब बात करेंगे उन स्टंटबाजों की जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। देखिए,

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें हैं जो अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी से खेल रही हैं। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है और इसी एक्सप्रेसवे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बावजूद एक्सप्रेसवे के बीचों बीच ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस स्टंट के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इन स्टंट बाजों को ना अपनी परवाह है ना दूसरे की। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि प्रशासन जागेगा और इन बदमिजाज रईस जादों को पकड़कर इनकी दौलत का नशा उतारेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।
1: बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। तीन जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिला कर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: Now the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान, जहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
0: ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी खीज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी, जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई, मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं।
1: And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And
0: अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इसराइल को मान्यता देना, यही नहीं फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को ये कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका, जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं? आज तक पेरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।
3: Music you love is all right here on TuneIn, bringing you good vibes and the hottest hits. But are you ready to amp things up even more? Just upgrade to TuneIn Premium for all of our exclusive music channels, completely commercial free. So you get more of today's hits. More country roads. And everything else. Hear it all here, commercial free, on TuneIn. Call something classic, you've got to mean it. And that's why when we say TuneIn's exclusive classic hip-hop station is the real deal, we mean it. From golden age gems from OGs like Tupac and Biggie to chart-topping bangers from the biggest artists of all time like Jay-Z and DMX, there's a little something for every hip-hop fan on this station. Ready to find your flow? Just search classic hip-hop or tell your device to play classic hip-hop on TuneIn to listen.
4: Discover your new favorites on TuneIn. With over 100,000 music, news, and sports stations to choose from, there's always something to listen to. Even podcasts and audiobooks for you to enjoy. Stay connected for all new recommendations and follow us on social media at TuneIn on Facebook, Instagram, and X. And start listening today. Just ask your device to play TuneIn.
2: आज तक ला रहा है वीडियो वाला पेपर, हर सुबह आपके मोबाइल में, वो भी आपके पुराने न्यूज़पेपर से पहले। पढ़ने के लिए अपने डिवाइस पर टाइप करें epaper.aajtak.in या स्क्रीन पे दिए गए QR कोड को अभी स्कैन करें।
5: मौसम विभाग ने उत्तराखंड के लिए विशेष अलर्ट जारी किया हुआ है। अनुमान है कि अगले चार दिनों तक उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बिगड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार आज उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में तेज रफ्तार से हवाएं चलने की संभावना है। इन राज्यों में बिजली गिरने और ओलावृष्टि की भी आशंका है। 28 मई को भी उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जिलों में भी तेज हवाओं, बारिश, आकाशीय बिजली और ओलावृष्टि की संभावना के साथ ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। 30 मई को प्रदेश के कई जिलों में गर्जन के साथ आकाशीय बिजली चमकने और 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से झोंकेधार हवाएं चलने की संभावना को देखते हुए येलो अलर्ट जारी किया गया है। और इसके अलावा बहुत से तटीय राज्यों में प्री मानसून बारिश की भी संभावना है।
6: राज्यों की बात करें तो प्री मानसूनी बारिश जो होती है वो जरूर देखी जा रही है, क्योंकि दक्षिणी छोर पे जो है 26 मई को मानसून जो है वो दस्तक देना था, हालांकि अभी तक दस्तक नहीं दिया है, लेकिन प्री मानसून बारिश जो है चाहे केरल, कर्नाटका, वेस्ट बंगाल, असम, मिजोरम में बात करी जाए तो इस पूरे पूर्वोत्तर भारत में या फिर दक्षिण छोर पे जो है आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग द्वारा जो है जारी किया गया है। लेकिन बात अगर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश और इन सब की बात की जाए तो यहाँ पर रेड अलर्ट, हॉट एंड ह्यूमिड कंडीशन जो है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन जिस तरीके से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा उसके बाद तापमान एक बार कम जाएंगे और लोगों को इस गर्मी से, इस चिलचिलाती धूप से राहत मिल सकती है।
5: इस प्री मानसून बारिश की इस वक्त पूरे उत्तर भारत को सख्त जरूरत है। पहाड़ों पर भी बारिश हो गई तो उसकी राहत पूरे नॉर्थ इंडिया को मिलेगी। मौसम विभाग बता ही रहा है कि जिन राज्यों में इस वक्त लू चल रही है वहां 8 से 10 डिग्री का तापमान कम रहेगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया के शहरों में तो अब तालाब और झीलों तक का पानी भी गर्मी से सूख रहा है।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें थे। सूत्रों से खबर, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिवकुमार के सिर सजेगा ताज। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी, 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिवकुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की यह तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर सर लेफ्ट पार्टी टेक एडिशन, कांग्रेस लीडर पार्टी टेक एडिशन एंड हाई कमांड टेक एडिशन, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आला कमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत तिळ्कोंडिरतक्कंतवनु मतदार नम अभिमानी देवरु।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये अफटर थॉट, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोच है उनका कुछ मंशा है। स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया। वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
3: दरअसल नर्मदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्युनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ बिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह सुजीत शाह के घर करेंसी राइफल गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया, मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार जैसे जिलों में प्रधानों, पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ी जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
5: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়

0: ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
1: नई सरकार में बंगाल की सड़कों का नजारा भी बदला दिखा। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
2: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए, और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।
1: उधर महाराष्ट्र के कल्याण पर बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किला जंग का अखाड़ा बन गया। दुर्गा माता मंदिर के बंद का विरोध करने इस बार शिवसेना के दोनों गुट के अलावा बीजेपी के नेता भी पहुंचे। एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी ओर भारी पुलिस बल बैरिकेडिंग लगाकर हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चालीस साल पहले बाला साहब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिखे ने यहां पर घंटानाद आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि यहां पर नमाज के वक्त मंदिर को बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी यहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
3: जो निषेध मोर्चा है, जिसका अपना अस्मिता को ठेस पहुंचा है, जिधर अपने दर्द हो रहा है कि मंदिर बंद है, उधर फटाकड़े फोड़ने का प्रयोजन का है। फटाकड़े आनंद उत्सव साझे करने के लिए किया जाता है ना।
1: इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज की तस्वीरें आई। यूपी में योगी सरकार ने पहले ही बकरीद को लेकर हिदायत दे दी थी, ऐसे में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक दिखी तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही ताकि माहौल खराब न हो। आज तक ब्यूरो।
4: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया था। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा और गुंडागर्दी के इन आरोपियों पर पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमाती हुई नजर आई, और यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब पूरी तरह से बदल गया है।
5: मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करें।
6: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृहमंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया। ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
7: इसको पिछले चोर छोड़ो रहा
6: बोलो। अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
7: अरे आखिर तो बोलो ना।
6: दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती। बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और काचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज

0: वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं बल्कि पूरे कांचरा पार्क क्षेत्र में फैला था।
1: तृणमूल कांग्रेस যারা নেতা তারা পালিয়ে যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখনো আছি।
0: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
2: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों।
0: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे। पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिली और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनिए। हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही।
3: देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत अब बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
0: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
4: मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के सामने अजीबोगरीब तरीके से विरोध प्रदर्शन किया गया। वीआईपी कल्चर के खिलाफ ऐसा आक्रोश शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा।
5: किसी नेता के खिलाफ ऐसा अनोखा प्रदर्शन आप पहली बार देख रहे होंगे। सामूहिक रूप से हॉर्न बजाकर यह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के खिलाफ प्रदर्शन है। दरअसल सीएम मोहन यादव का काफिला सिंगरौली की सड़कों से गुजरा तो आम आदमी के लिए थोड़ी देर के लिए रास्ता रोक दिया गया। ऐसी भीषण गर्मी और झुलसा देने वाली धूप में लोग काफी देर तक सड़क पर खड़े रहे तो धैर्य जवाब दे गया।
6: क्या बोले ही बोले कि नेताजी तो एसी में बैठ के मौज कर रहे हैं, ठंडा पी रहे हैं और जितनी इतनी पब्लिक सड़क परेशान है उनके चलते।
5: पीएम की अपील के बाद पेट्रोल डीजल में कटौती के लिए नेताओं ने काफिले को कम किया था, वीआईपी कल्चर को त्याग दिया था, मगर चंद रोज बाद ही फिर से वैसा ही वीआईपी कल्चर दिखा जिसके खिलाफ लोगों का आक्रोश फूटा। हरिओम सिंह, सिंगरौली, आज तक।
4: ट्विशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ट्विशा की मौत के 18 दिन के बाद आखिरकार ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
7: तमाम रस्साकसी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
8: जो एफआईआर सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की एफआईआर यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
7: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी हैं।
8: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्रिशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
7: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी, जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से ट्विशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
4: और अब बात करेंगे उन स्टंटबाजों की जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। देखिये

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें हैं जो अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी से खेल रही हैं। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे है और इसी एक्सप्रेस वे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बावजूद एक्सप्रेसवे के बीचों बीच ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस स्टंट के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इन स्टंट बाजों को ना अपनी परवाह है ना दूसरे की। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि प्रशासन जागेगा और इन बदमिजाज रईस जादों को पकड़कर इनकी दौलत का नशा उतारेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।
1: बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। तीन जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिला कर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: Now the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीजफायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान, जहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
0: ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी खीज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है, लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरु मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी, जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई, मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं।
1: And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but we'd like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And
0: अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इसराइल को मान्यता देना, यही नहीं फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को ये कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका, जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं? आज तक पेरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज, सूत्रों से खबर। प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव, नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिवकुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की यह तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर एंड आई कमांड टेक डिसीजन, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आला कमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत तिळ्कोंडिरतक्कंतवनु मतदाररे नम अभिमानी देवरु।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही

0: पार्टी के चीफ विप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
1: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? हम 3 महीने पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
0: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
1: हमारा सोचा उनका कुछ मंशा है, स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया। वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
0: दरअसल नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्युनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ बिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास, सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह, सुजीत शाह के घर करेंसी, राइफल, गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया, मुर्शिदाबाद, कुच बिहार जैसे जिलों में प्रधानों, पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ी जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
2: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এর পরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
0: বিজেপি কে রহি হ্যাঁ দিল্লি সে হরি ঝন্ডি মিল যায় তো টিএমসি কা নাম ও নিশান মিট যায়।
3: 20 জন সাংসদ কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু এবং শ্রমিকদের যদি দরজা খুলে দেয়, 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত।
0: इससे 50 नाराज विधायकों समेत मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण बंगाल के 18 से अधिक टीएमसी नेताओं और सांसदों को बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से 150 से अधिक विधायकों, सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले भी 2024 के चुनाव में बीजेपी के 28% उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37 नेता कांग्रेस से बीजेपी में आकर उम्मीदवार बने। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे बीजेपी के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है जो पिछले महीने ही बीजेपी में आए हैं।
4: और अब बात करेंगे बकरीद और उस पर हो रही लगातार सियासत के बारे में, क्योंकि बकरीद के लिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा करके प्रखर हिंदुत्व का संदेश दिया तो महाराष्ट्र में बकरीद के दिन बखेड़ा देखने को मिला है। इन सबके बीच यूपी में शांति से त्योहार मनाया गया।
5: बकरीद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी के गाय पूजन ने यह साफ संदेश दिया कि वो अब बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं। संदेश साफ था, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए।
6: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
5: नई सरकार में बंगाल की सड़कों का नजारा भी बदला दिखा। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
7: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए, और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।
5: उधर महाराष्ट्र के कल्याण पर बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किला जंग का अखाड़ा बन गया। दुर्गा माता मंदिर के बंद का विरोध करने इस बार शिवसेना के दोनों गुट के अलावा बीजेपी के नेता भी पहुंचे। एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी ओर भारी पुलिस बल बैरिकेडिंग लगाकर हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चालीस साल पहले बाला साहब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिखे ने यहां पर घंटानाद आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि यहां पर नमाज के वक्त मंदिर को बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी यहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
8: जो निषेध मोर्चा है, जिसका अपना अस्मिता को ठेस पहुंचा है, जिधर अपने दर्द हो रहा है कि मंदिर बंद है, उधर फटाकड़े फोड़ने का प्रयोजन का है। फटाकड़े आनंद उत्सव साझे करने के लिए किया जाता है ना।
5: इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज की तस्वीरें आई। यूपी में योगी सरकार ने पहले ही बकरीद को लेकर हिदायत दे दी थी, ऐसे में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक दिखी तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही ताकि माहौल खराब न हो। आज तक ब्यूरो।
4: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया था। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा और गुंडागर्दी के इन आरोपियों पर पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमाती हुई नजर आई, और यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब पूरी तरह से बदल गया है।
9: मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं, और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो मैं फिर से बोलूंगा उल्टा लटका कर ठीका करें।
5: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृहमंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाए। ये देखिए पहली तस्वीर, अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
10: इसको पिछले चोर छोड़ोगा
5: बोलो। अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
10: अरे आखिर तो बोलो ना,
0: दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती
11: थी।
0: बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और कांचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में

0: कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे कांचरा पार्क क्षेत्र में फैला था।
1: तृणमूल कांग्रेस যারা নেতা তারা পালিয়ে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখন আছি।
0: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
2: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों।
0: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे। पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिले और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनिए। हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाना, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही।
3: देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत अब बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
0: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
4: ट्विशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ट्विशा की मौत के 18 दिन के बाद आखिरकार ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
5: तमाम रस्साकस्सी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
6: जो FIR सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की FIR यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
5: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी है।
6: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्रिशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेना सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
5: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी, जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाई गई। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से ट्विशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
4: और अब बात करेंगे उन स्टंटबाजों की जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। देखिए,

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादे हैं जो अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी से खेल रही हैं। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है और इसी एक्सप्रेसवे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बावजूद एक्सप्रेसवे के बीचों बीच ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस स्टंट के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इन स्टंट बाजों को ना अपनी परवाह है ना दूसरे की। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, उम्मीद कीजिए कि प्रशासन जागेगा और इन बदमिजाज रईस जादों को पकड़कर इनकी दौलत का नशा उतारेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।
1: बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। 3 जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिला कर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है।

0: हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान, जहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's one thing is not contingent on the other.
0: ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी खीज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी, जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई, मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं।
1: And we'd like to have the countries we were talking about, Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but we'd like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great countries, bold countries. And
0: अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इसराइल को मान्यता देना, यही नहीं फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को यह कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं? आज तक पेरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज, सूत्रों से खबर। प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव, नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी, 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिव कुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की यह तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छू रहे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर सर लेफ्ट पार्टी टेक्स एडिशन, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी टेक्स एडिशन एंड हाई कमांड टेक्स एडिशन, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आला कमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत तिळ्कोंडिरतक्कंतवनु मतदार नम अभिमानी देवरू।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ विप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला, हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम, ये अफ्टर थॉट, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोच है उनका कुछ मंशा है, स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया, वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया, अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
3: दरअसल नर्मदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्युनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कूचबिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह सुजीत शाह के घर करेंसी राइफल गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार जैसे जिलों में प्रधानों, पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ी जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
5: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এরপরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
3: বিজেপি কে রহি হ্যায় কি দিল্লি সে হরি ঝন্ডি মিল যায় তো টিএমসি কা নাম ও নিশান মিট যায়।
6: 20 জন সাংসদ কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু বাবু শ্রমিকদের যদি দরজা খুলে দেয়, 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত।
3: इससे 50 नाराज विधायकों समेत मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण बंगाल के 18 से अधिक टीएमसी नेताओं और सांसदों को बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से 150 से अधिक विधायकों, सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले भी 2024 के चुनाव में बीजेपी के 28% उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37 नेता कांग्रेस से बीजेपी में आकर उम्मीदवार बने। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे बीजेपी के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है जो पिछले महीने ही बीजेपी में आए हैं।
0: और अब बात करेंगे बकरीद और उस पर हो रही लगातार सियासत के बारे में, क्योंकि बकरीद के लिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा करके प्रखर हिंदुत्व का संदेश दिया, तो महाराष्ट्र में बकरीद के दिन बखेड़ा देखने को मिला है। इन सबके बीच यूपी में शांति से त्योहार मनाया गया।
7: बकरीद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी के गाय पूजन ने यह साफ संदेश दिया कि वो अब बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं। संदेश साफ था, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए।
8: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
7: नई सरकार में बंगाल की सड़कों का नजारा भी बदला दिखा। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
9: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए, और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।

0: कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।
1: उधर महाराष्ट्र के कल्याण पर बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किला जंग का अखाड़ा बन गया। दुर्गा माता मंदिर के बंद का विरोध करने इस बार शिवसेना के दोनों गुट के अलावा बीजेपी के नेता भी पहुंचे। एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी ओर भारी पुलिस बल बैरिकेडिंग लगाकर हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चालीस साल पहले बाला साहब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिखे ने यहां पर घंटानाद आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि यहां पर नमाज के वक्त मंदिर को बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी यहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
2: जो निषेध मोर्चा है, जिसका अपना अस्मिता को ठेस पहुँचा है, जिधर अपने दर्द हो रहा है कि मंदिर बंद है, उधर फटाकड़े फोड़ने का प्रयोजन क्या है? फटाकड़े आनंद उत्सव साझे करने के लिए किया जाता है ना।
1: इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज की तस्वीरें आई। यूपी में योगी सरकार ने पहले ही बकरीद को लेकर हिदायत दे दी थी, ऐसे में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक दिखी तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही ताकि माहौल खराब न हो। आज तक ब्यूरो।
3: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया था। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा गुंडागर्दी के इन आरोपियों पर पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमाती हुई नजर आई और यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब पूरी तरह से बदल गया है।
4: मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर
5: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृह मंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया। ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
6: इसको पिछले चोर छोड़ो ना।
5: बोलो। अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
6: अरे आखिरकार बोलो ना।
5: दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती। बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और काचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे काचरा पार क्षेत्र में फैला था।
6: যারা নেতা তারা পালিয়ে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়ে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখনো আছি।
5: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
4: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं,
7: गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए।

0: दीदी लोग बोलो धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए। अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों।
1: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे, पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिलेगी और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनी। हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही है।
2: देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत अब बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
1: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
3: ट्विशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ट्विशा की मौत के 18 दिन के बाद आखिरकार ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
4: तमाम रस्साकसी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
5: जो FIR सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी, डेथ, दोनों की FIR यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
4: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी है।
5: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्विशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
4: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी, जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से ट्विशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
3: और अब बात करेंगे उन स्टंटबाजों की जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। देखिए,

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें हैं जो अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी से खेल रही हैं। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे है और इसी एक्सप्रेस वे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेस वे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बावजूद एक्सप्रेस वे के बीचों बीच ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस स्टंट के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इन स्टंटबाजों को ना अपनी परवाह है ना दूसरे की। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है, उम्मीद कीजिए कि प्रशासन जागेगा और इन बदमिजाज रईस जादों को पकड़कर इनकी दौलत का नशा उतारेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।
1: बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। 3 जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिला कर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: Now the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, or we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान, जहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's one thing is not contingent on the other.
0: ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी खीज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी, जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई, मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं।
1: And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And
0: अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इसराइल को मान्यता देना, यही नहीं फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को ये कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका, जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं? आज तक पेरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें थे। सूत्रों से खबर, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिवकुमार के सिर सजेगा ताज। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी, 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिवकुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की यह तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर सर लेफ्ट पार्टी टेक्स अ डिसीजन, कांग्रेस लीडर पार्टी टेक्स अ डिसीजन एंड हाई कमांड टेक्स अ डिसीजन, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आलाकमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत तिळ्कोंडिरतक्कंतवनु मतदार नम अभिमानी देवरु।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोच है उनका कुछ मंशा है। स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक FIR किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया। वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
3: दरअसल नर्मदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्युनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ बिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह सुजीत शाह के घर करेंसी राइफल गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया, मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार जैसे जिलों में प्रधानों, पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ी जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
5: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এরপরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
3: বিজেপি কহ রহি হ্যায় কি দিল্লি সে হরি ঝন্ডি মিল যায় তো টিএমসি কা নাম ও নিশান মিট যায়।
6: 20 জন সাংসদ, কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু এবং শ্রমিকদের যদি দরজা খুলে দেয়, 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত।
3: এসে 50 নারাজ বিধায়কों समेत মালদা, মুর্শিদাবাদ, দক্ষিণ বঙ্গাল কে 18 से अधिक টিএমসি নেতাও আর সাংসদों কে বিজেপি কে সম্পর্ক মে হোনে কা দাবা কিয়া জাতা হ্যায়। অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস কে আঁকড়ে বাতাতে হ্যায় কি সিরফ 2024 কে চুনাও নতিজো কে বাদ সে 150 সে অধিক বিধায়কों সাংসদों নে আপনি পার্টি ছোড়কর বিজেপি জয়েন কি হ্যায়। উসসে পহলে ভি 2024 কে চুনাও মে বিজেপি কে 28% উমীদবার এসে থে জো দূসরি পার্টিও সে আয়ে, জিনমে সবসে জ্যাদা 37 নেতা কংগ্রেস সে বিজেপি মে আকর উমীদবার বনে। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे बीजेपी के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है जो पिछले महीने ही बीजेपी में आए हैं।
0: और अब बात करेंगे बकरीद और उस पर हो रही लगातार सियासत के बारे में, क्योंकि बकरीद के लिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा करके प्रखर हिंदुत्व का संदेश दिया तो महाराष्ट्र में बकरीद के दिन बखेड़ा देखने को मिला है। इन सबके बीच यूपी में शांति से त्योहार मनाया गया।
7: बकरीद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी के गाय पूजन ने यह साफ संदेश दिया कि वो अब बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं। संदेश साफ था, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए।
8: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
7: नई सरकार में बंगाल की सड़कों का नजारा भी बदला दिखा। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
9: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए। और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।
7: उधर महाराष्ट्र के कल्याण पर बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किला जंग का अखाड़ा बन गया। दुर्गा माता मंदिर के बंद का विरोध करने इस बार शिवसेना के दोनों गुट के अलावा बीजेपी के नेता भी पहुंचे। एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी ओर भारी पुलिस बल बैरिकेडिंग लगाकर हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चालीस साल पहले बाला साहब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिखे ने यहां पर घंटानाद आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि यहां पर नमाज के वक्त मंदिर को बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी यहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
10: जो निषेध मोर्चा है, जिसका अपना अस्मिता को ठेस पहुँचा है, जिधर अपने दर्द हो रहा है कि मंदिर बंद है, उधर फटाकड़े फोड़ने का प्रयोजन क्या है? फटाकड़े आनंद उत्सव साझा करने के लिए किया जाता है ना।
7: इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज की तस्वीरें आई। यूपी में योगी सरकार ने पहले ही बकरीद को लेकर हिदायत दे दी थी, ऐसे में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक दिखी तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही ताकि माहौल खराब न हो। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया था। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा गुंडागर्दी के इन आरोपियों पर पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमाती हुई नजर आई और यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब पूरी तरह से बदल गया है।
11: मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर पीड़ा करें।
3: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृह मंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया। ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय और बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
12: इसको पिछले चोर छोड़ो गा।
3: बोलो। अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
12: अरे आखिर तो बोलो ना।
3: दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती। बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और काचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे काचरा पार क्षेत्र में फैला था।
12: तृणमूल कांग्रेस যারা নেতা তারা পালিয়ে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখনো আছি।
3: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
11: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह
13: जेल की सलाखों के पीछे है जेल की सलाखों।
14: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे। पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिली और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनिए। हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही है।
15: देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत अब बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा, तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
14: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा था। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
0: ट्विशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ट्विशा की मौत के 18 दिन के बाद आखिरकार ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
1: तमाम रस्साकसी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
16: जो FIR सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की FIR यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे जो हमें जानकारी मिल रही है, उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
1: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी है।
16: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्विशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
1: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी, जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से ट्विशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: और अब बात करेंगे उन स्टंटबाजों की जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। देखिए।

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें हैं जो अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी से खेल रही हैं। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है और इसी एक्सप्रेसवे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बावजूद एक्सप्रेसवे के बीचों बीच ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस स्टंट के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इन स्टंट बाजों को ना अपनी परवाह है ना दूसरे की। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि प्रशासन जागेगा और इन बदमिजाज रईस जादों को पकड़कर इनकी दौलत का नशा उतारेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।
1: बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। 3 जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिला कर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: Now the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान। यहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's one thing is not contingent on the other.
0: ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी खीज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी, जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई, मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं।
1: And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but we'd like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth. If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And
0: अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इसराइल को मान्यता देना, यही नहीं फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को ये कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं। आज तक पेरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें थे। सूत्रों से खबर, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी, 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिव कुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की ये तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर सर लेफ्ट पार्टी टेक्स अ डिसीजन, कांग्रेस लीडर पार्टी टेक्स अ डिसीजन एंड हाई कमांड टेक्स अ डिसीजन, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आलाकमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत तिळ्कोंडिरतक्कंतवनु मतदार नम अभिमानी देवरु।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ व्हिप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोचा उनका कुछ मंशा है, स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया। वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
3: दरअसल नर्मदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्युनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ बिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह सुजीत शाह के घर करेंसी राइफल गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया, मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार जैसे जिलों में प्रधानों, पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
5: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এরপরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
3: বিজেপি কে রহি হ্যাঁ দিল্লি সে হরি ঝন্ডি মিল যায় তো টিএমসি কা নাম ও নিশান মিট যায়।
6: 20 জন সাংসদ কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু এবং সমীরদা যদি দরজা খুলে দেয়, 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত।
3: এসে 50 नाराज विधायकों समेत मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण बंगाल के 18 से अधिक टीएमसी नेताओं और सांसदों को बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से 150 से अधिक विधायकों, सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले भी 2024 के चुनाव में बीजेपी के 28% उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37 नेता कांग्रेस से बीजेपी में आकर उम्मीदवार बने। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे बीजेपी के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है जो पिछले महीने ही बीजेपी में आए हैं।
0: और अब बात करेंगे बकरीद और उस पर हो रही लगातार सियासत के बारे में, क्योंकि बकरीद के लिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा करके प्रखर हिंदुत्व का संदेश दिया तो महाराष्ट्र में बकरीद के दिन बखेड़ा देखने को मिला है। इन सबके बीच यूपी में शांति से त्योहार मनाया गया।
7: बकरीद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी के गाय पूजन ने यह साफ संदेश दिया कि वो अब बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं। संदेश साफ था, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए।
8: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
7: नई सरकार में बंगाल की सड़कों का नजारा भी बदला दिखा। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
9: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए। और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।
7: उधर महाराष्ट्र के कल्याण पर बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किला जंग का अखाड़ा बन गया। दुर्गा माता मंदिर के बंद का विरोध करने इस बार शिवसेना के दोनों गुट के अलावा बीजेपी के नेता भी पहुंचे। एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी ओर भारी पुलिस बल बैरिकेटिंग लगाकर हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चालीस साल पहले बाला साहब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिखे ने यहां पर घंटानाद आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि यहां पर नमाज के वक्त मंदिर को बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी यहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
10: जो निषेध मोर्चा है, जिसका अपना अस्मिता को ठेस पहुँचा है, जिधर अपने दर्द हो रहा है कि मंदिर बंद है, उधर फटाकड़े फोड़ने का प्रयोजन क्या है? फटाकड़े आनंद उत्सव साझे करने के लिए किया जाता है ना।
7: इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज की तस्वीरें आई। यूपी में योगी सरकार ने पहले ही बकरीद को लेकर हिदायत दे दी थी, ऐसे में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक दिखी तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही ताकि माहौल खराब न हो। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया था। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा गुंडागर्दी के इन आरोपियों पर पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमाती हुई नजर आई और यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब पूरी तरह से बदल गया है।
11: मैं आपको वादा करता हूं।

0: सात बजे छोड़ दीजिए, एक बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करें।
1: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृह मंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया। ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
2: इसको पिछले चोर छोड़ो बोलो।
1: अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
2: अरे बोलो ना।
1: दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती। बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और काचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे कांचरा पार क्षेत्र में फैला था।
2: तृणमूल कांग्रेस যারা নেতা তারা পালিয়ে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখনো আছি।
1: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
0: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों।
1: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे। पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिली और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनिए। हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे

0: लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही है।
1: देखिए इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत अब बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
0: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
2: ट्विशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ट्विशा की मौत के 18 दिन के बाद आखिरकार ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
3: तमाम रस्साकसी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
4: जो FIR सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की FIR यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
3: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी है।
4: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्रिशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
3: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से ट्विशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: और अब बात करेंगे उन स्टंटबाजों की जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। देखिये

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें हैं जो अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी से खेल रही हैं। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे है और इसी एक्सप्रेस वे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बावजूद एक्सप्रेसवे के बीचों बीच ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस स्टंट के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इन स्टंटबाजों को ना अपनी परवाह है ना दूसरे की। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि प्रशासन जागेगा और इन बदमिजाज रईस जादों को पकड़कर इनकी दौलत का नशा उतारेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।
1: बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। 3 जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिला कर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: Now the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान, जहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
0: ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी खीज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी, जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई, मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं।
1: And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And
0: अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इसराइल को मान्यता देना, यही नहीं फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को यह कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका, जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं? आज तक पेरो।
2: और इसी के साथ हम रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें थे। सूत्रों से खबर, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी, 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिव कुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की यह तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर सर लेफ्ट पार्टी टेक्स एडिशन, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी टेक्स एडिशन एंड हाई कमांड टेक्स एडिशन, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आला कमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತವನು ಮತದಾರರ ನಮ್ಮ अभिमानी देवरू।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ विप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला? हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोच है उनका कुछ मंशा है। स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया। वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया। अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
3: दरअसल नर्मदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्युनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कूचबिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफिले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह सुजीत शाह के घर करेंसी राइफल गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया, मुर्शिदाबाद, कूचबिहार जैसे जिलों में प्रधानों, पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ी जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
5: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এর পরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
3: বিজেপি কে রহি হ্যাঁ দিল্লি সে হরি ঝন্ডি মিল যায় তো টিএমসি কা নাম ও নিশান মিট যায়।
6: 20 জন সাংসদ কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু এবং শ্রমিকদের যদি দরজা খুলে দেয়, 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত।
3: इससे 50 नाराज विधायकों समेत मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण बंगाल के 18 से अधिक टीएमसी नेताओं और सांसदों को बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से 150 से अधिक विधायकों, सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले भी 2024 के चुनाव में बीजेपी के 28% उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37 नेता कांग्रेस से बीजेपी में आकर उम्मीदवार बने। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे बीजेपी के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है जो पिछले महीने ही बीजेपी में आए हैं।
0: और अब बात करेंगे बकरीद और उस पर हो रही लगातार सियासत के बारे में, क्योंकि बकरीद के लिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा करके प्रखर हिंदुत्व का संदेश दिया, तो महाराष्ट्र में बकरीद के दिन बखेड़ा देखने को मिला है। इन सबके बीच यूपी में शांति से त्योहार मनाया गया।
7: बकरीद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी के गाय पूजन ने यह साफ संदेश दिया कि वो अब बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं। संदेश साफ था, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए।
8: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
7: नई सरकार में बंगाल की सड़कों का नजारा भी बदला दिखा। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
9: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए, और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।
7: उधर महाराष्ट्र के कल्याण पर बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किला जंग का अखाड़ा बन गया। दुर्गा माता मंदिर के बंद का विरोध करने इस बार शिवसेना के दोनों गुट के अलावा बीजेपी के नेता भी पहुंचे। एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी ओर भारी पुलिस बल बैरिकेडिंग लगाकर हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चालीस साल पहले बाला साहब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिखे ने यहां पर घंटानाद आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि यहां पर नमाज के वक्त मंदिर को बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी यहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
10: जो निषेध मोर्चा है, जिसका अपना अस्मिता को ठेस पहुँचा है, जिधर अपने दर्द हो रहा है कि मंदिर बंद है, उधर फटाकड़े फोड़ने का प्रयोजन का है। फटाकड़े आनंद उत्सव साझा करने के लिए किया जाता है ना।
7: इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज की तस्वीरें आई। यूपी में योगी सरकार ने पहले ही बकरीद को लेकर हिदायत दे दी थी, ऐसे में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक दिखी तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही ताकि माहौल खराब न हो। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया था। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा गुंडागर्दी के इन आरोपियों पर पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमाती हुई नजर आई और यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब पूरी तरह से बदल गया है।
11: मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर पीछा करें।
3: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृह मंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया। ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
12: इसको पिछले चोर छोड़ो यार,
3: बोलो। अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
12: अरे आखिर तो बोलो ना।
3: दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती। बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और काचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे काचरा पार क्षेत्र में फैला था।
12: तृणमूल कांग्रेस যারা নেতা তারা পালিয়ে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়ে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখনো আছি।
3: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
11: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है जेल की सलाखों।
3: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे, पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिले और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनिए। हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही।
13: देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत अब बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
3: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
0: ट्विशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ट्विशा की मौत के 18 दिन के बाद आखिरकार ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
1: तमाम रस्साकसी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
14: जो FIR सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की FIR यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
1: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी हैं।
14: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्रिशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
1: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी, जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से ट्विशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: और अब बात करेंगे उन स्टंटबाजों की जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। देखिए।

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें हैं जो अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी से खेल रही हैं। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे है और इसी एक्सप्रेस वे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बावजूद एक्सप्रेसवे के बीचों बीच ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस स्टंट के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इन स्टंट बाजों को ना अपनी परवाह है ना दूसरे की। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि प्रशासन जागेगा और इन बदमिजाज रईस जादों को पकड़कर इनकी दौलत का नशा उतारेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।
1: बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। तीन जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिलाकर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: Now the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीजफायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान, जहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी है कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's one thing is not contingent on the other.
0: ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी चीज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी, जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई, मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं।
1: And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth. If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And
0: अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इसराइल को मान्यता देना, यही नहीं फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को ये कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका, जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं? आज तक पेरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें थे। सूत्रों से खबर, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिवकुमार के सिर सजेगा ताज। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी, 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिवकुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की यह तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर लेफ्ट पार्टी टेक्स एडिशन, कांग्रेस लेफ्ट पार्टी टेक्स एडिशन एंड हाई कमांड टेक्स एडिशन, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आला कमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत तिळ्कोंडिरतक्कंतवनु मतदाररे नम अभिमानी देवरु।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ विप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला, हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम। ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोच है उनका कुछ मंशा है, स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक FIR किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया, वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका एगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया, अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
3: दरअसल नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्यूनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ बिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह सुजीत शाह के घर करेंसी राइफल गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया मुर्शिदाबाद कुछ बिहार जैसे जिलों में प्रधानों पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
5: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এরপরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
3: বিজেপি কে রহি হ্যাঁ দিল্লি সে হরি ঝন্ডি মিল যায় তো টিএমসি কা নাম ও নিশান মিট যায়।
6: 20 জন সাংসদ কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু এবং সমীকদা যদি দরজা খুলে দেয় 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত।
3: इससे 50 नाराज विधायकों समेत मालदा मुर्शिदाबाद दक्षिण बंगाल के 18 से अधिक टीएमसी नेताओं और सांसदों को बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से 150 से अधिक विधायकों सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले भी 2024 के चुनाव में बीजेपी के 28% उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37 नेता कांग्रेस से बीजेपी में आकर उम्मीदवार बने। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे बीजेपी के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है जो पिछले महीने ही बीजेपी में आए हैं।
0: और अब बात करेंगे बकरीद और उस पर हो रही लगातार सियासत के बारे में, क्योंकि बकरीद के लिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा करके प्रखर हिंदुत्व का संदेश दिया तो महाराष्ट्र में बकरीद के दिन बखेड़ा देखने को मिला है। इन सबके बीच यूपी में शांति से त्योहार मनाया गया।
7: बकरीद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी के गाय पूजन ने यह साफ संदेश दिया कि वो अब बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं। संदेश साफ था, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए।
8: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
7: नई सरकार में बंगाल की सड़कों का नजारा भी बदला दिखा। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
9: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए, और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।
7: उधर महाराष्ट्र के कल्याण पर बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किला जंग का अखाड़ा बन गया। दुर्गा माता मंदिर के बंद का विरोध करने इस बार शिवसेना के दोनों गुट के अलावा बीजेपी के नेता भी पहुंचे। एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी ओर भारी पुलिस बल बैरिकेडिंग लगाकर हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चालीस साल पहले बाला साहब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिखे ने यहां पर घंटानाद आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि यहां पर नमाज के वक्त मंदिर को बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी यहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
10: जो निषेध मोर्चा है, जिसका अपना अस्मिता को ठेस पहुंचा है, जिधर अपने दर्द हो रहा है कि मंदिर बंद है, उधर फटाकड़े फोड़ने का प्रयोजन का है। फटाकड़े आनंद उत्सव साझे करने के लिए किया जाता है ना।
7: इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज की तस्वीरें आई। यूपी में योगी सरकार ने पहले ही बकरीद को लेकर हिदायत दे दी थी, ऐसे में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक दिखी तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही ताकि माहौल खराब न हो। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया था। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा और गुंडागर्दी के इन आरोपियों पर पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमाती हुई नजर आई और यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब पूरी तरह से बदल गया है।
11: मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर फीका करें।
3: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृहमंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया। ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांधकर घुमाया।
12: इसको पिछले चोर छोड़ो।

0: पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
1: इसको पिछले चोर छोड़ो।
0: अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
1: अरे
0: मोहल्ले में कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागा। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे काचरा पार क्षेत्र में फैला था।
1: যারা নেতা তারা পালিয়ে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখনো আছি।
0: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
2: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है, जेल की सलाखों।
0: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे। पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिले और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनिए। हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाना, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज है। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही।
3: देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत आज बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा, तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
0: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
4: ट्विशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ट्विशा की मौत के 18 दिन के बाद आखिरकार ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
5: तमाम रस्साकस्सी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
6: जो FIR सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की FIR यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
5: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान

0: और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी है।
1: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, तुषा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
0: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी, जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से ट्विशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
2: और अब बात करेंगे उन स्टंटबाजों की जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। देखिए,

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादें हैं जो अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी से खेल रही हैं। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेस वे है और इसी एक्सप्रेस वे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बावजूद एक्सप्रेसवे के बीचों बीच ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस स्टंट के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इन स्टंट बाजों को ना अपनी परवाह है ना दूसरे की। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि प्रशासन जागेगा और इन बदमिजाज रईस जादों को पकड़कर इनकी दौलत का नशा उतारेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।
1: बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। तीन जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिला कर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: Now the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान, जहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's one thing is not contingent on the other.
0: ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी खीज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी, जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई, मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं।
1: And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And
0: अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इसराइल को मान्यता देना, यही नहीं फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को यह कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका, जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं? आज तक पेरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें तेज, सूत्रों से खबर। प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव, नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिव कुमार के सिर सजेगा ताज। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी, 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिव कुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की यह तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर सर लेफ्ट पार्टी टेक्स अ डिसीजन, कांग्रेस लीडर पार्टी टेक्स अ डिसीजन एंड हाई कमांड टेक्स अ डिसीजन, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आलाकमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರತಕ್ಕಂತವನು ಮತದಾರರೇ ನಮ್ಮ अभिमानी देवरू।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ विप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला, हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम, ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोच है उनका कुछ मंशा है, स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया, वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन होने के लिए सैंक्शन का जरूरत है। वो स्पीकर का पास मांगा था, स्पीकर अभी तक नहीं दिया, अभी हम स्पीकर को लिखेंगे क्यों आप सैंक्शन नहीं दे रहे हैं।
3: दरअसल नारदा स्टिंग मामले में सीबीआई की चार्जशीट में काकोली का भी नाम था, लेकिन स्पीकर से मंजूरी नहीं मिलने के कारण कार्रवाई नहीं हो सकी। दरअसल चुनाव नतीजों के बाद टीएमसी के अंदर भूचाल मचा हुआ है। टीएमसी के विधायक दिलीप मंडल को ओडिशा के पुरी से गिरफ्तार कर लिया गया। बाशीरहाट में टीएमसी के म्युनिसिपलिटी चेयरमैन के खेतों में सोना और नकदी मिलने पर गिरफ्तार किया गया है। कुछ बिहार में टीएमसी नेता तन्मय दास सुब्रत आचार्य को शुभेंदु के काफले पर हमले के केस में गिरफ्तार किया गया। उत्तर 24 परगना में अजीत शाह सुजीत शाह के घर करेंसी राइफल गोलियों से लेकर शराब तक की बरामदगी और गिरफ्तारी हुई। हुगली के टीएमसी जोनल चेयरमैन सुखदेव महतो की गिरफ्तारी हुई। विधाननगर नगर निगम से 4 टीएमसी पार्षद गिरफ्तार हुए। दक्षिण दमदम नगर पालिका के पूर्व मंत्री सुजीत बोस गिरफ्तार हुए। वर्धमान नगर पालिका में टीएमसी पार्षद शहाबुद्दीन खान तो माथा भांगा नगर पालिका में टीएमसी पार्षद चंद्रशेखर राय और हावड़ा से टीएमसी नेता आकाश सिंह की भी गिरफ्तारी हुई है। यहां तक कि कहीं आसनसोल में सेल की जमीन पर बने टीएमसी और लेफ्ट के दफ्तर ढहाए गए तो अभिषेक बनर्जी के दरवाजे तक भी पुलिस की दस्तक हो चुकी है। नादिया, मुर्शिदाबाद, कुछ बिहार जैसे जिलों में प्रधानों, पार्षदों और टीएमसी के नेताओं के खिलाफ 181 से अधिक नई एफआईआर दर्ज कर ली गई। टीएमसी के 15 साल की सत्ता में पनपे भ्रष्टाचार, अपराध और सियासत के गठजोड़ की एक एक परतें उधेड़ी जाने लगी हैं। कहीं से लाखों करोड़ों की नकदी, कहीं से सोना मिल रहा है, कहीं सैकड़ों आधार कार्ड, तो कहीं सरकारी दस्तावेज और सामान बरामद होते हैं। तो टीएमसी के खिलाफ हो रही कार्रवाई से घबराकर सबसे पहले टीएमसी के नेताओं के बीच भगदड़ मचती दिखती है। टीएमसी सांसद काकोली घोष दस्तीदार ने पार्टी के सारे पद छोड़ दिए। टीएमसी के प्रवक्ता शांतनु सेन ने पद से इस्तीफा सौंप दिया। 15 स्थानीय निकायों से टीएमसी के 127 पार्षदों ने इस्तीफा दिया। टीएमसी के 6 विधायक मुख्यमंत्री शुभेंदु की बैठक में देखे गए। टीएमसी विधायक ऋतुव्रत बनर्जी और संदीपन साहा सीएम की मौजूदगी में विधानसभा स्पीकर से मिलने पहुंचे। उत्तर बंगाल से टीएमसी के 13 विधायक मंत्री निशित प्रामाणिक की बैठक में पहुंचे। टीएमसी के राज्यसभा सांसद सुखेंदु शेखर राय सरेआम नाराजगी जता रहे हैं।
5: এমন বহু ঘটনা যে ঘটনাকে কোনোভাবে সমর্থন করা যায় না, মন সায় দেয় না, সাধারণ মানুষ সমর্থন করতে পারে না, তা জেনেও যে চাকরি চুরি, আরজিকর কাণ্ড, অভয়াকাণ্ড সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে পাহাড় প্রমাণ দুর্নীতির বিরুদ্ধে তারা রায় দিয়েছে, আমার মন আর কোনোভাবে সম্মতি দেয় না যে এর পরেও এই ধরনের দুর্নীতিগুলোকে সমর্থন করতে হবে।
3: বিজেপি কে রহি হ্যাঁ দিল্লি সে হরি ঝন্ডি মিল যায় তো টিএমসি কা নাম ও নিশান মিট যায়।
6: 20 জন সাংসদ কেন্দ্রীয় বিজেপি এবং রাজ্য নেতৃত্ব শুভেন্দু এবং সমীরদের যদি দরজা খুলে দেয় 20 জন সাংসদ আসতে প্রস্তুত।
3: इससे 50 नाराज विधायकों समेत मालदा, मुर्शिदाबाद, दक्षिण बंगाल के 18 से अधिक टीएमसी नेताओं और सांसदों को बीजेपी के संपर्क में होने का दावा किया जाता है। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2024 के चुनाव नतीजों के बाद से 150 से अधिक विधायकों, सांसदों ने अपनी पार्टी छोड़कर बीजेपी ज्वाइन की है। उससे पहले भी 2024 के चुनाव में बीजेपी के 28% उम्मीदवार ऐसे थे जो दूसरी पार्टियों से आए, जिनमें सबसे ज्यादा 37 नेता कांग्रेस से बीजेपी में आकर उम्मीदवार बने। वैसे हर चुनाव के पहले और नतीजों के बाद नेताओं के दल बदल का सिलसिला देखा जाता है, लेकिन पिछले दिनों हर दल के दरवाजे बीजेपी के पिछले गेट की तरफ ही खुल रहे हैं। इसकी ताजा मिसाल आम आदमी पार्टी के 10 में से 7 राज्यसभा सांसदों का दल बदल है जो पिछले महीने ही बीजेपी में आए हैं।
0: और अब बात करेंगे बकरीद और उस पर हो रही लगातार सियासत के बारे में, क्योंकि बकरीद के लिए बंगाल में शुभेंदु अधिकारी ने गौ पूजा करके प्रखर हिंदुत्व का संदेश दिया, तो महाराष्ट्र में बकरीद के दिन बखेड़ा देखने को मिला है। इन सबके बीच यूपी में शांति से त्योहार मनाया गया।
7: बकरीद के मौके पर शुभेंदु अधिकारी के गाय पूजन ने यह साफ संदेश दिया कि वो अब बंगाल में हिंदुत्व के नए पोस्टर बॉय हैं। संदेश साफ था, मुस्लिम के वोट नहीं चाहिए।
8: नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया, वहाँ मुसलमान वोट पूरा के पूरा टीएमसी को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्ग ठीक है, मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा।
7: नई सरकार में बंगाल की सड़कों का नजारा भी बदला दिखा। शुभेंदु अधिकारी की चेतावनी के बाद सड़कों पर नमाज अदा नहीं की गई।
9: कोलकाता के ब्रिगेड परेड मैदान में इस बार बकरीद की नमाज अदा की गई सालों बाद, और यहां पर मेरे पीछे आप देख सकते हैं हजारों की संख्या में लोग इस वक्त नमाज में शामिल हुए, और ये पहला मौका है सालों बाद जब रेड रोड की बजाय कोलकाता के ऐतिहासिक ब्रिगेड परेड ग्राउंड में ये नमाज अदा की गई है।
7: उधर महाराष्ट्र के कल्याण पर बकरीद के मौके पर एक बार फिर दुर्गाडी किला जंग का अखाड़ा बन गया। दुर्गा माता मंदिर के बंद का विरोध करने इस बार शिवसेना के दोनों गुट के अलावा बीजेपी के नेता भी पहुंचे। एक तरफ नमाज अदा की जा रही थी तो दूसरी ओर भारी पुलिस बल बैरिकेटिंग लगाकर हिंदू संगठनों को रोकने की कोशिश कर रहा था। चालीस साल पहले बाला साहब ठाकरे के आदेश पर धर्मवीर आनंद दिखे ने यहां पर घंटानाद आंदोलन शुरू किया था, क्योंकि यहां पर नमाज के वक्त मंदिर को बंद करने के आदेश हैं। ऐसे में हर साल की तरह इस साल भी यहां जोरदार प्रदर्शन देखने को मिला।
10: जो निषेध मोर्चा है, जिसका अपना अस्मिता को ठेस पहुँचा है, जिधर अपने दर्द हो रहा है कि मंदिर बंद है, उधर फटाकड़े फोड़ने का प्रयोजन का है। फटाकड़े आनंद उत्सव साझा करने के लिए किया जाता है ना।
7: इस बीच देश के अलग अलग हिस्सों में शांतिपूर्ण तरीके से बकरीद की नमाज की तस्वीरें आई। यूपी में योगी सरकार ने पहले ही बकरीद को लेकर हिदायत दे दी थी, ऐसे में सड़कों पर नमाज पर पूरी तरह से रोक दिखी तो वहीं भारी सुरक्षा बल की तैनाती रही ताकि माहौल खराब न हो। आज तक ब्यूरो।
0: पश्चिम बंगाल में परिवर्तन के लिए शुभेंदु सरकार ने पुलिस को भी फ्री हैंड दे दिया था। बंगाल पुलिस की तरफ से डॉन और अपराधियों की धरपकड़ की जा रही है और उन्हें रस्सी बांधकर घुमाया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि हिंसा गुंडागर्दी के इन आरोपियों पर पुलिस शॉर्ट्स और बनियान में घुमाती हुई नजर आई और यह संदेश दिया जा रहा है कि बंगाल अब पूरी तरह से बदल गया है।
11: मैं आपको वादा करता हूं 5 तारीख के बाद 7 बजे छोड़ दीजिए, 1 बजे छोटी बच्ची भी निकलेगी ना, कोई गुंडा नजर उठाकर नहीं। और किसी ने हिम्मत करी तो दीदी कितना भी विरोध करो, मैं फिर से बोलूंगा, उल्टा लटका कर सीधा करें।
3: अमित शाह ने जो वायदा चुनावों में पश्चिम बंगाल की जनता से किया, गृह मंत्री ने गुंडों अपराधियों को जिस तरह खबरदार किया वैसा ही सलूक शुभेंदु सरकार ने बंगाल में अपराधियों के साथ करना शुरू भी कर दिया। पश्चिम बंगाल पुलिस ने कुख्यात दबंगों को केवल बनियान और शॉर्ट्स में सड़कों पर पैदल घुमाया। ये देखिए पहली तस्वीर अभिजीत रॉय उर्फ बोनी की है। दूसरी तस्वीर हावड़ा के गैंगस्टर आकाश सिंह की। और तीसरी तस्वीर टीएमसी के नेता हिंसा के आरोपी शमी अहमद की, जिसका खौफ कभी पूरे हावड़ा में रहता था। पश्चिम बंगाल में अपराधियों और डॉन की हालात बदलने की पहली कहानी अभिजीत राय उर्फ बोनी की है, जिसे रस्सी से बांध कर घुमाया।
12: इसको पिछले चोर छोड़ो यार,
3: बोलो। अभिजीत राय उर्फ बोनी को बिजपुर पुलिस ने शॉर्ट्स में कमर पर रस्सी बांध कर काचरा पारा के वार्ड नंबर 3 में घुमाया।
12: अरे आखिर तो बोलो ना।
3: दावा है कि बोनी ही तय करता था कि कौन इन क्वार्टर में रहेगा और कौन कहां पर कब्जा करेगा। आरोप है कि बोनी के सीधे आदेश पर इन क्वार्टर्स में कई असामाजिक गतिविधियां की जाती। बोनी को शनिवार रात मंदारमनी में गिरफ्तार किया गया और काचरा पार वापस लाया गया। रविवार को उसे बैरकपुर कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे 5 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया। अब पुलिस ने उसे इसी मोहल्ले में कमर में रस्सी बांध कर घुमाया। जब उसे गलियों में घुमाया जाता है तो स्थानीय लोग चोर चोर के नारे लगाते हुए उसके पीछे चलते। अभिजीत राय उर्फ बोनी का कहना है कि तृणमूल कांग्रेस के जिन नेताओं ने गलत काम किए वो तो फरार हो गए, लेकिन बेकसूर होने की वजह से वो नहीं भागे। लेकिन बोनी के बारे में कहा जाता है कि पिछली सरकार में उसके आतंक का राज वार्ड नंबर 3 तक सीमित नहीं था, बल्कि पूरे काचरा पार्क क्षेत्र में फैला था।
12: तृणमूल कांग्रेस যারা নেতা তারা পালিয়ে, যারা চুরি করেছে তারা পালিয়েছে, আমি চুরি করিনি সেই জন্য এখনো আছি।
3: लेकिन सरकार बदलते ही सब कुछ बदल गया, जिसका दावा अमित शाह चुनाव में करते सुने गए थे।
11: आज दीदी बड़ी नाराज हो गई मुझसे कि अमित भाई गृह मंत्री होकर गुंडों को धमकाते हैं। अरे दीदी, तो गुंडों को क्या प्यार करूं मैं? गुंडों को धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? दीदी लोग बोलो, धमकाना चाहिए या नहीं धमकाना चाहिए? अभी तो सिर्फ धमका रहे हैं, सुधर जाओ वरना आपकी जगह जेल की सलाखों के पीछे है जेल की सलाखों।
3: शमीम अहमद उर्फ गब्बर ने सपने में नहीं सोचा होगा कि इतनी जल्दी उसके ऐसे दिन आएंगे, पैरों में चप्पल तक पहनने को नहीं मिलेगी और अपने ही इलाके में निक्कर और बनियान फटेहाल होकर उसे घूमना पड़ेगा। शमीम अहमद उर्फ गब्बर हावड़ा में टीएमसी वार्ड 36 का अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अरूप रॉय का करीबी सहयोगी, जिस पर बीजेपी के अल्पसंख्यक दल के जुलूस पर बमबारी करने का आरोप। इस मामले में पुलिस ने छापेमारी की तो इस दबंग के 5 मंजिला आलिशान मकान में छत पर गुप्त सीढ़ियां, जुआ घर और तहखाना मिला। ये वही शमीम मोहम्मद है जिसके घर में तहखाना और सोने जैसे पलंग का वीडियो वायरल हुआ, लेकिन शुभेंदु सरकार में अब इसके बुरे दिन शुरू हो गए। अब हावड़ा के डॉन आकाश सिंह की कहानी सुनिए। हावड़ा के इस कुख्यात डॉन पर पुलिस कर्मियों पर गोली चलाने, बमबारी करने समेत 20 से अधिक गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ये पूर्व टीएमसी विधायक गौतम चौधरी का बेहद करीबी माना जाता है। पुलिस ने गोलाबाड़ी और माली पंचघरा इलाके में केवल बनियान और शॉर्ट्स में इसका जुलूस निकलवाया। पश्चिम बंगाल के चुनाव में ऐसे ही गुंडे बदमाशों से जनता को सुरक्षित करने का वायदा किया गया था, जिसे शुभेंदु सरकार बेहद कड़े और अनोखे लेकिन विवादित तरीके से पूरा कर रही है।
8: देखिए, इस तरीके से हालत पहले उत्तर प्रदेश बिहार में भी था, वो हालत अब बदल गया है। बीजेपी जब चार्ज ले लेगा तब गृहमंत्री जी ने जो सार्वजनिक सभा में किया वो काम कानून के अंदर धीरे धीरे सभी होगा।
3: तृणमूल कांग्रेस ने आरोपियों की इस तरह से परेड को अमानवीय बताते हुए कहा कि किसी चुनी हुई सरकार का काम सर्कस चलाना या जनता के मनोरंजन के लिए ऐसे तमाशे पेश करना नहीं हो सकता। इस आलोचना पर पुलिस अधिकारियों का कहना है कि ये कार्रवाई क्राइम सीन रिक्रिएशन का हिस्सा थी। इसके तहत पुराने आपराधिक स्थलों का मुआयना करने, सबूतों की पुष्टि करने और तोलाबाजी के नेटवर्क का पता लगाने की कोशिश की गई है।
0: ट्विशा का परिवार इसी दिन का इंतजार कर रहा था। ट्विशा की मौत के 18 दिन के बाद आखिरकार ट्विशा की सास और पूर्व जज गिरिबाला सिंह को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने करीब 5 घंटे की पूछताछ के बाद गिरिबाला को अरेस्ट कर लिया।
1: तमाम रस्साकसी, तमाम सवाल जवाब, तमाम जांच और तमाम छानबीन के बाद ट्विशा की सास गिरिबाला पर सीबीआई ने शिकंजा कस दिया।
13: जो FIR सीबीआई ने दर्ज की है वो अबेटमेंट टू सुसाइड, डाउरी डेथ, दोनों की FIR यहां पे दर्ज हुई है। सीबीआई ने उसी के आधार पे क्वेश्चनिंग की थी गिरिबाला सिंह से। कई सारे क्वेश्चंस थे, जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक करीब 20 से ज्यादा क्वेश्चंस थे जो सीबीआई अपने साथ लेकर के गई थी। 5 घंटे से ज्यादा की क्वेश्चनिंग चली और उसके बाद सीबीआई ने अरेस्ट किया है।
1: इससे पहले हाईकोर्ट ने गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि व्हाट्सएप चैट्स, गवाहों के बयान और अब तक जुटाए गए सबूतों में गिरिबाला सिंह के खिलाफ स्पष्ट आरोप सामने आए हैं। कोर्ट ने यह भी माना कि जमानत मिलने के बाद आरोपी जांच में सहयोग नहीं कर रही थी। अग्रिम जमानत रद्द करने की मांग के साथ कोर्ट को जानकारी दी गई कि गिरिबाला क्राइम सीन मैनेजमेंट में ट्रेनिंग ले चुकी हैं।
13: वर्ड टू वर्ड जो बातें कही गई थी उनके अधिवक्ता की तरफ से, त्रिशा के परिवार के अधिवक्ता की तरफ से, वो हम आपको बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि गिरिबाला सिंह एक सेवानिवृत्त न्यायिक अधिकारी हैं तथा उन्होंने साइबर अपराध, साइबर फॉरेंसिक, डिजिटल सिग्नेचर टेक्नोलॉजी और क्राइम सीन मैनेजमेंट में स्पेशल सिलेबस की ट्रेनिंग ली है और उन्होंने अपने इसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल करते हुए घटना स्थल के साथ छेड़छाड़ की है और उनके साक्षियों के साथ भी छेड़छाड़ की गई है।
1: आज सुबह 10 बजे सीबीआई की टीम गिरिबाला के घर पहुंची थी, जहां घर के अंदर का डिजिटल नक्शा तैयार करके सवाल जवाब किए गए। भोपाल में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए सीबीआई कैंप ऑफिस बनाएगी। सीबीआई ने भोपाल पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखकर जगह मांगी है। सीबीआई को ऐसा दफ्तर दिया जाएगा जहां मामले से जुड़े साक्ष्यों और दस्तावेजों को सुरक्षित रखा जा सके। बहरहाल अब सीबीआई गिरिबाला से ट्विशा की मौत से जुड़े राज उगलवाने की कोशिश करेगी ताकि ट्विशा की मौत का सच सामने आ सके। रवीश पाल सिंह, भोपाल आज तक।
0: और अब बात करेंगे उन स्टंटबाजों की जो अपने साथ साथ दूसरों की जिंदगी भी खतरे में डाल रहे हैं। गंगा एक्सप्रेसवे से एक ऐसी ही तस्वीर सामने आई है जो हैरान कर देने वाली है। देखिए।

0: दौलत का नशा जब सर पर सवार होता है तो आदमी ऐसी हरकत करता है। ये अमीरों की बिगड़ी हुई औलादे हैं जो अपने साथ साथ दूसरे की जिंदगी से खेल रही हैं। ये नया नया शुरू हुआ मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे है और इसी एक्सप्रेसवे पर ये युवक स्टंट कर रहे हैं। महंगी महंगी गाड़ियां हैं, थार, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो और भी महंगी गाड़ियां। बीच में गाड़ी है जिसका सनरूफ खुला हुआ है, उस पर चढ़ा हुआ आदमी वीडियो बना रहा है और उसके चारों ओर ये महंगी गाड़ियां चक्कर लगा रही हैं। सोचिए, ये वो एक्सप्रेसवे है जिस पर स्पीड लिमिट 100 से 120 किलोमीटर प्रति घंटा है, उसके बावजूद एक्सप्रेसवे के बीचों बीच ये लोग स्टंट कर रहे हैं। इस स्टंट के दौरान कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है, मगर इन स्टंट बाजों को ना अपनी परवाह है ना दूसरे की। काफी देर तक स्टंट करने के बाद डिवाइडर पर लगी फुलवारी को कुचलते हुए ये सड़क के दूसरी तरफ गए। आधे घंटे तक हुड़दंग करने के बाद टोल कर्मियों से इन्होंने बदतमीजी की और बैरियर तोड़कर भाग गए। अब ये वीडियो वायरल हो रहा है। उम्मीद कीजिए कि प्रशासन जागेगा और इन बदमिजाज रईस जादों को पकड़कर इनकी दौलत का नशा उतारेगा। उस्मान चौधरी, मेरठ आज तक।
1: बारूद के ढेर पर खड़ा मध्य पूर्व फिर से धधक उठा है। जब वॉशिंगटन में अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप कैबिनेट की बैठक कर रहे थे, तब ईरान हॉर्मुज में अमेरिकी तेल टैंकर्स पर अंधाधुंध गोलियां बरसा रहा था और यहीं से हमले और जवाबी हमले का वो सिलसिला शुरू हुआ जो रुक रुक कर अभी भी जारी है।

0: अमेरिकी तेल टैंकरों पर हमले का जवाब अमेरिका ने बंदर अब्बास एयरपोर्ट के पास ईरान के सैन्य ठिकाने पर पलटवार से दिया। तीन जोरदार धमाकों ने दक्षिण ईरान को हिला कर रख दिया। इस हमले के कुछ ही घंटे बाद जैसे ही सूरज निकला, ईरान के खुजिस्तान से मिसाइल चल पड़ी। ईरान की मिसाइल के निशाने पर था कुवैत का अमेरिकी एयरबेस। ईरान की मिसाइलों को अमेरिकी पैट्रियट सिस्टम ने रोक लिया, लेकिन ईरान ने आगाह किया कि अगर अमेरिका ने फिर हमला किया तो इस बार जवाब निर्णायक होगा। दूसरी तरफ ट्रंप बौखलाए हुए हैं और उन्होंने ईरान के बाद ओमान को उड़ा देने की धमकी दी है।
1: No, the strait's going to be open to everybody. It's international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, and we'll have to blow them up. They understand that. They'll be fine.
0: इस बीच मध्य पूर्व एक बार फिर नए महायुद्ध की कगार पर खड़ा नजर आ रहा है। सीज फायर के दौरान ईरान ने कुवैत को निशाना बनाया है। सुबह होने से पहले ही पूरे कुवैत में चेतावनी के सायरन सुनाई दे रहे थे। इन हमलों की जिम्मेदारी ईरान ने ली। ईरान की IRGC ने कहा कि उसने बंदर अब्बास एयरपोर्ट पर हुए हमले के जवाब में अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाया है। ईरान ने कुवैत स्थित अली अल सलेम एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइलें और ड्रोन से हमला किया है। हमले से कुछ ही पल पहले खुजिस्तान के आसमान में सुबह सुबह बैलिस्टिक मिसाइलों की लकीरें दिखाई दी। ऐसा कहा जा रहा है कि इस मिसाइल को एयरबेस पर तैनात पैट्रियट बैटरी ने रोक लिया। हमले की शुरुआत बंदर अब्बास से हुई। यहीं से ईरान ने पहले अमेरिकी तेल टैंकरों पर गोलीबारी की और फिर यहीं से उसने हॉर्मुज की तरफ ड्रोन लॉन्च किए। अमेरिका ने उस कमांड सेंटर का पता लगते ही उस पर हमला किया। दूसरा ठिकाना है कुवैत का अली अल सलेम एयरबेस। ईरान का आरोप है कि बंदर अब्बास पर हमला यहीं से हुआ। तीसरा ठिकाना है ईरान का खुजिस्तान, जहां से ईरान ने कुवैत के अमेरिकी एयरबेस को निशाना बनाने वाली मिसाइल दागी। यानी कई घंटों तक बंदर अब्बास से लेकर कुवैत और खुजिस्तान तक सैन्य कार्रवाई चलती रही और अब ईरान ने धमकी दी कि अमेरिका के हमलों का जवाब इस बार निर्णायक ढंग से दिया जाएगा। अमेरिका और ईरान के बीच ये गोलीबारी तब हुई जब अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप व्हाइट हाउस में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे थे। दोबारा सत्ता में आने के बाद ये ट्रंप की 12वीं कैबिनेट मीटिंग थी। इस मीटिंग में ट्रंप ने एक बार फिर दोहराया कि या तो ईरान के साथ बड़ी डील होगी या फिर कोई डील नहीं होगी।
1: No, we're not talking about any easing of sanctions or giving money. No sanctions, no money, no nothing. We have control of money that they claim is theirs. We'll keep control of that money. When they behave properly and when they do what's right, we'll let them have their money. But right now, we're not doing that. And it's not, one thing is not contingent on the other.
0: ट्रंप ने ईरान की उस मांग को भी खारिज कर दिया जिसमें उसने समझौता करने से पहले अपनी जब्त की गई संपत्तियों को छोड़ने की मांग की है। 8 अप्रैल को ट्रंप ने ईरान के खिलाफ युद्ध विराम का ऐलान किया था। उसके अब तक 50 दिन बीत चुके हैं। इस दौरान ईरान ने कई बार बयान बदले लेकिन समझौता अब तक नहीं हुआ। इस बीच अमेरिकी मीडिया के खिलाफ उनकी चीज सोशल मीडिया पर सामने आ रही है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिकी मीडिया खासतौर पर CNN का मजाक उड़ाया है। ट्रंप ने लिखा कि CNN ईरान की नेवी शक्तिशाली बताता है, जबकि सच्चाई ये है कि उसकी नौसेना समंदर के गर्त में पहुंच गई है। अमेरिकी सेना ने उसे फारस की खाड़ी में डुबा दिया है। ट्रंप ने उसकी तस्वीर भी पोस्ट की है। लेकिन ट्रंप के इस दावे को ईरानी मीडिया की रिपोर्ट ने ही खारिज कर दिया है। उसके मुताबिक हॉर्मुज जलडमरू मध्य पार करने की कोशिश कर रहे 4 जहाजों को IRGC की नौसेना ने वापस लौटने पर मजबूर कर दिया है। जहाजों को ईरानी नौसेना ने पहले चेतावनी दी, जब उस चेतावनी को नजरअंदाज किया गया तो उन पर गोलियां चलाई गई, मजबूरन उन्हें लौटना पड़ा। जाहिर तौर पर अमेरिका और ईरान के बीच समझौता होना बेहद मुश्किल हो गया है। दूसरी तरफ ट्रंप ओमान को धमकी देने के साथ ही अरब देशों पर अब्राहम समझौते का दबाव बना रहे हैं।
1: And we'd like to have the countries we were talking about, with Saudi Arabia, UAE, Qatar, and the others, we'd like to have them immediately join the, and Steve Witkoff is working on that with Jared and some others, but would like to have them join the Abraham Accords. It'll be historic if they do it. And we would, I think they owe that to us, to be honest. I think, because that really would be a tremendous sign. And I think those countries owe it to us. I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth. If they don't sign to join the Abraham Accords, I don't know that we, you know, we have countries in there already. UAE, great. Great countries, bold countries. And
0: अब्राहम समझौते में शामिल होना यानी इसराइल को मान्यता देना, यही नहीं फिलिस्तीन को भी भूल जाना, क्योंकि अब्राहम समझौते की शर्त यही है कि फिलिस्तीन पर चर्चा बाद में होगी। सऊदी अरब को ये कबूल नहीं है। ऐसे में सवाल यही है कि वो अमेरिका जो ईरान को अपनी मांगों के आगे झुका नहीं सका, वो अरब देशों पर कितना दबाव बना पाएगा। मध्य पूर्व को युद्ध में झोंक चुके ट्रंप क्या अरब देशों को नाराज कर अमेरिकी वर्चस्व को भी खाक में मिलाने पर तुले हैं? आज तक पेरो।
2: और इसी के साथ हम यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आज तक।

0: केंद्रीय कैबिनेट में फेरबदल की अटकलें थे। सूत्रों से खबर, प्रधानमंत्री मोदी की टीम में अगले महीने बदलाव संभव। नितिन नवीन की टीम का जून के पहले सप्ताह में हो सकता है ऐलान। नीट और सीबीएसई को लेकर आज तक से बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, छात्रों की हित हमारी प्राथमिकता, सभी समस्याएं होंगी दूर, जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण। मिशन बॉर्डर पर निकले गृहमंत्री अमित शाह ने दोहराया सुरक्षित सरहद का वादा, कहा एक एक घुसपैठियों को निकालेंगे बाहर। बंगाल में पहले रोज होती थी घुसपैठ, फेंसिंग में जुटी बीएसएफ। कर्नाटक कांग्रेस ने राज्य में बदला अपना कप्तान, मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने दिया इस्तीफा, कहा आलाकमान की इच्छा का सम्मान, डीके शिवकुमार के सिर सजेगा ताज। और बीजेपी के बंगाल विजय के बाद कोलकाता को मिली अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की मेजबानी, 21 जून को कोलकाता में प्रधानमंत्री करेंगे योग। कर्नाटक में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया है और अब डीके शिवकुमार का सीएम बनना तय है। इसी बीच सूत्रों की अगर माने तो रविवार को विधानसभा के सामने शपथ समारोह हो सकता है।
1: कर्नाटक में पिछले काफी वक्त से चल रहे घमासान पर लगे विराम की यह तस्वीर है। आशीर्वाद दे रहे सिद्धरमैया अब कर्नाटक के पूर्व सीएम होने जा रहे हैं, जबकि पैर छुरे डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार के हाथों में अब कर्नाटक की कमान सौंपी जाएगी।
2: व्हाटएवर सर लेफ्ट पार्टी टेक्स एडिशन, कांग्रेस लीडर पार्टी टेक्स एडिशन एंड हाई कमांड टेक्स एडिशन, ही विल बी द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस स्टेट।
1: दिल्ली में आला कमान के साथ हुई मैराथन बैठक के बाद आज बेंगलुरु में सिद्धरमैया ने सीएम पद से इस्तीफा दे दिया। राज्यपाल थावरचंद गहलोत पारिवारिक कारणों से बेंगलुरु से बाहर हैं, ऐसे में उनके सचिव को इस्तीफा सौंपा, जिसके बाद डीके शिवकुमार और सिद्धरमैया ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में हाथ उठाकर ये संदेश देने की कोशिश की कि पार्टी में सब कुछ ठीक है। वहीं सिद्धरमैया इस दौरान भावुक भी नजर आए।
2: नानु राजकारणी नानु संविधान ने नम धर्म अंत तिळ्कोंडिरतक्कंतवनु मतदार नम अभिमानी देवरु।
1: इससे पहले आज सुबह सिद्धरमैया ने अपने घर पर मंत्रियों के साथ बैठक की और इस फैसले की जानकारी दी। बैठक के दौरान डीके शिवकुमार ने सिद्धरमैया के पैर छुए, जिसके बाद दोनों गले मिले। उधर सीएम बनने की खबर जैसे ही आई, डीके शिवकुमार के समर्थकों ने जमकर जश्न मनाया। विधायक दल की बैठक कल यानी 29 मई की शाम 5 बजे बेंगलुरु के एक होटल में बुलाई गई है, जहां डीके शिवकुमार के नाम पर मोहर लगेगी। आज तक ब्यूरो।
0: बंगाल की राजनीति में चुनाव नतीजों के बाद बड़ा भूचाल दिखाई दे रहा है। टीएमसी के भीतर इस्तीफों आरोपों की बगावत का दौर तेज हो चुका है। पार्टी के सांसद और नेता खुलकर भ्रष्टाचार और अंदरूनी संघर्ष पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं बीजेपी दावा यह कर रही है कि टीएमसी का कुनबा तेजी से बिखर रहा है।
3: बंगाल में बीजेपी का शुभेंदु राज क्या आया, टीएमसी के अंदर से बाहर तक कोहराम मच गया। नया विवाद टीएमसी के दो सांसदों के झगड़े को लेकर है, जिसमें टीएमसी की सांसद काकोली घोष ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखकर अपनी ही पार्टी के चीफ विप कल्याण बनर्जी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। आरोप लगाया है कि कल्याण बनर्जी ने संसद में उनके साथ दुर्व्यवहार किया है।
4: उस टाइम क्यों नहीं स्पीकर को बोला, हम 3 मास पहले भी हाउस में थे, हम उस टाइम भी कुछ किया तो स्पीकर को बोलना जरूरत था उस टाइम, ये अब तक था, बाद में बोलने से कुछ नहीं होता है।
3: कल्याण बनर्जी का दावा है कि काकोली के आरोप झूठे हैं, दरअसल इसके पीछे कहानी कुछ और है।
4: हमारा सोचा उनका कुछ मंशा है, स्पीकर को आपको चिट्ठी लिखेंगे बोलेंगे सीबीआई ने उनका अगेंस्ट में एक एफआईआर किया था, चार्जशीट किया, फाइल किया, वो 5 लाख रुपया नर्मदा में लिया था, तो उसका उनका अगेंस्ट में प्रोसिक्यूशन